0: मिल्कर से कहा, देवता और असुर मिलकर समुद्र मंथन करें। इस मंथन के फलस्वरूप अमृत की प्राप्ति होगी। देवताओं ने भगवान नारायण के परामर्श से मंदाकिनी को उखाड़ने की चेष्टा की। ये पर्वत मेघों के समान ऊंची चोटियों से युक्त 11,000 योजन ऊंचा और उतने से ही नीचे धसा हुआ था। जब सर्वश्रेष्ठ देवता पूरी शक्ति लगाकर उसे नहीं उखाड़ सके, तब उन्होंने विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी के पास प्रार्थना की। देवताओं की प्रार्थना सुनकर श्री नारायण और ब्रह्मा जी ने शेषनाग को मंदराचल उखाड़ने के लिए प्रेरित किया। महाबली शेषनाग ने वन और वनवासियों के साथ मंदराचल को उखाड़ लिया। अब मंदराचल के साथ देवगण समुद्र तट पर पहुँचे और समुद्र से कहा कि हम लोग अमृत के लिए तुम्हारा जल मथेंगे। समुद्र ने कहा, यदि आप लोग अमृत में मेरा भी हिस्सा रखे तो मैं मंदराचल को घुमाने से जो कष्ट होगा वह सह लूंगा। देवता और असुरों ने समुद्र की बात स्वीकार करके कच्छप राज से कहा, आप इस पर्वत के आधार बनिए। कच्छप राज ने कहा, ठीक है, कहकर मंदराचल को अपनी पीठ पर ले लिया। अब यंत्र के समान यंत्र के द्वारा मंदराचल को घुमाने लगे। इस प्रकार देवताओं और असुरों ने मंदराचल की मथानी वासुकी नाग की डोरी बनाकर समुद्र मंथन प्रारंभ किया। वासुकी नाग के मुंह की ओर असुर और पूछ की ओर देवता लगे थे। बार बार खींचे जाने के कारण वासुकी नाग के मुख से धुएं और अग्नि ज्वाला के साथ सांस निकलने लगी। सांस थोड़ी देर में मेघ बन जाती और मेघ थके मांदे देवताओं पर जल बरसाने लगते। पर्वत के शिखर से पुष्पों की झड़ी लग गई। पहाड़ पर वृक्ष आपस में टकरा कर उनकी रगड़ से आग लग गई। इंद्र ने मेघों द्वारा जल बरसवा कर उसे शांत किया। वृक्षों के दूध और औषधियों के रस चू चू कर समुद्र में आने लगे। औषधियों के अमृत के समान प्रभावशाली रस और दूध सुवर्ण में मंदराचल की अनेक दिव्य प्रभावशाली मणियों को से चूने वाली जल के स्पर्श से ही देवता अमरत्व को प्राप्त होने लगे। उन उत्तम रसों के सम्मिश्रण से समुद्र का जल दूध बन गया और दूध से घी बनने लगा। देवताओं ने मत्ते मत्ते थक कर ब्रह्मा जी से कहा, भगवान नारायण के अतिरिक्त सभी देवता और असुर थक गए हैं। समुद्र मत्ते मत्ते इतना समय बीत गया परंतु अभी तक अमृत ही निकला। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा, भगवान आप इन्हें बल दीजिए। विष्णु भगवान ने कहा, जो लोग इस कार्य में लगे हुए हैं मैं उन्हें बल दे रहा हूँ। सब लोग पूरी शक्ति लगाकर मंदराचल को घुमाएं, समुद्र को शुद्ध कर दें। भगवान के इतना कहते ही देवता और असुरों का बल बढ़ गया। वे बड़े वेग से मचने लगे। सारा समुद्र शुद्ध हो गया। इसी समय समुद्र से अनगिनत किरणों वाला शीतल प्रकाश से युक्त श्वेत वर्ण का चंद्रमा प्रकट हुआ। चंद्रमा के बाद भगवती लक्ष्मी और सुरा देवी निकली। उसी समय श्वेत वर्ण का उच्च शवा घोरा भी पैदा हुआ। भगवान नारायण के वक्षस्थल पर सुशोभित होने वाली दिव्य किरणों से उज्ज्वल कौस्तुभ मणि कल्पवृक्ष कामधेनु भी उसी समय निकले। लक्ष्मी सुरा चंद्रमा उच्चवा ये सब आकाश मार्ग के देवताओं के लोक में चले गए। इसके बाद दिव्य शरीरधारी धन्वंतरी देव प्रकट हुए। वे अपने हाथ में अमृत से भरा श्वेत कमंडल लिए हुए थे। ये अद्भुत चमत्कार देखकर दानवों में ये मेरा है मेरा है ऐसा कोलाहल मच गया। तदनंतर चार श्वेत दांतों से युक्त विशाल इरावत हाथी निकला। उसे इंद्र ने ले लिया। जब समुद्र का मंथन किया गया तब उसमें कालकूट विष निकला। उसकी गंध से ही लोगों की चेतना जाती गई। ब्रह्मा की प्रार्थना से भगवान शंकर नीले कंठ में धारण कर लिया। तभी से वे नीले कंठ के नाम से प्रसिद्ध हुए। ये सब देखकर दानवों की आशा टूट गई। अमृत और लक्ष्मी के लिए उन्होंने बड़ा बैर विरोध और फूट हो गया। उसी समय भगवान विष्णु मोहिनी श्री अवेश धारण करके दानवों के पास गए। मूर्खों ने उनकी माया न जानकर मोहिनी रूपधारी भगवान को अमृत का पात्र दे दिया। उस समय वे सभी मोहिनी के रूप पर लट्टू हो रहे थे। इस प्रकार विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके दैत्य और दानवों से अमृत छीन लिया और देवताओं ने उनके पास जाके उसे पी लिया। उसी समय राहु दानव भी देवताओं का रूप धारण करके अमृत पीने लगा। अभी अमृत उसके कंठ तक ही पहुंचा था कि चंद्रमा और सूर्य ने उसका भेद बतला दिया। भगवान विष्णु ने तुरंत ही चक्र से उसका सिर काट डाला और राहु का पर्वत शिखर के समान सिर आकाश में उड़कर गरजने लगा और उसका धड़ पृथ्वी पर गिरकर सबको कपाता हुआ तड़फड़ाने लगा। तभी से राहु के साथ चंद्रमा और सूर्य का पैर हो गया। विष्णु भगवान ने अमृत लाने के बाद अपनी मोहिनी रूप त्याग दिया और तरह तरह के रावणी अस्त्र शस्त्र से असुरों को डराने लगे। खारे समुद्र के तट पर देवताओं और असुरों का भयंकर संग्राम छिड़ गया। देवासुर संग्राम कहा जाता है इसमें। भांति भांति के अस्त्र शस्त्र बरसने लगे। भगवान के चक्र से कट कट कर कोई कोई असुर खून उगलने लगा। कोई कोई देवताओं के खड़क शक्ति और गदा से घायल होकर धरती पर लौटने लगे। चारों ओर से यही आवाज सुनाई पड़ती, मारो काटो दौड़ो गिरा दो पीछा करो। इस प्रकार भयंकर युद्ध हो ही रहा था कि विष्णु भगवान ने दो रूप नर और नारायण युद्ध भूमि दिखाए। नर का दिव्य धनुष देखकर नारायण ने अपने चक्र का स्मरण किया। भगवान नारायण के चलाने पर चक्र शत्रु दल में घूम घूम कर कालाग्नि के समान सहस्र शस्त्रों का सहार करने लगे। देव शिरोमणि नर ने बाणों के द्वारा पर्वतों की चोटियां काट काट कर उन्हें आकाश मार्ग में बिछा दिया। सुदर्शन चक्र घास फूस की तरह दैत्यों को काटने लगे। इससे भयभीत होकर असुरगण पृथ्वी और समुद्र में छिप गए। देवताओं की जीत हुई। मंदराचल को सम्मान पूर्वक यथास्थान पहुंचा दिया गया।
1: जी तो श्रोताओं बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहे हैं और समुद्र मंथन की कथा अभी रागलेखा दशी जी से हमने जानी कि किस तरह से देवताओं को अमृत मिला। और ये सारी कथाएं बहुत सुंदर जो है इस महाभारत के अंतर्गत हम जान रहे हैं। आगे और भी कथाएं प्रसंग हैं जो हम जानेंगे रागलेखा दशी जी से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और भी कथाएं प्रसंग जानते हैं। जी
0: उच्च सवा घोड़े को देखकर कद्रु ने वनिता से कहा, बहन जल्दी से बताओ इस घोड़े का किस रंग का है। वनिता ने कहा, बहन ये अश्वराज श्वेत वर्ण का है, तुम इसे किस रंग का समझती हो। कद्रु ने कहा, अवश्य ही इस घोड़े का रंग सफेद है, परंतु पूछ काली है। आओ हम दोनों इस विषय में बाजी लगाए। यदि तुम्हारी बात ठीक हो तो मैं तुम्हारी दासी रहूं और मेरी बात ठीक हो तो तुम मेरी दासी रहना। इस प्रकार दोनों बहनें आपस में बाजी लगाकर दूसरे दिन घोड़े देखने का निश्चय करके घर से चली गई। कद्रु ने वनिता को धोखा देने के विचार से अपने हजार पुत्रों को आज्ञा दी, पुत्रों तुम लोग शीघ्र ही काले बाल बनकर उच्च सभा की पूछ ढक लो, इससे मुझे दासी ना बनना पड़े। जिन सर्पों ने उसकी आज्ञा न मानी उसने उन्हें श्राप दिया कि जाओ तुम लोग अग्नि जल में देके सर्प अग्नि जल कर भस्म हो जाओगे। कद्रु और वनिता ने दासी बनने की बाजी लगाकर बड़े रोष और आवेश में रात बिताई। दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही निकट से घोड़े को देखने के लिए दोनों चल पड़े। सर्पों ने परस्पर विचार करके निश्चय किया कि हमें माता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, इसलिए चलो हम लोग घोड़े की पूंछ को काली कर दें। ऐसा निश्चय करके उच्च सवा की पूंछ से बाल बनकर लिपट गए और जिसे काली जान पड़ने लगी। फिर कद्रु और अनिता बाजी लगाकर आकाश मार्ग से समुद्र को देखते देखते दूसरे पार जाने लगे। दोनों ही दूसरे पार पहुंचकर नीचे उतर पड़े। उन्होंने देखा कि घोड़े का सारा शरीर तो चंद्रमा की किरणों के समान उज्जवल है, परंतु पूंछ काली है। ये देखकर अनिता उदास हो गई। कद्रु ने उसे अपनी दासी बना लिया। समय पूरा होने पर माँ तेजस्वी गरुड़ माता की सहायता के बिना ही अंडा फोड़े ही उससे से बाहर निकल आए। जनते ही आकाश में ऊपर उड़ने लगे। उस समय वैसे जान पड़ते थे माना दूसरा बड़वा नर ही हो। अग्नि के साथ जाकर देवता और ऋषियों ने गरुड़ की स्तुति की। ऋषियों की स्तुति सुनकर गरुड़ जी ने कहा, मेरे भयंकर शरीर को देखकर जो लोग घबरा गए थे अब वे भयभीत ना हो, मैं अपने शरीर को छोटा और तेज को कम कर लेता हूँ। सब लोग प्रसन्नता पूर्वक लौट गए। एक दिन विनीता ने अपने पुत्र को पास बिठाया और कद्रु ने उसे बुलाकर कहा, मुझे समुद्र के भीतर नागों का एक दर्शनीय स्थान देखना है, वहां तू मुझे ले चल। और वनिता ने कद्रु को और गरुड़ जी ने माता की आज्ञा से सर्पों को अपने कंधों पर बिठा लिया। उनके अभीष्ट स्थान को चले। तीक्ष्ण गर्मी के कारण सर्प बेहोश हो गए। कद्रु ने इंद्र की प्रार्थना करके सारे आकाश को मेघ मंडल से आच्छादित कर दिया। वर्षा हुई, सब सर्प सुखी हो गए। मनोहर व नादि उदर देखकर यथेष उन्होंने विहार किया और खूब खेल कूद कर गरुड़ से कहा, तुमने तो आकाश में उड़ते उड़ते बहुत से सुंदर सुंदर द्वीप देखे होंगे, अब हमें किसी द्वीप में ले चलो। गरुड़ कुछ चिंता में पड़ गए। उन्होंने सोच विचार कर अपनी माता से पूछा, माँ मुझे सर्पों की आज्ञा का पालन क्यों करना चाहिए। विनीता ने कहा, बेटा इन सर्पों के छल से मैं बाजी हार गई और दुर्भाग्यवश अपनी सौट कद्रु की दासी हो गई। अपनी माता के दुख से गरुड़ भी बड़े दुखी हो गए। उन्होंने सर्पों से कहा, सर्पगण ठीक ठीक बताओ, मैं तुम्हें कौन सी वस्तु ला दूं, किस बात का पता लगा दूं, अथवा तुम लोग का कौन सा उपकार कर दूं जिससे मैं और मेरी माता दासत्व से मुक्त हो जाएं। सर्पों ने कहा, गरुड़ यदि तुम अपने पराक्रम से हमारे लिए अमृत ला दो तो हम तुम्हें और तुम्हारी माता को दासत्व से मुक्त कर देंगे। सर्पों की बात सुनकर गरुड़ जी माता विनीता से कहा, माता मैं अमृत लेने के लिए जा रहा हूँ, इसके पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि वहाँ खाऊंगा क्या। विनीता ने कहा, बेटा समुद्र में निषादों की बस्ती है, उसे खाकर तुम अमृत ले आओ। स्मरण रखना, ब्राह्मण का वध कभी ना करना, ये सबके लिए अवध्य है। गरुड़ जी माता की आज्ञा के अनुसार उस दीप के निषादों को खाकर आगे बढ़े। गलती से एक ब्राह्मण उनके मुंह में आ गया, जिससे उनका तालू जलने लगा। उसे छोड़कर वे कश्यप जी के पास गए। कश्यप जी ने पूछा, बेटा तुम लोग सकुशल तो हो, आवश्यकता अनुसार भोजन तो मिल जाता है ना। गरुड़ जी ने कहा, मेरी माता सकुशल है, हम भी आनंद है, यथेष्ट भोजन न मिलने से कुछ दुख रहता है। मैं अपनी माता को दासीपन से छुड़ाने के लिए सर्पों के कहने से अमृत लाने के लिए जा रहा हूँ। अब आप कोई ऐसी खाने की वस्तु बताइए जिसे खाकर मैं अमृत ला सकूं। कश्यप जी ने कहा, बेटा यहाँ पर थोड़ी दूर पर एक विश्व विख्यात सरोवर है, उसमें एक हाथी और कछुआ रहता है। वे दोनों पूर्व जन्म में भाई थे, परंतु एक दूसरे के शत्रु है। अब वे दोनों एक दूसरे से उलझे रहते हैं। अच्छा, उनके पूर्व जन्म की कथा सुनो। प्राचीन काल में विभावसु नामक एक बड़े क्रोधी ऋषि थे। उनका छोटा भाई था तपस्वी सुप्रतीक। सुप्रतीक अपनी धन को बड़े भाई के साथ नहीं रखना चाहता था, वह जितने बंटवारे के लिए कहा करता। विभावसु ने अपने छोटे भाई से कहा, सुप्रतीक धन के मोह के कारण लोग उसका बंटवारा चाहते हैं, और बंटवारा हो जाने पर एक दूसरे के विरोधी बन जाते हैं, और शत्रु भी उनके अलग अलग मित्र बन जाते हैं, और भाई भाई में भेद डाल देते हैं। तू भेदभाव के कारण धन अलग अलग करना चाहता है, तुझे हाथी की योनि प्राप्त होगी। सुप्रतीक ने कहा, मैं हाथी होऊंगा तो तुम कछुआ होगे। गरुड़ इस प्रकार दोनों भाई धन के लालच में एक दूसरे को शाप देकर हाथी और कछुआ हो गए। तुम जाकर उन दोनों भयंकर जंतुओं को खा जाओ और अमृत ले आओ। कश्यप जी की आज्ञा प्राप्त कर गरुड़ जी सरोवर पे गए। उन्होंने एक नख से हाथी को और दूसरे से कछुए को पकड़ लिया, और आकाश में ऊंचे उड़कर अलम्ब तीर्थ से जा पहुंचे। वहां सुवन गिरी पर बहुत से देव वृक्ष लहलहा रहे थे। गरुड़ को देखते हुए भय से कांपने लगे, और कहीं उनके धक्के से हम टूट ना जाए। उनको भयभीत देखकर गरुड़ जी दूसरी ओर निकल गए। उधर एक बड़ा सा वट वृक्ष था। वट वृक्ष ने गरुड़ जी को मन के वेग से उठते देखकर कहा, तुम मेरी 100 योजन लंबी शाखा पर बैठकर हाथी और कछुए को खा लो। जो ही गरुड़ जी ने उसकी शाखा पर बैठे तो ही वे चढ़ाकर टूट गई और गिरने लगी। गरुड़ जी ने गिरते गिरते शाखा को पकड़ लिया और बड़े आश्चर्य से देखा, उसमें नीचे की ओर सिर करके बालखिल्ले नामक ऋषिगण लटक रहे थे। गरुड़ जी ने सोचा, यदि शाखा गिर गई तो तपस्वी ब्रह्म ऋषि मर जाएंगे। अब उन्होंने झपट कर अपनी चोट से वृक्ष की शाखा पकड़ ली और हाथी और कछुए को पंजे में दबाया, आकाश में उड़ने लगे। कहीं भी बैठने का स्थान न पाकर वे आकाश में उड़ते ही रहे। इस समय उनके पंखों की हवा से पहाड़ भी कांप उठते थे। बालखिल्ले ऋषियों के ऊपर दया भाव होने के कारण वे कहीं बैठ ना सके। उड़ते उड़ते गंधमादन पर्वत पर गए। कश्यप जी ने उन्हें इस अवस्था में देख कर कहा, बेटा कहीं साहस का काम न करना, घर बैठना। सूर्य की किरण पीकर तपस्या करने वाले बालखिल्ले ऋषि ने क्रोध होकर कहीं तुम्हें भस्म न कर दे। पुत्र से इस प्रकार कहकर उन्होंने तप शुद्ध बालखिल्ले ऋषियों से प्रार्थना की। तपोधनों, जरूर प्रजा के हित के लिए एक महान कार्य करना चाहते हैं, आप लोग इसे आज्ञा दीजिए। बालखिल्ले ऋषियों ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर वट वृक्ष की शाखा छोड़ दिया, तपस्या करने के लिए हिमालय पर चले गए। गरुड़ जी ने वह शाखा फेंक दिया, पर्वत की चोटी पर बैठकर हाथी और कछुए को खाया। गरुड़ जी खा पी कर उस पर्वत की चोटी से ही ऊपर की ओर उड़े। उस समय देवताओं ने देखा कि उनके यहाँ भयंकर उत्पात हो रहे हैं। देवराज इंद्र ने बृहस्पति से पूछा, भगवान एकाएक बहुत से उत्पात क्यों होने लगे? इंद्र, तुम्हारे अपराध और प्रमाद से महाप्रमाद के लिए ऋषियों के तपोबल से वनिता नंदन गरुड़ अमृत देने के लिए यहाँ आ रहे हैं। वे अपनी शक्ति से असाध्य कार्य को साध सकते हैं। इंद्र ने अमृत की रक्षकों को सावधान करके कहा कि देखो, परम पराक्रमी बक्षीराज गरुड़ यहाँ से अमृत ले जाने के लिए आ रहे हैं, सचेत रहो, वे बलपूर्वक अमृत ना ले जाने पाओ। सभी देवताओं और स्वयं इंद्र अभी अमृत को घेर कर उसकी रक्षा के लिए डट गए। गरुड़ जी वहाँ पहुँचते ही पंखों की हवा से इतनी धूल उड़ाई कि देवता अंधे से हो गए और वे धूल से ढककर मुंह से मन गए। सभी रक्षक की आंखें खराब होने के डर हो गए। वे एक क्षण तक गरुड़ को देख भी नहीं सके। सारा स्वर्ग शुद्ध हो गया चोर पंखों की चोट से देवताओं के शरीर जर्जरित हो गए। इंद्र ने वायु को आज्ञा दी, तुम इस धूल का पर्दा फाड़ दो, ये तुम्हारा कर्तव्य है। वायु ने वैसे ही किया, चारों ओर उजाला हो गया। देवता उनका प्रहार करने लगे, धूल में उड़ते उड़ते गरज कर उनके प्रहार फैलिए और आकाश से भी ऊंचे पहुंच गए। देवता उन्हें शस्त्रों के प्रहार से करोड़ कणिक भी विचलित हुए। उनके आक्रमण को विफल देखकर गरुड़ की पंखों और चोंचों की चोट से देवताओं की चमड़ी उधर गई और शरीर खून से लथपथ हो गया। वे घबरा कर स्वयं ही तितर बितर हो गए। उसके बाद गरुड़ आगे बढ़े, उन्होंने देखा अमृत के चारों ओर आग की लाल लाल लपटें उठ रही हैं। अब गरुड़ ने अपने शरीर को 8,100 मुंह बनाए और बहुत सी नदियों का जल पीकर उसे दहकती हुई आग पर उड़ेल दिया। अग्नि शांत होने पर छोटा सा शरीर धारण करके वे आगे बढ़े। सूर्य की किरणों के समान उज्जवल और सुनहरा शरीर धारण करके गरुड़ ने बड़े वेग से अमृत के स्थान में प्रवेश किया। उन्होंने वहाँ देखा अमृत के पास एक लोहे का चक्र निरंतर घूम रहा है, उसकी धार तीखी है, उसमें सहस्त्र अस्त्र लगे हुए हैं। वह भयंकर चक्र सूर्य और अग्नि के समान जान पड़ता था। उसका काम ही था अमृत की रक्षा। गरुड़ जी चक्र के भीतर घुसने का मार्ग देखते रहे। एक क्षण में ही उन्होंने अपने शरीर को संकुचित किया, चक्र के आरों के बीच में से भीतर घुस गए। अब उन्होंने देखा कि अमृत की रक्षा के लिए दो भयंकर सर्प नियुक्त हैं। उनकी दृष्टि से विष का संचार होता था। गरुड़ जी ने भूल झोंक कर उनकी आंखें बंद कर दी, चूचों और पंजों से मार मार कर उन्हें कुचल दिया, चक्र को तोड़ डाला और बड़े वेग से अमृत पात्र को लेकर वे उड़ चले। उन्होंने स्वयं अमृत नहीं पिया, बस आकाश में उड़कर सर्पों के पास चल दिए। आकाश में उन्हें विष्णु भगवान के दर्शन हुए। गरुड़ जी ने मन में अमृत पीने का लोभ नहीं है ये जानकर भगवान उन पर प्रसन्न हो गए और बोले, गरुड़ मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ, मन चाहे वस्तु मांग लो। गरुड़ जी ने कहा, भगवान एक तो आप मुझे अपनी ध्वजा में रखिए, दूसरा मैं अमृत पिए बिना ही अजर अमर हो जाऊँ। भगवान ने कहा, तथास्तु, मैं भी आपको वर देना चाहता हूँ। गरुड़ जी ने कहा, मुझसे कुछ मांग लीजिए। भगवान ने कहा, तुम मेरे वाहन बन जाओ। गरुड़ जी ने कहा, ऐसे ही होगा, और कहकर उनकी अनुमति से अमृत लेकर यात्रा की। अब तक इंद्र की आंखें खुल चुकी थी, उन्होंने गरुड़ को अमृत के जाते देखकर क्रोध में भरकर बजर चलाया। गरुड़ ने मजा हाथ होकर भी हंसते हुए कोमल वाणी से कहा, इंद्र जिनकी हड्डी से ये बजर बना है उनके सम्मान के लिए मैं अपना एक पंख छोड़ देता हूँ, तुम कभी अंत नहीं पा सकूंगी, मुझे कभी भी पीड़ा नहीं हुई। गरुड़ ने अपना एक पंख गिरा दिया, उसे देखकर लोगों को बड़ा आनंद हुआ। सबने कहा, जिसका यह पंख है उस पक्षी का नाम सुकर्ण है। पक्षीराज मैं जानना चाहता हूँ तुम्हें कितना बल है, साथ ही तुम्हारी मित्रता भी चाहता हूँ। गरुड़ ने कहा, देवराज आप अपनी इच्छा अनुसार हमारी मित्रता रहे, मैं मित्र के समान ही बतलाता हूँ। पर्वत वन समुद्र जल सहित सारी पृथ्वी को और इसके ऊपर रहने वाले आप लोगों को आपने एक पंख पर उठाकर मैं बिना परिश्रम के उठ सकता हूँ। अब मेरी घनिष्ठ मित्रता स्वीकार कीजिए, यदि आपको अमृत की आवश्यकता ना हो तो मुझे दे दीजिए। आप ये ले जाकर जिन्हें देंगे वे हमें बहुत दुख देंगे। गरुड़ जी ने कहा, देवराज अमृत को ले जाने का एक कारण है, मैं इसे किसी को पिलाना नहीं चाहता हूँ, मैं इसे जहाँ रखूँ वहाँ से आप उठा ले जाइए। इंद्र ने संतुष्ट होकर कहा, गरुड़ उसे मुँह मांगा वर मांग लो। गरुड़ जी ने सर्पों की दुष्टता और उसके छल के कारण होने वाले माता के दुख का स्मरण हो आया। उन्होंने वर मांगा, ये बलवान सर्प भी मेरे भोजन की सामग्री हो। देवराज इंद्र ने कहा, तथास्तु। इंद्र से विदा लेने के बाद गरुड़ सर्पों के स्थान पर आए, वहीं उनकी माता भी थी। उन्होंने प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा, सर्पों से कहा, ये लो मैं अमृत ले आया, परंतु पीने में जल्दी मत करो, मैं इसे कुशों पर रखता हूँ, स्नान करके पवित्र हो लो फिर इसे पीना, स्नान करके पवित्र हो लो फिर इसे पीना। अब तुम लोगों के कथा अनुसार मेरी माता दासीपन से छूट गई क्योंकि मैंने तुम्हारी बात पूरी कर दी है। सर्पों ने स्वीकार कर दिया। जब सर्पों को सुंदरता से भरकर स्नान करने गए तब इंद्र अमृत कलश को लेकर स्वर्ग में चले गए। मंगल कृत्यों से लौट कर सर्पों ने देखा अमृत उस पर नहीं था स्थान पर। उन्होंने समझ लिया कि हमारी विनीता को दासी बनाने के लिए जो कपट किया था उसी का फल है। फिर ये समझ कर अमृत रखा गया था इसलिए संभव है इसमें कुछ अंश लगा हो। सर्पों ने कुशों को चाटना शुरू कर दिया, ऐसे करते ही उनके जीभ के दो टुकड़े हो गए। अमृत का स्पर्श होने से कुश पवित्र माना जाने लगा। अब गरुड़ कृत्य कृत्य होकर आनंद से अपनी माता के साथ रहने लगे। वे पक्षी राज हुए और उनकी कीर्ति चारों ओर फैल गई और माता सुखी हो गई।
1: जी श्रोताओं, बहुत ही सुंदर कथा। हमने जानेंगे किस तरह से अपनी माता के लिए गरुड़ जो है अमृत का कलश लेने गए और उसमें वो सफल भी हुए और किस तरह से वो भगवान जी का वाहन बने, ये भी हमने जाना। और ये पूरी कथा जो है हमने जानी इस महाभारत काव्य के अंतर्गत। तो श्रोताओं, इसमें ऐसी बहुत सारी कथाएं प्रसंग हैं जो हम जानते रहेंगे रागलेखा दासी जी से, लेकिन अभी जो वक्त है आपसे इजाजत लेने का हो चुका है। तो रागलेखा दासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। जी तो श्रोताओं, आज के लिए कार्यक्रम आत्मदर्शन में बस इतना ही। अगले एपिसोड में और भी कथाएं प्रसंग हम जानेंगे, लेकिन आज के लिए हमें दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 पर आने वाले अन्य कार्यक्रमों को भी। फील गुड फील लाइव।
2: अभी न जाओ छोड़ कर।

0: नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर सभी श्रोताओं का स्वागत है। श्रोताओं, मैं हूँ आपकी कम्युनिटी मेंबर मंजू चंदीला और मैं आपको सुनवाना चाहती हूँ शिव पुराण, जिससे कि आप सबका कल्याण हो सके। तो दोस्तों, शिव पुराण का सुनवाने के लिए हमने अपने स्टूडियो में लीना जी को आमंत्रित किया हुआ है। लीना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद मंजू जी।
0: दोस्तों, शिव का अर्थ ही है कल्याण स्वरूप और कल्याण प्रदाता। परम ब्रह्म के इस कल्याण रूप की उपासना उच्च कोटि के सिद्धों, आत्म कल्याण कामी साधकों एवं सर्वसाधारण आस्तिक जनों सभी के लिए मंगलमय एवं सर्व सिद्धिदायक हैं। तो श्रोताओं, हम भी क्यों ना इस तरह से अपने जीवन की सारी सिद्धियां प्राप्त करें। क्यों, कैसे कि शिव पुराण की व्याख्या सुनकर। तो लीना जी, आपने जो पिछली एपिसोड में जो आपने वर्णन सुनाया था हमारे श्रोताओं को, कि ब्रह्मा जी ने कहा कि हिमालय सब सुनकर अपने परिवार वालों से कहने लगे कि सुमेरों, अब परिवार कौन था, सारे पर्वत, सुमेरों पर्वत राजों सुनो, मुझे क्या करना चाहिए। पर्वत राजों ने कहा, अब क्या विचार करना है, इसका जन्म तो कल्याण के लिए ही हुआ है, इसे शिव जी को दे दीजिए। फिर हिमालय ने निर्णय लिया कि मैं अपनी कन्या शिव जी को ही दूंगा, सब कुछ मैंने सोच लिया है। तो आप सारे के सारे जो मंगल पर्वत राज थे और ऋषि मुनि थे, सबने कहा आप दाता हो और शिव जी भिक्षु, अब बताइए इससे बड़ा आपका सम्मान और क्या हो सकता है। सप्त ऋषियों ने जब ऐसा कहा और विश्वास दिलाया तो गिरिराज और मैना ने अपनी कन्या भगवान शिव को देने की सोच ली। तो उसके बाद सबने मिलकर शिव जी के पास गए और उनको कहा कि आप सभी देवों को आमंत्रित कीजिए और हिमालय अपनी पुत्री आपको देने के लिए तैयार है। अब आगे लीला जी, कैसे ये कथा बढ़ती है, क्या होता है, तो जरा हमें बताइए।
1: बिल्कुल, एक रोचक कहानी हम लोग सुन रहे हैं।
0: हाँ।
1: और इस रोचक कहानी में पार्वती और शिव के विवाह प्रस्ताव की चर्चा है।
0: हाँ जी, हाँ जी।
1: अब शिव पुराण के रुद्र संहिता के पार्वती खंड का 37वां अध्याय शुरू हो रहा है और इस 37वें अध्याय में देखिए क्या होता है।
0: जी।
1: नारद उवाच, तात प्राज्ञ बदेद इदानीम सप्तर्षिषु गतेषु च किम आकर्षीद धम किम आकर्षित धर्मगिरी तन्मे कृत्वा कृपां प्रभो। कहते हैं हे प्राज्ञ, उन सात मुनियों के चले जाने पर हिमालय ने क्या किया। जो सप्तर्षि थे वो तो प्रस्ताव लेकर के गए थे हिमालय के पास, पार्वती के विवाह का प्रस्ताव लेकर के। तो अब वो लोग जब चले गए तब हिमालय ने क्या किया, कृपा करके कहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, अब ब्रह्मा जी सुना रहे हैं उस बात को, कहते हैं गतेषु तेषु मुनिषु सप्तसु अपि मुनीश्वर सारुन्धतीषु हिमवान यद आकर्षीद ब्रवीमि ते तत आमंत्रिय स्वभ्रातृन मेवार्दिन ससुत प्रिय महामना स मुमुदे हिमवान पर्वतेश्वर। कहते हैं ब्रह्मा जी की हे मुनिवर, अरुंधति सहित उन सप्तर्षियों के चले जाने पर हिमालय ने जो किया वह मैं तुमसे कह रहा हूँ। उसके बाद पुत्रों सहित मेरु आदि अपने भाइयों को आमंत्रित कर वह पर्वतराज हिमालय प्रसन्न हुआ। उसने प्रसन्न होकर अपने पुरोहित गर्गाचार्य से लग्न पत्री लिखवा कर शिव जी के पास उसे भिजवा दिया। देखिए उस समय लग्न पत्री भी चलती थी और लोग उसे मानते भी थे, आज भी चलती है लेकिन बहुत कम लोग उसे मानते हैं। लेकिन लग्न पत्री आवश्यक है क्योंकि इससे क्या होता है, ये वर और वधु जो भी बनने वाले हैं भविष्य में उनके साथ क्या क्या हो सकता है और अगर नहीं मिलान होता है तो वो हर समय दाम्पत्य जीवन का सुख नहीं भोग सकते, इसलिए ये जो है लग्न पत्री आवश्यक होती है कि दाम्पत्य जीवन का वो सुख भोग पाए, ऐसे उचित वर या वधु से विवाह हो सके, इसलिए
0: जैसे लीना जी आजकल ये देखने को मिल रहा है कि ज्यादातर हमारे समाज में भी आधुनिक युग में कोर्ट मैरिज कर रहे हैं, मंदिर में मैरिज कर रहे हैं। चलो मंदिर में तो पंडित सारे जो श्लोक हैं मंत्र हैं उनसे ही करवाएगा, या कहीं भी विवाह कर लेते हैं तो अग्नि को, कहीं भी अग्नि को साक्षी मान के कहीं भी निर्जन स्थान में कर लेते हैं। तो अब ये जो हमारी लग्न पत्रिका है या पहले से उनके नक्षत्र लग्न सब दिखवाए जाते हैं, तो और वो जो सारा का सब पत्रिका, उनकी जन्म पत्रिकाएं मिलवाई जाती हैं, गुण मिलवाए जाते हैं, वो उनका महत्व फिर क्या, मतलब क्या रह जाता है उन सब के लिए?
1: बिल्कुल महत्व तो नहीं रह जाता है, चाहे माने या नहीं माने। हाँ। अगर हम शास्त्र वचन मानते हैं तो शास्त्र को नेत्र कहा गया है। अगर शास्त्र वचन नहीं मानते हैं तो समझिए हमारे, हम अपनी आंखें ही बंद किए हुए हैं। और आंखें बंद करके जब आप रास्ते पर चलेंगे तो कहाँ गड्ढा है, कहाँ खाई है, कहाँ पर्वत है, कहाँ नदियां है, हम नहीं जान पाएंगे।
0: हाँ।
1: और हम कहीं भी गिर सकते हैं। इसलिए आज के युग में आप देखेंगे कि दाम्पत्य संबंधों में वह मधुरता नहीं रह गई है जो होनी चाहिए।
0: हाँ।
1: एक ही छत के नीचे पति पत्नी रहते हैं लेकिन वह प्रेम नहीं दिखता, वह संगीत मधुर नहीं दिखता जो दाम्पत्य संबंधों में होना चाहिए।
0: हाँ।
1: और जो कोर्ट मैरिज करें या कोई भी मैरिज करें, लेकिन वो मधुरता तभी होगी जब हम एक दूसरे का मिला के स्वभाव का मिलान करेंगे। वास्तव में तमोगुणी लड़की है और सतोगुणी लड़का है तो फिर मिलान नहीं होगा।
0: हाँ।
1: अगर सतोगुणी लड़की है तमोगुणी लड़का है तब भी मिलान नहीं होगा, क्योंकि तमोगुणी लड़का मांस मदिरा खाएगा, सतोगुणी मांस मदिरा से परहेज करेगी, दोनों में लड़ाई झगड़े होंगे। ठीक उसी तरह लड़के और लड़की दोनों में सेम बातें हैं। तो इसलिए जो लग्न पत्री होती है उसमें गुणों का मिलान होता है।
0: तो अब ये भी देखने को मिल रहा है लीना जी समाज में कि सारे गुण भी मिले, लगन पत्रिका भी लिखवाई, उसके बाद भी एक साल बाद ही उनका डिवोर्स भी हो गया, उनका तलाक भी हो गया। उसमें ना वर ने सोचा कुछ आगे के बारे में, ना वधु ने सोचा, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने।
1: इसका भी कारण ये है कि विवेक का अभाव रहता है।
0: हाँ।
1: दंपति के बीच में विवेक बहुत आवश्यक है, एक दूसरे पर विश्वास भी आवश्यक है और एक दूसरे के हितों के विषय में सोचकर आगे बढ़ना भी आवश्यक है। आप देखिएगा अधिकांश घरों में क्या होता है, शादी तो हो जाती है, लड़की लड़के के ससुराल को, लड़के के परिवार वालों को स्वीकार भी कर लेती है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन लड़की के परिवार वालों को स्वीकार नहीं जब ससुराल करता है तो लड़की पर क्या बीतती है ये कोई नहीं सोचता
0: नहीं।
1: तो लड़की भी चाहती है कि उसके परिवार वालों को भी वही आदर वही सम्मान मिले जो वह अपने ससुराल के में सबको देती है।
0: हाँ।
1: चाहे वो ससुर हो ननद हो सभी जगह। हाँ। मैं ये नहीं कहूंगी कि सभी लड़कियां ऐसी होती हैं, सभी लड़के ऐसे ही होते हैं, ऐसा नहीं होता है, लेकिन प्रायः आप देखिएगा कि बच्चियां जो भी होती हैं जिनकी भी शादी होती है वो स्वीकार कर लेती हैं और जैसे भी हो आदर करती हैं। लेकिन वहीं पर अगर बच्चियां चाहेंगी कि हम अपने मायके जाएं तो 10 बातें बताई जाती हैं कि अभी क्या करोगी, अभी तो आई थी, अभी तो ऐसा हुआ था। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए और ना ही लड़की की तरफ से होना चाहिए कि हर समय मायके मायके मायके करते रहें और मोबाइल फोन से चिपके रहें, तो ये भी अच्छा नहीं लगता है। तो हमेशा विवेक से काम लेना होता है कि जितना आपको दिया जा रहा है उतना ही आप वापस भी दीजिए, तो दोनों के हृदय का मिलन होगा। हृदय से हृदय का जब तक मिलन नहीं होगा तब तक हृदय से हृदय का स्पंदन नहीं होगा और उसमें पुलकन नहीं उठेगी। जब पुलकन नहीं उठेगी, रोम रोम पुलकित ही नहीं होंगे तो घर में आनंद कैसे होगा। तो इसलिए विवेक आवश्यक है। ठीक है, प्रेम हृदय का, हृदय से प्रेम होना चाहिए। तो जब शिव और पार्वती की हम लोग बातें कर रहे हैं तो शिव और पार्वती में हृदय का हृदय से प्रेम है और ऐसा प्रेम अद्वितीय प्रेम है जो कि हमें कहीं देखने को नहीं मिलता। लेकिन ये ध्यान देना होगा कि पार्वती ही हम लोगों के हृदय में बसी हुई है, शिव ही हम लोगों के हृदय में बसे हुए हैं। तो शिव और पार्वती का जो प्रेम है वो आत्मा और परमात्मा का प्रेम है और ये एक उदाहरण है हम लोगों के लिए कि हम भी पार्वती बत प्रेम करें, हम भी शिव बत प्रेम करें। लेकिन जब प्रेम नहीं मिलता है एक दूसरे से तो फिर हम
0: संबंध नहीं बन पाते,
1: अच्छे संबंध नहीं बना पाते। अब देखिए यहाँ कहते हैं कि लग्न पत्री बना करके शिव जी के पास उसे भिजवा दिया और प्रसन्न चित्त होकर अनेक प्रकार के फल पकवान तथा मिठाइयाँ भी भिजवाई तथा उन लोगों ने कैलाश में शिव जी के पास जाकर फल आदि सहित वह लग्न पत्रिका दी और शिव जी को तिलक किया। शिव जी ने भी उन सबका यथोचित सम्मान किया। उसके बाद वे हिमालय के पास लौट आए। अब कौन लौट आए, जो सप्त मुनि थे वो लौट आए। और दूसरी बात कि हिमालय ने अपने पुत्रों सहित मेरु आदि अपने भाइयों को आमंत्रित किया था और गर्गाचार्य से जनपत्री लिखवा कर उसे भिजवाया था अपने पुत्रों से। तो फिर वो सब दिए वहां जा करके और शिव जी ने उन्हें ग्रहण किया। अब देखिए क्या होता है कि अपने लोगों का शिव जी ने विशेष प्रकार से सम्मान किया, ये बड़ी बात है। यह जानकर हिमालय मन में प्रसन्न हुआ। तब उसने प्रसन्न होकर अनेक देशों में स्थित अपने बंधुजनों को सुखद निमंत्रण भेजा। तब उसने आदर से विवाहोचित अनेक प्रकार की खाद्य सामग्री का संग्रह करवाया, क्योंकि शादी ब्याह में तो समय लगता ही है और बहुत सारी चीजें देनी होती हैं। तो उसने संग्रह करवाया, हिमालय ने चावल तथा चूड़ों के पहाड़ लगा दिए, उसी प्रकार गुड़ चीनी नमक के ढेर लगा दिए, दूध दही तथा घी की बावड़ियां बना डाली। देखिए बावड़ी बना डालना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि शिव पार्वती का विवाह था तो पूरे संसार से लोग आने वाले थे, तो अब किसी को वो मना तो कर नहीं सकते थे, तो इसलिए उसने बावड़ी बना दी। जौ गेहूं के आटे का संग्रह करा दिया, लड्डुओं पूड़ियों स्वस्तिकों चीनी के ढेर लगा दिए, अमृत तथा ईख के रसों से बावरियां भर गई, मक्खन आसव तथा अनेक प्रकार के पकवान तथा स्वाद युक्त रसों के ढेर लग गए, अनेक प्रकार के व्यंजन जो देवताओं तथा शिव जी के गणों के लिए बनाए गए थे, बहुमूल्य अनेक प्रकार के शुद्ध वस्त्र, अनेक प्रकार के मणि रत्न सोने चांदी से बने हुए आभूषण तथा पात्रों को विधि पूर्वक संग्रह करके शुभ मुहूर्त में हिमालय ने मंगलाचार आरम्भ कर दिया और पर्वत की स्त्रियाँ पार्वती का श्रृंगार करने लगी। देखिए कितनी बड़ी बड़ी बातें की गई हैं और इसमें अतिशयोक्ति हमें नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि युग पुरुष का युग स्त्री से विवाह हो रहा था, काल पुरुष का काल स्त्री से विवाह हो रहा था, तो होगा तो ऐसा ही। विवाह कोई साधारण मनुष्य का तो था नहीं, साधारण नर और नारी का था नहीं, ये प्रकृति का पुरुष के साथ संयोग था। और प्रकृति यानी संपूर्ण प्रकृति, संपूर्ण जगत, संपूर्ण माया के साथ सौंदर्य के साथ विराजमान थी और उन माया के मायापति उनसे मिलन के लिए आ रहे थे, उनका विवाह होने वाला था, प्रकृति का पुरुष से परमेश्वर से विवाह होने वाला था, तो ऐसा अचंभा ऐसा अद्वितीय तो होना ही था। कहते हैं कि मंगलम कर्तुम आरभे गिरिर्मंगल कृत दिने संस्कारम कार्यामासु पार्वत्या पर्वत स्त्रिय ता मंगलम मुदा चक्रुर्भूषिता भूषण स्वयं पुर द्विज स्त्रियो हृष्टा लोकाचारम प्रचक्रिरे सोत्सवम विविधम तत्र सुमंगलपुर सरम हिमालयो अपि हृष्टात्मा कृत्वाचारम सुमंगलम। अब कहते हैं मंगल ही मंगल था हर तरफ, क्योंकि मंगल पुरुष का मंगल स्त्री से विवाह हो रहा था, तो फिर मंगल ही मंगल क्यों नहीं होता। अब देखिए कहते हैं कि शुभ मुहूर्त में हिमालय ने मंगलाचार आरंभ कर दिया और पर्वत की स्त्रियां पार्वती का श्रृंगार करने लगी। वे स्वयं अनेक आभूषणों से सुशोभित होकर मंगलाचार करने लगी और ब्राह्मणों की स्त्रियां भी उस लोकाचार में सम्मिलित हुई। वहां मंगलाचार के साथ हिमालय भी लोकाचार करने लगे। बंधुओं के आने से वह प्रसन्न हुआ। इसी बीच उसने दूसरे बंधु बांधवों को भी निमंत्रित किया। वे सब अपने स्त्री पुत्र नौकर चाकरों के साथ आए। हे देवर्षि, उन पहाड़ों के आने की चर्चा आदर से सुनो, मैं संक्षेप से शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कह रहा हूँ। अब देखिए अब पहाड़ों की चर्चा है। कवि जो है कौन है, लेखक इसके वेद व्यास है। वेद व्यास जो व्यास यानी कि व्यापक और व्यापक रूप से वो वर्णन कर रहे हैं। और पुराण का वर्णन कब किया गया है वेद व्यास के द्वारा, जब वो महाभारत लिख करके बहुत ज्यादा उद्विग्न हो गए थे, क्योंकि महाभारत में युद्ध की चर्चा थी और रक्तपात की चर्चा थी, हत्या मारकाट की चर्चा थी, तो वे बड़े उद्विग्न हो गए थे। तो उन उद्विग्न वेद व्यास को नारद जी ने कहा कि आप भक्ति का की गंगा बहाइए तो आपको आनंद आएगा। तो भक्ति की गंगा बहाने में भक्त को भी उतना ही आनंद आता है जितना कि पाठकों को श्रोताओं को आनंद आता है। जैसे कि हमको आपको आनंद आ रहा है भक्ति रस में अवगाहन करने पर, अब श्रोता गण सुनेंगे तो उनको भी आनंद आएगा। हम भाव विभोर होकर के इसे पढ़ रहे हैं, भाव विभोर होकर के इसे सुन भी रहे हैं और हमें लग रहा है कि वास्तव में शिव पुराण है तो क्या।
0: लीना जी, यह जो जिस प्रकार से यहाँ वर्णन किया जा रहा है पार्वती और शिव के विवाह का और तैयारियों का, तो ऐसा लग रहा है कि हम बैठे हैं और सामने ये सारा कुछ हो रहा है, सारा विवाह का वर्णन हो रहा है, विवाह की तैयारियाँ हो रही हैं और सारे सीन ऐसा लग रहा है कि हम लोग भी देख रहे हैं, हम भी शामिल हो रहे हैं। तो वो जो आनंद हम महसूस कर रहे हैं, तो मैं कहना चाहूँगी अपने श्रोताओं से कि हर व्यक्ति, हर श्रोता उस आनंद को महसूस करे, क्योंकि यह
1: अपूर्व दृश्य है,
0: अभूतपूर्व
1: दृश्य है, रोमांचक दृश्य है।
0: जी जी,
1: तो इस दृश्य का वर्णन वेदव्यास जी किस तरह से भाव विभोर होकर कर रहे हैं, यह हमें सुनना चाहिए। अब देखिए, पर्वतों के विषय में वो वर्णन कर रहे हैं। हम लोग कितने पर्वत का नाम जानते हैं, हिमालय है, अरावली है, सतपुरा है, सतपुरा के घने जंगल, अरावली के पर्वत है, सतपुरा के घने जंगल,
0: देखा तो सबने एक दो कोई
1: है, आल्प्स
0: है, नाम है,
1: तो बहुत सारे पर्वत सारे अगर पर्वत। हम नाम लेना चाहें तो बस गिन करके 10-15 पर्वत के नाम लेंगे। अब यहाँ वेदव्यास जी कितने पर्वतों का नाम ले रहे हैं और हर पर्वत एक से एक बढ़कर, जिनके नाम हम जानते भी नहीं है, लेकिन उस समय ये पर्वत तो अवश्य होंगे, तभी उन्होंने नाम लिया है। अब देखते हैं किन किन पर्वतों का इन्होंने नाम लिया है। वो कहते हैं वेदव्यास जी कि आजगमु स स्त्रियो हिष्टा स सुता स परीक्षदा तदेव शृणु देवर से गिरिया गमन आद्रिता वर्णयामि समासेन शिव प्रीति विवृधय देवालय गृढ़ो ही दिव्य रूप धरो महान। अब वो देवालय पर्वत के विषय में बताते हैं। हाँ। हिमालय तो है ही, हाँ। अब देवालय पर्वत है, हाँ। कहते हैं देवालय नाम के महान पर्वत दिव्य रूप धारण कर, अनेक रत्नों को धारण कर अपने समाज तथा परिवार के साथ आए। वे अपने साथ अनेक मणि तथा रत्न लेकर पहुंचे। अब देवालय पर्वत का वर्णन करने के बाद वो किसका वर्णन कर रहे हैं, मंदराचल, जिनका नाम हमने हमेशा सुना है, मंदराचल। वो कहते हैं कि सुवेशा अलंकृता श्रीमान जगाम च हिमालयम नाना रत्न परिभ्राजत समाज सपरिच्छद नाना मणि महारत्न सारन आदा यत्नता। सुवेशालंकृत श्रीमान जगाम च हिमालयम मंदर सर्व सौभाड्य स नारी तनयो गिरो। अब वो कहते हैं कि श्रीमान मंदराचल सुंदर वेश धारण कर अनेक रत्नों को धारण कर अपने समाज तथा परिवार के साथ आए। वे अपने साथ अनेक मणि तथा रत्न लेकर पहुंचे। श्रीमान मंदराचल सुंदर वेश धारण कर स्त्री पुरुष सहित हिमालय के घर पधारे। अब आम व्यक्ति में जिज्ञासा हो सकती है कि ये पर्वत थे तो आए कैसे, सुंदर वेश धारण कर कैसे आए, तो ये जिज्ञासा भी यही शांत हो जानी चाहिए कि वास्तव में ये पर्वत, ये नदियाँ, ये सभी आत्मावान थे, वो जो चाहे रूप धारण कर सकते थे। अब जैसे अगस्त्य मुनि की पत्नी है लोपामुद्रा, आज वो नदी के रूप में है दक्षिण भारत में, तो नदी क्यों बनी, क्योंकि उस जगह पानी नहीं था, कहीं भी पानी नहीं था, और अगस्त्य मुनि बड़े परोपकारी थे, मुनि थे, ऋषि थे, बहुत परोपकारी थे, उन्होंने अपनी पत्नी को नदी बना दिया। गंगा नदी बन गई, यमुना नदी बन गई, कोशी नदी बन गई,
0: आज भी ली नदी इनको माता की, गंगा माता, यमुना मैया, माँ कहकर ही पुकारते हैं इनको।
1: जी, जी।
0: तो और ये जब हमारा महाभारत हम देखते हैं तो भीष्म अपनी माँ गंगा को सामने ही जब प्रार्थना करते थे वो आती थी,
1: बिल्कुल,
0: तो साक्षात अभी भी अगर कोई बिल्कुल सात्विक मन से माँ गंगा को पुकारे, माँ यमुना को पुकारे, वो अपना उसी रूप में दर्शन देती हैं।
1: जी।
0: तो यह सत्य ही है कि पर्वत राज भी उस समय अपने अपने रूप में सब पधारे होंगे,
1: पधारे।
0: जी,
1: तो सबसे पहले उन्होंने देवालय का वर्णन किया, फिर मंदराचल का वर्णन किया। अब कहते

जानते, क्योंकि वहाँ से मलयालिन यानी कि मलय पर्वत से जो हवा, सुगंधित हवा बहती है, वो कहा जाता है कि मलय पर्वत से आई होगी। तो सुगंधित, क्योंकि वहाँ चंदन के वृक्ष हैं और चंदन के वृक्षों से टकरा करके जब हवा चलती है तो वो क्या होता है, सुगंधित हो जाता है। तो कहते हैं मलय पर्वत भी आए, भली भांति सजधज कर बहुत सी सेना को लेकर स्त्री सहित प्रसन्न चित दर्दुन नामक पर्वत शीघ्र वहां आए। मंदरा चलाए, अस्ता चलाए, उदया चलाए, देवालय आए, मलय पर्वत आए, दर्दुन आए। फिर हे तात, अनेक प्रकार से सुसज्जित प्रसन्न चित विशद पर्वत भी सपरिवार हिमालय के घर आए। भाग्यवान गंधमादन पर्वत भी स्त्री पुत्रों सहित प्रेम से हिमालय के घर आए। कहते हैं महेंद्र पर्वत श्रेष्ठ आजगाम हिमालयम सगण ससुत स्त्री को बहुशोभा समन्वित परियात्रो ही हृष्टात्मा मणि रत्ना करैर युतः सगण सपरिवार आययो हिम भूधरम क्रौंच पर्वतराजो ही महाबल परिच्छद आजगाम गिरिश्रेष्ठ समुपायन आदृत। अब देखिए, अनेक प्रकार की संपत्ति को लेकर करवीर पर्वत भी वहां पहुंचे और पर्वतराज महेंद्र भी हिमालय के घर निमंत्रण में पधारे। अपनी स्त्री पुत्र तथा सेवकों को तथा मणिरत्नों को साथ लेकर प्रसन्नचित पारयात्र भी आए। पर्वतराज क्रौंच भी अपने परिवार सेवक तथा सेना के साथ हिमालय के घर पहुंचे। पुरुषोत्तम नामक शैल भी अनेक प्रकार के उपहारों को लेकर अपने समाज सहित आदर पूर्वक हिमालय के द्वार पर आए। नील पर्वत आनंद के साथ पुत्र पुत्री स्त्री तथा बहुत सा धन लेकर हिमालय के घर आए। त्रिकूट चित्रकूट वेंकट श्रीगिरी गोकामुख, गोकामुख कहा गया भारतवर्ष में स्थित ये एक विशेष पर्वत है, तो गोकामुख तथा नारद ये पर्वत भी हिमालय के घर पहुंच गए। पर्वतराज विंध्याचल भी स्त्री पुत्रों को साथ लेकर तथा अनेक प्रकार की उपहार की वस्तुओं को लेकर प्रसन्न होकर वहां आए। कालंजर नामक महापर्वत अत्यंत प्रसन्न होकर अपने अनेक गणों के साथ हिमालय के घर आए। गिरिराज कैलाश भी, कैलाश जहां शिवजी वास करते हैं, क्योंकि शिवजी तो उस समय हिमालय पर वास कर रहे थे, तो गिरिराज कैलाश भी अत्यंत प्रसन्न होकर सबके ऊपर कृपा करते हुए वहां आए। ये सभी उन पर्वतों के अधिष्ठात्री देवता थे। हे नारद, दूसरे द्वीपों में भी जो जो पर्वत थे और इनके अतिरिक्त जो भारतवर्ष में पर्वत थे, वे सभी हिमालय के घर आए। अभी तो पर्वतों का वर्णन चल रहा है और कितने पर्वतों का वर्णन उन्होंने कर दिया। ये सारे पर्वत आए और जिन पर्वतों का वर्णन नहीं किया है वो भी हिमालय के घर आए। कैसे? कहते हैं कि दूसरे द्वीपों में भी जो जो पर्वत थे और इनके अतिरिक्त जो भारतवर्ष में पर्वत थे, वे सभी हिमालय के घर आए। हे मुनि, हिमालय द्वारा निमंत्रित सभी पर्वत प्रसन्नता पूर्वक शिव पार्वती का विवाह देखने के लिए वहाँ आए। अब यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूंगी कि एक बार मैं गई थी यहाँ केदारनाथ। केदारनाथ से लौटते हुए एक जगह पड़ी जहाँ पर शिव पार्वती का विवाह हुआ था। अच्छा। सतयुग में विवाह हुआ था उनका, लेकिन आज तक वहाँ अग्नि जल रही है, ऐसा उन लोगों का कहना है। अच्छा। और अग्नि जल रही थी, बहुत बड़ा यज्ञ कुंड था और उसमें जो भी जाते हैं एक लकड़ी डाल करके आते हैं। अच्छा। तो हम लोगों ने भी डाला एक एक लकड़ी और वो सच में अग्नि वहाँ जल ही रही है। क्या सच है नहीं है ये तो जो ज्योतिषी हैं वो सब बताएंगे, लेकिन चूंकि हम लोग भक्त भक्ति करते हैं, तो जो देख रहे हैं वही सत्य है। हम ऐसा सोचते हैं कि जो शंकराचार्य आदि ने वर्णन किया है वो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि शंकराचार्य के विषय में कहा गया है कि जब सारे मंदिर जीर्ण शीर्ण हो गए थे और पता भी नहीं था, और ये बौद्ध धर्म जैन धर्म का प्रभाव अपने देश में था और वैदिक धर्म बिल्कुल ही समाप्त प्राय सा हो गया था, तो उस समय शंकराचार्य ने सब कुछ पुनर्जीवित किया, पुनरोद्धार किया। उसी पुनरोद्धार प्रकरण में उन्होंने देखा जहाँ महिष मर्दिनी ने महिषासुर का वध किया था, वो जगह भी उन्होंने देखी अपने ज्ञान चक्षु से और फिर उसका भी पुनरोद्धार किया। तो केदारनाथ से आने नीचे आने पर बहुत सारे ऐसे मंदिर आपको मिल

0: जाएंगे जिनका शंकराचार्य जी ने उद्धार किया है, आदि गुरु शंकराचार्य ने, और उसी में ये मंदिर भी पड़ा था रास्ते में जहाँ पर हम लोगों ने भी यज्ञ किया।
1: ये भी हमारे श्रोताओं को ज्ञान मिल गया। तो लीना जी, क्योंकि एपिसोड्स को समाप्त होने का समय हो चला है, तो दोस्तों हम सब अपनी तरफ से और आपकी तरफ से मैं लीना जी का धन्यवाद करती हूँ। तो लीना जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना अमूल्य रत्नों से, अमूल्य ज्ञान से हम सबको कृतार्थ किया। अब मुझे इजाज़त दीजिए दोस्तों, क्योंकि अगले एपिसोड में पुनः हम लीना जी के साथ यहीं पर मिलेंगे रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। फील गुड, फील लाइव।

0: रेडियो मानव कृष्णा 107.8 एफएम पर। नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा आपके साथ और शुरू हो चुका है प्रोग्राम आत्मबोध। और हर बार की तरह हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं बीके ज्योति जी और बीके प्रिया जी। चलिए इनसे इनका हाल चाल जानते हैं। गुड मॉर्निंग।
1: ओम शांति। गुड मॉर्निंग।
2: ओम शांति। और आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है और उम्मीद करते हैं कि आप सब भी बहुत स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे।
0: आप भी अपनी शुभकामनाओं के लिए हमें मैसेज करें, हमसे कांटेक्ट करें। नंबर है 8010781078। हर हफ्ते हम चले आते हैं गीता के ज्ञान को लेकर के, जहां हम बहुत सारी बातें आप लोगों से करते हैं। गीता के ज्ञान में इतना सब कुछ है ना कि हमारी जिंदगी बदल जाएगी। आप सभी जानते हैं कि कई लोग जिन्हें हम देखते हैं वो ये कहते हैं कि गीता के ज्ञान ने हमारी पूरी जिंदगी को बदल करके रख दिया। तो चलिए अब अपनी जिंदगी को बदलते हैं, और खास तौर पे वो लोग जिनके पास वक्त नहीं है, इतने बिजी हैं कि क्या बताएं। उनसे कुछ पूछो तो यही कि यार हमारे पास तो वक्त ही नहीं, हम कैसे कुछ नया करें। तो रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर हमने शुरू किया गीता का ज्ञान प्रोग्राम है आत्मबोध, और इसमें आपको गीता के ज्ञान के बारे में पता चलेगा। और इन सब के जानकारी के लिए हमारे साथ बीके प्रिया जी और बीके ज्योति जी होती हैं। दूसरे अध्याय पर हैं हम लोग, जिसका नाम है ज्ञान योग। ज्ञान योग के बारे में काफी सारी डिटेल में बातें बताई बीके प्रिया जी और ज्योति जी ने, लेकिन इसमें एक और है लेसन जिसका नाम है आप आत्मा हैं। आत्मा के बारे में काफी अच्छे से यहाँ पर बताया गया है। तो चलिए हम ज्योति जी और प्रिया जी से जानते हैं और बढ़ते हैं ज्योति जी की तरफ। ज्योति जी, ये जो है इसमें लिखा है आप आत्मा है, ये तो हमें पता है, लेकिन किस तरह से, मतलब किस तरह से ये एक्सप्लेन किया गया है, आप अपने तरीके से समझाएं सभी लिसनर्स को।
2: जैसा कि दूसरा अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन से बात कर रहे हैं, और अर्जुन क्योंकि विषाद में है तो सबसे पहले खुद का ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि जब हम कमजोर हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम स्वयं को भूल जाते हैं। और श्रीमद् भगवद गीता का जो दूसरा अध्याय है वो पूरा ही अपनी सेल्फ रियलाइजेशन पर ही फोकस कर रहा है कि हम कौन है और हम क्या बन करके चल रहे हैं। तो इसमें एक बहुत सुंदर श्लोक के द्वारा भी कहा गया है, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा ना भूये अजो नित्या शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यामाने शरीरे। अर्थात है कि यह आत्मा किसी काल में न जन्मती है न मरती है, बल्कि यह अजन्मी नित्य सनातन और पुरातन है। मानव शरीर के मारे जाने के बाद भी आत्मा का अस्तित्व खत्म नहीं होता, वो अमर अमर अविनाशी है। अगर हम साधारण शब्दों में कहें तो आत्मा को कोई भी मार नहीं सकता है, और प्रथम अध्याय में भी इस चीज को बहुत अच्छे से बताया गया है। और उसका जो स्वधर्म है, उसका स्वधर्म क्या है, वो श्री कृष्ण जो है, परमात्मा जो है, वो अर्जुन को बता रहे हैं। अर्थात हम सब आत्माओं को बता रहे हैं कि किसी भी, अगर हम स्वधर्म में टिक जाएं, अर्थात आत्मिक धर्म में टिक जाएं, तो कभी भी हम डरेंगे नहीं, भयभीत नहीं होंगे। तो वहां उनको वो क्षत्रिय धर्म याद दिलाते हैं कि क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर दूसरा कुछ कल्याणकारी कर्तव्य नहीं आता। तो इसमें ये बताया गया कि स्वतंत्र आत्मा किसी भी तरह के बंधन में बंधी हुई नहीं है, वो फ्री है, वो अपने डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि वो राजा है और ये शरीर की जो कर्म इंद्रियां हैं वो उसकी प्रजा है, उससे उसे कार्य करना है और उसके वशीभूत ना हो जाए। आज हम क्या हो गए हैं, बाहर की जगत की बात बाद में करें, लेकिन हम अपनी ही इंद्रियों के वशीभूत हो गए हैं।
0: बिल्कुल,
2: हमारी ही इंद्रियां, हमारी आंख जो चीज देखती है, जो चीज पसंद करती है, बस मन वही भाग रहा है। और ऐसे ही अगर देखें तो हमारे कान जिन बातों को सुनना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो कहीं प्रवचन होंगे या कोई आपकी गली के अंदर भी आप देखें कि कोई कहीं कथा हो रही है, तो लोग पूछेंगे कि क्या वहां से इनविटेशन आया है, बुलाया गया है, तो ही हम जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाते हैं। और कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा हो तो कहने की जरूरत ही नहीं है, वहां पे पहुंचे चले जाते हैं बिन बुलाए मेहमान, जबकि हर कोई चाहता नहीं है कि कोई वो चीजें सुने। तो माना कहीं ना कहीं हमारी कान की इंद्रियों को रस मिलने लगा है उस नेगेटिव बातों में। तो हम इंद्रियों के वशीभूत हो गए हैं और मन भी उसी में रमने लगा है। तो यहाँ पर इस अध्याय में बहुत अच्छे से क्लियर किया गया कि आत्मा का स्वधर्म क्या है। आत्मा इस शरीर में राजा है और आत्मा की तीन सूक्ष्म शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। अब मन के ये तीन तो शक्तियां हैं, लेकिन आत्मा अपने स्वधर्म कौन कौन से गुण हैं, उसके मूलभूत गुण अगर कहें, क्योंकि आत्मा को सतोगुणी कहा गया है, लेकिन धीरे धीरे धीरे धीरे डे बाय डे में आत्मा तमोगुणी बन गई है। तो सतोगुणी क्यों कहा गया, क्योंकि आत्मा के सात गुण हैं। अगर हम इसको एक फॉर्मूले के रूप में लें तो कहा जाता है KP² LHBP अर्थात K फॉर नॉलेज, हमारी जो ज्ञान है उसके लिए, P फॉर प्योरिटी, जो हमारी पवित्रता है, हर एक को पवित्र चाहिए, पवित्रता चाहिए, फिर P फॉर, क्योंकि स्क्वायर है, P फॉर पीस, L फॉर लव, H फॉर हैप्पीनेस, B फॉर ब्लिस और लास्ट P पावर। तो ये सात गुण आत्मा में निहित है। इन जब सातों गुणों को आत्मा महसूस करती है, उस पूरे ही अपनी चरम सीमा पर होते हैं वो गुण प्रैक्टिकल रूप में, तो आत्मा सतोगुणी कहलाती है। अब हम सब देखें अगर तो मनुष्य के मन में बहुत सारे संकल्प चलते हैं, विकल्प चलते हैं, लेकिन उनको चाहिए क्या, कहीं ना कहीं इसी धुरी में जाकर के टिक जाते हैं। आज इस ज्ञान की भी अज्ञानता हो गई है। ज्ञान को हम सब सोचते हैं शायद किताबी ज्ञान, लेकिन अपने प्रकृति का ज्ञान, खुद का ज्ञान होना, माना वही संपूर्ण ज्ञान है, खुद के बारे में जानना। आज हमें दूसरे के मन में क्या चल रहा है वो तो हमें पता है,
3: खुद के मन में क्या है
2: वो नहीं पता है ना, उससे हम दूर हैं। तो मन की अपने आत्मा के स्वरूप का ज्ञान होना, अपनी प्रकृति का ज्ञान होना, इसको कहा गया ज्ञान। प्योरिटी अर्थात पवित्रता, जो पवित्रता हमारे मन में किसी के लिए भी दुर्भावना ना आए, उसको कहा गया प्योरिटी। और शांति, शांति की अगर बात करते हैं तो शांति जो है वो क्या चीज है, शांति के लिए लोग सोचते हैं शायद चुप बैठ जाना, है ना। इसके लिए एक बहुत अच्छी कहानी सुनाई जाती है कि एक बार एक राज्य के अंदर ऐलान किया गया कि चित्र बनाना है शांति के ऊपर। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे चित्र बनाए, लेकिन उसमें से दो चित्र डिसाइड किए गए, दो चित्र चुनाव करके आए। एक चित्र था जिसके अंदर बहुत सारी प्रकृति थी, ग्रीनरी थी, और एक चित्र था, अगर आपको भी बोला जाए तो आप क्या इमेज कर सकते हैं शांति के रूप में, अगर आपको कहा जाए तो आप क्या समझते हैं, आप क्या चित्र ड्रॉ करेंगे?
3: मैं अगर बोलूं तो पेड़ पौधे, झरना, सूरज, यही होता है।
2: जी बिल्कुल, उन्होंने भी एक पिक्चर तो यही ड्रॉ की कि जहाँ पे बहुत सुंदर प्रकृति, नेचर दिखाया हुआ था, और दूसरी तरफ एक पिक्चर बनाई जहाँ बहुत तूफान आ रहा है, बहुत ज्यादा वहाँ पे विनाशकारी दृश्य है, लेकिन उस दृश्य के अंदर एक चिड़िया पेड़ पर बैठी हुई बड़े प्यार से अपने बच्चों को दाना खिला रही है। तो राजा के सामने जब गया तो ऑब्वियसली कौन सा चित्र डिसाइड किया गया होगा, आप क्या समझते हैं, क्या वो नेचर वाला या फिर वो चीज जहाँ बहुत तूफान आ रहे हैं, बहुत ज्यादा बवंडर है, विनाशकारी दृश्य है, लेकिन उसमें फिर भी एक चिड़िया और अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर रही है, किसको आप कहेंगे?
3: मेरे हिसाब से मैं समझ पा रही हूँ, जिसमें तूफान है और चिड़िया आराम से, क्योंकि चारों तरफ तूफान है लेकिन उसके अंदर शांति है और वो शांति से अपने बच्चों को खिला।
2: तो यही चीज जो है वहाँ पे उसी चित्र को ही वहाँ पर भी डिसाइड किया गया और फाइनली लिया गया, और उस चित्र में से यही, तो ये चित्र हमें क्या दृश्य दिखा रहा है कि जब विपरीत परिस्थितियां आती है तब भी हम स्टेबल रहे, उसको कहा जाता है शांति। हमारा मन स्थिर रहे, हमारे अंदर हलचल ना हो, हम सिचुएशन को हैंडल करने की ताकत रखते हो, उसको कहा गया शांति। तो वो शांति की ताकत हमारे सबके अंदर है, लेकिन हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही प्रेम है, प्रेम का आज जो मीनिंग हो गया है वो बहुत विकृत हो गया है, जबकि प्रेम कहते हैं ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए, माना हर एक आत्मा से, हर एक प्रकृति की जीवों से, पंछियों से, हम पेड़ पौधों से समान भाव से प्यार करें, उसको कहा गया प्रेम।
0: हुँ.
2: फिर आती है बात सुख की, तो जीवन में जब शांति आती है, प्रेम आता है, तो सुख की अनुभूति होने लग जाती है। और फिर लास्ट आनंद है, और आनंद का कोई विपरीत अर्थ शब्द नहीं है, आनंद अपने आप में ही बहुत परफेक्शन के साथ है, उसको ब्लिस कहा गया। और इसका कोई विलोम शब्द नहीं, क्योंकि पवित्रता का फिर भी अपवित्रता है, शांति का शांति है, प्रेम का क्रोध है, लेकिन आनंद माना जो परमानंद की अनुभूति कराए। और लास्ट है, जब ये सारी चीजें आ जाती है तो हम पावरफुल बन जाते हैं, क्योंकि आत्मा अपने सारे गुणों में परफेक्ट हो जाती है। और इसी चीज को इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि आप वो प्योर सोल हो, आप वो प्योर आत्मा हो जिसके अंदर ये सारे गुण समाये हुए हैं। ये मैं और मेरा, मेरा जो कह रहे हैं वो विनाशी है, वो खत्म होने वाला है, लेकिन जो मैं है इसमें चेतन सत्ता है, उसको अगर हम पहचानेंगे तो हम अपनी परफेक्शन में आ जाएंगे और अपने कर्म पर ध्यान देंगे।
3: बिल्कुल। और ये जितनी भी सात चीजें आपने बताई हैं, इसको कहीं बाहर से कमाना नहीं है, ये किसी से अर्जित नहीं करना है, ये सारी अपने अंदर है, बस इसको जानना है, इसको समझना है, बाकी भगवान ने ये इन बिल्ड हमारे लिए रखी है। बिल्कुल सही कहा, हम दूसरों को जानने की कोशिश करते हैं, हम कभी खुद को जानने की कोशिश नहीं करते। और वही आपने बड़ी खूबसूरती से बताया कि अगर आप खुद को जान लेते हैं, बस वही एक आत्मा का पाठ है, वही जो है पूरा परफेक्ट है आप खुद में। बहुत सही बात बोली। गीता के ज्ञान की हम बात कर रहे हैं और अध्याय दो है, नाम है ज्ञान योग, और इसमें हम चर्चा कर रहे हैं कि हम एक आत्मा है के बारे में। ज्योति जी ने बहुत खूबसूरती से बताया, और अब हम प्रिया जी की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस अध्याय में आगे क्या है। प्रिया जी बताइए।
4: आगे जैसा कि हम देखते हैं कि अर्जुन को वो बार बार याद दिला रहे हैं, समझा रहे हैं परमात्मा कि तुम्हें युद्ध करना ही है, जिसके लिए वो कहते हैं हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। अर्थात पार्थ, अर्थात जो उनका स्टूडेंट अर्थात अर्जुन को उन्होंने कहा कि तुम चाहे मरकर के स्वर्ग पहुंचो या फिर जीवित रहकर युद्ध करके इस पूरी सृष्टि पर जीत प्राप्त कर सुख को भोगो, तो इसीलिए तुम्हारा बेस्ट यही है कि तुम युद्ध करो। तो क्योंकि सिंपल कुछ किए बिना जाना और कुछ करके जाना, उसमें बहुत फर्क होता है। तो यहाँ उनको वो बार बार याद दिलाते हैं कि आपको युद्ध करना है, और युद्ध करने में हम कॉन्शियस ये नहीं हुए कि कौन जीतेगा या हारेगा, हमें कॉन्शियस होना है कि हमारी फाइट अच्छे से हो। तो फिर बात यहाँ आती है, स्पिरिचुअलिटी ये कहती है कि क्या हमें फिजिकल फाइट के लिए परमात्मा प्रेर रहा है, हमें वो गाइडलाइंस दे रहा है कि शुड वी गेट द वेपन्स, कि हमें हथियार उठाने हैं। पर यहाँ पर परमात्मा हमें हमारे गुणों के हथियारों की बात करता है कि जहाँ मेरा मेंटल फाइट है, जहाँ द्वंद है, जहाँ मैं कंफ्यूज हूँ, जहाँ डिलेमा स्टार्ट होते हैं, वहाँ मैं अपने फोकस करूं इंटरनल शक्तियों पर, जैसा कि ज्योति जी ने बताया कि ये सब चीजें मेरे पास, मुझे परमात्मा से आपने कहा इनबिल्ट है, गॉड गिफ्ट है, तो उस पर अगर मैं फोकस करता हूं तो मेरी ये फाइट मेरे लिए बहुत इजी हो जाती है
3: जी।
4: और फाइट मुझे करनी ही है, बिना फाइट किए मैं आगे बढ़ नहीं सकता। इसी योग को जो आपने कहा ज्ञान योग, अध्याय का नाम है, तो यहाँ पर परमात्मा हमको संपूर्ण ज्ञान का परिभाषा, डेफिनेशन वो ये कहते हैं कि आत्मा का ज्ञान ही संपूर्ण ज्ञान है। मीन्स अगर मैं अपने आप को नहीं जानता, अपने अस्तित्व को नहीं जानता, तो मैं अगर पूरी दुनिया का पूरा ज्ञान भी अर्जित कर लेता हूं तो भी मैं इनकम्प्लीट हूं। और दैट्स वाई देखा ये गया है कि जब हम हायर लेवल पर किसी बुलंदी पर किसी को देखते हैं तो एंड ऑफ द डे वो ये फील करते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ रह गया है। और वो क्या रह गया है कि खुद को जाना और खुद के बाद खुदा को पाना। ये चीज जो हमारी जिंदगी में रह जाती है, उसी के लिए हमारे को परमात्मा या कृष्ण रूप में हमारे को बता रहे हैं। उसके बाद वो हमारे को याद दिलाते हैं कि हमारा जो मन बुद्धि संस्कार, जैसे कि ज्योति जी ने कहा, तो मन जो है वो कई तरह के थॉट्स को क्रिएट करने की एक फैक्ट्री है। बस इस फैक्ट्री में प्रॉब्लम ये है कि वो अपने प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस तो कर रहा है, यानी थॉट्स क्रिएट कर रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि कौन सा माल आर का माल है, मीन्स रिजेक्टेड है। तो जिसमें बुद्धि हमको हेल्प करती है कि क्या रिजेक्टेड है, क्या सही है, क्या गलत है। जैसे मन नेगेटिव थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स, नेसेसरी, वेस्ट, टॉक्सिक, एलिवेटेड, राइट थॉट्स, बहुत तरह के थॉट्स करता है और हमारे को बुद्धि गाइड करती है कि एलिवेटेड मीन्स ऐसे थॉट्स जिसमें हम सिर्फ दूसरों के लिए दुआएं करते हैं, ठीक है। जबकि उसी के बिल्कुल उलट हम देखते हैं कि टॉक्सिक थॉट्स, यानी जहां हम सिर्फ अपने लिए या दूसरों के लिए नुकसान की बातें सोचते हैं, मरने मारने की बातें करते हैं, जैसे कि सुसाइड करना, यानी वो व्यक्ति कितना ही टॉक्सिक थॉट्स में भरा हुआ होगा तो इसीलिए उसे टॉक्सिक थॉट्स कहते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो लास्ट आता है संस्कार। संस्कार एक रिकॉर्डिंग बॉक्स है, जैसे कि प्लेन्स में भी एक बॉक्स होता है जिसमें रिकॉर्ड किया जाता है सब कुछ, उसी प्रकार से आत्मा में अपने आप एक रिकॉर्डिंग बॉक्स है। और ये जानकर आपको हैरानी होगी कि कहते हैं कि मरने के बाद ऊपर धर्मराज और चित्रगुप्त बैठे हैं सबका हिसाब करने, पर नहीं, ये इंटरनली ही हम सोल्स के साथ ही फीड है, बिल्ट है, कि जो हमारा बुद्धि है, अगर उसकी पिक्चर अगर आप देखते हो तो एक तराजू के फॉर्म में होती है, वो धर्मराज का फॉर्म है, और जो हमारे संस्कार्स हैं, जो हमारा रिकॉर्डिंग पार्ट है, वो चित्रगुप्त है। और चित्रगुप्त को अगर हम उल्टा कर देते हैं दोनों शब्दों को, तो वो बनता है गुप्त चित्र, अर्थात हम क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, देख रहे हैं, सोच रहे हैं, वो गुप्त रीति हर चीज सेकंड बाय सेकंड रिकॉर्ड हो रही है
3: जी।
4: और जब एंड ऑफ द डे, यानी जब मृत्यु आती है, तो व्यक्ति को ऊपर जाके नहीं, उस लास्ट मोमेंट्स में ही बुद्धि और संस्कार का, जो यहाँ पर धर्मराज और जो मैंने कहा चित्रगुप्त का फॉर्म है, वही वहां अंदर ही अंदर सब कुछ डिसाइड होता है और फिर उसको नेक्स्ट बर्थ जो है मिलता है। और कहते हैं मरते वक्त व्यक्ति इसीलिए डेफ, डम्ब और ब्लाइंड हो जाता है, उसको बाहर के दुनिया से कट जाता है। उसके बाद उन्हें परमात्मा ये कहते हैं कि जैसे आप कर्म करते हो, तो कर्म करना है तो बिल्कुल न्यूट्रल होकर करना है। और उन्होंने विशेष ये कहा कि यावनार्थ उत्पादे सर्वतः संलुप्ते दुतके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः, अर्थात जब एक ब्राह्मण को परमात्मा प्राप्त होता है, यानी हम मनुष्य अगर परमात्मा के टू क्लोज या पूरी उसकी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, तो हमारे लिए दूसरे शास्त्रों के ऊपर डिपेंडेंसी उस तरीके से है जैसे कि मैं समुद्र के पास पहुंच गया और एक ग्लास में समुद्र का पानी लेकर खड़ा हूं, तो उस ग्लास की समुद्र के आगे खड़े होने पर कोई वैल्यू नहीं रहती।
3: बिल्कुल।
4: तो उसी प्रकार से परमात्मा को अगर मैंने पा लिया है, तो वो शास्त्रों का वहां पर वैल्यू उस ग्लास के लेवल पे ही होता है कि जब शास्त्रों का ज्ञाता सागर मिल गया तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। फिर परमात्मा अर्जुन को ये याद दिलाते हैं, जैसे कहा कि आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि क्षेत्र में आना, कुरुक्षेत्र जैसे बताया कि कर्म क्षेत्र, आप चाहे किचन में हैं या बेड पे सो रहे हैं, देन टू आप कुछ तो कर ही रहे हैं। अगर आप सिर्फ थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं तो भले वो एक्शंस नहीं है, कर्म नहीं है, पर वही कर्म को कराने का एक हिस्सा जरूर है। तो इसीलिए वो भी काउंट होते हैं। तो हम कर्म के बिना तो रह ही नहीं सकते हैं, ये पक्का है। इनफैक्ट हम सोते वक्त भी संकल्प कर रहे होते हैं, 4 to 5 थॉट्स हमारे चलते ही हैं। तो इसीलिए परमात्मा कहता है जब कर्म करो तो ऐसे करो जैसे कि बिल्कुल न्यूट्रल, जिसके लिए उन्होंने स्पेशल कहा कर्मण्येवाधिकार रस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर्माते संगोऽस्त्व अकर्मणे, अर्थात जब आप कर्म करते हैं, हम कर्म करें तो फल के कॉन्शियसनेस में रह करके ना करें, जो कि आज बिल्कुल ही उल्टा हो रहा है। हम टू मच कॉन्शियस अबाउट द रिजल्ट्स होते हैं और इस वजह से शायद हमारा जो पुरुषार्थ है एफर्ट्स वो हमारे को कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हो जाता है क्योंकि हम डर चुके होते हैं मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा, मेरा ये काम बनेगा या नहीं बनेगा। हम फुल्ली उसमें कॉन्फिडेंट ना होने की वजह से भी शेकिंग रहने की वजह से रिजल्ट्स अच्छे नहीं होते हैं। और फिर लास्ट में जो उन्होंने कहा कि कर्म जो करना है वो एकदम ऐसे, जैसे कि एक छोटी सी स्टोरी है जिसमें कहा कि ब्राह्मण ने एक व्यक्ति को कहा कि कर्म कैसे, मतलब उन्होंने पूछा कि कर्म कैसे करें, तो उन्होंने कहा कल जब आना तो कटहल लाना, चाकू लाना और तेल लेके आना। व्यक्ति नहीं समझ पाया कि क्यों, तो फिर जब वो व्यक्ति अगले दिन पहुंचा तो बोला कि अब तुम कटहल को काटो। तो जब उन्होंने कटहल काटा तो कटहल में से उसका एक व्हाइट मिल्क निकलता है जो बहुत स्टिकी होता है, तो उनका हाथ चिपक जाता है, वो अच्छे से वो काम नहीं कर पाते, हाथ में भी प्रॉब्लम होती है। तो वो कहता, अब ब्राह्मण कहता है कि अब आप हाथ धो लीजिए और हाथ धोने के पश्चात तेल लगा के कटहल काटिए। अब जब वो इस चीज को करता है तो अब वो इजीली कटहल को छीलता भी है, काटता भी है और सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लेता है। तो बोलता है बस आपको इसी तरीके से अपने जीवन में कर्म करने हैं कि कर्म हमको अपनी तरफ खींचते हैं, मिल्क की तरह वो चिपकते हैं हमारे हाथों से, यानी हमारे को कॉन्शियस कर देते हैं। लेकिन हम अगर तेल अर्थात परमात्मा की याद को उसमें घोल दें, लगा लें, तो हम कर्म कॉन्शियस नहीं होंगे, फल कॉन्शियस नहीं होंगे और हम बहुत अच्छे से कर्म कर पाएंगे।
3: कितने अच्छे से प्रिया जी ने कहानी बताई समझाने के लिए, बहुत मजा भी आया और काफी कुछ हमें समझ में आया। और साथ ही हम तो प्रिया जी और ज्योति जी से जुड़े ही हैं, साथ ही आपसे भी जुड़े हैं। आपका कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं ज्योति जी या प्रिया जी से, हमारा नंबर है 8010781078। गीता का ज्ञान चल रहा है, अध्याय 2 है जिसका नाम है ज्ञान योग। हम एक आत्मा है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं और काफी सारी नॉलेज, काफी अच्छी बातें हमें ज्योति जी और प्रिया जी से जानने को मिल रही है। और अब इस अध्याय में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और इस वक्त अगर आपके जहन में कोई सवाल है या कोई ऐसी शंका है जो आप क्लियर करना चाहते हैं, नंबर है 8010781078। आप इस पर मैसेज कर सकते हैं और अपनी बात आप हम तक पहुंचा सकते हैं, अपना सवाल आप हम तक पहुंचा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं ज्योति जी के पास और इस अध्याय में भी हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो आगे की जो कहानी है, आगे की जो बातें हैं, वो हम ज्योति जी से जानते हैं।
2: कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम तैव कवता मनीषिण जन्म बंद विनर्मुक्ता पदम गच्छन्ते अनामयम। अर्थात इसका भावार्थ कहते हैं कि समतव बुद्धि वाले, जो जिनके बुद्धि के अंदर कभी हलचल नहीं आती, जिसको कहें एक रस अवस्था, तो ऐसी बुद्धि वाले ज्ञानी जन कर्म फल को त्याग कर, मना कर्मों से अतीत होकर, कर्म की चिंता ना करके निर्विकार ही परम पद को प्राप्त करते हैं। भावार्थ यह है कि कर्मों के फल की आसक्ति स्थिति को ऊपर नीचे ले आती है, क्योंकि जैसे ही हमें ये पता चलता है कि अभी क्या होने वाला है, हम ये सोचने लग जाते हैं पता नहीं इसका क्या बेनिफिट होगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, तो हम कहीं ना कहीं उसमें हमारी स्थिति ऊपर नीचे होती है। लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, वो अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति में स्थित होकर जीवन में रहते हैं, मुक्ति की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, जिसे कहा जाता है कर्मातीत स्थिति। इसमें दूसरा जो श्लोक कहा गया उसमें स्थित प्रगस्य का शब्द का यूज किया गया है। तो उसमें अर्जुन पूछते हैं कि हे केशव, परमात्मा से कहते हैं कि हे केशव ये बताओ कि स्थिर प्रग, जो स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति हैं, उनके क्या लक्षण है, किसको कहेंगे हम जो स्थिर बुद्धि वाले हैं, जो एकरस स्थिति वाले हैं, जिनकी कर्मातीत अवस्था पहुंच गई है जिनकी, तो उनकी क्या क्या विचारधारा होगी। तो वहां श्री भगवान बोलते हैं कि अर्जुन, सभी कामनाओं का त्याग कर, जो व्यक्ति त्याग कर देता है और आत्मा से माना आत्मिक रूप में संतुष्ट हो जाता है, वो स्थित प्रज्ञा है। तो वहां पे माना, क्योंकि हमारी जो दुख का कारण है वो कामनाएं है, जहाँ कामनाएं आएंगी और वो कामनाओं का एक भय आ जाता है, उसी कामनाओं की इच्छाओं में जब हम फंस जाते हैं तो वहाँ ना तो, और मनुष्य जो स्थित प्रग होता है उसकी कोई भी तरह की कामना नहीं रखते, वो किसी पदार्थ की लालसा नहीं रखेगा। इसको अगर हम सिंपल वे में बोलें तो जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है उसके मन के अंदर, इसको आज की भाषा में कहें तो मन शांत अर्थात मन में लगाएं आइस फैक्ट्री, मुख में लगाएं शुगर फैक्ट्री अर्थात मिठास होगी उसके मुख में, दिल में लव फैक्ट्री अर्थात सबके लिए प्यार होगा, तो जीवन उसका सेटिस्फैक्ट्री बन जाएगा, माना संतुष्ट हो जाएगा। तो ये तीनों चीजें मन की स्थिरता को शो करती हैं, हमारी वाणी में मिठास हो, हमारे मन में स्थिरता हो, शांति हो, और हमारे दिल में सबके प्रति एक समान भाव हो, तो कोई भी परिस्थिति आने पर हमारी स्थिति ऊपर नीचे नहीं होगी। और उसमें जो आगे चीजें बताई गई हैं कि जो व्यक्ति सहनशील है वही सुख दुख में समान अनुभव करता है उसका किसी भी व्यक्ति, क्योंकि जब हम शरीर से जुड़े हुए होते हैं तो शरीर की चीजों के प्रति हमारी आसक्तियां जागती हैं, और जब शरीर की चीजों के प्रति देह की चीजों के प्रति आसक्ति जाग रही है तो हमारी खुद की स्थिति डामाडोल हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ड्राफ्ट ड्रेस लेने जा रहे हैं और ड्रेस आप लेकर के आते हैं, लेकिन वो ड्रेस आपने अपनी पसंद से ली, आपने पहनी भी, लेकिन वो आपको कंफर्ट नहीं हो रही है तो आप उसमें कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे चाहे वो दिखने में कितनी भी अच्छी है। इसी विधि से जब हम कोई चीज आकर्षण में तो आकर्षित हो जाते हैं, देह को देख रही है चीजें उसमें आकर्षित है, लेकिन जब हम उसको अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो वो चीज हमारे लिए सुटेबल नहीं होती है तो वो हमारे दुख का कारण हो जाती है। तो यहाँ पर हमारे जो मन की स्थिति, एक बार एक व्यापारी थे और उनको, हीरो के व्यापारी थे, तो उनके एक व्यक्ति ने आकर के कहा कि आप जो है एक बहुत अमूल्य हीरा खो गया है। तो बैठे थे अपने सभी, कई साथ में साथी बैठे थे, वो दो मिनट के लिए कहा अच्छा ठीक है और आंख बंद की और शांत हो गए। थोड़ी देर के बाद फिर थोड़ी देर बाद फिर खबर मिली कि वो हीरा मिल गया है। उन्होंने फिर अपनी आंखें बंद की और एकदम शांत मुद्रा में बोला ठीक है। तो जितने भी साथी बैठे थे उन्होंने ये कहा कि एकदम से आप शांत हो गए, अगर शायद हम वहां हों प्रैक्टिकली सोच के देखें तो हम कितनी जल्दी अपनी स्थिति को हिला देंगे, हम फटाफट किया, अरे इतना अमूल्य हीरा खो गया कहाँ खो गया। लेकिन जो सहनशील व्यक्ति है, जो स्थिर प्रज्ञ है, जिसकी बुद्धि स्थिर है, वहां पे वो शांत है। यही चीज उन्होंने पूछा भी, व्यापारी से भी जब पूछा तो वहां पे पूछने के बाद उन व्यापारियों ने बताया, व्यापारी ने उनको बताया कि मैं कुछ पलों के लिए चेक कर रहा था अपने मन की स्थिति को कि मेरे मन की स्थिति तो नहीं हिली, क्योंकि वो बहुत अमूल्य है, उस हीरे से भी अमूल्य मेरी मन की स्थिति है। तो जो स्थिर प्रज्ञ स्थिर बुद्धि व्यक्ति होते हैं वो अपने मन की स्थिति पर ध्यान देते हैं, वो किसी भी तरह के भय में आकर के भयभीत नहीं होते हैं, किसी भय से उनकी स्थिति पर प्रभाव नहीं आता है। आज कई चीजों का भय लोगों को सता रहा है, अंधकार का भय है, चीजों को खोने का भय है, कहीं ना कहीं मृत्यु का भय है, तो ऐसी बहुत सारी चीजों से व्यक्ति भयभीत है और उसके निर्णय गलत हो जाते हैं। और फिर क्रोधी व्यक्ति जो होता है वो भी मन को स्थिर नहीं कर पाता है, क्योंकि क्रोध जो है वो अपने आप में थोड़े समय के लिए आया हुआ कहा जाता है पागलपन है, जो बहुत कुछ विनाश कर देता है। तो यहाँ पर कहा भी गया, एक बार एक बहुत सुंदर दृष्टांत दिया जाता है कि आदि शंकराचार्य जी थे और उनका एक व्यक्ति के साथ शास्त्रार्थ हो रहा था, मंडन मिश्र थे, उस शास्त्रार्थ के अंदर उनकी ही पत्नी निर्णायक के रूप में बैठी थी मंडन मिश्र की, और उस चीज में बहुत देर से शास्त्रार्थ चल रहा था और ये निर्णय नहीं लिया जा रहा था कि जीता कौन है। तो कुछ समय के लिए उनकी पत्नी को वहां से उठ के जाना पड़ा और उन्होंने उनके गले में, दोनों के गले में फूलों की माला डाल दी, और फूलों की माला डाली तो उन्होंने कहा कि जब तक मैं नहीं आती हूँ तब तक ये फूल, ये जो मालाएं हैं, ये मेरी जगह लेकर के कार्य करेंगे। तो जब वो आई काफी देर के बाद और पूरी शास्त्रार्थ कंप्लीट हुआ तो उन्होंने बोला कि ये चीज, फिर उन्होंने निर्णय भी दिया, उन्होंने कहा आदि शंकराचार्य विजयी हैं। तो सबने पूछा उसकी, आपने तो इस बीच में आप थे भी नहीं तो आपने कैसे ये निर्णय ले लिया, तो कहा कि इस शास्त्रार्थ के मध्य में मेरे जो पति हैं मंडन मिश्र जी हैं उनको क्रोध आया है और शंकराचार्य जी के फूलों की माला अभी तक ताजा है और जो उनके पति ने डाली हुई थी गले में वो मुरझा गए थे। कहा जब शास्त्रार्थ के मध्य में इनको जो क्रोध आया उस क्रोध ने ये निर्णय दिया है कि ये जो है क्रोध कभी भी स्थिर नहीं रहने देता है। तो उन्होंने जिस चीज की बात कही कि उन्होंने जैसा निर्णय दिया कि जो व्यक्ति कोई भी चीज का ज्ञान रखता है, मन की स्थिरता रखता है, तो उसके अंदर किसी भी राग भय या क्रोध से वो मुक्त होता है, उसका उन चीजों की बुद्धि पर उसका प्रभाव नहीं आएगा। और इसका बहुत सुंदर जो एग्जाम्पल दिया गया है वो है कछुए की तरह हमें बनना है। कछुआ जो है वो कर्म क्षेत्र पर जब निकलता है तो वो अपनी इंद्रियों को फैला लेता है, और जैसे ही वो कछुआ अपना कार्य पूरा कर लेता है तो अपनी इंद्रियों को उस कवच के अंदर समेट लेता है। बाहर चाहे कितनी आंधी तूफान आ रहा हो, लोग चिल्ला रहे हो, लेकिन उसकी स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं होता जब तक कि वो खुद ना चाहे।
0: बिल्कुल,
2: इसी विधि से हमें भी अपने जीवन को ऐसा ही बनाना है कि जब हम चाहेंगे, जब मैं आत्मा अपने शरीर के द्वारा जिस कार्य को करना चाहूं उस समय ही मैं एक्टिव मोड में हूं, अदरवाइज मैं अपनी शांत स्थिति में, अपनी संपूर्ण स्थिति में अपने अंदर आनंद का अनुभव करें। और यही चीजें आप देखते जाएंगे, जो जो लोग ज्ञान को समझने लग जाते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, या जिन्होंने अपने जीवन के अंदर बहुत सी परिस्थितियां देखी भी हैं लेकिन बहुत बखूबी उनको निभाया है, तो वो धीरे धीरे बहुत काम डाउन हो जाते हैं और उनकी स्थिति एकदम शांत हो जाती है। और यही चीज श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय हमें देता है। लेकिन ये चीजें तब होंगी जब हम आत्मिक स्थिति में टिक जाएंगे। तो आत्मिक स्थिति में टिकने के लिए और स्थिर प्रज्ञ बनने के लिए, अर्थात अपने मन को स्थिर रखने के लिए, इन सारी चीजों से हमें पहले जरूरत है खुद खुद को रियलाइज करने की।
0: जी, और वही ना, जैसे आपने कहा कि अगर कुछ सीखना है तो उससे पहले जो आप हैं
2: जी
0: आपको बदलना पड़ेगा
2: जी।
0: आपको खुद को पहले समझना पड़ेगा, आप क्या चाहते हैं, आप अपनी आत्मा को समझना पड़ेगा। जब आप खुद को समझ पाएंगे तभी आप उस आगे बढ़ते हुए ज्ञान को समझ पाएंगे, आप ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। समय के करीब आ रहे हैं, मतलब हम जाने के करीब आ रहे हैं, लेकिन बातें जो है वो खत्म नहीं हो रही है। एक बहुत ही प्यारा सा श्लोक ज्योति जी आपके सामने इसके बारे में सारी चीजें बताने वाली है, और अध्याय दूसरा है ज्ञान योग है। इसमें बहुत सारे श्लोक और उसके जो भावार्थ प्रिया जी और ज्योति जी ने बताए हैं ये बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने हम तक पहुंचाए। और ज्योति जी के पास चलते हैं। ज्योति जी, अब आप जल्दी से इसके आगे के बारे में बताएं।
2: जैसा कि प्रिया जी ने बताया कि जब हम किसी एक चीज को बार बार फोकस्ड करते हैं तो उसी आधार पे हमारी बुद्धि वैसे ही चलने लगती है। तो अगला जो श्लोक श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो नु विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर नावम इवाम भस्सी माना। अर्थात इसका अर्थ है कि जिस प्रकार पानी में नाव तैरती है और नाव के प्रचंड वायु दूर बहाकर ले जाती है अगर बहुत तेज वायु चल रही है, तो इसी प्रकार जब विचारशील व्यक्ति होता है तो उसकी इंद्रियों पर, मतलब जो इंद्रियां हैं, अगर वो किसी एक चीज पर फोकस्ड हो गई है, बार बार उसी चीज को देख रही है, वही इंद्री एक ही चीज पर उसका ध्यान केंद्रित है, तो उसके वो प्रभाव में बहता चला जाता है और उसकी बुद्धि का नाश हो जाता है और वो विषय विकारों में फंस जाती है। भावार्थ ये है कि तूफानों में भटकते हुए भी जो अपने मन बुद्धि को स्थिर कर दे, मन बुद्धि को एकाग्र कर ले, उसको कहा जाएगा कि वो स्थित प्रज्ञ है। क्योंकि यहाँ इस पूरे ही इसमें आत्मा का और स्थिति की ही बात की जा रही है। माना कहने का अभिप्राय अगर हम इसको देखें, सिंपल वे में देखें, तो जो राजा की पोजीशन है वो राजा की पोजीशन एक है कि आपने पहन लिया, मुकुट पहन लिया, ड्रेस पहन ली और वो सारी चीजें आप रेडी होकर के सिंहासन पर बैठ गए, वो राजा नहीं है। राजा माना जिसके अंदर वो राजापन की क्वालिटीज हो, जो उसके लिए जरूरी नहीं कि हमें वो पोशाक ही पहननी है, जरूरी नहीं है हमें सर पर ताज ही लेना है, लेकिन वो राजा वाली जो डिसीजन वाली क्वालिटीज है वो चीज हमारे अंदर होनी चाहिए। और आज वही राजा जो आत्मा इस शरीर का राजा है, इंद्रियां उसकी कर्मचारी हैं, आज उसी राजा ने इंद्रियों की अधीनता ले ली, इसीलिए आज हम जो राज्य जिसको कहा गया स्वराज्य, उस स्थिति से हम बहुत दूर हो गए हैं। और उसके लिए हमें चाहिए कि हम अपनी थोड़ी सी दिनचर्या पर फोकस्ड करें। कहा जाता है, इसमें बहुत अच्छी एक श्लोक में कहा भी गया है कि या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानी सा निशा पश्यतो मुने। अर्थात संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि है वह आत्म संयमी के लिए जागने का समय है। माना जब लोग सो रहे हैं, सोने का मतलब ये नहीं कि रात्रि में, आज के समय में अगर आप देखें आज की जो सिचुएशन चल रही है, आज 3 बजे से लोगों को नींद आनी शुरू होती है, पूरी रात वो जागते रहते हैं, 3 बजे से उनकी नींद का समय शुरू होता है। और जो ज्ञानी होगा, आत्म संयमी होगा, वो उसके जागने का समय है। यहाँ रात्रि की बात उस 3 बजे के समय से कही गई है, 3:30 के टाइम से कही गई, 4 बजे, जिसको ब्रह्म मुहूर्त भी कहा गया है। तो अगर मुझे सेल्फ रियलाइजेशन करनी है, मुझे अपनी आत्मा, अपनी आत्म स्वरूप में टिकना है और अपनी स्थिति को भरपूर बनाना है, उसके लिए सबसे अच्छा समय दिया गया अमृत वेले का। उस समय हम अपने आप को चेक कर सकते हैं, क्योंकि उस समय हमारे पास कोई वर्कलोड नहीं है और हम डिसीजन देख सकते हैं कि मुझे आज पूरे दिन में, हम अपना शेड्यूल बना सकते हैं, हम परमात्मा के साथ कनेक्ट होकर के, हम नेचर से कनेक्ट होकर के उस पीस को फील कर सकते हैं, लेकिन वो टाइम हम सोने में गंवा देते हैं। इसीलिए आज हम आत्म संयमी के बजाय हम कहीं ना कहीं दैहिक वृत्तियों में फंसते जा रहे हैं। और ये पूरा ही पाठ जो है हमें यही सिखाता है कि हमें अपने तन के, जो तन का भान है, उसको हमें भूलना है और आत्मिक स्थिति में आत्मा को राजा की सीट पर बैठाकर डिसीजंस लेने हैं। तो वो व्यक्ति ही अपने गुणों को जान पाएगा, अपने आप को जान पाएगा और अपनी वीकनेसेस के ऊपर कंट्रोल कर पाएगा।
3: जी, बहुत खूब कहा ज्योति जी ने। और इसी के साथ अब जो हमारा अध्याय है वो खत्म हो चुका है, यानी कि जो सेकंड अध्याय है वो खत्म हो गया है और अब हम बढ़ेंगे थर्ड अध्याय की तरफ, जिसका नाम है कर्म योग। तो इससे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कर्म के बारे में बात होगी और ये सारी हम बातें करने के लिए अगले हफ्ते आएंगे। तो अभी फिलहाल दीजिए हमें इजाजत, हम जाते हैं, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप बाकी प्रोग्राम्स को एंजॉय करें और बने रहिए रेडियो मानवृष्ण 107.8 FM पर। नमस्कार।
5: ढेर सारी मस्ती, खूब सारा फन, क्योंकि ये है फरीदाबाद का रेडियो नंबर 1।
6: गुड मॉर्निंग रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप, मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आए हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ। सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपके साथ रहती हूँ, मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन बहुत सारी होती हैं बातें। आज सैटरडे का दिन है और मैं आपके लिए ना कमाल की टेस्टी रेसिपी लेकर के आ जाती हूँ। अच्छा, आज ना एक कुछ ऐसी चीज लेके आई हूँ जो कि बड़ी मजेदार है। ऐसा हो ही नहीं सकता किसी ओकेजन पे ये ना बने, किसी के घर कोई पार्टी हो, कोई फंक्शन है, ये डिश ना हो तो कैसे हो सकता है। अच्छा, आज ना मैं मीठे की बात कर रही हूँ। अचानक किचन से अगर आपको मीठी मीठी खुशबू आए, फ्रेश वनीला, मेल्टेड चॉकलेट और बटर की शाही खुशबू, ये दिमाग में ना घुल जाती है और सच बताओ दिमाग की बत्ती जल जाती है, अलार्म क्लॉक की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। और भारत हो या फिर पूरी दुनिया, जब भी कोई खुशी का मौका आता है ना, तो सबसे पहले दिमाग में एक ही ख्याल आता है, किसी का बर्थडे होता है तो एक ही ख्याल आता है, वही किसकी मैं बात कर रही हूँ आप ज़रा बताइए मुझे। तो हमारा नंबर है 8010781078, जल्दी से मैसेज कीजिए और मैं कुछ ही देर में आती हूँ। इस ब्रेक के बाद बात करेंगे और भी बहुत सारी, फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुन रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मैनेवर रचना 7.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन बहुत सारी होती हैं बातें। आज है सैटरडे का दिन, मैं लेकर के आई हूँ आपके पास एक कमाल की टेस्टी सी एक रेसिपी। और आज ना मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसी डिश के बारे में, एक ऐसी चीज़ के बारे में आपको बताने वाली हूँ जिसे बेक किया जाता है, जिसकी खुशबू कभी वनीला कभी मेल्टेड चॉकलेट बटर शाही खुशबू दिमाग में ना घुल जाते हैं और भाई मज़ा ही आ जाता है। इसका स्वाद बड़ा अलग है, कमाल है। और आज मैं जिसकी बात कर रही हूँ ना, मतलब सिर्फ इंडिया ही नहीं भाई, पूरा देश पूरी दुनिया इसकी दीवानी है। मैं आज बात कर रही हूँ केक की। जी हाँ, केक जो है, देखिए ये जो है ना हमारे दिल को ये जो है ना बिल्कुल छू जाता है, और जो चीज़ दिल को छू जाए ना उसे ज़रूर बनानी चाहिए। और आज का पूरा हमारा प्रोग्राम ना इसी पर है, यानी कि केक के बारे में आपको बात आपसे करने वाली हूँ। आपको रिच चॉकलेट फज केक अगर पसंद है या क्लासिक वनीला फ्रूट केक पसंद है तो भाई जल्दी से आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं, नंबर 8010781078। और इसी के साथ देखिए, केक जिसे हम बिल्कुल एक मॉडर्न वेस्टर्न डेजर्ट समझते हैं, उसका इतिहास हजारों साल पुराना है। एशियन ग्रीस और रोम में सबसे पहले केक जैसी चीज़ें बनाई जाती थीं, पर वो आज के केक जैसी जो फ्लफी है वो नहीं होती थी। वो एक्चुअली में वो मीठी रोटियां होती है ना, यानी कि स्वीट ब्रेड्स होती हैं, वो होती थी, और जिन्हें हनी नट्स और ड्राई फ्रूट्स के साथ जो है वो महकाया जाता था, उसके साथ बनाया जाता था, बेक किया जाता था। और साथ ही साथ केक शब्द जो है वो आया ओल्ड नॉर्स वर्ड काका से। और 17th century में जब यूरोप में बेकिंग टेक्निक्स इम्प्रूव हुई और रिफाइंड शुगर मिलने लगी, तब बनाए गए हमारे आज के मॉडर्न स्पॉन्जी और फ्रॉस्टेड केक्स। अब ये कैसे बनाए गए, चलिए इसके बारे में भी बात करेंगे। फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ। मैं ना बड़े मज़ेदार एक ऐसी डिश के बारे में बात कर रही हूँ जो कि सभी को बड़ी पसंद है। अच्छा, मज़ेदार एक फैक्ट बता दूँ, क्या आपने कभी सोचा है कि हम बर्थडे केक पर कैंडल्स क्यों लगाते हैं और उन्हें फूंक कर जो है वो बुझाते हैं? और ये ट्रेडिशन जो

है ना, मैं आपको बता दूं, वो आकाश के तारों जितना पुराना है, बहुत पुराना है। एंशिएंट ग्रीक्स अपनी जो मून गॉडेस है उनकी आगे जो है वो केक चढ़ाते थे और केक के ऊपर कैंडल्स लगाते थे ताकि वो चांद की तरह चमके। अब उनका मानना था कि मोमबत्ती का जो धुआं है वो उनके विश और प्रेयर्स को सीधे भगवान तक लेकर के जाता है। तभी से आज तक हम केक काटने से पहले विश मांगते हैं और मतलब कैंडल्स लगाते हैं। कितना खूबसूरत थॉट है ना ये। तो देखिए, ये भी कुछ चीज़ें हैं ना जो सामने आती है, बड़ा अच्छा लगता है। और साथ ही देखिए, मैं आपको बता दूं, अगर हम इंडिया की बात की जाए तो इंडिया को ऐसे ही नहीं, हम विविधता का देश कहते हैं। जब वेस्टर्न केक कल्चर इंडिया में आया तो हमारे देश के लोगों ने उसे एक बड़ा ही प्यारा देसी ट्विस्ट दिया, द एगलेस केक। इंडिया में बहुत से लोग वेजिटेरियन हैं, इसीलिए हमारे लोकल बेकर्स ने दही और कंडेंस्ड मिल्क और बेकिंग पाउडर का यूज़ करके एक ऐसा मैजिक कॉम्बिनेशन बनाया कि बिना अंडे के भी केक बिल्कुल रूई जैसा स्पॉन्जी बनने लगा। आज इंडिया में एगलेस जो केक्स हैं उतने ही पॉपुलर हैं जितना कि रेगुलर केक। तो सोचिए ज़रा, हमारे देश ने एक विदेशी डिश को अपना बनाया और उसमें देसी वेजिटेरियन ट्विस्ट डाल ही दिया। चलिए इसी के साथ अभी लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं साक्षी आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूं सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूं मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के सातों दिन बहुत सारी होती हैं बातें। मैं बात कर रही हूं एक बहुत ही खास कमाल डिश के बारे में, और वो है केक। जी हाँ, आज केक के बारे में हम बात कर रहे हैं। अच्छा, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप रास्ते से जा रहे हो और अचानक से पुरानी बेकरी से आने वाली फ्रेश केक की खुशबू आपको सीधा आपके बचपन में ले जाए? भाई मुझे तो याद है बचपन में जब बर्थडे पर वो लोकल बेकरी से पाइनएप्पल केक आता था ना, तो मतलब ऐसा लगता था जैसे सारा का सारा ध्यान ना केक पर ही चला गया है। अच्छा, केक की जो फोटोज़ आप देखिए, जो पहले के टाइम में, क्योंकि हम तब तो फोटोज़ फ़ोन नहीं थे, ऐसे स्मार्टफोन नहीं थे। अगर अपने बचपन की काफ़ी पुरानी बात की जाए, हम 90s की बात की जाए या लेट 20s की बात की जाए, तब स्मार्टफोन जो है लेट 90s की और जो अर्ली 20s की बात की जाए, तब स्मार्टफोन नहीं आए थे। अब स्मार्टफोन नहीं आए थे तो अब क्या होता था ना कि कैमरा होता था, कैमरा रोल होता था, उसके बाद उसको फोटोज़ जो है वो धुलवा ली जाती थी, यानी कि निकलवा ली जाती थी। फोटोज़ निकलवाने के बाद उसमें जब आप फोटोज़ देखेंगे, पुरानी फोटोज़ आप देखिए, एक केक रखा है, ढेर सारे बच्चे और सारे बच्चे केक को देख रहे हैं। बहुत सारी ऐसी फ़ोटोज़ हैं कि सारे जने मिल कर ना केक को देख रहे हैं, और केक किसकी प्लेट में ज़्यादा आएगा किसकी कम इसकी भी नज़र रखते थे। चेरी किसके पास आएगी, क्रीम किसके पास आएगी। अच्छा, कुछ लोग हैं जो कहते हैं हमें तो सिर्फ ब्रेड दीजिए, और कुछ लोग कहते हैं कि वो जो ऊपर वाला जो फ्लावर बनाया ना, ये फ्लावर दे दो, ये जो क्रीम है ना ये हमें पसंद है। तो भाई बचपन तो याद आ ही जाता है ना जब भी हम केक को देखते हैं, और जो ऊपर रेड जो चेरी लगी हो, क्रीम होती है ना, वो मज़ेदार होती है। और वो चेरी के लिए ना मतलब हर कोई लड़ाई हो ही जाती थी उनमें, और वो 5 रुपए वाला जो क्रीम रोल जो है या प्लम केक जो है वो आता था, वो दिन इतने हसीन रहे हैं ना कि मतलब बहुत ही कमाल। अगर आपके पास भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस है, कुछ शेयर करना चाहते हैं, कोई कहानी है ऐसी, ज़रूर हमें बताइएगा। नंबर है 8010781078। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेती हूँ, जिसके बाद होंगी और भी बहुत सारी बातें, तो कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 7.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के सातों दिन बहुत सारी होती हैं बातें। मैं बात कर रही हूँ आज केक की। अच्छा, केक बनाने का तरीका आपको ज़रूर बताऊंगी। एक सवाल हमारे पास आया है मेघा जी की ओर से, सेक्टर 15 फरीदाबाद से ये लिखती हैं। साक्षी, घर पर बच्चों के लिए केक बनाना है पर मेरे पास OTG या ओवन नहीं है, क्या कढ़ाई या प्रेशर कुकर में स्पॉन्जी केक हम बना सकते हैं? तो भाई बिल्कुल बना सकती हैं मेघा जी। तो चलिए बिना देर किए ना मैं आपको ना बिना किसी ओवन के बिल्कुल स्पॉन्जी मॉइस्चर और माउथ वाटरिंग प्रेशर कुकर वाला चॉकलेट स्पॉन्जी केक बनाने की एक आसान से आपको रेसिपी बताती हूँ स्टेप बाय स्टेप। डायरी और पेन तैयार कर लीजिए। आज साक्षी आपको बताने वाली है आज कैसे झटपट से आप इसे घर पर प्रेशर कुकर में केक जो है वो बना सकते हैं। द नो ओवन प्रेशर कुकर केक, चॉकलेट केक आज हम बनाएंगे। लेकिन उससे पहले वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, तो आप कहीं मत जाइए, बस अपना डायरी नोटपैड बिल्कुल तैयार रखिए, पेन तैयार रखिए। मैं बस यूं गई यूं आई। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। Feel good, feel life.

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूं सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूं मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन, और बहुत सारी होती हैं बातें। अच्छा मैं आपको बता दूं, एक बहुत ही कमाल टेस्टी केक के बारे में बता रही हूँ। देखिए बच्चों के बर्थडे हो या शाम की चाय के साथ कुछ मीठा खाने का मन हो जाना, कोई कुकर वाला जो चॉकलेट केक है ना, हर मौके के लिए एक परफेक्ट और इजी रेसिपी है। तो भाई मैं आपको बताने वाली हूँ, मॉडर्न बेकिंग का जो रेवोल्यूशन हुआ था वो 18th century में शुरू हुआ था, पर इंडिया में कुकर बेकिंग एक ऐसा जुगाड़ है जो हर घर में फेमस हो चुका है और बहुत टेस्टी बनता है। इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले आपको चाहिए मैदा 1 कप, कोको पाउडर 1/4 कप, चीनी 3/4 कप, बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, बेकिंग सोडा 1/2 टीस्पून, दूध 1/2 कप, दही 1/4 कप, मेल्टेड बटर या ऑयल 1/4 कप, वनीला एसेंस 1 टीस्पून, नमक 1 कप। और 1 कप हम इसलिए नमक ले रहे हैं, कुकर का जो बेस है वो हम बनाएंगे और इसमें प्री हीटिंग के लिए इसे इस्तेमाल करेंगे, तो उसके लिए नमक हमें ज़रूरत है 1 कप की। इसके साथ अब बताने वाली हूँ आपको इसकी विधि क्या है, लेकिन उससे पहले अभी लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन बहुत सारी होती हैं बातें। मैं आ चुकी हूँ आपके पास और आपको बता दूँ आज केक की बातें कर रही हूँ। सैटरडे का दिन है, रेसिपीज आपके लिए लेकर के आती हूँ। अच्छा, मैं बात कर रही हूँ अब प्रेशर कुकर में बनने वाले केक की। नो ओवन आज हम केक की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले कुकर को प्री हीट आपको करना है। सबसे पहले एक बड़े प्रेशर कुकर के बेस पर आपको 1 कप नमक आपको फैला देना है, आपको बैलेंस करना है, एकदम फैलाना है अच्छे से। उसके बीच में एक वायर स्टैंड या छोटी सी कटोरी आपको उल्टी करके रख देनी है, और कुकर की जो सीटी है, उसकी जो विसल है और उसका जो गैस्केट है, जो रबर है, वो निकाल देना है, ढक्कन बंद कर देना है और मीडियम फ्लेम पर आपको 10 मिनट तक के लिए प्री हीट होने के लिए रख देना है। इसके बाद अब एक बर्तन में आपको छलनी आपको रखनी है और इसमें आपको मैदा, कोको पाउडर, बेकिंग सोडा और चुटकी भर नमक डालकर अच्छी तरह से इसे छान लेना है ताकि कोई भी लम्स ना रखे। अब क्या करना है, दूसरे बोल में आपको मेल्टेड बटर, दही, पाउडर्ड शुगर और वनीला एसेंस डालकर आपको विस्क करना है 2 मिनट तक के लिए अच्छे से। इसके बाद आपको क्या करना है, जब आप अच्छे से मिक्स कर लेंगे तब आपको जो इसमें मिक्स अच्छे से फेंटने के बाद आपको जो है ये बिल्कुल क्रीम जैसा हो जाएगा। इसके बाद अब ड्राई इंग्रेडिएंट्स यानी कि जो हमने मिक्सचर बनाया है उसको डाल देना है। थोड़ा थोड़ा करके मिलाएंगे, जो मैदा है और वो सारी चीज़ें जो हैं इसको थोड़ा थोड़ा करके मिलाएंगे और अच्छे से एक ही डायरेक्शन में इसको जो है कट एंड फोल्ड इस तरह से आप जो है वो फेंटते रहिए। और अब इस मिक्स को आपको जो बैटर है बिल्कुल स्मूथ एकदम रिबन लाइक कंसिस्टेंसी इसकी हो जाएगी। ज़्यादा मिक्स मत कीजिएगा, बस अच्छे से आपको मिक्स करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, केक टिन आपको लेना है। केक टिन को थोड़ा सा ऑयल या आपको ग्रीस, ऑयल से आपको बटर से आपको ग्रीस करना है, ऑयल से करेंगे ज़्यादा बेहतर है, ऑयल से ग्रीस कर दीजिए और उसके बाद मैदा उसके ऊपर डस्ट कर दीजिए, यानी कि हल्का सा मैदा उस पर वो रख दीजिए, छींट दीजिए, या बटर पेपर आप लगा सकते हैं चाहे तो। केक बैटर को आपको टिन में पलट देना है और 2 से 3 टैप आपको करने हैं ताकि अंदर जो बबल्स हैं वो निकल जाए। अब इस टिन को कुकर के अंदर स्टैंड पर रख देना है और ढक्कन बंद कर देना है। लो फ्लेम पर धीरे से आपको धीमे धीमे आंच पर पकाना है। 35 से 40 मिनट तक आपको बेक होने के लिए धीमी आंच पर इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर रख देना है। याद रखिए 30 से 40 मिनट तक के लिए। और 35 मिनट बाद केक के बीच में आपको एक टूथपिक डालकर चेक करना है कि क्या वो साफ बाहर आ रही है। साफ बाहर आ रही है इसका मतलब है केक अंदर से एकदम पक गया है, अच्छे से बन चुका है। और आपको क्या करना है, निकाल लीजिए, जैसे ही वो हो जाए आपको लगे कि पक गया है निकाल लीजिए। और उसके बाद आपको थोड़ी देर के लिए उसे जो है डीमोल्ड करना है। थोड़ी देर बाद पहले उसे ठंडा होने दीजिए और ठंडे होने के बाद उसे डीमोल्ड करना है। अब इसका आपका जो केक है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। बस आपको कुछ टिप्स और दूंगी, फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मैनव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप, मैं हूँ साक्षी आपके साथ और प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के सातों दिन बहुत सारी होती हैं बातें। अब देखिए मैं बात कर रही हूँ एक बहुत ही कमाल टेस्टी रेसिपी के बारे में, वो है केक की। आज हम बेकिंग कर रहे हैं। अरे केक बैटर को हमेशा एक डायरेक्शन में आपको मिक्स करना है, ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। ज़्यादा अगर आप ओवर मिक्स कर देते हैं तो केक अंदर से एयर पॉकेट्स उसके ख़त्म हो जाते हैं और केक बाहर से हार्ड बन जाता है। और अगर बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर आपके पास ना हो तो नॉर्मल एक सैशे आप इनो फ्रूट सॉल्ट का जो है वो आप बैटर उसका बना सकते हैं, इसको आप डाल दीजिए। और साथ ही साथ आप इसमें 1 टेबलस्पून दूध मिलाएंगे और तुरंत बेक करने के लिए आप इसे डाल दीजिए। केक उतना ही स्पॉन्जी बनेगा जितना आप बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा से आपका बन रहा था। अब घर पर बना केक है तो मार्केट के जो प्रिजर्वेटिव और पाम ऑयल है वो नहीं होगा, कोको पाउडर में जो है वो एंटीऑक्सिडेंट्स होते हैं, तो ये मूड को भी आपके अपलिफ्ट करेगा और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा, टेस्ट लगेगा, खाने में भी आपको जो है मज़ेदार लगेगा। खा के आप ज़रूर कहेंगे कि साहब साक्षी आज तो भाई मज़ा ही आ गया, क्या बताई है ना डिश। तो आप इसके साथ बना सकते हैं। देखिए जो आप ठंडा हो जाए जब केक आपका, तो आप उस पर मेल्टेड चॉकलेट जो है वो डाल सकते हैं, थोड़े चॉको चिप्स डाल सकते हैं, गर्म गर्म चाय या ठंडे दूध के साथ इसे सर्व कीजिए, बड़ा टेस्टी लगता है, बहुत अच्छा लगता है। अगर चाहते हैं तो इसको आप कट करके इसके बीच में आप क्रीम भी लगा सकते हैं, मार्केट में आपको वो मिल जाएगी तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं, आप बना सकते हैं। विप क्रीम आपको मिल जाएगी तो विप क्रीम आप उसमें थोड़ा सा वनीला एसेंस डाल के उसे बना सकते हैं, तो बिल्कुल मार्केट जैसा स्वाद आपको मिल जाएगा। घर पर बनाइए केक, किसी का बर्थडे है कोई फंक्शन घर पर बनाइए, बहुत कमाल लगता है। चलिए इसी के साथ लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइए, जुड़े रही और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। Feel good, feel live.

वेलकम बैक रेडियो मैनव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप. मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग. और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ. आज सैटरडे का दिन है और सैटरडे वाले दिन आपके लिए एक बहुत ही कमाल टेस्टी रेसिपी लेकर के आ गई है, और वो है केक की. अच्छा, केक के बारे में आपको बता दूँ, अभी मैंने बताया आपको केक कैसे बनाना है. और आजकल केक की दुनिया में ना बहुत ही बड़ी फाइट चल रही है, क्लासिक चॉकलेट केक बेहतर है या फिर रॉयल रेड वेलवेट. तो रेड वेलवेट केक का वो माइल्ड कोको टेस्ट जो है, ये क्रीम चीज़ फ्रॉस्टिंग लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है. और पर चॉकलेट जो चॉकलेट लवर्स हैं वो कहते हैं कि चॉकलेट का कोई मुकाबला ही नहीं है. स्वाद और टेक्सचर का या डिफरेंस जो कि ही जो बेकिंग की दुनिया है इतनी एक्साइटिंग ये इसे बना देता है, और आपको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा. और आपको वैसे कौन सा केक खाना पसंद है? भाई मुझे तो बटर स्कॉच फ्लेवर केक में बड़ा पसंद है. आजकल तो कितने सारे आ रहे हैं, मतलब गुलाब जामुन भी आ रहा है अब तो. गुलाब जामुन वाला केक जो है या रसमलाई वाला केक भी है, ये भी आपको मार्केट में अवेलेबल मिल जाएंगे. अलग अलग जो है तरीके केक जो है वो आ रहे हैं. अच्छा, आजकल लोग जो है वो फिटनेस के चक्कर में ना केक से दूर भागते हैं, पर ये एक बहुत बड़ा मिथ है. केक हमेशा अनहेल्दी होता है, ये बहुत बड़ा मिथ है. आजकल जो है वो देखिए गिल्ट फ्री बेकिंग का भी ट्रेंड है. आप मैदे की जगह ओट्स फ्लार का या फिर गेहूं का भी आटा जो है वो यूज़ कर सकते हैं. रिफाइंड शुगर की जगह आप गुड़ या फिर बनानास का यूज़ कर सकते हैं. आटा देखिए जो जागरी बनाना केक हो गया, आटा जागरी बनाना केक, वो उतना स्वादिष्ट होता है और आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है, तो नुकसान नहीं देगा. और एक क्लीन ईटिंग के साथ आप मिठास को आप बनाए रख सकते हैं, तो अच्छा आपको लगेगा. तो मैं आपको बता दूं कि ये देखिए दुनिया का सबसे महंगे केक के बारे में आपको मैं बताऊंगी ज़रूर, लेकिन उससे पहले अभी लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक. कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रेशम 107.8 FM. Feel good. Feel good.

वेलकम बैक रेडियो मैनव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आए हूं रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूं सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूं मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन बहुत सारी होती हैं बातें। मैं बात कर रही हूं केक की। आज सैटरडे का दिन है, रेसिपीज लेकर के आती हूं। अच्छा, केक के बारे में मैंने आपको बताया है, बात करते हैं सबसे दुनिया के महंगे केक के बारे में। दुनिया का सबसे महंगा केक कितने का होगा, मतलब लगभग आप कितना सोच सकते हैं? भाई हम सोच सकते हैं कि चलिए वो 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, 1,00,000 रुपये, 2,00,000 रुपये, इससे ज़्यादा केक क्या ही महंगा होगा। ये भी एक्सट्रीम ही है, 2,00,000 रुपये भी क्या ही बोल दिया साक्षी ने। देखिए मैं आपको बता दूँ, दुबई में एक डिज़ाइनर ने एक बर्थडे केक बनाया था जिसकी कीमत लगभग $75 मिलियन यानी कि करीब 600 करोड़ रुपये थी। इस केक में असली हीरे और प्रेशियस स्टोन जो है वो जड़े हुए थे। तो सोचिए जरा, खाना और आर्ट जब मिल जाए तो कितने बड़ा रिकॉर्ड जो है ये बनता है। और ये जो है भाई कमाल, लोग देखते रह गए थे। इसकी जो फोटोज हैं आप ऑनलाइन देख सकते हैं। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि देखिए केक ना आजकल बड़े अलग अलग आ रहे हैं। अच्छा, एक और चलन जो है वो नया, एक ट्रेंड जो है वो आया है, और ये है कोरियन बेंटो केक का। ये छोटे छोटे सिर्फ 250 ग्राम्स के मिनी केक्स होते हैं जो एक लंच बॉक्स जैसी जो मिट्टी या पेपर बॉक्स में जो है वो आते हैं, और अकेले खाने के लिए या छोटी सी खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए बेंटो केक सुपर हिट है। और फरीदाबाद के कैफेज़ में भी इनका अलग ही क्रेज़ है, ट्रेंड है या ये रंग है, तो सच में मतलब मज़ा आ जाता है। बेंटो केक्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे आते हैं आजकल। अच्छा, क्रिसमस की अगर बात करें तो इस पे आते हैं प्लम केक, वो भी बहुत टेस्टी होते हैं। तो अलग अलग जगह की अलग अलग कहानी है, और साथ ही आपको कौन सा केक खाना पसंद है ये ज़रूर मुझे बताइएगा। नंबर है 8010781078। फिलहाल लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7ों दिन बहुत सारी होती हैं बातें। और देखिए मैं आपको बता दूं कि मैंने आज आपको बताया केक के बारे में स्पेशल। देखिए होता है ना, कोई भी ओकेजन तो केक बनाए जाते हैं, तो शुरुआत इसकी हुई थी स्वीट ब्रेड से। और आज भाई बहुत ही कमाल टेस्टी ओवन केक में ये जो है इवॉल्व हो गया है। और आजकल तो भाई घर पर बिना ओवन के भी आप केक बना सकते हैं, और वो मैंने आपको बता दिया है कैसे आप घर पर आप जो है वो बना सकते हैं, प्रेशर कुकर में केक जो है वो बना सकते हैं, और बहुत ईजी भी है बनाना। तो चलिए आप बना के मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये केक कैसा लगा। अब इसी के साथ वक्त हो गया आपसे इजाज़त लेने का, तो मुझे दीजिए इजाज़त। अभी कुछ देर में आती हूँ आपके लिए लेकर के प्रोग्राम सफ़रनामा, जिसमें हम कहीं घूमने के लिए जाएंगे। तो चलिए फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम में हूं दीक्षा आपके साथ और समय है प्रोग्राम ग्रीन ग्रह का, एक ऐसा प्रोग्राम जहां हम बात करते हैं अपने ही ग्रह पृथ्वी के बारे में, क्योंकि इस पृथ्वी को संभाल कर रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। पर कहीं ना कहीं हम इस जिम्मेदारी से पीछे हट जाते हैं, क्योंकि हम अपना घर तो ठीक रखना जानते हैं पर अपना पर्यावरण, अपने आसपास का इलाका और अपने शहर के बारे में भूल जाते हैं। पर इस कार्यक्रम ग्रीन ग्रह को आप तक लाने के लिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी डॉक्टर ओपी भल्ला फाउंडेशन, इको क्लब और पीटीसी फाइनेंस लिमिटेड का, जो ये कार्यक्रम आप तक ला रहे हैं और हमारे साथ बहुत सारी एक्सपर्ट्स को जोड़ रहे हैं जो आपको वेस्ट सेग्रीगेशन या फिर वेस्ट मैनेजमेंट से जुड़ी हुई बहुत सी जानकारी दे सकते हैं। और आज के इस प्रोग्राम में हम सिर्फ वेस्ट सेग्रीगेशन या मैनेजमेंट के बारे में बात नहीं करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज़ के बारे में जो प्रकृति से आ रही है लेकिन हमारे ही पर्यावरण को सहायता दे रही है साफ रखने में, हमारे घर को साफ रख रही है और सबसे बड़ी बात, हमारा बहुत सा पैसा भी बचा रही है। यानी जो सामान हम अपने घर को साफ रखने के लिए खरीदते हैं, महंगे महंगे वॉशिंग पाउडर्स, कपड़ों को धोने के लिए, बर्तनों को साफ करने के लिए अच्छी और हाई एंड क्वालिटी के डिश वॉशिंग मशीन्स के साथ साथ बहुत सारे लिक्विड या फिर बार्स खरीदते हैं, इसके साथ साथ हम अपने टॉयलेट्स को क्लीन करने के लिए टॉयलेट क्लीनर्स खरीदते हैं, ये भी कोई सस्ते नहीं आते हैं, 200-300 से कम की कोई अच्छी बॉटल नहीं आती है। इसके साथ साथ हम अपने फ्लोर को चमकाने के लिए महंगे और खुशबूदार फ्लोर क्लीनर्स खरीदते हैं और अपने एनवायरनमेंट में प्लांट्स को खूबसूरत रखने के लिए कुछ केमिकल्स फर्टिलाइजर्स का भी इस्तेमाल करते हैं या फिर पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं। पर अगर मैं आपसे कहूँ कि आप घर बैठे सब कुछ बना सकते हैं, वो भी ईजिली अपने घर के इस्तेमाल होने वाले बहुत सारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स के छिलकों से, जिनको आप खा के अपनी सेहत ठीक कर सकते हैं, और इनके छिलकों को फेंकने की जगह इनसे आप बायो एंजाइम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। बट ये सारी बातें आपके साथ मैं नहीं शेयर करने वाली, ये सारी बातें आपके साथ शेयर करने वाली हैं और हमारी जो आज की एक्सपर्ट हैं वो बायो एंजाइम्स में बहुत महारत हासिल कर चुकी हैं। अपने घर पर ही ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बनाती हैं जो घरों में इजीली इस्तेमाल किए जाते हैं। शुरुआत इन्होंने कुछ सीख कर करी और अब ये इसमें एक्सपर्ट हो चुकी हैं, तो ये अपने घर के साथ साथ बहुत सारे लोगों की और भी मदद करती हैं बायो एंजाइम के इस्तेमाल में। केयर बायो एंजाइम नामक ये अपने एक प्रोडक्ट को बनाती हैं, जिसमें इस ब्रांड के अंडर कई सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स आते हैं जो आपके घर को साफ रखने में, आपके किचन को साफ रखने में, आपके वॉशरूम्स को साफ रखने में और यहाँ तक कि आपके प्लांट्स को खूबसूरत बनाने में, उनका ख्याल रखने में भी मदद करते हैं। ये सारे प्रोडक्ट्स बिल्कुल केमिकल फ्री होते हैं, घर पर बन जाते हैं और पर्यावरण के लिए बहुत अच्छे होते हैं। हमारे साथ आज स्टूडियो मौजूद हैं सुचेता साहू जी। सुचेता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो मानव रचना में।
1: धन्यवाद दीक्षा जी।
0: तो सुचेता जी, हम बायो एंजाइम की बात कर रहे हैं और बायो एंजाइम एक ऐसा वर्ड है जो मुझे लगता है कि आम इंसान को नहीं पता। अब बायो है तो ऑफकोर्स प्रकृति से जुड़ा हुआ है और एंजाइम है तो कहीं ना कहीं गुड बैक्टीरिया की भी बात हो रही है। ये तो मैंने इसका संधि विच्छेद करके थोड़ा सा आइडिया निकाल लिया, लेकिन मैं आपसे डिटेल में जानना चाहूंगी क्योंकि आप इस फील्ड से जुड़ी हुई हैं। तो बायो एंजाइम है क्या और आपने कैसे इसको एक्सप्लोर किया?
1: जी मैम, इस बायो एंजाइम जो नॉर्मली जाना जाता है इको बायो एंजाइम या गार्बेज एंजाइम के नाम से बाहर
0: जी,
1: और ये फलों और सब्जियों को छिलकों को गुड़ के साथ फर्मेंट करके बनता है और इसका इन्वेंशन जो है डॉक्टर रोशुकॉन ने किया था, जो मलेशिया की साइंटिस्ट है, और उन्होंने 40 साल से इस पर रिसर्च करते हुए बहुत अच्छे रिजल्ट पाए और इसको प्रमोट करना शुरू किया। इंडिया में बायो एंजाइम एंटरप्रेन्योर्स एकेडमी के ओर से इसका प्रमोशन काफ़ी तेज़ी से इस समय हो रहा है और मैं इसकी मेंबर हूँ और इसको हम अपने घरों में आसानी से बना सकते हैं और इसका बस सिर्फ एक सिंपल तरीका है कि हमें अपने घर में जो सब्जी और फलों के छिलके निकल रहे हैं उनको अलग करना है और एक लीटर पानी में 300 ग्राम छिलके और 100 ग्राम गुड़ मिक्स करके एक एयर टाइट जार में रखना है जो चौड़े मुखे हो, और उसको हम छांव में रखेंगे और उससे जो 3 महीने रखने के बाद लिक्विड बनता है वो बायो एंजाइम या इको एंजाइम हमारे बहुत काम आता है।
0: जी जी। तो सुचेता जी, ये तो बायो एंजाइम आपने बताया कि कैसे बनता है, लेकिन बायो एंजाइम ज़रूरी क्यों है? हमारे पास इतने मार्केट में प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं और अब तो लोग ऑर्गेनिक के नाम से भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स सेल करने लग गए हैं कि ये चीज़ ऑर्गेनिक है, इसमें कोई हानिकारक केमिकल्स नहीं है, तो फिर ये बायो एंजाइम का मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग ये भी सोचेंगे कि इतना काम कौन करे घर पे, इतनी चीज़ें कौन इकट्ठी करे और फिर उसके बाद इनको बनाए, तो क्यों ज़रूरी है ये बनाना, ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ।
1: मैम, अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं और पर्यावरण के प्रति आप सजग हैं, तो अपने घर से निकलने हुए वाले वेस्ट को ज़रूर आप कंपोस्ट बनाते होंगे और उसको अलग करते होंगे, तो क्यों ना हम उस कड़ी में थोड़ा एक कदम और आगे बढ़ के बायोएंजाइम बनाएं जो कि हमारे घर के तमाम केमिकल्स को रिप्लेस कर सकता है। हमें नहीं पता कि ब्रांड्स जो बेचती हैं उसमें क्या इंग्रेडिएंट पड़े हैं। जैसे हम बाज़ार से खाना लेते हैं तो हमें पता नहीं होता कि क्या होता है और वो कितना हार्मफुल है हमारे लिए या हमारी प्रकृति के लिए। तो अगर घर में हम थोड़े से कोशिश से कुछ अच्छा बना सकते हैं तो क्यों नहीं बनाएं। और ये इतना क्रिएटिव काम है, मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे मेरा स्ट्रेस बस्टर है ये एक तरह से, क्योंकि जब बायोएंजाइम बन जाता है और उसको मैं तरह तरह से यूज़ करती हूँ, जैसे फ्लोर क्लीनिंग के लिए या फिर अपने किचन क्लीन करने के लिए या अपने स्किन के लिए या बाकी प्लांट्स के लिए, और उसमें इम्पैक्ट देखती हूँ। और जब तरह तरह से लोग पेस्ट कंट्रोल करवाते हैं और सबको पता है कि ये कितना हानिकारक है हमारे हेल्थ के लिए, हमारे बच्चों के लिए, और हम बिना पेस्ट कंट्रोल करवाए अपने घर में जो इंसेक्ट है उनसे छुटकारा पा लेते हैं, तो क्यों नहीं हम इसका इस्तेमाल करें। एक छोटी सी चीज़ बनाने से इसके मल्टीपल यूज़ हो सकते हैं। आप ये भी तो देखो कि हमारे पास अगर बायोएंजाइम है तो हम अपना क्लीनिंग भी कर सकते हैं, हम पेस्ट कंट्रोल भी कर सकते हैं, हम अपने प्लांट्स को भी केयर कर सकते हैं, और अपने छोटे छोटे जो हो जाते हैं प्रॉब्लम्स स्किन के हल्के फुल्के, उनको भी क्योर कर सकते हैं।
0: अच्छा, इन्हीं बायो एंजाइम्स
1: से। तो क्यों नहीं हम ट्राई करें इन्हें और इसका आनंद ले। जब प्रकृति ने इतनी अच्छी चीज़ हमें दी है तो हमें बनाना चाहिए, हम पीछे नहीं हटना चाहिए।
0: जी जी। मैम, मैं ये जानना चाहती हूँ कि अब हम बायो एंजाइम्स की बात करें, आपने इतने सारे प्रोडक्ट्स के बारे में बताया अभी कि आप ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, स्किन का भी ख्याल हो सकता है इससे, सो इसको बनाने का प्रोसेस क्या होता है? बेसिक चीज़ से शुरू करते हैं कि अगर हमें एक फ्लोर क्लीनर बनाना है, सपोज़ हम अपने घर में फ्लोर क्लीनर यानी फिनाइल का इस्तेमाल करते हैं जिसकी स्मेल लोगों को लगता है कि हॉस्पिटल वाली फील आ रही है, बहुत सारे लोगों को वो अच्छी भी नहीं लगती है, बट ये होता है कि क्लीनलीनेस के लिए चाहिए कि घर में चींटियाँ आ गई हैं या अब रोज़ तो पोछा तो लगता ही है सबके घर में
1: जी।
0: और इंडिया में हर रोज़ ऐसे वैक्यूम क्लीनिंग तो पॉसिबल नहीं होती है, तो डस्ट है, गंदगी है, पोछा तो लगेगा, बट उसमें वो फिनाइल डालते हैं। बरसों से हम बचपन से देखते आ रहे हैं फिनाइल ही डलता है। कई लोग उसमें नींबू और नमक डाल के भी पोछा लगाते हैं बट उसमें खुशबू नहीं आती है। सो ये जो फ्लोर क्लीनर है, पहले आप मुझे बताइए कि ये कैसे बनता है और इसमें खुशबू क्या आ सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि अगर इसमें छिलकों का इस्तेमाल हो रहा है तो इसमें स्मेल होगी।
1: करेक्ट, इसमें स्मेल होती है, थोड़ी सी सिरके जैसी नेचुरल विनेगर की स्मेल होती है जो बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं होती, लेकिन हम लोग जो बनाते हैं उनको तो सिट्रस फ्रूट्स की स्मेल जो है काफ़ी अच्छी लगती है, और स्पेशली संतरे का जब हम बनाते हैं या नींबू का बनाते हैं तो अच्छी स्मेल आती है कंपैरेटिवली अदर बायोएंजाइम्स। तो लेकिन हाँ, उसमें हम अच्छे सर्फेक्टेंट जैसे कोकोनट बेस्ड सर्फेक्टेंट होते हैं जो आसानी से बायोडिग्रेडेबल होते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं, प्लस एसेंशियल ऑयल डालते हैं। ये नुकसान भी नहीं करता है और एक पर्टिकुलर अमाउंट तक इसकी स्मेल को ऑलमोस्ट ख़त्म कर देता है और अच्छी खुशबू आती है। और साथ के साथ आप ये भी देखो कि इससे जब हम एसेंशियल ऑयल्स का इस्तेमाल करते हैं तो फ्लाई, जैसे लेमन ग्रास का हम कर रहे हैं तो उसको हम फ्लाइज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं कि फ्लाइज़ ना आए, तो वो उसका ही काम करता है, तो इससे मल्टीपल बेनिफिट हो जाते हैं।
0: तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, अगर मैं अपने घर पे या हमारे जो लिसनर्स सुन रहे हैं अब ये बनाना चाहते हैं फ्लोर क्लीनर अपने घर पे इसी तरीके से, सो क्या है जो पील्स वो इस्तेमाल करें, कौन से छिलके इस्तेमाल करें, क्या इसका प्रोसेस होगा, क्या इसके लिए जैसे हमने अपने पिछले कुछ एपिसोड्स में देखा था मैन्योर बनाने का तरीका ऑर्गेनिक एकदम, तो वो पील में थोड़ा सा उन्होंने बोला कि आप छाछ डाल दीजिए और उसके बाद उसमें खूब सारे छिलके डाल दीजिए और कागज़ डाल दीजिए, न्यूज़पेपर्स डाल दीजिए और उसको थोड़ा थोड़ा आप बीच में कभी कभी चलाते रहिए, और इस जिस भी कंटेनर में डालें उसमें छेद होने चाहिए ताकि वो जो गैस है वो रिलीज़ होती रहे धीरे धीरे और वो उसमें भी जो है प्रॉपर तरीके से वो मैन्योर बनता रहे। यहाँ पे मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि ये लिक्विड है ऑलरेडी, आप इसको लिक्विड में बना रहे हैं, सो ये किस बर्तन में बनेगा, कैसे बनेगा, इसका थोड़ा सा प्रोसेस हमें बताइए।
1: जी, मेनली इसको प्लास्टिक के बर्तन में बनाना चाहिए।
0: अच्छा।
1: जो प्लास्टिक का कंटेनर होता है, एयर टाइट कंटेनर होना चाहिए। हाँ। और प्रेफरेबली चौड़े मुंह का बनना चाहिए, होना
0: अच्छा।
1: चाहिए, जिसमें आप आसानी से छिलके डाल सकें। और पतले मुंह का अगर होगा तो उसमें गैस फॉर्मेशन, गैस निकल नहीं पाएगी और बॉटल फटने का डर रहता है। तो बनाने के लिए हम हमेशा चौड़े मुंह का बर्तन लेते हैं, प्लास्टिक का कंटेनर लेते हैं, और उसमें जो है छिलका और गुड़ और पानी। अब आपने कहा फ्लोर क्लीनिंग के लिए, तो हम हमेशा साइट्रस फ्रूट्स लाइन यानी कि मौसम्बी, संतरा और नींबू आदि के छिलके इस्तेमाल करते हैं। छिलकों को साफ सुथरा होना चाहिए और उसको हम वे करके या फिर कटोरी से नाप के डालते हैं। अगर वेइंग कर रहे हैं तो 300 ग्राम छिलका लेंगे, और इसके लिए जार हमारा, अगर एक लीटर बायोएंजाइम पानी ले रहे हैं तो हमें जार 1.5 लीटर का होना चाहिए।
0: ओके।
1: थोड़ी सी एयर भी निकलने के लिए भी होनी चाहिए जगह, तो स्पेस होनी चाहिए। और बस उसमें फिर आपको कुछ नहीं करना है, 1 लीटर पानी डालना है, 300 ग्राम छिलके डालने हैं और 100 ग्राम गुड़ डालना है। और अगर आपके पास वेइंग मशीन नहीं है तो आप कटोरी से भी नाप सकते हैं,
0: अंदाजा कर सकते हैं।
1: अंदाज से 3 कटोरी छिलके ले लीजिए, 1 कटोरी गुड़ ले लीजिए और 10 कटोरी पानी
0: ले लीजिए।
1: और बस वो आपका जार में 20% स्पेस फ्री होनी चाहिए
0: ताकि
1: गैस फॉर्म होगी। शुरू के 20 दिन आपको ढक्कन को रोज थोड़ा सा ढीला करके गैस निकलने देना है और थोड़ा सा हिला देना है ताकि मिक्स हो जाए अच्छी तरह से। उसके बाद 20 दिन के बाद आप रियलाइज करोगे कि थोड़ा सा गैस फॉर्मेशन कम हो गया, तो हफ्ते में एक दिन आप हल्का ढीला कर दीजिए ढक्कन। तो इस तरह से आपको 3 महीने उसको रखना है।
0: ओके।
1: अगर आपके पास पुराना बायोएंजाइम है कोई रखा हुआ, तो आप उसमें करीब 2% जितना आपने बनाया है उसका 2% आप वो डाल दीजिए, तो फर्मेंटेशन प्रोसेस स्पीड अप हो जाता है और आपका बायोएंजाइम 45 डेज में बन जाएगा।
0: यानी वो जल्दी बन जाएगा अगर आपके पास, आप एक ढक्कन के करीब या 2 ढक्कन के करीब बायोएंजाइम डाल देते हैं, तो उससे वो प्रोसेस, क्योंकि आप ऑलरेडी बायोएंजाइम डाल रहे हैं, तो वो दही की तरह है कि आपने थोड़ा सा खट्टा डाल दिया तो वो दही जल्दी जम जाएगा। तो ये एक प्रोसेस आपने बताया कि हम ये फ्लोर क्लीनर इससे बना सकते हैं।
1: जी।
0: और इसके लिए आपने जैसे सजेस्ट किया कि बर्तन थोड़ा सा ऐसा लें जो एयर टाइट हो और बड़े मुंह वाला हो, तो जार जो हमारे पास 2-2.5 लीटर के आते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई पुराना प्लास्टिक का जार पड़ा उसका इस्तेमाल कर लें।
1: बिल्कुल, आप वही इस्तेमाल करिए, नया खरीदने की जरूरत नहीं है। नहीं तो मैं तो जब ज्यादा होता है कहीं डेमो देना होता है या तो केमिस्ट शॉप या ग्रोसरी शॉप से मांग लेते हैं, उनके पास खाली पड़े रहते हैं।
0: बिल्कुल। और प्लास्टिक के मतलब आप क्या करते हैं, आप इनको सेल ही कर देते हैं, बेच ही देते हैं। सो
1: और छिलके अगर मेरे पास नहीं होते हैं तो जूस शॉप से ले आती हूँ।
0: क्या बात है, मतलब अपनी जेब से आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं खर्च करना है,
1: बस गुड़ का खर्चा देना है,
0: गुड़ का खर्चा देना है जो इजीली आप।
1: हाँ, और अगर पानी का टीडीएस बहुत हाई है जैसा फरीदाबाद में है तो आप आरओ वाटर
0: का इस्तेमाल करें। बिल्कुल। तो आप सेफली इन चीजों को
1: बना सकते हैं।
0: अब ये तो फ्लोर क्लीनर की बात होगी, इसमें आपने कोई भी छिलके डाल देने, सब्जी के या कोई पर्टिकुलर कोई
1: नहीं। अगर फ्लोर क्लीनर बनाना है तो आपको सिट्रस
0: ही डालना पड़ेगा।
1: अगर प्लांट्स के लिए बना रहे हैं तो आप किसी भी सब्जी और फल के छिलके मिक्स करके डाल सकते हैं जो प्लांट्स के लिए उपयोगी होते हैं। लेकिन आलू के छिलके, जिंजर गार्लिक चिली का अलग से बनाना है, आलू के छिलके का इस्तेमाल नहीं करना, ये कुछ प्रिकॉशंस हैं। और बाकी जो पर्पज़ है, जैसे अगर आपको खुशबूदार बायोएंजाइम चाहिए तो रोज़ पेटल्स का बहुत ही खुशबूदार मार्वलस होता है और रोज़मेरी का बहुत ही बढ़िया बनता है, खुशबू बहुत अच्छी होती है।
0: तो जिन जिन चीज़ों में खुशबू ज़्यादा होती है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: कॉफ़ी का मैंने बनाया, उसकी तो खुशबू इतनी अमेजिंग है कि आपको बता नहीं सकती हूँ।
0: मतलब
1: 3 साल पुराना बायोएंजाइम है लेकिन इतनी अच्छी खुशबू है, बहुत ही बढ़िया
0: जी। तो ये अपने आप में एकदम नेचुरल है, इसमें कोई ऐसे सेंट नहीं डले हैं, कोई एक्स्ट्रा परफ्यूम्स नहीं डले हैं, ये नेचुरल चीज़ों की खुशबू। जैसे आप कॉफ़ी डालते हैं तो ऑफ कोर्स कॉफ़ी की खुशबू इतनी अच्छी होती है कि आप उसकी तरफ खिंचे चले आते हैं। तो आपके घर में अगर कॉफ़ी का बायोएंजाइम होगा और आप उससे फ्लोर क्लीन कर रहे हैं, तो मुझे लगता है आप अपने घर में भी एक बड़ा एक मीठी मीठी सी प्यारी सी खुशबू फील कर सकते हैं 24 घंटे।
1: आपने ये जो सजेशन दिया मैं ट्राई करके देखूंगी।
0: जी सुजेता जी, अब ये फ्लोर क्लीनर की बात हो गई है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम लोगों के पास ये आती है कि उनके घरों में जो वॉशरूम्स होते हैं उनको क्लीन करने के लिए वो हार्ड केमिकल्स का इस्तेमाल करना ही पड़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ जैसे आपने कहा TDS इतना ज़्यादा होता है, तो जो पानी है उसके दाग लग जाते हैं पूरे वॉशरूम में, साफ़ नहीं होते हैं, तो आपको एक्सपर्ट बुला के कई बार साफ़ कराना पड़ता है। आप खुद करते हैं तो आजकल अलग अलग ब्लीच वाले केमिकल्स आ रहे हैं, जो ऑफकोर्स पानी के लिए ठीक नहीं है, एनवायरमेंट के लिए ठीक नहीं है। आप नाली में डालते हैं और उसके बाद उसको जैसे ही बहाते हैं तो वो आगे जो ड्रेन में जा रहा है वहाँ सब गड़बड़ कर रहा है, तो पोल्यूशन तो बढ़ ही रहा है।
1: जी हाँ।
0: तो क्या हम वॉशरूम्स को क्लीन करने के लिए, इन ख़राब दागों को हटाने के लिए कुछ ऐसा कुछ चीज़ आप बना सकते हैं?
1: बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट जो हम सेट्रस पील्स का बायोएंजाइम बनाते हैं उसके बाद जो पल्प बचता है उसको अगर हम थोड़े इस बायोएंजाइम के साथ मिला के पीस दें और उससे टॉयलेट क्लीन करें तो काफ़ी हद तक बहुत ही अच्छा साफ़ हो जाता है और खुशबू भी अच्छी आती है। अच्छा। टाइल्स भी बहुत अच्छी साफ़ हो जाती हैं उससे।
0: अच्छा।
1: और अगर उसमें थोड़ा सा अगर हम सिट्रिक एसिड ऐड कर दें तो और भी इफ़ेक्टिव हो जाता है। तो हम कर सकते हैं ट्रायल एंड एरर बेसिस पे, लेकिन ये जो हमारे एक्सपेरिमेंट्स हैं अभी तक उसमें ये तो मैंने देखा है कि जो सिट्रस पील्स का जो छिल वो है पल्प है जो बायोएंजाइम बनने के बाद बचता है उसकी खाद भी बहुत अच्छी बनती है और उसको हम ये टॉयलेट क्लीन करने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है।
0: जी जी। आपने ड्रेनेज ब्लॉक ड्रेनेज जो होती है, जो नालियां बंद हो जाती हैं घरों में अक्सर किचन वगैरह में बंद हो जाती हैं, सो उसको लेके लोग बड़े परेशान रहते हैं। उसके लिए फिर वो कुछ पाउडर्स आते हैं जिनका इस्तेमाल करते हैं, हाईली एसिडिक होते हैं वो। आप जब उसको डालते भी हैं तो ये एडवाइस किया जाता है कि आप उसको रात भर डाल के रखें, किचन में काम ना करें, हाथ ना लगाएं, ग्लव्स पहने अगर आप हाथ लगा रहे हैं, तो इतना ज़्यादा ख़तरनाक वो होता है। आप खुद सोचिए, जब भी हम उन्हें नाली में डालते हैं तो वो जो नाली से बहकर आगे जाता है तो कितना हार्मफुल है वो पर्यावरण के लिए। लेकिन ऑप्शन नहीं होता है लोगों के पास, उनको पता नहीं होता कि इसकी जगह

0: वो बहुत अच्छा होता है हमारी डिश क्लीन करने के लिए। अच्छे हेल्दी सर्फेक्टेंट आप यूज़ करिए, कोकोनट बेस्ड आते हैं मार्केट में, उनको मिला के आप बढ़िया डिश वॉश बना सकते हो जो बहुत इफेक्टिव होता है।
1: जी जी, कपड़े धोने के लिए लोग बड़े परेशान होते हैं कि वॉशिंग पाउडर्स हैं, वॉशिंग पाउडर्स की जगह आजकल लिक्विड्स आ गए हैं, पॉड्स आ गए हैं, बड़ी बड़ी मशीन्स हैं सबके घर में, और मशीन्स के साथ ये भी लिखा होता है कि आप इस तरीके का ब्रांड या इस टाइप का वॉशिंग पाउडर यूज़ करें। लेकिन अगर मैं पुराने समय में जाऊँ या फिर आज भी गाँव की बात करूँ, तो वहाँ पर इन लिक्विड्स या पाउडर्स की जगह आज भी रीठे का इस्तेमाल होता है।
0: जी,
1: तो रीठा जो है वो ना केवल बालों के लिए यूज़ होता है बल्कि कपड़े धोने के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो मैं जब बायो एंजाइम की बात कर रही हूँ तो मैं इसे बनाने का फॉर्मूला नहीं, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि रीठे का इस्तेमाल कपड़ों को साफ़ करने के लिए और मशीन में डाल के साफ़ करने के लिए कैसे हो सकता है, ये मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगी। और अगर बायो एंजाइम भी इसमें कुछ अच्छा रह सकता है, क्योंकि अगर आप इन पाउडर्स से कपड़े धो रहे हैं तो कपड़ा तो साफ़ हो गया लेकिन इतना झाग जो नाली में गया उसके बाद आपकी बॉडी पे कई बार वो पाउडर जो है या वो जो वॉशिंग लिक्विड है वो कहीं ना कहीं एलर्जी भी कर जाता है बहुत सारे लोगों के केसेस में।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ये प्रॉब्लम तो बच्चों के साथ बहुत आ रही है।
1: तो ये मैं आपसे जानना चाहूँगी।
0: जी बिल्कुल, आप रीठे का इस्तेमाल कर सकते हैं और रीठा कई तरीके से इस्तेमाल होता है। जैसे मैं यूज़ करती हूँ रीठे का भी बायोएंजाइम बना लेती हूँ, जो बायोएंजाइम बनाने का प्रोसेस बताया मैंने आपको, उस तरह से रीठे को भी मंगवा के बायोएंजाइम उसका बना लेती हूँ।
1: अच्छा,
0: और दूसरा सिट्रस जो बायोएंजाइम बनाया है मैंने, उसमें रीठा भिगो के पानी के साथ उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तीसरा, आप रीठे के 4-5 पॉड 6 पॉड एक सॉक्स में या किसी कपड़े में बांध के मशीन में डाल दीजिए, वॉशिंग मशीन में, और साइट्रस बायोएंजाइम ऐड कर दीजिए उसमें। तो एक फुल लोड वॉशिंग मशीन में अराउंड 100 ml साइट्रस बायोएंजाइम और 5-6 पॉड रीठा आप डाल ऐड कर दीजिए। और अगर आपके पास बनाया हुआ है रोज़ बायोएंजाइम तो रोज़ बायोएंजाइम ऐड कर सकते हैं,
1: खुशबू भी आ जाएगी,
0: खुशबू भी आती है और कपड़ों के सॉफ्टनर का भी काम करता है।
1: अच्छा
0: जी,
1: ओके। तो ये रीठा जो है इसको कैसे डालें हम इसमें, क्या भिगो के डालना होता है या ऐसे ही डाल दें, किस किस तरीके से?
0: दोनों तरीके से आप डाल सकते हो। एक तो रीठे के सूखे जो पॉट्स होते हैं उनको एक मोजे में बांध दीजिए ताकि वो वॉशिंग मशीन में ना जाए, और बस उसके टब में रख दीजिए और 2-3 वॉश में वो आराम से काम करेगा।
1: अच्छा, मतलब 5-6 रीठा लें।
0: हाँ।
1: जैसे उसको पील से, कवर में से निकला हुआ जो होता है जिसको अगर
0: पानी कवर में के साथ भी है तो भी ठीक है।
1: अच्छा,
0: बस उसको आपको मिक्स नहीं करना है, किसी कपड़े में अच्छी तरह से बांध दे ताकि वो निकल के बाहर ना आए, और साथ में आपने साइट्रस बायोएंजाइम और रोज बायोएंजाइम ऐड कर दिया उसमें।
1: अच्छा।
0: और फिर आप चला दीजिए साइकिल फुल और आपका जो कपड़ा होगा, लेकिन हाँ जो बहुत दाग धब्बे हैं वो नहीं क्लीन होंगे, उनको आप पहले से अलग से रगड़ दीजिए।
1: जी
0: हाँ, जैसे हम नॉर्मली
1: बेसिक जो कपड़े धोते हैं
0: बेसिक
1: वो एकदम साफ,
0: कपड़े अच्छे साफ हो जाते हैं, सॉफ्ट भी हो जाएंगे।
1: तो लोगों को ये भी थोड़ा सा डाउट होगा कि क्या झाग बनेगा, क्या प्रॉपर सफाई होगी, तो क्या रीठे से झाग बनता है, ये मैं आपसे जानना चाहती
0: हूँ। रीठे से झाग बनता है, बहुत माइल्ड झाग बनता है, और अगर आपको झाग ज्यादा चाहिए लेकिन अच्छे झाग चाहिए तो कुछ कोकोनट बेस्ड सर्फेक्टेंट आते हैं मार्केट में, वो भी हम आपको बता सकते हैं जब आप कभी ट्रेनिंग लेने में इंटरेस्टेड हो, क्योंकि ये चीज़ें स्टेप बाय स्टेप होती है। पहले अगर आप सीखना चाहते हो तो आप बायोएंजाइम बनाना शुरू करो, उसके बाद अगर आप फर्दर अपने घर के यूज़ के लिए और अच्छा प्रोडक्ट बनाना चाहते हो तो उसको आप ट्रेनिंग हमारे यहाँ दी जाती है, वो ट्रेनिंग लेके आप शुरू करो। अगर आपको वो भी अच्छा लगता है, आप बिजनेस करना चाहते हो तो उसके लिए फर्दर ट्रेनिंग है, फर्दर गाइडेंस है, तो आप उस पर आ सकते हैं।
1: जी।
0: तो आप ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग कह सकते हैं इसको।
1: बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये आप सिर्फ बोल के या रेडियो पे सुन के नहीं सीख
0: जी
1: सकते
0: नहीं,
1: इसको
0: जी नहीं।
1: जब तक आप प्रैक्टिकली करेंगे नहीं आपको ज्यादा क्लियर होगा नहीं।
0: बिल्कुल, बायोएंजाइम्स क्योंकि एक लिविंग प्रोसेस एक तरह से है, क्योंकि बैक्टीरियाज है इसमें, तो इनको समझना, इनका सीखना, इनकी जो इफेक्ट है उसको देखना,
1: जी जी,
0: वो एक अपने आप में लर्निंग है।
1: जी,
0: तो एक्सपीरियंस से ही आती है ये, लेकिन हाँ बेसिक जो बनाना है वो बहुत आसान है, आप शुरू करिए बनाना और इस्तेमाल करिए, आपको आई एम श्योर अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और अगर कहीं डाउट है आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं बायोएंजाइम एंटरप्रेन्योर्स एकेडमी से, या मुझसे भी कर सकते हैं, तो हम आपको गाइड करेंगे।
1: जी जी, सुचेता जी ये सारी चीज़ें तो आपने बता दी हैं, लेकिन एक और बहुत अच्छी सी जो दर्शक नहीं देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक बॉटल रखी हुई है बायोएंजाइम की, जो बेसिकली आपके घर से कॉकरोच, छिपकली, चींटियाँ ये सब

0: टाइप करने में मदद करता है। और इसको कैसे बनाया जाता है ये मैं आपसे थोड़ा जानना चाहती हूँ, क्योंकि छिपकली को भगाना स्पेशली मानसून या गर्मी में एक टास्क होता है, मेरे लिए तो बहुत बड़ा टास्क होता है। सो मेरी तरह बहुत सारे और भी लोग इससे इत्तेफाक रखते होंगे जिनके घर में चींटियाँ बहुत आ जाती हैं और कॉकरोचेस बहुत आ जाते हैं, तो वो कैसे इसको?
1: जी, जिंजर गार्लिक चिली जो है बहुत अच्छा इंसेक्ट रिपेलेंट होता है हमारे घर में। लोग पहले भी इनको पानी में भिगो के 4-5 दिन रख के फिर भिगो के फिर उसका पानी इस्तेमाल करते थे। अब हमने इसको बायोएंजाइम के फॉर्म में बना दिया और इसका इफ़ेक्ट जो है मैंने देखा है अपने पर्सनल उस पर कि इस यूज़ करने के बाद छोटी चींटियाँ तो आनी बिल्कुल भी बंद हो गई।
0: अच्छा।
1: और लिजर्ड वगैरह रेगुलर यूज़ के साथ नहीं आती हैं।
0: अच्छा
1: जी,
0: तो जहाँ जहाँ पे लगता है कि हाँ उन कोनों में आके बैठ जाती हैं, हाँ,
1: वहाँ पर मैं हर 2 दिन में स्प्रे कर देती हूँ। एक पर्टिकुलर उसका डाइल्यूशन है, डिपेंड अपॉन कितना ज़रूरत है।
0: मैं वही आपसे जानना चाहती हूँ कि अगर हमें 1.5 लीटर के करीब बॉटल बनानी है तो, या 1 लीटर के करीब हमें बनाना है तो इसको कैसे बनाएंगे?
1: जी, अगर आपका प्लांट्स के लिए आपको बना डालना है तो उसमें मुश्किल से आप 10-20 ml डालिए। अगर बहुत ज़्यादा वो है तो फिर हम अलग से उसको एक्सपेरिमेंट करके करते हैं, लेकिन घरों के लिए अगर हम चींटियों और लिजर्ड्स के लिए बनाते हैं तो 1/4 ही काफ़ी है बायोएंजाइम, और उसमें फिर आपने पानी ऐड किया और उसको छोड़ दीजिए करीब 4-6 घंटे।
0: अच्छा।
1: हाँ, और पानी भी मैं प्रेफर करूँगी कि आप जो है बैटरी वाला पानी यूज़ करें प्रोडक्ट्स बनाने में।
0: ओके।
1: या इस तरह से तो आप आराम से यूज़ कर सकते हैं
0: जी।
1: उसको या आरओ वाटर बहुत अच्छा देख लीजिए।
0: जैसे इसमें हमें जिंजर डालनी है,
1: गार्लिक
0: डालना है और
1: हरी मिर्च डालिए और उसका
0: इनको कट करके डालना है, मतलब इनको थोड़ा थोड़ा काट के या कूट के
1: डाल दीजिए। okay. कट करके डाल दीजिए, छिलके सही डालिए,
0: गुड़ जाएगा
1: जी।
0: ओके। okay. यानी अगर हम 300 ग्राम लेते हैं इन तीनों चीजों को, हाँ। और 100 ग्राम गुड़ लेना है और 1 लीटर पानी के जार में इसको डाल के छोड़ देना है 45 दिन तक ऑलमोस्ट छोड़ देंगे इसको, या इसको कम दिन के लिए छोड़ सकते
1: हैं? नहीं, पूरा 45 डेज या फुल आप 90 डेज करिए, बहुत अच्छी क्वालिटी का बनता है।
0: ओके, 90 डेज
1: के लिए ही मैं प्रिफर करूंगी रखने को, कहूंगी। और नीम का बायोएंजाइम बना सकते हैं आप, मारी गोल्ड का बायोएंजाइम बना सकते हैं, तुलसी का बना सकते हैं, ये सब इंसेक्ट के लिए बहुत अच्छे होते हैं
0: जिनके घर में मच्छर, कॉकरोच, छिपकली और
1: रेगुलर यूज करेंगे तो आई एम श्योर। मैं आप सिट्रस बायोएंजाइम भी रेगुलर यूज करेंगे तो काफी हद तक कीड़े कम हो जाएंगे। अपनी मॉपिंग में अगर आप केमिकल यूज भी करते हो तो भी आप एक ढक्कन बायोएंजाइम ऐड कर दीजिए, अपना नहाने के पानी में एक ढक्कन बायोएंजाइम ऐड कर दीजिए।
0: अच्छा।
1: तो ये थोड़ा सा एक तरह से आपको पता भी नहीं लगेगा, धीरे धीरे आप पे इम्पैक्ट करेगा।
0: यानी देखिए, नेचुरल चीज़ें बनी हुई हैं, फ्रूट से बनाए, सब्जियों से बनाए, तो ऑफकोर्स बॉडी को कोई नुकसान नहीं करेगा। फर्मेंटेड है आजकल वैसे भी बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि फर्मेंटेड खाना भी अगर आप खाते हैं तो वो आपके गट को कितना स्ट्रांग रखता है। सो अगर आप फर्मेंटेड चीज़ों का इस्तेमाल अपने घर में करें, अपने नहाने के पानी में करें, अपने घर को साफ रखने के लिए करें, अपने प्लांट्स के लिए करें, तो उसका भी एक ज़बरदस्त लेवल का फ़ायदा होता है।
1: और अभी बायोएंजाइम एंटरप्रेन्योर्स एकेडमी और भी लोग जो है वो लेक्स पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं पोल्यूशन कम करने के लिए, और उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट आ रहा है। और साथ में खेतों में इस्तेमाल हो रहा है बायोएंजाइम, तो ग्रो जो उसकी यील्ड पैदावार हो रही है उसमें काफ़ी फर्क दिख रहा है, और किसानों को पेस्टिसाइड्स भी कम यूज़ करने पड़ रहे हैं।
0: जी,
1: तो इस तरह से हर तरह से एयर पोल्यूशन के लिए भी इससे इसको यूज़ किया जा रहा है, तो इस तरह से हर तरह से हम पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए बायोएंजाइम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी और भी एक्सपेरिमेंट की जरूरत है, रिसर्च हो रही है, बट आई एम श्योर कि आगे चल के ये काफी सक्सेसफुल होंगी।
0: जी सुचेता जी, अब चलते चलते बस इतना ही जानना चाहूंगी, ये बायोएंजाइम्स बनाने के लिए जगह कितनी चाहिए होती है? क्योंकि आजकल सब ज्यादातर लोग फ्लैट्स में रहते हैं, स्पेस इतना होता नहीं है, कई बार आपके पास एनवायरमेंट नहीं होता है इतना रखने के लिए, तो कैसे रखें इसको? ये इतनी जगह भी तो चाहिए होगी।
1: मैम, ज़्यादा जगह नहीं चाहिए होती। आप अगर रेगुलर अपने घर के लिए बनाना चाहते हैं तो सिर्फ 5 लीटर का एक डब्बा ले लीजिए, उसमें आपका करीब 3 लीटर बायोएंजाइम बन जाएगा 3 महीने में। उसको छान के पतली ये जो नॉर्मल कोल्ड ड्रिंक वगैरह की बॉटल आती है उसमें रख लीजिए, और उसके बाद उसी जार में फिर से एक बैच डाल दीजिए। आपकी इतनी ही जगह लेगा वो, जब तक आप अगले ये 3 महीने आप इसको इस्तेमाल करेंगे, जो छाना हुआ 3 लीटर है काफ़ी है आपके घर में इस्तेमाल करने के लिए।
0: अच्छा,
1: और उसके बाद फिर आप जब तक वो ख़त्म होगा आपका नया बैच रेडी हो जाएगा। तो इसी तरह से आप
0: तो एक कोना ही चाहिए,
1: एक छोटा सा कोना आपके घर का, जैसे अचार डालते हो आप एक कोने में रख देते हो, उसी तरह से ले रख सकते हो। और बनने के बाद तो आप अंदर कहीं अलमीरा में रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं।
0: बिल्कुल, और मुझे लगता है कि इनको भरने के लिए भी आपको पुराने जार्स और बॉटल्स का इस्तेमाल करना चाहिए, नए मत ले आइएगा अननेसेसरी प्लास्टिक के।
1: हाँ, मैं अपने प्रोडक्ट्स भी कोशिश यही करती हूँ कि पुरानी बॉटल्स में ही दूँ, ताकि धरती पर ज़्यादा बोझ ना पड़े। और वो सक्सेसफुल भी होता है, ज़्यादातर मेरे क्लाइंट्स जो हैं या सीखने वाले हैं वो सब पर्यावरण प्रेमी हैं, तो वो हमसे पुरानी बॉटल्स में ही लेते हैं, डिस्काउंट भी मिल जाता है और बॉटल्स भी यूज़ हो जाती
0: जी
1: है।
0: जी, अब मैं ये भी जानना चाहती हूँ सुचेता जी, अगर हम एक आपसे एक प्रोडक्ट लेते हैं, किसी से भी हम एक बॉटल बायो एंजाइम लेते हैं, जो प्लांट केयर फर्टिलाइज़र हो या फिर फ्लोर क्लीनर हो, और 500 ml की बॉटल अगर हम लेते हैं, तो क्या इसका प्राइस क्या होता है? क्योंकि अक्सर हमें ऑर्गेनिक चीज़ें मार्केट में, या फिर हम जो भी चीज़ें लेते हैं नेचर फ्रेंडली सो कॉल्ड पर्यावरण के लिए बहुत अच्छी, ये सारी चीज़ें जब हम खरीदते हैं तो बहुत महंगी लगती हैं कभी कभी, तो ऐसा लगता है कि ये बहुत महंगी है। अगर कोई चीज़ 150 रुपये की मार्केट में मिली है, तो ये ऑर्गेनिक के नाम पर वही चीज़ 400 रुपये की मिलती है।
1: जी, इसमें कॉस्ट सबसे ज़्यादा लेबर की होती है, जो बनता है छानना बनाना और उसको रेडी करना।
0: जी जी,
1: तो सारा लेबर है, मशीन का इस्तेमाल नहीं होता है ज़्यादातर, तो वो काफ़ी होता है। और मैं जो फ्लोर क्लीनर अपना देती हूँ, नॉर्मली 150-160 रुपये के बीच आता है वो 1 लीटर, और आपको विश्वास नहीं होगा वो आराम से एक 3-bedroom फ्लैट में 2 महीने चल जाता है। नॉर्मली आप एक 5 लीटर की बॉटल
0: डालेंगे तो बहुत लंबा चलेगा,
1: बहुत लंबा चलता है। तो आप उसका, अब ये जो है प्लांट के लिए जब हम लेते हैं, तो मुश्किल से 15 दिन में हमारा 10-15 ml यूज़ होता है। और अगर हमने वेजिटेबल वॉश के लिए यूज़ किया, तो वही पानी फिर हम प्लांट्स में भी डाल सकते हैं। तो ये मल्टीपर्पज़ यूज़ हो जाता है। तो अगर एक बॉटल आपने ली भी है, थोड़ी महंगी भी आपको पड़ रही है, तो वो कहीं ना कहीं वो हो जाती है, सब कंपनसेट हो जाती है। क्योंकि मैं देखती हूँ लोग 5 लीटर से कम का फ्लोर क्लीनर नहीं लेते हैं, और वो 1-1.5 महीने में ख़त्म हो जाता है। ये मेरी एक बॉटल लोग लेते हैं, वो आराम से 2 महीने बाद बोलते हैं कि हमारा फ्लोर क्लीनर ख़त्म हो गया, दूसरा दे दो। तो एक तरह से बचत भी है, हेल्थ के लिए भी अच्छा है। और हाँ, कुछ चीज़ें हैं जैसे डिश सोप है, वो उतना स्ट्रांग नहीं होता है कहीं ना कहीं, तो वो थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। बट वो भी आप ये देखिए कि अगर आप उसका जो हार्मफुल इफेक्ट के कारण जो डॉक्टर से दवाइयाँ लेते हैं वो कितनी महंगी पड़ जाती है।
0: क्या बात है, बिल्कुल ये सही आपने बोला कि जो खाने में आप देखिए, खाना हम कितना भी साफ बना लें, अगर हम बर्तन ऐसी चीज़ से धो रहे हैं जिसमें केमिकल है, तो वो सब कुछ वैसे ही हो जाता है।
1: बिल्कुल,
0: तो इसीलिए आप अगर खाना ऑर्गेनिक खा रहे हैं, तो आप अपने बर्तन जो क्लीन करवा रहे हैं वो भी डिश वॉश ऐसा लें जिसमें किसी भी तरीके के कोई केमिकल ना हो। और ये जो हम बायो एंजाइम्स की बात करें, ये एक ऐसा ही प्रोडक्ट होता है
1: जी,
0: घर पे बन जाता है, आपके बर्तनों को साफ रखता है, आपकी हेल्थ को ठीक रखता है, नाली में जब जाता है तो किसी तरीके का कोई पोल्यूशन वाटर में नहीं फैलाता है।
1: और तो और मैम, ये 1 लीटर बायो एंजाइम जब नाली में जाता है तो 1000 लीटर पानी को साफ करता है।
0: क्या बात है, मतलब ये गंदा नहीं करता, ये साफ करता है,
1: साफ करता है, कुछ हद तक उसकी जो BOD COD लेवल है उसको इम्प्रूव करता है।
0: क्या बात है, और ये मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये STPs जो होते हैं, बड़े बड़े सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स भी होते हैं, उनमें भी बायो एंजाइम्स का इस्तेमाल करके उनको साफ किया जाता है,
1: किया जा रहा है, लेकिन उसका साइंटिफिक प्रोसेस होता है।
0: तो ये अपने आप में बहुत ही कमाल की साइंस है, जिसको समझ के अगर आपने इस्तेमाल करना अपनी लाइफ में शुरू कर दिया, तो ये जो बातें हो रही हैं बड़ी सारी कि क्लाइमेट चेंज और ऐसा कुछ नहीं हो सकता, कोशिश तो कर ही सकते हैं थोड़ा सा बेहतर करने की।
1: बिल्कुल होगा मैम, हम ऐसे क्यों सोचते हैं कि नहीं हो सकता है, कोशिश करेंगे तो ज़रूर होगा।
0: बिल्कुल, और सारे घर अगर इस तरीके से इस्तेमाल करें चीज़ें, और सारी जो लेडीज़ होती हैं हमारे घरों की, जो एक्चुअली में घरों को मैनेज करती हैं, अगर वो इस चीज़ के बारे में सोचें, खुद नहीं बनानी है तो एटलीस्ट परचेज करें प्रोडक्ट्स इसी तरीके के, क्योंकि आपके घर में आपके परिवार को फिट रहना है, आपको फिट रहना है, पर्यावरण को फिट रहना है, तो थोड़ा सा एक आपको कोशिश तो करनी पड़ेगी।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: बहुत बहुत शुक्रिया सुचेता साहू जी, आप हमारे स्टूडियो में आई, बहुत सारी बातें आपने बायो एंजाइम के बारे में बताई। दोस्तों, अगर आप इस पर्टिकुलर बायो एंजाइम के बारे में कुछ जानना चाहते हैं या कुछ कहना चाहते हैं तो आप हमारे इस नंबर 8010781078 पे मैसेज कर सकते हैं और बता सकते हैं आप बायो एंजाइम के बारे में क्या जानना चाहते हैं। हम आपके सारे प्रश्न सुचेता जी तक ज़रूर पहुँचाएंगे और उनके जवाब आप तक लेकर आएंगे।
1: बहुत बहुत धन्यवाद दीक्षा जी, और मैं मुझे बड़ी खुशी होगी अगर लोग इसको सीखेंगे और यूज़ करेंगे। मैं अवेलेबल हूँ उनको मदद करने के लिए हर तरह से
0: जी,
1: तो प्लीज़ कांटेक्ट कीजिए
0: जी। बहुत सारी बातें हम कर चुके हैं प्रोग्राम ग्रीन ग्रह में, आज हमने बायो एंजाइम्स के बारे में जाना। वेस्ट सेग्रीगेशन से जुड़ा ये कार्यक्रम है जहाँ पर कूड़ा निस्तारण के बारे में हम बात करते हैं, कैसे उसको किस तरीके से आप डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं कूड़े को, या फिर उसका कैसे सही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बायो एंजाइम एक ऐसी ही चीज़ है, घर में आपके बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल के छिलकों से बनने वाले कुछ ऐसे लिक्विड्स जो आपके पर्यावरण को ठीक रखते हैं, आपके घर में फ्लोर क्लीनर, वॉशरूम को क्लीन करने के लिए, बर्तनों को साफ करने के लिए, आपके प्लांट्स को ठीक रखने के लिए फर्टिलाइजर्स के फॉर्म में एकदम नेचुरल और सेफ प्रोडक्ट है। और इसके बारे में आज बहुत कुछ हमने जाना है सुचेता साहू जी से, जो कि खुद एक एंटरप्रेन्योर हैं, एक्सपर्ट हैं। केयर बायो एंजाइम नामक एक ब्रांड है इनका, जिसमें ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती हैं। सो अगर आप भी इनके बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो हमें मैसेज कर सकते हैं 8010781078 पर। फिलहाल प्रोग्राम ग्रीन ग्रह में बस इतना ही। हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे डॉक्टर ओपी भल्ला फाउंडेशन का, इको क्लब और पीटीसी फाइनेंस लिमिटेड का। फिलहाल मुझे यानी दीक्षा को दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव। दिस इज दीक्षा साइनिंग ऑफ।

0: पर हम।
1: अरे कहाँ पर अटक गए यार?
2: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, फरीदाबाद का अपना रेडियो स्टेशन।
3: युग तुम हो हटके।
4: रेडियो मानव रचना 107.8 FM में हूँ दीक्षा आपके साथ, और हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी हम लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसा कार्यक्रम जो जुड़ा हुआ है हम सभी की जिंदगियों से। ईश्वर ने हमें जीवन दिया, लेकिन इस जीवन में कभी कभी ऐसे मौके आ जाते हैं जब हमारे शरीर के कुछ अंग सही तरीके से कार्य नहीं करते हैं, और तब हमें जरूरत पड़ती है उस ऐसे एक डोनर की जो हमारी मदद करता है स्वयं ईश्वरी रूप बन के। ऐसे ही खास कार्यक्रम को आपके बीच लेकर आता है ऑर्गन इंडिया और रेडियो मानव रचना 107.8, और इस कार्यक्रम का नाम है जीवन एक अनमोल उपहार। आइए जानते हैं कुछ बहुमूल्य बातें अंग दान से जुड़ी हुई।

0: जीवन एक अनमोल उपहार है। अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें, अंगदान का संकल्प लें। अंगदान, जीवन दान।
1: आप सभी सुनने वालों को ऑर्गन इंडिया की तरफ से नमस्कार। मेरा नाम पायल है और हम सब यही आशा करते हैं कि आपका दिन बहुत अच्छे से गुजर रहा होगा। आज हम आपका स्वागत करते हैं ऑर्गन इंडिया के इस बेहद खास कार्यक्रम में, जीवन एक अनमोल उपहार, जिसमें हम अंग दान के बारे में बात करेंगे। ऑर्गन रिसीविंग एंड गिविंग अवेयरनेस नेटवर्क यानी ऑर्गन इंडिया की पहल साल 2013 में पराशर फाउंडेशन ने की थी, जो कि दिल्ली की एक गैर सरकारी सामाजिक संस्था है। अपने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से हम अंगदान, देहदान और उत्तक दान के बारे में लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हम ऑर्गन फेलियर या अंगों के खराब होने की गंभीर समस्या से पीड़ित मरीजों को, जिनके पास ऑर्गन ट्रांसप्लांट या अंग प्रत्यारोपण के अलावा कोई और विकल्प नहीं है, उन्हें ये सारी जानकारी देते हैं और वो अपने उत्तम इलाज के लिए क्या कर सकते हैं, कहां जा सकते हैं, ये भी सारा कुछ हम बता रहे हैं। आज हमारे साथ हैं ऑर्गन इंडिया की CEO सुनैना सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफर।
2: धन्यवाद पायल। आज मेरे साथ हैं एक बहुत ही खास जोड़ी, करण और रितिका नंदा, जिनका परिवार हार्ट ट्रांसप्लांट जैसे गंभीर समस्या से गुजरा है। चलिए उनसे करते हैं बातें। करण और रितिका, आपका इस शो में स्वागत है। तो करण, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि हार्ट ट्रांसप्लांट से पहले आपकी ज़िंदगी कैसे थी?
3: जी, ट्रांसप्लांट से पहले ज़िंदगी नॉर्मल ठीक ठाक थी।

0: स्पोर्ट्समैन था, फुटबॉल खेलता था, ज़िंदगी भर फुटबॉल खेली है, स्कूल का कप्तान था फुटबॉल का, उसके बाद स्टेट लेवल रिप्रेजेंट किया, और अचानक एक दिन फुटबॉल खेलते हुए हार्ट अटैक हुआ, पता नहीं चला हार्ट अटैक हुआ। हार्ट अटैक के दौरान अस्पताल पहुंचा, उन्होंने फिर मेरा एक स्टेंट डाला मेरे अंदर, बट उस टाइम तक हार्ट की कंडीशन काफ़ी ख़राब हो चुकी थी, और 4-6 महीने के बाद डॉक्टरों ने मुझे बताया कि मुझे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो रहा है, कि मुझे हार्ट ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ी।
1: तो इस वक्त आप कितने साल के थे?
0: जी उस वक्त मैं 42 वर्ष का था।
1: तो इस कम उम्र में हार्ट अटैक होना, कोई कारण था उसका?
0: जी जो डॉक्टरों को तो पता नहीं चला, अभी भी मेरी जो फाइल कहती है वो बड़ा अजीब सा एक शब्द उन्होंने अंग्रेज़ी में इस्तेमाल किया था, इडियोपैथिक, जिसका मतलब कि उनको, उनके पास कोई जवाब नहीं है हार्ट अटैक क्यों हुआ था। थ्योरी ये है कि एक ब्लड क्लॉट मेरे आयोटा जो मेन आर्टरी होती है उसमें अटक गया था, और मैं एक सोशल स्मोकर था तो शायद उसकी वजह से भी हो सकता था, बट उसके अलावा कोई ऐसा कारण नहीं था जो डॉक्टर जिसको बता सके।
1: तो रितिका जी, जब ये सब हुआ, आपके 2 बच्चे हैं, आपकी फैमिली पे क्या गुजरी?
2: पहले तो यकीन ही नहीं हुआ, और हमने तो सोचा था कि पेट दर्द हो रहा है इसीलिए हम हॉस्पिटल गए थे, वहाँ पर रियलाइज़ हुआ कि हार्ट अटैक है। रिकवर स्टेंटिंग के बाद वो कोमा में भी थे हफ्ते के लिए, जिस दौरान हमें पता नहीं था कि अगर वो जीवित रहेंगे कि नहीं। नेचुरली बहुत डिफ़िकल्ट था। फिर उसके बाद जब पता चला कि ट्रांसप्लांट चाहिए, तो फिर उस टाइम फिर 1-2 महीना ये सवाल था कि सब कुछ, घर सब कुछ छोड़ करके कैसे जाएंगे।
1: तो जब ट्रांसप्लांट की बात हुई, उस वक्त आपने आसपास पूछा होगा कि ट्रांसप्लांट कहाँ होता है, कैसे होता है, उस वक्त क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ी थी?
2: पहले तो ट्रांसप्लांट का कोई आइडिया ही नहीं था कि होता क्या है और उसमें क्या प्रोसेस है। थोड़ा बहुत पढ़ा, थोड़ा बहुत डॉक्टर्स से पूछा। डॉक्टर्स भी ऐसे हैं कि मेडिकल साइंस में चीज़ें इतनी जल्दी इवॉल्व होती हैं कि फाइनली आपको जो एडवाइस मिलती है उसको फेथ पे लेकर के आगे बढ़ना पड़ता है।
1: उसके बाद आपने क्या फैसला लिया, आप कहाँ गए ट्रांसप्लांट के लिए?
0: जी पहले तो जब पता चला कि ट्रांसप्लांट चाहिए तो दूसरा धक्का तब लगा, क्योंकि अभी हमने सोचा था कि भाई हार्ट अटैक हो गया, उससे बाहर निकल गए, अब एक नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं, बट ट्रांसप्लांट के टाइम एक झटका और लगा। तो उस स्थिति में ऐसा था कि हम इधर उधर देख रहे थे, मेरे पास सिर्फ 6 महीने थे, डॉक्टर ने उन्हें बोला था उस 6 महीने में अगर ट्रांसप्लांट नहीं हुआ तो एक जुगाड़ सर्जरी करनी पड़ती उनको, जिसमें एक वो आर्टिफिशियल पंप डालते, वो रेकमेंडेड नहीं था। तो फाइनली जाके हम एक बहुत ही भले इंसान से मिले, डॉक्टर बाला, जिन्होंने चेन्नई में, उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने मेरा टेस्ट किया और उन्होंने बोला आप भर्ती हो जाओ, आपको एक लिस्ट में डाल देंगे, और वो एक ये सरकारी लिस्ट होती है, इस लिस्ट पे डिपेंड करता है कि आपको कब ट्रांसप्लांट मिलेगा।
1: जब आप चेन्नई पहुंचे ट्रांसप्लांट के लिए, आपके मन में क्या गुजरा था और क्या हो रहा था वहाँ पे?
2: जब चेन्नई पहुंचे थे हमें कुछ पता नहीं था कि हम कहाँ कैसे रहेंगे, वहाँ पर खाने पीने का क्या ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन वहाँ पर क्योंकि इतने ट्रांसप्लांट होते और इतने हार्ट सर्जरी की फैसिलिटी है, फ्लैट्स भी मिलते हैं जो सिर्फ ट्रांसप्लांट पेशेंट्स के लिए हैं, जिनमें सफाई और मेडिकल सपोर्ट, एम्बुलेंसेज वगैरह सब अवेलेबल रहती हैं। सफाई का बहुत महत्वपूर्ण होती है इस टाइम पे, क्योंकि प्री ट्रांसप्लांट ऑल्सो एंड पोस्ट ट्रांसप्लांट ऑल्सो उनका ध्यान थोड़ा ज़्यादा रखना होता है। खाने पीने के लिए भी पार्ट टाइम हेल्प मिल जाती है। जो जितना बड़ा पहाड़ सोचा था हमने जाने के टाइम में, वहाँ पर जाकर के एक एक करके सब सुलझ गया।
1: अस्पताल में दूसरे भी पेशेंट्स होंगे जिनको हार्ट ट्रांसप्लांट की ज़रूरत थी, क्या आप उनसे मिले थे?
2: हाँ जी, बहुत पेशेंट्स थे, ऑल एज ग्रुप्स, बच्चे भी बहुत थे, लेकिन सभी वहाँ पर एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और एक फैमिली टाइप का एटमॉस्फेयर हो जाता है।
1: करण, उस वक्त अस्पताल में जब आप वेट कर रहे थे, जब आप वहाँ पे रजिस्टर हो गए, तो आप क्या सोच रहे थे उस टाइम?
0: देखिए जी, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि जब मैं चेन्नई पहुंचा और उन्होंने मेरा कोई टेस्ट किया देखने के लिए कि हार्ट ट्रांसप्लांट की आवश्यकता है नहीं है, तो एक VO2 मैक्स टेस्ट किया, उसमें मैं बॉर्डरलाइन पे निकला। तो जो डॉक्टर, थोड़ा जूनियर डॉक्टर था, वो देख रहे थे, उन्होंने बोला कि शायद हो सकता है आपको ट्रांसप्लांट की जरूरत ही ना हो। तो वहां पे एक थोड़ी दुविधा थी कि हम ऑल द वे चेन्नई आए हैं, ट्रांसप्लांट दिल्ली के डॉक्टर बोल रहे हैं ट्रांसप्लांट है, यहाँ के डॉक्टर बोल रहे हैं शायद ट्रांसप्लांट नहीं करना। उसके अगले दिन उन्होंने एक सॉर्ट ऑफ इन्वेसिव टेस्ट किया, जहां पे अंदर जाके उन्होंने मेरे हार्ट को एक्चुअली जाके कैमरा डाल के देखा, उन्होंने बोला हाँ डेफिनेटली हार्ट ट्रांसप्लांट है। उसके बाद जैसे रितिका बोल रही थी कि एक लिस्ट में डाल दिया जाता है आपको, और वो लिस्ट में आप एक बार ही डल गए तो आपको ये नहीं पता रहता कि ट्रांसप्लांट डोनर कब आपको मिलने वाला है, क्योंकि ये हार्ट ट्रांसप्लांट एक ऐसी चीज है जहां जो एक्चुअली जो डोनर होता है उनका देहांत होना पड़ता है तभी आपको ट्रांसप्लांट मिलता है। किडनी की तरह नहीं होता कि आपके पास दो हैं आप लाइव दे सकते, तो वो आप वहां पे रहना पड़ता है आपको, क्योंकि वो डॉक्टर बोलते हैं कि 4 घंटे के विंडो में आपका ट्रांसप्लांट होना पड़ता है। तो ऐसा तो है नहीं कि हम दिल्ली बैठे हैं, दिल्ली से फ्लाइट पकड़े और चेन्नई आए और फिर ट्रांसप्लांट हो, तो वहीं पे रहना पड़ता। तो हम सब कुछ, अपना कारोबार, फैमिली सब छोड़ के हम चेन्नई बैठे थे, और हमें पता नहीं चल रहा था कि कब हो। तो ये 1 महीना हो गया, और दूसरे महीने में तो मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि मुझे एक ड्रिप में डाल दिया था इन लोगों ने, और ये परमानेंटली 24 घंटे मुझे एक ड्रिप पे था, एक दवाई दी जा रही थी मेरी इंट्रावीनसली जो मेरे हार्ट का जो फंक्शन है वो बेटर करे। मतलब मुझे बिस्तर से उठ के शौचालय जाने में तकलीफ होती थी, सांस चढ़ जाता था, वो अगर दवाई नहीं ले रहा होता तो पता नहीं क्या हालत होता। एक ऐसी स्थिति पहुंच गई थी कि भाई मेरे दिमाग में तो ये आ रहा था कि भाई अब क्या करना है, ऐसे जीना है, ऐसे जीना है, कब तक जीना है, और एक अनसर्टेनिटी थी कि भैया कब मिलेगा, कैसा मिलेगा, वो ट्रांसप्लांट जो हार्ट होगा उसकी कंडीशन कैसी रहेगी, मेरे ट्रांसप्लांट के बाद मेरी कंडीशन कैसे रहेगी। तो ये सब काफ़ी चीज़ें थी, और मेरे बच्चे छोटे थे उस वक्त, अभी भी छोटे हैं, उनको चिंता थी। मैं अपने माँ बाप का इकलौता बच्चा हूँ, नॉट ओनली बेटा, तो उनके ऊपर जो बीत रही थी वो भी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो काफ़ी चीज़ें ऐसे इमोशनली होती हैं।
1: आपको ट्रांसप्लांट फिर उसकी कॉल कब आया और कैसे आया, आप कहाँ थे?
0: मैं एक्चुअली पहली बारी जिंदगी में बैठा अपनी विल लिखने के लिए। तो जब विल लिख रहा था, विल लिखते लिखते लिखते 2-3-4 बजे फोन कॉल आ गया अस्पताल से, भाई कि अब कुछ आपने लंच खाया है? मैंने कहा हाँ जी खाया है। अब कुछ मत खाइएगा। तो ये पहली इंडिकेशन थी कि शायद उनको एक हार्ट मिल गया है और वो उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो उस सीक्वेंस को देखते हुए मैंने कहा, मतलब कि मैंने विल लिखी और मेरा टेलीफोन कॉल आ गया, बट ऑल इन ऑल इट वाज बहुत अच्छी न्यूज़ थी। थोड़े एक्साइटेड थे, थोड़े नर्वस थे, नर्वस ज़्यादा थे कि अब तो आ गया टाइम, अब तो कहीं भाग नहीं सकते। तो बड़ा ही अजीब सा एक माहौल बन गया था जब तक हम अस्पताल पहुँचे।
1: पहुँचने के बाद फिर क्या हुआ?
0: पहुँचने के बाद मैंने तो मन बना लिया था कि भाई अब ये है, अब यहाँ से नहीं निकल सकते, और जो होना है खुशी खुशी होना है। तो मुझे तो वो, हम अस्पताल पहुँचे, मुझे तो वो ले गए प्रिपरेशन के लिए, तो उसमें वो तकरीबन आधा पौना घंटा लगाते हैं।
1: तो हम ज़्यादातर देखते हैं कि जो बीतती है वो पेशेंट पर तो बीतती है, लेकिन फैमिली मेम्बर्स जो प्राइमरी केयर टेकर्स होते हैं उनको बहुत स्ट्रांग रहना पड़ता है, उनको बहुत ब्रेव रहना पड़ता है जब ये ट्रांसप्लांट हो रहा होता है। तो उस टाइम आप पे क्या बीत रही थी?
2: जब ये फ़ोन आया था, एक्चुअली बहुत ऑफन ऐसे होता है कि आपको बताते हैं और फिर वो उस टाइम वो मैच करने के लिए जा रहे होते हैं, और कभी कभी वो मैच नहीं करता, तो वो आपको थोड़ी देर में बोल देंगे कि सॉरी ये मैच नहीं किया। तो मैंने एक्चुअली किसी परिवार वाले को, सबको बता दिया था, लेकिन किसी को बोला नहीं कि आप आ जाइए। जब ये अंदर गए प्रेपरेशन के लिए, तब उन सबको बोला, वो उसके बाद पहुँचे। तो इन सम वेज मैं ड्यूरिंग द सर्जरी मैं अकेली थी, लेकिन वही विश्वास था कि इधर तक पहुँचे हैं तो आगे भी हो जाएगा।
1: तो सर्जरी कितने घंटों तक चली, और आपको फिर फाइनली कब कब तक पता चला कि सब कुछ ठीक ठाक है? और
2: 40 मिनट की सर्जरी थी, डॉक्टर बाला बाहर आकर के बोले थे कि अब हो गई है सर्जरी और वो अब क्लोजअप कर रहे हैं। उसके बाद अगले 45 घंटे थोड़े महत्वपूर्ण होते हैं, जिसमें वो देखते हैं कि वो जो ऑर्गन आपको ट्रांसप्लांट किया है वो एक्सेप्ट हो रहा है, बॉडी के लिए ये नया फॉरेन ऑब्जेक्ट होता है जो अंदर डला है, तो बॉडी इनिशियली थोड़ा टाइम लगता है एडजस्ट होने में। वो 48 आवर्स में सारे हेल्थ केयर के पैरामीटर्स थोड़े इम्पोर्टेंट होते हैं।
1: करण, जब आपने पहले आंखें खोली सर्जरी के बाद, क्या हो रहा था आपके आसपास?
0: जैसे रितिका ने बोला, एक्चुअल सर्जरी 40 मिनट की होती है, बट ऑपरेशन थिएटर में घुस के और बाहर निकलने तक 4 या 5 घंटे लग जाते हैं, क्यों आप सेडेशन में होते हो, आपको दवाई दी होती है सोने की। खाली पेट था या एनेस्थीजिया मुझे रिएक्ट कर गया ये नहीं पता, पर पूरी रात एक्चुअली मुझे थोड़ी वॉमिटिंग सी रही, और वो डॉक्टर बाला एक्चुअली मेरा सर अपने हाथों में लेकर सहला रहे थे मुझको कि कुछ नहीं होता, ठीक हो जाएगा। और क्योंकि नई नई सर्जरी हुई थी तो मेरी चेस्ट एक्सपेंशन हो रही थी, तो उन्होंने बोला था भाई लेटे रहो, ज़्यादा हिलो मत, थोड़ा ये कुछ तकलीफ हो रही थी, बट फिर मैं सो गया और फिर अगले दिन सब उठा तो एवरीथिंग वाज नॉर्मल।
1: उस वक्त आपको कैसा लगा अगले दिन जब आपको पता चला ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल है और सब कुछ हो गया ठीक से?
0: एक्चुअली अब तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरे दिमाग में तो कोई डाउट नहीं था, क्योंकि एक चाहत होती है टू बी अलाइव, मतलब बच्चों के लिए या फैमिली के लिए। मैंने तो ऐसे बिहेव किया फैमिली के सामने, हाँ नॉर्मल है, होना ही था, यहाँ तक इतनी देर आए तो ये तो होना ही था। थोड़ी हंसमुख एक बात यह है कि मुझे भूख बहुत लग रही थी, तो आंखें खोलते ही मैंने बोला जी मुझे कुछ खिलाओ, और डॉक्टर क्योंकि एनेस्थीजिया था उन्होंने बोला नहीं है, लिक्विड डाइट पे रहना पड़ेगा, तो उसमें थोड़ा मैं लड़ रहा था डॉक्टरों के साथ।
1: और रितिका जी, आपको कैसा लग रहा था एक दो दिन के बाद जब क्लियर हो गया कि ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल है और आप लोग कुछ दिनों में घर जा रहे होंगे?
2: बहुत ही भगवान का शुक्राना था। 20 दिन थे पोस्ट सर्जरी हॉस्पिटल में, तो उसमें रिकवरी का था कि बेस्ट रिकवरी पॉसिबल करें, और फिर उसके बाद एक बायोप्सी होती है जिसमें वो टेस्ट करते हैं रिजेक्शन के लिए, और उसके बाद हम घर जा सकते थे।
1: करण, जब आपको होश आया और आपको पता चला कि आपका ट्रांसप्लांट हो गया है, आपको क्या बताया गया था कि ये डोनर कौन था और उसकी कहानी क्या थी?
0: जी, मैंने काफ़ी पूछताछ करी, पर अस्पताल की पॉलिसी ये है कि वो किसी को बताते नहीं है। जो डोनर फैमिली होती है उन्होंने किसी फैमिली मेंबर को खोया होता है, और वो फैमिली जब वो किसी रेसिपिएंट को देखती हैं कि भाई मेरे बेटे या मेरे भाई का कुछ ऑर्गन किसी के अंदर है, तो काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं। तो उस कारण से उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया मुझे बताने के लिए। मैंने काफ़ी उनको पूछने की कोशिश करी भाई कि इतनी, क्योंकि मैं आज जिंदा हूँ तो मैं उसकी वजह से हूँ जिसने ऑर्गन डोनेट किया था, और ये मैं पहले भी काफ़ी बारी बोल चुका हूँ, आज दोबारा बोलूँगा रेडियो पे, कि मेरे लिए तो वो इंसान भगवान है जो मुझे ज़िंदगी दे सकता है, या किसी भी कोई भी किसी और को अगर ज़िंदगी दे सकता है तो वो भगवान ही है। बस उस अननेम्ड पर्सन को मैं याद करके उसको रोज़ मैं पूछता हूँ, मैं सुबह जब हर सुबह जब मेरी आँखें खुलती हैं तो मैं उसको धन्यवाद करता हूँ कि उसने अपनी ज़िंदगी त्यागी मुझे ज़िंदगी देने के लिए।
1: और अब आपके क्या प्लान है आगे जाके? आप मुझे बता रहे थे कि आप ट्रांसप्लांट गेम्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स में।
0: जी, शुरू से स्पोर्ट्स पर्सन था, स्पोर्ट्स में बहुत शौक है। हर 2 साल ये वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स होते हैं, जहाँ पे दुनिया भर के लोग आते हैं जिनके हर किस्म के ट्रांसप्लांट्स होते हैं, वेदर किडनी हो, लिवर हो, इंटेस्टाइन हो, मेजर ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स के होते हैं। और इस साल इंग्लैंड में हो रहे हैं ये गेम्स, मैं वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, 5 इवेंट्स कर रहा हूँ, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो मेरे लिए तो इससे बड़ी और कोई बात हो नहीं सकती।
1: और अब आपने अपने स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ शुरू कर ली हैं दोबारा?
0: जी बिल्कुल, काफ़ी स्पोर्टिंग एक्टिविटी कर रहा हूँ। तकरीबन हर दिन 3 से 3.5 घंटे कुछ ना कुछ स्पोर्ट करता हूँ, या जिम जाता हूँ, या वॉकिंग कर रहा हूँ, या गोल्फ खेलता हूँ, या टेबल टेनिस खेलता हूँ। बहुत मज़ा आ रहा है। इसका परिणाम ये है कि कुछ भी खा सकता हूँ, रिपोर्टें सारी फर्स्ट क्लास हैं, तो उससे ज़्यादा खुशी की बात हो नहीं सकती।
1: और आपकी फैमिली सब खुश हैं?
2: हाँ जी, बहुत शुक्राना है। और बच्चे अब मतलब हम सब नॉर्मल फैमिली की तरह हर रोज़ झगड़ते भी हैं, खेलते भी हैं, हंसते भी हैं। जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उसी के लिए हम हर रोज़ थैंक यू बोलते हैं।
1: थैंक यू करण और रितिका, आपके साथ बात करके बहुत खुशी हुई, और आपको वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स के लिए शुभकामनाएं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप भारत का नाम खूब रोशन करेंगे।
3: थैंक यू सुनैना। मैं आप सभी श्रोताओं को बता दूं कि अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.organindia.org विजिट कर सकते हैं, या हमारे टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर्स 1800-120-3648 पर फोन कर सकते हैं, या info@organindia.org पर ईमेल भी कर सकते हैं। यदि आप अंगदान का संकल्प लेना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट www.organindia.org पर जाकर एक फॉर्म भर सकते हैं। हमारी तरफ से आपको एक ऑर्गन डोनर कार्ड और सर्टिफिकेट भेजा जाएगा। इसके बारे में आप अपने परिवार के लोगों को जरूर बताइएगा और अपने आसपास सभी को प्रेरणा भी दीजिएगा। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।
4: तो आज के इस कार्यक्रम में हमने बहुत सी बातें जानी अंगदान से जुड़ी हुई। ऑर्गन इंडिया के सौजन्य से कार्यक्रम हम आपके बीच लाए। रेडियो मानव रचना 107.8 की इस कोशिश में अगर आप भी हमारा साथ देना चाहते हैं और अपनी राय और अपने कुछ खास विचार हमारे समक्ष रखना चाहते हैं तो हमें मैसेज या कॉल करें 8010781078, या फिर हमारे इंटरनेट रेडियो रेडियो मानव रचना के माध्यम से आप ऐप डाउनलोड करके भी इस कार्यक्रम को सुन सकते हैं, और जिस भी व्यक्ति के साथ आप शेयर करना चाहें दुनिया के किसी भी कोने में कभी भी शेयर कर सकते हैं। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। जीवन एक अनमोल उपहार, इसकी अहमियत को समझिए और अपना ख्याल रखिए। दिस इज दीक्षा साइनिंग ऑफ।

0: जीवन एक अनमोल उपहार है। अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें, अंगदान का संकल्प लें। अंगदान, जीवन दान।
1: रेडियो कार्यक्रम संबंधी अस्वीकरण द ऑर्गन, ऑर्गन रिसीविंग एंड गिविंग अवेयरनेस नेटवर्क, पराशर फाउंडेशन तथा रेडियो स्टेशन, उसके मालिक, कर्मचारी, प्रबंधन, प्रायोजक एवं सहयोगी, जिन्हें यहां सामूहिक रूप से हम कहा गया है, वार्ता कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ताओं या उनके अतिथियों द्वारा दी गई किसी राय अथवा वक्तव्य की कोई जिम्मेदारी नहीं लेते। वार्ता कार्यक्रम के दौरान उसमें उपस्थित अतिथियों समेत दिए गए कोई भी बयान या मत या विषय का हम किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं करते हैं। हम इसे सत्य कहकर इसका समर्थन नहीं कर रहे। इसका निर्णय आप स्वयं करें। यद्यपि हमारी कोशिश ईमानदारी से सच कहने की ही रहेगी तथा यदि कोई अपेक्षित सत्य हो तो उस पर सवाल करने का अधिकार हमारे पास रहेगा। हमारा इरादा किसी को बदनाम करना, किसी से भेदभाव करना, नफरत फैलाना या किसी को दुख पहुंचाने का नहीं है। इसके अलावा ये कोई चिकित्सा सलाह नहीं है और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी चिकित्सा उपचार से संबंधित नहीं है। हमारा विश्वास है कि ये हमारे बुनियादी अधिकारों का हिस्सा है और साथ ही हमारा कर्तव्य है कि हम इस जानकारी या राय का प्रसार करें। हालांकि हम अन्य लोगों की लिखित, बोली गई या सांकेतिक राय की जिम्मेदारी नहीं ले सकते।
2: Hi, this is Benny Dayal. You're listening to Radio Manav Rachna 107.8 FM.

हेलो फरीदाबाद, स्वागत है आपका आपके अपने रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, और मैं हूँ आपकी होस्ट आपकी दोस्त आरजे स्नेहा, और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। एक ऐसा प्रोग्राम जो लेकर आता है आपके लिए मोटिवेशनल जर्नी, इंस्पिरेशनल स्टोरीज और साथ ही ऐसे लोगों की कहानियाँ जो आप सुनकर ना मोटिवेट हो जाते हैं। जी हाँ, मोटिवेट ऐसे हो जाते हैं क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हम अपनी लाइफ में ना हार मान चुके होते हैं या हार जाते हैं, तो किसी की जर्नी या किसी की बातें ना हमें मोटिवेट करती है कि हम भी अपनी लाइफ में कुछ कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं और सपने देख सकते हैं। तो बस इसी के लिए ये सक्सेस मंत्रा प्रोग्राम आपको सक्सेस के लिए कुछ मंत्रास देता है जो आप अपनी लाइफ में उसे फॉलो करके आगे बढ़ सकते हैं। तो इसी के साथ आज फिर से आ गई हूँ आपके लिए लेकर एक और जर्नी, जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। वो ना बहुत ही कहे तो बहुत स्पेशल व्यक्ति है। जी हाँ, बहुत स्पेशल पर्सन है, उनके बारे में आप जानते ही होंगे। अभी हाल फिलहाल में आपने ना इनका नाम बहुत सुना होगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सोनम वांगचुक की। जी हाँ, सोनम वांगचुक की जर्नी के बारे में अब हम जानेंगे, उनकी जर्नी कि क्या करा उन्होंने कि आज लोग उनको इतना पसंद करते हैं, इतना प्यार देते हैं, इतना सम्मान करते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको ना जुड़ जाना है हमारे साथ, यानी अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ, क्योंकि आज इनके बारे में होने वाली है बहुत सारी बातें। इनकी जर्नी के साथ आज हम चलने वाले हैं, इनकी जर्नी से मोटिवेशन लेने वाले हैं, इंस्पिरेशन बनने वाले हैं ये हमारे। तो इसलिए आपको ना जुड़ जाना है हमारे साथ, यानी कि अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। और इसी के साथ वक्त हो गया है अभी एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। इस ब्रेक के बाद करेंगे और भी बहुत सारी बातें। तब तक के लिए सुनिए बहुत ही प्यार सा गाना सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। फील गुड फील लाइव।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं होस्टी हूं आपके साथ और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम सक्सेस मंत्र। एक ऐसा प्रोग्राम जहां पर हम बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने अपनी सोच से, अपनी मेहनत से और उन हौसलों के कदम पर सिर्फ अपनी जिंदगी ही नहीं बदली बल्कि लाखों लोगों के जीवन में भी प्रभाव डाला है, एक सकारात्मक बदलाव लेकर आए हैं। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ही शख्सियत की, उनकी कहानी को लेकर आए हैं आज हम, जिन्होंने हमें सिखाया है कि असली सफलता सिर्फ बड़ी नौकरी या फिर पैसा कमाने में नहीं है बल्कि समाज की ना जो समस्याएं हैं उनको हल करने में है। जी हाँ, उनको ढूंढने में है, उनको सॉल्यूशन देने में है उनके लिए। और आज हमारी प्रेरणादायक जो कहानी है वो है एक इंजीनियर की, एक इनोवेटर की और एक एजुकेशन रिफॉर्मर की। मैं बात कर रही हूँ सोनम वांगचुक जी की। जी हाँ, सोनम वांगचुक सर की आज हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, सोनम वांगचुक का जो जन्म है वो 1 सितंबर 1966 को लद्दाख के एक छोटे से गांव में हुआ था। उस समय लद्दाख में शिक्षा और अन्य सुविधा बहुत सीमित थी। उनका बचपन प्राकृतिक के बीच में गुजरा लेकिन पढ़ाई का सफर बिल्कुल आसान नहीं था। जी हाँ, सबसे बड़ी चुनौती तब शुरू हुई जब वो स्कूल गए। घर में वो भोती भाषा में बोलते थे जबकि स्कूल में पढ़ाई उर्दू में होती थी। जी हाँ, सोचिए, एक छोटा सा बच्चा जो अपने टीचर की बातें ही ठीक से ना समझ पाए, इसी वजह से शुरुआत में उन्हें पढ़ाई में बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगी, मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कई बार लोगों ने उन्हें कमजोर स्टूडेंट भी समझा, लेकिन दोस्तों सोनम वांगचुक ने ना एक बात जो थी वो बहुत जल्दी समझ ली थी, और वो ये थी कि कमजोर वो नहीं होते हैं जो धीरे सीखते हैं, बल्कि कमजोर तो वो सिस्टम होता है जो हर छोटे बच्चे को एक ही तरीके से पढ़ाना चाहते हैं। जी हाँ, बचपन से ही उनके अंदर हर चीज को समझने की जिज्ञासा थी। वो सिर्फ किताबों में लिखी बातों को ही याद नहीं करना चाहते थे बल्कि उनके पीछे के लॉजिक को समझना चाहते थे। उन्हें प्रकृति को देखना, नए तरीके से सोचना और हर समस्या का हल ढूंढना बहुत पसंद था। उनके माता पिता ने भी हमेशा उनका हौसला बढ़ाया है। उन्होंने सोनम वांगचुक को समझाया कि अगर रास्ता मुश्किल हो रहा तो रुकना नहीं चाहिए। शायद इसी सोच ने उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस पैदा कर दिया जो आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। दोस्तों, आज जब हम सोनम वांगचुक की सफलता देखते हैं तो हमें लगता है कि सब कुछ आसान रहा होगा, लेकिन सच तो ये है कि उनकी जर्नी की शुरुआत भी संघर्ष से ही हुई थी। जी हाँ, लैंग्वेज बैरियर्स, रिसोर्सेस की कमी और कठिन परिस्थितियां, ये सब उनके रास्ते में थे, पर फिर भी उन्होंने कभी अपनी क्यूरियोसिटी को या सीखने की इच्छा को खत्म नहीं होने दिया। ये कहानी हमें बताती है कि हर बच्चा अलग होता है, हर किसी का सीखने का तरीका भी अलग होता है। अगर हम अपनी कमियों को अपनी पहचान बना लेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन अगर हम उन्हें अपनी ताकत बना ले तो वही कमी एक दिन हमारी सबसे बड़ी पहचान बन सकती है। और बस यहीं से हमने सोनम वांगचुक का पहला सक्सेस मंत्रा भी ले लिया, और वो ये है कि जब जिंदगी आपके सामने चुनौतियां रखे ना तो उनसे घबराइए मत, उन्हें समझिए और उनसे सीखिए और अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लीजिए। और इसी के साथ जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। मैं हूँ स्नेहा आपके साथ। सुनिए बहुत ही प्यार सा गाना, फील गुड फील लाइफ।

दूर जब दिन ढल जाए सांझ की दुल्हन

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हस्ती हूं आपके साथ और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। एक ऐसा प्रोग्राम जो आपको सिर्फ मोटिवेट ही नहीं करता है बल्कि आपको ना आगे बढ़ने

मंत्रा की जर्नी में हम चल रहे हैं सोनम मांगचुक की साथ। जी हाँ, सोनम मांगचुक के बारे में हमने पिछले सेगमेंट में उनके बचपन के बारे में जाना। अब हमने देखा कि कैसे लैंग्वेज बैरियर और सीमित रिसोर्सेज के बावजूद उन्होंने कभी सीखना नहीं छोड़ा। उन्होंने मुश्किलों को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बना लिया। और अब इस सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं उनकी इंजीनियरिंग के सफर की और उस सोच की जिसने उन्हें सिर्फ एक इंजीनियर ही नहीं बल्कि एक एजुकेशन रिफॉर्मर भी बना दिया। दोस्तों, स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद सोनम मांगचुक ने इंजीनियरिंग करने का फैसला किया। उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी श्रीनगर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। इंजीनियरिंग के दौरान उन्होंने सिर्फ मशीन्स या फिर टेक्नोलॉजी ही नहीं सीखी बल्कि ये भी समझा कि किसी की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए पहले उस प्रॉब्लम को गहराई से समझना जरूरी होता है। कॉलेज के दिनों में जब भी वो लद्दाख लौटते तो वहां से स्कूलों और स्टूडेंट्स की स्थिति देखकर उन्हें बहुत दुख होता था। बहुत से बच्चे पढ़ने में होशियार थे लेकिन एग्जाम में फेल हो जाते थे। इसका कारण उनकी इंटेलिजेंस नहीं बल्कि उनका एजुकेशन सिस्टम था। पढ़ाई का तरीका उनकी लैंग्वेज, कल्चर और एनवायरमेंट से बिल्कुल अलग था। सोनम मांगचुक जी ने एक बहुत गहरी बात समझी कि अगर सिस्टम बच्चों को समझने की जगह उन्हें सिर्फ याद करना सिखाए तो टैलेंट धीरे धीरे दब जाता है। और इसी सोच ने उनके अंदर एक नया सपना जगाया। उन्होंने डिसाइड किया कि वो सिर्फ अपना करियर नहीं बनाएंगे बल्कि एजुकेशन सिस्टम को भी बेहतर बनाने के लिए काम करेंगे। उनका मानना था कि एजुकेशन का मतलब सिर्फ अच्छे मार्क्स लेकर आना नहीं होता है बल्कि असली शिक्षा वो होती है जो इंसान को सोचना, समझना और प्रॉब्लम को सल्यूशन निकालना सिखाती है। इंजीनियरिंग ने उन्हें लॉजिकल थिंकिंग दी लेकिन लद्दाख के बच्चों ने उन्हें लाइफ की असली पर्पस दिखाई है। उन्होंने महसूस किया कि देश को सिर्फ इंजीनियर्स या फिर डॉक्टर्स की नहीं बल्कि ऐसे लोगों की भी जरूरत है जो समाज की असली समस्याओं को पहचान कर उनका हल ढूंढ सके। दोस्तों, आज भी हम अक्सर देखते हैं कि बहुत से स्टूडेंट्स मार्क्स के प्रेशर में अपनी क्रिएटिविटी को खो देते हैं। सोनम मांगचुक की जर्नी हमें ये सिखाती है कि एजुकेशन का असली उद्देश्य सिर्फ एग्जाम में पास करना नहीं होता है बल्कि जिंदगी के लिए तैयार होना होता है। उन्होंने हमेशा कहा है कि हर बच्चे के अंदर टैलेंट होता है, जरूरत सिर्फ उस टैलेंट को पहचानने की है और उसे सही दिशा देने की होती है। यही सोच आगे चलकर एक ऐसे रूप लेने वाली थी जिसने लद्दाख की एजुकेशन को ही बदल कर रख दिया। जी हाँ, यहाँ से हमें सोनम मांगचुक का दूसरा सक्सेस मंत्रा मिलता है कि सिर्फ डिग्री हासिल करना सफलता नहीं होती है बल्कि असली सफलता तब होती है जब आप अपनी नॉलेज का इस्तेमाल किसी की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए करते हैं। इसी के साथ वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। आप जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूं स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। एक ऐसा प्रोग्राम जो लेकर आता है आपके लिए कुछ खास बातें, जहां पर आप सक्सेस के मंत्रास लेते हैं और अपनी लाइफ में मोटिवेट होते हैं। जी हां, पिछले सेगमेंट में हमने जाना कि कैसे इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान सोनम वांगचुक ने एजुकेशन सिस्टम की कमियों को समझा। उन्होंने इस बात को महसूस किया कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास टैलेंट होने के बाद भी सिर्फ इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि उनको पढ़ने का तरीका जो होता है वो उनके हिसाब से नहीं होता है। लेकिन दोस्तों, सोनम वांगचुक सिर्फ समस्याओं की बात करने वालों में से नहीं थे, बल्कि उन्होंने उनका हल ढूंढने का फैसला किया और इसी सोच के साथ साल आया 1988, जिसमें उन्होंने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख यानी कि SECMOL की शुरुआत की। शुरुआत में ये एक छोटा सा इनिशिएटिव था, लेकिन इसका सपना बहुत बड़ा था, ऐसे स्टूडेंट्स को नई पहचान देना जिन्हें स्कूल सिस्टम ने फेल का लेबल दे दिया है। दोस्तों, उस समय लद्दाख में बोर्ड एग्जाम्स का रिजल्ट बहुत कम आता था, कई स्टूडेंट सिर्फ लैंग्वेज और टीचिंग मेथड की वजह से फेल हो जाते थे। समाज उन्हें कमजोर समझता था, लेकिन सोनम वांगचुक का मानना था कि फेल स्टूडेंट जैसी कोई चीज नहीं होती है, सिर्फ फेल एजुकेशन सिस्टम होता है। इस मोमेंट में पढ़ाई का तरीका बिल्कुल अलग था। यहाँ पर स्टूडेंट को सिर्फ किताबें ही याद नहीं कराई जाती थी, बल्कि उन्हें प्रैक्टिकल लर्निंग, टीम वर्क, लीडरशिप और रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाई जाती थी। स्टूडेंट्स खुद खेती करते थे, सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करते थे, कैंपस की जिम्मेदारी संभालते थे और अपने फैसले भी खुद लेना सीखते थे। सबसे खास बात तो ये थी कि यहाँ गलती करना मना नहीं था, बल्कि स्टूडेंट्स को समझाया जाता था कि गलती ही सबसे बड़ा टीचर होती है। इसी वजह से धीरे धीरे उन बच्चों का कॉन्फिडेंस वापस आने लगा जो पहले खुद को दूसरों से कम समझते थे। कुछ ही सालों में SECMOL के स्टूडेंट्स जो है उन्होंने बोर्ड एग्जाम में बेहतर रिजल्ट देना शुरू कर दिया। लेकिन सोनम वांगचुक के लिए सबसे बड़ी जीत उनके मार्क्स नहीं थे, बल्कि उनके लिए असली सफलता ये थी कि स्टूडेंट्स ने खुद पर भरोसा करना सीख लिया है। दोस्तों, आज भी हम अक्सर किसी बच्चे की काबिलियत को उसके मार्क्स से नाप देते हैं, लेकिन हर बच्चे की लर्निंग स्पीड और टैलेंट अलग होता है। किसी का टैलेंट साइंस में होता है तो किसी का स्पोर्ट्स में, किसी का आर्ट्स या फिर किसी का इनोवेशन में। अगर हम सिर्फ मार्क्स के आधार पर ही किसी को जज करेंगे तो शायद हम उसके अंदर छिपे असली टैलेंट को कभी नहीं देख पाएंगे। सोनम वांगचुक की जर्नी हमें ये सिखाती है कि एक सच्चा लीडर वही होता है जो उन लोगों पर विश्वास करे जिन पर दुनिया विश्वास करना छोड़ देती है। हमें यहाँ से सोनम वांगचुक की जिंदगी से तीसरा सक्सेस मंत्र मिलता है कि कभी भी किसी इंसान की क्षमता का फैसला उसके मार्क्स या फिर फेलियर से मत कीजिएगा। हर व्यक्ति के अंदर एक अनोखी काबिलियत होती है, बस उसे पहचानना और मौका देने की जरूरत होती है। इसी के साथ वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूँ स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। और आज सक्सेस मंत्रा की कड़ी में हम चल रहे हैं सोनम मांगचो की जर्नी के साथ। बहुत सारी बातें हम जान रहे हैं उनकी लाइफ से। तो चलिए, पिछले सेगमेंट में जैसे कि हमने जाना कि कैसे सोनम मांगचो ने SEC MOL के जरिए उन स्टूडेंट की जिंदगी बदल दी जिन्हें एजुकेशन सिस्टम ने फेल का टैग दे दिया था। लेकिन दोस्तों, सोनम चुका मिशन सिर्फ एजुकेशन तक ही सीमित नहीं था। उनका मानना था कि अगर किसी समस्या का हल ढूंढना है तो हमें प्रकृति और साइंस दोनों को साथ लेकर चलना होगा। लद्दाख एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, लेकिन यहाँ की सबसे बड़ी चुनौती है उनके लिए पानी की कमी होना। सर्दियों में यहाँ पर बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है, लेकिन गर्मियों में शुरुआती महीनों में जब खेतों के सबसे ज्यादा पानी की जरूरत होती है तो तब ग्लेशियर का पानी अभी तक पूरी तरह नहीं पिघला होता है। इसी वजह से किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। सोनम वांगचुक ने इस समस्या को बहुत ध्यान से समझा। उन्होंने सोचा कि अगर सर्दियों का पानी किसी तरीके से संभाल कर रखा जा सके और जरूरत के समय पर इस्तेमाल किया जा सके तो इस समस्या का हल भी निकाला जा सकता है। और इसी सोच के साथ जन्म लिया आइस टूपा का। जी हाँ दोस्तों, आइस टोपा एक कोन शेप्ड यानी कि शंकु के आकार की बर्फ का संरचना होती है जो सर्दियों में पानी को एक खास तरीके से हवा में छोड़ा जाता है, जहां वो जमकर धीरे धीरे एक बड़ी बर्फ की मीनार के रूप में ले लेता है। क्योंकि इसका आकार कोन जैसा होता है इसलिए धीरे धीरे पिघलता है और गर्मियों की शुरुआती दिनों में खेतों को पानी उपलब्ध कराता है। इसी सिंपल लेकिन ब्रिलियंट आइडिया ने लद्दाख के कई गांवों में पानी की समस्या को काफी हद तक कम कर दिया था। सबसे खास बात तो ये थी कि इनोवेशन के लिए किसी महंगी टेक्नोलॉजी की जरूरत भी नहीं पड़ी, ये प्रकृति की नियमों को समझकर बनाया गया और एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन था। इसी वजह से आइस टूपा की चर्चा सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में होने लगी। क्लाइमेट चेंज और वाटर कंजर्वेशन के क्षेत्र में सोनम वांगचुक के इस इनोवेशन को एक मिसाल के रूप में देखा गया। दोस्तों, अक्सर हम सोचते हैं कि इनोवेशन का मतलब सिर्फ बड़े बड़े मशीन्स या फिर एडवांस टेक्नोलॉजी होती है, लेकिन सोनम वांगचुक ने ये हमें सिखाया है कि इनोवेशन का मतलब है कि किसी असली समस्या का सरल और प्रभावी समाधान ढूंढना। उनकी सोच ने साबित कर दिया कि जब हम अपनी लोकल प्रॉब्लम्स को समझते हैं और उनका सॉल्यूशन अपनी जरूरत के हिसाब से तैयार करते हैं तब वही आइडिया दुनिया के लिए भी इंस्पिरेशन बन जाता है। यहाँ से हमें सोनम वांगचुक सर का चौथा सक्सेस मंत्रा भी मिलता है कि असली इनोवेशन वही है जो लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाए। हर प्रॉब्लम के साथ एक सॉल्यूशन भी होता है कि बस उसे देखने के लिए अलग नजरिए की जरूरत होती है। इसी के साथ वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, और मैं हूं स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। और आज सक्सेस मंत्रा में हम चल रहे हैं सोना मांगचुक की जर्नी के साथ। दोस्तों, पिछले सेगमेंट में हमने सोना मांगचुक के अनोखे इनोवेशन आइस टूबा के बारे में जाना। हमने देखा कि कैसे एक सिंपल लेकिन ब्रिलियंट आइडिया ने लद्दाख में पानी की समस्या को एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन दिया और का ध्यान अपनी तरफ खींचा। और अब जो इस सेगमेंट में हम बात करेंगे वो है उनके उस पहचान की जो उन्हें अपनी मेहनत, उनके इनोवेशन और समाज के प्रति समर्पण के लिए मिली। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए काम करता है तो उसका काम धीरे धीरे दुनिया तक पहुंच ही जाता है। सोना मांगचुक के साथ भी कुछ ऐसा ही था। एजुकेशन और एनवायरनमेंट के क्षेत्र में उनके प्रयासों को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर सराहा गया। साल 2018 में उन्हें एक ऐसे सबसे बड़े प्रतिष्ठित सम्मानों में से एक रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये अवार्ड उन्हें एजुकेशन को बदलने, इनोवेशन को बढ़ावा देने और लद्दाख के लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए दिया गया। इस सम्मान के बाद उनका नाम सिर्फ भारत

ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में और भी ज्यादा मशहूर हो गया। दोस्तों बहुत से लोग ये भी जानते हैं उनकी बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म थ्री इडियट्स के यादगार कैरेक्टर पोंसुक वांगड़ू की प्रेरणा सोनम वांगचो की पर्सनैलिटी और उनकी सोच से ही ली गई थी। फिल्म ने एक ऐसे टीचर और इनोवेटर को दिखाया जो रट्टा लगाने की जगह प्रैक्टिकल लर्निंग और क्रिएटिविटी पर विश्वास करता है। ये वही वैल्यूज है जिन्हें सोनम वांगचो सालों से अपने काम के जरिए बढ़ावा देते आए हैं। लेकिन दोस्तों इतनी बड़ी पहचान और सम्मान मिलने के बाद भी सोनम वांगचुक की जिंदगी में सादगी आज भी वैसी ही बनी हुई है। उन्होंने कभी अवार्ड्स को अपनी मंजिल नहीं माना। उनके लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड तब होता है जब किसी स्टूडेंट की जिंदगी बदलती है और जब किसी गांव को पानी मिलता है और जब कोई युवा उनकी कहानी से प्रेरित होकर कुछ नया करने का फैसला करता है। दोस्तों ये बात हमें एक बहुत बड़ा लेसन देती है कि अक्सर हम सफलता को सिर्फ नाम या फिर पॉपुलैरिटी से जोड़ देते हैं, लेकिन सोनम वांगचुक हमें सिखाते हैं कि असली सफलता तब होती है जब आपका काम दूसरों की जिंदगी को बेहतर बनाए। सम्मान और पहचान उसके बाद अपने आप आपको मिल जाते हैं। यहाँ से हमें उनका पांचवा सक्सेस मंत्र मिलता है जो कि है कि कभी भी अपनी सिर्फ पहचान बनाने के पीछे मत काम कीजिए, उसके ऊपर मत भागिए, ऐसा काम कीजिए जो लोगों के काम आए। जब आपका उद्देश्य समाज की भलाई होता है तब पहचान और सम्मान खुद आपके पास आ जाते हैं। वक्त हो गया है इसी के साथ एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड फील लाइफ।

0: स्वागत है एक बार फिर से आपका रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर और मैं हूँ स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। एक ऐसा प्रोग्राम जहाँ पर हम बात करते हैं सक्सेस होने की और आज इस सक्सेस की जर्नी में हम चल रहे हैं सोनम वांगचुक की जर्नी के साथ। उनके बारे में आज हम जान रहे हैं, बहुत सारी बातें जाने, उनके इनोवेशन जाने, उनके काम जाने और उनकी लगन जो लोगों से जुड़ी हुई है कि लोगों के लिए कुछ करना है वो बहुत ही खास है। दोस्तों पिछले सेगमेंट पे जैसे कि हमने जाना कि सोनम वांगचुक को उनके इनोवेशन और एजुकेशन के क्षेत्र के योगदान के लिए देश और दुनिया में पहचान मिली, लेकिन दोस्तों उनकी कहानी सिर्फ अवार्ड्स या फिर अचीवमेंट तक ही सीमित नहीं रही, उनका असली मिशन आज भी जारी है, एक बेहतर इन्वायरमेंट, बेहतर एजुकेशन, बेहतर भविष्य बनाना। सोनम वांगचुक का मानना है कि अगर हम प्रकृति का ध्यान नहीं रखेंगे तो आने वाली पीढ़ियों को इसका सबसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। लद्दाख जैसे पहाड़ी इलाकों में क्लाइमेट चेंज का असर साफ दिखाई देता है, ग्लेशियर का धीरे धीरे पिघल जाना, मौसम बदल रहे हैं और पानी की समस्या बढ़ती जा रही है, इसलिए वो लगातार सस्टेनेबल लिविंग और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के बारे में लोगों को जागरूक करते रहते हैं। दोस्तों सोनम वांगचुक हमेशा कहते हैं कि हमें सिर्फ डेवलपमेंट की बात नहीं करनी चाहिए बल्कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की भी बात करनी चाहिए, ऐसा विकास जो प्रकृति को नुकसान पहुंचाए बिना आने वाली पीढ़ियों के लिए भी रिसोर्सेस हमें बचा कर रखने हैं। इसी सोच के साथ उन्होंने लद्दाख में सोलर एनर्जी, इको फ्रेंडली बिल्डिंग्स और लोकल रिसोर्सेस के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया है। सेकवॉल कैंपस भी इसका एक बेहतरीन उदाहरण है, वहाँ कई बिल्डिंग्स इस तरह डिजाइन की गई है कि जो सर्दियों में भी कम एनर्जी का इस्तेमाल हो और प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर रहे। लेकिन सोनम वांगचुक का सबसे बड़ा फोकस हमेशा यूथ पर ही रहा है। उनका मानना है कि भारत के युवा सिर्फ नौकरी ढूंढने वाले नहीं है बल्कि नए आइडियाज देने वाले हैं और प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले होने चाहिए। वो स्टूडेंट को हमेशा इनकरेज करते हैं कि सिर्फ मार्क्स के पीछे मत भागो बल्कि अपनी क्रिएटिविटी और प्रैक्टिकल स्किल्स को भी डेवलप करो। दोस्तों आज के डिजिटल दौर में इंफॉर्मेशन पाना बहुत आसान हो गया है, लेकिन इंफॉर्मेशन और नॉलेज में बहुत अंतर होता है। सोनम वांगचुक कहते हैं कि सिर्फ इंटरनेट से जानकारी लेना काफी नहीं होता है बल्कि असली नॉलेज तब होती है जब हम उस जानकारी को समझकर उसका इस्तेमाल किसी रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में करें। उनकी पूरी जर्नी एक बात साफ करती है कि अगर हम अपनी रूट से जुड़े रहकर नए आइडियाज पर काम करें तो हम अपने शहर, अपने राज्य और अपने पूरे देश में बदलाव ला सकते हैं। बदलाव हमेशा किसी बड़े शहर से शुरू हो ये जरूरी नहीं है, कभी कभी एक छोटा सा गांव भी दुनिया की सोच को बदल सकता है। यहाँ से हमें उनका छठा सक्सेस मंत्र मिलता है कि अपनी नॉलेज को इस्तेमाल सिर्फ अपने करियर के लिए नहीं बल्कि समाज और प्रकृति की भलाई के लिए भी कीजिए, वही सफलता सबसे ज्यादा मायने रखती है जो दूसरों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लेकर आए। इसी के साथ वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM, फील गुड फील लाइफ।
1: ये हुई ना बात।

वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूँ स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। और आज सक्सेस मंत्रा की जर्नी में, इस खास एपिसोड में, हमने सोनम वांगचुक की प्रेरणादायक जर्नी को करीब से जाना। लद्दाख के एक छोटे से गांव में जन्मा एक छोटे से बच्चे से लेकर इंजीनियर, इनोवेटर, एजुकेशन रिफॉर्मर और एनवायरमेंटलिस्ट बनने तक का ये सफर, उनका जो सफर था, हमने ये बहुत कुछ सिखाता है। सफलता सिर्फ अपने सपने पूरे करने में नहीं बल्कि दूसरों के सपनों को भी पंख देने में होती है। दोस्तों, सोनम वांगचुक की जिंदगी से हमें कई ऐसे सक्सेस मंत्र मिलते हैं जो हर स्टूडेंट, प्रोफेशनल और हर उस व्यक्ति के लिए जरूरी है जो अपनी जिंदगी में कुछ अलग करना चाहते हैं। उनका पहला सक्सेस मंत्र है, हर चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी को समझिए। दूसरा सक्सेस मंत्रा, एजुकेशन का मतलब सिर्फ मार्क्स नहीं होता बल्कि समाज और सोच भी होती है। तीसरा सक्सेस मंत्रा है, इनोवेशन हमेशा किसी असली समस्या का हल होना चाहिए। दोस्तों, और इसी के साथ चौथा सक्सेस मंत्रा है, अपनी जड़ों से हमेशा जुड़े रहिए, वो बहुत जरूरी है। पांचवा सक्सेस मंत्र है कि कभी सीखना मत छोड़िए। तो दोस्तों, इसी के साथ ये सोनम वांगचुक की कहानी हमें बताती है कि व्यक्ति की सोच पूरी दुनिया को प्रेरित कर सकती है। अगर हम सिर्फ अपनी सफलता के बारे में सोचने की बजाय समाज की जरूरत को समझना शुरू करें तो हम भी बदलाव का हिस्सा बन सकते हैं। और इसी प्रेरणादायक संदेश के साथ आज का सक्सेस मंत्र यहीं पर समाप्त होता है। मैं हूँ आज स्नेहा आपके साथ और ले रही हूँ आपसे इजाजत। अगले एपिसोड में फिर से मुलाकात होगी एक और ऐसे ही शख्सियत के साथ जिनकी जिंदगी ने हमें सफलता का एक नया मंत्र सिखाएगा। तब तक के लिए याद रखिएगा कि सफलता सिर्फ मंजिल तक पहुँचने का नाम नहीं है बल्कि अपनी सोच को और अपने काम से दूसरों की जिंदगी में रोशनी लाने का नाम है। अपने सपनों पर विश्वास रखिए, सीखते रहिए, नए आइडियाज पर काम कीजिए और हमेशा याद रखिए, बदलाव की शुरुआत हमेशा एक छोटी सोच से ही होती है। चलिए, वक्त हो गया है इसी के साथ आपसे इजाजत लेने का। मिलेंगे अगले हफ्ते एक और नई जर्नी के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

0: नमस्कार, मैं बोल रहा हूँ सिंगरा जधाना, टोक्यो 2020 पैरोलंपिक सिल्वर ब्राउन मेडलिस्ट इन शूटिंग। आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8, फील गुड फील लाइफ।
1: रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे आप, मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ सफरनामा। सफरनामा ये खूबसूरत सा प्रोग्राम लेकर के आ जाती हूँ। हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ और बहुत सारी होती है बातें। आज का हमारा जो सफर है बहुत ही कमाल का है। आज थोड़ा स्पिरिचुअल सफर हो जाए, क्योंकि आज जहाँ मैं आपको लेकर के जा रही हूँ ना, तो बहुत कमाल जगह है। देखिए, सावन का ये महीना चल रहा है और ऐसे में मैं महाकाल, महादेव, शिव, भाई इनकी बात ना करूं, हमारे प्रभु की बात ना करूं, ये कैसे हो सकता है। और सावन के महीने में ना, मतलब एक अलग ही बात है। और हर सोमवार को देखिए, कई सारे लोग जो है ये सावन के सोमवार का उनका व्रत भी होता है। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो कि व्रत नहीं करके सिर्फ महादेव पे जल अर्पण करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो प्लान करते हैं कहीं दूर जाने का, उस जगह जाने का, और वहाँ जाके भाई वो लाभ लेने का, वहाँ जाके प्रभु पे जल अर्पित करने का, उनके एकमात्र दर्शन करने का। आज जिस जगह आपको लेकर के जा रही हूँ, इन्हें देखिए, इस जगह को जो है वो कहा जाता है द सिटी ऑफ महाकाल। क्यों और भाई ये कौन सी जगह है, ये बताऊंगी आपको कुछ ही देर में। फिलहाल आप कहीं मत जाइए, खूबसूरत गाने सुनिए, एंजॉय कीजिए ओनली ऑन रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड फील लाइफ।

अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं, मैं हूँ साक्षी आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ सफरनामा। और आज एक ऐसी जगह आपको लेकर के आज मैं जाने वाली हूँ या हम चल रहे हैं ऐसे सफर पे जो बहुत ही खूबसूरत है। हम आ चुके हैं बहुत ही पवित्र आस्थिक और रूहानी सफर पर। और देखिए ये जो प्रोग्राम है सफरनामा, ये लेकर के आती हूँ हर शनिवार सुबह 11 से 1 आपके साथ रहती हूँ। और आज हम आ गए हैं मध्य प्रदेश के एक ऐसी सदियों पुराने पवित्र शहर में जिसे पुराने जमाने में अवंतिका या उज्जैनी या द सिटी ऑफ महाकाल कहा जाता था। जी हाँ, आज हमारा जो रास्ता है ना, हम मुड़ गए हैं उज्जैन की ओर। इमेजिन कीजिए कि अब आप इस शहर आ गए हैं और सुबह सुबह का वक्त है, शिप्रा नदी के घाटों पर मंदिरों की घंटियां जो है ये बज रही हैं, हवा में धूप भस्म और चंदन की खुशबू घुली हुई है और पूरा शहर जय श्री महाकाल के नारों से गूंज रहा है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि देखिए उज्जैन जो है ना, ये सिर्फ एक शहर नहीं है, ये हमारे देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और इसे तीर्थराज माना जाता है। शिप्रा नदी के किनारे बसा ये शहर वक्त और काल की सबसे बड़ी नगरी है। आज के इस प्रोग्राम में मैं आपको बताने वाली हूँ उज्जैन की उन सदियों पुरानी गलियों के बारे में। उन गलियों में आपको ले जाऊंगी, भस्म आरती की शांति महसूस करवाऊंगी और यहाँ के स्वाद और इतिहास से आपको रूबरू कराऊंगी, आपका दिल भर दूंगी। आज का हमारा सफर बहुत ही कमाल रहने वाला है। सावन चल रहा है और सावन में हम महाकाल की नगरी ना जाएं, ऐसे कैसे हो सकता है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक, जिसके बाद होंगी और भी बहुत सारी बातें, आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुन रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं, मैं हूँ साक्षी आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ सफरनामा। सफरनामा ये खूबसूरत सा प्रोग्राम लेकर के आ जाती हूँ हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ। बहुत सारी होती है बातें, काल के चक्र को जो चलाए वही तो महाकाल कहलाए। उज्जैन की पहचान और उसका दिल सब कुछ एक ही जगह बसता है और वो है श्री महाकालेश्वर मंदिर में। जी हाँ, पूरे 12 ज्योतिर्लिंगों में से महाकालेश्वर एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो देखिए मैं आपको बता दूं कि दक्षिण मुखी है, यानी साउथ फेसिंग है। और तंत्र शास्त्र में जो दक्षिण मुखी है वो शिवलिंग का एक बहुत बड़ा महत्व होता है। जब आप मंदिर के विशाल महाकाल लोक कॉरिडोर से होते हुए अंदर जाते हैं तो हर तरफ शिव जी की अलग अलग मूर्तियां और उनके किस्से उकेर के जो नजर आते हैं दिखते हैं मंदिर के अंदर। 3 जो है वो फ्लोर्स हैं, सबसे नीचे महाकालेश्वर, बीच में ओमकारेश्वर और सबसे ऊपर नागचंद्रेश्वर, जो साल में सिर्फ एक दिन नाग पंचमी पर खुलता है। जब आप यहाँ जाएंगे तो गर्भगृह में यहाँ पर जाके शिवलिंग को आप देख सकते हैं और आपको एक ऐसी एनर्जी वहाँ महसूस होगी जिसे हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते हैं। यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे दुनिया का सारा दर्द और स्ट्रेस, जो दुख पीड़ा है, वो एक पल में खत्म हो गया है, सारी नेगेटिविटी खत्म हो गई है। चलिए इस मंदिर के बारे में, इस जगह के बारे में, उज्जैन के बारे में हम और भी बहुत सारी बातें करेंगे। सावन का महीना चल रहा है और मैं आपको महाकाल की नगरी लेकर के आ गई हूँ। तो चलिए बुला लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं। मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं सफरनामा। सफरनामा एक खूबसूरत सा प्रोग्राम लेकर के आ जाती हूं हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूं और बहुत सारी होती है बातें। आज लेकर के आई हूँ आपको महाकाल की नगरी में। जी हाँ, ये नगरी जो है यह है उज्जैन। महाकालेश्वर मंदिर की सबसे खास और अनोखी परंपरा है यहाँ हर सुबह होने वाली भस्म आरती। ये आरती सुबह 4 बजे होती है और इसे देखने के लिए लोग महीनों पहले से बुकिंग करवाते हैं। पूरी दुनिया से यहाँ उज्जैन में लोग जो है पूरी दुनिया से आते हैं। उज्जैन ही एक ऐसी जगह है जहाँ शिव जी का जो ये श्रृंगार है वो शुद्ध भस्म से जो है वो किया जाता है। और यहाँ जब आप आएंगे ना तो वो एनर्जी आप महसूस कर पाएंगे। ये जगह ही कुछ इस तरह से है। और मैं आपको बता दूं कि देखिए सुबह सुबह का जो 4 बजे की आरती है ना, इसे देखने के लिए बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है और काफ़ी ज़्यादा लाइनें भी लगती हैं और पहले से पहले लोग जो है ऑनलाइन बुकिंग भी करवाते हैं। तो अगर आप भी प्लान कर रहे हैं महाकाल की नगरी जाने का तो आप भी यहाँ पहले से ही बुकिंग जो है वो करा सकते हैं और यहाँ आ सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ नगरी जो है उज्जैन ही एक ऐसी जगह है जहाँ शिव जी की जो श्रृंगार है वो शुद्ध भस्म से किया जाता है। पुराने ज़माने में ये ताज़ा जो है वो भस्म होती थी, पर आज इसे जो है वो शुद्ध कोयले और जो उपले होते हैं, जो गोबर के कंडे होते हैं, उससे जो भस्म है वो तैयार की जाती है, बनाई जाती है। जब पंडित जी ढोल नगाड़ों और शंख के गूंज के बीच शिवलिंग पर भस्म रमते हैं तो पूरा जो वो जगह जो है ना, हर हर महादेव के नारों से गूंज उठता है। और भाई मैं आपको बता दूं, मैंने भी यहाँ पर आरती जो है ये देखी है जब मैं पहली बार गई थी। वो दृश्य देख के वो मतलब जैसे रोंगटे जो है वो खड़े हो जाते हैं। और देखिए भस्म जो है, भस्म आरती जो है, भस्म हमें सिखाती है कि आखिरी में सबको मिट्टी में मिल जाना है, राख बन जाना है, और इसीलिए घमंड छोड़ दो और भक्ति में जियो। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जिसके बाद होंगी और भी बहुत सारी बातें। आज महाकाल की नगरी आपको लेकर के आ गई हूँ तो करेंगे और भी बहुत सारी बातें। फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड फील।

दो सौंधे सौंधे से जिस्म जिस वक्त एक मुट्ठी में सो रहे थे। बता दो उस वक्त मैं कहां था, बता दो उस वक्त तू कहां थी।

तुम्हारी लौ को पकड़ के जलने की आरजू में जब अपने ही आप से लिपट के सुलग रहा था, पता तो उस वक्त मैं कहां था, पता तो उस वक्त तू कहां थी।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुनप्रयाग. मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ सफरनामा. सफरनामा एक खूबसूरत सा प्रोग्राम लेकर के आ जाती हूँ हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ और बहुत सारी होती है बातें. साथ ही आज आपको जैन लेकर के आई हूँ और पानी की हर लहर में पाप धुल जाते हैं जब शिप्रा के तट पर भक्ति का मेला लगता है. महाकाल मंदिर से थोड़ा ही दूर बहती है पवित्र शिप्रा और शिप्रा नदी ये बहती है और इसका सबसे प्रसिद्ध घाट है राम घाट. कहते हैं कि भगवान राम ने अपने वनवास के दौरान और ये उस दौर में और बाद में अपने पिता दशरथ जी का जो पिंड है वो दान इसी घाट पर किया था. हर 12 साल में यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा मेला लगता है और सिंहस्था जो कुंभ मेला है यहाँ पर लगता है, जहाँ लाखों साधु और भक्त डुबकी लगाते हैं. शाम के वक्त रामघाट का नजारा देखने लायक है. जब सूरज ढलता है तो घाट पर हजारों दिए पानी में भाए जाते हैं और शिप्रा आरती, जो शिप्रा नदी की आरती है, वो शुरू होती है. जब आप यहाँ शाम को जाएंगे तो इस घाट पे सीढ़ियों पर बैठकर जब आप तैरते हुए दिए को आप देखेंगे, उन बहुत सारे दिए को देखेंगे, तो ऐसा लगेगा जैसे आकाश के तारे जमीन पर बैठ गए हों, पानी में आ गए हों. और राम घाट उज्जैन का वो कोना है जहाँ सुकून और आस्था एक साथ बहते हैं. तो चलिए इस जगह को थोड़ा और जिया जाए, थोड़ा और महसूस किया जाए. मैं आपको थोड़ा और आगे लिए चलती हूँ, लेकिन उससे पहले अभी लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक. कहीं मत जाइए, खूबसूरत गाने सुनिए, एंजॉय कीजिए. ओनली ऑन रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड फील.

और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खरे को भी खोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है।

बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है। हीरो से जोकर बन जाना पड़ता है।

0: हजार है, खाता है कूड़ा भी, रहता है भूखा भी, फिर भी को मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।
1: कहिए श्रीमान, आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं। मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं सफरनामा। सफरनामा ये खूबसूरत सा प्रोग्राम लेकर के आ जाती हूं हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूं और बहुत सारी होती है बातें। और आज मैं आपको लेकर के आई हूँ एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत जगह, एक ऐसी जगह जिसे कहा जाता है द सिटी ऑफ महाकाल। जी हाँ, आज हम आ गए हैं उज्जैन। साथ ही आज उज्जैन हम आए हैं और एक खूबसूरत आपको बात भी बताती हूँ। अब चलते हैं एक ऐसी जगह जहाँ खुद भगवान कृष्ण ने अपनी शिक्षा पूरी की थी, सांदीपनी आश्रम। द्वापर युग में भगवान कृष्ण, उनके भाई बलराम और उनके मित्र सुदामा जो हैं, वो इसी आश्रम में आके उन्होंने महर्षि सांदीपनी से ज्ञान लेने वो आए थे। उन्होंने अपनी शिक्षा जो है वो ग्रहण करी। कहते हैं कृष्ण जी ने सिर्फ जो है वो 64 दिनों में 64 जो आर्ट्स है, जो कलाएं हैं, वो 4 वेद जो है वो सीख लिए थे। आश्रम के अंदर एक छोटा सा तालाब है जिसे गोमती कुंड कहते हैं। कहानी है कि कृष्ण जी ने अपने गुरु के लिए सारा पवित्र जो नदियों का पानी है इसी जगह बुला दिया था ताकि उनके गुरु को दूर ना जाना पड़े। जब आप इस जगह जाएंगे, आश्रम के आंगन में जब आप वॉक करेंगे, तो वहाँ की शांति और पुरानी लकड़ी के पेड़ों की जो छांव है वो आपको गुरुकुल वाले जमाने की याद दिला देंगे। और ये जगह हमें बताती है कि भगवान वो, या भगवान हो, इंसान हो, या देखिए कोई भी हो, ज्ञान के बिना जिंदगी अधूरी है। इसीलिए ज्ञान जो है ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर जिंदगी जीनी है तो भाई भगवान ने भी ज्ञान प्राप्त किया, तो इंसान क्या चीज़, इंसान जो है देखिए उनको भी ज्ञान प्राप्त करना होगा आगे बढ़ने के लिए। इसी के साथ साथ सुबह की शुरुआत अगर देखिए थोड़े से तीखे मीठे के संग हो तो दिन अच्छा हो जाता है, ये सुना है ना आपने, या देखिए पेट पूजा हो जाए तो अच्छा होता है। उज्जैन आए हैं और कुछ खाएं ना, ये कैसे हो सकता है। देखिए खाने पीने के भी बारे में आपको बताऊंगी, मुझे पता है आपका मन हो जाता है ना, मतलब अब हो जाता है कि भाई साक्षी जी अब जल्दी से बताओ कुछ खाने पीने की जगह है, हमने इतनी सारी जगह जो है वो घूम ली है, अब भूख भी लगी है। तो अब साक्षी आपको बताएगी कि कौन सी जगह आप जाकर क्या खा सकते हैं, वो बात करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. Feel good, feel life.

वेलकम बैक रेडियो मैनव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ सफरनामा। सफरनामा ये खूबसूरत सा प्रोग्राम लेकर के आ जाती हूँ हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ और बहुत सारी होती हैं बातें। अब थोड़ी पेट पूजा की बात कर ली जाए तो उज्जैन का जो स्ट्रीट फूड है वो बहुत ही लाजवाब है। इसका सबसे बड़ा हीरो है यहाँ की इंदौरी उज्जैनी पोहा और जलेबी। यहाँ का जो पोहा है बाप रे बाप, बहुत ही ज्यादा टेस्टी है, एकदम सॉफ्ट, और जो भाप में पका हुआ ये होता है, स्टीम जो है वो किया होता है, और जिसे ऊपर इसके ऊपर जो है वो मसालेदार जो मसाला है डाला जाता है, जो जीरा मसाला है वो डाला जाता है, और बारीक प्याज और क्रंची जो रतलामी सेव है वो डाली जाती है, और साथ में गर्मा गर्म रस से भरी हुई जलेबी या फिर मावा बाटी जो है यहाँ मिलती है। और यहाँ पर टावर चौक के पास सुबह सुबह लाइन लग कर लोग खड़े हो जाते हैं पोहा जलेबी खाने के लिए। तो वही तीखे मीठे का जो ब्लेंड है ना, ये बड़ा पसंद आएगा आपको भी। शाम को यहाँ पर दाल बफला जो है, जो बाटी जैसी होती है पर घी में डूबी होती है, और वो खाना एक असली जो मालवा एक्सपीरियंस जो है वो मालवा एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा। उज्जैन का खाना सिंपल है पर इसमें जो स्वाद है ना वो बहुत ही ज़्यादा अलग है। आपको नॉर्मली कहीं पर जब आप पोहा खाएंगे ना वो स्वाद आपको नहीं मिलेगा। जो स्वाद आपको यहाँ के पोहे में मिलता है, यहाँ की जलेबी में मिलता है, और काफ़ी ज़्यादा क्रंची जलेबी होती है, रस से भरी होती है, कोई सौगी नहीं, बहुत क्रंची, बहुत मजा आता है। तो चलिए एंजॉय कीजिए थोड़ा सा, आप इसको थोड़ा सा एंजॉय कीजिए, वही गानों को भी एंजॉय कीजिए और इस खाने को भी। मैं लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मन जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ सफरनामा। सफरनामा यह खूबसूरत सा प्रोग्राम लेकर के आ जाती हूँ हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ। बहुत सारी होती हैं बातें। आज आपको लेकर के आई हूँ मैं महाकाल की नगरी में, उज्जैन में। उज्जैन में एक ऐसा मंदिर है जिसका जो चमत्कार देखकर पूरी दुनिया के जो लोग हैं या साइंटिस्ट हैरान है। काल भैरव मंदिर। काल भैरव को उज्जैन का कोतवाल यानी कि रक्षक माना जाता है। कहते हैं कि उज्जैन में रहने वाले किसी भी राजा या मंत्री को रात को शहर में रुकने की इजाजत नहीं होती है, क्योंकि असली राजा सिर्फ महाकाल और काल भैरव है। इस मंदिर की सबसे अनोखी बात यह है कि यहाँ भगवान काल भैरव को प्रसाद के रूप में मदिरा चढ़ाई जाती है। जब आप यहाँ जाएंगे, अपनी आंखों से देखेंगे तो आपको ये चीज समझ में आएगी। और देखिए, पूरे जो दुनिया से यहाँ पर लोग आते हैं और ये जो रहस्य है ये देखने के लिए कि काल भैरव के दर्शन जो है वो बिना उज्जैन की यात्रा जो है अधूरी है। और अगर देखिए कोई राजा है या कोई मंत्री है या कोई ऐसा है जो रूल कर रहा है, वो अगर जाएगा भी उस जगह तो रात नहीं रुक सकते हैं। आपको उसी अगर सुबह जाना है तो आपको शाम तक वहाँ से लौट कर आ

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं। मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं सफरनामा। सफरनामा एक खूबसूरत सा प्रोग्राम लेकर के आ जाती हूं। हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूं और बहुत सारी होती हैं बातें। आज आपको लेकर के आ गई हूं महाकाल की नगरी उज्जैन में। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि यहाँ देखिए, आपको अगर पता हो, ग्रीनविच से पहले उज्जैन को दुनिया का प्राइम मेरिडियन जो है वो माना जाता था। और ये भी आपको बता दूं कि एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन के हिसाब से उज्जैन पूरे पहाड़ और जो पृथ्वी है उसका एक सेंटर पॉइंट था। इसी वजह से राजा जय सिंह ने यहाँ 18th सेंचुरी में वेदशाला यानी कि जंतर मंतर बनवाया। यहाँ जो है वो पत्थर से बनी बड़ी बड़ी जो यहाँ पर कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, यहाँ पर एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनसे आज भी सूरज और तारों की एग्जैक्ट पोजीशन और टाइम का पता लगाया जा सकता है। और साथ ही मैं आपको बता दूँ कि जब आप यहाँ जाएंगे तो सम्राट यंत्र पर धूप की परछाई से एग्जैक्ट टाइम मैच आप कर सकते हैं और फोन के टाइम से एग्जैक्ट टाइम मैच कर लीजिए, ये बिल्कुल एक्यूरेट होता है। और उज्जैन सिर्फ भक्ति का नहीं बल्कि पूरे जमाने का साइंस और एस्ट्रोनॉमी का सबसे बड़ा हब है। चलिए इसी के साथ लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ सफरनामा। सफरनामा आज इस प्रोग्राम में लेकर के आई हूँ आपको उज्जैन। जी हाँ, हर शनिवार आपको लेकर के मैं कई कई अलग अलग जगहों पर लेकर के जाती हूँ और सावन का महीना चल रहा है तो इसीलिए आज आपको लेकर के आ गई हूँ महाकाल की नगरी। महाकाल मंदिर के बिल्कुल पास स्थित है 51 शक्ति पीठों में से एक हर सिद्धि माता मंदिर। और देखिए, कहते हैं कि यहाँ माता सती की कोहनी यानी कि एल्बो गिरी थी और यहाँ के जो राजा थे विक्रमादित्य की एक कुल देवी थी और उन्होंने माता को खुश करने के लिए 11 बार अपना सर कलम करके अर्पित किया था और हर बार माता ने उन्हें नया जीवन दान दिया। और ये लोक कथा है जो लोग वहाँ कहते हैं। मंदिर के कोर्टयार्ड में दो बहुत ही विशाल ऊंचे जो स्तंभ है, जो पिलर्स हैं, लैम्प पिलर्स हैं, वो बने हुए हैं और इन पिलर पर लगभग 1100 दिए बने हैं। शाम को जब पंडित जी यहाँ पर इन पिलर्स पर एक साथ दिए जलाते हैं तो पूरा मंदिर सुनहरी रोशनी से नहा उठता है और वो 1100 दियों की चमक देखने का एक ऐसा मैजिकल एक्सपीरियंस जो है वो आपको दिल को ना आपके वो भक्ति से भर देगा। जरूर देखिएगा, ये जरूर कहूंगी मैं। उज्जैन का इतिहास जो है वो महान राजा विक्रम आदित्य के बिना अधूरा है। वो अपनी प्रजा के लिए न्याय यानी कि जस्टिस, बहादुरी और उनके जो नवरत्न यानी कि जो 9 जेम्स थे उनके लिए जाने जाते हैं, जिनमें महान पोएट कालिदास और वराहमिहिरा शामिल थे। उन्हीं की याद में बना है विक्रम कीर्ति मंदिर और इस म्यूजियम में पुराने जमाने के कॉइन्स, पाम लीव्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स और साथ ही साथ पुरानी जो चीजें हैं वो संभाल के रखी गई हैं। और पास ही है चिंतामन गणेश टेम्पल जहां लोग अपनी चिंताओं को दूर करने के लिए गणेश जी के दर्शन करते हैं। विक्रम आदित्य की जो बेताल पच्चीसी है इसकी कहानी आज भी जो उज्जैन है इसकी हवाओं में बहती है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं एक आइडियल राजा कैसा होना चाहिए ये कहानी यहाँ की बताती है। चलिए लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप. मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ सफरनामा. सफरनामा ये खूबसूरत सा प्रोग्राम लेकर के आ जाती हूँ हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ. बहुत सारी होती हैं बातें. शिप्रा नदी के किनारे एक ऊंचाई पर स्थित है मंगलनाथ मंदिर. और ये जो है मंदिर जो है ये बहुत पुराना मंदिर है और एस्ट्रोलॉजी और साथ ही साथ जो पुराने अगर उसकी बात की जाए बाटों की बात की जाए तो उसके हिसाब से इस जगह को मंगल की बर्थ प्लेस यानी कि मार्स की जो बर्थ प्लेस है यानी कि जन्मभूमि जो है ये माना जाता है. जिन लोगों के हॉरोस्कोप में मंगल दोष है वो पूरी दुनिया से जिन लोग जो हैं जिनमें मंगल जिनका कहा जाता है कि भारी है वो यहाँ आते हैं और यहाँ पर आके भात पूजा यानी कि चावल से होने वाली पूजा कराते हैं. मंदिर से नीचे बहती हुई शिप्रा नदी और चारों तरफ से हसीन जो भाई खूबसूरत जो पेड़ है उनका व्यू जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, पीसफुल है. जब आप यहाँ जाएंगे सनसेट देखेंगे तो नज़ारा बहुत ही शांत रहेगा. मंगलनाथ मंदिर यहाँ देखिए आप बताता है कि उज्जैन के हर एक कोने में यूनिवर्स का कोई ना कोई रहस्य छुपा हुआ है. चलिए इसी के साथ अब एक छोटा सा वक्त हो गया है एक ब्रेक लेने का और बहुत सारी बातें हो रही हैं तो कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम. फील गुड फील लव.

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं सफरनामा। सफरनामा ये खूबसूरत सा प्रोग्राम लेकर के आ जाती हूँ हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ। बहुत सारी होती हैं बातें। आज हम आए उज्जैन, महाकाल की नगरी। सावन का महीना चल रहा है और इसीलिए आज आपको लेकर के आ गई हूँ उज्जैन और बहुत सारी आज हमने बातें करी हैं। देखिए हमारे इस पवित्र आस्तिक और सुकून भरे सफरनामा ये जो प्रोग्राम है, अब वक्त हो गया है कि मैं आपसे इजाजत लूं महाकाल की पावन नगरी में। पता ही नहीं चला कि टाइम इतनी जल्दी कहाँ चला गया और आज हमने दक्षिण मुखी महाकाल के दर्शन किए, भस्म आरती के जादू को महसूस किया, कृष्ण जी के गुरुकुल की शांति देखी और काल भैरव के रहस्य को समझा। उज्जैन एक ऐसा शहर है जो आपसे कहता है कि जिंदगी में चाहे कितने ही शोर और परेशानी क्यों ना आ जाए, आगे सब उसके गेट छोटा है और इसीलिए शांति से जियो और सब पर प्यार बांटो। और देखिए अब वक्त हो गया है कि आप देखिए यहाँ पर प्यारे प्यारे गाने आप सुने और मुझे अब इजाजत लेने का टाइम जो है वो आ गया है। तो भाई मुझे दीजिए इजाजत और मुलाकात आपसे होती रहेगी। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, feel life. Bye-bye. Take care.

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर स्वागत है आप सभी का प्रोग्राम ये मेरी लाइफ में और मैं हूं प्रागा आपके साथ और ये प्रोग्राम जहां मैं आप लोगों के पास रहती हूं 1 बजे से 3 बजे तक जी हां और ये वक्त होता है जहां हम ढेर सारी बातें करते हैं और आज आपके लिए भाई बहुत कुछ लेकर के आई हूँ क्योंकि आज कुछ ऐसा होने वाला है जिसको सुनकर आपको हैरानी भी होगी लेकिन कई सारे काम आपके आसान भी हो जाएंगे। अब वो कैसे और क्या लाई हूँ ये आपको मैं बताऊंगी थोड़ी सी देर में। फिलहाल आप मुझे बताइए कैसे हैं आप, क्या हालचाल, और मैसेज आप कीजिए हमें 8010781078 हमारा नंबर है। इस नंबर पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कोई बात आपको शेयर करनी है या कोई मैसेज आप बाकी लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं या कोई गाना आपको सुनना है, कोई सॉन्ग आप किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए पहले एक गाना इंजॉय करते हैं, उसके बाद आपको बताऊंगी कि आज के प्रोग्राम में क्या है खास। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ और मैं हूं प्रांगा आपके साथ।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ और मैं हूँ प्रांका आपके साथ. और मैं आज आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ कुछ बेहद इंटरेस्टिंग हैक्स एंड फैक्ट्स, जी हाँ, जिसको सुनकर आपको मज़ा भी बहुत आएगा और साथ ही आपके कामों में हेल्प आपको मिल जाएगी. जी हाँ, क्योंकि आजकल हम हैक्स से काफ़ी हैक्स होते हैं जिनको हम अपने घर में ट्राई करते हैं, हम अपनी ज़िंदगी में ट्राई करते हैं, अपने काम की जगह पर ट्राई करते हैं, जिस वजह से काम हमारा काफ़ी आसान हो जाता है. और आप सभी जानते हैं कि मैं ये आप लोगों के लिए बड़े चुन चुन कर हैक्स को लेकर के आती हूँ, फैक्ट्स को आपको बताती हूँ. तो चलिए आज के प्रोग्राम में भी कुछ ऐसा ही हम करने वाले हैं. और उससे पहले आपका मैं दोबारा चाहूँगी कि साथ जो है वो बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आप जब हमें मैसेज करते हो, अपनी बातें जब हम तक पहुँचाते हो, तो एक तो हमें बड़ा अच्छा लगता है और दूसरा ये कहूँगी कि आपकी बातें कई बार बहुत ज़्यादा एक आइडिया या मोटिवेशन दे जाती हैं और ये बहुत अच्छा लगता है हमें देख करके. और कितने मैसेज ऐसे होते हैं जो हम बाकी लोगों को भी आपके मैसेज बताते हैं. तो बस यही साथ आप बनाए रखें रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ. नंबर है हमारा 8010781078. तो चलिए, हैक्स तो आपको बताऊँगी, लेकिन अभी क्योंकि वक्त हो गया है एक और बहुत ही छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, तो आपको सुनाती हूँ दो बहुत ही प्यारे प्यारे से गाने. रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ और मैं हूँ प्रांका आप

रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं। मैं हूं प्रियंका आपके साथ और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ। और चलिए मैं आपको बताती हूँ कुछ बेहद इंटरेस्टिंग हैक्स। अच्छा, आजकल ना घबराहट हमें ज़्यादा होने लगती है ना, क्योंकि इतना काम का प्रेशर, और उस प्रेशर के चलते जब हम चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाते हैं या समझ नहीं आता कि इस काम को फिक्स कैसे करना है या उसे हैंडल कैसे करना है, तो अक्सर घबराहट का सामना हमें करना पड़ता है ना। और घबराहट किसी भी काम में हो सकती है। कई बार हमें किसी की बात नहीं अच्छी लगी, हमें घबराहट शुरू हो गई, या कोई काम हम उसे कर सकते हैं, कैपेबल है, बट इतना काम के प्रेशर के चलते अगर वो चीज़ नहीं हो पा रही है तब घबराहट हो जाती है, या कोई हमें कुछ कह दे तब घबराहट हो जाती है। घबराहट का कोई एक रीज़न नहीं है, कई सारी चीज़ों पर हम रिएक्ट कर जाते हैं और उस वजह से एक घबराहट का हमें सामना करना पड़ता है। और ख़ास तौर से उन लोगों के साथ

होता है जो अपनी बातें एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, जो बोल नहीं पाते हैं कि हाँ हम ये चीज़ कर सकते हैं, हाँ हम इस चीज़ के लिए कैपेबल हैं, या और भी बहुत कुछ। ऐसे लोग जो बोल नहीं पाते हैं, अपनी बातें रख नहीं पाते हैं, उनके साथ घबराहट का जो ये मामला है वो और ज़्यादा देखने में आता है। तो मैं तो आपसे कहूँगी कि आप घबराइए नहीं, क्योंकि घबरा करके आप अपना काम खुद खराब कर रहे हैं और आप अपने आप को कहीं ना कहीं आप डाउन समझ रहे हैं, इस वजह से घबरा रहे हैं। नहीं, आप घबराहट का रीज़न खुद को समझिए ही नहीं, आप बल्कि ये सोचिए कि इस काम को मैं कर सकती हूँ, और बोलने के बजाय इस काम को आप करके दिखाइए। तो देखिए, किसी भी तरह से घबराहट हो सकती है, लेकिन अब अगर आप चाहकर भी, मतलब बहुत चाहते हो कि घबराहट ना हो या कम हो जाए, उसके बाद भी अगर घबराहट कम नहीं हो पाती है, तो मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताती हूँ जिससे आपकी जो घबराहट है ना उसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। अच्छा, किसी काम को करने से आपको घबराहट हो रही है तो उस काम को करते वक्त च्युइंगम चबाए, जी हाँ, घबराहट कम हो जाएगी। और पता है ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जब हम घबरा रहे होते हैं या किसी चीज़ को लेके परेशान होते हैं और अचानक से हमारा ध्यान भटक जाए, यानी किसी दूसरे काम में लग जाए, तो हमारा पूरा ध्यान उस दूसरे काम पर चला जाता है ना। और यही चीज़ इस केस में आपको लागू करनी है कि आपको अपना ध्यान च्युइंगम चबाने में भटकाना है, और जब आप ऐसे करोगे तो घबराहट जो है वो चली जाएगी, कम हो जाएगी। और इसको आप करके देखिएगा, आप च्युइंगम अपने पास में रखें और ये जब भी आप करें उसके बाद आपको कैसा महसूस हुआ, आप क्या फील कर रहे हैं, या अगर आप नर्वस हो रहे हैं, घबरा रहे हैं तो कितना हो रहे हैं, कितना परसेंट आप फील कर रहे हो, ये सारी चीज़ें आप मुझसे ज़रूर बात करना इस पर। और नंबर हमारा है 8010781078, आप इस नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं। चलिए, अब आपको कुछ और भी फैक्ट्स हैं जो मैं बताऊंगी और साथ के साथ सुना रही हूँ गाने, तो चलिए अगला गाना एंजॉय करते हैं। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ, और मैं हूँ प्रांका आपके साथ।

0: मैं हूं प्रियंका आपके साथ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम की मेरी लाइफ. और ये मेरी लाइफ में आज मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग हैक्स बता रही हूं जिसका काम जो है जब हम कहीं फंसे होते हैं ना तब बड़ा देखने में आता है. और आज मैं खुद को मजबूत कैसे बनाना है खुद के लिए जो चीज़ें होती हैं ना वो मैं बता रही हूँ आपको. उसके लिए हो सकता है आप सोचें कि ऐसा हम कैसे कर सकते हैं भाई. तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैं किस चीज़ पर बात कर रही हूँ. बहुत से लोग होते हैं जो अपने आप को मजबूत नहीं समझते हैं या अपने आप को बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग तरीके से प्रेजेंट करना वो नहीं समझ पाते हैं, उनको नहीं आता है. और घबराहट, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रही थी कि घबराहट लोगों को ज़्यादा होने लगती है, अपने ऊपर बिलीव नहीं कर पाते हैं, अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं बना पाते हैं. अगर आप भी उनमें से हैं जो ये करते करते थक चुके हैं, बहुत सारे जिसने जैसा बोला कि आप ऐसे करो वैसे करो, आप वही चीज़ें कर रहे हैं लेकिन आपको कोई भी 1% भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है. मतलब आप जैसे पहले घबराते थे, जैसे पहले अपने आप को आप बिलीव नहीं कर पाते थे, ऐसे ही आज भी अगर आपके साथ में चल रहा है तो मैं आपको एक ऐसी एक्सरसाइज बताती हूँ जिससे आप कुछ ही दिन में मेंटली स्ट्रांग हो पाएंगे और अपने आप पर बिलीव कर पाएंगे. और सच में इस चीज़ पर आप बिलीव करो, ये वाकई में काम करती है. तो मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या करना है. आपको शीशे के सामने खड़े हो जाना है और खड़े होकर खुद से बात करनी है. जितना हो सकता है आप बात कीजिए कुछ अच्छी चीज़ों पर, और जो कमियां हैं उसको आप अपने से शेयर करें, मतलब आप बोलें, लेकिन उसको फिक्स मत कीजिए. उसको ठीक कैसे करना है उस पर बात करें, यानी कि अपने आप से अच्छी बातें करनी है. अपने अंदर किसी भी तरह की कोई कमी मत निकालिए, ना ही ढूंढने की कोशिश कीजिए. बट हाँ, अगर आपको लगता है कि भाई ये चीज़ मुझे लगता है ठीक करने की ज़रूरत है, तो वो भी आईने के सामने रखिए. मतलब आप ही समझ लीजिए, आईने के उस तरफ भी आप हैं और इस तरफ भी आप हैं, और इस तरफ जो है जिसमें काफ़ी सारी कमियाँ भी हैं, लेकिन उस तरफ जो खड़ा है जो आप ही हैं और आप बहुत स्ट्रांग हैं. पता है आप ये रोज़ करोगे ना, आप यकीन मानिए कि आप कुछ ही दिन में मेंटली स्ट्रांग हो पाएंगे, वो मज़बूत आप हो पाएंगे. और फिर एक प्रेजेंटेशन जो होती है ना वो बहुत ऑसम होती है. आपको लोग ना केवल पसंद करेंगे बल्कि बात करना चाहेंगे. और इस बारे में तो मैं अक्सर बात करती भी हूँ आपसे कि शीशे के सामने खड़े होकर बात कीजिए, आईने को अपना बनाइए, आप शीशे से प्यार कीजिए क्योंकि वही आपको मजबूत बनाएगा. तो ये एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है. जी हाँ, तो ये आप करेंगे तो इसका रिजल्ट आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा. तो ये जब भी आप करें और कोई अगर चेंज आया है आपकी लाइफ में तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं. नंबर हमारा है 8010781078. आप सुनाती हूँ आपको एक गाना जो कि आईना से ही जुड़ा है. तो आइए इंजॉय करते हैं उस गाने को. रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूँ प्रियंका और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ.
1: घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर

मैं हूं प्रांका आपके साथ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर. प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ. और आज के प्रोग्राम में ना केवल आपको हैक्स बता रही हूं बल्कि फैक्ट्स पर भी आज बात कर रही हूं. और अगला जो फैक्ट मैं आपको बता रही हूं ना, ये आप वाकिफ होंगे. अच्छा, कभी ऐसे होता है कि आपको सिर्फ जागने का मन करता है और आप मन ही मन खुश हैं, आप जाग रहे हैं, आपको नींद नहीं आएगी. पता है ये सच्ची में होता है. जब हम खुश होते हैं ना तो नींद कम हो जाती है, यानी कि कम नींद में भी काम चल जाता है. और अगर आप मन से खुश हो, मान लीजिए कोई चीज़ हुई या फिर आपको कोई अच्छी गुड न्यूज़ मिली या कुछ ऐसा जिसका आप बहुत टाइम से, बहुत सालों से वेट कर रहे थे और वो आपकी लाइफ में हो गया. अब देखो, खुशियों के तो कई सारे ज़रिए हो सकते हैं ना, तो हर किसी के लाइफ में एक ना एक कुछ ना कुछ ऐसा ज़रिया होता है जिससे हमें खुशी मिलती है, राइट. तो ऐसा जब होता है ना तो कम नींद आती है, और जब उसके बाद उठते हैं सो करके तब भी हम बहुत रिफ्रेश होते हैं. इसीलिए कहते हैं कि छोटी छोटी सी चीज़ों में खुशियां देखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये खुशियां आपको एक तो लंबा जीवन देगी और दूसरा आप ताज़ा रहेंगे, फ्रेश रहेंगे, आप मेंटली प्रिपेयर रहेंगे, आप फिजिकली बहुत स्ट्रांग रहेंगे, आपका शरीर अच्छा रहेगा, आप अच्छे गुड लुकिंग दिखाई देंगे. क्योंकि जिसका चेहरा खिलखिलाता हुआ होता है या बहुत ज़्यादा कोई व्यक्ति खुश होता है ना, तो उसका चेहरा ही बता देता है कि अंदर से कितना खुश है. इसलिए खुशियाँ आप बाहर मत ढूंढिए बल्कि अंदर खुशियाँ ढूंढिए. और अगर खुश होना है तो बाहर लोगों को देख करके या उनकी बातों से खुश मत होइए बल्कि अंदर की जो खुशी है उसको महसूस कीजिए. तो इसीलिए आप ये भूल जाइए कि अगर कोई मेरी तारीफ करेगा तो मैं खुश होंगी, अगर कोई मेरे को अच्छा बोलेगा तो मैं खुश होंगी. नहीं, अंदर जो हमारे खुशियां हैं जिसको हम बहुत ज़्यादा प्रेज़ भी करते हैं और उसको हम मानते हैं, तो उस चीज़ से ही आप आगे बढ़ें और उसको लेकर के खुश रहें, ना कि दूसरों की बातों से, राइट. तो ये वाली चीज़ जो कि वाकई में बड़ी काम की, और ये तो हम सभी जानते भी हैं और मानते भी हैं कि हाँ ऐसा होता है. तो अगर आप भी इसे फील करना चाहते हो ना, तो फील करने के लिए आप पहले खुद को फील करना सीखें, आप अपनी खुशियों को फील करना सीखें, फिर देखें क्या कमाल लगेगा आपको. और मैं तो कहूँगी कि ये दिन आपकी लाइफ में जल्द से जल्द आए. तो बस आप फील कीजिए, खुश रहिए, रेडियो मानव रचना को सुनिए, गानों को एंजॉय कीजिए. और हाँ, मैसेज करना ना भूलिएगा. रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूँ प्रांका आपके साथ, और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ.

आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गे मेरी लाइफ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर और मैं हूं प्रांका आपके साथ। और आज मैं आपको कुछ हैक्स बता रही हूं, कुछ फैक्ट्स पे बातें कर रहे हैं और अब मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताती हूं जिससे आपको फ़ायदा हो जाएगा। जी हां, बिल्कुल कह रही हूं कि आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि चलो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि वो बात क्या है। देखो, हम जब क्रेविंग को शांत करने की कोशिश करते हैं तो क्रेविंग उतनी ज़्यादा होती है। जैसे मान लो आपको पिज्ज़ा खाने का मन है और आप अपने आप को शांत करो कि नहीं, मुझे पिज्ज़ा नहीं खाना है, इसमें इतनी कैलोरीज है और ये मेरे लिए हेल्दी नहीं है। बट जितना आप खुद को रोकोगे उतनी ही क्रेविंग बढ़ती जाएगी। और एक टाइम ऐसा आता है जब एकदम से बस मिल जाए तो बस हम इंजॉय कर लें उसे, वो वाली चीज़ हो जाती है। तो यहाँ आपको क्या करना है, तो सबसे पहले तो आपको फ़ोन नहीं लेना है, क्योंकि फ़ोन आप लेंगे तो ऑनलाइन ऑर्डर के लिए आप ज़रूर अपने फ़ोन का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए फ़ोन को आप अपने पास नहीं रखेंगे। अब आप जाइए किचन में, और कुछ बनाना नहीं है बल्कि आपको पीना है 2 गिलास पानी। जी हाँ, पानी पिए और अपने आप को थोड़ा सा होल्ड करें और अपने आप से ये कहें कि पानी पीने के 10 मिनट बाद मैं डिसाइड करूँगा या करूँगी कि मुझे पिज़्ज़ा खाना है या नहीं। पता है क्या होगा इससे? इससे आपकी क्रेविंग शांत हो जाएगी। जी हाँ, और ये बिल्कुल सही कह रही हूँ, आप करके देखिए, बहुत मज़ा आएगा आपको। आप कितने सारे ऐसे अनहेल्दी खाने से बच जाएंगे। पता है क्या होता है, कई बार ना ये जो भूख होती है ये खाने की नहीं पानी की भी होती है। इस वजह से और ज़्यादातर लोग जो हैं, कितने सारे लोग हैं जो इस वक्त मुझे सुन रहे होंगे, जो यही सोच रहे होंगे कि हाँ पानी तो हम भी ज़्यादा नहीं पी पाते हैं, लेकिन खाना जो है वो हम टाइम टू टाइम लेते हैं, बट बॉडी को पानी भी तो चाहिए होता है ना। तो उसकी नीड जब उसे जो होती है तो हम पानी की भूख को खाने की भूख समझ लेते हैं और बहुत सारा खाना हम खा लेते हैं, तो पेट तो भर जाता है लेकिन पानी की कमी तो हम पूरी कर ही नहीं पाए, क्योंकि हमने पानी ही नहीं पिया उतना, है ना। और फिर हम खाने के ऊपर से पानी पी करके अपने पेट को कर लेते हैं ख़राब। तो ये वाली चीज़ आपको नहीं करनी है, बल्कि जब भी आपको कुछ बाहर का उल्टा सीधा या कुछ ऐसा खाने का मन करे तो आप पहले अपने आप से पूछो कि ठीक है, अगर मैं पहले पानी पीता हूँ या पीती हूँ, उसके 10 मिनट बाद भी अगर मुझे क्रेविंग होती है देन आई विल डिसाइड कि मुझे क्या करना है। ठीक है, ये आप करोगे ना, पता है इसका एक फ़ायदा क्या होगा, 10 मिनट बाद आप डिसाइड ही नहीं कर पाओगे कि मुझे पिज़्ज़ा खाना है या नहीं, क्योंकि आपको क्रेविंग होगी ही नहीं, आपका पेट पूरी तरह से फुल हो चुका होगा और सिर्फ 2 गिलास पानी आपको पीना है, जो मीडियम साइज़ के गिलास होते हैं वो आपको पीना है। तो ये बहुत इफेक्टिव, आप इसे एक्सरसाइज कह लो या आप अपने माइंड को मैसेज देना कह लो, जो भी आप कहें, जो भी इसको आप नाम दें, लेकिन हाँ ये एक सच बात है कि इसका फ़ायदा हर एक एक को मिलेगा। तो ये करके देखिएगा, बहुत अच्छी चीज़ है ये। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूँ प्रांका आपके साथ और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ।

0: ज्वाला, समुंदर की लहरों को देखो जो बार बार हमारे करीब आकर जैसे कह रही हूं कि आओ हमारे कंधों पर बैठ जाओ ताकि हम तुम्हें तुम्हारे देश तुम्हारे घर ले चलें। और मैं इनसे कह रहा हूं कि सिर्फ दो दिन और, बेचारे डॉक्टर ने हमारे लिए किश्ती तैयार करवाई है जिसे हम तुम्हारे कंधों पर रखकर नाचते कूदते अपने घर चले जाएंगे।
1: और मैं ये कह रही हूं, भगवान ने हमें नया जन्म दिया है, नई धरती नया घर दिया है, हम क्यों ना प्यार में गुमसुम अपने सारे जन्म इसी जजीरे पे गुजार दें जहां से हमें कोई अलग ना कर सके।
0: ज्वाला, हमें कोई अलग नहीं कर सकता, कोई नहीं।
1: तुम उस कमीने दीवान को नहीं जानते भारत, और मेरे सीधे साधे पिताजी को भी नहीं जानते। वहां पहुंचते ही जबरदस्ती मेरी शादी दीवान से कर दी जाएगी।
0: ऐसा कभी नहीं हो सकता ज्वाला, मेरी जिंदगी कोई मुझसे छीन नहीं सकता।
1: तो फिर एक वादा करो।
0: मेरी जान मांग लो, जान मेरी।
1: सिर्फ इतना वादा कि अपने देश पहुंचने के बाद तुम मुझे एक पल भी अपने से जुदा नहीं करोगे। इतना याद रखोगे कि राजकुमारी चित्रलेखा मर चुकी है और तुम्हारी ज्वाला जिंदा है, सिर्फ तुम्हारे लिए।
0: ज्वाला, ये मेरा वादा है।

रेडियो मानव कृष्ण 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ और मैं हूं प्रियंका आपके साथ। और ये गाना आपने सुना ऐसे ही और बहुत ही प्यारे प्यारे से गाने जो मैं आपको इस प्रोग्राम में सुना रही हूं। तो आपका कोई पसंदीदा गाना है जिसे आप सुनना चाहते हैं रेडियो पर तो आप मैसेज कर सकते हैं। नंबर हमारा है 8010781078। आप इस नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं। आज के प्रोग्राम में मैं आपको कुछ फैक्ट्स बता रही हूँ, कुछ हैक्स पर हम बात कर रहे हैं और अब मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाली हूँ जिससे आपकी स्किन फ्लॉलेस हो जाएगी। जी हाँ, आपकी स्किन जो है बहुत ही चमकदार और खूबसूरत दिखने वाली है। अच्छा, एलोवेरा जेल जो है वो मुझे लगता है कि सभी के घर में मौजूद होगा ना। अब जिनके पेड़ हैं, जिन्होंने पेड़ लगा रखे एलोवेरा के, भाई वो तो बहुत ही कमाल है, क्योंकि जितना ताज़ा एलोवेरा आप इस्तेमाल करोगे उतना ही फ़ायदा हमें मिलता है। लेकिन अगर आपके पास एलोवेरा का पेड़ नहीं है, उसका पौधा नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप मार्केट से ले लीजिए। बस ध्यान रखिएगा कि एलोवेरा जेल अच्छी कंपनी का होना चाहिए और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, उसमें किसी तरह का कोई कलर नहीं होना चाहिए, राइट। तो अब मैं यहाँ एलोवेरा की क्यों बात कर रही हूँ, क्योंकि जो मैं आपको बताने वाली हूँ हैक, वो इसी से ही जुड़ा है। अच्छा, हफ्ते में दो बार हम, जैसे क्या होता है, एलोवेरा जेल को यूं ही हम अपने चेहरे पर लगा लेते हैं, है ना, और लगा करके कुछ लोग पूरी रात लगे रहने देते हैं, तो कुछ लोग एक घंटा लगाया और उसके बाद में वॉश कर लेते हैं। लेकिन अब जो मैं आपको तरीका बताने वाली हूँ, ये शायद आपको ना पता हो। हफ्ते में दो बार अगर गर्म पानी आप करते हैं और उसमें एलोवेरा जेल डालकर चेहरे पर भाप लेते हैं, तो स्किन हेल्दी और ग्लोइंग होती है और चेहरे के दाग धब्बे भी धीरे धीरे जाने लगते हैं। जी हाँ, है ना, कितना इंटरेस्टिंग। क्या आपको पता था इससे पहले कि इस तरह से अगर भाप लेते हैं तो स्किन में निखार आता है? अगर नहीं पता था तो ये कई सारे लोगों को वाकई में नहीं पता था, क्योंकि ये तरीका जो है हम लोग नहीं जानते हैं। हम एलोवेरा जेल को सीधा अपने चेहरे पर अप्लाई करते हैं, है ना, लेकिन आप इस तरह से करके देखें और गर्म पानी में आपको एलोवेरा डालना है और उसके बाद में आप भाप लीजिए और फिर जो असर है वो मुझे लगता है कि कुछ ही दिन में दिखाई दे जाएगा। तो ये जब भी आप इसको अप्लाई करें या जब भी आप इसको यूज़ करें तो उसका फीडबैक, मतलब मुझे अच्छा लगता है जब कोई फीडबैक देता है ना, मुझे तो बड़ा मज़ा आता है ये देख करके सुन करके। तो आप ज़रूर बताना कि कैसा लगा। ये नंबर हमारा है 8010781078। मैं हूँ प्रियंका, रेडियो मानव कृष्णा 107.8 FM पर और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ।

आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर और मैं हूं प्रांका आपके साथ। कुछ फैक्ट्स कुछ हैक्स आपको बता रही हूं आज के प्रोग्राम में। अच्छा, कई बार ना बिजी होना काफ़ी अच्छा भी लगता है। कभी ऐसा महसूस किया आपने, कभी ये चीज़ फील की है? वैसे तो हम सब परेशान रहते कि इतना काम है कि टाइम ही नहीं मिल पाता है, और इस काम के चलते हम तो समय ही नहीं निकाल पाते हैं बात करने का या फिर समय स्पेंड करने का, है ना। देखिए, अगर ऐसी वाली चीज़ है तो कभी कभी तो आपको वक्त निकालना ही चाहिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिज़ी होना भी एक अच्छी चीज़ है हमारे लिए? जी हाँ, दरअसल जो ज़्यादा बिज़ी लोग होते हैं वो उन लोगों के मुकाबले जो कम बिज़ी होते हैं उससे ज़्यादा खुश होते हैं। पता है इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है क्योंकि ये लोग जब काम में बिज़ी होते हैं तो जो भी नेगेटिव चीज़ें दिमाग में आती है कि इसने हमें ऐसे बोला, मेरे साथ एक साल पहले ऐसे किसी ने मुझे गलत बोला था और मुझे अच्छा नहीं लगा था, उसने मेरे से माफ़ी क्यों नहीं मांगी, और भी बहुत सारी चीज़ें जो हमारे दिमाग में चलती रहती हैं, जो भी ऐसी चीज़ें जो हमें पसंद नहीं आई या हमारे कहीं ना कहीं वो ख़िलाफ़ थी चीज़ें, वो चाहे जितनी पुरानी हो बट हमें याद आता रहता है। और जो लोग ज़्यादा बिज़ी होते हैं उनको ये सब सोचने की ज़रूरत, क्योंकि उनके पास वक्त ही नहीं होता है कि वो ये सारी चीज़ें सोच भी पाए। एक के बाद एक काम जो है वो उसमें बिज़ी होते हैं, इसीलिए वो लोग अपने प्रेजेंट में जीते हैं और ज़्यादा सोच नहीं पाते क्योंकि वक्त ही नहीं मिल पाता है। इसीलिए जो मैंने आपको बताया ना कि जो ज़्यादा बिज़ी लोग होते हैं वो ज़्यादा खुश होते हैं उन लोगों के, जो लोग ज़्यादा बिज़ी नहीं होते हैं क्योंकि वो नेगेटिव चीज़ों को सोच ही नहीं पाते हैं और उनके पास टाइम ही नहीं होता है सब सोचने का। इसलिए कहते हैं कि काम करते रहो, कुछ कुछ चीज़ें लाइफ में आप करते रहो जिससे आप बिज़ी रहो। लेकिन हाँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप लाइफ में एनी टाइम बिज़ी रहो कि आप अपनों को या अपने ख़ास रिश्तों को समय ही नहीं दे पा रहे हैं। ये भी नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे चीज़ें कमज़ोर होती हैं, रिश्ते कमज़ोर होते हैं। हाँ, समय ज़रूर दीजिए, लेकिन जब बात अपनी आती है तो अपने आप को नेगेटिव विचारों को सोचने से बचाने के लिए हमेशा बिज़ी आप रहें, तो इससे आप प्रेजेंट को जिएंगे, प्रेजेंट को एंजॉय करेंगे, और जो काम करता है वो अपने लक्ष्य को पा पाता है, है ना। तो बस ये आप करके आगे बढ़िए और उम्मीद करते हैं कि आप अच्छा कर रहे होंगे। तो चलिए अब इंजॉय करते हैं एक और बहुत ही प्यारा सा गाना। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूँ प्रांका आपके साथ और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर ये गाना आपने सुना और अब मैं सुनाने वाली हूँ आपको अगला गाना. मैं हूँ प्रांका और मेरे चलने का वक्त हो गया है, तो आज का प्रोग्राम यहीं तक. प्रोग्राम कैसा लगा आप हमें बता सकते हैं, बताने के लिए आप मैसेज कीजिए, नंबर है हमारा 8010781078. तो चलिए इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे फिर मुलाकात होगी. तब तक के लिए बाकी आगे आने वाले प्रोग्राम्स को इन्जॉय कीजिए और बने रहिए रेडियो मानव रचना 7.8 FM पर. मैं हूँ प्राका और फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय.

0: ए सुन रुबिया, प्यार हो गया।
1: सच?
0: प्यार हो गया, क्या करें।
1: सुनने को ये तरसता था दिल, चल जल्दी से रे।

हेलो एंड वेलकम टू रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पे। दोस्तों आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है आपके अपने फरीदाबाद के पहले चैनल पर। दोस्तों कैफे क्लासिक्स प्रोग्राम में मैं आपको सुनाती हूँ अच्छे अच्छे गाने, साथ ही देती हूँ उन गानों के पीछे जुड़े हुए उन लोगों के बारे में कुछ कुछ जानकारी जो शायद हमारी जिंदगी में कुछ एक नया चेंज ला सके, हमारी जिंदगी में कोई नई मोटिवेशन ला सके। दोस्तों आज का प्रोग्राम हम डेडिकेट करेंगे एक उस हस्ती को जिसकी आवाज़ हम सबके दिलों में बसी हुई है। मुझे पता है नाम लेते ही बहुत से जो श्रोता जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो दिल पर हाथ रख कर एक लंबी सांस लेंगे, क्योंकि वो नाम है मोहम्मद रफ़ी साहब का। दोस्तों एक ऐसा नाम जो बॉलीवुड की दुनिया में कई दशकों तक छाया रहा, एक ऐसा नाम जिन्हें शहनशाह तरन्नुम भी कहा गया है। तो दोस्तों आज का हमारा ये सफ़र मोहम्मद रफ़ी साहब के नाम। लेते हैं यहाँ पे एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, ब्रेक के बाद मैं तुरंत वापस आऊँगी, सुनाएंगे आपको ढेर सारे मोहम्मद रफ़ी साहब के गाए हुए गाने, साथ ही झांकेंगे उनकी ज़िंदगी की किताब के अंदर, पलटेंगे कुछ किताब के पन्ने और सीखेंगे उनसे कुछ नई और ज़रूरी बातें। ले रही छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए हमारे साथ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। फील गुड फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मानो रचना 107.8 FM पे दोस्तों एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम चल रहा है कैफे क्लासिक्स और आज हम इस शो में बात कर रहे हैं एक ऐसे प्लेबैक सिंगर जो हमारे दिलों में बसे हुए हैं, एक ऐसे प्लेबैक सिंगर जो कि हमारे दिल की तारों के झनकृत सा कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ मोहम्मद रफ़ी साहब की। दोस्तों रफ़ी साहब जिनको हम प्यार से कहा करते थे, जिनको दुनिया इसी नाम से बुलाना पसंद करती है, वो श्रेष्ठतम से श्रेष्ठतम पार्श्व गायकों में से एक है। उनका

जन्म 24 दिसंबर 1924 को हुआ, और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, इनको शहनशाह तरन्नुम भी कहा जाता था। इन्होंने आज की पीढ़ी के कई सिंगर्स को इन्होंने मोटिवेट किया है। कितनों के नाम तो मैं नहीं जानती, अनसंग हीरोज है, लेकिन कुछ खास हस्तियां जो कि आगे चल करके बताती हैं कि हमारी जो इंस्पिरेशनल हस्ती थी वो मोहम्मद रफ़ी साहब थे। उनमें से जो अग्गज नाम है वो है सोनू निगम साहब, मोहम्मद अजीज़ और उदित नारायण। आज भी हम लोग जब सोनू निगम जी के हम शो सुनते हैं, म्यूज़िकल कॉन्सर्ट्स, तो वो उनका गाना जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, 90% अपने शोज वो रफ़ी साहब के इसी गाने से शुरू करते हैं। मानते हैं वो उनको अपना सब कुछ, क्योंकि उनकी आवाज़ सुनकर वो बड़े हुए और उनकी आवाज़ ही उनके लिए प्रेरणा बनी। दोस्तों, रफ़ी साहब ने केवल फिल्मी गीत ही नहीं गाए, उन्होंने गज़ल, भजन, देशभक्ति गीत, कव्वाली और अन्य भाषाओं के गीत भी गाए। यहाँ तक कि उन्होंने शब्द भी बहुत खूबसूरत तरीके से गाए हैं। बहुत से फिल्म अभिनेताओं पर उनकी आवाज़ को लगाया गया और बहुत ही सुंदर, मतलब फील होता था कि एक्टर खुद ही गा रहा है, जबकि हम सभी जानते हैं कि एक्टर सिर्फ लिपसिंग करते हैं, आवाज़ तो पीछे सिंगर की होती है। और जिन जिन अभिनेताओं पर रफ़ी साहब की आवाज़ बहुत ही खूबसूरत लगी, उनमें देवानंद, दिलीप कुमार, गुरुदत्त साहब, जॉनी वॉकर, जॉय मुखर्जी, शम्मी कपूर, राजेंद्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, जितेंद्र, ऋषि कपूर और मिथुन चक्रवर्ती, और लेटेस्ट गोविंदा के लिए भी उन्होंने उनकी बहुत शुरुआती पिक्चरों के अलावा उनके उस में भी उन्होंने प्लेबैक सिंगिंग करी है। और इसके अलावा एक नाम और आता है, किशोर कुमार का भी नाम शामिल है। ऑल्दो किशोर कुमार साहब खुद ही अपने लिए गाते थे, वो भी एक बहुत अच्छे लेवल के सिंगर थे, ये बात हम सभी जानते हैं, लेकिन कई गाने किशोर कुमार जी के लिए जब वो एक्टिंग कर रहे थे तो रफ़ी साहब ने भी उनके लिए गाया। और कितना कहूँ, सब बहुत कम है। एक ऐसी शख्सियत जिसके लिए बहुत से तारीफ़ करें तो भी कम है, लेकिन आज के इस शो में हम क्योंकि उनकी ज़िंदगी के सफ़र पर उनके साथ साथ चल रहे हैं, तो करूँगी आपसे भी ढेर सारी बातें, और उनके जन्म के बारे में, उनका शिक्षा कैसे हुई, ये सब बातें अभी आपसे और करेंगे। तब तक के लिए ले रही हूँ यहाँ पे छोटा सा ब्रेक, सुनते हैं रफ़ी साहब के गाए हुए कुछ और गाने। आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए मेरे साथ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। फील गुड, फील

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा कर रहे हैं आज हम रफ़ी साहब की। रफ़ी साहब जिनको शहनशाह तरन्नुम भी कहा जाता था। दोस्तों आज का हमारा कैफे क्लासिक्स का ये एपिसोड हमने समर्पित किया है मशहूर श्रेष्ठतम पार्श्व गायक मोहम्मद रफ़ी साहब को। दोस्तों मोहम्मद रफ़ी साहब का जन्म 24 दिसंबर 1924 को अमृतसर के पास कोटला सुल्तान सिंह गाँव में हुआ। आरंभिक पढ़ाई उनकी कोटला सुल्तान सिंह में भी हुई। जब रफ़ी ऑलमोस्ट 7 ईयर्स के थे तो उनका परिवार रोजगार के सिलसिले में लाहौर आ गया, क्योंकि ये बात है अनडिवाइडेड इंडिया की, तो वो बिल्कुल साथ साथ ही अमृतसर, हम सब जानते हैं कि वहीं पे वाघा बॉर्डर और वहीं से पाकिस्तान शुरू होता है। खास बात यह है कि इनके पूरे परिवार को संगीत से कोई खास लगाव या सरोकार नहीं था। जब रफ़ी साहब छोटे थे तो इनके बड़े भाई की नाई की दुकान थी और रफ़ी साहब का बचपन का काफ़ी वक्त वहीं गुजरता था। जब रफ़ी साहब 7 साल के थे तो ये अपने बड़े भाई की दुकान से एक फ़कीर जो है वो गुजरा करते थे सामने से, और ये उस फ़कीर की उसके पीछे पीछे भागकर उसकी नकल किया करते थे। फ़कीर गाता हुआ जाता था और ये फ़कीर की आवाज़ की नकल करते हुए उसके पीछे पीछे जाया करते थे। इनकी आवाज़ सुनकर जो आसपास के लोग हैं, गली के लोग हैं, वो बहुत ही इम्प्रेस होते थे, लेकिन इससे उनको सिर्फ उस गली की ही ख्याति मिली, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। लेकिन एक फ़ायदा ये हुआ कि इनकी संगीत के प्रति रुचि देखकर इनके बड़े भाई ने उनको संगीत शिक्षा के लिए डाल दिया। उस्ताद का नाम था उस्ताद अब्दुल वाहिद खान साहब। तो ये थे रफ़ी साहब के पहले गुरु। और इसके बाद एक वाक्य मुझे और याद है, मैंने ये बात आपसे पहले भी शेयर करी थी जब मैंने एक एपिसोड सहगल साहब का किया था, कि एक बार सहगल साहब का कहीं पर शो था और लाइट चली गई। अब जाहिर सी बात है जब लाइट चली गई तो मेन सिंगर तो गाएंगे नहीं, तो लाइट चली गई तो सारी ऑडियंस चुप करके बैठी और रफ़ी साहब उसी ऑडियंस में बैठे थे। अब लाइट चली गई तो सब ऑडियंस को बिजी तो रखना है, तो ऐसे ही अनाउंस कर दिया गया कि अगर ऑडियंस से कोई गाना सुनाना चाहता है तो आ जाए। और रफ़ी साहब को तो ये मौका मिल गया स्टेज पर आने का। रफ़ी साहब स्टेज पर आए और उन्होंने बहुत ही एक सुंदर गीत गाया। उस वक्त रफ़ी साहब की उम्र थी 13 साल की। उसी जजमेंट पैनल में श्याम सुंदर नाम के प्रसिद्ध संगीतकार बैठे हुए थे। उन्होंने उनका गाना सुना, उनसे बहुत इम्प्रेस हुए और उन्होंने वहीं पर रफ़ी साहब को गाना गाने का न्योता दे दिया। देखिए जब किस्मत को रंग बदलना होता है, या फिर जिसे कहते हैं जिसकी किस्मत में लिखा ही होता है बहुत ज़्यादा फेमस होना, दुनिया के दिलों में राज करना, तो कहीं ना कहीं से उसकी शुरुआत तो हो ही जाती है, कहीं ना कहीं उसको गॉडफादर मिल ही जाता है। तो इस तरह से रफ़ी साहब का जो है उनके यहाँ पर जो सफलता का उड़ान की उनकी यहाँ पर पहला उनका कदम था। और इसी उड़ान के साथ आइए सुनते हैं उनके गाए हुए कुछ और गीत। ले रही हूँ यहाँ पे छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, ब्रेक के बाद मैं तुरंत वापस आऊँगी और फिर हम बात करेंगे रफ़ी साहब के फिल्मी करियर की। तब तक के लिए म्यूजिकल ब्रेक, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, आप भी मेरे साथ जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। फील गुड फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM पे दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है. प्रोग्राम चल रहा है कैफे क्लासिक्स और मैं हूँ इस शो की होस्ट और आप सबकी प्यारी प्यारी दोस्त. जी हाँ दोस्तों, आज के सफर में हम सैल्यूट कर रहे हैं अपनी बातों और उनके गानों के द्वारा श्री मोहम्मद रफ़ी साहब को. मोहम्मद रफ़ी जो हम सभी जानते हैं, एक बहुत ही फेमस प्लेबैक सिंगर है हमारे बॉलीवुड के. इनके द्वारा गाए हुए गाने आज भी हमारे दिलों में बसते हैं. थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बात करी थी रफ़ी साहब के जन्म की, उनके संगीत की शिक्षा की और किस तरह वो पहचाने गए एक गॉडफादर द्वारा और उनको पहला गाना गाने का मौका मिला. आइए चलते हैं अब उनके कुछ फिल्मी करियर पर. जब रफ़ी साहब का मैंने आपको बताया कि उन्होंने शो में एक ऐसा गाना गाया और उनको श्याम सुंदर जी ने उनको गाने के लिए बुला लिया और उनका जो पहला गाना था वो एक पंजाबी फिल्म थी गुल बलोच, उसके लिए उन्होंने गाना गाया. श्याम सुंदर जी के ही निर्देशन में थी 1944 में और 1946 में फिर रफ़ी साहब ने मुंबई आने का फैसला किया. यहाँ पर संगीतकार नौशाद ने पहले आप नाम की फिल्म में उनको गाने का मौका दिया. दोस्तों नौशाद द्वारा सुरबद्ध गीत तेरा खिलौना टूटा, ये फिल्म थी अनमोल घड़ी जो कि रिलीज हुई थी 1946 में. इस गीत से प्रथम बार हिंदी जगत में रफ़ी साहब को ख्याति मिली. इसके बाद शहीद, मेला तथा दुलारी फिल्मों में भी रफ़ी साहब ने गाना गाया और इन सभी के गाने बहुत प्रसिद्ध हुए. 1951 में नौशाद साहब ने फिल्म बैजी बावरा के लिए संगीत निर्देशन दिया और वो गाने बना रहे थे और उन्होंने सोचा कि वो अपने पसंदीदा गायक तलत महमूद से उसके गाने गवाएंगे. ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि एक बार तलत महमूद को उन्होंने धूम्रपान करते देख लिया. इससे नौशाद साहब का मन बदल गया और उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं रफ़ी साहब को इसमें गाना गाने का मौका दूं. बैजू बावरा के गाने बहुत फेमस हुए ये बात हम सभी जानते हैं और रफ़ी साहब को उन्होंने मुख्य धारा के गायक के रूप में वहाँ पर स्थापित किया. इसके बाद नौशाद साहब ने रफ़ी साहब को अपने निर्देशन में जो गाने हैं उनको गाने का मौका दिया. उसी समय पर दोस्तों शंकर जयकिशन नाम के म्यूज़िक डायरेक्टर्स थे, वो भी काफ़ी ऊंचाइयों की तरफ बढ़ रहे थे. शंकर जयकिशन दोस्तों राज कपूर साहब के बहुत ही फेवरेट म्यूज़िक डायरेक्टर हुआ करते थे और राज कपूर साहब ऐसा सोचते थे कि उनके चरित्र पर जो पीछे प्लेबैक सिंगिंग हमेशा हमेशा मुकेश साहब करें, वो मुकेश को अपना वो मानते थे कि भाई इनकी आवाज़ जो है वो मेरे पर बहुत ज़्यादा सूट करती है. लेकिन जब इनका काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया, शंकर जयकिशन का काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो हर जगह फिर उन्होंने मुकेश साहब के साथ रवि साहब का भी प्रयोग करा. राज कपूर साहब के लिए प्लेबैक भी रफ़ी साहब से कराया और ये आवाज़ जो है राज कपूर साहब को भी बहुत रास आ गई. और यहीं पर सचिन देव बर्मन जो कि म्यूज़िक डायरेक्टर थे फेमस और ओपी नैयर साहब, यहाँ से ये दो म्यूज़िक डायरेक्टर्स भी रफ़ी साहब के साथ जुड़ गए और दिन प्रतिदिन इनकी जो जिसे कहते हैं ख्याति बढ़ती गई. एंड देन ही नेवर लुक बैक, आगे बढ़ते चले गए, गाने गाते चले गए और इतने बढ़िया बढ़िया एक्टर्स जो मैंने आपको पहले भी बताया, दिलीप कुमार, भरत भूषण, देवानंद, शमी कपूर, राजेंद्र कुमार, इन सब के लिए इन्होंने ढेर सारे गाने गाए. सभी गाने बहुत ज़्यादा रिलीज़ हुए और ऐसी एक मूवी आई कश्मीर की कली. हम सब जानते हैं कि इसमें ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील से नीली आँखें, कोई राज है इनमें गहरा, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया. जी हाँ दोस्तों, बहुत ही प्यारा सा गाना, मैंने तो गुनगुना लिया है. आइए लेते हैं यहाँ पे छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक. ब्रेक में सुनते हैं इनके गाए हुए कुछ खूबसूरत से गीत. मैं तो यहीं पर ही हूँ, आपके साथ जुड़ी हुई हूँ, आप भी कहीं मत जाइए. स्टे ट्यून टू रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड, फील लाइव.

मैं हाथ डाल ऐ गुल चेहरा परी जमाल मुद्दत से दिल उदास दादा दास है तेरे होठों की प्यास है ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का जा जा जा।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM पे। दोस्तों, प्रोग्राम चल रहा है कैफे क्लासिक्स और इसमें आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा प्रोग्राम रफ़ी साहब के नाम। जी हाँ दोस्तों, रफ़ी साहब की ज़िंदगी, अभी तक जितने हमने उनके ज़िंदगी की किताब के पन्ने पलटे तो बहुत ही खूबसूरत रही। छोटे से थे, देखिए उनकी आवाज़ तो थी ही सुंदर, किस तरह से 7 साल की उम्र में फ़कीर के पीछे पीछे भाग भाग के गाए जाते थे। 13 साल की उम्र में ऐसे ही सार्वजनिक स्थान पर गाने को मिल गया तो एक म्यूज़िक डायरेक्टर ने उनको ब्रेक दे दिया और करते करते देखिए वो बॉलीवुड पहुंच गए और फिर दौर चला इनका एक से एक बैक टू बैक सुपरहिट गानों का। आइए सुनाते हैं आपको इनकी व्यक्तिगत जीवन की कुछ बातें। दोस्तों, रफ़ी साहब कहते हैं कि बहुत ही दरिया दिल इंसान थे, दिल के बहुत अच्छे थे, लोगों की मदद करते थे। आपको नहीं लगता कि इनकी आवाज़ में ऐसे झलकता है कि जिसकी आवाज़ इतनी सुंदर होगी उसका दिल और मन कितना सुंदर होगा? जी हाँ दोस्तों, व्यसनों से दूर रहते थे और आज़ादी के समय जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ, इन्होंने भारत में ही रहना पसंद किया। इनकी बेगम का नाम था विल्कीस और इनकी 7 संतानें हुई जिसमें 4 बेटे और 3 बेटियाँ हैं। ये अपने परमार्थों के लिए भी जाना चाहते हैं, परमार्थ इन द सेंस के ये लोगों की बहुत मदद किया करते थे, कोई भी हेल्प कहता था फटाक से कर देते थे। साथ ही कुछ ऐसे म्यूज़िक डायरेक्टर्स थे जो इनको बहुत अच्छे से पे नहीं कर पाते थे, जिनमें एक नाम था शुरुआती जो दौर था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का, जिसमें वो खुद ही थोड़े से उनका हार्ट टाइट रहता था, तो इन्होंने बहुत कम पैसों में भी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के लिए काम किया है। साथ ही रॉयल्टी को लेकर इनका लता मंगेशकर जी से कुछ मन मुटाव हुआ, वो भी देखिए दोस्तों लता जी गलत नहीं थी, लेकिन रफ़ी साहब का कैरेक्टर और उनका जो दरिया दिल इसमें देखने को मिलता है। रफ़ी साहब का कहना था कि एक बार हमने गाना गा दिया, रिकॉर्ड निकल गया तो हमने अपनी फीस ले ली, हमारा काम ख़त्म हो गया। लेकिन लता जी कहती थी कि अगर उस रिकॉर्ड जो जिसने मल्टी मिलियन बिलियंस बना लिए, अगर वो बहुत ज़्यादा हिट हो जाती है तो उसका एक अंश, जिसको हम रॉयल्टी भी कहते हैं, वो जो है वो गायक या गायिका को मिलना चाहिए। तो ये था मत लता जी का और दूसरा मत था रफ़ी साहब का, और इसको लेकर इन दोनों में हो गया मतभेद। दोस्तों, मतभेद इतना बढ़ गया कि दोनों ने आपस में ना गाने का फैसला कर दिया। कई साल बीत गए, इन दोनों का कोई डुएट नहीं आया, लेकिन फिर अभिनेत्री नरगिस जी के कहने पर वापस इन दोनों ने कई साल बाद इकट्ठा गाना शुरू करा, डुएट सॉन्ग निकाला और वो गाना था ज्वेल थीफ का, दिल पुकारे आरे आरे आरे। बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग और ये गाना बहुत ही हिट हुआ। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही हिट हुआ और इनकी खुद की जो ज़िंदगी है वो भी सुपर हिट रही और इनको बहुत सारे अवार्ड से भी नवाजा गया, क्योंकि कॉन्टीन्यूअस ही इनका इस तरह से चलता रहा करियर के एक के बाद ये एक हिट देते

और अवार्ड्स के बात करूंगी मैं आपसे इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। आ रही हूँ मैं फटाफट से, आप भी कहीं मत जाइए, सुनते हैं कुछ इनके गाए हुए गाने और मैं यूं गई और यूं आई। स्टे ट्यून्ड टू रेडियो मानव रचना 107.8 FM, फील गुड फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मनोरचना 107.8 एफएम पे दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है। आज का हमारा सफर रफी साहब के नाम, और ये सफर जो है अपने अंतिम चरण पर है, क्योंकि घड़ी देवी टिक टिक टिक टिक करते हुए मुझे बता रही है कि मेरा जाने का समय हो रहा है। लेकिन जाते जाते दूंगी आपको कुछ और रफ़ी साहब के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ। दोस्तों, रफ़ी साहब को कई बार फिल्म फेयर अवार्ड मिला, चाहे वो फूल बरसाओं गाना उनका फेमस हुआ या फिर दिल के झरोखे से तुझको बिठाकर, इसके लिए भी इनको फिल्म फेयर अवार्ड मिला, बहुत से अवार्ड्स मिले। साथ ही भारत सरकार ने 1965 में इनको पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया। दोस्तों, 31 जुलाई 1980 में हृदय की गति रुक जाने से रफ़ी साहब हमारे बीच से चले गए। रफ़ी साहब आज हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनके गाए हुए गाने, उनका वो प्यारा सा चरित्र, उनका दरिया दिल, इन सब चीज़ों के वजह से वो हमारे दिल में रस्ते बसते हैं। मैं रेडियो मानव रचना के माध्यम से, प्लेटफॉर्म से रफ़ी साहब को हार्दिक श्रद्धांजलि देती हूँ, और आप सभी श्रोतागणों से कहती हूँ कि आइए इनकी आवाज़ से हम हमेशा जुड़े रहें, सदा सदा हम इनको सुनते रहें। तो करती हूँ साइन आउट, और अगले शो में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर। फील गुड फील

0: अरे अरे अरे भैया, आप ये कूड़ा सड़क पे क्यों फेंक रहे हैं?
1: अरे मैडम जी, ये सड़क आपके पिताजी की है के?
0: जी हाँ, ये सड़क मेरी है, शहर मेरा है, शहर की सारी गलियाँ मेरी है, इनको साफ करने वाले लोग भी मेरे हैं। सो इन शॉर्ट, ये देश मेरा है और इसकी सफाई की जिम्मेदारी भी मेरी है। तो अब आप इस कूड़े को उठाओ और इसकी सही जगह पे पहुँचाओ, यानी कि कूड़ेदान में। कूड़ेदान में
2: आइए बेहतर काम करें, कूड़ेदान का इस्तेमाल करें।
3: वेल हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, जय माता दी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आरजे सागर, आया हूं लेकर के शो सत्यमेव जयते, जय हिंद जय भारत। शो हमारा एक बहुत स्पेशल इनिशिएटिव है, जस्ट टू अवेयर यू, जस्ट टू मेक श्योर कि आपको आपके राइट्स के बारे में पता है, जस्ट टू मेक श्योर कि लीगल फ्रेमवर्क जो बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है, बहुत हेक्टिक लगता है, समटाइम्स बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि नहीं बाबा, लीगल प्रोसीजर में नहीं फंसना है, उसको सिंप्लीफाई करके आप लोगों को हम बताते हैं। हर बार हम किसी एक लॉ की या किसी एक एक्ट की या किसी एक राइट की आपके बात कर रहे होते हैं, एंड वी टॉक अबाउट सो मेनी थिंग्स। हमारे साथ यहाँ पर हर बार एक एक्सपर्ट मौजूद होते हैं। आज के हमारे यहाँ पर एक्सपर्ट हैं मिस चैताली वधवा। चैताली मैम इज असिस्टेंट प्रोफेसर विद स्कूल ऑफ लॉ एट मानव रचना यूनिवर्सिटी। हमारे इन हाउस यहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जाता है, बच्चों को तमाम शिक्षाएं दी जाती हैं, वो इल्म दिया जाता है जिससे वो आगे चल के देश की सेवा करते हैं। सो आज हम जो बात करने वाले हैं वो थोड़ा सा ऐसा टॉपिक है जिसको समझा नहीं गया है, बहुत ज़्यादा लोगों को पता नहीं है उनके राइट्स के बारे में, फीमेल्स को खासतौर पे नहीं पता है, और अगर पता है तो एक तरीके से टैबू एक हमने बना रखा है कि बात ही नहीं करना चाहिए उसके ऊपर, कि उसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज़ क्या हैं, कानून क्या बोलता है, वो बाद की बात है, हम बात ही नहीं करेंगे। ये एक टॉपिक है, वी आर टॉकिंग अबाउट रिप्रोडक्टिव राइट्स। बिल्कुल सही सुना आपने, ये कानून में भी एक शब्द है जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट्स वेलकम मिस चैताली। हाय मैम, वेलकम टू आवर शो।
4: थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर अगेन सर।
3: इट्स ऑलवेज एन ऑनर टू हैव यू, एंड मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, एंड आई होप हमारे लिसनर्स को भी काफी कुछ यहाँ से सीखने को मिलता है। पहला क्वेश्चन मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा कि व्हेन वी टॉक अबाउट रिप्रोडक्टिव राइट्स, तो मैं एग्जैक्टली किस डोमेन की बात कर रहा हूँ, किस डोमेन को हम लोग टच कर रहे हैं इसमें?
4: तो इसमें वी आर कवरिंग कि एक वुमन के पास ये राइट है, ये ऑटोनॉमी है कि वो अपनी बॉडी के साथ क्या चॉइसेस लेना चाहती है, जिसमें हम बात करते हैं वुमेन्स कंसेंट की। तो रिप्रोडक्टिव राइट से थोड़ा सा पहले आता है कॉन्सेप्ट जो IPC या BNS में है, रेप का, कि वुमेन की अगर ना है तो ना में ना ही है, ना में हाँ नहीं है, वुमेन की ऑटोनॉमी के बारे में। रिप्रोडक्टिव राइट्स उसी चीज़ को थोड़ा और आगे डील करते हैं, जहां हम कहते हैं कि अगर एक वुमन प्रेग्नेंट हैं तो उनके और उनके चाइल्ड के साथ क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि वो उनकी बॉडी है, वो डिसीजन उनका होना चाहिए, तो वो उनकी ऑटोनॉमी है। इसमें बात आ जाती है मिसकैरेज की, अबॉर्शंस की, मेडिकल टर्मिनेशन की, बट इन सब में मेन कंसेंट जो है वो एक प्रेग्नेंट वुमन का है, तो इन राइट्स को हम रिप्रोडक्टिव राइट्स कहते हैं।
3: ऑलराइट, व्हाट आर द कोर लीगल पिलर्स अंडर रिप्रोडक्टिव राइट्स?
4: तो कंसेंट ऑफ वुमेन एंड रिप्रोडक्टिव राइट्स थ्री पिलर्स पर रेस्ट करते हैं। पहली है ऑटोनॉमी, कि ये आपकी बॉडी है तो आपका डिसीजन है, आपका कंसेंट रिक्वायर्ड है इससे पहले कि कोई भी डिसीजन लिया जा सके। फॉर एग्जांपल, अगर लेट्स से कोई वुमन प्रेग्नेंट है और किसी ने उनको कोई एक दवाई दे दी या कुछ कुछ एडमिनिस्टर कर दिया जिनकी वजह से उनकी फीटस की डेथ हो गई, तो वो उनके कंसेंट के बिना किया गया था, मतलब उनकी ऑटोनॉमी नहीं थी। दूसरा प्रिंसिपल है आपका इक्वालिटी का, कि आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, और ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इक्वालिटी का, ये हमारे संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा गया है कि इक्वालिटी जो है वो सिर्फ मतलब सिटीजन्स की नहीं है, दैट एक्सटेंड्स टू ऑल पीपल। कॉन्स्टिट्यूशन में ही फर्दर आर्टिकल 15 है जो कहता है कि कुछ स्पेशल प्रोविजंस, कुछ स्पेशल लॉज बनाए जा सकते हैं एक्सक्लूसिवली फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो क्योंकि हमने MTP एक्ट बनाया है, वो एक्सक्लूसिवली वुमेन की प्रोटेक्शन के लिए है, तो वो इस पिलर के अंडर ही आ जाता है, द राइट टू इक्वालिटी। थर्ड है आपका प्रिवेसी, जो केसेस के थ्रू भी इवॉल्व हुआ है, जो इस लॉ में भी लिखा गया है कि अगर कोई वुमन चूज करती हैं टू गो अहेड विथ टर्मिनेशन या अबॉर्शन, तो उनका कंसेंट जो है वो प्राइवेट रहेगा, मतलब आप उनकी फैमिली को, बाकी सोसाइटी मेंबर्स को उनका नाम नहीं डिस्क्लोज करेंगे। लेट्स से कोई माइनर है, कोई मतलब लड़की थी, अभी वो 18 साल से छोटी हैं, तो डॉक्टर का, क्लिनिक का ये एक लायबिलिटी बनती है कि आप गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करें, लेकिन अगेन आप उनका नाम नहीं इन्फॉर्म करेंगे, उनकी डिटेल्स, हेल्थ के बारे में, ब्लड प्रेशर, कोई भी चीज़ें आप इन्फॉर्म नहीं करेंगे, बिकॉज हर कंसेंट, हर इन्फॉर्मेशन रिमेन्स प्राइवेट। और प्रिवेसी का जो कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ रिप्रोडक्टिव राइट्स नहीं, ये मेडिकल कम्युनिटी में बहुत मतलब कॉमन है. कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करा या प्रिवेसी मेंटेन करना डॉक्टर और पेशेंट के बीच की बात है, वो किसी तीसरे इंसान को आप नहीं बता सकते.
3: ऑलराइट, यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा, व्हाट इज एमटीपी, आपने एक टर्म यूज करी.
4: जी, तो एमटीपी का फुल फॉर्म है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट. मेडिकल टर्मिनेशन हम इसको इसलिए कह रहे हैं बिकॉज दिस इज लीगली अलाउड. लोगों को ये लगता है या ये एक मिसकंसेप्शन है जिसकी वजह से हम आज बात कर रहे हैं कि अबॉर्शन कराना इज एन ऑफेंस. ऐसा नहीं है, अबॉर्शन करवाना इज लीगली परमिटेड प्रोवाइडेड आप एमटीपी एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली प्रोसीड करते हैं. उसमें गाइडलाइंस दी गई हैं किस मतलब किस वीक तक करवा सकते हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, बट इट इज लीगली परमिटेड. एमटीपी एक्ट थोड़ा सा अलग हो जाता है आपके बाकी के क्रिमिनल लॉस से क्योंकि इसमें विमेन की कंसेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. वो खुद से सामने उठ के जाती हैं एक क्लिनिक में या एक डॉक्टर के पास फॉर मेडिकल ओपिनियन. अगर आप विमेन की कंसेंट के बिना उनको कोई भी ऐसी दवाई दे दें या कुछ भी ऐसा एडमिनिस्टर कर दें जिसकी वजह से द फीटस डाइज, तो फिर वो एमटीपी में नहीं कवर होगा, फिर वो एक क्रिमिनल ऑफेंस हो जाएगा अबाउट कॉजिंग मिसकैरेज.
3: सो अमेजिंग. ऑलराइट, अभी तक हमने जो बात करी है यहाँ पर एग्जैक्टली बेसिक टर्म्स को समझने की कोशिश करी है. एग्जैक्टली रिप्रोडक्टिव राइट्स हम किसको टारगेट कर रहे हैं, क्या हम यहाँ पर बोल रहे हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस वी टॉक्ड अबाउट एमटीपी, वी टॉक्ड अबाउट थ्री पिलर्स विच आर ऑटोनमी, इक्वालिटी, प्रिवेसी. ऑन दिस नोट लेंगे म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद अपने शो में आके बात करेंगे. फर्दर कुछ क्वेश्चन हैं जो यहाँ पर हम लोग डीकोड कर रहे होंगे. जस्ट स्टे ट्यून्ड विद अस, फील गुड, फील लाइफ.

0: वेलकम बैक, मैं अर्जित सागर। शो यहाँ पर चल रहा है सत्यमेव जयते, एंड हमारे साथ मिस चैताली। रिप्रोडक्टिव राइट्स हम बात कर रहे हैं, डीकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी के लिए एक टैबू है आज भी, जिसमें कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि शायद मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ उस तरफ किसी इंसान को ऐसा लग रहा होगा क्यों बात कर रहे हैं इस टॉपिक के ऊपर, ठीक है। बट द रियलिटी इज, द फैक्ट इज कि कानून हमें जब खुल के बात बोलता है, कानून और संविधान हमें अधिकार देता है, तो पता होना चाहिए। दैट इज द फर्स्ट थिंग। इसमें चैताली मैम, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा कि अबॉर्शन एक्चुअली लीगल है इंडिया में, या फिर कुछ पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं, कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस होते हैं जहाँ पर लीगल इसको किया जाता है?
1: तो अबॉर्शन लीगल है, बट अबॉर्शन के लिए इफ अ वुमन डिसाइड्स टू प्रोसीड, तो कुछ सर्कमस्टेंसेस हैं जो MTP एक्ट में ही लिखे गए हैं। तो जब भी एक वुमन की कंसेप्शन होती है, तो अलग अलग वीक्स के हिसाब से उनकी प्रेगनेंसी को मॉनिटर किया जाता है, तभी कहते हैं 37 से 40 वीक्स। आपकी वीक के हिसाब से डिसाइड होता है कि आपको किस तरह से अबॉर्शन की परमिशन मिलेगी, जो एक मेडिकल प्रैक्टिशनर ही दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, पहले क्या होता था जब ये लॉ आया था कि अप टू 12 वीक्स तक इफ यू आर प्रेग्नेंट, तो आप एक प्रैक्टिशनर से परमिशन लेके उनके अप्रूवल के साथ यू कैन गेट द अबॉर्शन कंडक्टेड। 2021 में ये लॉ रिवाइज हुआ था, नाउ दैट इज 20 वीक्स। तो अप टू 20 वीक्स अगर एक वुमन अबॉर्शन करवाना चाहती हैं, वन सिंगल मेडिकल प्रैक्टिशनर्स ओपिनियन इज सफिशिएंट। आफ्टर 20 वीक्स, जब हम कहते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 5th मंथ शुरू हो गया है एक वुमन का, बिकॉज फीटस की डिवेलपमेंट और एडवांस्ड हो गई है, और इस स्टेज पे आपके पास ये सारे अल्ट्रासाउंड एंड अदर मेडिकल टेक्नोलॉजीज हैं कि आप और डिटेल से फीटस को देख सकते हो, 20 से 24 वीक्स में अगर कोई एबनॉर्मैलिटीज निकलती हैं, कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हैं, या आपकी स्कैन्स में कुछ एक कंसर्न आता है, तो द डॉक्टर विल अगेन रेकमेंड कि अगर आपको MTP के साथ आगे प्रोसीड करना चाहिए या नहीं। अब इसमें क्योंकि ये एक एडवांस स्टेज है, सो बिटवीन 20 to 24 वीक्स आपको कम से कम 2 प्रैक्टिशनर्स का ओपिनियन चाहिए। यूजुअली प्रोसेस क्या होता है हॉस्पिटल्स में कि आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट या अपने डॉक्टर के पास जाएंगे, वही सजेस्ट करती हैं कि दूसरा प्रैक्टिशनर कौन है, उनका ओपिनियन लेके आइए, आपस में डिस्कशन होता है, देन दी सेकेंड प्रैक्टिशनर जो यूजुअली एक फीटल मेडिसिन एक्सपर्ट होते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं, एंड देन दे अग्री टू दी अबॉर्शन। आफ्टर 24 वीक्स, क्योंकि हम एक और एडवांस स्टेज पे चले गए हैं, विच इज़ इन द रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस, जहाँ पे सीवियर एबनॉर्मैलिटीज हैं या वुमन की हेल्थ को भी एक खतरा हो सकता है, मे बी हर लाइफ इज एट डेंजर इफ शी कंटिन्यूज विद द प्रेगनेंसी, तो ऐसे सिचुएशंस में स्टेट मेडिकल बोर्ड का ओपिनियन चाहिए होता है। तो ये वाले गाइडलाइंस MTP एक्ट में ही लिखे हैं। उसके अलावा अगेन इट डिपेंड्स ऑन कि आप किस स्टेज पे हैं। तो अगर आप बहुत इनिशियल स्टेजेस पे हैं ऑफ द प्रेगनेंसी, लेट्स से मे बी 3 वीक्स 4 वीक्स, तो ज़रूरी नहीं है कि सर्जरी के थ्रू होगा, बट ऑफकोर्स अगर आप 20 वीक्स क्रॉस कर चुके हैं तो सर्जरी के थ्रू या डिलीवरी के थ्रू, जैसा भी प्रोसेस होता है। व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट हियर इज़ कि हमेशा मेडिकल प्रैक्टिशनर डॉक्टर का ओपिनियन चाहिए। आप खुद से जाके केमिस्ट को कह दें कि भैया आप दवाई दे दो, मैं ले लूँगा, तो वो भी लायबल होंगे ऑफेंस के लिए और आप भी लायबल होंगे। यू रिक्वायर द अप्रूवल ऑफ अ डॉक्टर।
0: ओके, 2-3 क्वेश्चन मेरे यहाँ पे उठते हैं। पहला तो ये कि अगर मैं ये बात समझूँ, यहाँ पर विद इन 20 वीक्स आप कह रहे हो कि एक किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर की हमें जरूरत होगी, एंड दैट्स मोर देन इनफ। ओके, क्या कोई भी फीमेल करा सकती है जाके?
1: हाँ जी, देर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, आपका एज क्या है। अगेन, पहले जब ये लॉ आया था तो इट वॉज ओनली अलाउड फॉर मैरिड वुमेन, बट मतलब हमें पता है इंडिया की हालात कैसे हैं, यहाँ पे चिल्ड्रन पे भी रेप होते हैं, यहाँ पे अनमैरिड वुमेन पे भी सेक्सुअल ऑफेंसेस हो सकते हैं। सो 2021 में जब अमेंडमेंट आया, अब ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि एक मैरिड वुमन ही अबॉर्शन करवा सकती है, इवन एन अनमैरिड वुमन कैन गो। एंड 20 वीक्स से पहले आपको सिर्फ डॉक्टर का अप्रूवल चाहिए, तो ये रीजनिंग नहीं होनी चाहिए कि क्यों करवाना चाहते हैं। इट कैन बी फॉर योर हेल्थ, फॉर द चाइल्ड्स हेल्थ, बिकॉज आपको चाइल्ड नहीं चाहिए, वॉट एवर रीजन, बट आपका मैरिटल स्टेटस या आपकी एज का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। रिस्ट्रिक्शन एज में यहाँ तब आता है, अगर मैं बात करूँ गर्ल्स लेस देन 18, तब लायबिलिटी बनती है, लायबिलिटी नहीं मतलब एक ऑब्लिगेशन है क्लिनिक की एंड डॉक्टर की टू कीप एन ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ दिस, क्योंकि उनको आगे स्टेट गवर्नमेंट को बताना है कि मे बी उनके ऊपर कोई रेप केस था या जो भी रीजन की वजह से प्रेगनेंसी हुई है एंड हमने अबॉर्शन के साथ प्रोसीड करा है। स्टिल उस इंडिविजुअल माइनर लड़की की कॉन्फिडेंशियलिटी और प्राइवेसी मेंटेन रहेगी। तो आप उनका नाम नहीं डिस्क्लोज करोगे, बट ये जरूर बताएंगे कि ऐसे एक माइनर हमारे पास आई थी।
0: ओके, सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, आपने एक बात बोली कि केमिस्ट शॉप पे जाके दवाई नहीं ले सकते हैं,
1: राइट,
0: बट द रियलिटी इज एग्जैक्टली अपोजिट। ठीक है, मतलब मैं फ्रेंकली आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बात बता रहा हूँ, आई हैव सीन सो मेनी पीपल कमिंग टू द केमिस्ट शॉप एंड जस्ट बाइंग दोज पिल्स। इज इट लीगल?
1: सो पिल्स आर ऑल्सो ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज। कुछ होती हैं आम के, जिसको हम इन लेमैन टर्म्स कहते हैं मॉर्निंग आफ्टर पिल, विच इज इमीडिएटली आफ्टर, लाइक मे बी वन डे और टू डे आफ्टर द एक्ट्स हैव टेकन प्लेस, योर सेक्सुअल इंटरकोर्स हैज टेकन प्लेस। प्रेगनेंसी जो नापी जाती है दैट इज बेसिस ऑन द डेट्स ऑफ कंसेप्शन। तो अगर आप 3 हफ्ते बाद या 4 हफ्ते बाद जाके ऐसे पिल्स मांग रहे हैं, एंड दिस डज कम टू द नोटिस ऑफ एनी स्क्रूटिनी अथॉरिटी, पुलिस ऑफिसर्स होगे, गवर्नमेंट अथॉरिटी होगी, तो लायबिलिटी आ सकती है। अगर आप जैसे आप रियलिटी की बात कर ही रहे हैं, ऐसे तो हमारे बहुत सारे क्लिनिक्स भी होते हैं जो अंडर द टेबल प्रोसीजर्स करवा के सब चीज़ें रिजॉल्व कर देते हैं, बट उनकी लायबिलिटी आएगी, दैट इज़ अ क्रिमिनल ऑफेंस अगर आपने एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के अप्रूवल के बिना कोई भी ऐसे एक्ट्स के साथ प्रोसीड किया है।
0: ऑलराइट, नाउ लास्ट क्वेश्चन टू दिस पार्ट इज, लेट्स से कोई फीमेल है, मैरिड फीमेल है, ओके, शी गॉट प्रेग्नेंट, अब उसका पति बोल रहा है, उसके इन-लॉज बोल रहे हैं कि हमें बच्चा नहीं चाहिए, और वो जबरदस्ती जाके अबॉर्शन करा देते हैं, इस केस में क्या होगा?
1: अगेन, वुमन का कंसेंट इज इम्पॉर्टेंट। तो अगर मैं इसी सिचुएशन को रिवर्स करूं कि अगर वुमन कहती है कि उनको नहीं चाहिए एक चाइल्ड, बट द फादर या द इन-लॉज रिफ्यूज टू गिव द परमिशन, तो दैट बिकम्स इररेलेवेंट, क्योंकि अकेले वुमन की ही कंसेंट जो है वो नेसेसरी है। आपको अपने हस्बैंड की या अपने इन-लॉज की कंसेंट नहीं चाहिए। जो आप सिचुएशन बता रहे हैं वो MTP एक्ट में नहीं आता, वो आता है हमारे BNS में, भारतीय न्याय संहिता में। अगर आप वुमन के कंसेंट के बिना उनको लेके जाते हैं और उनका अबॉर्शन करवा देते हैं, तो उस ऑफेंस को हम कहते हैं कॉजिंग मिसकैरेज, क्योंकि आपने उस वुमन की कंसेंट नहीं ली थी, और वो चार्जेबल होता है एज अ क्रिमिनल ऑफेंस अंडर द BNS।
0: ऑलराइट, तो उसको एज अ क्राइम देखा जाएगा,
1: उसको एज अ क्राइम देखा जाएगा।
0: ओके ओके ओके, एंड वहां पर फर्दर जो भी होगा, आई गेस मर्डर चार्ज वहां पर लगता है?
1: नहीं सर, मिसकैरेज का अपना एक अलग ऑफेंस है, तो इट इज नॉट कंसिडर्ड मर्डर। मर्डर तब कंसिडर किया जाता है द पर्सन इज ऑलरेडी, मतलब लाइक देर नॉट अ फीटस, इट इज अ ह्यूमन बीइंग हु हैज बीन बॉर्न, हु इज अलाइव। जब तक वो फीटस हैं तब तक उनको मिसकैरेज माना जाएगा। अगेन, उसमें भी कुछ वीक्स हैं, अर्ली स्टेजेस पे करवाया तो मिसकैरेज है, अगर एडवांस स्टेजेस पे करवाया तो मिसकैरेज क्विक विथ चाइल्ड है, क्योंकि उनकी जेस्टेशनल एज अकॉर्डिंगली बढ़ गई है, बट वो सारा क्रिमिनल ऑफेंस में आएगा क्योंकि वुमेन की कंसेंट नहीं थी।
0: ऑलराइट, एक और म्यूजिकल ब्रेक का, उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक जितनी हमने बात करी आपको समझ आ रही है। मैं बस ये रिक्वेस्ट आप लोगों से करूँगा, कृपया करके इस बात को सुनिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, आपके लिए राइट्स हैं, खासतौर पर अगर आप एक महिला हैं, आप एक फीमेल हैं, तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, रेलिवेंट है। ज़रूरी नहीं है कि आपकी लाइफ में एप्लीकेबल हो, आपके आसपास कोई हो सकती हैं, आपकी मे बी मेड हो सकती हैं, या किसी ऐसी फीमेल को आप जानते हो जिनको नहीं पता हो, उनको ये बात बताइएगा ज़रूर कि कानून आपकी हेल्प करने के लिए तैयार है। देर आर सो मैनी प्रोविजन्स फॉर यू, इट्स जस्ट इम्पॉर्टेंट टू मेक देम अवेयर। फिलहाल वक्त एक और म्यूजिकल ब्रेक का, स्टे ट्यून्ड विद अस, फील गुड, फील हाई।

0: वेलकम बैक, मैं हूं आरजे सागर। शो चल रहे हैं यहाँ पर सत्यमेव जयते और रेडियो मानवृष्ट 107.8 FM पर। हमें शो लेकर के आते हैं जहाँ पर कोशिश होती है कि आपको एक जिम्मेदार जागरूक नागरिक को बनाए, साथ साथ आपके अधिकारों से आपको हम रूबरू कराएं। अब अपने शो को हम आगे लेकर के चलेंगे। यहाँ पर एग्जैक्टली मैं ये बात करना चाहूंगा, अगर एक अनमैरिड फीमेल जाती है, क्या उसके पास सेम राइट्स हैं एग्जैक्टली, या उसको कुछ स्पेशल परमिशन चाहिए?
1: तो अगेन ये 2021 के अमेंडमेंट से इंट्रोड्यूस हुआ था कि इवन अनमैरिड वुमेन आर अलाउड कि वो मेडिकल टर्मिनेशन करवा सकती हैं, प्राइमरीली बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि टर्मिनेशन के लिए आपको किसी का अप्रूवल चाहिए हो। तो मैरिड वुमन और अनमैरिड वुमन को यहाँ पे हम सेम स्टेटस देते हैं। इवन इफ अ मैरिड वुमन गोज तो उनको अपने हस्बैंड की या फैमिली की अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं है, दे ओनली रिक्वायर डॉक्टर्स ओपिनियन। सेम थिंग अनमैरिड वुमेन के लिए है। एंड 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने इसी को थ्रू अ केस, जिसका मुझे नाम इस टाइम नहीं ध्यान, बट एज अ केस फिर से ये वाली बात बोली थी कि आप मैरिटल स्टेटस के बेसिस पे वुमेन के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। यही बात लिंक होती है जहां हमने शुरुआत करी थी कि इक्वालिटी होनी चाहिए। तो वेदर यू आर मैरिड और अनमैरिड, एज लॉन्ग एज यू आर एन अडल्ट, आपका अपना कंसेंट सफिशिएंट है और किसी कंसेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। कंसेंट की रिक्वायरमेंट आती है अगर आप बात करते हैं माइनर्स की। सो इफ देयर इज अ गर्ल जो 18 साल से छोटी हैं, उनको कंसेंट चाहिए होगी अपनी पेरेंट्स की या अपने गार्डियंस की, बिकॉज लॉ ये मानता है कि जो भी 18 साल से छोटा है अभी उनकी वो परहैप्स मेंटल डेवलपमेंट नहीं है कि वो ऐसे डिसीजंस अपने लिए खुद ले पाए। तो जितने भी राइट्स होते हैं वो हमेशा 18 के बाद ही मिलते हैं, जैसे राइट टू वोट हो गया, राइट टू ड्राइव हो गया। सिमिलरली यहाँ पे भी माइनर को हमेशा पेरेंट या गार्डियन की कंसेंट चाहिए, बट अनमैरिड वुमन हु इज एन अडल्ट किसी का अप्रूवल नहीं चाहिए।
0: ओके, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। लेट्स से देयर इज अ गर्ल, शी इज 19, शी इज मैरिड, सॉरी शी इज अनमैरिड, अब उसको अबॉर्शन कराना है, उसके पास पैसे नहीं जाने के, क्या सरकार की तरफ से कुछ ऐसा प्रोसीजर है? गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले कुछ ऐसे होते हैं हमारे पास?
1: गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं जो प्रोबोनो केसेस लेते हैं, समटाइम्स प्राइवेट डॉक्टर्स आल्सो टेक अ प्रोबोनो केसेस। वही बात है कि मेडिकल प्रैक्टिशनर की रिक्वायरमेंट हो, तो ये भी हो सकता है अगर डॉक्टर का ओपिनियन ये है दैट अबॉर्शन ना करवाने से या टर्मिनेशन ना करवाने से चाइल्ड की हेल्थ पे या वुमन की हेल्थ पे सिवियर डैमेज हो सकता है या कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्लिनिक्स समटाइम्स अलाउ फॉर दैट प्रोसीजर विद देयर ओन फंड्स। तो ऑफकोर्स ये है कि अगर आप प्राइवेट अस्पताल जाएंगे तो आपका खर्चा बहुत होगा, बट गवर्नमेंट अप्रूव्ड अगर आप हॉस्पिटल्स पे जाते हैं या स्टेट क्लिनिक्स में अगर आप जाते हैं जिनके पास रजिस्ट्रेशन हो इन चीज़ों के लिए, तो वो ये केसेस खुद भी टेकअप कर सकते हैं, स्पेशली इन स्मॉलर विलेजेस या इन स्मॉलर रिमोट एरियाज जहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल्स की इतनी अवेलेबिलिटी ना हो।
0: ओके, बट ये तो वो बात हो गई कि अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो रहा है हेल्थ को, लेट्स से कि उसको नहीं चाहिए बच्चा, इस केस में
1: स्टिल इट इज अलाउड, एज लॉन्ग एज शी इज एन अडल्ट शी इज अलाउड टू टेक हर ओन डिसीजन। वही जैसे मैं कह रही हूँ कि रीजन आपको देने की जरूरत नहीं है। अगर आप 20 वीक से पहले किसी भी स्टेज पे करवा रहे हैं, योर मेडिकल प्रैक्टिशनर योर डॉक्टर शुड बी कन्विंस्ड कि ये जो प्रोसीजर है ये सफिशियंट है या ये रिक्वायर्ड है। इट इज ओनली 20 वीक्स के बाद, क्योंकि आपकी बॉडी में काफी कॉम्प्लेक्स चेंजेस आ गए हैं या जेस्टेशनल एज बढ़ गई है, कि आपको एक से ज्यादा डॉक्टर्स का ओपिनियन चाहिए। एक और चीज़, क्योंकि आपने मैरिटल स्टेटस की बात करी थी, 2021 में एक और जो इंट्रोडक्शन हुआ था वो ये था कि लेट्स से कोई 20 से 24 वीक्स के बीच में उस टाइम पीरियड में है एंड उनका मैरिटल स्टेटस चेंज हो जाता है, मतलब शी बिकम्स अ डाइवोर्सी या शी बिकम्स अ विडो, उस केस में भी उनको स्पेशल परमिशन मिल सकती है बिटवीन द वीक्स ऑफ 20 to 24। तो ज़रूरी नहीं है कि फीटल एबनॉर्मैलिटीज ही हों, बिकॉज उनके मैरिटल स्टेटस में ये एक स्पेशल सर्कमस्टेंस अराइज हुआ है, देयरफॉर दे कैन बी परमिटेड अगर दो डॉक्टर्स का ये ओपिनियन है तो।
0: ओके, लेट्स से एक लड़की की शादी हुई है, चाइल्ड मैरिज हुई है, ठीक है, अभी वो माइनर है, शी 16, शादी हो गई, प्रेगनेंट हो गई, ठीक है, अब उसको जब अबॉर्ट कराना है तो क्या उसके पेरेंट्स का कंसेंट लगेगा, हस्बैंड का लगेगा?
1: ओके, तो सर इसमें ना बहुत सारे लॉज इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो मैं एक एक करके बताती हूँ। पहली बात तो चाइल्ड मैरिज करवाना अपने आप में एक पनिशेबल ऑफेंस है। दूसरी चीज, जिस लड़की की चाइल्ड मैरिज हुई है, जैसे ही वो मेजॉरिटी अटेन करती है वो उस मैरिज को नल एंड वॉइड करवा सकती है, मतलब कि ये माना जाएगा कि कभी उनकी शादी हुई ही नहीं थी। तीसरी चीज, माइनर्स के ऊपर मैरिटल रेप इज कंसिडर्ड एन ऑफेंस, तो मेजर्स पे मैरिटल रेप ऑफेंस नहीं माना गया है इंडिया में, बट माइनर पे अगर कोई हस्बैंड मैरिटल रेप करता है इट इज कंसिडर्ड एन ऑफेंस। चौथी चीज, जब भी किसी की शादी होती है किसी वुमन की, तो अब उनके लॉफुल गार्डियन उनके पेरेंट्स नहीं होते, उनके हस्बैंड होते हैं. तो इस केस में अगर उनको कंसेंट चाहिए, उनको अपने गार्डियन का चाहिए, विच विल बी द हस्बैंड, नॉट द पेरेंट्स.
0: ओके, ठीक है, परफेक्ट. बट अगर हस्बैंड मना करते हैं और लड़की चाहती है
1: जी,
0: तो क्या होगा?
1: देन दे कैन अप्रोच द स्टेट अथॉरिटीज. यहाँ पे आपकी इन्वॉल्वमेंट आती है नेशनल हेल्पलाइंस की, जहाँ पे आप जा सकते हैं वुमेन सेल के पास. आप कॉल कर सकते हैं पुलिस को, आप कॉल कर सकते हैं वुमेन हेल्पलाइन पे, और यू कैन गो टू एनी लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, जैसे आपका डालसा है या नालसा है, बिकॉज दे विल हैव दोस लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स जो फर्दर आपका केस आगे लेके जा सके. तो डायरेक्ट रूट नहीं है, थोड़ा सा इनडायरेक्ट रूट है, लेकिन लीगल रूट फिर भी अवेलेबल है. अनफॉर्चुनेटली क्योंकि ये चीज़ पता नहीं होती, इसलिए लोग वो शेडी क्लिनिक्स में चले जाते हैं जो बैकडोर प्रोसीजर्स करवाते हैं.
0: अगर कोई आपकी प्रिवेसी, जो हमने शो की ओपनिंग में बात करी थी कि आपकी प्रिवेसी इंपॉर्टेंट है, व्हाट इफ इट ब्रीचेस?
1: तो जिस डॉक्टर ने या जिस क्लिनिक ने आपकी प्रिवेसी को ब्रीच करा है, दे हैव टू पे अ पेनल्टी, एंड दे आर ऑल्सो एलिजिबल कि उनको इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है. तो उनकी पनिशमेंट्स वहाँ पे प्रोवाइडेड है.
0: ऑलराइट. अगर कोई डॉक्टर अपना काम ढंग से ना करे, मान के चलो ये सारे पैरामीटर्स पे खड़े उतरते हैं, लड़की चाहती है, शी इज 21-22 और वो नहीं चाहती बच्चा, लेकिन डॉक्टर उनको मना करता है और जानबूझ के एक्स्ट्रा पेपर वर्क के चक्कर में डालता है, क्या किया जाएगा?
1: अगेन दो ऑप्शंस हैं, आइदर आप उस डॉक्टर को कम्प्लीटली छोड़ के किसी और डॉक्टर के पास जाइए, सिंपलर वे, या मोर कॉम्प्लिकेटेड वे, आप उस डॉक्टर के अगेंस्ट कंप्लेंट करिए. तो फिर आप जा सकते हैं नेशनल हेल्पलाइन के थ्रू, आप जा सकते हैं स्टेट अथॉरिटीज में, आप जा सकते हैं कोर्ट के पास, एंड आप उस डॉक्टर के अगेंस्ट यू कैन रेज अ कंप्लेंट. यूजुअली वुमेन ये वाला प्रोसेस नहीं फॉलो करना चाहेंगी, बिकॉज वो आपकी एक मेंटल टोल भी ले लाता है. सो द ईजिएस्ट वे इज कि इतने सारे रजिस्टर्ड गायनोकोलॉजिस्ट हैं, अच्छे क्लिनिक्स के हैं, इट इज़ बेटर टू जस्ट गो टू अ डिफरेंट मेडिकल प्रैक्टिशनर और उनका अप्रूवल लेके, उनका ओपिनियन लेके आप फिर अपना टर्मिनेशन. मुझे एक इसमें ऐड करना है. सो एक बार पहले ही सत्यमेव जयते वी हैड कवर्ड मैटरनिटी बेनिफिट्स, तो मेडिकल टर्मिनेशन को उसमें भी एक अलग से प्रोविजन दिया गया है. यूजुअली वुमेन जो मैटरनिटी लीव पे जाती हैं, वो 26 हफ्ते यानी 26 वीक्स की लीव होती है. उसी लॉ में रिकग्नाइज्ड है कि अगर आप मेडिकल टर्मिनेशन करवाते हैं, यानी कि लीगली अबॉर्शन करवाते हैं, तो भी आपको 6 वीक्स की लीव मिलनी चाहिए. सो दिस इज एन एड ऑन प्रोविजन. अगर आप एज अ वुमन ये अवेल कर रहे हैं ऑप्शन MTP के अंडर, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको 6 वीक्स ऑफ पेड लीव दें, बिकॉज लॉ ये चीज कहता है.
0: ऑलराइट. That's it for today's show. उम्मीद कर रहा हूँ आज का शो आपको अच्छा लगा होगा. We talked about something जो बहुत बड़ा टैबू है अभी भी, एंड मुझे उम्मीद है कि बहुत जितना सिंपल वर्ड्स में हो सकता है, उतने सिंपल वर्ड्स में हम ये टॉपिक आपको समझा पाए होंगे. सो उम्मीद है कि आपको मजा आया होगा. अगर कोई फीडबैक है हमारे लिए या मिस चैताली के लिए कोई क्वेश्चन आपके पास है, सो 8010781078 इस नंबर पर आप ड्रॉप कर सकते हैं. आई मेक श्योर कि मैं उस क्वेश्चन का आंसर लूँ और एड्रेस कर पाऊँ आपकी क्वेरी को. और नाउ ऑन दिस नोट चलते हैं अपने शो के यहाँ पर कंक्लूड करेंगे. थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग हियर. मींस अ लॉट.
1: थैंक यू सो मच अगेन सर.
0: ऑलराइट दोस्तों, नाउ दिस इज RJ सागर साइनिंग ऑफ.

0: मात्र इन्हें ना इमारत समझो, संस्कृति की ये धरोहर है। ये इतिहास की गौरव गाथा, कला शिल्प की छवि मनोहर है। अतीत के उम्दा तजुर्बों का भरा हुआ सरोवर है। ये हमारे देश की धरोहर, इन्हें सहेजना हमारी जरूरत है। तो आइए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के संग लेक वादा, अपने देश की धरोहर को बचाएंगे और अपने देश को सम्मान दिलाएंगे।
1: This

0: हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण का खूबसूरत सा कार्यक्रम। और इस खूबसूरत से कार्यक्रम को हर हफ्ते मैं आपके लिए लेकर आती हूँ एक सशक्त महिला के साथ। उस सशक्त महिला की कहानी आपको सुनवाते हैं, उनके सशक्तिकरण के इस पूरी जर्नी से न सिर्फ आपको ढेर सारी मोटिवेशन मिलती है लेकिन साथ के साथ ढेर सारा इंस्पिरेशन भी मिलता है और आप एनकरेज होकर अपनी जिंदगी की बहुत सारी चीजों को बदल पाते हैं। सो महिला सशक्तिकरण हम सभी के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है ये तो आप सभी जानते हैं, लेकिन इस सशक्तिकरण की जर्नी पर आज मेरे साथ कौन होने वाली है चलिए आपको बता देती हूँ। आज हम बैठे हैं डॉक्टर प्रिया शर्मा के साथ जो कि प्रिंसिपल हैं रेयान इंटरनेशनल स्कूल फरीदाबाद, और आपका स्वागत करना चाहूंगी मैम रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के स्टूडियो में।
1: धन्यवाद भावना, इट इज अ प्लेजर टू बी हियर।
0: प्रिया जी, अगर मैं पहला सवाल आपसे पूछूं महिला सशक्तिकरण और उसकी डेफिनेशन, मेरा ये मानना है कि महिला सशक्तिकरण हर महिला के लिए बिल्कुल अलग है। शायद किसी के लिए ढेर सारा पैसा, किसी के लिए फ्रीडम, किसी के लिए घर से निकलने की आजादी, तो किसी के लिए एक बहुत बड़ी डेजिग्नेशन, किसी के लिए अपने गोल्स तक अचीव करना, तो शायद किसी के लिए सिर्फ एक कप कॉफी या चाय जाकर किसी रेस्टोरेंट में तसल्ली से पीना और अपने लिए मी टाइम निकाल पाना। सशक्तिकरण के मायने सबके लिए अलग है। आपसे अगर मैं जानना चाहूँ तो आप क्या डिफाइन करेंगी, आपको क्या लगता है क्या है महिला सशक्तिकरण?
1: भावना जी, ये बड़ा अच्छा प्रश्न आपने पूछा और ये आपने जो दायरे बताए हैं बहुत ही रेलेवेंट है। आई वुड से दैट हर पर्सन का अपना ओन डेफिनेशन होता है और मैं कहती हूँ अगर आप जो आपकी इच्छा है आप वो कर सकते हो, दैट इज़ कॉल्ड वुमन एम्पावरमेंट, दैट इज़ अ डेफिनेशन। आपको बिल्कुल बेहिचक जो आपकी मन में इच्छा है आप कर सकते हैं, और आपको अगर सारे समाज सपोर्ट कर रहा है, आपकी फैमिली सपोर्ट कर रही है, दिस इज़ कॉल्ड वुमन एम्पावरमेंट। अपनी इच्छाओं को उड़ान देना, आई वुड से दैट इज़ वुमन एम्पावरमेंट।
0: सो एक्चुअली सही मायने में देखिए बहुत कम लोग हैं जो सशक्त जीवन जी पा रहे हैं। आज भी महिलाएं कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हैं, आज भी महिलाओं के साथ बहुत सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन परेशानी ये है कि हम सशक्तिकरण के बारे में बातें तो बहुत करते हैं लेकिन इसे प्रैक्टिस नहीं किया जा रहा है। हम अपने घर की चार दीवारी में ही देख लीजिए तो कई बार हमें ये महसूस होता है कि यहीं सशक्तिकरण नहीं है, यहीं जो छोटे छोटे डिसीशंस हैं उसके लिए एक लंबा इंतज़ार की ज़रूरत होती है। कई बार शायद वो इंतज़ार इतना लंबा इसलिए होता है क्योंकि हाव भाव नहीं बदल पाते हैं। कई बार घर के जो बुजुर्ग होते हैं उनका सम्मान करते हुए आप कुछ कह नहीं पाते हैं और हमेशा ऐसा लगता है भाई एक परिवार है, एकजुट रहे, कहीं मन मुटाव ना हो, इसलिए सशक्तिकरण की बात मत उठाइए। बट कहीं ना कहीं महिलाओं को अपने हकों की या अपनी आज़ादी के लिए आवाज़ उठाना ज़रूरी हो जाता है। बट हाँ, चलिए अब हम जिंदगी बदल रहे हैं, जमाने बदल रहे हैं और साथ के साथ समय को बदल रहे हैं। एक प्यारा सा गाना, छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, लेकिन ये इंटरेस्टिंग सी कॉन्वर्सेशन जारी रहने वाली है। कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिएगा अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन के साथ यानी रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। फील गुड, फील लव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी वेमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण की आज खूबसूरत सी कड़ी और उतनी ही प्यारी सी। डॉक्टर पिया शर्मा हमारे साथ बैठी हैं। डॉक्टर पिया प्रिंसिपल हैं रियान इंटरनेशनल स्कूल फरीदाबाद। अपने कीमती समय में से समय निकालकर आज हमारे पास स्टूडियो में आई हैं। डॉक्टर पिया, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी महिलाओं के साथ आने वाले चैलेंजेस के बारे में। सो महिलाएं हैं तो चैलेंजेस तो होंगे ही। कई बार मैटरनिटी लीव चैलेंज बन जाती है, तो कई बार शादी का ब्रेक चैलेंज बन जाता है। कई बार आप खुद देखिए कि अपने डिसीजन खुद ना ले पाना या फिर इतनी हिम्मत ही ना कर पाना कि जिंदगी में मैं आगे बढ़कर क्या करना चाहती हूँ। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो बिजनेसेस करना चाहती थी, कभी बोल ही नहीं पाई, शायद उतनी हिम्मत नहीं हुई कि परिवार वालों को बता सके, और कई बार शायद वो सही मौका नहीं मिला। सो महिलाओं के साथ एक चैलेंज है कि वो युग दर युग बहुत सारी चीजों को क्रॉस करती हुई आ रही हैं, लेकिन आज यहाँ पहुंचने पर अगर मैं इस समय की बात करूं तो बहुत सारी चीजें हैं जहां मैं कहती हूँ महिलाएं प्रिविलेज्ड हैं, उन्हें वो चीजें मिल पा रही हैं, बट बहुत सारी चीजों में आज भी चैलेंज है। क्या लगता है, क्या है वो चीजें?
1: भावना जी, जैसे आपने मेंशन करा चैलेंजेस हैं, और हम देख रहे हैं कुछ वुमन, कुछ हमारी लेडीज आगे बढ़ गई हैं, बहुत आगे बढ़ रही हैं, और वो सारे मतलब सोसाइटी के सारे दर्जे से आ रही हैं, वेदर इट्स यू नो कहीं से भी, सारी जगह से आ रही हैं, विलेज से आ रही हैं, सिटी से देख रहे हैं। आप हिस्ट्री में चले जाइए, जोधा अकबर के टाइम में आपने देखा जोधा। व्हाट डू यू थिंक इज़ द एसेंस दैट वो एक लेडी को एक शक्ति देता है कि वो उठ के अपने इन्फॉर्म डिसीजंस लेके आगे बढ़ सके? एजुकेशन।
0: यस,
1: आई थिंक एजुकेशन इज़ द बिगेस्ट टूल। इट कैन ट्रांसफॉर्म यू, इट कैन ट्रांसफॉर्म योर थिंकिंग। वो आपको एक ऐसी शिक्षा देता है कि आप कैसे अपना जो आपकी इच्छाएं हैं उसको कैसे आप प्राप्त कर सकें, आप कैसे आगे बढ़ सकें, उसके साथ कैसे कन्विंस कर सकें सबको, सबका आदर सम्मान रख के कैसे आगे बढ़े। और देखिए, जब आपके पास एजुकेशन होती है, आप सोच समझ के डिसीजन लेंगे, आप सही डिसीजन लेंगे
0: जी।
1: और आपको कैसे सबको मनाना है अपनी डिसीजन के साथ, वो भी आपको तरीके आ जाएंगे
0: जी।
1: तो आई फील एजुकेटेड लेडी, एक एजुकेटेड लेडी है वो कभी भी ये नहीं कहेगी मैं सप्रेस्ड हूँ, क्योंकि वो अपना रास्ता ढूंढेगी,
0: एक्चुअली
1: ढूंढेगी। अगर इच्छा है वो अपनी इच्छा को उड़ान जरूर देगी, और यही हम अपने स्कूल्स में सिखाते हैं कि अपनी इच्छाओं को उड़ान दीजिए। देखिए, आप एजुकेशन, यहाँ पे अगेन मैं बार बार बोलूँगी, अगर आप ठीक हैं, आपकी डिसीशंस ठीक हैं, आपको सब कुछ कन्विंस, आप सबको कन्विंस कर सकते हैं, कोई भी आपको मना नहीं करेगा। है लोग जो आपको नीचे पुल करेंगे, पर आपको जो एजुकेशन दी है, जो विजडम मिला है, नॉलेज दी है, आपको आना चाहिए कैसे उन लोगों को भी टैकल करने को।
0: yes.
1: एक जो गुलाब का फूल होता है उसमें तांटे जरूर होते हैं जरूर,
0: yes.
1: है ना, पर अब हमारे पर होता है कि हम कैसे उस गुलाब के फूल को ले बिना चोट लगे अपने हाथों में,
0: विद अ
1: प्रिक इन अ हैंड। सो आई वुड से दिस इज व्हाट एजुकेशन डज टू अ वुमन और टू एनीवन। आई डोंट बिलीव मच इन वुमन एम्पावरमेंट, आई फील वुमन आर ऑल एम्पावर्ड टुडे एंड एवरीबॉडी has a right, men, women, all of us have a right, and ye hum pe hai, hum ladies pe hai, you know how we take it forward and move forward with that.
0: So bhai dekhiye, agar challenges ki main baat karu to waqai Dr. Pia ne kaha कि अगर आपके पास ढेर सारे चैलेंजेस हैं जो हर सदी हर युग में महिलाओं के साथ रहे हैं, तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही इलाज है, वो है शिक्षा। और वाकई देखिए, शिक्षा एक बहुत बड़ा टूल है, अगर आप देखें तो इस टूल से बहुत कुछ पाया जा सकता है। बात करेंगे इनकी जर्नी की, लेकिन उससे पहले एक प्यारा सा गाना, और आप कहीं मत जाना, जुड़े रहिएगा अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन के साथ। फील गुड, फील लाइव।

0: सफर होता।
1: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी वेमेन एम्पावरमेंट। डॉक्टर पिया शर्मा से आज बात हो रही है और चलिए अब इनकी ही जर्नी की बात करेंगे। डॉक्टर पिया शर्मा जो कि प्रिंसिपल हैं रियान इंटरनेशनल स्कूल सेक्टर 21 फरीदाबाद। और भाई एक बड़ी अच्छी चीज़ ये है कि अगर आप एक एजुकेशनिस्ट हैं, आप प्रिंसिपल हैं, तो आपके पास सबसे बड़ी शक्ति है कि आप बहुत सारे लोगों को एम्पावर कर सकते हैं एजुकेशन से। आपकी जर्नी के बारे में बात करूंगी डॉक्टर पिया। क्या जिंदगी में कोई ऐसा डिसीजन लिया जिसको लेने के बाद लगा यस ये एक बड़ा एम्पावरिंग सा डिसीजन है, आई डू नॉट रिग्रेट, अच्छा हुआ मैंने ये डिसीजन लिया। और ख़ास तौर पर मैं हमेशा एजुकेशनिस्ट के लिए ये सोचती हूँ और ये मानती हूँ कि उनके पास एक बहुत बड़ा टूल है जहाँ पर कि वो बहुत सारे और महिलाओं को, बच्चियों को सशक्त बना पा रहे हैं एजुकेशन से। सो आपके पास तो बहुत सारे पेरेंट्स आते होंगे, बच्चियाँ आती होंगी, आप तो उनका भविष्य बना रही हैं, कैसे?
2: भावना जी देखिए, मैं एक सर्विस बैकग्राउंड से हूँ, मेरे फादर एक सर्विस ऑफिसर थे, तो हमारी जो अपब्रिंगिंग रही है ना वो जेंडर इक्वालिटी पे रही है हमेशा, तो हमें ये पता नहीं था कि जेंडर इनइक्वालिटी एग्जिस्ट भी करती है कहीं भी। और हमें हमेशा बोला गया था, चाहे मेरा भाई है मैं हूँ, कि आप अपनी काबिलियत पे ही, आपको जो आपकी काबिलियत है आपको उतना ही मिलेगा और उतना ही हम सपोर्ट करेंगे
1: जी।
2: ठीक है, तो आपने अपना वर्थ प्रूफ करना है और हम हैं आपकी एजुकेशन को फर्दर फंड करने के लिए, मास्टर्स पीएचडी सब कराने के लिए। सो दैट इज व्हाट द टाइप ऑफ एजुकेशन वी वर गिवन। अब हम अपनी लड़कियों को भी, बच्चों को भी स्कूल में यही गर्ल्स को सिखाते हैं। हमारा बहुत ब्यूटीफुल एक प्ले भी हुआ था, इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल एक होता है जिसमें वे बैक अराउंड 8 साल पहले हम लोग ने दौड़ शुरू कर लिया था, 8-10 साल पहले, व्हाई गर्ल्स कैन नॉट प्ले क्रिकेट एंड वाई बॉयज़ कैन नॉट कुक, वाई, कहाँ लिखा है, कैसी कौन सी किताब में लिखा है। तो हमें ना, हमें बच्चों का ये सोच बदलना था कि भाई ऐसा नहीं होता, और इन बच्चों के माध्यम से पेरेंट्स का ये सोच बदलना था। और वहाँ से ही हमने एक छोटा सा एक नींव शुरू करी, एक यू नो ये एक अपना मूवमेंट शुरू करा रैन में, जिससे हमने ये चीज़ को बहुत क्लियरली अपनी सोसाइटी में डाला, अपनी कम्युनिटी में डाला और स्प्रेड कराया। सो वेन आई टॉक ऑफ दैट, हम डेफिनेटली गर्ल्स को सपोर्ट करते हैं एंड बॉयज़ को भी सपोर्ट करते हैं। देखो, देर इज जेंडर इक्वालिटी, वी बिलीव इन जेंडर इक्वालिटी, बॉय गर्ल सब समान। देखो, बोर्ड का पेपर होता है, कोई नहीं देखता गर्ल है या बॉय है, मार्किंग होती है बिल्कुल, नो इज नो जेंडर बायसेस। सो दिस इज वॉट वी वॉन्ट टू टीच ऑल्सो। एंड वेन वी टॉक ऑफ आर टीचर्स ऑल्सो, वी हैव एम्पावर्ड आर टीचर्स। टीचर्स समटाइम्स आर सप्रेस, टू मच ऑफ वर्क हो, घर पर प्रेशर होता है, आगे बढ़ने की काबिलियत होती है उस टीचर पर, तो हम उसे यू नो गाइड करते हैं कि आप कैसे अपनी फैमिली लाइफ को भी अच्छा रख सकते हैं और अपने अपने फैमिली वालों को भी समझा सकते हैं आप कैसे आगे बढ़ोगे। और देखिए, आज इतनी प्रिंसिपल्स हैं जो मेरे अंडर निकली हैं, डिफरेंट स्कूल्स में बैठी हैं, एंड आई थिंक इट्स जस्ट दैट इट द चाहत है अंदर, पर कहीं ना कहीं उन्हें एक सहारा चाहिए, और एक लेडी वुमन ही एक दूसरी वुमन का सपोर्ट बन सकती है और आगे उसे बढ़वा सकती है। तो आई फील दैट इज द बेस्ट वे, वुमन शुड हेल्प ईच अदर, वी शुड बी फ्रेंड्स विद ईच अदर एंड मेंटर्स टू ईच अदर, गाइड्स टू ईच अदर एंड जस्ट मूव फॉरवर्ड। और देखिए कहाँ आज, मतलब ऑफकोर्स आई थिंक सारी जगह वी कैन हियर वुमन एम्पावरमेंट हैपनिंग एंड वी

बात अच्छी होंगी और जो सास है वो किसी और काम में अच्छी होंगी। सो ये जो कंपैरिजन है ना, ये हमारी सोसाइटी क्रिएट करती है, और ज़रूरी हमें ये है कि इस कंपैरिजन को धीरे धीरे ख़त्म करते हुए हर इंडिविजुअल की जो बेसिक क्वालिटी है या कहना चाहिए उसका जो टैलेंट है उसके बारे में ज़रूर बात होनी चाहिए, तभी जाकर कहीं ना कहीं सशक्तिकरण और मजबूत होता जाएगा। जुड़े रहिएगा रेडियो मानवरचना 107.8 एफएम के साथ, वक्त एक और छोटे से प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक का। फील गुड, फील लाइव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी वेमेन एम्पावरमेंट। वेमेन एम्पावरमेंट यानी महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण के इस खूबसूरत से कार्यक्रम में आज हम बात करें हमारे गेस्ट डॉक्टर पिया शर्मा से, जो कि प्रिंसिपल हैं रियान इंटरनेशनल स्कूल। और पिया जी, अब आपसे जानना चाहती हूँ, एजुकेशन कितना अहम है किसी भी महिला या लड़की के लिए एजुकेटेड होना, और अगर मैं बात करूं उनके भविष्य की, सो एजुकेशन उन्हें किस प्रकार का ऐसा टूल देता है जिससे वो अपने भविष्य को शेप कर सके, अपने भविष्य को बना सके।
1: भावना जी, जैसे कि हमने बोला कि एजुकेशन आपको नॉलेज देता है, आपको इन्फॉर्म डिसीजंस का देता है कि कैसे आप अच्छे डिसीजंस ले सके। इन्फॉर्म डिसीजन मींस गुड डिसीजंस, राइट डिसीजंस टू बी मेड एंड मेक्स यू कॉन्फिडेंट। अभी आप में अगर ये सब काबिलियतें आ गई तो आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट तो हो ही जाओगे
0: जी।
1: आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए तो आपके लीडरशिप स्किल्स भी आएंगे, आप अपना वॉइस रेज करोगे अगेंस्ट एनी डिस्क्रिमिनेशन और एनीथिंग रॉन्ग दैट इज हैपनिंग टू यू
0: जी।
1: एंड मोर एवर आपकी बेटर हेल्थ एंड वेलबींग रहेगी। तो इससे बढ़िया कोई एक महिला जो बिल्कुल मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली फिट है, आई थिंक शी इज एम्पावर्ड एंड शी कैन चेंज द वर्ल्ड। सो दिस इज व्हाट आई फील एजुकेशन डज टू अ वुमन देयर आउट देयर। एंड ऑफ कोर्स व्हेन अ वुमन इज एम्पावर्ड एंड सो फिट, उसकी फैमिली ब्यूटीफुल होगी, फैमिली ब्यूटीफुल होगी तो उसकी सोसाइटी ब्यूटीफुल होगी और हमारा नेशन ग्रो करेगा। सो दिस अकॉर्डिंग टू मी आई वुड से दैट यू एजुकेट अ वुमन, यू एजुकेट जनरेशंस टू कम, एंड यू नो शी इज अ सोर्स ऑफ योर वैल्यूज, शी मेक्स यू लर्न, पीपल लर्न वैल्यूज, सोसाइटी बिकम्स फुल ऑफ वैल्यूज, यू हैव अ ब्यूटिफुल कंपैशनेट यू नो कम्युनिटी कमिंग अप। तो देखिए दुनिया कितनी सुंदर हो जाएगी अगर हर लेडी एम्पावर्ड होगी, और यही हमें मैसेज हर घर में पहुंचाना है, एम्पावर योर लेडी।
0: हर घर की महिला को अगर सम्मान मिलने लग जाए, उन्हें उनका ड्यू रिस्पेक्ट, जो मैं हमेशा कहती हूँ। सो आप देखिए घर में बहुत सारे काम है जो एक महिला करती है, और कई बार अगर आप कंपेयर करें ना, सो पूरे दिन में पुरुष शायद थोड़े से कम काम कर रहे होंगे, महिलाएं ज्यादा कर रही हैं। और इनफैक्ट इन टाइम्स ऑफ टुडे मैं ये जरूर कहूंगी कि कंपैरिजन नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो महिलाएं ऑफिस भी जाती हैं, घर भी आती हैं, बच्चों का भी रखरखाव करती हैं, पूरे परिवार का भी ख्याल रखती हैं। और ऐसे में अगर आपके परिवार में कोई फंक्शन है ना, तो पूरे परिवार को तैयार करके वो वहां भी पहुंच जाएंगी, उनके लिए गिफ्ट भी खरीद लेंगी। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर आप बाकियों से ये कहेंगे तो वो उसे इतने अच्छे से नहीं कर पाती। तो आई थिंक मोर देन दिस शायद हमें उसे वैल्यू करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए और उन्हें उनका ड्यू क्रेडिट जरूर देना चाहिए। कुछ छोटी छोटी चीज़ें मिस कर जाते हैं हम एज सोसाइटी, एज परिवार, एज नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स, कि हम उन्हें उनका क्रेडिट नहीं देते हैं, ना तो तारीफ करते हैं ना उन्हें ये जताते हैं और बताते हैं। ये तो शुक्र है कि कुछ अच्छे दिन आने लग गए हैं आजकल, मदर्स डे तो एटलीस्ट, और कुछ नहीं तो आप जाकर उन्हें बताते हैं। विमेंस डे पर सबको याद आता है कि हमारे घर में कोई महिला तो नहीं है, चलिए उन्हें एक गुलाब का फूल दे देते हैं। सो आई थिंक शायद ये दिन जो है इसलिए क्रिएट किए गए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनका जो रोल है वो अंडरमाइन होता आया है। बट आई थिंक यस, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज एजुकेशन आपको सबसे स्ट्रांग बनाती है और यही आपको पूरा का पूरा ये हक देती है कि आप अपना एक अच्छा भविष्य बना सकें। जुड़े रहिएगा रेडियो 107.8 एफएम के साथ। फील गुड, फील लव।

0: बेकरार।
1: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर इस प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद हम वापस आ गए हैं महिला सशक्तिकरण यानी वुमेन एम्पावरमेंट। दरअसल देखिए, जब कभी भी हम वी बोलते हैं ना और दो महिलाएं भी एक साथ आ जाएं, एक ही परिवार की दो महिलाएं एक साथ आ जाएं, तो आपने उस परिवार को देखेगा, हंसी खुशी से भरा हुआ परिवार मिलेगा। न मन मुटाव होगा, न जलेसी होगी, न किसी प्रकार का कोई क्रिटिसिज्म होगा। उस परिवार में आप देखेंगे लोग बहुत खुश हैं। सो ये जरूरी है कि महिलाएं एक दूसरे को वैल्यू करें, एक दूसरे के साथ खड़ी रहें। अब बात करते हैं उस चीज की जिसके बारे में एक जमाने से बात हो रही है लेकिन आज भी हमने इसे अचीव नहीं किया है। सो कार्यक्रम है महिला सशक्तिकरण। आज की हमारी बड़ी ही डायनेमिक गेस्ट हैं डॉक्टर पिया शर्मा, जो कि प्रिंसिपल हैं रियान इंटरनेशनल स्कूल, और ये हमारा सौभाग्य है कि आज आप समय निकालकर हमारे पास आई हैं। डॉक्टर पिया, हम हमेशा से जेंडर इनइक्वालिटी को फेस करते आए हैं। एक टाइम तो था जब वो एपरेंटली दिखता था, इनइक्वालिटी थी, महिलाएं पढ़ नहीं पाती थी, बच्चियों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, कन्या भ्रूण हत्या बहुत कॉमन थी। अब धीरे धीरे चीजें बदल रही हैं, लेकिन आज भी अगर आप देखें मेजरली हमारी सोसाइटी के रोल्स, और साथ के साथ अगर हम ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, तो बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां आज भी आपको क्लियरली दिखेगा कि महिलाओं को उनका ड्यू क्रेडिट या इक्वालिटी नहीं मिल रही है। बॉलीवुड इंडस्ट्री में तो सामने ही नजर आता है। अगर हम पेपैक्स की भी बात करें तो शायद हमारे शाहरुख खान जी जितना लेते हैं, दीपिका पादुकोण आज तक नहीं ले पा रही हैं, चाहे वो कितनी ही अच्छी एक्ट्रेस क्यों ना हो। सो चाहे हम बॉलीवुड देखें, हम बड़े कॉरपोरेट्स देखें, सो हम देखेंगे कहीं ना कहीं आज भी इनइक्वालिटी तो है, थोड़ी है, कहीं ज्यादा है, पर है। सो क्या लगता है इसे कैसे कोप किया जा सकता है और इसे खत्म कैसे किया जा सकता है?
2: भावना जी, देखो सबसे पहली चीज तो यही मैं फिर से दोहराऊंगी, जब आप देखते हो कुछ चीज ठीक नहीं हो रही, यू हैव टू रेज योर वॉइस। रेज योर वॉइस। आपने कहा कि लेडीज का मल्टीपल रोल है, आई एग्री। किसने बनाया ये मल्टीपल रोल्स लेडीज का?
1: वाकई
2: किसने बनाया? कम्युनिटी ने बनाया, सोसाइटी ने बनाया। वी हैव न्यूक्लियर फैमिलीज, जॉइंट फैमिलीज। एक लेडी जो सेम टाइमिंग पे अपने हस्बैंड के साथ बाहर जाती है काम करने को, सेम पे पैकेज ला रही है, इनफैक्ट समटाइम्स बेटर आल्सो, व्हाई इज इट एक्सपेक्टेड फ्रॉम हर कि वो एक्स्ट्रा काम करे? और इसकी आवाज कौन उठाएगा? जो लेडी है, जो सफर है, उसी ही कोई करना है। एंड बिलीव मी भावना मैम, आई एम टॉकिंग आउट ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, आई हैव सीन इट हैपनिंग। ये मतलब मैं ऐसे ही नहीं बात कर रही, हुआ है। और लोगों ने चेंज करा है अपने घरों में, लेडीज हैव चेंज, दे हैव मेड अ वे कि अगर मैं इतना ले रही हूँ और आप भी इतना ले रहे हो, सेम टाइमिंग है, कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, डिवाइड करते हैं वर्क
1: जी।
2: और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, आपने ना कोई मेडल लेना है किसी से। देखो अगर जिस दिन आप लोग, हमारी लेडीज के साथ एक इश्यू आता है, हमें दिखाना होता है मैं अबला नारी
1: जी,
2: मैं सब कुछ कर रही हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ। किसको दिखा रहे हैं आप बहुत अच्छी है? कौन आपको दे रहे हैं मार्क्स?
1: Exactly.
2: आप खुश हो? ठीक है, चेंज योर डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस पहले तो। आई हैव टू बी एवरीवेयर नहीं हो सकता, यू हैव टू मेक योर ओन वे। आप खुद आपका ये दंगल जो होता है ना, आपको खुद ही निकलना है। लोग आपके अराउंड सपोर्ट करेंगे आपको अगर आप हेल्प की आप हेल्प मांगोगे। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज दैट यू नीड टू रेज योर वॉइस, आस्क फॉर हेल्प। You know, ladies should support each other. That's what मेरे को हमेशा लगता है, वो best है, support होता है। और दूसरा, अगर आप ये सब कर रहे हो, पर आपको अपने को भी उतना काबिल बनाना है कि अगले को सोचे कि हाँ, ये एक अच्छे direction पे जा रही है, ये lead कर रही है, she has the caliber, I need to support. So आप में एक potential भी होना चाहिए उस चीज़ को करने के लिए, carry forward करने के लिए। So I would really again say, merit based होना चाहिए सब कुछ, man and a woman staying together. Divide your responsibilities. And आजकल paternity leaves भी होती हैं.
1: Yes.
2: We have that. And I think जो हमारा जो next generation बैठा है, you know, Gen Z, they believe in all that. Equality. Today's, you know, we hear girls are like, you know, ये आता है usually कि बहुत ज़्यादा आजकल की girls independent हो चुकी हैं. अच्छी बात है. I would say good.
1: Very good.
2: They are breaking the barriers of what we saw in our times. They are speaking out, they are raising concerns, and they are making everybody understand.
1: Yes.
2: See, there is a logic to it. You have to convince, and you can help yourself only. I would just say people who are not equipped with education, people who don't have a capability, उनको टाइम लगता है मैम उनको, और हम जैसी लेडीज को उनको भी हेल्प करना चाहिए ग्रो करने को, बिकॉज टुगेदर वी कैन ग्रो एंड मेक द सोसाइटी गो टुवर्ड्स यू नो राइज हायर एंड लेट इंडिया कम टू अ बिगर यू नो लेवल. वी कैन हैव इंडिया ग्रोइंग लाइक मैनिफोल्ड.
1: Yes.
2: If we can have this woman power coming into our, you know, in our nation as well. So I would really think is that real progress begins when equality becomes a shared responsibility. It's not one man's job, two men's job. It's all of us that we have to get together and work on that.
1: Okay, देखिए मैं ये ज़रूर कहूँगी कि हमारा समाज थोड़ा सा बदल रहा है. अगर हम अर्बन सिटीज़ की बात करें तो आज अर्बन लेवल में बहुत हद तक ये बदलाव आ रहा है. या तो आपको कहीं हेल्प मिल जाती है या इक्वालिटी कहीं ना कहीं आप उसे अचीव करने की कोशिश करते हैं. लेकिन थोड़े से रूरल बैकग्राउंड में जाएं तो आज भी इक्वालिटी का चैलेंज है. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आने वाली जनरेशन इस इक्वालिटी को ज़रूर प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रही है और धीरे धीरे ये समाज में आ रहा है. यानी आज हमारा समाज बदल रहा है, कल हमारा शहर बदलेगा, परसों हमारा देश बदलेगा, इसी तरीके से शायद ये पूरा परिवेश बदलेगा. और यही सबसे खुशी की बात है कि हम ये बदलाव अभी देख पा रहे हैं. यानी इक्वालिटी को हम आने वाले समय में ये कह सकते हैं कि हम महसूस कर पाएंगे. फिलहाल वक्त एक छोटे से प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक का. आप जुड़े रहिएगा अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन के साथ, यानी रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ. फील गुड, फील लव.

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण की खूबसूरत सी कड़ी। और आज की इस कड़ी की हमारी शान जो है वो है डॉक्टर पिया शर्मा, जो कि प्रिंसिपल हैं रियान इंटरनेशनल स्कूल। आज बहुत सारी बातें हमने की, और सही मायने में जब एजुकेशनिस्ट के साथ बैठो ना तो बड़ी ऑप्टिमिज्म की फीलिंग आती है। लगता है कि देश बदल रहा है, दुनिया बदल रही है और चीज़ें आसानी से बदल जाएंगी, क्योंकि इनकी सोच भी पॉजिटिव होती है और ये उसी पॉजिटिव नज़रिए से अपने स्टूडेंट्स को और कहना चाहिए आसपास के समाज को बदल रहे होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रिया, आज आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे लिसनर्स को इतनी बेहतरीन जानकारी दी। लेकिन जाते जाते क्या खास मैसेज आप देकर जाना चाहेंगी?
1: सबसे पहले लेट फेयर नॉट डिफाइन योर फ्यूचर, डरो मत
0: जी,
1: जो आपको करना है करो। आप अपना फ्यूचर देखिए क्या है और उसको लिव करिए, जाइए उसकी तरफ। Remember, your voice matters, your dream matters, and your contribution matters. And to get all this, you need to invest in education. आपको पढ़ना पड़ेगा, जितना पढ़ाई कर सकते हैं करिए और अपने आप में बिलीव करिए और कभी भी पढ़ना बंद मत करिए। लर्निंग, एवरी फेज इज़ अ लर्निंग फेज, लर्न करिए। देखिए अगर आप एजुकेटेड हैं, आप लर्निंग पे रहेंगे, आप निर्भर हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता। सो दिस इज माय मैसेज टू ऑल द वुमेन देयर एंड टू ऑल द पेरेंट्स देयर, एम्पावर योर गर्ल्स, गिव देम लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, यू नो, ट्रस्ट देम एंड आई थिंक गिव रिस्पेक्ट टू देम। रिस्पेक्ट स्टार्ट्स एट होम, तो अपनी गर्ल्स को रिस्पेक्ट दीजिएगा, आप अपनी लड़की को रिस्पेक्ट करेंगे, समाज आपकी लड़की को रिस्पेक्ट करेगा। सो आई थिंक दैट इट्स बेटर, लेट्स बिल्ड अ वर्ल्ड वेयर एवरी वुमन इज वैल्यूड फॉर हर एबिलिटीज एंड अ फ्रीडम is to achieve her aspirations is given to each one of them. Let them fly and our nation will definitely touch skies, I would say that with that.
0: कितना खूबसूरत सा संदेश है भाई। वाकई हम हमेशा ये कहते हैं हम सब कुछ जो अचीव करते हैं उसकी शुरुआत हमारे घर से होती है। सो अगर हम चाहते हैं कि इक्वालिटी रहे, सशक्तिकरण रहे, तो समाज के सशक्तिकरण के लिए ज़रूरी ये है कि हम इसकी शुरुआत भी घर से करें। कई बार ऐसा होता है कि एक ही घर होता है और उसी घर में पुरुष और महिलाएं रह रही होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक इनइक्वालिटी नज़र आ रही होती है, पावर एक्सचेंज नज़र आ रहा होता है कि पुरुष जब आते हैं तो महिलाएं जल्दी जल्दी अपने घर के काम में बिजी हो जाती हैं कि भाई अभी वो आने वाले हैं, इसकी सब तैयारी कर लीजिए। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क रही, चाहे वो कैसा भी है, सो कहीं ना कहीं सबको ऐसा लगता है कि समाज में एक इक्वालिटी रहेगी और घर में ही इक्वालिटी है। सो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों का ख्याल रखने की ज़रूरत है। और मैं तो हर बार आपसे एक ही बात कहती हूँ, एक ही जीवन है, दूसरे जीवन में क्या मिलने वाला है कोई गारंटी नहीं है। सो आप महिला हैं या पुरुष हैं, प्लीज इसे अच्छे से जिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लेकिन कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन के साथ। तहे दिल से धन्यवाद डॉक्टर प्रिया, आज आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे लिसनर्स को इतनी बेहतरीन जानकारी दी।
1: धन्यवाद भावना जी, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपके स्टूडियो में आके। इट वॉज अ वेरी इनरिचिंग सेशन दैट वी हैड टुगेदर, थैंक यू सो मच।
0: दोस्तों वक्त है आपसे इजाजत लेने का, बस इस गाने के साथ मैं ले रही हूँ आपसे इजाजत। कहीं मचाइएगा, जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। आरजे भावना को दीजिए इजाजत, अगले हफ्ते होगी मुलाकात। टिल देन फील गुड फील लव।

0: जो देश अपनी धरती को नष्ट करता है वो खुद ब खुद नष्ट हो जाता है। जंगल हमारी धरती के लिए बेहद जरूरी हैं, क्योंकि ये जंगल हवा को शुद्ध और ताजा बनाकर हम लोगों को नई शक्ति देते हैं। रेडियो मानव रचना 107.8 का संदेश, पर्यावरण की रक्षा, दुनिया की सुरक्षा, दुनिया की सुरक्षा।
1: रेडियो मानव रचना के सभी श्रोताओं को संदीप सिंगल का नमस्कार। दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका आपके अपने प्रोग्राम नई सोच नई दिशाएं में, जिसे हम लेकर आते हैं हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे। जैसा कि हम अपने श्रोताओं को बता दें कि इस प्रोग्राम में हम चर्चा करते हैं किसी एक ऐसे मुद्दे पर जो जुड़ा होता है हमारे आपके जीवन से, और वो मुद्दा वो विषय भी ऐसा जो हमारे आसपास होता है, हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं जाने अनजाने में हम अनदेखी कर जाते हैं या नज़रअंदाज कर जाते हैं ऐसे किसी मुद्दे को। तो रेडियो मानव रचना का हमेशा से प्रयास रहता है कि हम ऐसे विषयों को एक नई सोच के साथ नई दिशाएं प्रदान करें, जो आपको लेकर के जाएं एक बेहतर भविष्य की ओर। तो श्रोताओं, आज का जो मुद्दा है वो जुड़ा हुआ है हमारे एजुकेशन सिस्टम से। आमतौर पर आपने देखा होगा कि बच्चों की जब एजुकेशन की बात आती है तो एक हर किसी का एक सपना होता है कि बच्चे बाहर पढ़ें, देश की जो शिक्षा व्यवस्था है वो अपनी जगह एक अपना स्थान रखती है, लेकिन एक सपना हर किसी के मन में पल रहा होता है कि उनका बच्चा विदेश में पढ़े। तो आज का मुद्दा इसी मुद्दे विषय पर चर्चा हम करेंगे, विदेशी शिक्षा बनाम भारतीय शिक्षा, यानी सपनों की उड़ान या जड़ों की पहचान। जैसा कि हमने अभी कहा कि हर दूसरे घर में एक सपना पल रहा होता है, बेटा विदेश जाएगा, बड़ी किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा और एक शानदार नौकरी करेगा, लेकिन क्या विदेशी शिक्षा वास्तव में हमारी इंडियन एजुकेशन से बेहतर है? क्या भारत में पढ़कर भी वैश्विक सफलता हासिल की जा सकती है? और सबसे बड़ा सवाल कि डिग्री के बाद नौकरी और प्लेसमेंट में कौन आगे है, फॉरेन एजुकेशन या इंडियन एजुकेशन? तो आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे विदेशी और भारतीय शिक्षा व्यवस्था की, उनकी फीस की, उन अपॉर्चुनिटीज की, प्लेसमेंट की और पैकेजेस की। तो दोस्तों, ब्रेन ड्रेन और ब्रेन गेन की उस सच की जो सोशल मीडिया की चमक से बिल्कुल कहीं अलग है, बहुत ज्यादा जरूरत है हमें इस मुद्दे पर चर्चा करने की, जो हमारी सोच को एक नई दिशा देने का काम करेगा। आखिर क्यों बढ़ रहा है विदेश जाने का सपना? जो हम बात करते हैं कि फॉरेन एजुकेशन की तरफ जो लोगों का रुझान है, आखिर उसके बढ़ने के पीछे का कारण क्या है? दोस्तों, भारत दुनिया के उन देशों में से है जहां से सबसे अधिक छात्र विदेशों में पढ़ने जाते हैं। शायद आपको ये बात सुनकर के बड़ा आश्चर्य होगा, लेकिन ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है हमारे अपने देश की। सरकारी और शिक्षा जो रिपोर्ट्स हैं उनके अनुसार पिछले वर्षों में लगभग 7 से 8 लाख छात्र विदेशी शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाहर गए, चाहे उसमें अमेरिका हो, कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, ये वो देश हैं जो उनकी सबसे पहली पसंद बने हुए हैं। श्रेणी में न्यूजीलैंड, फिनलैंड, बहुत सारी एक लंबी फहरिस्त है। लेकिन आखिर इसके पीछे के कारण क्या है? कारण है वहाँ के मॉडर्नाइज कैंपस, उनकी जो स्टडी का जो तरीका है और रिसर्च बेस्ड जो एजुकेशन है वो, उनकी बेहतर प्रयोगशालाएं जो हम लेबोरेटरीज लैब्स की बात करते हैं, और साथ ही साथ जो एक सबसे बड़ा फैक्टर काम करता है कि वर्ल्ड वाइड ग्लोबल जो एक्सपोजर है वो एक बहुत बड़ा चार्म है, एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन है फॉरेन एजुकेशन में। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं एक जो थॉट रहता है हर भारतीय के मन में कि यदि आप किसी भारत के बाहर की किसी यूनिवर्सिटी से शिक्षा ग्रहण करते हैं तो आपको किसी मल्टीनेशनल कंपनी में किसी ऊंचे पद पर या एक बड़े वेतन के साथ नौकरी भी लग जाएगी। तो जो ये उम्मीद है वो भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से विदेशों में अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने का जो सपना है वो बढ़ता जा रहा है। साथ ही साथ हम सोशल मीडिया पर अगर बात करें तो विदेशी जो यूनिवर्सिटी हैं, फॉरेन यूनिवर्सिटी हैं, उनकी जो चमकदार तस्वीरें हैं वो हमारे युवाओं को आकर्षित करती हैं। वहाँ की एमिनिटीज़ की जो यूनिवर्सिटी की जो डिटेल्स सोशल मीडिया के माध्यम से या आप देखते हैं विभिन्न जगहों पर, तो उनसे हमारे बच्चे, हमारे जो युवा हैं बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं। लेकिन आज तस्वीर बदल रही है। अगर हम फिलहाल की बात करें तो सन 2015 2025 में, यानी हमने अभी आपको 2024 का एक डेटा बताया कि जिसमें करीब 7.5 लाख छात्र बाहर गए, कंपैरिजन में 2024 के कंपैरिजन में 2025 में काफ़ी कम छात्र बाहर गए। उसका कारण जितनी भी फॉरेन की यूनिवर्सिटीज हैं उन्होंने अपनी फीस काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी। साथ ही साथ जैसा कि अभी आपने देखा था US में भी जो वीज़ा के नियमों में काफ़ी सख्ती कर दी गई थी, नॉट पर्टिकुलरली फॉर भारतीय छात्रों की हम बात करें बल्कि वैश्विक स्तर पर भी उन्होंने वीज़ा नियम काफ़ी सख्त कर दिए थे। और एक जो बड़ी चिंता, जो एक बहुत बड़ा आकर्षण था कि आपको बाहर पढ़ने के बाद किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बाद एक अच्छा पैकेज वाली नौकरी मिल जाती है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी पाई गई जिसकी वजह से ये 6% की गिरावट आई। और एक रिपोर्ट के अनुसार जो 43% जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं, जो भारतीय छात्र हैं, उन्होंने आर्थिक दबाव के कारण विदेश जाने का विचार छोड़ दिया, यानी बढ़ती हुई फीस और उस फीस के पैसे का अरेंजमेंट ना हो पाना भी एक कारण रहा इस गिरावट का। यानी अगर हम बात करें तो केवल फॉरेन जाना, अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ना अट्रैक्शन नहीं रहा, बल्कि आज के छात्र इतने स्मार्ट भी होने लगे हैं कि वो वैल्यू फॉर मनी देखने लगे हैं, यानी आपको कितनी फीस दे करके क्या पढ़ाई मिलेगी और उस पढ़ाई का आउटकम क्या होगा, कैसी जॉब मिलने के चांसेस बनते हैं, तो ये भी एक नज़रिया छात्रों का बदल गया है। और अगर हम उसको एक लाइटर नोट पे बोलें तो पहले सपना होता था कि विदेश जाना है, लेकिन अब सवाल होता है कि विदेश जा करके एजुकेशन लोन की EMI कौन भरेगा। यानी एक जागरूकता जो आई है उसने कहीं ना कहीं इस नंबर में, बाहर जाने के जो नंबर है परसेंटेज में, गिरावट लाने का काम किया है। तो दोस्तों इस विषय पर चर्चा को जारी रखेंगे इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM, आपका अपना फरीदाबाद का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, और मैं हूं आपका कम्युनिटी दोस्त संदीप सिंह।

वेलकम बैक दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है नई सोच नई दिशाएं में। और आज हम चर्चा कर रहे हैं इस कार्यक्रम में एक ऐसे मुद्दे पर जो जुड़ा है हमारे बच्चों की शिक्षा से, यानी हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम या बाहर का विदेशी एजुकेशन सिस्टम, दोनों में क्या अंतर है, अट्रैक्शन के कारण क्या हैं। और जो हमने अभी बात की कि सन 2024 में जहां 7.6 लाख स्टूडेंट्स बाहर गए थे पढ़ने, लेकिन 25 में वो करीब 6% गिरावट उसमें आई, तो उसके भी हमने अभी कारण आपको बताए। दोस्तों, जो भारतीय शिक्षा है उसकी ताकत को हम कम नहीं आंक सकते। मतलब अगर हम इंडियन एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो जैसा हमारा इतिहास रहा है, इतने बड़े बड़े शिक्षाविद हमारे देश में हुए हैं, तो यदि विदेशी शिक्षा की चमक हमें आकर्षित करती है तो कहीं ना कहीं हमारा जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है उसकी भी एक ताकत जो है वो हमें एक बहुत बड़ा आत्मविश्वास देती है। हम बड़े गर्व के साथ इस बात को कह सकते हैं कि भारत ने, हमारे देश ने दुनिया को इंजीनियर, डॉक्टर, वैज्ञानिक, आईटी विशेषज्ञ और साथ ही साथ बहुत बड़ी वैश्विक कंपनियों के सीईओ भी दिए हैं, जिनका मूल हमारा देश रहा है, हमारा भारत रहा है। और हमारी भारतीय शिक्षा की जो सबसे बड़ी ताकत है वो है हमारा मजबूत गणितीय आधार, साथ ही साथ कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी, जो कॉम्पिटिटिव जो प्रिपरेशन है वो एक बहुत बड़ी ताकत है हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम की। और दूसरी बात, जिसका दबाव आमतौर पर एक मध्यम वर्गीय परिवार हमेशा समझता है, वो है फीस। कंपैरेटिवली इंडिया में एजुकेशन जो हमारी है वो बहुत सस्ती है अगर हम फॉरेन एजुकेशन सिस्टम से कंपेयर करें। और साथ ही साथ हमारे यहाँ जो टैलेंटेड बच्चे हैं, जो ग्लोबली अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा टैलेंट देश में, भारत में, हमारे बच्चों में, हमारे युवाओं में पाया जाता है। और साथ ही साथ जो IITs हैं, IIM हैं, एम्स की बात हम करें या IISc जैसे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो पूरे वर्ल्ड में अपनी एक अलग जगह रखते हैं। पूरे विश्व में जो उनका सम्मान है वो बहुत शीर्ष संस्थानों में किया जाता है। लेकिन हमारे एजुकेशन सिस्टम के साथ साथ कुछ चैलेंजेस भी हैं जिनको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जैसे हमारे जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम में जो पढ़ाई कराई जाती है उसमें कहीं ना कहीं एक रटने की जो संस्कृति है, या फिर बहुत ज़्यादा एक परसेंटेज की जो फोकस रहता है कि आपको इतने अंक आने चाहिए, इतना परसेंटेज आना चाहिए, वो जो दबाव है वो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम का। और साथ ही साथ जो स्किल गैप और बड़ी लिमिटेड रिसर्च फैसिलिटीज़ हैं वो एक तरह का एक कमी वाला जो रोल है वो प्ले करती हैं हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में। ये एक कड़वी सच्चाई है जो हमें माननी पड़ेगी कि भारत में लाखों छात्र डिग्री तो ले लेते हैं लेकिन उद्योगों की ज़रूरतों के हिसाब से तैयार नहीं हो पाते। हमने आमतौर पर देखा है कि इंजीनियर इंजीनियरिंग की डिग्री हाथ में है, लेकिन यदि हम उनकी कार्यकुशलता की बात करें तो वो उतने बेहतर तरीके से उन कार्यों में अपनी जो एक्सपर्टीज है वो नहीं दिखा पाते हैं जितने लेवल की एजुकेशन उनके पास होती है। क्योंकि हमें ये मानना पड़ेगा, अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो आज की जो कंपनीज हैं वो केवल डिग्री नहीं देखती, वो देखती हैं उनके कम्युनिकेशन स्किल्स, वो देखते हैं उनकी प्रैक्टिकल नॉलेज, जो एक बहुत बड़ी आवश्यकता है हर उद्योग की, हर इंस्टीट्यूट की, या हम बात करें किसी भी कंसर्न की, किसी भी कंपनी की। जो इंटर्नशिप का जो एक्सपीरियंस है, AI और टेक्नोलॉजी की जो समझ है, वो सारी चीज़ें एक बहुत बड़ी ज़रूरत है किसी भी अच्छे संस्थान में नौकरी पाने के लिए। यानी समय अब बदल चुका है, केवल पढ़े लिखे होना काफ़ी नहीं है बल्कि आपको कार्यकुशल होना यानी स्किल्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, इस विषय पर, इस मुद्दे पर चर्चा को जारी रखेंगे। अभी लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है नई सोच नई दिशाएं में। और आज हम चर्चा कर रहे हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम वर्सेस फॉरेन एजुकेशन। और इसमें हमने देखा कि जो एक फीस है या जो अंकों का दबाव है, एक तरह की हमने बात की, जहां एक तरफ कम फीस होना हमारे लिए अट्रैक्शन हो जाता है, एक कंफर्टेबिलिटी दिखती है इंडियन एजुकेशन सिस्टम की, लेकिन वहीं जो लिमिटेड रिसोर्सेज ऑफ रिसर्च हैं या हम बात करते हैं अंकों का जो दबाव है, जो एक परसेंटेज गैदर कैप्चर करने का या हासिल करने का जो एक प्रेशर फील होता है, वो हमारे सिस्टम की कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी खामी भी है। और साथ ही साथ जिस तरह से हमने बात की कि अगर हम वर्ष दर वर्ष बात करें तो 2024 के मुकाबले 2025 में विदेशों में पढ़ाई करने के लिए जाने वाले जो छात्र हैं उनके परसेंटेज में गिरावट भी आई है। लेकिन अब हम बात करते हैं एक ऐसे मुद्दे की, इसी से जुड़ा हुआ, कि जो एक बहुत बड़ा आकर्षण होता है आमतौर पर विदेशों में शिक्षा पाने के लिए। यानी यदि आप किसी भी अच्छे फॉरेन यूनिवर्सिटी से एजुकेशन लेते हैं तो एक चार्म कहीं ना कहीं एक अट्रैक्शन मन में रहता है कि आपको एक बड़ी किसी कंपनी में एक बहुत अच्छे पैकेज के साथ जॉब मिल जाएगी। लेकिन आखिर इस बात का सच क्या है? दोस्तों, आज हर छात्र और अभिभावक का, जो पेरेंट्स का सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि पढ़ाई के बाद नौकरी कितनी अच्छी मिलेगी। यानी उनका एक बड़ा फोकस रहता है कि यदि आप कोई एजुकेशन ले रहे हैं, कोई भी टेक्निकल एजुकेशन ले रहे हैं, तो आपको उसके बाद कितनी अच्छी नौकरी मिलेगी। और ये वो सवाल है जिसके जवाब के आधार पर लोग चयन करते हैं कि किस इंस्टीट्यूट में, किस कॉलेज में बच्चे को एडमिशन दिलाना है, यानी किसकी प्लेसमेंट कहाँ बेहतर तरीके से होती है। यदि हम बात करते हैं इंडिया के जो टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं उनके जो प्लेस

ऊपर तक गया था। यानी अगर हम एवरेज पैकेज की बात करें, जो हमने 74% प्लेसमेंट की बात की, तो वहाँ का जो एवरेज पैकेज था वो भी 23 लाख पर एनम था। तो एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन हो जाता है ऐसे इंस्टीट्यूट का जहाँ की प्लेसमेंट 74% हो। या हम बात करते हैं IIT चेन्नई की, वहाँ पर 4.3 करोड़ तक का पैकेज मिला। बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग को जो एवरेज पैकेज था वो तकरीबन 53 लाख रुपये प्रति वर्ष, यानी 53 लाख पर एनम का रहा। दूसरी तरफ हम बात करते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नागपुर की, यानी IIT नागपुर का जो CSE विभाग है उसकी प्लेसमेंट, आपको यकीन कीजिए जानकर के आश्चर्य होगा कि 100% प्लेसमेंट हुई और वहाँ का जो एवरेज पैकेज था वो तकरीबन 15 लाख रुपीज पर एनम रहा। साथ ही साथ हम NIT जालंधर की बात करें तो वहाँ तकरीबन 900 जॉब ऑफर्स आए और 1 करोड़ रुपये से ऊपर का एनुअल पैकेज मिला। लेकिन दोस्तों सच्चाई ये भी है कि भारत का हर कॉलेज IIT नहीं है, यानी हमें ये बात समझनी पड़ेगी जो हमारे देश के इंजीनियरिंग के जो शीर्ष संस्थानों में जिनका शुमार होता है IITs का, हर कॉलेज वो कैटेगरी में नहीं आता। बहुत सारे जो सामान्य कॉलेज हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, वहाँ का प्लेसमेंट कमज़ोर है, ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा और ये कहीं ना कहीं एक खामी रह जाती है हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था की। अब सोचने वाली बात है कि जहाँ एवरेज जो सैलरी है वो कम है, कई छात्रों को नौकरी के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ता है, विदेशों में जो शुरुआती वेतन है, मतलब जो अट्रैक्शन होता है फॉरेन एजुकेशन का, वो ये भी कि जब इनिशियल जो वहाँ पर सैलरी ऑफर होती है वो भारत से बहुत ज़्यादा अधिक होती है। और पर्टिकुलरली अगर हम AI की बात करें, डेटा साइंस की बात करें, या फाइनेंशियल हेल्थ केयर या रिसर्च के क्षेत्रों की बात करें, फाइनेंस में, हेल्थ केयर में, रिसर्च में, AI में, इनमें जो एक एवरेज सैलरी है वो इंडिया के मुकाबले बाहर के देशों में बहुत ज़्यादा है। तो एक ये बहुत बड़ा अट्रैक्शन रहता है वहाँ पर पढ़ाई करने का। लेकिन आज की यदि हम बात करें, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि 2024 के बाद 25 में गिरावट आई, वो गिरावट आने का एक कारण ये भी था कि आज स्थिति वहाँ पर भी आसान नहीं रही है। बहुत सारे देशों में नौकरी जो है वो कंपटीशन जो उसमें है जॉब्स में वो बहुत बढ़ गया है, वीज़ा की इश्यूज हो गए हैं और साथ ही साथ कुछ जो टेक कंपनीज हैं उनमें रिट्रेंचमेंट भी हुई है, छटनियाँ भी हुई हैं। यानी अब केवल विदेशी डिग्री होना नौकरी की गारंटी नहीं रहा, ये कड़वा सच हमें आज स्वीकारना पड़ेगा। और ये एक बहुत बड़ा बदलाव है वैश्विक स्तर पर यदि हम बात करें, तो इसका एक जो लाभ है वो कहीं ना कहीं हमारे इंडियन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को भी सीधा सीधा मिल रहा है या मिलने वाला है, मिलेगा। तो दोस्तों इस चर्चा को हम जारी रखेंगे इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM, आपका अपना प्रोग्राम नई सोच नई दिशाएं, और मैं हूं आपका कम्युनिटी दोस्त संदीप सिंघल।

वेलकम बैक दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है नई सोच नई दिशाएं में। और इस प्रोग्राम को आप सुनते हैं हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। हर बार जो हम एक विशेष मुद्दे पर चर्चा आपके साथ करते हैं, तो आज का मुद्दा है विदेशी एजुकेशन बनाम भारतीय शिक्षा। अभी हमने बात की कि आखिर फॉरेन एजुकेशन के प्रति अट्रैक्शन क्यों रहता है, तो उसके पीछे के कारण थे वहाँ रिसर्च की फैसिलिटी, यूनिवर्सिटीज अट्रैक्टिव तरीके से दिखना, बड़े पैकेज की ऑफर्स आना, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ की जो महंगी फीस है या वहाँ का जो वातावरण है या डे बाई डे नौकरी मिलने में परेशानियाँ होना या वीज़ा की जो प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई हैं, उसकी वजह से थोड़ा लोगों में अट्रैक्शन कम हुआ है। लेकिन इसी से जुड़ा हुआ एक मुद्दा जो सीधा सीधा रिलेटेड है इंडियन एजुकेशन और भारतीय एजुकेशन से, वो है कि यदि हम विदेशी एजुकेशन की बात करते हैं तो उस पर होने वाला जो खर्च है, आमतौर पर हम बात कर लेते हैं केवल और केवल इंस्टीट्यूट्स के फीस की, यानी कोई भी शैक्षणिक संस्थान जो यूनिवर्सिटी है उसकी फीस कितनी है। लेकिन दोस्तों, विदेशी शिक्षा केवल यूनिवर्सिटी की फीस नहीं होती, उसमें शामिल होता है वहाँ पर रहने का खर्च, वहाँ खाने का खर्च, वहाँ इंश्योरेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस या जितने भी आपको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स चाहिए होते हैं, चाहे उसमें लैपटॉप है या कोई भी और एसेसरी। और साथ ही साथ जब आप किसी जगह पर रहते हैं, नई जगह पर विदेशों में, तो निश्चित रूप से वहाँ रहने के लिए आपको बहुत ज़्यादा अतिरिक्त खर्चा भी करना पड़ता है। और एक अनुमान के अनुसार जो हम कई देशों की हम बात करते हैं, तो उसमें तकरीबन किसी एक छात्र पर 20 से 40 लाख रुपए तक का खर्चा हो सकता है। हालांकि ये बात भी तय है कि छात्र अपने खर्चे को बियर करने के लिए, वहाँ एक्सपेंसेस को बियर करने के लिए पार्ट टाइम जॉब्स भी करते हैं, और वो कंपैरेटिवली इंडिया के मुकाबले वहाँ मिल जाती हैं और उनमें उनको पेमेंट भी अच्छा मिलता है। लेकिन फिर भी एक बड़ा गैप उस खर्चे और कमाई के बीच में रहता है। हालांकि सोशल मीडिया जो एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन का कारण बनता है, उसमें दिखाया जाता है बहुत सुंदर कैंपस है या वहाँ का जो वातावरण है या उस वहाँ का जो पर्यावरण की हम बात करें, क्लीन एयर और बर्फबारी और सुंदर दृश्य देखने वाले मिलते हैं, एक बड़े ही आधुनिक कैफ़े या एक जो लाइफस्टाइल वहाँ की है, विदेशी जो जीवनचर्या है, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। लेकिन इसी का एक दूसरा पहलू जो आमतौर पर सोशल मीडिया के माध्यम से हमें नहीं दिखाया जाता, वो है कि जो असली ज़िंदगी है वहाँ की, उसमें कहीं ना कहीं एक प्रेशर रहता है किराए का, बहुत महंगे महंगे रेंटल्स आपको पे करने पड़ते हैं, लोनलीनेस जो आपको अकेलापन महसूस होता है, वो एक बहुत बड़ा मानसिक अवसाद यानी डिप्रेशन का भी कई बार कारण बन जाता है। और कुछ देशों की तो जो जलवायु, जो पर्यावरण वहाँ का है, वो ऐसा होता है कि वहाँ पर जो इंडिया के मुकाबले दिन और रात में फ़र्क होना, सनलाइट की अवेलेबिलिटी ना होना, बहुत ज़्यादा समय तक अंधेरा रहना, बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके हम लोग आदि नहीं होते, तो वहाँ पर जा कर के उनको इस चीज़ का भी एक मानसिक जो स्थिति है वो बेहतर नहीं रह पाती। और साथ ही अकेलेपन के कारण या एक नई जगह के कारण एक मानसिक तनाव की स्थिति भी बच्चों में, युवाओं में देखी जाती है वहाँ के छात्रों में। और साथ ही साथ जब पढ़ाई की बात होती है, तो जैसा कि हमने कहा कि पार्ट टाइम जॉब करना या पढ़ाई के बाद जॉब हासिल करने के लिए जो प्रक्रिया वहाँ पर अपनाई जाती है, उसका भी एक बहुत दबाव और उसकी एक भागदौड़ जो है वो भी आपके जीवन का एक अभिन्न अंग बन जाती है। तो आपको समझना चाहिए कि जो भी विदेशी एजुकेशन हासिल करने जाना होता है या वहाँ पर कोई डिग्री लेना होता है, तो वहाँ पर किसी प्रकार की एजुकेशन ले लेना, चाहे वो यूनिवर्सिटी कितनी भी बेहतरीन स्थिति की क्यों ना हो, कोई गारंटी नहीं होती कि आपको वहाँ पर जा कर के जॉब मिलेगी ही, एक बेहतर जॉब मिलेगी या आपको जीवन में सफलता मिलेगी, वो कोई गारंटी नहीं होती है। तो इस सच्चाई को हमें साथ ही साथ ध्यान रखना चाहिए, जो एक बेहतर निर्णय लेने में हमारे लिए सहायता करती है या हमारे लिए सहायक होती है। तो इस चर्चा को जारी रखते हैं इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। अभी सुनिए एक खूबसूरत सा गीत, उसके बाद हम फिर हाजिर होंगे कार्यक्रम का अगले हिस्से में। तब तक सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका नई सोच नई दिशाएं में और मैं हूं आपका कम्युनिटी दोस्त संदीप सिंगल। आज हम चर्चा कर रहे हैं फॉरेन एजुकेशन वर्सेस इंडियन एजुकेशन सिस्टम की। आमतौर पे हमने अभी बात की कि विदेशों में बच्चों को पढ़ने भेजना एक बड़ा हर किसी परिवार का सपना होता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बहुत महंगी फीस दे देना, एक आर्थिक दबाव की स्थिति पैदा होना, तो वो कहीं ना कहीं हमें रोकता है। लेकिन पिछले कुछ समय में जिस प्रकार का माहौल बदला है विदेशों का, उससे काफ़ी संख्या में कमी आई है और हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम जैसे इम्प्रूव हुआ है, अच्छे अच्छे कॉलेजेस और रिसर्च फैसिलिटीज़ का आ जाना एक बहुत बड़ा कारण बना है कि बच्चों में बाहर के देशों में जाने की अट्रैक्शन कम हो गई है। और साथ ही साथ अभी हमने हाल ही में कुछ खबरें सुनी कि बाहर की जो विदेशी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपने कैंपस इंडिया में भी बना रही हैं, तो आप समझ सकते हैं कि हालात किस तरह से बदल रहे हैं और हमारे देश में बेहतर शिक्षा व्यवस्था के जो ऑप्शंस हैं वो भी बढ़ रहे हैं। और एक पहलू जो फॉरेन एजुकेशन का है वो ये भी है कि जब कोई भी टैलेंटेड जो बच्चे हैं वो बाहर जाते हैं, विदेश जाते हैं, तो अक्सर कहा जाता है कि हमारे देश की प्रतिभा बाहर जा रही है। आमतौर पर आपने सुना होगा कि विदेशों में बहुत अच्छे सफल डॉक्टर्स जो हैं वो इंडियन ओरिजिन से हैं, यानी देश से हमारे ही गए हुए हैं। बड़े बड़े इंजीनियर, बड़ी बड़ी कंपनी के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं वो इंडियंस हैं और ये प्रतिभा हमारे देश की ही है। और इसको कहा जाता है ब्रेन ड्रेन, यानी एक शब्द इसके लिए किया गया ब्रेन ड्रेन। और एक रिसर्च के अनुसार जो इंटरनेशनल लेवल पर जाने वाले जो इंडियन जो शोधकर्ता हैं, जो रिसर्चर्स हैं, उनमें से 73% वापस नहीं लौटते। आप समझ सकते हैं कि एक बहुत बड़ा नंबर है कि जो यदि 100 लोग बाहर जाते हैं तो उसमें से 73 लोगों की संभावना रहती है कि वो वापस नहीं लौटते हैं। लेकिन आने वाले समय के साथ साथ ये तस्वीर बदल रही है, यानी सिचुएशंस काफ़ी चेंज हो रही हैं। बहुत सारे छात्र वो इस थॉट के साथ जाते हैं कि हम बाहर जा कर के पढ़ें, वहाँ पर एक्सपीरियंस लें, इंडिया में वापस आकर के अपना स्टार्टअप शुरू करें, साथ ही साथ जो वहाँ चीज़ें सीखी हैं उनको यहाँ आकर के और लोगों से शेयर करके रिसर्च करें और जो उन्होंने ग्लोबल एक्सपीरियंस अर्न किया है उसको अपने देश में ले करके आएँ। तो वो बहुत एक नया बदलाव जो आना शुरू हुआ है, एक बेहतर स्थिति में हमारा देश, अगर हम एजुकेशन की बात करें तो बेहतर स्थिति में आता जा रहा है और आने वाले समय में इसको और ज़्यादा बेहतर होने की संभावनाएं भी बढ़ गई हैं। साथ ही जैसा अभी मैंने आपको कहा कि भारत में भी अब ग्लोबल कैंपसेज, इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस और जो नई हमारी एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके माध्यम से चेंज लाने की कोशिश की जा रही है, यानी शिक्षा नीति के माध्यम से भी बदलाव की कोशिश की जा रही है। यानी सवाल सिर्फ विदेश जाना नहीं है, सवाल ये है कि हमारे स्टूडेंट्स क्या सीख रहे हैं, वो कितने स्किल्ड हो रहे हैं और हमारी सोसाइटी को अपने एजुकेशन सिस्टम से सीखने के बाद क्या लौटा रहे हैं। यानी जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसका जो मूल भाव केवल और केवल एजुकेट करना नहीं होता, बल्कि उन युवाओं को शिक्षित करके देश की मुख्य धारा में ला करके देश के विकास के जो काम है, विकास की जो गति है, उसमें उनका योगदान भी सुनिश्चित करना होता है। ये सबसे ज़्यादा बड़ा मूल उद्देश्य होता है किसी भी देश के एजुकेशन सिस्टम का। तो दोस्तों अभी लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, सुनिए खूबसूरत सा गीत और उसके बाद हम फिर हाजिर होंगे, कार्यक्रम को लेकर के चलेंगे समापन की ओर। अभी सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM, आपका अपना प्रोग्राम नई सोच नई दिशाएं।

वेलकम बैक दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से नई सोच नई दिशाएं में। और आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आपका कम्युनिटी दोस्त संदीप सिंघल। आज हमने चर्चा की फॉरेन एजुकेशन वर्सेज इंडियन एजुकेशन सिस्टम की स्थिति में क्या बदलाव आया है, क्या परिस्थितियां बदली हैं। जिस तरह से हम कहते थे कि हर घर का एक सपना होता था कि उनका बच्चा बाहर पढ़े, विदेश में जाकर के शिक्षा ग्रहण करे, एक अच्छे पैकेज पर उसको नौकरी मिले या वो अपना कोई व्यवसाय करे, वहीं परिस्थितियां बदली हैं, लोगों की सोच बदली है। आज हमारे बच्चे, आज हमारे जो छात्र हैं वो बाहर पढ़ने जरूर जाते हैं, रिसर्च की टेक्निक सीखते हैं, समझते हैं और उन चीज़ों को लेकर के आते हैं अपने देश में वापस और यहाँ पर अपने स्टार्टअप शुरू करते हैं। और कहीं ना कहीं भारत की जो प्रगति है, आर्थिक प्रगति हम बात करें, यदि हम विकास की बात करें तो उसमें अपना योगदान देते हैं। अब अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो आखिर बेहतर कौन है, भारतीय शिक्षा या विदेशी शिक्षा? एक सवाल आप सभी के मन में आता होगा, लेकिन इस सवाल का कोई जवाब नहीं है, क्योंकि ये वो सवाल है जिसमें हर किसी की अपनी एक एक्सपेक्टेशन है, हर किसी का अपना एक थॉट प्रोसेस है, हर किसी की अपनी एक जीवन की एक, अगर हम बात करें, लक्ष्य है, गोल है। तो उसके हिसाब से यदि हम बोलें किसी छात्र को चाहिए कि बहुत हाई लेवल की रिसर्च, ग्लोबल एक्सपोजर या विशेष तकनीकी अवसर, तो विदेशी शिक्षा उसके लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकती है। ये डिपेंड करता है, जैसे हमने भी आपको कहा कि हर किसी की अपनी एक्सपेक्टेशन है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यदि हमारे ही किसी स्टूडेंट के अंदर कड़ी मेहनत, डिसिप्लिन और सीखने की इच्छा है, तो यकीन मानिए हमारे देश में अवसरों की कमी नहीं है, लेकिन उसको इस्तेमाल करने आना चाहिए और उसको इस्तेमाल करने का जज्बा भी आपके भीतर होना चाहिए। हमारे देश में ही IIT, IIM जैसे संस्थान हैं जो ग्लोबल लेवल के जो लीडर्स हैं उनको बनाने का काम करते हैं। यदि आप बात करें बहुत बड़े बड़े रिसर्च साइंटिस्ट की बात करें, हम देश से बाहर जो गए हैं, उनकी मूल जो शिक्षा है, जो एजुकेशन है, वो भी इंडिया में ही हुई है। ऐसे सैकड़ों की तादाद में हमारे पास उदाहरण उपलब्ध हैं। जैसे हम बात करते हैं कि हमारे ही देश के IIT और IIM के पढ़े हुए बच्चे जो ग्लोबली वेल नोन इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो गूगल है, चाहे माइक्रोसॉफ्ट है या अमेजॉन है, या और हम किसी ग्लोबल कंपनीज की बात करें, तो उनमें बहुत ही शानदार पैकेजेस के ऊपर काम कर रहे हैं। यानी हमें बात समझनी चाहिए कि जो असल जो फर्क है वो केवल देश नहीं बनाता, फर्क बनाता है छात्रों का दृष्टिकोण, यानी आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है या उनका स्किल या उनकी स्किल टू लर्न, यानी उनकी सीखने की जो क्षमता है, वो फर्क पैदा करती है कि आप किस देश में, किस कंपनी में, किस पैकेज पर कैसी नौकरी हासिल करते हैं या कैसा स्टार्टअप शुरू कर पाते हैं। लेकिन दोस्तों एक बड़ी मज़ेदार बात है और बड़ी सच्ची बात है कि पहले लोग आमतौर पर पूछते थे कि कौन सा कॉलेज मिला जब कभी एजुकेशन की बात आती थी, लेकिन अब लोग पूछते हैं कि प्लेसमेंट कितना मिला, यानी पैकेज ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है इंस्टेड ऑफ इंस्टीट्यूट। तो दोस्तों आज हमने समझने की कोशिश की है कि विदेशी शिक्षा और भारतीय शिक्षा दोनों की अपनी ताकत और अपनी लिमिटेशंस है। विदेश अवसर देता है और भारत आधार देता है, यानी हमारा जो देश है वो हमारी लाइफ का, हमारा एजुकेशन का फाउंडेशन देता है। और साथ ही साथ जो विदेशी डिग्री है वो कोई सक्सेस की गारंटी नहीं है। और साथ ही हमें समझना भी पड़ेगा कि जो भारतीय डिग्री है या हमारे इंडियन जो इंस्टीट्यूट्स की डिग्रियाँ हैं वो असफलता की भी पहचान नहीं है। यानी इस बात में यदि हम अंतर को समझें तो बाहर के देशों में पढ़ने की कोई गारंटी नहीं होती सफलता होना, और इंडिया में पढ़ना या इंडियन एजुकेशन सिस्टम का पार्ट होना कोई असफलता होने की पहचान नहीं है। असली शिक्षा वही है जो इंसान को सोचने की शक्ति दे, यानी आपको कुशल बनाए और आप अपने विजन और अपने लक्ष्य के बारे में सोच सकें और अपने समाज के प्रति जिम्मेदारी का एहसास करा सके। दरअसल असली शिक्षा वही है, जैसा कि हमने कार्यक्रम के बीच में भी कहा था कि जो शिक्षा का जो मूल उद्देश्य होता है वो केवल आपको शिक्षित करना नहीं होता, बल्कि आपके अंदर ये भाव पैदा करना कि जिस देश में, जहां आपने ये शिक्षा हासिल की है, जिस देश के आप नागरिक हैं, उस देश की प्रगति में आप अपने शिक्षित होने के बाद, कार्यकुशल होने के बाद किस प्रकार से योगदान दे सकते हैं। तो इस जिम्मेदारी का जो एहसास कराए, दरअसल शिक्षा का पूरा उद्देश्य जब ही होता है। तो दोस्तों इसी विचार के साथ हमें दीजिए अनुमति और नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नए विषय के साथ आपके पास फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए संदीप सिंघल को दीजिए इजाजत। तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव। नमस्कार।

0: सभी को प्यारे हैं अपने प्राण, फिर कोई और प्राणी हो या हो इंसान। वन्य जीव है प्रकृति का आधार, नहीं रहेंगे ये तो हम इंसान हो जाएंगे लाचार। आओ रेडियो मानवरचना 107.8 के साथ मिलकर ले ये संकल्प, वन्य प्राणियों को बचाएंगे, पृथ्वी पर जीवन को संतुलित बनाएंगे। संतुलित बनाएंगे।
1: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं यादों की डायरी प्रियंका के साथ, और आज की हमारी कहानी है काली सलवार, जिसे लिखा है सादत हसन मंटो ने।
2: दिल्ली आने से पहले वो अंबाला छावनी में थी, जहां कई गोरे उसके ग्राहक थे। इन गोरों से मिलने जुलने की वजह से वो अंग्रेजी के 10-15 शब्द सीख गई थी। इनको वो आम बातचीत में इस्तेमाल नहीं करती थी, लेकिन जब वो दिल्ली में आई और उसका कारोबार ना चला, तो एक दिन उसने अपनी पड़ोसन तमंचा चंद से कहा, दिस लाइफ वेरी बैड, यानी ये जिंदगी बहुत बुरी है जिसमें खाने को ही नहीं मिलता। अंबाला छावनी में उसका धंधा बहुत अच्छा चलता था। छावनी के गोरे शराब पीकर उसके पास आ जाते थे। वो 3-4 घंटे में ही 8-10 गोरों को निपटा कर 20-30 रुपए पैदा कर लिया करती थी। अगर वो उससे कुछ रियायत चाहते तो वो सिर हिलाकर कह दिया करती थी, साहब हमारी समझ में तुम्हारी बात नहीं आती। और अगर वो उससे जरूरत से ज्यादा छेड़छाड़ करते तो वो उनको अपनी जुबान में गालियां देना शुरू कर देती। वो हैरत में उसके मुंह की तरफ देखते तो वो उनसे कहती, साहब तुम एकदम उल्लू का पट्टा है, समझा। ये कहते वक्त अपने लहजे में गुस्सा न लाती, बल्कि बड़े प्यार से उनके साथ बातें करती। यहाँ दिल्ली में जब वो आई थी, एक भी गोरा उसके घर नहीं आया था। 3 महीने उसको हिंदुस्तान के शहर में रहते हो गए थे, जहाँ उसने सुना था कि बड़े लाट साहब रहते हैं जो गर्मियों में शिमला चले जाते हैं। मगर सिर्फ 6 आदमी उसके पास आए थे, सिर्फ 6, यानी महीने में 2। और इन 6 ग्राहकों से उसने खुदा झूठ ना बुलवाए तो 18.5 रुपए वसूल किए थे। 3 रुपए से ज्यादा पर कोई मानता ही नहीं था। सुल्ताना ने इनमें से 5 आदमियों को अपना रेट 10 रुपए बताया था, मगर ताजुब की बात है, इनमें से हर एक ने यही कहा, भाई हम 3 रुपए से 1 कौड़ी ज्यादा नहीं देंगे। न जाने क्या बात थी कि इनमें से हर एक ने उसे 3 रुपए के काबिल समझा। चुनांचे जब 6ठा आदमी आया तो उसने खुद उससे कहा, देखो मैं 3 रुपए 1 टाइम के लूंगी, इससे एक धेला तुम कहो तो मैं ना लूंगी, अब तुम्हारी मर्जी, रहना है तो रहो वरना जाओ। 6ठे आदमी ने ये सुनकर तकरार ना की और उसके यहाँ ठहर गया। जब दूसरे कमरे में वो दरवाजा बंद करके अपना कोट उतारने लगा तो सुल्ताना ने कहा, लाइए 1 रुपया दूध का। उसने 1 रुपया तो न दिया, लेकिन नए बादशाह की चमकती हुई अठन्नी जेब में से निकाल कर उसको दे दी, और सुल्ताना ने भी चुपचाप ले ली कि चलो जो आया गनीमत है। 18.5 रुपए 3 महीने में, 20 रुपए महीना तो इस कोठे का किराया था, जिसको मकान मालिक अंग्रेजी भाषा में फ्लैट कहता था। इस फ्लैट में ऐसा पखाना था जिसमें जंजीर खींचने से सारी गंदगी पानी के जोर से एकदम नल में नीचे गायब हो जाती थी, और बड़ा शोर होता था। शुरू शुरू में तो उस शोर ने उसे बहुत डराया था। पहले दिन जब वो शौच जाने के लिए उस पखाने में गई तो उसकी कमर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। फारिग होने के बाद जब वो उठने लगी तो उसने लटके हुए जंजीर का सहारा ले लिया। उस जंजीर को देखकर उसने ख्याल किया, चूंकि ये खास लोगों की रहने की जगह है, इसलिए ये जंजीर लगाई गई होगी कि उठते वक्त तकलीफ ना हो और सहारा मिल जाए। मगर जैसे ही उसने जंजीर को पकड़कर

न जा, ऊपर खटखट की आवाज हुई और फिर एकदम पानी शोर के साथ बाहर निकला कि डर के मारे उसके मुंह से चीख निकल गई। खुदा बख्श कमरे में अपना फोटोग्राफी का सामान ठीक कर रहा था और साफ बोतलों में हाइड्रोकोलीन डाल रहा था कि उसने सुल्ताना से पूछा, क्या हुआ, ये चीख तुम्हारी थी? सुल्ताना का दिल धड़क रहा था। उसने कहा, ये मुआ पैखाना है या क्या है? बीच में ये रेलगाड़ी की तरह जंजीर क्यों लटका रखी है? मेरी कमर में दर्द था, मैंने कहा चलो इसका सहारा ले लूंगी, पर इस मुई जंजीर को छेड़ना था कि वो धमाका हुआ कि मैं तुमसे क्या कहूँ। इस पर खुदा बख्श बहुत हंसा और उसने सुल्ताना को उस पैखाने के बारे में सब कुछ बता दिया था कि ये नए फैशन का है जिसमें जंजीर हिलाने पर सब गंदगी जमीन के नीचे धस जाती है। खुदा बख्श और सुल्ताना आपस में कैसे मिले, ये एक लंबी कहानी है। खुदा बख्श रावलपिंडी का था। एंट्रेंस पास करने के बाद उसने लॉरी चलाना सीखा। चुनांचे 4 साल तक वो रावलपिंडी और कश्मीर के बीच लॉरी चलाने का काम करता था। इसके बाद कश्मीर में उसकी दोस्ती एक औरत से हो गई। उसको भगाकर वो लाहौर ले आया। लाहौर में चूंकि उसको कोई काम न मिला तो इसलिए उसने अपनी औरत को पेशे पर बैठा दिया। 2-3 साल तक ये सिलसिला जारी रहा और फिर वो औरत किसी और के साथ भाग गई। खुदा बख्श को मालूम हुआ कि वो अंबाला में है। वो उसकी तलाश में अंबाला आया जहां उसको सुल्ताना मिल गई। सुल्ताना ने उसको पसंद किया, चुनांचे दोनों का संबंध हो गया। खुदा बख्श के आने से सुल्ताना का कारोबार एकदम चमक उठा। औरत चूंकि अंधविश्वासी थी इसलिए उसने समझा कि खुदा बख्श बड़ा लक्की है जिसके आने से इतनी तरक्की हो गई। चुनांचे इस विश्वास ने खुदा बख्श की अहमियत उसकी नजर में और बढ़ा दी। यहाँ वो गोरों की फोटो खींचता रहता। 1 महीने के अंदर अंदर उसकी छावनी में बहुत से गोरों से जान पहचान हो गई। चुनांचे वो सुल्ताना को वहीं ले गया। यहाँ छावनी में खुदा बख्श के जरिए कई गोरे सुल्ताना के पक्के हो गए और उसकी आमदनी भी दुगनी हो गई। सुल्ताना ने कानों के लिए बूंदे खरीदे, 5.5 तोले की 8 कंगड़ियां भी बनवा ली, 10-15 अच्छी अच्छी साड़ियां भी जमा कर ली। घर में फर्नीचर वगैरह भी आ गया। कुल मिलाकर अंबाला छावनी में वो बड़ी खुशहाल थी। मगर एकाएक न जाने खुदा बख्श के दिल में क्या समाई कि उसने दिल्ली जाने की ठान ली। सुल्ताना इनकार कैसे करती जबकि खुदा बख्श को अपने लिए बड़ा लकी समझती थी। उसने खुशी खुशी दिल्ली जाना कबूल किया। सोचा कि इतने बड़े शहर में जहाँ लाट साहब रहते हैं उसका धंधा और भी चलेगा। चुनांचे जल्दी जल्दी घर का भारी सामान बेच बाज कर वो खुदा बख्श के साथ दिल्ली आ गई। यहाँ पहुँच कर खुदा बख्श ने 20 रुपये पर एक छोटा सा फ्लैट ले लिया जिसमें वो रहने लगी। एक ही किस्म के नए मकानों की लंबी सी कतार सड़क के साथ साथ चली गई थी। म्यूनिसिपल कमेटी ने शहर का एक भाग खास वेश्याओं के लिए रख दिया था ताकि वो शहर में जगह जगह अड्डे ना बनाए। नीचे दुकानें थी और ऊपर 2 मंजिला रिहायशी फ्लैट। चूंकि सब इमारतें एक ही डिजाइन की थी इसलिए शुरू शुरू में सुल्ताना को अपना फ्लैट तलाशने में बड़ी मुश्किल होती थी, पर जब नीचे लॉन्ड्री वाले ने अपना बोर्ड घर की पेशानी पर लगा दिया तो उसको एक पक्की निशानी मिल गई। बोर्ड पर लिखा था, यहाँ मैले कपड़ों की धुलाई की जाती है। ये बोर्ड पढ़ते ही वो अपना फ्लैट तलाश लिया करती थी। इस तरह उसने बहुत सी निशानियां कायम कर ली थी। मसलन बड़े बड़े अक्षरों में जहाँ कोयले की दुकान लिखा था वहीं उसकी सहेली हीराबाई रहती थी जो कभी रेडियो घर में गाने जाया करती थी। जहाँ यात्रियों के खाने का सारा इंतजाम है लिखा था वहीं उसकी दूसरी सहेली मुख्तार रहती थी। पलंग के कारखाने के ऊपर अनवरी रहती थी जो उस कारखाने के सेठ के पास नौकर थी। चूंकि सेठ साहब को रात के वक्त अपने कारखाने की देखभाल करनी होती थी इसलिए वो अनवरी के पास ही रहते थे। दुकान खोलते ही ग्राहक थोड़ी आते हैं। चुनांचे जब 1 महीना तक सुल्ताना बेकार रही तो उसने यही सोचकर अपने दिल को तसल्ली दी, पर जब 2 महीने गुजर गए और कोई आदमी उसके कोठे पर न आया तो उसे बहुत चिंता हुई। उसने खुदा बख्श से कहा, क्या बात है खुदा बख्श, हमें आए आज पूरे 2 महीने हो गए, किसी ने इधर का रुख नहीं किया। मानते हो आजकल बाजार बहुत मंदा है, पर इतना मंदा भी तो नहीं कि महीने भर में कोई शक्ल ही देखने ना आए। खुदा बख्श को भी ये बात बहुत अरसे से खटक रही थी मगर वो खामोश था। वो इसके आगे कुछ कहने ही वाला था
कि सीढ़ियों पर किसी के चढ़ने की आवाज आई। खुदा बख्श और सुल्ताना दोनों ने इस आवाज की तरफ ध्यान दिया। थोड़ी देर के बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। खुदा बख्श ने लपक कर दरवाजा खोला। एक आदमी अंदर दाखिल हुआ। ये पहला ग्राहक था जिससे 3 रुपए में सौदा तय हुआ। उसके बाद 5 और आए, यानी 3 महीने में 6, जिनसे सुल्ताना ने 18.5 रुपए वसूल किए। 20 रुपए महीना तो फ्लैट के किराए में ही चले जाते थे। पानी का टैक्स और बिजली का बिल अलग था। इसके अलावा घर के दूसरे खर्चे थे, खाना पीना, कपड़े लत्ते, दवा दारू, और आमदनी कुछ भी नहीं थी। 18.5 रुपए 3 महीने में आए तो उसे आमदनी तो नहीं कह सकते। सुल्ताना परेशान हो गई। 5.5 तोले की 8 कंगनियां जो उसने अंबाले में बनवाई थी आहिस्ता आहिस्ता बिक गई। आखिरी कंगनी की जब बारी आई तो उसने खुदा बख्श से कहा, तुम मेरी सुनो और चलो अंबाले में। यहाँ क्या धरा है भाई? होंगे यहाँ लाट साहब, पर हमें तो ये शहर रास नहीं आया। तुम्हारा काम भी वहाँ खूब चलता था। चलो वहाँ चलते हैं, जो भी नुकसान हुआ उसको अपना सिर सदका समझो। लो इस कंगनी को बेच कर आओ, आज रात की गाड़ी से ही यहाँ से चल देंगे। खुदा बख्श ने कंगनी सुल्ताना के हाथ से ली और कहा, नहीं जाने मन, अंबाला अब नहीं जाएंगे, यही दिल्ली में रहकर कमाएंगे। तुम्हारी चूड़ियां सब की सब वापस आएंगी। अल्लाह पर भरोसा रखो, वो बड़ा कारसाज है, यहाँ भी वो कोई ना कोई सबब बना ही देगा। सुल्ताना चुप हो गई। चुनांचे आखिरी कंगनी भी हाथ से उतर गई। सूने हाथ लेकर उसको बहुत दुख होता था, पर क्या करती, पेट भी तो आखिर किसी काम धंधे से भरना था ना। 5 महीने गुजर गए और आमदनी खर्च के मुकाबले चौथाई से भी कुछ कम रही तो सुल्ताना की परेशानी और ज्यादा बढ़ गई। खुदा बख्श भी अब सारा सारा दिन गायब रहने लगा था। सुल्ताना को इसका भी दुख था। इसमें कोई शक नहीं कि पड़ोस में उसकी 2 मिलने वालियां मौजूद थी। उनके साथ वो अपना वक्त काट सकती थी। हर रोज उनके यहाँ जाना और घंटों बैठे रहना उसको बुरा लगता था। चुनांचे आहिस्ता आहिस्ता उसने इन सहेलियों से मिलना जुलना भी छोड़ दिया। सारा दिन वो अपने सुनसान मकान में बैठी रहती, कभी सुपारी काटती रहती, कभी पुराने फटे कपड़ों को सीती रहती, और कभी बाहर बालकनी में आकर जंगले के पास खड़ी हो जाती और सामने रेलवे रोड में खड़े और चलते इंजनों की तरह घंटों बेमतलब देखती रहती। अंबाला छावनी में जब वो रहती थी तो स्टेशन के पास ही उसका मकान था, मगर वहां उसने कभी इन चीजों को ऐसी नजरों से नहीं देखा था। अब तो कभी कभी उसके दिमाग में ये ख्याल आता कि ये जो सामने रेल की पटरियों का जाल सा बिछा है और जगह जगह से भाप और धुआं उठ रहा है, बहुत सी गाड़ियां हैं जिनको चंद मोटे मोटे इंजन इधर उधर धकेलते रहते हैं। सुल्ताना को कभी कभी ये इंजन सेठ मालूम होते थे जो कभी कभी अंबाला में उसके यहाँ आया करते थे। खुदा बख्श से उसने कई बार कहा, देखो मेरे हाल पर रहम करो, यहाँ घर में रहा करो, मैं सारा दिन यहाँ बीमारों की तरह पड़ी रहती हूँ। मगर उसने हर बार सुल्ताना को ये कहकर तसल्ली दी, जाने मन, मैं बाहर कुछ कमाने की फिक्र कर रहा हूँ, अल्लाह ने चाहा तो चंद दिनों में ही बेड़ा पार हो जाएगा। पूरे 5 महीने हो गए थे मगर अभी तक ना सुल्ताना का बेड़ा पार हुआ था ना खुदा बख्श का। मुहर्रम का महीना सिर पर आ रहा था मगर सुल्ताना के पास काले कपड़े बनवाने के लिए कुछ भी नहीं था। मुख्तार ने लेडी हिमल्टन की एक नए ढंग की कमीज बनवाई। उसकी आस्तीनें काली जॉर्जेट की थी, जिसके साथ मैच करने के लिए उसके पास काली सैटन की सलवार थी जो काजल की तरह चमकती थी। अनवरी ने रेशमी जॉर्जेट की एक बड़ी उम्दा साड़ी खरीदी थी। उसने सुल्ताना से कहा था वो इसी साड़ी के नीचे सफेद बॉस्की का पेटीकोट पहनेगी, क्योंकि ये नया फैशन है। इस साड़ी के साथ पहनने को अनवरी ने काली मखमल का एक जूता भी लिया था जो बड़ा नाजुक था। सुल्ताना ने जब ये तमाम चीजें देखी तो उसको इस एहसास से बहुत दुख हुआ कि वो मुहर्रम मनाने के लिए ऐसा लिबास खरीदने की हैसियत तक नहीं रखती। अनवरी और मुख्तार के पास ये लिबास देखकर जब वो घर आई तो उसका दिल बहुत दुखी था। उसे ऐसा मालूम होता था कि फोड़ा सा उसके अंदर हो गया है। घर बिल्कुल खाली था। खुदा बख्श वैसे ही हमेशा की तरह बाहर था। देर तक वो दरी पर गांव तकिया सिर के नीचे रखकर लेटी रही, पर जब उसकी गर्दन ऊंचाई की वजह से अकड़ सी गई तो उठकर बाहर बालकनी में चली गई
ताकि गमगीन ख्याल को अपने दिमाग से निकाल दे। बाजार में ऐसे आदमी चलने शुरू हो गए थे जो ताक झाक करने के बाद चुपचाप घर का रुख करते हैं। ऐसे ही एक आदमी ने गर्दन ऊंची करके सुल्ताना की तरफ देखा। सुल्ताना मुस्कुरा दी और उसको भूल गई, क्योंकि अब सामने पटरियों पर एक इंजन आ गया था। सुल्ताना ने गौर से उसकी तरफ देखना शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता ये ख्याल उसके दिमाग में आया कि इंजन ने भी काला लिबास पहन रखा है। ये अजीबोगरीब ख्याल दिमाग में से निकालने की खातिर जब उसने सड़क की ओर देखा तो उसे वही आदमी बैलगाड़ी के पास खड़ा नजर आया जिसने उसकी तरफ ललचाई नजरों से देखा था। सुल्ताना ने उसे हाथ से इशारा किया। उस आदमी ने इधर उधर देखा और सुल्ताना से इशारों में पूछा, किधर से आऊं? सुल्ताना ने उसे रास्ता बता दिया। वो आदमी थोड़ी देर खड़ा रहा मगर फिर बड़ी फुर्ती से ऊपर चलाया। सुल्ताना ने उसे दरी पर बैठाया। जब वो बैठ गया तो उसने बातचीत शुरू करने के लिए कहा, आप ऊपर आते डर रहे थे? वो आदमी ये सुनकर मुस्कुराया, तुम्हें कैसे मालूम हुआ? डरने की बात ही क्या थी? इस पर सुल्ताना ने कहा, मैंने ये इसलिए कहा कि आप देर तक वहीं खड़े रहे और फिर कुछ सोचकर आए। वो ये सुनकर फिर मुस्कुराया, तुम्हें गलतफहमी हुई है, मैं तो ऊपर वाले फ्लैट की तरफ देख रहा था। वहां कोई औरत खड़ी अपने मर्द को ठेंगा दिखा रही थी, मुझे ये मंजर पसंद आया। फिर बालकनी में सब्ज बल्ब रोशन हुआ, मैं कुछ देर के लिए ठहर गया। सब्ज रोशनी मुझे बहुत पसंद है, आंखों को बहुत अच्छी लगती है। ये कहकर उसने कमरे का जायजा लेना शुरू किया। फिर वो उठ खड़ा हुआ। सुल्ताना ने पूछा, आप जा रहे हैं? आदमी ने जवाब दिया, नहीं, मैं तुम्हारे मकान देखना चाहता हूँ। चलो मुझे तमाम कमरे दिखाओ। चलिए। सुल्ताना ने उसको तीनों कमरे एक एक करके दिखा दिए। उस आदमी ने बिल्कुल खामोशी से उन कमरों का मुआयना किया। जब वो फिर उसी कमरे में आ गए जहां पहले बैठे थे तो उस आदमी ने कहा, मेरा नाम शंकर है। सुल्ताना ने पहली बार गौर से शंकर की तरफ देखा। वो ठीक ठाक कद मामली शक्ल सूरत का आदमी था मगर उसकी आंखें सबसे अलग साफ शफाक थी। कभी कभी उसमें एक अजीब किस्म की चमक भी पैदा होती थी। गठीला और कसरती बदन था, खाकी रंग की गर्म पैंट पहने था, सफेद कमीज थी जिसका कॉलर गर्दन पर से ऊपर को उठा हुआ था। शंकर कुछ इस तरह दरी पर बैठा था कि मालूम होता था कि शंकर की बजाय सुल्ताना ग्राहक है। इस एहसास ने सुल्ताना को थोड़ा परेशान कर दिया। चुनांची उसने शंकर से कहा, फरमाइए। ये सुनकर वो लेट गया। मैं क्या फरमाऊं? तुम ही कुछ फरमाओ, तुम ही ने तो मुझे बुलाया है। सुल्ताना ये सुनकर चकरा गए मगर इसके बावजूद उसे बेख्तियार हंसी आ गई। आप काम क्या करते हैं? शंकर ने जवाब दिया, यही जो तुम करती हो। क्या तुम क्या करती हो? मैं कुछ नहीं करती। तो मैं भी कुछ नहीं करता, सुल्ताना ने भन्ना कर कहा। ये तो कोई बात ना हुई, आप कुछ ना कुछ तो जरूर करते होंगे ना? शंकर ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, तो तुम भी तो कुछ ना कुछ जरूर करती होगी। झक मारती हूँ। तो मैं भी झक मारता हूँ। तो आओ झक मारे, मैं हाजिर हूँ, मगर झक मारने के दाम मैं कभी नहीं दिया करता। होश की दवा करो, ये लंगर खाना नहीं। तो मैं भी वॉलंटियर नहीं। सुल्ताना यहाँ रुक गई। उसने पूछा, ये वॉलंटियर क्या होते हैं? जाने तुम क्या उटपटांग बातें करते हो, बोलो रहोगे? इसी शर्त पर जो मैं पहले बता चुका हूं। सुल्ताना उठ खड़ी हुई, तो जाओ रास्ता पकड़ो। शंकर आराम से उठा, पतलून की जेबों में उसने अपने दोनों हाथ ठूंसे और जाते हुए कहा, मैं कभी कभार इस बाजार से गुजरा करता हूँ, जब भी तुम्हें जरूरत हो बुला लेना, मैं बहुत काम का आदमी हूँ। शंकर चला गया और सुल्ताना काले लिबास को भूलकर देर तक उसके बारे में सोचती रही। इस आदमी की बातों ने उसके दुख को बहुत हल्का कर दिया था।
शाम को जब खुदा बख्श आया तो सुल्ताना ने उससे पूछा, तुम आज

0: गायब रहते हो। मुहर्रम सिर पर आ गया है। कुछ तुमने इसकी फिक्र की कि मुझे काले कपड़े चाहिए? घर में फूटी कौड़ी नहीं, कंगनियां थी सो वो एक एक करके बिक गई। तुम ही बताओ क्या होगा, यूं फकीरों के पीछे कब तक मारे मारे फिरा करोगे? मुझे तो ऐसा दिखाई देता है कि यहाँ दिल्ली में खुदा ने हमसे मुंह मोड़ लिया है। मेरी सुनो तो आप काम शुरू कर दो, कुछ तो सहारा हो ही जाएगा।
1: खुदा बख्श तरी पर लेट गया और कहने लगा, पर ये काम शुरू होने के लिए भी तो थोड़ा कुछ सरमाया चाहिए। सुल्ताना ने बात काट कर कहा,
0: तुम खुदा के लिए कुछ करो, चोरी करो या डाका मारो, पर मुझे एक सलवार का कपड़ा जरूर ला दो। मेरे पास सफेद बॉस्की की कमीज है, उसको मैं काला करवा लूंगी। सफेद निनॉन का एक दुपट्टा भी मेरे पास है, वही जो तुमने मुझे दिवाली पर लाकर दिया था, ये भी कमीज के साथ रंगवा लिया जाएगा। सिर्फ सलवार की कसर है सो वो तुम किसी ना किसी तरह पैदा कर दो। देखो तुम्हें मेरी जान की कसम है, किसी ना किसी तरह जरूर ला दो। मेरा मरा मुंह देखो अगर ना लाओ।
1: मैं कहां से लाऊं? अफीम खाने के लिए तो मेरे पास पैसे नहीं।
0: कुछ भी करो मगर मुझे 4.5 गज काली साटन ला दो। तुम अगर चाहो तो जरूर इतने पैसा पैदा कर सकते हो। जंग से पहले ये साटन 12-14 आने गज मिल जाती थी, अब 1.25 रुपए गज के हिसाब से मिलती है। 4.5 गजों पर कितने रुपए खर्च हो जाएंगे?
1: अब तुम कहती हो तो मैं हिला करूंगा। ये कहकर खुदा बख्श उठा,
0: चलो अब इन बातों को भूल जाओ, मैं होटल से खाना ले आऊं। होटल से खाना आया, दोनों ने मिलकर निपटाया और सो गए। सुबह हुई, खुदा बख्श पुराने किले वाले फकीर के पास चला गया और सुल्ताना अकेली रह गई। कुछ देर लेटी रही, कुछ देर सोती रही, इधर उधर कमरों में टहलती रही। दोपहर का खाना खाने के बाद उसने अपना सफेद निनॉन का दुपट्टा और सफेद बॉस्की की कमीज निकाली और नीचे लॉन्ड्री वाले को रंगने के लिए दे आई। कपड़े धोने के अलावा वहां रंगने का काम भी किया जाता था। ये काम करने के बाद उसने वापस आकर फिल्मों की किताब पढ़ी, जिसमें उसकी देखी हुई फिल्मों की कहानी और गीत छपे हुए थे। ये किताब पढ़ते पढ़ते वो सो गई। जब उठी तो 4 बज चुके थे, क्योंकि धूप आंगन में मोरी के पास पहुंच चुकी थी। नहा धोकर फ्री हुई तो गर्म चादर ओढ़कर बालकनी में आ खड़ी हुई। तकरीबन 1 घंटा सुल्ताना बालकनी में खड़ी रही। अब शाम हो गई थी, बत्तियां रोशन हो रही थी, नीचे सड़क पर रोशन के आसार नजर आने लगे थे। सर्दी थोड़ी सी ज्यादा हो गई थी मगर सुल्ताना को ये नागवार महसूस ना हुई। वो सड़क पर आते जाते टांगों और मोटरों की तरफ एक अरसे से देख रही थी। अचानक उसे शंकर नजर आया। मकान के नीचे पहुंचकर उसने गर्दन ऊंची की और सुल्ताना की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। सुल्ताना ने गैर इरादी तौर पर हाथ का इशारा किया और उसे ऊपर बुलवा लिया। शंकर ऊपर आया तो सुल्ताना बहुत परेशान हुई कि उससे क्या कहे। दरअसल उसने ऐसे ही बिना सोचे समझे इशारा कर दिया था। शंकर भी ऊपर चला आया जैसे उसका अपना ही घर हो। पहले दिन की तरह वो गांव तकिया सिर के नीचे रखकर लेट गया। जब सुल्ताना ने देर तक उससे कोई बात ना की तो उसने कहा,
2: तो मुझे 100 दफा बुला सकती हो
0: और 100 दफा ही कह सकती हो कि चले जाओ। मैं ऐसी बातों पर कभी नाराज नहीं हुआ करता।
2: नहीं बैठो, तुम्हें जाने को कौन कहता है?
0: शंकर इस पर मुस्कुरा दिया, तो मेरी शर्तें मंजूर हैं?
2: कैसी शर्तें?
0: सुल्ताना ने हंसकर कहा, क्या निकाह कर रहे हो मुझसे?
2: निकाह और शादी कैसी,
0: ना तुम उम्र भर किसी से निकाह करोगी ना मैं। ये रस्में हम लोगों के लिए नहीं, छोड़ दो इन फिजूल की बातों को, कोई काम की बात करो।
2: बोलो क्या बात करूं?
0: तुम औरत हो, कोई ऐसी बात शुरू करो जिससे दो घड़ी दिल बहल जाए। इस दुनिया में सिर्फ दुकानदारी नहीं, कुछ और भी है।
2: साफ साफ कहो तुम मुझसे क्या चाहते हो?
0: जो दूसरे चाहते हैं। शंकर उठकर बैठ गया।
2: तुम में और दूसरों में फिर क्या फर्क रहा?
0: तुम में और मुझ में कोई फर्क नहीं, उनमें और मुझ में जमीन आसमान का फर्क है। ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जो पूछनी नहीं चाहिए। सुल्ताना ने थोड़ी देर तक शंकर की इस बात को समझने की कोशिश की, फिर कहा, मैं समझ गई हूँ, तो कहो क्या इरादा है?
2: तुम जीते मैं हारे।

पर मैं कहती हूँ, आज तक किसी ने ऐसी बात कबूल ना की होगी। तुम गलत कहती हो। इस मोहल्ले में तुम्हें ऐसी सादा लो औरतें भी मिल जाएंगी जो कभी यकीन नहीं करेगी कि औरत ऐसी जिल्लत कबूल कर सकती है जो तुम बगैर किसी एहसान के कबूल करती रही हो। लेकिन इनके ना यकीन करने के बावजूद तुम हजारों की तादाद में हो। तुम्हारा नाम सुल्ताना है ना? हाँ, सुल्ताना ही है। शंकर उठ खड़ा हुआ और हंसने लगा। मेरा नाम शंकर है। ये नाम भी ऊटपटांग होते हैं। चलो आओ अंदर चले। शंकर और सुल्ताना दरी वाले कमरे में वापस आए तो दोनों हंस रहे थे, न जाने किस बात पर। जब शंकर जाने लगा तो सुल्ताना ने कहा, शंकर मेरी एक बात मानोगे? शंकर ने जवाब में कहा, पहले बात बताओ। सुल्ताना कुछ झेप सी गई। तुम कहोगे कि मैं दाम वसूल करना चाहती हूँ, मगर कहो रुक क्यों गई हो? सुल्ताना ने हिम्मत से काम लेकर कहा, बात यह है कि मुहर्रम आ रहा है, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि काली सलवार बनवा सकूं। यहाँ के सारे बखेड़े तो मुझसे सुन ही चुके हो। कमीज और दुपट्टा मेरे पास मौजूद है जो मैंने आज रंगवाने के लिए दे दिया है। शंकर ने यह सुनकर कहा, तो तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूं जिससे तुम काली सलवार बनवा सको? नहीं, मेरा मतलब यह है कि अगर हो सके तो तुम मुझे काली सलवार बनवा दो। मेरी जेब में तो इत्तेफाक से ही कुछ होता है। बहरहाल मैं कोशिश करूंगा। मुहर्रम की पहली तारीख को तुम्हें ये सलवार मिल जाएगी। लो बस, अब खुश हो गई? सुल्ताना के बूंदों की तरफ देखकर शंकर ने पूछा, क्या ये बूंदे तुम मुझे दे सकती हो? सुल्ताना ने हंसकर कहा, तुम इनका क्या करोगे, चांदी के मामूली बूंदे हैं, ज्यादा से ज्यादा 5 रुपए के होंगे। इस पर शंकर ने कहा, मैंने तुमसे बूंदे मांगे हैं, इनकी कीमत नहीं पूछी। बोलो देती हो? ले लो। ये कहकर सुल्ताना ने बूंदे उतार कर शंकर को दे दिए। सुल्ताना को कतई यकीन नहीं था कि शंकर अपना वादा पूरा करेगा, मगर 8 रोज के बाद मुहर्रम की पहली तारीख को सुबह 9 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। सुल्ताना ने दरवाजा खोला तो शंकर खड़ा था। अखबार में लिपटी हुई चीज उसने सुल्ताना को दी और कहा, साटन की काली सलवार है, देख लेना, शायद लंबी हो। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। शंकर सलवार देकर चला गया और कोई बात उसने सुल्ताना से ना की। उसकी पतलून में शिकने पड़ी हुई थी, बाल बिखरे हुए थे। ऐसा महसूस होता था कि अभी अभी सोकर उठा है और सीधा इधर ही चलाया है। सुल्ताना ने कागज खोला। साटन की काली सलवार थी, ऐसी ही जैसी वो अनवरी के पास देखकर आई थी। सुल्ताना बहुत खुश हुई। बूंदों और इस सौदे का जो अफसोस उसे हुआ था, इस सलवार ने और शंकर के वादे निभाने ने उसे दूर कर दिया था। दोपहर को वो नीचे लॉन्ड्री वाले से अपनी रंगी हुई कमीज और दुपट्टा लेकर आई। तीनों काले कपड़े जब उसने पहन लिए तो दरवाजे पर दस्तक हुई। सुल्ताना ने दरवाजा खोला तो अनवरी दाखिल हुई। उसने सुल्ताना के तीनों कपड़ों की तरफ देखा और कहा, कमीज और दुपट्टा तो रंगा हुआ महसूस होता है, पर हाँ ये सलवार नहीं है। कब बनवाई? सुल्ताना ने जवाब दिया, आज ही दर्जी से लाई हूँ। ये कहते हुए उसकी नजरें अनवरी के कानों पर पड़ी। ये बूंदे तुमने कहाँ से लिए हैं? अनवरी ने जवाब दिया, आज ही मंगवाए हैं। इसके बाद उनमें कोई बात नहीं हुई।

0: हाय दोस्तों, मैं हूं रूप कुमार राठौर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना पर 107.8 एफएम। फील गुड फील लाइफ।
1: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम में हूं दीक्षा आपके साथ, और हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी हम लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसा कार्यक्रम जो जुड़ा हुआ है हम सभी की जिंदगियों से। ईश्वर ने हमें जीवन दिया, लेकिन इस जीवन में कभी कभी ऐसे मौके आ जाते हैं जब हमारे शरीर के कुछ अंग सही तरीके से कार्य नहीं करते हैं, और तब हमें जरूरत पड़ती है उस ऐसे एक डोनर की जो हमारी मदद करता है स्वयं ईश्वरी रूप बन के। ऐसे ही खास कार्यक्रम को आपके बीच लेकर आता है ऑर्गन इंडिया और रेडियो मानव रचना 107.8, और इस कार्यक्रम का नाम है जीवन एक अनमोल उपहार। आइए जानते हैं कुछ बहुमूल्य बातें अंग दान से जुड़ी हुई।

0: जीवन एक अनमोल उपहार है। अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें, अंगदान का संकल्प लें। अंगदान, जीवन दान।
1: आप सभी सुनने वालों को ऑर्गन इंडिया की तरफ से नमस्कार। मेरा नाम पायल है और हम सब यही आशा करते हैं कि आपका दिन बहुत अच्छे से गुजर रहा होगा। आज हम आपका स्वागत करते हैं ऑर्गन इंडिया के इस बेहद खास कार्यक्रम में, जीवन एक अनमोल उपहार, जिसमें हम अंग दान के बारे में बात करेंगे। ऑर्गन रिसीविंग एंड गिविंग अवेयरनेस नेटवर्क यानी ऑर्गन इंडिया की पहल साल 2013 में पराशर फाउंडेशन ने की थी, जो कि दिल्ली की एक गैर सरकारी सामाजिक संस्था है। अपने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से हम अंगदान, देहदान और उत्तक दान के बारे में लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हम ऑर्गन फेलियर या अंगों के खराब होने की गंभीर समस्या से पीड़ित मरीजों को, जिनके पास ऑर्गन ट्रांसप्लांट या अंग प्रत्यारोपण के अलावा कोई और विकल्प नहीं है, उन्हें ये सारी जानकारी देते हैं और वो अपने उत्तम इलाज के लिए क्या कर सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं, ये भी सारा कुछ हम बता रहे हैं। आज हमारे साथ हैं ऑर्गन इंडिया की CEO सुनैना सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफर।
2: धन्यवाद पायल। आज मेरे साथ हैं एक बहुत ही खास जोड़ी, करण और रितिका नंदा, जिनका परिवार हार्ट ट्रांसप्लांट जैसे गंभीर समस्या से गुजरा है। चलिए उनसे करते हैं बातें। करण और रितिका, आपका इस शो में स्वागत है। तो करण, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि हार्ट ट्रांसप्लांट से पहले आपकी ज़िंदगी कैसे थी?
3: जी, ट्रांसप्लांट से पहले ज़िंदगी नॉर्मल ठीक ठाक थी। स्पोर्ट्समैन था, फुटबॉल खेलता था, ज़िंदगी भर फुटबॉल खेली है। स्कूल का कप्तान था फुटबॉल का, उसके बाद स्टेट लेवल रिप्रेजेंट किया और अचानक एक दिन फुटबॉल खेलते हुए हार्ट अटैक हुआ। पता नहीं चला हार्ट अटैक हुआ। हार्ट अटैक के दौरान अस्पताल पहुंचा, उन्होंने फिर मेरा एक स्टेंट डाला मेरे अंदर। बट उस टाइम तक हार्ट की कंडीशन काफ़ी ख़राब हो चुकी थी और 4-6 महीने के बाद डॉक्टरों ने मुझे बताया कि मुझे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो रहा है, कि मुझे हार्ट ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ी।
2: तो इस वक्त आप कितने साल के थे?
3: जी, उस वक्त मैं 42 वर्ष का था।
2: तो इस कम उम्र में हार्ट अटैक होना, कोई कारण था उसका?
3: जी, जो डॉक्टरों को तो पता नहीं चला, अभी भी मेरी जो फाइल कहती है वो बड़ा अजीब सा एक शब्द उन्होंने अंग्रेजी में इस्तेमाल किया था, इडियोपैथिक, जिसका मतलब कि उनको, उनके पास कोई जवाब नहीं है हार्ट अटैक क्यों हुआ था। थ्योरी ये है कि एक ब्लड क्लॉट मेरे आयोटा, जो मेन आर्टरी होती है, उसमें अटक गया था और मैं एक सोशल स्मोकर था, तो शायद उसकी वजह से भी हो सकता था, बट उसके अलावा कोई ऐसा कारण नहीं था जो डॉक्टर जिसको बता सके।
2: तो रितिका जी, जब ये सब हुआ, आपके दो बच्चे हैं, आपकी फैमिली पे क्या गुजरी?
4: पहले तो यकीन ही नहीं हुआ और हमने तो सोचा था कि पेट दर्द हो रहा है, इसीलिए हम हॉस्पिटल गए थे। वहाँ पर रियलाइज़ हुआ कि हार्ट अटैक है। रिकवर स्टेंटिंग के बाद वो कोमा में भी थे हफ्ते के लिए, जिस दौरान हमें पता नहीं था कि अगर वो जीवित रहेंगे कि नहीं। नेचुरली बहुत डिफ़िकल्ट था। फिर उसके बाद जब पता चला कि ट्रांसप्लांट चाहिए, तो फिर उस टाइम फिर महीना दो महीना ये सवाल था कि सब कुछ, घर सब कुछ छोड़ करके कैसे जाएंगे।
2: तो जब ट्रांसप्लांट की बात हुई, उस वक्त आपने आसपास पूछा होगा कि ट्रांसप्लांट कहाँ होता है, कैसे होता है, उस वक्त क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ी थी?
4: पहले तो ट्रांसप्लांट का कोई आइडिया ही नहीं था कि होता क्या है और उसमें क्या प्रोसेस है। थोड़ा बहुत पढ़ा, थोड़ा बहुत डॉक्टर्स से पूछा। डॉक्टर्स भी ऐसे हैं कि मेडिकल साइंस में चीज़ें इतनी जल्दी इवॉल्व होती हैं कि फाइनली आपको जो एडवाइस मिलती है उसको फेथ पे लेकर के आगे बढ़ना पड़ता है।
2: उसके बाद आपने क्या फैसला लिया, आप कहाँ गए ट्रांसप्लांट के लिए?
3: जी, पहले तो जब पता चला कि ट्रांसप्लांट चाहिए तो दूसरा धक्का तब लगा, क्योंकि अभी हमने सोचा था कि भाई हार्ट अटैक हो गया है, उससे बाहर निकल गए, अब एक नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं, बट ट्रांसप्लांट के टाइम एक झटका और लगा। तो उस स्थिति में ऐसा था कि हम इधर उधर देख रहे थे, मेरे पास सिर्फ 6 महीने थे, डॉक्टर ने उन्हें बोला था उस 6 महीने में अगर ट्रांसप्लांट नहीं हुआ तो एक जुगाड़ सर्जरी करनी पड़ती उनको, जिसमें एक वो आर्टिफिशियल पंप डालते, वो रिकमेंडेड नहीं था। तो फाइनली जाके हम एक बहुत ही भले इंसान से मिले, डॉक्टर बाला, जिन्होंने चेन्नई में उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने मेरा टेस्ट किया और उन्होंने बोला आप भर्ती हो जाओ, आपको एक लिस्ट में डाल देंगे, और वो एक ये सरकारी लिस्ट होती है, इस लिस्ट पे डिपेंड करता है कि आपको कब ट्रांसप्लांट मिलेगा।
4: जब आप चेन्नई पहुंचे ट्रांसप्लांट के लिए, आपके मन में क्या गुजरा था और क्या हो रहा था वहाँ पे?
5: जब चेन्नई पहुंचे थे हमें कुछ पता नहीं था कि हम कहाँ कैसे रहेंगे, वहाँ पर खाने पीने का क्या ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन वहाँ पर क्योंकि इतने ट्रांसप्लांट होते और इतने हार्ट सर्जरी की फैसिलिटी है, फ्लैट्स भी मिलते हैं जो सिर्फ ट्रांसप्लांट पेशेंट्स के लिए हैं, जिनमें सफाई और मेडिकल सपोर्ट, एम्बुलेंसेज वगैरह सब अवेलेबल रहती हैं। सफाई का बहुत महत्वपूर्ण होती है इस टाइम पे, क्योंकि प्री ट्रांसप्लांट ऑल्सो एंड पोस्ट ट्रांसप्लांट ऑल्सो उनका ध्यान थोड़ा ज़्यादा रखना होता है। खाने पीने के लिए भी पार्ट टाइम हेल्प मिल जाती है। जो जितना बड़ा पहाड़ सोचा था हमने जाने के टाइम में, वहाँ पर जाकर के एक एक करके सब सुलझ गया।
4: अस्पताल में दूसरे भी पेशेंट्स होंगे जिनको हार्ट ट्रांसप्लांट की ज़रूरत थी, क्या आप उनसे मिले थे?
5: हाँ जी, बहुत पेशेंट्स थे, ऑल एज ग्रुप्स, आई मीन बच्चे भी बहुत थे, लेकिन सभी वहाँ पर एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और एक फैमिली टाइप का एटमॉस्फेयर हो जाता है।
4: करण, उस वक्त अस्पताल में जब आप वेट कर रहे थे, जब आप वहाँ पर रजिस्टर हो गए, तो आप क्या सोच रहे थे उस टाइम?
3: देखिए जी, सबसे पहले तो मैं ये बताऊँगा कि जब मैं चेन्नई पहुँचा और उन्होंने मेरा कोई टेस्ट किया देखने के लिए कि हार्ट ट्रांसप्लांट की आवश्यकता है नहीं है, तो एक VO2 मैक्स टेस्ट किया, उसमें मैं बॉर्डरलाइन पे निकला। तो जो डॉक्टर थोड़ा जूनियर डॉक्टर था वो देख रहे थे, उन्होंने बोला कि शायद हो सकता है आपको ट्रांसप्लांट की जरूरत ही ना हो। तो वहां पे एक थोड़ी दुविधा थी कि हम ऑल द वे चेन्नई आए हैं, ट्रांसप्लांट दिल्ली के डॉक्टर बोल रहे हैं ट्रांसप्लांट है, यहाँ के डॉक्टर बोल रहे हैं शायद ट्रांसप्लांट नहीं करना। उसके अगले दिन उन्होंने एक सॉर्ट ऑफ इन्वेसिव टेस्ट किया, जहां पे अंदर जाके उन्होंने मेरे हार्ट को एक्चुअली जाके कैमरा डाल के देखा, उन्होंने बोला हाँ डेफिनेटली हार्ट ट्रांसप्लांट है। उसके बाद जैसे रितिका बोल रही थी कि एक लिस्ट में डाल दिया जाता है आपको, और वो लिस्ट में आप एक बार ही डल गए तो आपको ये नहीं पता रहता कि ट्रांसप्लांट डोनर कब आपको मिलने वाला है, क्योंकि ये हार्ट ट्रांसप्लांट एक ऐसी चीज है जहां जो एक्चुअली जो डोनर होता है उनका देहांत होना पड़ता है तभी आपको ट्रांसप्लांट मिलता है। किडनी की तरह नहीं होता कि आपके पास 2 हैं आप लाइव दे सकते, तो वो आप वहां पे रहना पड़ता है आपको, क्योंकि वो डॉक्टर बोलते हैं कि 4 घंटे के विंडो में आपका ट्रांसप्लांट होना पड़ता है। तो ऐसा तो है नहीं कि हम दिल्ली बैठे हैं, दिल्ली से फ्लाइट पकड़ें और चेन्नई आएं और फिर ट्रांसप्लांट हो, तो वहीं पे रहना पड़ता। तो हम सब कुछ अपना कारोबार फैमिली सब छोड़ के हम चेन्नई बैठे थे और हमें पता नहीं चल रहा था कि कब हो। तो ये 1 महीना हो गया और दूसरे महीने में तो मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि मुझे एक ड्रिप में डाल दिया था इन लोगों ने, और ये परमानेंटली 24 घंटे मुझे एक ड्रिप पे था, एक दवाई दी जा रही थी मेरी इंट्रावीनसली जो मेरे हार्ट का जो फंक्शन है वो बेटर करे। मतलब मुझे बिस्तर से उठ के शौचालय जाने में भी तकलीफ होती थी, सांस चढ़ जाता था, वो अगर दवाई नहीं ले रहा होता तो पता नहीं क्या हालत होती। एक ऐसी स्थिति पहुंच गई थी कि भाई मेरे दिमाग में तो ये आ रहा था कि भाई अब क्या करना है, ऐसे जीना है कब तक जीना है, और एक अनसर्टेनिटी थी कि भैया कब मिलेगा, कैसा मिलेगा, वो ट्रांसप्लांट जो हार्ट होगा उसकी कंडीशन कैसी रहेगी, मेरे ट्रांसप्लांट के बाद मेरी कंडीशन कैसे रहेगी। तो ये सब काफ़ी चीज़ें थी, और मेरे बच्चे छोटे थे उस वक्त, अभी भी छोटे हैं, उनको चिंता थी। मैं अपने माँ बाप का इकलौता बच्चा हूँ, नॉट ओनली बेटा, तो उनके ऊपर जो बीत रही थी वो भी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो काफ़ी चीज़ें ऐसे इमोशनली होती हैं।
4: आपको ट्रांसप्लांट फिर उसकी कॉल कब आया और कैसे आया, आप कहाँ थे?
3: मैं एक्चुअली पहली बारी जिंदगी में बैठा अपनी विल लिखने के लिए। तो जब विल लिख रहा था, विल लिखते लिखते लिखते 2-3-4 बजे फोन कॉल आ गया अस्पताल से, भाई कि अब कुछ आपने लंच खाया है? मैंने कहा हाँ जी खाया है। अब कुछ मत खाइएगा। तो ये पहली इंडिकेशन थी कि शायद उनको एक हार्ट मिल गया है और वो उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो उस सीक्वेंस को देखते हुए मैंने कहा, मतलब कि मैंने विल लिखी और मेरा टेलीफोन कॉल आ गया, बट आई ऑल इन ऑल इट वाज बहुत अच्छी न्यूज़ थी। थोड़े एक्साइटेड थे, थोड़े नर्वस थे, नर्वस ज़्यादा थे कि अब तो आ गया टाइम, अब तो कहीं भाग नहीं सकते। तो बड़ा ही अजीब सा एक माहौल बन गया था जब तक हम अस्पताल पहुँचे।
5: पहुँचने के बाद फिर क्या हुआ?
3: पहुँचने के बाद मैंने तो मन बना लिया था कि भाई अब ये है, अब यहाँ से नहीं निकल सकते और जो होना है खुशी खुशी होना है। तो मुझे तो वो, हम अस्पताल पहुँचे, मुझे तो वो ले गए प्रेपरेशन के लिए। तो वो उसमें वो तकरीबन आधा पौना आठ घंटा लगाते हैं।
5: तो हम ज़्यादातर देखते हैं कि जो बीतती है वो पेशेंट पे तो बीतती है, लेकिन फैमिली मेम्बर्स जो प्राइमरी केयर टेकर्स होते हैं उनको बहुत स्ट्रांग रहना पड़ता है, उनको बहुत ब्रेव रहना पड़ता है जब ये ट्रांसप्लांट हो रहा होता है। तो उस टाइम आप पे क्या बीत रही थी?
6: जब ये फ़ोन आया था, एक्चुअली बहुत ऑफन ऐसे होता है कि आपको बताते हैं और फिर वो उस टाइम वो मैच करने के लिए जा रहे होते हैं और कभी कभी वो मैच नहीं करता है, तो वो आपको थोड़ी देर में बोल देंगे कि सॉरी ये मैच नहीं किया। तो मैंने एक्चुअली किसी परिवार वाले को, सबको बता दिया था लेकिन किसी को बोला नहीं कि आप आ जाइए। जब ये अंदर गए प्रेपरेशन के लिए तब उन सबको बोला, वो उसी के बाद पहुँचे। तो इन सम वेज मैं ड्यूरिंग द सर्जरी मैं अकेली थी, लेकिन वही विश्वास था कि इधर तक पहुँचे हैं तो आगे भी हो जाएगा।
5: तो सर्जरी कितने घंटों तक चली और आपको फिर फाइनली कब तक पता चला कि सब कुछ ठीक ठाक है? और
6: 40 मिनट की सर्जरी थी। डॉक्टर बाला बाहर आकर के बोले थे कि अब हो गई है सर्जरी और वो अब क्लोजअप कर रहे हैं। उसके बाद अगले 45 घंटे थोड़े महत्वपूर्ण होते हैं, जिसमें वो देखते हैं कि वो जो ऑर्गन आपको ट्रांसप्लांट किया है वो एक्सेप्ट हो रहा है, बॉडी के लिए ये नया फॉरेन ऑब्जेक्ट होता है जो अंदर डला है, तो बॉडी इनिशियली थोड़ा टाइम लगता है एडजस्ट होने में। वो 48 आवर्स में सारे हेल्थ केयर के पैरामीटर्स थोड़े इम्पोर्टेंट होते हैं।
5: करण, जब आपने पहले आंखें खोली सर्जरी के बाद, क्या हो रहा था आपके आसपास?
3: जैसे रितिका ने बोला, एक्चुअल सर्जरी 40 मिनट की होती है, बट ऑपरेशन थिएटर में घुस के और बाहर निकलने तक 4 या 5 घंटे लग जाते हैं, क्यों आप सेडेशन में होते हो, आपको दवाई दी होती है सोने की। खाली पेट था या एनेस्थीजिया मुझे रिएक्ट कर गया ये नहीं पता, पर पूरी रात एक्चुअली मुझे थोड़ी वॉमिटिंग सी रही और वो डॉक्टर बाला एक्चुअली मेरा सर अपने हाथों में लेकर सहला रहे थे मुझको कि कुछ नहीं होता, ठीक हो जाएगा। और क्योंकि नई नई सर्जरी हुई थी तो मेरी चेस्ट एक्सपेंशन हो रही थी, तो उन्होंने बोला था भाई लेटे रहो, ज़्यादा हिलो मत, थोड़ा ये कुछ तकलीफ हो रही थी, बट फिर मैं सो गया और फिर अगले दिन सब उठा तो एवरीथिंग वाज नॉर्मल।
5: उस वक्त आपको कैसा लगा अगले दिन जब आपको पता चला ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल है और सब कुछ हो गया ठीक से?
3: एक्चुअली अब तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरे दिमाग में तो कोई डाउट नहीं था, क्योंकि एक चाहत होती है टू बी अलाइव, मतलब बच्चों के लिए या फैमिली के लिए। मैंने तो ऐसे बिहेव किया फैमिली के सामने, हाँ नॉर्मल है, होना ही था, यहाँ तक इतनी देर आए तो ये तो होना ही था। थोड़ी हंसमुख एक बात यह है कि मुझे भूख बहुत लग रही थी, तो आंखें खोलते ही मैंने बोला जी मुझे कुछ खिलाओ, और डॉक्टर क्योंकि एनेस्थीजिया था उन्होंने बोला नहीं है, लिक्विड डाइट पे रहना पड़ेगा। तो उसमें थोड़ा मैं लड़ रहा था डॉक्टरों के साथ।
5: और रितिका जी, आपको कैसा लग रहा था एक दो दिन के बाद जब क्लियर हो गया कि ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल है और आप लोग कुछ दिनों में घर जा रहे होंगे?
6: बहुत ही भगवान का शुक्राना था। 20 दिन थे पोस्ट सर्जरी हॉस्पिटल में, तो उसमें रिकवरी का था कि बेस्ट रिकवरी पॉसिबल करें, और फिर उसके बाद एक बायोप्सी होती है जिसमें वो टेस्ट करते हैं रिजेक्शन के लिए, और उसके बाद हम घर जा सकते थे।
5: करण, जब आपको होश आया और आपको पता चला कि आपका ट्रांसप्लांट हो गया है, आपको क्या बताया गया था कि ये डोनर कौन था और उसकी कहानी क्या थी?
3: जी, मैंने काफ़ी पूछताछ करी, पर हस्पताल की पॉलिसी ये है कि वो किसी को बताते नहीं है। जो डोनर फैमिली होती है उन्होंने किसी फैमिली मेंबर को खोया होता है और वो फैमिली जब वो किसी रेसिपिएंट को देखती है कि भाई मेरे बेटे या मेरे भाई का कुछ ऑर्गन किसी के अंदर है तो काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं। तो उस कारण से उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया मुझे बताने के लिए। मैंने काफ़ी उनको पूछने की कोशिश करी भाई कि इतनी, क्योंकि मैं आज जिंदा हूँ तो मैं उसकी वजह से हूँ जिसने ऑर्गन डोनेट किया था, और ये मैं पहले भी काफ़ी बारी बोल चुका हूँ, आज दोबारा बोलूँगा रेडियो पे कि मेरे लिए तो वो इंसान भगवान है जो मुझे ज़िंदगी दे सकता है, या किसी भी कोई भी किसी और को अगर ज़िंदगी दे सकता है तो वो भगवान ही है। बस उस अननेम्ड पर्सन को मैं याद करके उसको रोज़ मैं पूछता हूँ, मैं सुबह जब हर सुबह जब मेरी आँखें खुलती हैं तो मैं उसको धन्यवाद करता हूँ कि उसने अपनी ज़िंदगी त्यागी मुझे ज़िंदगी देने के लिए।
4: और आप, आपके क्या प्लान है आगे जाके? आप मुझे बता रहे थे कि आप ट्रांसप्लांट गेम्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स में।
3: जी, शुरू से स्पोर्ट्स पर्सन था, स्पोर्ट्स में बहुत शौक है। हर दो साल ये वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स होते हैं जहाँ पे दुनिया भर के लोग आते हैं जिनके हर किस्म के ट्रांसप्लांट्स होते हैं, वेदर किडनी हो, लिवर हो, इंटेस्टाइन हो, मेजर ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स के होते हैं। और इस साल इंग्लैंड में हो रहे हैं ये गेम्स, मैं वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, 5 इवेंट्स कर रहा हूँ, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो मेरे लिए तो इससे बड़ी और कोई बात हो नहीं सकती।
4: और अब आपने अपने स्पोर्टिंग एक्टिविटीज शुरू कर ली हैं दोबारा?
3: जी बिल्कुल, काफ़ी स्पोर्टिंग एक्टिविटी कर रहा हूँ, तकरीबन हर दिन 3 से 3.5 घंटे कुछ ना कुछ स्पोर्ट करता हूँ, या जिम जाता हूँ, या वॉकिंग कर रहा हूँ, या गोल्फ खेलता हूँ, या टेबल टेनिस खेलता हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है। इसका परिणाम ये है कि कुछ भी खा सकता हूँ, रिपोर्टें सारी फर्स्ट क्लास हैं, तो उससे ज़्यादा खुशी की बात हो नहीं सकती।
4: और आपकी फैमिली सब खुश हैं?
5: हाँ जी, बहुत शुक्राना है। और बच्चे अब मतलब हम सब नॉर्मल फैमिली की तरह हर रोज़ झगड़ते भी हैं, खेलते भी हैं, हंसते भी हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उसी के लिए हम हर रोज़ थैंक यू बोलते हैं।
4: थैंक यू करण और रितिका, आपके साथ बात करके बहुत खुशी हुई, और आपको वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स के लिए शुभकामनाएं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप भारत का नाम खूब रोशन करेंगे।
1: थैंक यू सुनैना। मैं आप सभी श्रोताओं को बता दूं कि अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.organindia.org विजिट कर सकते हैं, या हमारे टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर्स 1800-120-3648 पर फोन कर सकते हैं, या info@organindia.org पर ईमेल भी कर सकते हैं। यदि आप अंगदान का संकल्प लेना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट www.organindia.org पर जाकर एक फॉर्म भर सकते हैं। हमारी तरफ से आपको एक ऑर्गन डोनर कार्ड और सर्टिफिकेट भेजा जाएगा। इसके बारे में आप अपने परिवार के लोगों को जरूर बताइएगा और अपने आसपास सभी को प्रेरणा भी दीजिएगा। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।
7: तो आज के इस कार्यक्रम में हमने बहुत सी बातें जानी अंगदान से जुड़ी हुई। ऑर्गन इंडिया के सौजन्य से कार्यक्रम हम आपके बीच लाए। रेडियो मानव रचना 107.8 की इस कोशिश में अगर आप भी हमारा साथ देना चाहते हैं और अपनी राय और अपने कुछ खास विचार हमारे समक्ष रखना चाहते हैं तो हमें मैसेज या कॉल करें 8010781078, या फिर हमारे इंटरनेट रेडियो रेडियो मानव रचना के माध्यम से आप ऐप डाउनलोड करके भी इस कार्यक्रम को सुन सकते हैं, और जिस भी व्यक्ति के साथ आप शेयर करना चाहें दुनिया के किसी भी कोने में कभी भी शेयर कर सकते हैं। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। जीवन एक अनमोल उपहार, इसकी अहमियत को समझिए और अपना ख्याल रखिए। दिस इज दीक्षा साइनिंग ऑफ।

0: करो।
1: जीवन एक अनमोल उपहार है, अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें, अंगदान का संकल्प लें। अंगदान, जीवन दान।
2: रेडियो कार्यक्रम संबंधी अस्वीकरण द ऑर्गन, ऑर्गन रिसीविंग एंड गिविंग अवेयरनेस नेटवर्क, पराशर फाउंडेशन तथा रेडियो स्टेशन, उसके मालिक, कर्मचारी, प्रबंधन, प्रायोजक एवं सहयोगी, जिन्हें यहां सामूहिक रूप से हम कहा गया है, वार्ता कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ताओं या उनके अतिथियों द्वारा दी गई किसी राय अथवा वक्तव्य की कोई जिम्मेदारी नहीं लेते। वार्ता कार्यक्रम के दौरान उसमें उपस्थित अतिथियों समेत दिए गए कोई भी बयान या मत या विषय का हम किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं करते हैं। हम इसे सत्य कहकर इसका समर्थन नहीं कर रहे, इसका निर्णय आप स्वयं करें। यद्यपि हमारी कोशिश ईमानदारी से सच कहने की ही रहेगी तथा यदि कोई अपेक्षित सत्य हो तो उस पर सवाल करने का अधिकार हमारे पास रहेगा। हमारा इरादा किसी को बदनाम करना, किसी से भेदभाव करना, नफरत फैलाना या किसी को दुख पहुंचाने का नहीं है। इसके अलावा ये कोई चिकित्सा सलाह नहीं है और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी चिकित्सा उपचार से संबंधित नहीं है। हमारा विश्वास है कि ये हमारे बुनियादी अधिकारों का हिस्सा है और साथ ही हमारा कर्तव्य है कि हम इस जानकारी या राय का प्रसार करें। हालांकि हम अन्य लोगों की लिखित, बोली गई या सांकेतिक राय की जिम्मेदारी नहीं ले सकते।

हेलो फरीदाबाद, स्वागत है आपका आपके अपने रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। और मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आरजे स्नेहा, और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। एक ऐसा प्रोग्राम जो लेकर आता है आपके लिए मोटिवेशनल जर्नी, इंस्पिरेशनल स्टोरीज, और साथ ही ऐसे लोगों की कहानियाँ जो आप सुनकर ना मोटिवेट हो जाते हैं। जी हाँ, मोटिवेट ऐसे हो जाते हैं क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हम अपनी लाइफ में ना हार मानते हैं। जी हाँ, मोटिवेट ऐसे हो जाते हैं क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हम अपनी लाइफ में ना हार मान चुके होते हैं या हार जाते हैं। तो किसी की जर्नी या किसी की बातें ना हमें मोटिवेट करती है कि हम भी अपनी लाइफ में कुछ कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं और सपने देख सकते हैं। तो बस इसी के लिए ये सक्सेस मंत्रा प्रोग्राम आपको सक्सेस के लिए कुछ मंत्रास देता है जो आप अपनी लाइफ में उसे फॉलो करके आगे बढ़ सकते हैं। तो इसी के साथ आज फिर से आ गई हूँ आपके लिए लेकर एक और जर्नी, जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। वो ना बहुत ही कहे तो बहुत स्पेशल व्यक्ति है। जी हाँ, बहुत स्पेशल पर्सन है, उनके बारे में आप जानते ही होंगे। अभी हाल फिलहाल में आपने ना इनका नाम बहुत सुना होगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सोनम वांगचुक की। जी हाँ, सोनम वांगचुक की जर्नी के बारे में अब हम जानेंगे, उनकी जर्नी कि क्या करा उन्होंने कि आज लोग उनको इतना पसंद करते हैं, इतना प्यार देते हैं, इतना सम्मान करते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको ना जुड़ जाना है हमारे साथ, यानी अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ, क्योंकि आज इनके बारे में होने वाली है बहुत सारी बातें। इनकी जर्नी के साथ आज हम चलने वाले हैं, इनकी जर्नी से मोटिवेशन लेने वाले हैं, इंस्पिरेशन बनने वाले हैं ये हमारे। तो इसलिए आपको ना जुड़ जाना है हमारे साथ, यानी कि अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। और इसी के साथ वक्त हो गया है अभी एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। इस ब्रेक के बाद करेंगे और भी बहुत सारी बातें। तब तक के लिए सुनिए बहुत ही प्यार सा गाना सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं होस्ती हूं आपके साथ और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। एक ऐसा प्रोग्राम जहां पर हम बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने अपनी सोच से, अपनी मेहनत से और उन हौसलों के कदम पर सिर्फ अपनी जिंदगी ही नहीं बदली बल्कि लाखों लोगों के जीवन में भी प्रभाव डाला है, एक सकारात्मक बदलाव लेकर आए हैं। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ही शख्सियत की, उनकी कहानी को लेकर आए हैं आज हम, जिन्होंने हमें सिखाया है कि असली सफलता सिर्फ बड़ी नौकरी या फिर पैसा कमाने में नहीं है बल्कि समाज की ना जो समस्याएं हैं उनको हल करने में है। जी हाँ, उनको ढूंढने में है, उनको सॉल्यूशन देने में है उनके लिए। और आज हमारी प्रेरणादायक जो कहानी है वो है एक इंजीनियर की, एक इनोवेटर की और एक एजुकेशन रिफॉर्मर की। मैं बात कर रही हूँ सोनम वांगचुक जी की। जी हाँ, सोनम वांगचुक सर की आज हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, सोनम वांगचुक का जो जन्म है वो 1 सितंबर 1966 को लद्दाख के एक छोटे से गांव में हुआ था। उस समय लद्दाख में शिक्षा और अन्य सुविधा बहुत सीमित थी। उनका बचपन प्राकृतिक के बीच में गुजरा, लेकिन पढ़ाई का सफर बिल्कुल आसान नहीं था। जी हाँ, सबसे बड़ी चुनौती तब शुरू हुई जब वो स्कूल गए। घर में वो भोती भाषा में बोलते थे जबकि स्कूल में पढ़ाई उर्दू में होती थी। जी हाँ, सोचिए, एक छोटा सा बच्चा जो अपने टीचर की बातें ही ठीक से ना समझ पाए, इसी वजह से शुरुआत में उन्हें पढ़ाई में बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगी, मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कई बार लोगों ने उन्हें कमजोर स्टूडेंट भी समझा, लेकिन दोस्तों सोनम वांगचुक ने ना एक बात जो थी वो बहुत जल्दी समझ ली थी, और वो ये थी कि कमजोर वो नहीं होते हैं जो धीरे सीखते हैं, बल्कि कमजोर तो वो सिस्टम होता है जो हर छोटे बच्चे को एक ही तरीके से पढ़ाना चाहते हैं। जी हाँ, बचपन से ही उनके अंदर हर चीज को समझने की जिज्ञासा थी। वो सिर्फ किताबों में लिखी बातों को ही याद नहीं करना चाहते थे बल्कि उनके पीछे के लॉजिक को समझना चाहते थे। उन्हें प्रकृति को देखना, नए तरीके से सोचना और हर समस्या का हल ढूंढना बहुत पसंद था। उनके माता पिता ने भी हमेशा उनका हौसला बढ़ाया है। उन्होंने सोनम वांगचुक को समझाया कि अगर रास्ता मुश्किल हो रहा है तो रुकना नहीं चाहिए। शायद इसी सोच ने उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस पैदा कर दिया जो आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। दोस्तों, आज जब हम सोनम वांगचुक की सफलता देखते हैं तो हमें लगता है कि सब कुछ आसान रहा होगा, लेकिन सच तो ये है कि उनकी जर्नी की शुरुआत भी संघर्ष से ही हुई थी। जी हाँ, लैंग्वेज बैरियर्स, रिसोर्सेस की कमी और कठिन परिस्थितियां, ये सब उनके रास्ते में थे, पर फिर भी उन्होंने कभी अपनी क्यूरियोसिटी को या सीखने की इच्छा को खत्म नहीं होने दिया। ये कहानी हमें बताती है कि हर बच्चा अलग होता है, हर किसी का सीखने का तरीका भी अलग होता है। अगर हम अपनी कमियों को अपनी पहचान बना लेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन अगर हम उन्हें अपनी ताकत बना ले तो वही कमी एक दिन हमारी सबसे बड़ी पहचान बन सकती है। और बस यहीं से हमने सोनम वांगचुक का पहला सक्सेस मंत्रा भी ले लिया, और वो ये है कि जब जिंदगी आपके सामने चुनौतियां रखे ना तो उनसे घबराइए मत, उन्हें समझिए और उनसे सीखिए और अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लीजिए। और इसी के साथ जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। मैं हूँ स्नेहा आपके साथ। सुने बहुत ही प्यार सा गाना, फील गुड फील लाइफ।

दूर जब दिन ढल जाए सांझ की दुल्हन।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हुस्ती हूं आपके साथ और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। एक ऐसा प्रोग्राम जो आपको सिर्फ मोटिवेट ही नहीं करता है बल्कि आपको ना आगे बढ़ने का हौसला देता है, आपको बताता है कि आप भी ना अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। जी हाँ, लाइफ में चैलेंजेस आएंगी, आप शायद थक कर हार जाओगे, आप काम करते रहोगे पर वो काम बिगड़ जाएगा और आपका हौसला टूट जाएगा, पर आपको वहीं नहीं रुकना है, आपको ना लाइफ में आगे बढ़ना है, बहुत कुछ अचीव करना है और दूसरों की मदद भी करनी है। जी हाँ, सक्सेस का असली मतलब सिर्फ खुद के लिए जीतना या फिर खुद सब कुछ हासिल करना नहीं होता है बल्कि दूसरों के लिए भी अपनी जो ताकत आपको मिली है उसको इस्तेमाल करना होता है। और आज इस सक्सेस मंत्रा की जर्नी में हम चल रहे हैं सोनम वांगचुक के साथ। जी हाँ, सोनम वांगचुक के बारे में हमने पिछले सेगमेंट में उनके बचपन के बारे में जाना, अब हमने देखा कि कैसे लैंग्वेज बैरियर और सीमित रिसोर्सेज के बावजूद उन्होंने कभी सीखना नहीं छोड़ा, उन्होंने मुश्किलों को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बना लिया। और अब इस सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं उनकी इंजीनियरिंग के सफर की और उस सोच की जिसने उन्हें सिर्फ एक इंजीनियर ही नहीं बल्कि एक एजुकेशन रिफॉर्मर भी बना दिया। दोस्तों, स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद सोनम वांगचुक ने इंजीनियरिंग करने का फैसला किया। उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी श्रीनगर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। इंजीनियरिंग के दौरान उन्होंने सिर्फ मशीन्स या फिर टेक्नोलॉजी ही नहीं सीखी बल्कि ये भी समझा कि किसी की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए पहले उस प्रॉब्लम को गहराई से समझना जरूरी होता है। कॉलेज के दिनों में जब भी वो लद्दाख लौटते तो वहां से स्कूलों और स्टूडेंट्स की स्थिति देखकर उन्हें बहुत दुख होता था। बहुत से बच्चे पढ़ने में होशियार थे लेकिन एग्जाम में फेल हो जाते थे। इसका कारण उनकी इंटेलिजेंस नहीं बल्कि उनका एजुकेशन सिस्टम था। पढ़ाई का तरीका उनकी लैंग्वेज, कल्चर और एनवायरमेंट से बिल्कुल अलग था। सोनम वांगचुक जी ने एक बहुत गहरी बात समझी कि अगर सिस्टम बच्चों को समझने की जगह उन्हें सिर्फ याद करना सिखाए तो टैलेंट धीरे धीरे दब जाता है। और इसी सोच ने उनके अंदर एक नया सपना जगाया। उन्होंने डिसाइड किया कि वो सिर्फ अपना करियर नहीं बनाएंगे बल्कि एजुकेशन सिस्टम को भी बेहतर बनाने के लिए काम करेंगे। उनका मानना था कि एजुकेशन का मतलब सिर्फ अच्छे मार्क्स लेकर आना नहीं होता है बल्कि असली शिक्षा वो होती है

प्यार होना होता है। उन्होंने हमेशा कहा है कि हर बच्चे के अंदर टैलेंट होता है, जरूरत सिर्फ उस टैलेंट को पहचानने की है और उसे सही दिशा देने की होती है। यही सोच आगे चलकर एक ऐसे रूप लेने वाली थी जिसने लद्दाख की एजुकेशन को ही बदल कर रख दिया। जी हाँ, यहाँ से हमें सोनम वांगचुक का दूसरा सक्सेस मंत्र मिलता है कि सिर्फ डिग्री हासिल करना सफलता नहीं होती है, बल्कि असली सफलता तब होती है जब आप अपनी नॉलेज का इस्तेमाल किसी की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए करते हैं। इसी के साथ वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। आप जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूं स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। एक ऐसा प्रोग्राम जो लेकर आता है आपके लिए कुछ खास बातें, जहां पर आप सक्सेस के मंत्रास लेते हैं और अपनी लाइफ में मोटिवेट होते हैं। जी हाँ, पिछले सेगमेंट में हमने जाना कि कैसे इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान सोनम वांगचुक ने एजुकेशन सिस्टम की कमियों को समझा। उन्होंने इस बात को महसूस किया कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास टैलेंट होने के बाद भी सिर्फ इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि उनको पढ़ने का तरीका जो होता है वो उनके हिसाब से नहीं होता है। लेकिन दोस्तों, सोनम वांगचुक सिर्फ समस्याओं की बात करने वालों में से नहीं थे, बल्कि उन्होंने उनका हल ढूंढने का फैसला किया और इसी सोच के साथ साल आया 1988, जिसमें उन्होंने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख यानी कि SECMOL की शुरुआत की। शुरुआत में ये एक छोटा सा इनिशिएटिव था, लेकिन इसका सपना बहुत बड़ा था, ऐसे स्टूडेंट्स को नई पहचान देना जिन्हें स्कूल सिस्टम ने फेल का लेबल दे दिया है। दोस्तों, उस समय लद्दाख में बोर्ड एग्जाम्स का रिजल्ट बहुत कम आता था, कई स्टूडेंट सिर्फ लैंग्वेज और टीचिंग मेथड की वजह से फेल हो जाते थे। समाज उन्हें कमजोर समझता था, लेकिन सोनम वांगचुक का मानना था कि फेल स्टूडेंट जैसी कोई चीज नहीं होती है, सिर्फ फेल एजुकेशन सिस्टम होता है। इस मोमेंट में पढ़ाई का तरीका बिल्कुल अलग था। यहाँ पर स्टूडेंट को सिर्फ किताबें ही याद नहीं कराई जाती थी, बल्कि उन्हें प्रैक्टिकल लर्निंग, टीम वर्क, लीडरशिप और रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाई जाती थी। स्टूडेंट्स खुद खेती करते थे, सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करते थे, कैंपस की जिम्मेदारी संभालते थे और अपने फैसले भी खुद लेना सीखते थे। सबसे खास बात तो ये थी कि यहाँ गलती करना मना नहीं था, बल्कि स्टूडेंट्स को समझाया जाता था कि गलती ही सबसे बड़ा टीचर होती है। इसी वजह से धीरे धीरे उन बच्चों का कॉन्फिडेंस वापस आने लगा जो पहले खुद को दूसरों से कम समझते थे। कुछ ही सालों में SECMOL के स्टूडेंट्स जो है उन्होंने बोर्ड एग्जाम में बेहतर रिजल्ट देना शुरू कर दिया। लेकिन सोनम वांगचुक के लिए सबसे बड़ी जीत उनके मार्क्स नहीं थे, बल्कि उनके लिए असली सफलता ये थी कि स्टूडेंट्स ने खुद पर भरोसा करना सीख लिया है। दोस्तों, आज भी हम अक्सर किसी बच्चे की काबिलियत को उसके मार्क्स से नाप देते हैं, लेकिन हर बच्चे की लर्निंग स्पीड और टैलेंट अलग होता है। किसी का टैलेंट साइंस में होता है तो किसी का स्पोर्ट्स में, किसी का आर्ट्स या फिर किसी का इनोवेशन में। अगर हम सिर्फ मार्क्स के आधार पर ही किसी को जज करेंगे तो शायद हम उसके अंदर छिपे असली टैलेंट को कभी नहीं देख पाएंगे। सोनम वांगचुक की जर्नी हमें ये सिखाती है कि एक सच्चा लीडर वही होता है जो उन लोगों पर विश्वास करे जिन पर दुनिया विश्वास करना छोड़ देती है। हमें यहाँ से सोनम वांगचुक की जिंदगी से तीसरा सक्सेस मंत्र मिलता है कि कभी भी किसी इंसान की क्षमता का फैसला उसके मार्क्स या फिर फेलियर से मत कीजिएगा। हर व्यक्ति के अंदर एक अनोखी काबिलियत होती है, बस उसे पहचानना और मौका देने की जरूरत होती है। इसी के साथ वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूँ स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। और आज सक्सेस मंत्रा की कड़ी में हम चल रहे हैं सोनम वांगचुक की जर्नी के साथ। बहुत सारी बातें हम जान रहे हैं उनकी लाइफ से। तो चलिए, पिछले सेगमेंट में जैसे कि हमने जाना कि कैसे सोनम वांगचुक ने SEC MOL के जरिए उन स्टूडेंट की जिंदगी बदल दी जिन्हें एजुकेशन सिस्टम ने फेल का टैग दे दिया था। लेकिन दोस्तों, सोनम चुका मिशन सिर्फ एजुकेशन तक ही सीमित नहीं था। उनका मानना था कि अगर किसी समस्या का हल ढूंढना है तो हमें प्रकृति और साइंस दोनों को साथ लेकर चलना होगा। लद्दाख एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, लेकिन यहाँ की सबसे बड़ी चुनौती है उनके लिए पानी की कमी होना। सर्दियों में यहाँ पर बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है, लेकिन गर्मियों में शुरुआती महीनों में जब खेतों के सबसे ज्यादा पानी की जरूरत होती है तो तब ग्लेशियर का पानी अभी तक पूरी तरह नहीं पिघला होता है। इसी वजह से किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। सोनम वांगचुक ने इस समस्या को बहुत ध्यान से समझा। उन्होंने सोचा कि अगर सर्दियों का पानी किसी तरीके से संभाल कर रखा जा सके और जरूरत के समय पर इस्तेमाल किया जा सके तो इस समस्या का हल भी निकाला जा सकता है। और इसी सोच के साथ जन्म लिया आइस टूपा का। जी हाँ दोस्तों, आइस टूपा एक कोन शेप्ड यानी कि शंकु के आकार की बर्फ का संरचना होती है जो सर्दियों में पानी को एक खास तरीके से हवा में छोड़ा जाता है, जहां वो जमकर धीरे धीरे एक बड़ी बर्फ की मीनार के रूप में ले लेता है। क्योंकि इसका आकार कोन जैसा होता है इसलिए धीरे धीरे पिघलता है और गर्मियों की शुरुआती दिनों में खेतों को पानी उपलब्ध कराता है। इसी सिंपल लेकिन ब्रिलियंट आइडिया ने लद्दाख के कई गांवों में पानी की समस्या को काफी हद तक कम कर दिया था। सबसे खास बात तो ये थी कि इनोवेशन के लिए किसी महंगी टेक्नोलॉजी की जरूरत भी नहीं पड़ी, ये प्रकृति की नियमों को समझकर बनाया गया और एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन था। इसी वजह से आइस टूपा की चर्चा सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में होने लगी। क्लाइमेट चेंज और वाटर कंजर्वेशन के क्षेत्र में सोनम वांगचुक के इस इनोवेशन को एक मिसाल के रूप में देखा गया। दोस्तों, अक्सर हम सोचते हैं कि इनोवेशन का मतलब सिर्फ बड़े बड़े मशीन्स या फिर एडवांस टेक्नोलॉजी होती है, लेकिन सोनम वांगचुक ने ये हमें सिखाया है कि इनोवेशन का मतलब है कि किसी असली समस्या का सरल और प्रभावी समाधान ढूंढना। उनकी सोच ने साबित कर दिया कि जब हम अपनी लोकल प्रॉब्लम्स को समझते हैं और उनका सॉल्यूशन अपनी जरूरत के हिसाब से तैयार करते हैं तब वही आइडिया दुनिया के लिए भी इंस्पिरेशन बन जाता है। यहाँ से हमें सोनम वांगचुक सर का चौथा सक्सेस मंत्रा भी मिलता है कि असली इनोवेशन वही है जो लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाए। हर प्रॉब्लम के साथ एक सॉल्यूशन भी होता है कि बस उसे देखने के लिए अलग नजरिए की जरूरत होती है। इसी के साथ वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, और मैं हूँ स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। और आज सक्सेस मंत्रा में हम चल रहे हैं सोना मांग चुक की जर्नी के साथ। दोस्तों, पिछले सेगमेंट में हमने सोना मांग चुक के अनोखे इनोवेशन आइस टूबा के बारे में जाना। हमने देखा कि कैसे एक सिंपल लेकिन ब्रिलियंट आइडिया ने लद्दाख में पानी की समस्या को एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन दिया और दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा। और अब जो इस सेगमेंट में हम बात करेंगे वो है उनके उस पहचान की जो उन्हें अपनी मेहनत, उनके इनोवेशन और समाज के प्रति समर्पण के लिए मिली। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए काम करता है तो उसका काम धीरे धीरे दुनिया तक पहुंच ही जाता है। सोना मांग चुक के साथ भी कुछ ऐसा ही था। एजुकेशन और एनवायरनमेंट के क्षेत्र में उनके प्रयासों को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर सराहा गया। साल 2018 में उन्हें एक ऐसे सबसे बड़े प्रतिष्ठित सम्मानों में से एक रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह अवार्ड उन्हें एजुकेशन को बदलने, इनोवेशन को बढ़ावा देने और लद्दाख के लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए दिया गया। इस सम्मान के बाद उनका नाम सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में और भी ज्यादा मशहूर हो गया। दोस्तों, बहुत से लोग ये भी जानते हैं उनकी बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म 3 Idiots के यादगार कैरेक्टर पुनसुक वांगड़ू की प्रेरणा सोना मांगचो की पर्सनैलिटी और उनकी सोच से ही ली गई थी। फिल्म ने एक ऐसे टीचर और इनोवेटर को दिखाया जो रट्टा लगाने की जगह प्रैक्टिकल लर्निंग और क्रिएटिविटी पर विश्वास करता है। ये वही वैल्यूज है जिन्हें सोना मांगचुक सालों से अपने काम के जरिए बढ़ावा देते आए हैं। लेकिन दोस्तों, इतनी बड़ी पहचान और सम्मान मिलने के बाद भी सोना मांगचुक की जिंदगी में सादगी आज भी वैसी ही बनी हुई है। उन्होंने कभी अवार्ड्स को अपनी मंजिल नहीं माना। उनके लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड तब होता है जब किसी स्टूडेंट की जिंदगी बदलती है और जब किसी गांव को पानी मिलता है और जब कोई युवा उनकी कहानी से प्रेरित होकर कुछ नया करने का फैसला करता है। दोस्तों, ये बात हमें एक बहुत बड़ा लेसन देती है कि अक्सर हम सफलता को सिर्फ नाम, पैसा या फिर पॉपुलैरिटी से जोड़ देते हैं, लेकिन सोना मांग चुक हमें सिखाते हैं कि असली सफलता तब होती है जब आपका काम दूसरों की जिंदगी को बेहतर बनाए। सम्मान और पहचान उसके बाद अपने आप आपको मिल जाते हैं। यहाँ से हमें उनका 5वां सक्सेस मंत्रा मिलता है जो कि है कि कभी भी अपनी सिर्फ पहचान बनाने के पीछे मत काम कीजिए, उसके ऊपर मत भागिए। ऐसा काम कीजिए जो लोगों के काम आए। जब आपका उद्देश्य समाज की भलाई होता है तो पहचान और सम्मान खुद आपके पास आ जाते हैं। वक्त हो गया है इसी के साथ एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड फील।

0: स्वागत एक बार फिर से आपका रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर और मैं हूँ स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। एक ऐसा प्रोग्राम जहाँ पर हम बात करते हैं सक्सेस होने की। और आज इस सक्सेस की जर्नी में हम चल रहे हैं सोनम वांगचुक की जर्नी के साथ। उनके बारे में आज हम जान रहे हैं, बहुत सारी बातें जाने, उनके इनोवेशन जाने, उनके काम जाने और उनकी लगन जो लोगों से जुड़ी हुई है कि लोगों के लिए कुछ करना है, वो बहुत ही खास है। दोस्तों, पिछले सेगमेंट पे जैसा कि हमने जाना कि सोनम वांगचुक को उनके इनोवेशन और एजुकेशन के क्षेत्र के योगदान के लिए देश और दुनिया में पहचान मिली। लेकिन दोस्तों, उनकी कहानी सिर्फ अवार्ड्स या फिर अचीवमेंट तक ही सीमित नहीं रही, उनका असली मिशन आज भी जारी है, एक बेहतर इन्वायरमेंट, बेहतर एजुकेशन, बेहतर भविष्य बनाना। सोनम वांगचुक का मानना है कि अगर हम प्रकृति का ध्यान नहीं रखेंगे तो आने वाली पीढ़ियों को इसका सबसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। लद्दाख जैसे पहाड़ी इलाकों में क्लाइमेट चेंज का असर साफ दिखाई देता है, ग्लेशियर का धीरे धीरे पिघल जाना, मौसम बदल रहे हैं और पानी की समस्या बढ़ती जा रही है। इसलिए वो लगातार सस्टेनेबल लिविंग और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के बारे में लोगों को जागरूक करते रहते हैं। दोस्तों, सोनम वांगचुक हमेशा कहते हैं कि हमें सिर्फ डेवलपमेंट की बात नहीं करनी चाहिए बल्कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की भी बात करनी चाहिए। ऐसा विकास जो प्रकृति को नुकसान पहुंचाए बिना आने वाली पीढ़ियों के लिए भी रिसोर्सेस हमें बचा कर रखने हैं। इसी सोच के साथ उन्होंने लद्दाख में सोलर एनर्जी, इको फ्रेंडली बिल्डिंग्स और लोकल रिसोर्सेस के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया है। सेकवॉल कैंपस भी इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। वहाँ कई बिल्डिंग्स इस तरह डिजाइन की गई है कि जो सर्दियों में भी कम एनर्जी का इस्तेमाल हो और प्रकृति के साथ संतुलन बना कर रहे। लेकिन सोनम वांगचुक का सबसे बड़ा फोकस हमेशा यूथ पर ही रहा है। उनका मानना है कि भारत के युवा सिर्फ नौकरी ढूंढने वाले नहीं है बल्कि नए आइडियाज देने वाले हैं और प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले होने चाहिए। वो स्टूडेंट को हमेशा इनकरेज करते हैं कि सिर्फ मार्क्स के पीछे मत भागो बल्कि अपनी क्रिएटिविटी और प्रैक्टिकल स्किल्स को भी डेवलप करो। दोस्तों, आज के डिजिटल दौर में इंफॉर्मेशन पाना बहुत आसान हो गया है, लेकिन इंफॉर्मेशन और नॉलेज में बहुत अंतर होता है। सोनम वांगचुक कहते हैं कि सिर्फ इंटरनेट से जानकारी लेना काफी नहीं होता है बल्कि असली नॉलेज तब होती है जब हम उस जानकारी को समझकर उसका इस्तेमाल किसी रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में करें। उनकी पूरी जर्नी एक बात साफ करती है कि अगर हम अपनी रूट से जुड़े रहकर नए आइडियाज पर काम करें तो हम अपने शहर, अपने राज्य और अपने पूरे देश में बदलाव ला सकते हैं। बदलाव हमेशा किसी बड़े शहर से शुरू हो ये जरूरी नहीं है, कभी कभी एक छोटा सा गांव भी दुनिया की सोच को बदल सकता है। यहाँ से हमें उनका छठा सक्सेस मंत्र मिलता है कि अपनी नॉलेज को इस्तेमाल सिर्फ अपने करियर के लिए नहीं बल्कि समाज और प्रकृति की भलाई के लिए भी कीजिए। वही सफलता सबसे ज्यादा मायने रखती है जो दूसरों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लेकर आए। इसी के साथ वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।
1: ये हुई ना बात।

वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूँ स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। और आज सक्सेस मंत्रा की जर्नी में, इस खास एपिसोड में, हमने सोनम वांगचुक की प्रेरणादायक जर्नी को करीब से जाना। लद्दाख के एक छोटे से गांव में जन्मा एक छोटे से बच्चे से लेकर इंजीनियर, इनोवेटर, एजुकेशन रिफॉर्मर और एनवायरमेंटलिस्ट बनने तक का ये सफर, उनका जो सफर था, हमने ये बहुत कुछ सिखाता है। सफलता सिर्फ अपने सपने पूरे करने में नहीं बल्कि दूसरों के सपनों को भी पंख देने में होती है। दोस्तों, सोनम वांगचुक की जिंदगी से हमें कई ऐसे सक्सेस मंत्र मिलते हैं जो हर स्टूडेंट, प्रोफेशनल और हर उस व्यक्ति के लिए जरूरी है जो अपनी जिंदगी में कुछ अलग करना चाहते हैं। उनका पहला सक्सेस मंत्र है, हर चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी को समझिए। दूसरा सक्सेस मंत्रा, एजुकेशन का मतलब सिर्फ मार्क्स नहीं होता बल्कि समाज और सोच भी होती है। तीसरा सक्सेस मंत्रा है, इनोवेशन हमेशा किसी असली समस्या का हल होना चाहिए। दोस्तों, और इसी के साथ चौथा सक्सेस मंत्रा है, अपनी जड़ों से हमेशा जुड़े रहिए, वो बहुत जरूरी है। पांचवा सक्सेस मंत्र है कि कभी सीखना मत छोड़िए। तो दोस्तों, इसी के साथ ये सोनम वांगचुक की कहानी हमें बताती है कि व्यक्ति की सोच पूरी दुनिया को प्रेरित कर सकती है। अगर हम सिर्फ अपनी सफलता के बारे में सोचने की बजाय समाज की जरूरत को समझना शुरू करें तो हम भी बदलाव का हिस्सा बन सकते हैं। और इसी प्रेरणादायक संदेश के साथ आज का सक्सेस मंत्र यहीं पर समाप्त होता है। मैं हूँ आज स्नेहा आपके साथ और ले रही हूँ आपसे इजाजत। अगले एपिसोड में फिर से मुलाकात होगी एक और ऐसे ही शख्सियत के साथ जिनकी जिंदगी ने हमें सफलता का एक नया मंत्र सिखाएगा। तब तक के लिए याद रखिएगा कि सफलता सिर्फ मंजिल तक पहुँचने का नाम नहीं है बल्कि अपनी सोच को और अपने काम से दूसरों की जिंदगी में रोशनी लाने का नाम है। अपने सपनों पर विश्वास रखिए, सीखते रहिए, नए आइडियाज पर काम कीजिए और हमेशा याद रखिए, बदलाव की शुरुआत हमेशा एक छोटी सोच से ही होती है। चलिए, वक्त हो गया है इसी के साथ आपसे इजाजत लेने का। मिलेंगे अगले हफ्ते एक और नई जर्नी के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

0: नमस्कार, मैं बोल रहा हूँ सिंगराज धाना, टोक्यो 2020 पैरालंपिक सिल्वर ब्राउन्ज मेडलिस्ट इन शूटिंग। आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8, फील गुड फील लाइफ।
1: हेलो एंड वेलकम टू रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पे। दोस्तों, आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है आपके अपने फरीदाबाद के पहले चैनल पर। दोस्तों, कैफे क्लासिक्स प्रोग्राम में मैं आपको सुनाती हूँ अच्छे अच्छे गाने, साथ ही देती हूँ उन गानों के पीछे जुड़े हुए उन लोगों के बारे में कुछ कुछ जानकारी जो शायद हमारी जिंदगी में कुछ एक नया चेंज ला सके, हमारी ज़िंदगी में कोई नई मोटिवेशन ला सके। दोस्तों, आज का प्रोग्राम हम डेडिकेट करेंगे एक उस हस्ती को जिसकी आवाज़ हम सबके दिलों में बसी हुई है। मुझे पता है नाम लेते ही बहुत से जो श्रोता जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो दिल पर हाथ रख कर एक लंबी सांस लेंगे, क्योंकि वो नाम है मोहम्मद रफ़ी साहब का। दोस्तों, एक ऐसा नाम जो बॉलीवुड की दुनिया में कई दशकों तक छाया रहा, एक ऐसा नाम जिन्हें शहनशाह तरन्नुम भी कहा गया है। तो दोस्तों, आज का हमारा ये सफ़र मोहम्मद रफ़ी साहब के नाम। लेते हैं यहाँ पे एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, ब्रेक के बाद मैं तुरंत वापस आऊँगी। सुनाएंगे आपको ढेर सारे मोहम्मद रफ़ी साहब के गाए हुए गाने, साथ ही झांकेंगे उनकी ज़िंदगी की किताब के अंदर, पलटेंगे कुछ किताब के पन्ने और सीखेंगे उनसे कुछ नई और ज़रूरी बातें। ले रही छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए हमारे साथ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। फील गुड फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मानो रचना 107.8 FM पे दोस्तों, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम चल रहा है कैफे क्लासिक्स और आज हम इस शो में बात कर रहे हैं एक ऐसे प्लेबैक सिंगर जो हमारे दिलों में बसे हुए हैं, एक ऐसे प्लेबैक सिंगर जो कि हमारे दिल की तारों के झनकृत सा कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ मोहम्मद रफ़ी साहब की। दोस्तों रफ़ी साहब जिनको हम प्यार से कहा करते थे, जिनको दुनिया इसी नाम से बुलाना पसंद करती है, वो श्रेष्ठतम से श्रेष्ठतम पार्श्व गायकों में से एक है। उनका जन्म 24 दिसंबर 1924 को हुआ और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, इनको शहनशाह तरन्नुम भी कहा जाता था। इन्होंने आज की पीढ़ी के कई सिंगर्स को इन्होंने मोटिवेट किया है। कितनों के नाम तो मैं नहीं जानती, अनसंग हीरोज है, लेकिन कुछ खास हस्तियां जो कि आगे चल करके बताती हैं कि हमारी जो इंस्पिरेशनल हस्ती थी वो मोहम्मद रफ़ी साहब थे। उनमें से जो अग्रज नाम है वो है सोनू निगम साहब, मोहम्मद अजीज़ और उदित नारायण। आज भी हम लोग जब सोनू निगम जी के हम शो सुनते हैं, म्यूज़िकल कॉन्सर्ट्स, तो वो उनका गाना जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, 90% अपने शोज़ वो रफ़ी साहब के इसी गाने से शुरू करते हैं। मानते हैं वो उनको अपना सब कुछ, क्योंकि उनकी आवाज़ सुनकर वो बड़े हुए और उनकी आवाज़ ही उनके लिए प्रेरणा बनी। दोस्तों रफ़ी साहब ने केवल फिल्मी गीत ही नहीं गाए, उन्होंने गज़ल, भजन, देशभक्ति गीत, कव्वाली और अन्य भाषाओं के गीत भी गाए। यहाँ तक कि उन्होंने शब्द भी बहुत खूबसूरत तरीके से गाए हैं। बहुत से फिल्म अभिनेताओं पर उनकी आवाज़ को लगाया गया और बहुत ही सुंदर, मतलब फील होता था कि एक्टर खुद ही गा रहा है, जबकि हम सभी जानते हैं कि एक्टर सिर्फ लिप सिंक करते हैं, आवाज़ तो पीछे सिंगर की होती है। और जिन जिन अभिनेताओं पर रफ़ी साहब की आवाज़ बहुत ही खूबसूरत लगी, उनमें देवानंद, दिलीप कुमार, गुरुदत्त साहब, जॉनी वॉकर, जॉय मुखर्जी, शम्मी कपूर, राजेंद्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, जितेंद्र, ऋषि कपूर और मिथुन चक्रवर्ती, और लेटेस्ट गोविंदा के लिए भी उन्होंने उनकी बहुत शुरुआती पिक्चरों के अलावा उनके उसमें भी उन्होंने प्लेबैक सिंगिंग करी है। और इसके अलावा एक नाम और आता है, किशोर कुमार का भी नाम शामिल है। ऑल्दो किशोर कुमार साहब खुद ही अपने लिए गाते थे, वो भी एक बहुत अच्छे लेवल के सिंगर थे, ये बात हम सभी जानते हैं, लेकिन कई गाने किशोर कुमार जी के लिए जब वो एक्टिंग कर रहे थे तो रफ़ी साहब ने भी उनके लिए गाया। और कितना कहूँ, सब बहुत कम है। एक ऐसी शख्सियत जिसके लिए बहुत से तारीफ़ करें तो भी कम है, लेकिन आज के इस शो में हम क्योंकि उनकी ज़िंदगी के सफ़र पर उनके साथ साथ चल रहे हैं, तो करूँगी आपसे भी ढेर सारी बातें और उनके जन्म के बारे में, उनका शिक्षा कैसे हुई, ये सब बातें अभी आपसे और करेंगे। तब तक के लिए ले रही हूँ यहाँ पर छोटा सा ब्रेक, सुनते हैं रफ़ी साहब के गाए हुए कुछ और गाने। आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए मेरे साथ रेडियो मानव रचना 107.8 पर। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा कर रहे हैं आज हम रफ़ी साहब की, रफ़ी साहब जिनको शहनशाह तरन्नुम भी कहा जाता था। दोस्तों आज का हमारा कैफे क्लासिक्स का ये एपिसोड हमने समर्पित किया है मशहूर श्रेष्ठतम पार्श्व गायक मोहम्मद रफ़ी साहब को। दोस्तों मोहम्मद रफ़ी साहब का जन्म 24 दिसंबर 1924 को अमृतसर के पास कोटला सुल्तान सिंह गाँव में हुआ। आरंभिक पढ़ाई उनकी कोटला सुल्तान सिंह में भी हुई। जब रफ़ी ऑलमोस्ट 7 ईयर्स के थे तो उनका परिवार रोजगार के सिलसिले में लाहौर आ गया, क्योंकि ये बात है अनडिवाइडेड इंडिया की, तो वो बिल्कुल साथ साथ ही अमृतसर, हम सब जानते हैं कि वहीं पे वाघा बॉर्डर और वहीं से पाकिस्तान शुरू होता है। खास बात यह है कि इनके पूरे परिवार को संगीत से कोई खास लगाव या सरोकार नहीं था। जब रफ़ी साहब छोटे थे तो इनके बड़े भाई की नाई की दुकान थी और रफ़ी साहब का बचपन का काफ़ी वक्त वहीं गुजरता था। जब रफ़ी साहब 7 साल के थे तो ये अपने बड़े भाई की दुकान से एक फ़कीर जो है वो गुजरा करते थे सामने से, और ये उस फ़कीर की उसके पीछे पीछे भागकर उसकी नकल किया करते थे। फ़कीर गाता हुआ जाता था और ये फ़कीर की आवाज़ की नकल करते हुए उसके पीछे पीछे जाया करते थे। इनकी आवाज़ सुनकर जो आसपास के लोग हैं, गली के लोग हैं, वो बहुत ही इम्प्रेस होते थे, लेकिन इससे उनको सिर्फ उस गली की ही ख्याति मिली, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। लेकिन एक फ़ायदा ये हुआ कि इनकी संगीत के प्रति रुचि देखकर इनके बड़े भाई ने उनको संगीत शिक्षा के लिए डाल दिया। उस्ताद का नाम था उस्ताद अब्दुल वाहिद खान साहब। तो ये थे रफ़ी साहब के पहले गुरु। और इसके बाद एक वाक्या मुझे और याद है, मैंने ये बात आपसे पहले भी शेयर करी थी जब मैंने एक एपिसोड सहगल साहब का किया था, कि एक बार सहगल साहब का कहीं पर शो था और लाइट चली गई। अब जाहिर सी बात है जब लाइट चली गई तो मेन सिंगर तो

बहुत इम्प्रेस हुए और उन्होंने वहीं पर रफ़ी साहब को गाना गाने का न्योता दे दिया। देखिए, जब किस्मत को रंग बदलना होता है या फिर जिसे कहते हैं जिसकी किस्मत में लिखा ही होता है बहुत ज़्यादा फेमस होना, दुनिया के दिलों में राज करना, तो कहीं ना कहीं से उसकी शुरुआत तो हो ही जाती है, कहीं ना कहीं उसको गॉडफादर मिल ही जाता है। तो इस तरह से रफ़ी साहब का जो है उनके यहाँ पर जो सफलता का उड़ान की उनकी यहाँ पर ये पहला उनका कदम था। और इसी उड़ान के साथ आइए सुनते हैं उनके गाए हुए कुछ और गीत। ले रही हूँ यहाँ पे छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, ब्रेक के बाद मैं तुरंत वापस आऊँगी और फिर हम बात करेंगे रफ़ी साहब के फिल्मी करियर की। तब तक के लिए म्यूजिकल ब्रेक, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, आप भी मेरे साथ जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पे दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम चल रहा है कैफे क्लासिक्स और मैं हूँ इस शो की होस्ट और आप सबकी प्यारी प्यारी दोस्त। जी हाँ दोस्तों, आज के सफर में हम सैल्यूट कर रहे हैं अपनी बातों और उनके गानों के द्वारा श्री मोहम्मद रफ़ी साहब को। मोहम्मद रफ़ी जो हम सभी जानते हैं, एक बहुत ही फेमस प्लेबैक सिंगर रहे हमारे बॉलीवुड के। इनके द्वारा गाए हुए गाने आज भी हमारे दिलों में बसते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बात करी थी रफ़ी साहब के जन्म की, उनके संगीत की शिक्षा की और किस तरह वो पहचाने गए एक गॉडफादर द्वारा और उनको पहला गाना गाने का मौका मिला। आइए चलते हैं अब उनके कुछ फिल्मी करियर पर। जब रफ़ी साहब का, मैंने आपको बताया कि उन्होंने शो में एक ऐसा गाना गाया और उनको श्याम सुंदर जी ने उनको गाने के लिए बुला लिया और उनका जो पहला गाना था वो एक पंजाबी फिल्म थी गुल बलोच, उसके लिए उन्होंने गाना गाया। श्याम सुंदर जी के ही निर्देशन में थी 1944 में और 1946 में फिर रफ़ी साहब ने मुंबई आने का फैसला किया। यहाँ पर संगीतकार नौशाद ने पहले आप नाम की फिल्म में उनको गाने का मौका दिया। दोस्तों नौशाद द्वारा सुरबद्ध गीत तेरा खिलौना टूटा, ये फिल्म थी अनमोल घड़ी जो कि रिलीज हुई थी 1946 में। इस गीत से प्रथम बार हिंदी जगत में रफ़ी साहब को ख्याति मिली। इसके बाद शहीद, मेला तथा दुलारी फिल्मों में भी रफ़ी साहब ने गाना गाया और इन सभी के गाने बहुत प्रसिद्ध हुए। 1951 में नौशाद साहब ने फिल्म बैजू बावरा के लिए संगीत निर्देशन दिया और वो गाने बना रहे थे और उन्होंने सोचा कि वो अपने पसंदीदा गायक तलत महमूद से उसके गाने गवाएंगे। ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि एक बार तलत महमूद को उन्होंने धूम्रपान करते देख लिया, इससे नौशाद साहब का मन बदल गया और उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं रफ़ी साहब को इसमें गाना गाने का मौका दूं। बैजू बावरा के गाने बहुत फेमस हुए ये बात हम सभी जानते हैं और रफ़ी साहब को उन्होंने मुख्य धारा के गायक के रूप में वहाँ पर स्थापित किया। इसके बाद नौशाद साहब ने रफ़ी साहब को अपने निर्देशन में जो गाने हैं उनको गाने का मौका दिया। उसी समय पर दोस्तों शंकर जयकिशन नाम के म्यूज़िक डायरेक्टर्स थे, वो भी काफ़ी ऊंचाइयों की तरफ बढ़ रहे थे। शंकर जयकिशन दोस्तों राज कपूर साहब के बहुत ही फेवरेट म्यूज़िक डायरेक्टर हुआ करते थे और राज कपूर साहब ऐसा सोचते थे कि उनके चरित्र पर जो पीछे प्लेबैक सिंगिंग हमेशा हमेशा मुकेश साहब करें, वो मुकेश को अपना वो मानते थे कि भाई इनकी आवाज़ जो है वो मेरे पर बहुत ज़्यादा सूट करती है। लेकिन जब इनका काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया, शंकर जयकिशन का काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो हर जगह फिर उन्होंने मुकेश साहब के साथ रवि साहब का भी प्रयोग करा, राज कपूर साहब के लिए प्लेबैक भी रफ़ी साहब से कराया और ये आवाज़ जो है राज कपूर साहब को भी बहुत रास आ गई। और यहीं पर सचिन देव बर्मन जो कि म्यूज़िक डायरेक्टर थे फेमस और ओपी नैयर साहब, यहाँ से ये दो म्यूज़िक डायरेक्टर्स भी रफ़ी साहब के साथ जुड़ गए और दिन प्रतिदिन इनकी जो जिसे कहते हैं ख्याति बढ़ती गई एंड देन ही नेवर लुक बैक, आगे बढ़ते चले गए, गाने गाते चले गए और इतने बढ़िया बढ़िया एक्टर्स जो मैंने आपको पहले भी बताया, दिलीप कुमार, भरत भूषण, देवानंद, शमी कपूर, राजेंद्र कुमार, इन सब के लिए इन्होंने ढेर सारे गाने गाए, सभी गाने बहुत ज़्यादा रिलीज़ हुए। और ऐसी एक मूवी आई कश्मीर की कली, हम सब जानते हैं कि इसमें ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील से नीली आँखें, कोई राज है इनमें गहरा, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही प्यारा सा गाना, मैंने तो गुनगुना लिया है। आइए लेते हैं यहाँ पे छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, ब्रेक में सुनते हैं इनके गाए हुए कुछ खूबसूरत से गीत। मैं तो यहीं पर ही हूँ, आपके साथ जुड़ी हुई हूँ, आप भी कहीं मत जाइए। स्टे ट्यून टू रेडियो मानव रचना 107.8 FM, फील गुड फील लाइफ।

मैं हाथ डाल ए गुल चेहरा परी जमाल मुद्दत से दिल उदास दादा दास है तेरे होठों की प्यास है ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का जाजा।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पे। दोस्तों, प्रोग्राम चल रहा है कैफे क्लासिक्स और इसमें आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा प्रोग्राम रफ़ी साहब के नाम। जी हाँ दोस्तों, रफ़ी साहब की ज़िंदगी, अभी तक जितने हमने उनके ज़िंदगी की किताब के पन्ने पलटे तो बहुत ही खूबसूरत रही। छोटे से थे, देखिए उनकी आवाज़ तो थी ही सुंदर, किस तरह से 7 साल की उम्र में फ़कीर के पीछे पीछे भाग भाग के गाए जाते थे। 13 साल की उम्र में ऐसे ही सार्वजनिक स्थान पर गाने को मिल गया तो एक म्यूज़िक डायरेक्टर ने उनको ब्रेक दे दिया और करते करते देखिए वो बॉलीवुड पहुंच गए और फिर दौर चला इनका एक से एक बैक टू बैक सुपरहिट गानों का। आइए सुनाते हैं आपको इनकी व्यक्तिगत जीवन की कुछ बातें। दोस्तों, रफ़ी साहब कहते हैं कि बहुत ही दरिया दिल इंसान थे, दिल के बहुत अच्छे थे, लोगों की मदद करते थे। आपको नहीं लगता कि इनकी आवाज़ में ऐसे झलकता है कि जिसकी आवाज़ इतनी सुंदर होगी उसका दिल और मन कितना सुंदर होगा? जी हाँ दोस्तों, व्यसनों से दूर रहते थे और आज़ादी के समय जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ, इन्होंने भारत में ही रहना पसंद किया। इनकी बेगम का नाम था विल्कीस और इनकी 7 संतानें हुई जिसमें 4 बेटे और 3 बेटियाँ हैं। ये अपने परमार्थों के लिए भी जाना चाहते हैं, परमार्थ इन द सेंस के ये लोगों की बहुत मदद किया करते थे, कोई भी हेल्प कहता था फटाक से कर देते थे। साथ ही कुछ ऐसे म्यूज़िक डायरेक्टर्स थे जो इनको बहुत अच्छे से पे नहीं कर पाते थे, जिनमें एक नाम था शुरुआती जो दौर था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का, जिसमें वो खुद ही थोड़े से उनका हार्ट टाइट रहता था, तो इन्होंने बहुत कम पैसों में भी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के लिए काम किया है। साथ ही रॉयल्टी को लेकर इनका लता मंगेशकर जी से कुछ मन मुटाव हुआ, वो भी देखिए दोस्तों लता जी गलत नहीं थी, लेकिन रफ़ी साहब का कैरेक्टर और उनका जो दरिया दिल इसमें देखने को मिलता है। रफ़ी साहब का कहना था कि एक बार हमने गाना गा दिया, रिकॉर्ड निकल गया तो हमने अपनी फीस ले ली, हमारा काम ख़त्म हो गया। लेकिन लता जी कहती थी कि अगर उस रिकॉर्ड जो जिसने मल्टी मिलियन बिलियंस बना लिए, अगर वो बहुत ज़्यादा हिट हो जाती है तो उसका एक अंश, जिसको हम रॉयल्टी भी कहते हैं, वो जो है वो गायक या गायिका को मिलना चाहिए। तो ये था मत लता जी का और दूसरा मत था रफ़ी साहब का, और इसको लेकर इन दोनों में हो गया मतभेद। दोस्तों, मतभेद इतना बढ़ गया कि दोनों ने आपस में ना गाने का फैसला कर दिया। कई साल बीत गए, इन दोनों का कोई डुएट नहीं आया, लेकिन फिर अभिनेत्री नरगिस जी के कहने पर वापस इन दोनों ने कई साल बाद इकट्ठा गाना शुरू करा, डुएट सॉन्ग निकाला और वो गाना था ज्वेल थीफ का, दिल पुकारे आरे आरे आरे। बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग और ये गाना बहुत ही हिट हुआ। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही हिट हुआ और इनकी खुद की जो ज़िंदगी है वो भी सुपर हिट रही और इनको बहुत सारे अवार्ड से भी नवाजा गया, क्योंकि कॉन्टीन्यूस ही इनका इस तरह से चलता रहा करियर के एक के बाद ये एक हिट देते रहे। और अवार्ड्स की बात करूँगी मैं आपसे इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। आ रही हूँ मैं फटाफट से, आप भी कहीं मत जाइए, सुनते हैं कुछ इनके गाए हुए गाने और मैं यूँ गई और यूँ आई। स्टे ट्यून टू रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मनोरचना 107.8 एफएम पे दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है। आज का हमारा सफर रफी साहब के नाम, और ये सफर जो है अपने अंतिम चरण पर है, क्योंकि घड़ी देवी टिक टिक टिक टिक करते हुए मुझे बता रही है कि मेरा जाने का समय हो रहा है। लेकिन जाते जाते दूंगी आपको कुछ और रफ़ी साहब के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ। दोस्तों, रफ़ी साहब को कई बार फिल्म फेयर अवार्ड मिला, चाहे वो फूल बरसाओं गाना उनका फेमस हुआ या फिर दिल के झरोके से तुझको बिठाकर, इसके लिए भी इनको फिल्म फेयर अवार्ड मिला, बहुत से अवार्ड्स मिले। साथ ही भारत सरकार ने 1965 में इनको पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया। दोस्तों, 31 जुलाई 1980 में हृदय की गति रुक जाने से रफ़ी साहब हमारे बीच से चले गए। रफ़ी साहब आज हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनके गाए हुए गाने, उनका वो प्यारा सा चरित्र, उनका दरिया दिल, इन सब चीज़ों के वजह से वो हमारे दिल में रस्ते बसते हैं। मैं रेडियो मानव रचना के माध्यम से, प्लेटफॉर्म से रफ़ी साहब को हार्दिक श्रद्धांजलि देती हूँ, और आप सभी श्रोतागणों से कहती हूँ कि आइए इनकी आवाज़ से हम हमेशा जुड़े रहें, सदा सदा हम इनको सुनते रहें। तो करती हूँ साइन आउट, और अगले शो में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। फील गुड।

नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं हूं अनिल सेठ और स्वागत है आपका इस रेडियो प्रोग्राम रेट्रो नॉट आउट में, क्योंकि ये बातें पुरानी हैं जो तुमको सुनानी। चलिए प्रोग्राम का आगाज करते हैं 1982 के बहुत चर्चित गीत के साथ, उड़ी बाबा उड़ी बाबा उड़ी बाबा बाबा उड़ी बाबा उड़ी बाबा उड़ी बाबा। सुनते हैं, लौटते हैं, क्योंकि ढेर सारी

वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ और ये फिल्म थी विधाता 1982। कल्याण जी आनंद जी का संगीत था, आशा भोसले जी की बाखमाल आवाज थी। उड़ी बाबा जो है वो एक ट्रेंड सेटिंग डिस्को नंबर बन गया था उस जमाने में। बड़े सारे जो है वो डिस्को संगीत आते थे। भप्पीलहरी जी का जो है वो उस समय जो है वो आगमन हो चुका था और वो पूरे छाए हुए थे, लेकिन ये जो फिल्म थी इसमें संगीत दिया था कल्याण जी आनंद जी ने। उड़ी बाबा बड़ा ही जो है वो पेपी नंबर था। पद्मिनी कोल्हापुरी जी के ऊपर फिल्माया गया था। इसमें सारिका भी दिखाई दी थी, संजय दत्त भी दिखाई दिए थे, अमरीश पुरी भी थे। डिस्को सॉन्ग था, इसे आपने सुना, इसका आनंद लिया, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। और हम जो बात कर रहे थे, जहां हम आपको छोड़ गए थे पिछली बार, यानी कि शोले का जो है वो क्या हो रहा था, उसकी बात जो हम कर रहे थे। और एक आर्टिकल आपने लोगों ने कहा कि भाई हिंदी में बोले थे जैक्सन मैं इंडिया आ रहा हूं, इसे आपने छुआ ही नहीं। और शकीरा निराशा के बाद भी अगले दिन का इंतजार, यही असली आजादी है, इसके बारे में भी आपने कुछ नहीं बताया। अब जो गीतकार जावेद अख्तर ने माँ को प्रेम और ममता और त्याग को समर्पित एक विशेष जो है वो लेख जो है वो प्रस्तुत किया था कि बच्चे का पहला यकीन है माँ, इसके भी आपने कोई अंश नहीं सुनाए। तो ऐसा करते हैं, इस प्रोग्राम में जो है वो हम लेते हैं दो जो है वो, या एक ही लेते हैं, उसको पूरा करेंगे। बच्चे का पहला यकीन है माँ, ये लेख जो है वो हम लेते हैं। शोले की थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन ज़्यादा जो बातें करेंगे वो आपसे करेंगे। यानी कि आपसे बात करते करते मुझे याद आ रहा था कि भाई क्यों ना हम वापस चलें। आप लोगों ने लिखा था भाई दस्तक 1970 मजरू सुल्तानपुरी, मदन मोहन का संगीत था, इसमें से एक और गीत लीजिए। तो भाई इसमें बड़ा एक दिलकश गीत था जो भैया ना धरो ओ बाल माँ, इसे सुनते हैं। लता मंगेशकर जी की आवाज़ थी, और इसे सुनते हैं और लौटते हैं, उसके बाद जो है वो ढेर सारी बातें करेंगे।

वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। हमें मानव रचना रेडियो 107.8 FM, फील गुड फील लाइव। हमारा नंबर है 8010781078। आप हमें सुनते रहिए, आप जो तरह तरह की बातें करते हैं और जो हमें जो सुझाव देते हैं उससे हम अपने प्रोग्राम को और इम्प्रूव करते हैं। आपने कहा कि भाई कुछ भाई एक प्रोग्राम में शोले को पॉज देके एक किसी जो है वो विशेष लेख की बात करें, तो हम जो है वो बात करेंगे। भाई बच्चे का पहला यकीन है माँ, वो अपने अंदर जीती है, साथ चलती है। तो ये जो है साफिया अख्तर के बेटे जावेद अख्तर, इन्होंने लिखा, अगर हम जिंदगी में माँ के मायने के बारे में सोचें तो लगता है कि रिश्ते में उससे बढ़कर कुछ है ही नहीं। इसलिए कि बच्चा जब पैदा होता है एक अरसे तक उसे ये नहीं मालूम होता कि मैं और माँ दो अलग अलग जो है वो शरीर हैं। इसलिए छोटा बच्चा जब सो नहीं रहा हो या रो रहा हो तो उसे जोर से थपकती हैं तो वो सो जाता है, या उसे झूले की तरह जोर जोर से हिलाती हैं तब वो सो जाता है। जबकि आप किसी बड़े आदमी को हाथ से जोर जोर से थपकेंगे तो वो जाग जाएगा। बच्चा क्यों सो जाता है? क्योंकि उसे लगता है कि अभी मैं माँ की कोख में ही हूँ और माँ के दिल की धड़कन की आवाज़ आ रही है। उसे इत्मीनान हो जाता है और उसे नींद आ जाती है। और हमें क्या हो रहा है? हमें हो रहा है भाई एक बड़े ही दिलकश गीत का आभास। ये फिल्म थी कालीचरण, ये पल चंचल खोना देना, बड़ा ही सिजलिंग नंबर है, 1976, कल्याण जारन जी का संगीत था, आशा भोसले और किशोर कुमार की बाकमाल आवाज, कालीचरण। और कालीचरण एक ट्रेंड सेटर फिल्म थी, इसके बारे में तो हम करेंगे कभी और बात। 1976 में बड़ी सारी ऐसी फिल्में आई थी। इस गीत को सुनते हैं और लौटते हैं।

वेलकम बैक दोस्तों, आप मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। देखिए ना, लेक की बात हो रही थी, हम लोग जो है वो बातें किए जा रहे थे, तो बीच में लोगों ने कहा कुछ और भी एक लेक से ही संबंधित बता दें। तो भाई हमने आपको पहले बोला था शकीरा का एक मुफ्त कॉन्सर्ट के लिए अनुमानित 20 लाख प्रशंसकों की उन्होंने जो एक भीड़ जुटाई थी। इंस्पायरिंग नोट था, निराशा के बाद भी अगले दिन का इंतजार, यही असली आज़ादी है। जिंदगी से बड़ा कोई टीचर नहीं हो सकता, जिंदगी मेरे लिए सबसे बड़ी टीचर रही है। उसने मुझे सिखाया कि खराब मौसम हमेशा नहीं रहता। आज भी मुझे लगता है कि मेरी शुरुआत अभी हुई है। मैं अंदर वही जुनून रखती हूँ, वही आग है जो पहले दिन थी, शायद उससे भी ज़्यादा। तो शकीरा कहती हैं कि कई मुश्किल पल आए पर हार नहीं मानी, क्योंकि मुझे समझ आ गया था कि ज़िंदगी का मतलब सिर्फ जीतना नहीं, सीखना भी है। अब बिल्कुल सही बात है कि उन्होंने कहा, जब मैं आज स्टेज पर खड़ी होकर हज़ारों लोगों के चेहरे टटोलती हूँ, तो किसी की आंखों में खुशी पाती हूँ और किसी को मेरे साथ गाता देखती हूँ, अब मुझे एहसास होता है कि मेरी ज़िंदगी का असली मतलब क्या है। करीब 30 साल हो गए मुझे संगीत की दुनिया में, आज भी लोग मेरे गानों से खुद को जोड़ते हैं, ये मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। पहले मैं सिर्फ गाना गाती थी, शो करती थी, अब मैं आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन अब समझ आया कि मैं सिर्फ गाने नहीं गा रही, मैं लोगों के दिलों से भी जुड़ रही हूँ, यही मेरी असली पहचान है। और हमारी जो पहचान है उसके हिसाब से हमें जो है वो अब मुझे लगता है गीत तो लेना पड़ेगा। कुर्बानी 1980, अमित कुमार, कंचन, कल्याण जी, आनंद जी, इंदिवर, जीनत अमान, अमजद खान, फिरोज खान पे फिल्माया गया था लैला मैं लैला। इसे सुनते हैं, लौटते हैं, क्योंकि ढेर सारी बात

वेलकम बैक दोस्तों, आप मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। देखिए ना, आप लोगों ने कहा कि भाई वो बच्चे का पहला यकीन है माँ, उस लेख के बारे में तो बताइए। तो भाई आगे कहते हैं जावेद अख्तर साहब कि बच्चे का माँ जैसा रिश्ता दुनिया में न दूसरे किसी में है और न होगा। इसके अलावा जब उसे मालूम होता है कि दुनिया में कोई भी तहजीब कल्चर, वो चाहे अफ्रीका के जंगलों की ट्राइबल हो या अमेरिका के मैनहट्टन के स्काई स्क्रैपर में रहने वाली कोई औरत हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में हो या बिहार के किसी गांव में, हर माँ अपने बच्चे से एक खेल खेलती है, ता या झां का खेल। अब ये क्या है, अब माँ अपना चेहरा छुपा लेती है और बच्चा जरा सा घबराता है तो वो वापस आ जाती है और फिर चेहरा छुपा लेती है। आपने ये भी देखा होगा, माँ प्रोग्राम्ड है या खेल खेलने के लिए, प्रकृति ने उनके नेचर में डाला है ये खेल। इस तरह से वो बच्चे को यकीन दिलाती है कि मैं और तुम अलग हैं, लेकिन घबराओ मत, तुम मेरे बिना भी आराम से रह सकते हो। चलो अब बहुत घबरा रहे हो तो मैं वापस आ जाती हूँ। माँ बच्चे को अपने बगैर रहने के लिए ट्रेन कर रही होती है। और अब हम क्या कर रहे हैं, हम ले रहे हैं अगला गीत। अगला गीत था फिल्म थी सुहाग 1979, मोहम्मद रफी, शैलेंद्र सिंह, आशा भोसले, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आनंद बख्शी, अमिताभ बच्चन, शशि कपूर और परवीन बाबी पे फिल्माया गया। ए यार सुन यारी तेरी, इसे सुनते हैं, लौटते हैं क्योंकि ढेर सारी बातें करनी है।

वेलकम बैक दोस्तों, आप मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। लोगों ने कहा सारी चीजें छोड़ दीजिए, ये वाला बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा गीत था वो आपने सुनाया, अब इसके साथ ही जो है वो और कनेक्ट सुनाते रहिए। तो हम कोशिश करेंगे, सुनाते रहेंगे जनाब। लेकिन हाँ, ये आर्टिकल भी आप कह रहे हैं कि भाई इसका जो है वो एक समरी लेवल पे, तो बताइए क्या कहना चाहते हैं, यानी कि आप सुनना चाहते हैं एक मैनेजमेंट लेवल जो है वो एक संक्षिप्त सा भाई समरी कि भाई ये लेख क्या है। तो ये है कि माँ अकेला रिश्ता है जो बच्चों को बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल देती है, जो कि नेचर के उसूल के खिलाफ है। नेचर का उसूल ये है कि सबसे पहले अपनी जान बचाओ, लेकिन ऐसा नहीं है। तो बच्चे का पहला यकीन है माँ, वह आपके अंदर जीती है और साथ चलती है। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा जो है वो और अगर हम बताएं, तो बच्चा पूरी दुनिया को माँ की आँख से ही देखता है। जो माँ के साथ हो रहा है उसे लगता है कि मेरे साथ हो रहा है। उसकी उम्र कितनी भी हो, अगर माँ के साथ कोई जुल्म है, नाइंसाफी है, कोई जबर है, तो उसे लगता है कि मेरे साथ हो रहा है और मैं बड़ा होकर ठीक करूँगा। मेरी माँ के साथ ऐसा कैसे ये सलूक हो सकता है? अगर वो लड़का है तो कई साल बाद बाप को एडमायर करना शुरू कर देता है, लेकिन उसका जो पहला जो लव है, वो पहली मोहब्बत है, वो कभी नहीं जाती, वो है माँ। इससे बढ़कर तो उसके लिए कोई है ही नहीं। और ज़्यादातर जानवरों में भी आप देखेंगे कि बाप का रोल तो बहुत छोटा सा होता है, वरना पूरी ट्रेनिंग, परवरिश, पैदाइश और ज़िंदा रहने की जद्दोजहद माँ की होती है। और हमारी जो जद्दोजहद है, उसमें याद आ रहा है मुझे एक फिल्म थी, द बर्निंग ट्रेन 1980, मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले, राहुल देव बर्मन, साहिर लुधियानवी, जितेंद्र, नीतू सिंह, आशा सचदेव। आशा सचदेव के बारे में भी हम एक प्रोग्राम करेंगे, किसी अगले प्रोग्राम में हम इसकी बात करेंगे। बहरहाल ये गीत लेते हैं, पल दो पल का साथ हमारा, इसे सुनते हैं और लौट।

वेलकम बैक दोस्तों, आप मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। भाई आपने कहा कि भाई वो शकीरा वाला जो लेख है उसके बारे में तो बात कीजिए, नहीं तो आपका प्रोग्राम हो जाएगा खत्म। हाँ जी बिल्कुल, तो जब मैं आज स्टेज पर खड़ी होकर हजारों लोगों के चेहरे टटोलती हूँ तो उन्होंने कहा था जो किसी की आंख में खुशी पाती हूँ तो किसी के साथ जो है अपने आप को जो है किसी को गाता हुआ देखती हूँ। अब मेरी जिंदगी हमेशा चमकदार नहीं थी, यानी कि मैंने भी तकलीफ देखी है, धोखा देखा है, दुख, निराशा और टूटने वाले पल देखे हैं। ऐसे पल जब लगता था कि सब खत्म हो गया। एक समय था जब मैं हमेशा कहती थी मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। शायद मैं थोड़ी बिगड़ी हुई थी, लेकिन ज़िंदगी ने मुझे सिखाया कि हर बार आपको वो नहीं मिलेगा जो आप चाहते हैं। कई बार ज़िंदगी आपको वो देती है जिसकी आपको सच में ज़रूरत होती है। आज मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो महसूस होता है कि मेरे पास पहले से कितना कुछ है। मेरे बच्चों का प्यार, फैंस का प्यार, हर रात स्टेज पर जाकर वो काम करना जिसे मैं दिल से प्यार करती हूँ, आखिर इससे बड़ी दौलत क्या है। मैंने सीखा कि खुशी सिर्फ बाहरी चीज़ों से नहीं आती, खुशी तो एक फैसला है। दर्द होने के बावजूद मुस्कुराना, निराशा के बाद भी अगले दिन का इंतजार करना, यही असली आज़ादी है। और मुझे याद आ रहा है कि एक गीत था, फिल्म थी चंबल की कसम 1980, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, खय्याम, साहिर लुधियानवी, मौसमी चटर्जी और राजकुमार पे फिल्माया गया। ये बड़ा ही बेहतरीन और बड़ा ही दिलों को छू लेने वाला जो है वो ये गीत था। मुझे इसका पोस्टर भी याद है चंबल की कसम का। पुरानी दिल्ली में जब मैं था, कई बार जब मैं जाता था वहाँ पर, तो मुझे ये शायद मोती सिनेमा हॉल के या गोलचा के ऊपर लगा हुआ, ये थिएटर के ऊपर लगा हुआ ये पोस्टर याद है, जिसमें बड़ी सारी बंदूकें बनी होती थी। बीच में बड़ा ही शोर मचाता हुआ राजकुमार जी का चेहरा था और बड़ी सारी जो है वो स्फोटक सी जो है वो आकृतियाँ बनी हुई थी। ये जो फिल्म थी, लेकिन गीत बड़ा ही मधुर था। सिमटी हुई ये घड़ियाँ, बड़ा ही फ्लैट गा रहा हूँ। आप इस गीत को सुनिए और रूहानी अंदाज में वापस लौटिए।

वेलकम बैक दोस्तों, आप मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। देखिए ना, बड़ा ही दिलकश गीत था, लेकिन अब जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। लेकिन हाँ, आप लोगों ने कहा कि भाई ये इंस्पायरिंग नोट जो था शकीरा का, इसे तो आप पूरा बताइए। तो बिल्कुल इसे हम कंप्लीट करेंगे, फिर घड़ी की तरफ देखेंगे। अभी घड़ी की तरफ नहीं देखते, नजरें जो हैं वो नीचे कर लेते हैं कि मैं कोलंबिया के जो है वो एक शहर में से आई एक साधारण सी लड़की थी। उस समय लैटिन म्यूजिक दुनिया में लोकप्रिय नहीं था, स्पेनिश गानों का अंतर्राष्ट्रीय मंच नहीं था, मेरे पास कोई बड़े संपर्क नहीं थे, सोशल मीडिया नहीं था, कोई शॉर्टकट नहीं था, मेरे पिता का बिजनेस खत्म हो चुका था, हमारे पास बहुत पैसे नहीं थे, लेकिन मेरे माता पिता ने मेरी पढ़ाई पर कभी समझौता नहीं किया। यही मेरी सबसे बड़ी ताकत बनी। अपने सपनों तक पहुंचने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। आज जब मैं अपने शो में 100 मीटर लंबी स्क्रीन देखती हूं, बड़े बड़े विजुअल्स, आतिशबाजी, स्टेज लिफ्ट्स, 13 कॉस्ट्यूम चेंज, तो मुझे लगता है कि 18 साल की वो लड़की जिसने कभी बड़े सपने देखे थे, आज उन सपनों के बीच खड़ी है। जितना बड़ा सपना होता है उतनी बड़ी चुनौतियां आती हैं। कई मुश्किल पल आए, फिर भी हार नहीं मानी, क्योंकि मुझे समझ आ गया था कि जिंदगी का मतलब सिर्फ जीतना नहीं, सीखना भी है। कुछ घाव कभी पूरी तरह नहीं भरते, दर्द के साथ भी खुश रहा जा सकता है। मैं भी यही कर रही हूँ। अगर जिंदगी आपको तोड़ने की कोशिश करे, तब भी आप अपने सपनों का हाथ मत छोड़िए। अगर आप लोग जो है इस पर शक करेंगे, तब आप अपने आप पर भरोसा कब करेंगे? अगर दर्द मिले तब भी मुस्कुराएं, क्योंकि असली ताकत गिरने में नहीं, गिरकर फिर खड़े होने में है। और जो है, अब मैं देख रहा हूं घड़ी की तरफ और घड़ी कह रही है कि भाई अब आपका जो है जाने का समय हो गया है, पर अगले हफ्ते हाजिर होंगे एक और संस्करण के साथ। अब तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, मैं आपको छोड़े जा रहा हूं। सुहाग 1979, आशा भोसले, मोहम्मद रफ़ी, शैलेंद्र सिंह, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आनंद बख्शी के बोल, अमिताभ बच्चन, रेखा, परवीन बाबी, शशि कपूर पर फिल्माया गया बड़ा ही रोचक गीत था तेरी रब ने बना दी जोड़ी। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। अब अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक नए संस्करण के साथ। आपका होस्ट और दोस्त अब विदा चाहता है। धन्यवाद।

0: Hi, I'm Digmanshu Dhulia. You're listening to Radio Manav Rachna 107.8 FM. Feel good, feel live.
1: Aaja tujhe bhi main kara doon taman chepe disco.
2: वेल हेलो नमस्कार सत श्री अकाल राम राम जय माता दी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आरजी सागर, आया हूं लेकर के शो सत्यमेव जयते, जय हिंद जय भारत। शो हमारा एक बहुत स्पेशल इनिशिएटिव है, जस्ट टू अवेयर यू, जस्ट टू मेक श्योर कि आपको आपके राइट्स के बारे में पता है, जस्ट टू मेक श्योर कि लीगल फ्रेमवर्क जो बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है, बहुत हैक्टिक लगता है, समटाइम्स बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि नहीं बाबा लीगल प्रोसीजर में नहीं फंसना है, उसको सिंप्लीफाई करके आप लोगों को हम बताते हैं। हर बार हम किसी एक लॉ की या किसी एक एक्ट की या किसी एक राइट की आपके बात कर रहे होते हैं, एंड वी टॉक अबाउट सो मेनी थिंग्स। हमारे साथ यहाँ पर हर बार एक एक्सपर्ट मौजूद होते हैं। आज के हमारे यहाँ पर एक्सपर्ट हैं मिस चैताली वधवा। चैताली मैम इज असिस्टेंट प्रोफेसर विद स्कूल ऑफ लॉ एट मानव रचना यूनिवर्सिटी। हमारे इन हाउस यहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जाता है, बच्चों को तमाम शिक्षाएं दी जाती हैं, वो इल्म दिया जाता है जिससे वो आगे चल के देश की सेवा करते हैं। सो आज हम जो बात करने वाले हैं वो थोड़ा सा ऐसा टॉपिक है जिसको समझा नहीं गया है, बहुत ज़्यादा लोगों को पता नहीं है उनके राइट्स के बारे में, फीमेल्स को खास तौर पे नहीं पता है, और अगर पता है तो एक तरीके से टैबू एक हमने बना रखा है कि बात ही नहीं करना चाहिए उसके ऊपर, कि उसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज़ क्या हैं, कानून क्या बोलता है, वो बाद की बात है, हम बात ही नहीं करेंगे। ये एक टॉपिक है, वी आर टॉकिंग अबाउट रिप्रोडक्टिव राइट्स। बिल्कुल सही सुना आपने, ये कानून में भी एक शब्द है जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट्स वेलकम मिस चैताली। हाय मैम, वेलकम टू आवर शो।
3: थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर अगेन सर।
2: इट्स ऑलवेज एन ऑनर टू हैव यू, एंड मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, एंड आई होप हमारे लिसनर्स को भी काफी कुछ यहाँ से सीखने को मिलता है। पहला क्वेश्चन मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा कि व्हेन वी टॉक अबाउट रिप्रोडक्टिव राइट्स, तो मैं एग्जैक्टली किस डोमेन की बात कर रहा हूँ, किस डोमेन को हम लोग टच कर रहे हैं इसमें?
3: तो इसमें वी आर कवरिंग कि एक वुमन के पास ये राइट है, ये ऑटोनॉमी है कि वो अपनी बॉडी के साथ क्या चॉइसेस लेना चाहती है, जिसमें हम बात करते हैं वुमेन्स कंसेंट की। तो रिप्रोडक्टिव राइट से थोड़ा सा पहले आता है कॉन्सेप्ट जो IPC या BNS में है, रेप का, कि वुमेन की अगर ना है तो ना में ना ही है, ना में हाँ नहीं है, वुमेन की ऑटोनॉमी के बारे में। रिप्रोडक्टिव राइट्स उसी चीज़ को थोड़ा और आगे डील करते हैं, जहां हम कहते हैं कि अगर एक वुमन प्रेग्नेंट हैं तो उनके और उनके चाइल्ड के साथ क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि वो उनकी बॉडी है, वो डिसीजन उनका होना चाहिए, तो वो उनकी ऑटोनॉमी है। इसमें बात आ जाती है मिसकैरेज की, अबॉर्शंस की, मेडिकल टर्मिनेशन की, बट इन सब में मेन कंसेंट जो है वो एक प्रेग्नेंट वुमन का है, तो इन राइट्स को हम रिप्रोडक्टिव राइट्स कहते हैं।
2: ऑलराइट, व्हाट आर द कोर लीगल पिलर्स अंडर रिप्रोडक्टिव राइट्स?
3: तो कंसेंट ऑफ वुमेन एंड रिप्रोडक्टिव राइट्स 3 पिलर्स पर रेस्ट करते हैं। पहली है ऑटोनॉमी, कि ये आपकी बॉडी है तो आपका डिसीजन है, आपका कंसेंट रिक्वायर्ड है इससे पहले कि कोई भी डिसीजन लिया जा सके। फॉर एग्जांपल, अगर लेट्स से कोई वुमन प्रेग्नेंट है और किसी ने उनको कोई एक दवाई दे दी या कुछ कुछ एडमिनिस्टर कर दिया जिनकी वजह से उनकी फीटस की डेथ हो गई, तो वो उनके कंसेंट के बिना किया गया था, मतलब उनकी ऑटोनॉमी नहीं थी। दूसरा प्रिंसिपल है आपका इक्वालिटी का, कि आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, और ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इक्वालिटी का, ये हमारे संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा गया है कि इक्वालिटी जो है वो सिर्फ मतलब सिटीजन्स की नहीं है, दैट एक्सटेंड्स टू ऑल पीपल। कॉन्स्टिट्यूशन में ही फर्दर आर्टिकल 15 है जो कहता है कि कुछ स्पेशल प्रोविजंस, कुछ स्पेशल लॉज बनाए जा सकते हैं एक्सक्लूसिवली फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो क्योंकि हमने MTP एक्ट बनाया है वो एक्सक्लूसिवली वुमेन की प्रोटेक्शन के लिए है, तो वो इस पिलर के अंडर ही आ जाता है, दी राइट टू इक्वालिटी। थर्ड है आपका प्रिवेसी, जो केसेस के थ्रू भी इवॉल्व हुआ है, जो इस लॉ में भी लिखा गया है कि अगर कोई वुमन चूज करती हैं टू गो अहेड विथ टर्मिनेशन या अबॉर्शन, तो उनका कंसेंट जो है वो प्राइवेट रहेगा, मतलब आप उनकी फैमिली को, बाकी सोसाइटी मेंबर्स को उनका नाम नहीं डिस्क्लोज करेंगे। लेट्स से कोई माइनर है, कोई मतलब लड़की थी, अभी वो 18 साल से छोटी हैं, तो डॉक्टर का, क्लिनिक का ये एक लायबिलिटी बनती है कि आप गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करें, लेकिन अगेन आप उनका नाम नहीं इन्फॉर्म करेंगे, उनकी डिटेल्स, हेल्थ के बारे में, ब्लड प्रेशर, कोई भी चीज़ आप इन्फॉर्म नहीं करेंगे, बिकॉज हर कंसेंट, हर इन्फॉर्मेशन रिमेन्स प्राइवेट। और प्रिवेसी का जो कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ रिप्रोडक्टिव राइट्स नहीं, ये मेडिकल कम्युनिटी में बहुत मतलब कॉमन है, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करा या प्रिवेसी मेंटेन करना, डॉक्टर और पेशेंट के बीच की बात है, वो किसी तीसरे इंसान को आप नहीं बता सकते।
2: ऑलराइट, यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा, व्हाट इज एमटीपी, आपने एक टर्म यूज करी
3: जी, तो एमटीपी का फुल फॉर्म है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट. मेडिकल टर्मिनेशन हम इसको इसलिए कह रहे हैं बिकॉज दिस इज लीगली अलाउड. लोगों को ये लगता है या ये एक मिसकंसेप्शन है जिसकी वजह से हम आज बात कर रहे हैं कि अबॉर्शन कराना इज एन ऑफेंस. ऐसा नहीं है, अबॉर्शन करवाना इज लीगली परमिटेड प्रोवाइडेड आप एमटीपी एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली प्रोसीड करते हैं. उसमें गाइडलाइंस दी गई हैं किस मतलब किस वीक तक करवा सकते हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, बट इट इज लीगली परमिटेड. एमटीपी एक्ट थोड़ा सा अलग हो जाता है आपके बाकी के क्रिमिनल लॉज से क्योंकि इसमें विमेन की कंसेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. वो खुद से सामने उठ के जाती हैं एक क्लिनिक में या एक डॉक्टर के पास फॉर मेडिकल ओपिनियन. अगर आप विमेन की कंसेंट के बिना उनको कोई भी ऐसी दवाई दे दें या कुछ भी ऐसा एडमिनिस्टर कर दें जिसकी वजह से द फीटस डाइज, तो फिर वो एमटीपी में नहीं कवर होगा, फिर वो एक क्रिमिनल ऑफेंस हो जाएगा अबाउट कॉजिंग मिसकैरेज.
2: सो अमेजिंग. ऑलराइट, अभी तक हमने जो बात करी है यहाँ पर एग्जैक्टली बेसिक टर्म्स को समझने की कोशिश करी है. एग्जैक्टली रिप्रोडक्टिव राइट्स हम किसको टारगेट कर रहे हैं, क्या हम यहाँ पर बोल रहे हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस वी टॉक्ड अबाउट एमटीपी, वी टॉक्ड अबाउट थ्री पिलर्स विच आर ऑटोनमी, इक्वालिटी, प्राइवेसी. ऑन दिस नोट लेंगे म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद अपने शो में आगे बात करेंगे. फर्दर कुछ क्वेश्चन हैं जो यहाँ पर हम लोग डीकोड कर रहे होंगे. जस्ट स्टे ट्यून्ड विद अस, फील गुड, फील लाइफ.

0: वेलकम बैक, मैं अर्जित सागर। शो यहाँ पर चल रहा है सत्यमेव जयते, एंड हमारे साथ मिस चैताली। रिप्रोडक्टिव राइट्स हम बात कर रहे हैं, डीकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी के लिए एक टैबू है आज भी, जिसमें कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि शायद मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ उस तरफ किसी एक इंसान को ऐसा लग रहा होगा क्यों बात कर रहे हैं इस टॉपिक के ऊपर, ठीक है। बट द रियलिटी इज, द फैक्ट इज कि कानून हमें जब खुल के बात बोलता है, कानून और संविधान हमें अधिकार देता है, तो पता होना चाहिए। दैट इज द फर्स्ट थिंग। इसमें चैताली मैम, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा कि अबॉर्शन एक्चुअली लीगल है इंडिया में, या फिर कुछ पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं, कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस होते हैं जहाँ पर लीगल इसको किया जाता है?
1: तो अबॉर्शन लीगल है, बट अबॉर्शन के लिए इफ अ वुमन डिसाइड्स टू प्रोसीड, तो कुछ सर्कमस्टेंसेस हैं जो MTP एक्ट में ही लिखे गए हैं। तो जब भी एक वुमन की कंसेप्शन होती है, तो अलग अलग वीक्स के हिसाब से उनकी प्रेगनेंसी को मॉनिटर किया जाता है। तभी कहते हैं 37 से 40 वीक्स। आपकी वीक के हिसाब से डिसाइड होता है कि आपको किस तरह से अबॉर्शन की परमिशन मिलेगी, जो एक मेडिकल प्रैक्टिशनर ही दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, पहले क्या होता था जब ये लॉ आया था कि अप टू 12 वीक्स तक इफ यू आर प्रेग्नेंट, तो आप एक प्रैक्टिशनर से परमिशन लेके उनके अप्रूवल के साथ यू कैन गेट द अबॉर्शन कंडक्टेड। 2021 में ये लॉ रिवाइज हुआ था, नाउ दैट इज 20 वीक्स। तो अप टू 20 वीक्स अगर एक वुमन अबॉर्शन करवाना चाहती हैं, वन सिंगल मेडिकल प्रैक्टिशनर्स ओपिनियन इज सफिशिएंट। आफ्टर 20 वीक्स, जब हम कहते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 5th month शुरू हो गया है एक वुमन का, बिकॉज फीटस की डिवेलपमेंट और एडवांस्ड हो गई है, और इस स्टेज पे आपके पास ये सारे अल्ट्रासाउंड एंड अदर मेडिकल टेक्नोलॉजीज हैं कि आप और डिटेल से फीटस को देख सकते हो। 20 से 24 वीक्स में अगर कोई एबनॉर्मैलिटीज निकलती हैं, कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हैं, या आपकी स्कैन्स में कुछ एक कंसर्न आता है, तो द डॉक्टर विल अगेन रेकमेंड कि अगर आपको MTP के साथ आगे प्रोसीड करना चाहिए या नहीं। अब इसमें क्योंकि ये एक एडवांस स्टेज है, सो बिटवीन 20 to 24 वीक्स आपको कम से कम दो प्रैक्टिशनर्स का ओपिनियन चाहिए। यूजुअली प्रोसेस क्या होता है हॉस्पिटल्स में कि आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट या अपने डॉक्टर के पास जाएंगे, वही सजेस्ट करती हैं कि दूसरा प्रैक्टिशनर कौन है, उनका ओपिनियन लेके आइए, आपस में डिस्कशन होता है, देन दी सेकेंड प्रैक्टिशनर जो यूजुअली एक फीटल मेडिसिन एक्सपर्ट होते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं, एंड देन दे अग्री टू दी अबॉर्शन। आफ्टर 24 वीक्स, क्योंकि हम एक और एडवांस स्टेज पे चले गए हैं, विच इज इन द रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस, जहाँ पे सिवियर एबनॉर्मैलिटीज हैं या वुमन की हेल्थ को भी एक खतरा हो सकता है, मे बी हर लाइफ इज एट डेंजर इफ शी कंटिन्यूज विद द प्रेगनेंसी, तो ऐसे सिचुएशंस में स्टेट मेडिकल बोर्ड का ओपिनियन चाहिए होता है। तो ये वाले गाइडलाइंस MTP एक्ट में ही लिखे हैं। उसके अलावा अगेन इट डिपेंड्स ऑन कि आप किस स्टेज पे हैं। तो अगर आप बहुत इनिशियल स्टेजेस पे हैं ऑफ द प्रेगनेंसी, लेट्स से मे बी 3 weeks 4 weeks, तो ज़रूरी नहीं है कि सर्जरी के थ्रू होगा, बट ऑफ कोर्स अगर आप 20 वीक्स क्रॉस कर चुके हैं तो सर्जरी के थ्रू या डिलीवरी के थ्रू, जैसा भी प्रोसेस होता है। व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट हियर इज़ कि हमेशा मेडिकल प्रैक्टिशनर डॉक्टर का ओपिनियन चाहिए। आप खुद से जाके केमिस्ट को कह दें कि भैया आप दवाई दे दो मैं ले लूँगा, तो वो भी लायबल होंगे ऑफेंस के लिए और आप भी लायबल होंगे। यू रिक्वायर द अप्रूवल ऑफ अ डॉक्टर।
0: ओके, दो तीन क्वेश्चन मेरे यहाँ पे उठते हैं। पहला तो ये कि अगर मैं ये बात समझूँ, यहाँ पर विद इन 20 वीक्स आप कह रहे हो कि एक किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर की हमें जरूरत होगी, एंड दैट्स मोर देन इनफ। ओके, क्या कोई भी फीमेल करा सकती है जाके?
1: हाँ जी, देर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, आपका एज क्या है। अगेन, पहले जब ये लॉ आया था तो इट वॉज ओनली अलाउड फॉर मैरिड वुमेन, बट मतलब हमें पता है इंडिया की हालात कैसे हैं, यहाँ पे चिल्ड्रन पे भी रेप होते हैं, यहाँ पे अनमैरिड वुमेन पे भी सेक्सुअल ऑफेंसेस हो सकते हैं। सो 2021 में जब अमेंडमेंट आया, अब ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि एक मैरिड वुमन ही अबॉर्शन करवा सकती है, इवन एन अनमैरिड वुमन कैन गो। एंड 20 वीक्स से पहले आपको सिर्फ डॉक्टर का अप्रूवल चाहिए, तो ये रीजनिंग नहीं होनी चाहिए कि क्यों करवाना चाहते हैं। इट कैन बी फॉर योर हेल्थ, फॉर द चाइल्ड्स हेल्थ, बिकॉज आपको चाइल्ड नहीं चाहिए, वॉट एवर रीजन, बट आपका मैरिटल स्टेटस या आपकी एज का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। रिस्ट्रिक्शन एज में यहाँ तब आता है, अगर मैं बात करूँ गर्ल्स लेस देन 18, तब लायबिलिटी बनती है, लायबिलिटी नहीं मतलब एक ऑब्लिगेशन है क्लिनिक की एंड डॉक्टर की टू कीप एन ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ दिस, क्योंकि उनको आगे स्टेट गवर्नमेंट को बताना है कि मे बी उनके ऊपर कोई रेप केस था या जो भी रीजंस के वजह से प्रेगनेंसी हुई है एंड हमने अबॉर्शन के साथ प्रोसीड करा है। स्टिल उस इंडिविजुअल माइनर लड़की की कॉन्फिडेंशियलिटी और प्राइवेसी मेंटेन रहेगी। तो आप उनका नाम नहीं डिस्क्लोज करोगे, बट ये जरूर बताएंगे कि ऐसे एक माइनर हमारे पास आई थी।
0: ओके, सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, आपने एक बात बोली कि केमिस्ट शॉप पे जाके दवाई नहीं ले सकते हैं,
1: राइट,
0: बट द रियलिटी इज एग्जैक्टली अपोजिट। ठीक है, मतलब मैं फ्रेंकली आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बात बता रहा हूँ, आई हैव सीन सो मेनी पीपल कमिंग टू द केमिस्ट शॉप एंड जस्ट बाइंग दोस पिल्स, इज इट लीगल?
1: सो पिल्स आर ऑल्सो ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज, कुछ होती हैं आम के जिसको हम इन लेमैन टर्म्स कहते हैं मॉर्निंग आफ्टर पिल, विच इज इमीडिएटली आफ्टर, लाइक मे बी वन डे और टू डे आफ्टर द एक्ट्स हैव टेकन प्लेस, योर सेक्सुअल इंटरकोर्स हैज टेकन प्लेस। प्रेगनेंसी जो नापी जाती है दैट इज बेसिस ऑन द डेट्स ऑफ कंसेप्शन, तो अगर आप 3 हफ्ते बाद या 4 हफ्ते बाद जाके ऐसे पिल्स मांग रहे हैं एंड दिस डज कम टू द नोटिस ऑफ एनी स्क्रूटिनी अथॉरिटी, पुलिस ऑफिसर्स होंगे, गवर्नमेंट अथॉरिटी होगी, तो लायबिलिटी आ सकती है। अगर आप जैसे आप रियलिटी की बात कर ही रहे हैं, ऐसे तो हमारे बहुत सारे क्लिनिक्स भी होते हैं जो अंडर द टेबल प्रोसीजर्स करवा के सब चीज़ें रिजॉल्व कर देते हैं, बट उनकी लायबिलिटी आएगी, दैट इज़ अ क्रिमिनल ऑफेंस अगर आपने एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के अप्रूवल के बिना कोई भी ऐसे एक्ट्स के साथ प्रोसीड किया है।
0: ऑलराइट, नाउ लास्ट क्वेश्चन टू दिस पार्ट इज, लेट्स से कोई फीमेल है, मैरिड फीमेल है, ओके, शी गॉट प्रेग्नेंट, अब उसका पति बोल रहा है, उसके इन-लॉज बोल रहे हैं कि हमें बच्चा नहीं चाहिए और जबरदस्ती जाके अबॉर्शन करा देते हैं, इस केस में क्या होगा?
1: अगेन वुमन का कंसेंट इज इम्पॉर्टेंट, तो अगर मैं इसी सिचुएशन को रिवर्स करूं कि अगर वुमन कहती है कि उनको नहीं चाहिए एक चाइल्ड बट द फादर या द इन-लॉज रिफ्यूज टू गिव द परमिशन, तो दैट बिकम्स इररेलेवेंट, क्योंकि अकेले वुमन की ही कंसेंट जो है वो नेसेसरी है, आपको अपने हस्बैंड की या अपने इन-लॉज की कंसेंट नहीं चाहिए। जो आप सिचुएशन बता रहे हैं वो MTP एक्ट में नहीं आता, वो आता है हमारे BNS में, भारतीय न्याय संहिता में। अगर आप वुमन के कंसेंट के बिना उनको लेके जाते हैं और उनका अबॉर्शन करवा देते हैं, तो उस ऑफेंस को हम कहते हैं कॉजिंग मिसकैरेज, क्योंकि आपने उस वुमन की कंसेंट नहीं ली थी और वो चार्जेबल होता है एज अ क्रिमिनल ऑफेंस अंडर द BNS।
0: ऑलराइट, तो उसको एज अ क्राइम देखा जाएगा,
1: उसको एज अ क्राइम देखा जाएगा।
0: ओके ओके ओके, एंड वहां पर फर्दर जो भी होगा, आई गेस मर्डर चार्ज वहां पर लगता है?
1: नहीं सर, मिसकैरेज का अपना एक अलग ऑफेंस है, तो इट इज नॉट कंसिडर्ड मर्डर। मर्डर तब कंसिडर किया जाता है द पर्सन इज ऑलरेडी, मतलब लाइक देर नॉट अ फीटस, इट इज अ ह्यूमन बीइंग हु हैज बीन बॉर्न, हु इज अलाइव। जब तक वो फीटस हैं तब तक उनको मिसकैरेज माना जाएगा। अगेन उसमें भी कुछ वीक्स हैं, अर्ली स्टेजेस पे करवाया तो मिसकैरेज है, अगर एडवांस स्टेजेस पे करवाया तो मिसकैरेज क्विक विथ चाइल्ड है, क्योंकि उनकी जेस्टेशनल एज अकॉर्डिंगली बढ़ गई है, बट वो सारा क्रिमिनल ऑफेंस में आएगा क्योंकि वुमेन की कंसेंट नहीं थी।
0: ऑलराइट ऑलराइट, वक्त एक और म्यूजिकल ब्रेक का, उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक जितनी हमने बात करी आपको समझ आ रही है। मैं बस ये रिक्वेस्ट आप लोगों से करूँगा, कृपया करके इस बात को सुनिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, आपके लिए राइट्स हैं, खासतौर पर अगर आप एक महिला हैं, आप एक फीमेल हैं, तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, रेलिवेंट है, ज़रूरी नहीं है कि आपकी लाइफ में एप्लीकेबल हो, आपके आसपास कोई हो सकती हैं, आपकी मे बी मेड हो सकती हैं, या किसी ऐसी फीमेल को आप जानते हो जिनको नहीं पता हो, उनको ये बात बताइएगा ज़रूर कि कानून आपकी हेल्प करने के लिए तैयार है, देर आर सो मैनी प्रोविजन फॉर यू, इट्स जस्ट इम्पॉर्टेंट टू मेक देम अवेयर। फिलहाल वक्त एक और म्यूजिकल ब्रेक का, स्टे ट्यून्ड विद अस, फील गुड, फील

0: वेलकम बैक, मैं हूँ आरजे सागर। शो चल रहे हैं यहाँ पर सत्यमेव जयते और रेडियो मार्गदर्शन 107.8 एफएम पर। हमें शो लेकर के आते हैं जहाँ पर कोशिश होती है कि आपको एक जिम्मेदार जागरूक नागरिक को बनाए, साथ साथ आपके अधिकारों से आपको हम रूबरू कराएं। अब अपने शो को हम आगे लेकर के चलेंगे। यहाँ पर एग्जैक्टली मैं ये बात करना चाहूंगा, अगर एक अनमैरिड फीमेल जाती है, क्या उसके पास सेम राइट्स हैं एग्जैक्टली, या उसको कुछ स्पेशल परमिशन चाहिए?
1: तो अगेन ये 2021 के अमेंडमेंट से इंट्रोड्यूस हुआ था कि इवन अनमैरिड वुमेन आर अलाउड कि वो मेडिकल टर्मिनेशन करवा सकती हैं, प्राइमरीली बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि टर्मिनेशन के लिए आपको किसी का अप्रूवल चाहिए हो। तो मैरिड वुमन और अनमैरिड वुमन को यहाँ पे हम सेम स्टेटस देते हैं। इवन इफ अ मैरिड वुमन गोज तो उनको अपने हस्बैंड की या फैमिली की अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं है, दे ओनली रिक्वायर डॉक्टर्स ओपिनियन। सेम थिंग अनमैरिड वुमेन के लिए है एंड 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने इसी को थ्रू अ केस, जिसका मुझे नाम इस टाइम नहीं ध्यान, बट एज अ केस फिर से ये वाली बात बोली थी कि आप मैरिटल स्टेटस के बेसिस पे वुमेन के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। यही बात लिंक होती है जहां हमने शुरुआत करी थी कि इक्वालिटी होनी चाहिए। तो वेदर यू आर मैरिड और अनमैरिड, एज लॉन्ग एज यू आर एन अडल्ट, आपका अपना कंसेंट सफिशिएंट है और किसी कंसेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। कंसेंट की रिक्वायरमेंट आती है अगर आप बात करते हैं माइनर्स की। सो इफ देयर इज अ गर्ल जो 18 साल से छोटी हैं, उनको कंसेंट चाहिए होगी अपनी पेरेंट्स की या अपने गार्डियंस की, बिकॉज लॉ ये मानता है कि जो भी 18 साल से छोटा है अभी उनकी वो परहैप्स मेंटल डेवलपमेंट नहीं है कि वो ऐसे डिसीजंस अपने लिए खुद ले पाए। तो जितने भी राइट्स होते हैं वो हमेशा 18 के बाद ही मिलते हैं, जैसे राइट टू वोट हो गया, राइट टू ड्राइव हो गया। सिमिलरली यहाँ पे भी माइनर को हमेशा पेरेंट या गार्डियन की कंसेंट चाहिए, बट अनमैरिड वुमन हु इज एन अडल्ट किसी का अप्रूवल नहीं चाहिए।
0: ओके, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। लेट्स से देयर इज अ गर्ल, शी इज 19, शी इज मैरिड, सॉरी शी इज अनमैरिड, अब उसको अबॉर्शन कराना है, उसके पास पैसे नहीं जाने के, क्या सरकार की तरफ से कुछ ऐसा प्रोसीजर है? गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले कुछ ऐसे होते हैं हमारे पास?
1: गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं जो प्रोबोनो केसेस लेते हैं, समटाइम्स प्राइवेट डॉक्टर्स आल्सो टेक अ प्रोबोनो केसेस। वही बात है कि मेडिकल प्रैक्टिशनर की रिक्वायरमेंट हो, तो ये भी हो सकता है अगर डॉक्टर का ओपिनियन ये है दैट अबॉर्शन ना करवाने से या टर्मिनेशन ना करवाने से चाइल्ड की हेल्थ पे या वुमन की हेल्थ पे सिवियर डैमेज हो सकता है या कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्लिनिक्स समटाइम्स अलाउ फॉर दैट प्रोसीजर विथ देयर ओन फंड्स। तो ऑफकोर्स ये है कि अगर आप प्राइवेट अस्पताल जाएंगे तो आपका खर्चा बहुत होगा, बट गवर्नमेंट अप्रूव्ड अगर आप हॉस्पिटल्स पे जाते हैं या स्टेट क्लिनिक्स में अगर आप जाते हैं जिनके पास रजिस्ट्रेशन हो इन चीज़ों के लिए, तो वो ये केसेस खुद भी टेकअप कर सकते हैं, स्पेशली इन स्मॉलर विलेजेस या इन स्मॉलर रिमोट एरियाज जहां प्राइवेट हॉस्पिटल्स की इतनी अवेलेबिलिटी ना हो।
0: ओके, बट ये तो वो बात होगी कि अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो रहा है हेल्थ को, लेट्स से कि उसको नहीं चाहिए बच्चा इस केस में,
1: स्टिल इट इज अलाउड एज लॉन्ग एज शी इज एन अडल्ट, शी इज अलाउड टू टेक हर ओन डिसीजन। वही जैसे मैं कह रही हूँ कि रीजन आपको देने की जरूरत नहीं है। अगर आप 20 वीक से पहले किसी भी स्टेज पे करवा रहे हैं, योर मेडिकल प्रैक्टिशनर, योर डॉक्टर शुड बी कन्विंस्ड कि ये जो प्रोसीजर है ये सफिशिएंट है या ये रिक्वायर्ड है। इट इज ओनली 20 वीक्स के बाद, क्योंकि आपकी बॉडी में काफी कॉम्प्लेक्स चेंजेस आ गए हैं या जेस्टेशनल एज बढ़ गई है, कि आपको एक से ज्यादा डॉक्टर्स का ओपिनियन चाहिए। एक और चीज़, क्योंकि आपने मैरिटल स्टेटस की बात करी थी, 2021 में एक और जो इंट्रोडक्शन हुआ था वो ये था कि लेट्स से कोई 20 से 24 वीक्स के बीच में उस टाइम पीरियड में है एंड उनका मैरिटल स्टेटस चेंज हो जाता है, मतलब शी बिकम्स अ डाइवोर्सी या शी बिकम्स अ विडो, उस केस में भी उनको स्पेशल परमिशन मिल सकती है बिटवीन द वीक्स ऑफ 20 to 24। तो ज़रूरी नहीं है कि फीटल एबनॉर्मैलिटीज ही हों, बिकॉज उनके मैरिटल स्टेटस में ये एक स्पेशल सर्कमस्टेंस अराइज हुआ है, देयरफॉर दे कैन बी परमिटेड अगर दो डॉक्टर्स का ये ओपिनियन है तो।
0: ओके, लेट्स से एक लड़की की शादी हुई है, चाइल्ड मैरिज हुई है, ठीक है, अभी वो माइनर है, शी 16, शादी हो गई, प्रेगनेंट हो गई, ठीक है, अब उसको जब अबॉर्ट कराना है तो क्या उसके पेरेंट्स का कंसेंट लगेगा, हस्बैंड का लगेगा?
1: ओके, तो सर इसमें ना बहुत सारे लॉज इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो मैं एक एक करके बताती हूँ। पहली बात तो चाइल्ड मैरिज करवाना अपने आप में एक पनिशेबल ऑफेंस है। दूसरी चीज, जिस लड़की की चाइल्ड मैरिज हुई है, जैसे ही वो मेजोरिटी अटेन करती है वो उस मैरिज को नल एंड वॉइड करवा सकती है, मतलब कि ये माना जाएगा कि कभी उनकी शादी हुई ही नहीं थी। तीसरी चीज, माइनर्स के ऊपर मैरिटल रेप इज कंसिडर्ड एन ऑफेंस, तो मेजर्स पे मैरिटल रेप ऑफेंस नहीं माना गया है इंडिया में, बट माइनर पे अगर कोई हस्बैंड मैरिटल रेप करता है इट इज कंसिडर्ड एन ऑफेंस। चौथी चीज, जब भी किसी की शादी होती है किसी वुमन की, तो अब उनके लॉफुल गार्डियन उनके पेरेंट्स नहीं होते, उनके हस्बैंड होते हैं. तो इस केस में अगर उनको कंसेंट चाहिए, उनको अपने गार्डियन का चाहिए, विच विल बी द हस्बैंड, नॉट द पेरेंट्स.
0: ओके, ठीक है, परफेक्ट. बट अगर हस्बैंड मना करते हैं और लड़की चाहती है
1: जी,
0: तो क्या होगा?
1: देन दे कैन अप्रोच द स्टेट अथॉरिटीज. यहाँ पे आपकी इन्वॉल्वमेंट आती है नेशनल हेल्पलाइंस की, जहाँ पे आप जा सकते हैं विमेन सेल के पास. आप कॉल कर सकते हैं पुलिस को, आप कॉल कर सकते हैं विमेन हेल्पलाइन पे, और यू कैन गो टू एनी लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, जैसे आपका डालसा है या नालसा है, बिकॉज दे विल हैव दोस लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स जो फर्दर आपका केस आगे लेके जा सके. तो डायरेक्ट रूट नहीं है, थोड़ा सा इनडायरेक्ट रूट है, लेकिन लीगल रूट फिर भी अवेलेबल है. अनफॉर्चुनेटली क्योंकि ये चीज़ पता नहीं होती, इसलिए लोग वो शेडी क्लिनिक्स में चले जाते हैं जो बैकडोर प्रोसीजर्स करवाते हैं.
0: अगर कोई आपकी प्रिवेसी, जो हमने शो की ओपनिंग में ही बात करी थी कि आपकी प्रिवेसी इंपॉर्टेंट है, व्हाट इफ इट ब्रीचेस?
1: तो जिस डॉक्टर ने या जिस क्लिनिक ने आपकी प्रिवेसी को ब्रीच करा है, दे हैव टू पे अ पेनल्टी, एंड दे आर ऑल्सो एलिजिबल कि उनको इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है. तो उनकी पनिशमेंट्स वहाँ पे प्रोवाइडेड है.
0: ऑलराइट. अगर कोई डॉक्टर अपना काम ढंग से ना करे, मान के चलो ये सारे पैरामीटर्स पे खड़े उतरते हैं, लड़की चाहती है, शी इज 21-22 और वो नहीं चाहती बच्चा, लेकिन डॉक्टर उनको मना करता है और जानबूझ के एक्स्ट्रा पेपर वर्क के चक्कर में डालता है, क्या किया जाएगा?
1: अगेन दो ऑप्शंस हैं, आइदर आप उस डॉक्टर को कम्प्लीटली छोड़ के किसी और डॉक्टर के पास जाइए, सिंपलर वे, या मोर कॉम्प्लिकेटेड वे, आप उस डॉक्टर के अगेंस्ट कंप्लेंट करिए. तो फिर आप जा सकते हैं नेशनल हेल्पलाइन के थ्रू, आप जा सकते हैं स्टेट अथॉरिटीज में, आप जा सकते हैं कोर्ट के पास, एंड आप उस डॉक्टर के अगेंस्ट यू कैन रेज अ कंप्लेंट. यूजुअली विमेन ये वाला प्रोसेस नहीं फॉलो करना चाहेंगी, बिकॉज वो आपकी एक मेंटल टोल भी ले लेता है. सो द ईजिएस्ट वे इज कि इतने सारे रजिस्टर्ड गायनोकोलॉजिस्ट हैं, अच्छे क्लिनिक्स के हैं, इट इज बेटर टू जस्ट गो टू अ डिफरेंट मेडिकल प्रैक्टिशनर और उनका अप्रूवल लेके, उनका ओपिनियन लेके आप फिर अपना टर्मिनेशन करवाइए.
0: ऑलराइट, आई एम डन विद माय क्वेश्चंस. कोई भी चीज जो मैं ना पूछ पाया और अब कहना चाहते हो?
1: मुझे एक इसमें ऐड करना है. सो एक बार पहले ही सत्यमेव जयते भी वी हैड कवर्ड मैटर्निटी बेनिफिट्स. तो मेडिकल टर्मिनेशन को उसमें भी एक अलग से प्रोविजन दिया गया है. यूजुअली वुमेन जो मैटर्निटी लीव पे जाती हैं, वो 26 हफ्ते यानी 26 वीक्स की लीव होती है. उसी लॉ में रिकॉग्नाइज्ड है कि अगर आप मेडिकल लीव मेडिकल टर्मिनेशन करवाते हैं, यानी कि लीगली अबॉर्शन करवाते हैं, तो भी आपको 6 वीक्स की लीव मिलनी चाहिए. सो दिस इज एन एड ऑन प्रोविजन. अगर आप एज अ वुमन ये अवेल कर रहे हैं ऑप्शन एमटीपी के अंडर, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको 6 वीक्स ऑफ पेड लीव दें, बिकॉज लॉ ये चीज कहता है.
0: ऑलराइट. दैट्स इट फॉर टुडे शो. उम्मीद कर रहा हूँ आज का शो आपको अच्छा लगा होगा. वी टॉक्ड अबाउट समथिंग जो बहुत बड़ा टैबू है अभी भी, एंड मुझे उम्मीद है कि बहुत जितना सिंपल वर्ड्स में हो सकता है उतने सिंपल वर्ड्स में हमें टॉपिक आपको समझा पाए होंगे. सो उम्मीद है कि आपको मजा आया होगा. अगर कोई फीडबैक है हमारे लिए या मिस चैताली के लिए कोई क्वेश्चन आपके पास है, सो 8010781078 इस नंबर पर आप ड्रॉप कर सकते हैं. आई मेक श्योर कि मैं उस क्वेश्चन का आंसर लूँ और एड्रेस कर पाऊँ आपकी क्वेरी को. और नाउ ऑन दिस नोट चलते हैं अपने शो के यहाँ पर कंक्लूड करेंगे. थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग हियर. मींस अ लॉट.
1: थैंक यू सो मच अगेन सर.
0: ऑलराइट दोस्तों, नाउ दिस इज आरजे सागर साइनिंग ऑफ.

0: अरे अरे, अरे भैया, आप ये कूड़ा सड़क पे क्यों फेंक रहे हैं?
1: अरे मैडम जी, ये सड़क आपके पिताजी की है के?
0: जी हाँ, ये सड़क मेरी है, शहर मेरा है, शहर की सारी गलियाँ मेरी है, इनको साफ करने वाले लोग भी मेरे हैं। सो इन शॉर्ट, ये देश मेरा है और इसकी सफाई की जिम्मेदारी भी मेरी है। तो अब आप इस कूड़े को उठाओ और इसकी सही जगह पे पहुँचाओ, यानी कि कूड़ेदान में।
2: आइए बेहतर काम करें, कूड़ेदान का इस्तेमाल करें।
3: हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी, यानी वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण का खूबसूरत सा कार्यक्रम। और इस खूबसूरत से कार्यक्रम को हर हफ्ते मैं आपके लिए लेकर आती हूं एक सशक्त महिला के साथ। उस सशक्त महिला की कहानी आपको सुनवाते हैं, उनके सशक्तिकरण के इस पूरी जर्नी से न सिर्फ आपको ढेर सारी मोटिवेशन मिलती है, लेकिन साथ के साथ ढेर सारा इंस्पिरेशन भी मिलता है और आप एनकरेज होकर अपनी जिंदगी की बहुत सारी चीजों को बदल पाते हैं। सो महिला सशक्तिकरण हम सभी के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, ये तो आप सभी जानते हैं, लेकिन इस सशक्तिकरण की जर्नी पर आज मेरे साथ कौन होने वाली है, चलिए आपको बता देती हूँ। आज हम बैठे हैं डॉक्टर प्रिया शर्मा के साथ, जो कि प्रिंसिपल हैं रेयान इंटरनेशनल स्कूल फरीदाबाद, और आपका स्वागत करना चाहूंगी मैम रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के स्टूडियो में।
4: धन्यवाद भावना, इट इज अ प्लेजर टू बी हियर।
3: प्रिया जी, अगर मैं पहला सवाल आपसे पूछूं महिला सशक्तिकरण और उसकी डेफिनेशन, मेरा ये मानना है कि महिला सशक्तिकरण हर महिला के लिए बिल्कुल अलग है। शायद किसी के लिए ढेर सारा पैसा, किसी के लिए फ्रीडम, किसी के लिए घर से निकलने की आजादी, तो किसी के लिए एक बहुत बड़ी डेजिग्नेशन, किसी के लिए अपने गोल्स तक अचीव करना, तो शायद किसी के लिए सिर्फ एक कप कॉफी या चाय जाकर किसी रेस्टोरेंट में तसल्ली से पीना और अपने लिए मी टाइम निकाल पाना। सशक्तिकरण के मायने सबके लिए अलग है। आपसे अगर मैं जानना चाहूँ तो आप क्या डिफाइन करेंगी, आपको क्या लगता है क्या है महिला सशक्तिकरण?
4: भावना जी, ये बड़ा अच्छा प्रश्न आपने पूछा और ये आपने जो दायरे बताए हैं बहुत ही रेलेवेंट है। आई वुड से दैट हर पर्सन का अपना ओन डेफिनेशन होता है, और मैं कहती हूँ अगर आप जो आपकी इच्छा है आप वो कर सकते हो, दैट इज़ कॉल्ड वुमन एम्पावरमेंट, दैट इज़ अ डेफिनेशन। आपको बिल्कुल बेहिचक जो आपके मन में इच्छा है आप कर सकते हैं, और आपको अगर सारे समाज सपोर्ट कर रहा है, आपकी फैमिली सपोर्ट कर रही है, दिस इज़ कॉल्ड वुमन एम्पावरमेंट। अपनी इच्छाओं को उड़ान देना, आई वुड से दैट इज़ वुमन एम्पावरमेंट।
3: सो एक्चुअली सही मायने में देखिए बहुत कम लोग हैं जो सशक्त जीवन जी पा रहे हैं। आज भी महिलाएं कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हैं, आज भी महिलाओं के साथ बहुत सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन परेशानी ये है कि हम सशक्तिकरण के बारे में बातें तो बहुत करते हैं लेकिन इसे प्रैक्टिस नहीं किया जा रहा है। हम अपने घर की चार दीवारी में ही देख लीजिए तो कई बार हमें ये महसूस होता है कि यही सशक्तिकरण नहीं है, यही जो छोटे छोटे डिसीशंस हैं उसके लिए एक लंबा इंतज़ार की ज़रूरत होती है। कई बार शायद वो इंतज़ार इतना लंबा इसलिए होता है क्योंकि हाव भाव नहीं बदल पाते हैं। कई बार घर के जो बुजुर्ग होते हैं उनका सम्मान करते हुए आप कुछ कह नहीं पाते हैं, और हमेशा ऐसा लगता है भाई एक परिवार है, एकजुट रहे, कहीं मन मुटाव ना हो, इसलिए सशक्तिकरण की बात मत उठाइए। बट कहीं ना कहीं महिलाओं को अपने हकों की या अपनी आज़ादी के लिए आवाज़ उठाना ज़रूरी हो जाता है। बट हाँ, चलिए अब हम जिंदगी बदल रहे हैं, जमाने बदल रहे हैं और साथ के साथ समय को बदल रहे हैं। एक प्यारा सा गाना, छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, लेकिन ये इंटरेस्टिंग सी कॉन्वर्सेशन जारी रहने वाली है, कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिएगा अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन के साथ, यानी रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। फील गुड, फील लव।

0: अरे एक मिनट ले लो।
1: Welcome back friends, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूँ आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी वेमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण की आज खूबसूरत सी कड़ी और उतनी ही प्यारी सी। डॉक्टर पिया शर्मा हमारे साथ बैठी हैं। डॉक्टर पिया प्रिंसिपल हैं रियान इंटरनेशनल स्कूल फरीदाबाद। अपने कीमती समय में से समय निकालकर आज हमारे पास स्टूडियो में आई हैं। डॉक्टर पिया, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी महिलाओं के साथ आने वाले चैलेंजेस के बारे में। महिलाएं हैं तो चैलेंजेस तो होंगे ही। कई बार मेटर्निटी लीव चैलेंज बन जाती है, तो कई बार शादी का ब्रेक चैलेंज बन जाता है। कई बार आप खुद देखिए कि अपने डिसीजन खुद ना ले पाना

0: या फिर इतनी हिम्मत ही ना कर पाना कि जिंदगी में मैं आगे बढ़कर क्या करना चाहती हूँ। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो बिजनेसेस करना चाहती थी, कभी बोल ही नहीं पाई, शायद इतनी हिम्मत नहीं हुई कि परिवार वालों को बता सके, और कई बार शायद वो सही मौका नहीं मिला। सो महिलाओं के साथ एक चैलेंज है कि वो युग दर युग बहुत सारी चीजों को क्रॉस करती हुई आ रही हैं, लेकिन आज यहाँ पहुंचने पर अगर मैं इस समय की बात करूं, तो बहुत सारी चीजें हैं जहां मैं कहती हूँ महिलाएं प्रिविलेज्ड हैं, उन्हें वो चीजें मिल पा रही हैं, बट बहुत सारी चीजों में आज भी चैलेंज है। क्या लगता है, क्या है वो चीजें?
1: भावना जी, जैसे आपने मेंशन करा चैलेंजेस हैं, और हम देख रहे हैं कुछ वुमन, कुछ हमारी लेडीज आगे बढ़ गई हैं, बहुत आगे बढ़ रही हैं, और वो सारे मतलब सोसाइटी के सारे दर्जे से आ रही हैं, वेदर इट्स यू नो कहीं से भी, सारी जगह से आ रही हैं, विलेज से आ रही हैं, सिटी से देख रहे हैं। आप हिस्ट्री में चले जाइए, जोधा अकबर के टाइम में आपने देखा जोधा, व्हाट डू यू थिंक इज द एसेंस दैट वो एक लेडी को एक शक्ति देता है कि वो उठ के अपने इन्फॉर्म डिसीजंस लेके आगे बढ़ सके? एजुकेशन।
0: यस,
1: आई थिंक एजुकेशन इज द बिगेस्ट टूल, इट कैन ट्रांसफॉर्म यू, इट कैन ट्रांसफॉर्म योर थिंकिंग। वो आपको एक ऐसी शिक्षा देता है कि आप कैसे अपना जो आपकी इच्छाएं हैं उसको कैसे आप प्राप्त कर सकें, आप कैसे आगे बढ़ सकें, उसके साथ कैसे कन्विंस कर सकें, सबको सबका आदर सम्मान रख के कैसे आगे बढ़ें। और देखिए, जब आपके पास एजुकेशन होती है, आप सोच समझ के डिसीजन लेंगे, आप सही डिसीजन लेंगे
0: जी।
1: और आपको कैसे सबको मनाना है अपनी डिसीजन के साथ, वो भी आपको तरीके आ जाएंगे
0: जी।
1: तो आई फील एजुकेटेड लेडी, एक एजुकेटेड लेडी है वो कभी भी ये नहीं कहेगी मैं सप्रेस्ड हूँ, क्योंकि वो अपना रास्ता ढूंढेगी,
0: एक्चुअली
1: ढूंढेगी। अगर इच्छा है वो अपनी इच्छा को उड़ान जरूर देगी, और यही हम अपने स्कूल्स में सिखाते हैं कि अपनी इच्छाओं को उड़ान दीजिए। देखिए, आप एजुकेशन, यहाँ पे अगेन मैं बार बार बोलूँगी, अगर आप ठीक हैं, आपकी डिसीशंस ठीक हैं, आपको सब कुछ कन्विंस, आप सबको कन्विंस कर सकते हैं, कोई भी आपको मना नहीं करेगा। हैं लोग जो आपको नीचे पुल करेंगे, पर आपको जो एजुकेशन दी है, जो विजडम मिला है, नॉलेज दी है, आपको आना चाहिए कैसे उन लोगों को भी टैकल करने को।
0: Yes.
1: एक जो गुलाब का फूल होता है उसमें तांटे जरूर होते हैं जरूर,
0: Yes.
1: है ना, पर अब हमारे पर होता है कि हम कैसे उस गुलाब के फूल को ले बिना चोट लगे अपने हाथों में,
0: विद
1: अ प्रिक इन आवर हैंड। सो आई वुड से दिस इज व्हाट एजुकेशन डज टू अ वुमन और टू एनी वन। आई डोंट बिलीव मच इन वुमन एम्पावरमेंट, आई फील वुमन आर ऑल एम्पावर्ड टूडे एंड एवरीबडी has a right, men, women, all of us have a right, and ye hum pe hai, hum ladies pe hai, you know how we take it forward and move forward with that.
0: So bhai dekhiye, agar challenges ki main baat karu to waqai Dr. Pia ne kaha कि अगर आपके पास ढेर सारे चैलेंजेस हैं जो हर सदी हर युग में महिलाओं के साथ रहे हैं, तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही इलाज है, वो है शिक्षा। और वाकई देखिए, शिक्षा एक बहुत बड़ा टूल है, अगर आप देखें तो इस टूल से बहुत कुछ पाया जा सकता है। बात करेंगे इनकी जर्नी की, लेकिन उससे पहले एक प्यारा सा गाना, और आप कहीं मत जाना, जुड़े रहिएगा अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन के साथ। फील गुड, फील लाइट।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूँ आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी वेमेन एम्पावरमेंट। डॉक्टर प्रिया शर्मा से आज बात हो रही है और चलिए अब इनकी ही जर्नी की बात करेंगे। डॉक्टर प्रिया शर्मा जो कि प्रिंसिपल हैं रियान इंटरनेशनल स्कूल सेक्टर 21 फरीदाबाद। और भाई एक बड़ी अच्छी चीज़ ये है कि अगर आप एक एजुकेशनिस्ट हैं, आप प्रिंसिपल हैं, तो आपके पास सबसे बड़ी शक्ति है कि आप बहुत सारे लोगों को एम्पावर कर सकते हैं एजुकेशन से। आपकी जर्नी के बारे में बात करूंगी डॉक्टर प्रिया। क्या जिंदगी में कोई ऐसा डिसीजन लिया जिसको लेने के बाद लगा यस ये एक बड़ा एम्पावरिंग सा डिसीजन है, आई डू नॉट रिग्रेट, अच्छा हुआ मैंने ये डिसीजन लिया। और ख़ास तौर पर मैं हमेशा एजुकेशनिस्ट के लिए ये सोचती हूँ और ये मानती हूँ कि उनके पास एक बहुत बड़ा टूल है जहाँ पर कि वो बहुत सारे और महिलाओं को, बच्चियों को सशक्त बना पा रहे हैं एजुकेशन से। सो आपके पास तो बहुत सारे पेरेंट्स आते होंगे, बच्चियाँ आती होंगी, आप तो उनका भविष्य बना रही हैं, कैसे?
1: भावना जी देखिए, मैं एक सर्विस बैकग्राउंड से हूँ, मेरे फादर एक सर्विस ऑफिसर थे, तो हमारी जो अपब्रिंगिंग रही है ना वो जेंडर इक्वालिटी पे रही है हमेशा, तो हमें ये पता नहीं था कि जेंडर इनइक्वालिटी एग्जिस्ट भी करती है कहीं भी। और हमें हमेशा बोला गया था, चाहे मेरा भाई है मैं हूँ, कि आप अपनी काबिलियत पे ही, आपको जो आपकी काबिलियत है आपको उतना ही मिलेगा और उतना ही हम सपोर्ट करेंगे
0: जी।
1: ठीक है, तो आपने अपना वर्थ प्रूव करना है और हम हैं आपकी एजुकेशन को फर्दर फंड करने के लिए, मास्टर्स पीएचडी सब कराने के लिए। सो दैट इज व्हाट द टाइप ऑफ एजुकेशन वी वर गिवन। अब हम अपनी लड़कियों को भी, बच्चों को भी स्कूल में यही गर्ल्स को सिखाते हैं। हमारा बहुत ब्यूटीफुल एक प्ले भी हुआ था, इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल एक होता है जिसमें वे बैक अराउंड 8 साल पहले हम लोग ने दौड़ शुरू कर लिया था, 8-10 साल पहले, व्हाई गर्ल्स कैन नॉट प्ले क्रिकेट एंड वाई बॉयज कैन नॉट कुक, वाई, कहाँ लिखा है, कैसी कौन सी किताब में लिखा है। तो हमें ना, हमें बच्चों का ये सोच बदलना था कि भाई ऐसा नहीं होता, और इन बच्चों के माध्यम से पेरेंट्स का ये सोच बदलना था। और वहाँ से ही हमने एक छोटा सा एक नींव शुरू करी, एक यू नो ये एक अपना मूवमेंट शुरू करा रैन में, जिससे हमने ये चीज़ को बहुत क्लियरली अपनी सोसाइटी में डाला, अपनी कम्युनिटी में डाला और स्प्रेड कराया। सो वेन आई टॉक ऑफ दैट, हम डेफिनेटली गर्ल्स को सपोर्ट करते हैं एंड बॉयज़ को भी सपोर्ट करते हैं। देखो, देर इज जेंडर इक्वालिटी, वी बिलीव इन जेंडर इक्वालिटी, बॉय गर्ल सब समान। देखो, बोर्ड का पेपर होता है, कोई नहीं देखता गर्ल है या बॉय है, मार्किंग होती है, बिल्कुल इज नो जेंडर बायसेस। सो दिस इज वॉट वी वॉन्ट टू टीच ऑल्सो। एंड वेन वी टॉक ऑफ आर टीचर्स ऑल्सो, वी हैव एम्पावर्ड आर टीचर्स। टीचर्स समटाइम्स आर सप्रेस, टू मच ऑफ वर्क हो, घर पर प्रेशर होता है, आगे बढ़ने की काबिलियत होती है उस टीचर पर, तो हम उसे यू नो गाइड करते हैं कि आप कैसे अपनी फैमिली लाइफ को भी अच्छा रख सकते हैं और अपने अपने फैमिली वालों को भी समझा सकते हैं आप कैसे आगे बढ़ोगे। और देखिए, आज इतनी प्रिंसिपल्स हैं जो मेरे अंडर निकली हैं, डिफरेंट स्कूल्स में बैठी हैं, एंड आई थिंक इट्स जस्ट दैट इट द चाहत है अंदर, पर कहीं ना कहीं उन्हें एक सहारा चाहिए, और एक लेडी ही, लेडी वुमन ही एक दूसरी वुमन का सपोर्ट बन सकती है और आगे उसे बढ़वा सकती है। तो आई फील दैट इज द बेस्ट वे, वुमन वुमन शुड हेल्प ईच अदर, वी शुड बी फ्रेंड्स विद ईच अदर एंड मेंटर्स टू ईच अदर, गाइड्स टू ईच अदर एंड जस्ट मूव फॉरवर्ड। और देखिए कहाँ आज, मतलब ऑफकोर्स आई थिंक सारी जगह वी कैन हियर वुमन एम्पावरमेंट हैपनिंग एंड वी वर्ड वुमन मून में, मार्स में, सब जगह पहुँच चुकी है। तो बताइए, देयर इज नो लुकिंग बैक।
0: भाई डॉक्टर प्रिया शर्मा ने ना बड़ी अच्छी बात कही है, इट्स अ मिथ दैट वुमेन आर ईच अदर्स मॉर्टल एनिमीज। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं भी महिलाएं एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा नहीं करती हैं, कोई कंपटीशन नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन ना ये समाज कंपेयर करने लग जाता है। एक बहू खाना बनाती है तो आई डोंट नो व्हाई ये कहा जाता है तुम सास जैसा खाना नहीं बना पा रही हो। भाई दो डिफरेंट शख्सियतें हैं, बिल्कुल अलग अलग काम करेंगी, सो शायद वो किसी और काम में बहुत अच्छी होंगी और जो सास हैं वो किसी और काम में अच्छी होंगी। सो ये जो कंपैरिजन है ना, ये हमारी सोसाइटी क्रिएट करती है, और ज़रूरी हमें ये है कि इस कंपैरिजन को धीरे धीरे ख़त्म करते हुए हर इंडिविजुअल की जो बेसिक क्वालिटी है या कहना चाहिए उसका जो टैलेंट है उसके बारे में ज़रूर बात होनी चाहिए, तभी जाकर कहीं ना कहीं सशक्तिकरण और मजबूत होता जाएगा। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ, वक्त एक और छोटे से प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक का। फील गुड, फील लाइव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी वेमेन एम्पावरमेंट। वेमेन एम्पावरमेंट यानी महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण के इस खूबसूरत से कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं हमारी गेस्ट डॉक्टर पिया शर्मा से, जो कि प्रिंसिपल हैं रियान इंटरनेशनल स्कूल। और पिया जी, अब आपसे जानना चाहती हूँ, एजुकेशन कितना अहम है किसी भी महिला या लड़की के लिए एजुकेटेड होना, और अगर मैं बात करूँ उनके भविष्य की, सो एजुकेशन उन्हें किस प्रकार का ऐसा टूल देता है जिससे वो अपने भविष्य को शेप कर सकें, अपने भविष्य को बना सकें।
1: भावना जी, जैसे कि हमने बोला कि एजुकेशन आपको नॉलेज देता है, आपको इन्फॉर्म डिसीजंस का देता है कि कैसे आप अच्छे डिसीजंस ले सकें। इन्फॉर्म डिसीजन मीन्स गुड डिसीजंस, राइट डिसीजंस टू बी मेड एंड मेक्स यू कॉन्फिडेंट। अभी आप में अगर ये सब काबिलियतें आ गई तो आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट तो हो ही जाओगे
0: जी।
1: आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए तो आपके लीडरशिप स्किल्स भी आएंगे, आप अपना वॉइस रेस करोगे अगेंस्ट एनी डिस्क्रिमिनेशन और एनीथिंग रॉन्ग दैट इज हैपनिंग टू यू, एंड मोर एवर आपकी बेटर हेल्थ एंड वेलबींग रहेगी। तो इससे बढ़िया कोई एक महिला जो बिल्कुल मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली फिट है, I think she's empowered and she can change the world. So this is what I feel education does to a woman there, out there. And of course, when a woman is empowered and so fit, uski family beautiful hoegi.
0: Yes.
1: Family beautiful hoegi, to uski society beautiful hoegi, aur hamara nation grow karega. So this, according to me, I would say that you educate a woman, you educate generations to come. And you know, she's a source of your values. She makes you learn, people learn values. Society becomes full of values. You have a beautiful, compassionate, community coming up. तो देखिए, दुनिया कितनी सुंदर हो जाएगी अगर हर लेडी empowered होगी, और यही हमें मैसेज हर घर में पहुँचाना है, empower your lady.
0: हर घर की महिला को अगर सम्मान मिलने लग जाए, उन्हें उनका ड्यू रिस्पेक्ट, जो मैं हमेशा कहती हूँ। सो आप देखिए, घर में बहुत सारे काम है जो एक महिला करती है, और कई बार अगर आप कंपेयर करें ना, सो पूरे दिन में पुरुष शायद थोड़े से कम काम कर रहे होंगे, महिलाएं ज़्यादा कर रही हैं। और इनफैक्ट इन टाइम्स ऑफ टुडे मैं ये ज़रूर कहूँगी कि कंपैरिजन नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो महिलाएँ ऑफिस भी जाती हैं, घर भी आती हैं, बच्चों का भी रखरखाव करती हैं, पूरे परिवार का भी ख्याल रखती हैं। और ऐसे में अगर आपके परिवार में कोई फंक्शन है ना, तो पूरे परिवार को तैयार करके वो वहाँ भी पहुँच जाएंगी, उनके लिए गिफ्ट भी खरीद लेंगी। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर आप बाकियों से ये कहेंगे तो वो उसे इतने अच्छे से नहीं कर पाती हैं। तो आई थिंक मोर देन दिस, शायद हमें उसे वैल्यू करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए, और उन्हें उनका ड्यू क्रेडिट ज़रूर देना चाहिए। कुछ छोटी छोटी चीज़ें मिस कर जाते हैं हम एज सोसाइटी, एज परिवार, एज नॉर्मल ह्यूमन बींग्स, कि हम उन्हें उनका क्रेडिट नहीं देते हैं, ना तो तारीफ करते हैं, ना उन्हें ये जताते हैं और बताते हैं। ये तो शुक्र है कि कुछ अच्छे दिन आने लग गए हैं आजकल, मदर्स डे तो एटलीस्ट, और कुछ नहीं तो आप जाकर उन्हें बताते हैं। विमेंस डे पर सबको याद आता है कि हमारे घर में कोई महिला तो नहीं है, चलिए उन्हें एक गुलाब का फूल दे देते हैं। सो

आई थिंक शायद ये दिन जो है इसलिए क्रिएट किए गए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनका जो रोल है वो अंडरमाइन होता आया है. बट आई थिंक यस, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज एजुकेशन आपको सबसे स्ट्रांग बनाती है और यही आपको पूरा का पूरा ये हक देती है कि आप अपना एक अच्छा भविष्य बना सकें. जुड़े रहिएगा रेडियो 107.8 FM के साथ. फील गुड, फील लव.

0: बेकरार।
1: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर इस प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद हम वापस आ गए हैं महिला सशक्तिकरण यानी वुमेन एम्पावरमेंट। दरअसल देखिए, जब कभी भी हम वी बोलते हैं ना और दो महिलाएं भी एक साथ आ जाएं, एक ही परिवार की दो महिलाएं एक साथ आ जाएं, तो आपने उस परिवार को देखेगा, हंसी खुशी से भरा हुआ परिवार मिलेगा। ना मन मुटाव होगा, ना जलेसी होगी, ना किसी प्रकार का कोई क्रिटिसिज्म होगा। उस परिवार में आप देखेंगे लोग बहुत खुश हैं। सो ये जरूरी है कि महिलाएं एक दूसरे को वैल्यू करें, एक दूसरे के साथ खड़ी रहें। अब बात करते हैं उस चीज की जिसके बारे में एक जमाने से बात हो रही है लेकिन आज भी हमने इसे अचीव नहीं किया है। सो कार्यक्रम है महिला सशक्तिकरण। आज की हमारी बड़ी ही डायनेमिक गेस्ट हैं डॉक्टर पिया शर्मा, जो कि प्रिंसिपल हैं रियान इंटरनेशनल स्कूल, और ये हमारा सौभाग्य है कि आज आप समय निकालकर हमारे पास आई हैं। डॉक्टर पिया, हम हमेशा से जेंडर इनइक्वालिटी को फेस करते आए हैं। एक टाइम तो था जब वो अपेरेंटली दिखता था, इनइक्वालिटी थी, महिलाएं पढ़ नहीं पाती थी, बच्चियों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, कन्या भ्रूण हत्या बहुत कॉमन थी। अब धीरे धीरे चीजें बदल रही हैं, लेकिन आज भी अगर आप देखें मेजरली हमारी सोसाइटी के रोल्स, और साथ के साथ अगर हम ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, तो बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां आज भी आपको क्लियरली दिखेगा कि महिलाओं को उनका ड्यू क्रेडिट या इक्वालिटी नहीं मिल रही है। बॉलीवुड इंडस्ट्री में तो सामने ही नजर आता है। अगर हम पेपैक्स की भी बात करें तो शायद हमारे शाहरुख खान जी जितना लेते हैं, दीपिका पादुकोण आज तक नहीं ले पा रही हैं, चाहे वो कितनी ही अच्छी एक्ट्रेस क्यों ना हो। सो चाहे हम बॉलीवुड देखें, हम बड़े कॉरपोरेट्स देखें, सो हम देखेंगे कहीं ना कहीं आज भी इनइक्वालिटी तो है, थोड़ी है, कहीं ज्यादा है, पर है। सो क्या लगता है इसे कैसे कोप किया जा सकता है और इसे खत्म कैसे किया जा सकता है?
2: भावना जी, देखो सबसे पहली चीज तो यही मैं फिर से दोहराऊंगी, जब आप देखते हो कुछ चीज ठीक नहीं हो रही, यू हैव टू रेज योर वॉइस। रेज योर वॉइस। आपने कहा कि लेडीज का मल्टीपल रोल है, आई एग्री। किसने बनाया ये मल्टीपल रोल्स लेडीज का?
1: वाकई
2: किसने बनाया? कम्युनिटी ने बनाया, सोसाइटी ने बनाया। वी हैव न्यूक्लियर फैमिलीज, जॉइंट फैमिलीज। एक लेडी जो सेम टाइमिंग पे अपने हस्बैंड के साथ बाहर जाती है काम करने को, सेम पे पैकेज ला रही है, इनफैक्ट समटाइम्स बेटर आल्सो, व्हाई इज इट एक्सपेक्टेड फ्रॉम हर कि वो एक्स्ट्रा काम करे? और इसकी आवाज कौन उठाएगा? जो लेडी है, जो सफर है, उसी ही कोई करना है। एंड बिलीव मी भावना मैम, आई एम टॉकिंग आउट ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, आई हैव सीन इट हैपनिंग। ये मतलब मैं ऐसे ही नहीं बात कर रही, हुआ है। और लोगों ने चेंज करा है अपने घरों में, लेडीज हैव चेंज, दे हैव मेड अ वे कि अगर मैं इतना ले रही हूँ और आप भी इतना ले रहे हो, सेम टाइमिंग है, कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, डिवाइड करते हैं वर्क
1: जी।
2: और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, आपने ना कोई मेडल लेना है किसी से। देखो अगर जिस दिन आप लोग, हमारी लेडीज के साथ एक इश्यू आता है, हमें दिखाना होता है मैं अबला नारी
1: जी,
2: मैं सब कुछ कर रही हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ। किसको दिखा रहे हैं आप बहुत अच्छी है? कौन आपको दे रहे हैं मार्क्स?
1: Exactly.
2: आप खुश हो? ठीक है, चेंज योर डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस पहले तो। आई हैव टू बी एवरीवेयर नहीं हो सकता, यू हैव टू मेक योर ओन वे। आप खुद आपका ये दंगल जो होता है ना, आपको खुद ही निकलना है। लोग आपके अराउंड सपोर्ट करेंगे आपको अगर आप हेल्प की आप हेल्प मांगोगे। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज दैट यू नीड टू रेज योर वॉइस, आस्क फॉर हेल्प। You know, ladies should support each other. That's what मेरे को हमेशा लगता है, वो best है, support होता है। और दूसरा, अगर आप ये सब कर रहे हो, पर आपको अपने को भी उतना काबिल बनाना है कि अगले को सोचे कि हाँ, ये एक अच्छे direction पे जा रही है, ये lead कर रही है, she has the caliber, I need to support. So आप में एक potential भी होना चाहिए उस चीज़ को करने के लिए, carry forward करने के लिए। So I would really again say, merit based होना चाहिए सब कुछ, man and a woman staying together. Divide your responsibilities. And आजकल paternity leaves भी होती हैं.
1: Yes.
2: We have that. And I think जो हमारा जो next generation बैठा है, you know, Gen Z, they believe in all that. Equality. Today's, you know, we hear girls are like, you know, ये आता है usually कि बहुत ज़्यादा आजकल की girls independent हो चुकी हैं. अच्छी बात है. I would say good.
1: Very good.
2: They are breaking the barriers of what we saw in our times. They are speaking out, they are raising concerns, and they are making everybody understand.
1: Yes.
2: See, there is a logic to it. You have to convince, and you can help yourself only. I would just say people who are not equipped with education, people who don't have a capability, उनको टाइम लगता है मैम उनको, और हम जैसी लेडीज को उनको भी हेल्प करना चाहिए ग्रो करने को, बिकॉज टुगेदर वी कैन ग्रो एंड मेक द सोसाइटी गो टुवर्ड्स यू नो राइज हायर एंड लेट इंडिया कम टू अ बिगर यू नो लेवल. वी कैन हैव इंडिया ग्रोइंग लाइक मैनीफोल्ड.
1: Yes.
2: If we can have this woman power coming into our, you know, in our nation as well. So I would really think is that real progress begins when equality becomes a shared responsibility. It's not one man's job, two men's job. It's all of us that we have to get together and work on that.
1: Okay, देखिए मैं ये ज़रूर कहूँगी कि हमारा समाज थोड़ा सा बदल रहा है. अगर हम अर्बन सिटीज़ की बात करें तो आज अर्बन लेवल में बहुत हद तक ये बदलाव आ रहा है. या तो आपको कहीं हेल्प मिल जाती है या इक्वालिटी कहीं ना कहीं आप उसे अचीव करने की कोशिश करते हैं. लेकिन थोड़े से रूरल बैकग्राउंड में जाएं तो आज भी इक्वालिटी का चैलेंज है. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आने वाली जनरेशन इस इक्वालिटी को ज़रूर प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रही है और धीरे धीरे ये समाज में आ रहा है. यानी आज हमारा समाज बदल रहा है, कल हमारा शहर बदलेगा, परसों हमारा देश बदलेगा, इसी तरीके से शायद ये पूरा परिवेश बदलेगा. और यही सबसे खुशी की बात है कि हम ये बदलाव अभी देख पा रहे हैं. यानी इक्वालिटी को हम आने वाले समय में ये कह सकते हैं कि हम महसूस कर पाएंगे. फिलहाल वक्त एक छोटे से प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक का. आप जुड़े रहिएगा अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन के साथ, यानी रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ. फील गुड, फील लव.

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण की खूबसूरत सी कड़ी। और आज की इस कड़ी की हमारी शान जो है वो है डॉक्टर पिया शर्मा, जो कि प्रिंसिपल हैं रियान इंटरनेशनल स्कूल। आज बहुत सारी बातें हमने की और सही मायने में जब एजुकेशनिस्ट के साथ बैठो ना तो बड़ी ऑप्टिमिज्म की फीलिंग आती है। लगता है कि देश बदल रहा है, दुनिया बदल रही है और चीज़ें आसानी से बदल जाएंगी, क्योंकि इनकी सोच भी पॉजिटिव होती है और ये उसी पॉजिटिव नज़रिए से अपने स्टूडेंट्स को और कहना चाहिए आसपास के समाज को बदल रहे होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रिया, आज आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे लिसनर्स को इतनी बेहतरीन जानकारी दी। लेकिन जाते जाते क्या खास मैसेज आप देकर जाना चाहेंगी?
1: सबसे पहले लेट फेयर नॉट डिफाइन योर फ्यूचर, डरो मत
0: जी,
1: जो आपको करना है करो। आप अपना फ्यूचर देखिए क्या है और उसको लिव करिए, जाइए उसकी तरफ। Remember, your voice matters, your dream matters, and your contribution matters. And to get all this, you need to invest in education. आपको पढ़ना पड़ेगा, जितना पढ़ाई कर सकते हैं करिए और अपने आप में बिलीव करिए और कभी भी पढ़ना बंद मत करिए। Learning, every phase.

0: दिस इज़ अ लर्निंग स्पेस, लर्न करिए, देखिए अगर आप एजुकेटेड हैं, आप लर्निंग पे रहेंगे, आप निर्डर हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता. सो दिस इज़ माई मैसेज टू ऑल द वुमेन देयर एंड टू ऑल द पेरेंट्स देयर, एम्पावर योर गर्ल्स, गिव देम लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, यू नो, ट्रस्ट देम एंड आई थिंक गिव रिस्पेक्ट टू देम. रिस्पेक्ट स्टार्ट्स एट होम. तो अपनी गर्ल्स को रिस्पेक्ट दीजिएगा, आप अपनी लड़की को रिस्पेक्ट करेंगे, समाज आपकी लड़की को रिस्पेक्ट करेगा. सो आई थिंक इट्स बेटर, लेट्स बिल्ड अ वर्ल्ड वेयर एवरी वुमन इज वैल्यूड फॉर हर एबिलिटीज एंड अ फ्रीडम इज टू अचीव हर एस्पिरेशंस इज गिवन टू ईच वन ऑफ देम. लेट देम फ्लाई एंड आवर नेशन विल डेफिनेटली यू नो टच स्काइज. आई वुड से दैट विद दैट.
1: कितना खूबसूरत सा संदेश है भाई. वाकई हम हमेशा ये कहते हैं, हम सब कुछ जो अचीव करते हैं उसकी शुरुआत हमारे घर से होती है. सो अगर हम चाहते हैं कि इक्वालिटी रहे, सशक्तिकरण रहे, तो समाज के सशक्तिकरण के लिए ज़रूरी ये है कि हम इसकी शुरुआत भी घर से करें. कई बार ऐसा होता है कि एक ही घर होता है और उसी घर में पुरुष और महिलाएँ रह रही होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक इनइक्वालिटी नज़र आ रही होती है, पावर एक्सचेंज नज़र आ रहा होता है कि पुरुष जब आते हैं तो महिलाएं जल्दी जल्दी अपने घर के काम में बिजी हो जाती हैं कि भाई अभी वो आने वाले हैं, इसकी सब तैयारी कर लीजिए. लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क रही, चाहे वो कैसा भी है, सो कहीं ना कहीं सबको ऐसा लगता है कि समाज में एक इक्वालिटी रहेगी और घर में ही इक्वालिटी है. सो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों का ख्याल रखने की ज़रूरत है. और मैं तो हर बार आपसे एक ही बात कहती हूँ, एक ही जीवन है, दूसरे जीवन में क्या मिलने वाला है कोई गारंटी नहीं है. सो आप महिला हैं या पुरुष हैं, प्लीज इसे अच्छे से जिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लेकिन कहीं मत जाइए. जुड़े रहिए अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन के साथ. तहे दिल से धन्यवाद डॉक्टर प्रिया, आज आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे लिसनर्स को इतनी बेहतरीन जानकारी दी.
0: धन्यवाद भावना जी. और मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपके स्टूडियो में आके. इट वॉज अ वेरी इनरिचिंग सेशन दैट वी हैड टुगेदर. थैंक यू सो मच.
1: दोस्तों वक्त है आपसे इजाजत लेने का. बस इस गाने के साथ मैं ले रही हूँ आपसे इजाजत. कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ. आरजे भावना को दीजिए इजाजत, अगले हफ्ते होगी मुलाकात. टिल देन फील गुड, फील लव.

0: नमस्कार, मैं हूँ राकेश ओम प्रकाश मेहरा और आप सुन रहे हैं 107.8 मानव प्रश्न।
1: रेडियो मानव रचना के सभी श्रोताओं को संदीप सिंगल का नमस्कार। दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका आपके अपने प्रोग्राम नई सोच नई दिशाएं में, जिसे हम लेकर आते हैं हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे। जैसा कि हम अपने श्रोताओं को बता दें कि इस प्रोग्राम में हम चर्चा करते हैं किसी एक ऐसे मुद्दे पर जो जुड़ा होता है हमारे आपके जीवन से, और वो मुद्दा वो विषय भी ऐसा जो हमारे आसपास होता है, हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं जाने अनजाने में हम अनदेखी कर जाते हैं या नज़रअंदाज कर जाते हैं ऐसे किसी मुद्दे को। तो रेडियो मानव रचना का हमेशा से प्रयास रहता है कि हम ऐसे विषयों को एक नई सोच के साथ नई दिशाएं प्रदान करें, जो आपको लेकर के जाएं एक बेहतर भविष्य की ओर। तो श्रोताओं, आज का जो मुद्दा है वो जुड़ा हुआ है हमारे एजुकेशन सिस्टम से। आमतौर पर आपने देखा होगा कि बच्चों की जब एजुकेशन की बात आती है तो एक हर किसी का एक सपना होता है कि बच्चे बाहर पढ़ें, देश की जो शिक्षा व्यवस्था है वो अपनी जगह एक अपना स्थान रखती है, लेकिन एक सपना हर किसी के मन में पल रहा होता है कि उनका बच्चा विदेश में पढ़े। तो आज का मुद्दा इसी मुद्दे विषय पर चर्चा हम करेंगे, विदेशी शिक्षा बनाम भारतीय शिक्षा, यानी सपनों की उड़ान या जड़ों की पहचान। जैसा कि हमने अभी कहा कि हर दूसरे घर में एक सपना पल रहा होता है, बेटा विदेश जाएगा, बड़ी किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा और एक शानदार नौकरी करेगा, लेकिन क्या विदेशी शिक्षा वास्तव में हमारी इंडियन एजुकेशन से बेहतर है? क्या भारत में पढ़कर भी वैश्विक सफलता हासिल की जा सकती है? और सबसे बड़ा सवाल कि डिग्री के बाद नौकरी और प्लेसमेंट में कौन आगे है, फॉरेन एजुकेशन या इंडियन एजुकेशन? तो आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे विदेशी और भारतीय शिक्षा व्यवस्था की, उनकी फीस की, उन अपॉर्चुनिटीज की, प्लेसमेंट की और पैकेजेस की। तो दोस्तों, ब्रेन ड्रेन और ब्रेन गेन की उस सच की जो सोशल मीडिया की चमक से बिल्कुल कहीं अलग है, बहुत ज्यादा जरूरत है हमें इस मुद्दे पर चर्चा करने की, जो हमारी सोच को एक नई दिशा देने का काम करेगा। आखिर क्यों बढ़ रहा है विदेश जाने का सपना? जो हम बात करते हैं कि फॉरेन एजुकेशन की तरफ जो लोगों का रुझान है, आखिर उसके बढ़ने के पीछे का कारण क्या है? दोस्तों, भारत दुनिया के उन देशों में से है जहां से सबसे अधिक छात्र विदेशों में पढ़ने जाते हैं। शायद आपको ये बात सुनकर के बड़ा आश्चर्य होगा, लेकिन ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है हमारे अपने देश की। सरकारी और शिक्षा जो रिपोर्ट्स हैं उनके अनुसार पिछले वर्षों में लगभग 7 से 8 लाख छात्र विदेशी शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाहर गए, चाहे उसमें अमेरिका हो, कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, ये वो देश हैं जो उनकी सबसे पहली पसंद बने हुए हैं। श्रेणी में न्यूजीलैंड, फिनलैंड, बहुत सारी एक लंबी फहरिस्त है। लेकिन आखिर इसके पीछे के कारण क्या है? कारण है वहाँ के मॉडर्नाइज कैंपस, उनकी जो स्टडी का जो तरीका है और रिसर्च बेस्ड जो एजुकेशन है वो, उनकी बेहतर प्रयोगशालाएं जो हम लेबोरेटरीज लैब्स की बात करते हैं, और साथ ही साथ जो एक सबसे बड़ा फैक्टर काम करता है कि वर्ल्ड वाइड ग्लोबल जो एक्सपोजर है वो एक बहुत बड़ा चार्म है, एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन है फॉरेन एजुकेशन में। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं एक जो थॉट रहता है हर भारतीय के मन में कि यदि आप किसी भारत के बाहर की किसी यूनिवर्सिटी से शिक्षा ग्रहण करते हैं तो आपको किसी मल्टीनेशनल कंपनी में किसी ऊंचे पद पर या एक बड़े वेतन के साथ नौकरी भी लग जाएगी। तो जो ये उम्मीद है वो भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से विदेशों में अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने का जो सपना है वो बढ़ता जा रहा है। साथ ही साथ हम सोशल मीडिया पर अगर बात करें तो विदेशी जो यूनिवर्सिटी हैं, फॉरेन यूनिवर्सिटी हैं, उनकी जो चमकदार तस्वीरें हैं वो हमारे युवाओं को आकर्षित करती हैं। वहाँ की एमिनिटीज़ की जो यूनिवर्सिटी की जो डिटेल्स सोशल मीडिया के माध्यम से या आप देखते हैं विभिन्न जगहों पर, तो उनसे हमारे बच्चे, हमारे जो युवा हैं बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं। लेकिन आज तस्वीर बदल रही है। अगर हम फिलहाल की बात करें तो सन 2025 में, यानी हमने अभी आपको 2024 का एक डेटा बताया कि जिसमें करीब 7.5 लाख छात्र बाहर गए, कंपैरिजन में 2024 के कंपैरिजन में 2025 में काफ़ी कम छात्र बाहर गए। उसका कारण जितनी भी फॉरेन की यूनिवर्सिटीज हैं उन्होंने अपनी फीस काफी ज्यादा बढ़ा दी। साथ ही साथ जैसा कि अभी आपने देखा था यूएस में भी जो वीजा के नियमों में काफी सख्ती कर दी गई थी, नॉट पर्टिकुलरली फॉर भारतीय छात्रों की हम बात करें बल्कि वैश्विक स्तर पर भी उन्होंने वीजा नियम काफी सख्त कर दिए थे। और एक जो बड़ी चिंता, जो एक बहुत बड़ा आकर्षण था कि आपको बाहर पढ़ने के बाद, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बाद एक अच्छा पैकेज वाली नौकरी मिल जाती है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी पाई गई जिसकी वजह से ये 6% की गिरावट आई। और एक रिपोर्ट के अनुसार जो 43% जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं, जो भारतीय छात्र हैं, उन्होंने आर्थिक दबाव के कारण विदेश जाने का विचार छोड़ दिया, यानी बढ़ती हुई फीस और उस फीस के पैसे का अरेंजमेंट ना हो पाना भी एक कारण रहा इस गिरावट का। यानी अगर हम बात करें तो केवल फॉरेन जाना, अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ना अट्रैक्शन नहीं रहा, बल्कि आज के छात्र इतने स्मार्ट भी होने लगे हैं कि वो वैल्यू फॉर मनी देखने लगे हैं, यानी आपको कितनी फीस दे करके क्या पढ़ाई मिलेगी और उस पढ़ाई का आउटकम क्या होगा, कैसी जॉब मिलने के चांसेस बनते हैं, तो ये भी एक नज़रिया छात्रों का बदल गया है। और अगर हम उसको एक लाइटर नोट पे बोलें तो पहले सपना होता था कि विदेश जाना है, लेकिन अब सवाल होता है कि विदेश जा करके एजुकेशन लोन की ईएमआई कौन भरेगा। यानी एक जागरूकता जो आई है उसने कहीं ना कहीं इस नंबर में, बाहर जाने के जो नंबर है परसेंटेज में, गिरावट लाने का काम किया है। तो दोस्तों इस विषय पर चर्चा को जारी रखेंगे इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम, आपका अपना फरीदाबाद का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, और मैं हूं आपका कम्युनिटी दोस्त संदीप सिंह।

वेलकम बैक दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है नई सोच नई दिशाएं में। और आज हम चर्चा कर रहे हैं इस कार्यक्रम में एक ऐसे मुद्दे पर जो जुड़ा है हमारे बच्चों की शिक्षा से, यानी हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम या बाहर का विदेशी एजुकेशन सिस्टम, दोनों में क्या अंतर है, अट्रैक्शन के कारण क्या हैं। और जो हमने अभी बात की कि सन 2024 में जहां 7.6 लाख स्टूडेंट्स बाहर गए थे पढ़ने, लेकिन 25 में वो करीब 6% गिरावट उसमें आई, तो उसके भी हमने अभी कारण आपको बताए। दोस्तों, जो भारतीय शिक्षा है उसकी ताकत को हम कम नहीं आंक सकते। मतलब अगर हम इंडियन एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो जैसा हमारा इतिहास रहा है, इतने बड़े बड़े शिक्षाविद हमारे देश में हुए हैं, तो यदि विदेशी शिक्षा की चमक हमें आकर्षित करती है तो कहीं ना कहीं हमारा जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है उसकी भी एक ताकत जो है वो हमें एक बहुत बड़ा आत्मविश्वास देती है। हम बड़े गर्व के साथ इस बात को कह सकते हैं कि भारत ने, हमारे देश ने दुनिया को इंजीनियर, डॉक्टर, वैज्ञानिक, आईटी विशेषज्ञ और साथ ही साथ बहुत बड़ी वैश्विक कंपनियों के सीईओ भी दिए हैं, जिनका मूल हमारा देश रहा है, हमारा भारत रहा है। और हमारी भारतीय शिक्षा की जो सबसे बड़ी ताकत है वो है हमारा मजबूत गणितीय आधार, साथ ही साथ कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी, जो कॉम्पिटिटिव जो प्रिपरेशन है वो एक बहुत बड़ी ताकत है हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम की। और दूसरी बात जिसका दबाव आमतौर पर एक मध्यम वर्गीय परिवार हमेशा समझता है वो है फीस। कंपैरेटिवली इंडिया में एजुकेशन जो हमारी है वो बहुत सस्ती है अगर हम फॉरेन एजुकेशन सिस्टम से कंपेयर करें। और साथ ही साथ हमारे यहाँ जो टैलेंटेड बच्चे हैं, जो ग्लोबली अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा टैलेंट देश में, भारत में हमारे बच्चों में, हमारे युवाओं में पाया जाता है। और साथ ही साथ जो IITs हैं, IIM हैं, एम्स की बात हम करें या IISc जैसे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो पूरे वर्ल्ड में अपनी एक अलग जगह रखते हैं। पूरे विश्व में जो उनका सम्मान है वो बहुत शीर्ष संस्थानों में किया जाता है। लेकिन हमारे एजुकेशन सिस्टम के साथ साथ कुछ चैलेंजेज भी हैं जिनको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जैसे हमारे जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम में जो पढ़ाई कराई जाती है उसमें कहीं ना कहीं एक रटने की जो संस्कृति है, या फिर बहुत ज़्यादा एक परसेंटेज की जो फोकस रहता है कि आपको इतने अंक आने चाहिए, इतना परसेंटेज आना चाहिए, वो जो दबाव है वो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम का। और साथ ही साथ जो स्किल गैप और बड़ी लिमिटेड रिसर्च फैसिलिटीज़ हैं वो एक तरह का एक कमी वाला जो रोल है वो प्ले करती हैं हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में। ये एक कड़वी सच्चाई है जो हमें माननी पड़ेगी कि भारत में लाखों छात्र डिग्री तो ले लेते हैं लेकिन उद्योगों की ज़रूरतों के हिसाब से तैयार नहीं हो पाते। हमने आमतौर पर देखा है कि इंजीनियर, इंजीनियरिंग की डिग्री हाथ में है, लेकिन यदि हम उनकी कार्यकुशलता की बात करें तो वो उतने बेहतर तरीके से उन कार्यों में अपनी जो एक्सपर्टीज है वो नहीं दिखा पाते हैं जितने लेवल की एजुकेशन उनके पास होती है। क्योंकि हमें ये मानना पड़ेगा, अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो आज की जो कंपनीज हैं वो केवल डिग्री नहीं देखती, वो देखती हैं उनके कम्युनिकेशन स्किल्स, वो देखते हैं उनकी प्रैक्टिकल नॉलेज, जो एक बहुत बड़ी आवश्यकता है हर उद्योग की, हर इंस्टीट्यूट की, या हम बात करें किसी भी कंसर्न की, किसी भी कंपनी की। जो इंटर्नशिप का जो एक्सपीरियंस है, AI और टेक्नोलॉजी की जो समझ है, वो सारी चीज़ें एक बहुत बड़ी ज़रूरत है किसी भी अच्छे संस्थान में नौकरी पाने के लिए। यानी समय अब बदल चुका है, केवल पढ़े लिखे होना काफ़ी नहीं है बल्कि आपको कार्यकुशल होना यानी स्किल्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, इस विषय पर, इस मुद्दे पर चर्चा को जारी रखेंगे। अभी लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है नई सोच नई दिशाएं में। और आज हम चर्चा कर रहे हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम वर्सेस फॉरेन एजुकेशन। और इसमें हमने देखा कि जो एक फीस है या जो अंकों का दबाव है, एक तरह की हमने बात की, जहां एक तरफ कम फीस होना हमारे लिए अट्रैक्शन हो जाता है, एक कम्फर्टेबिलिटी दिखती है इंडियन एजुकेशन सिस्टम की, लेकिन वहीं जो लिमिटेड रिसोर्सेज ऑफ रिसर्च हैं या हम बात करते हैं अंकों का जो दबाव है, जो एक परसेंटेज गैदर कैप्चर करने का या हासिल करने का जो एक प्रेशर फील होता है, वो हमारे सिस्टम की कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी खामी भी है। और साथ ही साथ जिस तरह से हमने बात की कि अगर हम वर्ष दर वर्ष बात करें तो 2024 के मुकाबले 2025 में विदेशों में पढ़ाई करने के लिए जाने वाले जो छात्र हैं उनके परसेंटेज में गिरावट भी आई है। लेकिन अब हम बात करते हैं एक ऐसे मुद्दे की, इसी से जुड़ा हुआ, कि जो एक बहुत बड़ा आकर्षण होता है आमतौर पर विदेशों में शिक्षा पाने के लिए, यानी यदि आप किसी भी अच्छे फॉरेन यूनिवर्सिटी से एजुकेशन लेते हैं तो एक चार्म कहीं ना कहीं एक अट्रैक्शन मन में रहता है कि आपको एक बड़ी किसी कंपनी में एक बहुत अच्छे पैकेज के साथ जॉब मिल जाएगी। लेकिन आखिर इस बात का सच क्या है दोस्तों? आज हर छात्र और अभिभावक का, जो पेरेंट्स का सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि पढ़ाई के बाद नौकरी कितनी अच्छी मिलेगी। यानी उनका एक बड़ा फोकस रहता है कि यदि आप कोई एजुकेशन ले रहे हैं, कोई भी टेक्निकल एजुकेशन ले रहे हैं, तो आपको उसके बाद कितनी अच्छी नौकरी मिलेगी। और ये वो सवाल है जिसके जवाब के आधार पर लोग चयन करते हैं कि किस इंस्टीट्यूट में, किस कॉलेज में बच्चे को एडमिशन दिलाना है, यानी किसकी प्लेसमेंट कहाँ बेहतर तरीके से होती है। यदि हम बात करते हैं इंडिया के जो टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं उनके जो प्लेसमेंट के नंबर्स हैं, अगर हम उनके आंकड़ों की बात करें तो वो काफ़ी इफेक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। तो उसी की वजह से बहुत ज़्यादा चार्म भी रहता है हमारे देश में उन इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन पाने का। यदि हम 2025 वर्ष 2025 के प्लेसमेंट सीजन की बात करें तो IIT बॉम्बे में लगभग 74% प्लेसमेंट दर्ज हुआ। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा नंबर है ये कि IIT मुंबई में 74% प्लेसमेंट हुआ। और इंटरनेशनल जो पैकेज था वो तकरीबन 3 करोड़ रुपए से भी ऊपर तक गया था। यानी अगर हम एवरेज पैकेज की बात करें, जो हमने 74% प्लेसमेंट की बात की, तो वहाँ का जो एवरेज पैकेज था वो भी 23 लाख पर एनम था। तो एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन हो जाता है ऐसे इंस्टीट्यूट का जहाँ की प्लेसमेंट 74% हो। या हम बात करते हैं IIT चेन्नई की, वहाँ पर 4.3 करोड़ तक का पैकेज मिला। BTech कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग को जो एवरेज पैकेज था वो तकरीबन 53 लाख रुपये प्रतिवर्ष, यानी 53 लाख पर एनम का रहा। दूसरी तरफ हम बात करते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नागपुर की, यानी IIT नागपुर का जो CSE विभाग है उसकी प्लेसमेंट, आपको यकीन कीजिए जानकर के आश्चर्य होगा कि 100% प्लेसमेंट हुई। और वहाँ का जो एवरेज पैकेज था वो तकरीबन 15 लाख रुपीज पर एनम रहा। साथ ही साथ हम NIT जालंधर की बात करें तो वहाँ तकरीबन 900 जॉब ऑफर्स आए और 1 करोड़ रुपये से ऊपर का एनुअल पैकेज मिला। लेकिन दोस्तों सच्चाई ये भी है कि भारत का हर कॉलेज IIT नहीं है। यानी हमें ये बात समझनी पड़ेगी, जो हमारे देश के इंजीनियरिंग के जो शीर्ष संस्थानों में जिनका शुमार होता है IITs का, हर कॉलेज वो कैटेगरी में नहीं आता। बहुत सारे जो सामान्य कॉलेज हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, वहाँ का प्लेसमेंट कमज़ोर है। ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा और ये कहीं ना कहीं एक खामी रह जाती है हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था की। अब सोचने वाली बात है कि जहाँ एवरेज जो सैलरी है वो कम है, कई छात्रों को नौकरी के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ता है, विदेशों में जो शुरुआती वेतन है, मतलब जो अट्रैक्शन होता है फॉरेन एजुकेशन का, वो ये भी कि जब इनिशियल जो वहाँ पर सैलरी ऑफर होती है वो भारत से बहुत ज़्यादा अधिक होती है। और पर्टिकुलरली अगर हम AI की बात करें, डेटा साइंस की बात करें, या फाइनेंशियल हेल्थ केयर या रिसर्च के क्षेत्रों की बात करें, फाइनेंस में, हेल्थ केयर में, रिसर्च में, AI में, इनमें जो एक एवरेज सैलरी है वो इंडिया के मुकाबले बाहर के देशों में बहुत ज़्यादा है। तो एक ये बहुत बड़ा अट्रैक्शन रहता है वहाँ पर पढ़ाई करने का। लेकिन आज की यदि हम बात करें, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि 2024 के बाद 25 में गिरावट आई, वो गिरावट आने का एक कारण ये भी था कि आज स्थिति वहाँ पर भी आसान नहीं रही है। बहुत सारे देशों में नौकरी जो है वो कंपटीशन जो उसमें है जॉब्स में वो बहुत बढ़ गया है, वीज़ा की इश्यूज हो गए हैं, और साथ ही साथ कुछ जो टेक कंपनीज हैं उनमें रिट्रेंचमेंट भी हुई है, छटनियाँ भी हुई हैं। यानी अब केवल विदेशी डिग्री होना नौकरी की गारंटी नहीं रहा, ये कड़वा सच
हमें आज स्वीकारना पड़ेगा और ये एक बहुत बड़ा बदलाव है वैश्विक

वेलकम बैक दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है नई सोच नई दिशाएं में। और इस प्रोग्राम को आप सुनते हैं हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। हर बार जो हम एक विशेष मुद्दे पर चर्चा आपके साथ करते हैं, तो आज का मुद्दा है विदेशी एजुकेशन बनाम भारतीय शिक्षा। अभी हमने बात की कि आखिर फॉरेन एजुकेशन के प्रति अट्रैक्शन क्यों रहता है, तो उसके पीछे के कारण थे वहाँ रिसर्च की फैसिलिटी, यूनिवर्सिटीज अट्रैक्टिव तरीके से दिखना, बड़े पैकेज की ऑफर्स आना, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ की जो महंगी फीस है या वहाँ का जो वातावरण है या डे बाई डे नौकरी मिलने में परेशानियाँ होना या वीज़ा की

प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई हैं, उसकी वजह से थोड़ा लोगों में अट्रैक्शन कम हुआ है। लेकिन इसी से जुड़ा हुआ एक मुद्दा जो सीधा सीधा रिलेटेड है इंडियन एजुकेशन और भारतीय एजुकेशन से, वो है कि यदि हम विदेशी एजुकेशन की बात करते हैं तो उस पर होने वाला जो खर्च है, आमतौर पर हम बात कर लेते हैं केवल और केवल इंस्टीट्यूट्स के फीस की, यानी कोई भी शैक्षणिक संस्थान जो यूनिवर्सिटी है उसकी फीस कितनी है। लेकिन दोस्तों, विदेशी शिक्षा केवल यूनिवर्सिटी की फीस नहीं होती, उसमें शामिल होता है वहाँ पर रहने का खर्च, वहाँ खाने का खर्च, वहाँ इंश्योरेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, या जितने भी आपको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट चाहिए होते हैं, चाहे उसमें लैपटॉप है या कोई भी और एसेसरी। और साथ ही साथ जब आप किसी जगह पर रहते हैं, नई जगह पर विदेशों में, तो निश्चित रूप से वहाँ रहने के लिए आपको बहुत ज़्यादा अतिरिक्त खर्चा भी करना पड़ता है। और एक अनुमान के अनुसार जो हम कई देशों की हम बात करते हैं, तो उसमें तकरीबन किसी एक छात्र पर 20 से 40 लाख रुपए तक का खर्चा हो सकता है। हालांकि ये बात भी तय है कि छात्र अपने खर्चे को बियर करने के लिए, वहाँ एक्सपेंसेस को बियर करने के लिए पार्ट टाइम जॉब्स भी करते हैं, और वो कंपैरेटिवली इंडिया के मुकाबले वहाँ मिल जाती हैं और उनमें उनको पेमेंट भी अच्छा मिलता है। लेकिन फिर भी एक बड़ा गैप उस खर्चे और कमाई के बीच में रहता है। हालांकि सोशल मीडिया जो एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन का कारण बनता है, उसमें दिखाया जाता है बहुत सुंदर कैंपस है, या वहाँ का जो वातावरण है, या उस वहाँ का जो पर्यावरण की हम बात करें, क्लीन एयर और बर्फबारी और सुंदर दृश्य देखने वाले मिलते हैं, एक बड़े ही आधुनिक कैफ़े, या एक जो लाइफस्टाइल वहाँ की है, विदेशी जो जीवनचर्या है, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। लेकिन इसी का एक दूसरा पहलू जो आमतौर पर सोशल मीडिया के माध्यम से हमें नहीं दिखाया जाता, वो है कि जो असली ज़िंदगी है वहाँ की, उसमें कहीं ना कहीं एक प्रेशर रहता है किराए का, बहुत महंगे महंगे रेंटल्स आपको पे करने पड़ते हैं, लोनलीनेस, जो आपको अकेलापन महसूस होता है, वो एक बहुत बड़ा मानसिक अवसाद यानी डिप्रेशन का भी कई बार कारण बन जाता है। और कुछ देशों की तो जो जलवायु, जो पर्यावरण वहाँ का है, वो ऐसा होता है कि वहाँ पर जो इंडिया के मुकाबले दिन और रात में फ़र्क होना, सनलाइट की अवेलेबिलिटी ना होना, बहुत ज़्यादा समय तक अंधेरा रहना, बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके हम लोग आदी नहीं होते, तो वहाँ पर जा करके उनको इस चीज़ का भी एक मानसिक जो स्थिति है वो बेहतर नहीं रह पाती, और साथ ही अकेलेपन के कारण या एक नई जगह के कारण एक मानसिक तनाव की स्थिति भी बच्चों में, युवाओं में देखी जाती है वहाँ के छात्रों में। और साथ ही साथ जब पढ़ाई की बात होती है, तो जैसा कि हमने कहा कि पार्ट टाइम जॉब करना या पढ़ाई के बाद जॉब हासिल करने के लिए जो प्रक्रिया वहाँ पर अपनाई जाती है, उसका भी एक बहुत दबाव और उसकी एक भागदौड़ जो है वो भी आपके जीवन का एक अभिन्न अंग बन जाती है। तो आपको समझना चाहिए कि जो भी विदेशी एजुकेशन हासिल करने जाना होता है या वहाँ पर कोई डिग्री लेना होता है, तो वहाँ पर किसी प्रकार की एजुकेशन ले लेना, चाहे वो यूनिवर्सिटी कितनी भी बेहतरीन स्थिति की क्यों ना हो, कोई गारंटी नहीं होती कि आपको वहाँ पर जा कर के जॉब मिलेगी ही, एक बेहतर जॉब मिलेगी या आपको जीवन में सफलता मिलेगी, वो कोई गारंटी नहीं होती है। तो इस सच्चाई को हमें साथ ही साथ ध्यान रखना चाहिए, जो एक बेहतर निर्णय लेने में हमारे लिए सहायता करती है या हमारे लिए सहायक होती है। तो इस चर्चा को जारी रखते हैं इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। अभी सुनिए एक खूबसूरत सा गीत, उसके बाद हम फिर हाजिर होंगे कार्यक्रम का अगले हिस्से में। तब तक सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका नई सोच नई दिशाएं में और मैं हूं आपका कम्युनिटी दोस्त संदीप सिंगल। आज हम चर्चा कर रहे हैं फॉरेन एजुकेशन वर्सेस इंडियन एजुकेशन सिस्टम की। आमतौर पर हमने अभी बात की कि विदेशों में बच्चों को पढ़ने भेजना एक बड़ा हर किसी परिवार का सपना होता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बहुत महंगी फीस दे देना, एक आर्थिक दबाव की स्थिति पैदा होना, तो वो कहीं ना कहीं हमें रोकता है। लेकिन पिछले कुछ समय में जिस प्रकार का माहौल बदला है विदेशों का, उससे काफ़ी संख्या में कमी आई है और हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम जैसे इम्प्रूव हुआ है, अच्छे अच्छे कॉलेजेस और रिसर्च फैसिलिटीज़ का आ जाना एक बहुत बड़ा कारण बना है कि बच्चों में बाहर के देशों में जाने की अट्रैक्शन कम हो गई है। और साथ ही साथ अभी हमने हाल ही में कुछ खबरें सुनी कि बाहर की जो विदेशी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपने कैंपस इंडिया में भी बना रही हैं, तो आप समझ सकते हैं कि हालात किस तरह से बदल रहे हैं और हमारे देश में बेहतर शिक्षा व्यवस्था के जो ऑप्शंस हैं वो भी बढ़ रहे हैं। और एक पहलू जो फॉरेन एजुकेशन का है वो ये भी है कि जब कोई भी टैलेंटेड जो बच्चे हैं वो बाहर जाते हैं, विदेश जाते हैं, तो अक्सर कहा जाता है कि हमारे देश की प्रतिभा बाहर जा रही है। आमतौर पर आपने सुना होगा कि विदेशों में बहुत अच्छे सफल डॉक्टर्स जो हैं वो इंडियन ओरिजिन से हैं, यानी देश से हमारे ही गए हुए हैं। बड़े बड़े इंजीनियर, बड़ी बड़ी कंपनी के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं वो इंडियंस हैं और ये प्रतिभा हमारे देश की ही है। और इसको कहा जाता है ब्रेन ड्रेन, यानी एक शब्द इसके लिए किया गया ब्रेन ड्रेन। और एक रिसर्च के अनुसार जो इंटरनेशनल लेवल पर जाने वाले जो इंडियन जो शोधकर्ता हैं, जो रिसर्चर्स हैं, उनमें से 73% वापस नहीं लौटते। आप समझ सकते हैं कि एक बहुत बड़ा नंबर है कि जो यदि 100 लोग बाहर जाते हैं तो उसमें से 73 लोगों की संभावना रहती है कि वो वापस नहीं लौटते हैं। लेकिन आने वाले समय के साथ साथ ये तस्वीर बदल रही है, यानी सिचुएशंस काफ़ी चेंज हो रही हैं। बहुत सारे छात्र वो इस थॉट के साथ जाते हैं कि हम बाहर जा कर के पढ़ें, वहाँ पर एक्सपीरियंस लें, इंडिया में वापस आकर के अपना स्टार्टअप शुरू करें, साथ ही साथ जो वहाँ चीज़ें सीखी हैं उनको यहाँ आकर के और लोगों से शेयर करके रिसर्च करें और जो उन्होंने ग्लोबल एक्सपीरियंस अर्न किया है उसको अपने देश में ले करके आएँ। तो वो बहुत एक नया बदलाव जो आना शुरू हुआ है, एक बेहतर स्थिति में हमारा देश, अगर हम एजुकेशन की बात करें तो बेहतर स्थिति में आता जा रहा है और आने वाले समय में इसको और ज़्यादा बेहतर होने की संभावनाएं भी बढ़ गई हैं। साथ ही जैसा भी मैंने आपको कहा कि भारत में भी अब ग्लोबल कैंपसेज, इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस और जो नई हमारी एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके माध्यम से चेंज लाने की कोशिश की जा रही है, यानी शिक्षा नीति के माध्यम से भी बदलाव की कोशिश की जा रही है। यानी सवाल सिर्फ विदेश जाना नहीं है, सवाल ये है कि हमारे स्टूडेंट्स क्या सीख रहे हैं, वो कितने स्किल्ड हो रहे हैं और हमारी सोसाइटी को अपने एजुकेशन सिस्टम से सीखने के बाद क्या लौटा रहे हैं। यानी जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसका जो मूल भाव केवल और केवल एजुकेट करना नहीं होता, बल्कि उन युवाओं को शिक्षित करके देश की मुख्य धारा में ला करके देश के विकास के जो काम है, विकास की जो गति है, उसमें उनका योगदान भी सुनिश्चित करना होता है। ये सबसे ज़्यादा बड़ा मूल उद्देश्य होता है किसी भी देश के एजुकेशन सिस्टम का। तो दोस्तों अभी लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, सुनिए खूबसूरत सा गीत और उसके बाद हम फिर हाजिर होंगे, कार्यक्रम को लेकर के चलेंगे समापन की ओर। अभी सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM, आपका अपना प्रोग्राम नई सोच नई दिशाएं।

वेलकम बैक दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से नई सोच नई दिशाएं में। और आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आपका कम्युनिटी दोस्त संदीप सिंघल। आज हमने चर्चा की फॉरेन एजुकेशन वर्सेज इंडियन एजुकेशन सिस्टम की स्थिति में क्या बदलाव आया है, क्या परिस्थितियां बदली हैं। जिस तरह से हम कहते थे कि हर घर का एक सपना होता था कि उनका बच्चा बाहर पढ़े, विदेश में जाकर के शिक्षा ग्रहण करे, एक अच्छे पैकेज पर उसको नौकरी मिले या वो अपना कोई व्यवसाय करे, वहीं परिस्थितियां बदली हैं, लोगों की सोच बदली है। आज हमारे बच्चे, आज हमारे जो छात्र हैं वो बाहर पढ़ने जरूर जाते हैं, रिसर्च की टेक्निक सीखते हैं, समझते हैं और उन चीज़ों को लेकर के आते हैं अपने देश में वापस और यहाँ पर अपने स्टार्टअप शुरू करते हैं। और कहीं ना कहीं भारत की जो प्रगति है, आर्थिक प्रगति हम बात करें या यदि हम विकास की बात करें तो उसमें अपना योगदान देते हैं। अब अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो आखिर बेहतर कौन है, भारतीय शिक्षा या विदेशी शिक्षा? एक सवाल आप सभी के मन में आता होगा, लेकिन इस सवाल का कोई जवाब नहीं है, क्योंकि ये वो सवाल है जिसमें हर किसी की अपनी एक एक्सपेक्टेशन है, हर किसी का अपना एक थॉट प्रोसेस है, हर किसी की अपनी एक जीवन की एक, अगर हम बात करें, लक्ष्य है, गोल है। तो उसके हिसाब से यदि हम बोलें किसी छात्र को चाहिए कि बहुत हाई लेवल की रिसर्च, ग्लोबल एक्सपोजर या विशेष तकनीकी अवसर, तो विदेशी शिक्षा उसके लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकती है। ये डिपेंड करता है, जैसे हमने भी आपको कहा कि हर किसी की अपनी एक्सपेक्टेशन है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यदि हमारे ही किसी स्टूडेंट के अंदर कड़ी मेहनत, डिसिप्लिन और सीखने की इच्छा है, तो यकीन मानिए हमारे देश में अवसरों की कमी नहीं है, लेकिन उसको इस्तेमाल करने आना चाहिए और उसको इस्तेमाल करने का जज्बा भी आपके भीतर होना चाहिए। हमारे देश में ही IIT IIM जैसे संस्थान हैं जो ग्लोबल लेवल के जो लीडर्स हैं उनको बनाने का काम करते हैं। यदि आप बात करें बहुत बड़े बड़े रिसर्च साइंटिस्ट की बात करें, हम देश से बाहर जो गए हैं, उनकी मूल जो शिक्षा है, जो एजुकेशन है, वो भी इंडिया में ही हुई है। ऐसे सैकड़ों की तादाद में हमारे पास उदाहरण उपलब्ध हैं। जैसे हम बात करते हैं कि हमारे ही देश के IIT और IIM के पढ़े हुए बच्चे जो ग्लोबली वेल नोन इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो गूगल है, चाहे माइक्रोसॉफ्ट है या अमेजॉन है, या और हम किसी ग्लोबल कंपनीज की बात करें, तो उनमें बहुत ही शानदार पैकेजेस के ऊपर काम कर रहे हैं। यानी हमें बात समझनी चाहिए कि जो असल जो फर्क है वो केवल देश नहीं बनाता, फर्क बनाता है छात्रों का दृष्टिकोण, यानी आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है या उनका स्किल या उनकी स्किल टू लर्न, यानी उनकी सीखने की जो क्षमता है, वो फर्क पैदा करती है कि आप किस देश में, किस कंपनी में, किस पैकेज पर कैसी नौकरी हासिल करते हैं या कैसा स्टार्टअप शुरू कर पाते हैं। लेकिन दोस्तों, एक बड़ी मज़ेदार बात है और बड़ी सच्ची बात है कि पहले लोग आमतौर पर पूछते थे कि कौन सा कॉलेज मिला, जब कभी एजुकेशन की बात आती थी, लेकिन अब लोग पूछते हैं कि प्लेसमेंट कितना मिला, यानी पैकेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है इंस्टेड ऑफ इंस्टीट्यूट। तो दोस्तों, आज हमने समझने की कोशिश की है कि विदेशी शिक्षा और भारतीय शिक्षा दोनों की अपनी ताकत और अपनी लिमिटेशंस है। विदेश अवसर देता है और भारत आधार देता है, यानी हमारा जो देश है वो हमारी लाइफ का, हमारा एजुकेशन का फाउंडेशन देता है। और साथ ही साथ जो विदेशी डिग्री है वो कोई सक्सेस की गारंटी नहीं है। और साथ ही हमें समझना भी पड़ेगा कि जो भारतीय डिग्री है या हमारे इंडियन जो इंस्टीट्यूट्स की डिग्रियाँ हैं, वो असफलता की भी पहचान नहीं है। यानी इस बात में यदि हम अंतर को समझें तो बाहर के देशों में पढ़ने की कोई गारंटी नहीं होती सफलता होना, और इंडिया में पढ़ना या इंडियन एजुकेशन सिस्टम का पार्ट होना

कोई असफलता होने की पहचान नहीं है। असली शिक्षा वही है जो इंसान को सोचने की शक्ति दे, यानी आपको कुशल बनाए और आप अपने विजन और अपने लक्ष्य के बारे में सोच सकें और अपने समाज के प्रति जिम्मेदारी का एहसास करा सके। दरअसल असली शिक्षा वही है, जैसा कि हमने कार्यक्रम के बीच में भी कहा था कि जो शिक्षा का जो मूल उद्देश्य होता है वो केवल आपको शिक्षित करना नहीं होता, बल्कि आपके अंदर ये भाव पैदा करना कि जिस देश में जहां आपने ये शिक्षा हासिल की है, जिस देश के आप नागरिक हैं, उस देश की प्रगति में आप अपने शिक्षित होने के बाद, कार्यकुशल होने के बाद किस प्रकार से योगदान दे सकते हैं। तो इस जिम्मेदारी का जो एहसास कराए, दरअसल शिक्षा का पूरा उद्देश्य जभी होता है। तो दोस्तों, इसी विचार के साथ हमें दीजिए अनुमति और नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नए विषय के साथ आपके पास फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए संदीप सिंगल को दीजिए इजाजत। तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव। नमस्कार।

0: ए सुन रुबिया, प्यार हो गया
1: सच,
0: प्यार हो गया क्या करें।
1: सुनने को ये तरसता था दिल, चल जल्दी से।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों की डायरी प्रियंका के साथ। और आज की हमारी कहानी है काली सलवार, जिसे लिखा है सादत हसन मंटो ने।
1: दिल्ली आने से पहले वो अंबाला छावनी में थी, जहां कई गोरे उसके ग्राहक थे। इन गोरों से मिलने जुलने की वजह से वो अंग्रेजी के 10-15 शब्द सीख गई थी। इनको वो आम बातचीत में इस्तेमाल नहीं करती थी, लेकिन जब वो दिल्ली में आई और उसका कारोबार ना चला, तो एक दिन उसने अपनी पड़ोसन तमंचा चान से कहा, दिस लाइफ वेरी बैड, यानी ये जिंदगी बहुत बुरी है जिसमें खाने को ही नहीं मिलता। अंबाला छावनी में उसका धंधा बहुत अच्छा चलता था। छावनी के गोरे शराब पीकर उसके पास आ जाते थे। वो 3-4 घंटे में ही 8-10 गोरों को निपटा कर 20-30 रुपए पैदा कर लिया करती थी। अगर वो उससे कुछ रियायत चाहते तो वो सिर हिलाकर कह दिया करती थी, साहब हमारी समझ में तुम्हारी बात नहीं आती। और अगर वो उससे जरूरत से ज्यादा छेड़छाड़ करते तो वो उनको अपनी जुबान में गालियां देना शुरू कर देती। वो हैरत में उसके मुंह की तरफ देखते तो वो उनसे कहती, साहब तुम एकदम उल्लू का पट्टा है, समझा? ये कहते वक्त अपने लहजे में गुस्सा न लाती, बल्कि बड़े प्यार से उनके साथ बातें करती। यहाँ दिल्ली में जब वो आई थी, एक भी गोरा उसके घर नहीं आया था। 3 महीने उसको हिंदुस्तान के शहर में रहते हो गए थे, जहाँ उसने सुना था कि बड़े लाट साहब रहते हैं जो गर्मियों में शिमला चले जाते हैं। मगर सिर्फ 6 आदमी उसके पास आए थे, सिर्फ 6, यानी महीने में 2। और इन 6 ग्राहकों से उसने खुदा झूठ ना बुलवाए तो 18.5 रुपए वसूल किए थे। 3 रुपए से ज्यादा पर कोई मानता ही नहीं था। सुल्ताना ने इनमें से 5 आदमियों को अपना रेट 10 रुपए बताया था, मगर ताजुब की बात है, इनमें से हर एक ने यही कहा, भाई हम 3 रुपए से 1 कौड़ी ज्यादा नहीं देंगे। न जाने क्या बात थी कि इनमें से हर एक ने उसे 3 रुपए के काबिल समझा। चुनांचे जब 6ठा आदमी आया तो उसने खुद उससे कहा, देखो मैं 3 रुपए 1 टाइम के लूंगी, इससे 1 धेला तुम कहो तो मैं ना लूंगी, अब तुम्हारी मर्जी, रहना है तो रहो वरना जाओ। 6ठे आदमी ने ये सुनकर तकरार ना की और उसके यहाँ ठहर गया। जब दूसरे कमरे में वो दरवाजा बंद करके अपना कोट उतारने लगा तो सुल्ताना ने कहा, लाइए 1 रुपया दूध का। उसने 1 रुपया तो न दिया, लेकिन नए बादशाह के चमकती हुई अठन्नी जेब में से निकाल कर उसको दे दी और सुल्ताना ने भी चुपचाप ले ली कि चलो जो आया गनीमत है। 18.5 रुपए 3 महीने में, 20 रुपए महीना तो इस कोठे का किराया था, जिसको मकान मालिक अंग्रेजी भाषा में फ्लैट कहता था। इस फ्लैट में ऐसा पखाना था जिसमें जंजीर खींचने से सारी गंदगी पानी के जोर से एकदम नल में नीचे गायब हो जाती थी और बड़ा शोर होता था। शुरू शुरू में तो शोर ने उसे बहुत डराया था। पहले दिन जब वो शौच जाने के लिए उस पखाने में गई तो उसकी कमर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। फारिग होने के बाद जब वो उठने लगी तो उसने लटके हुए जंजीर का सहारा ले लिया। उस जंजीर को देखकर उसने ख्याल किया, चूंकि ये खास लोगों की रहने की जगह है इसलिए ये जंजीर लगाई गई होगी कि उठते वक्त तकलीफ ना हो और सहारा मिल जाए। मगर जैसे ही उसने जंजीर को पकड़कर उठना चाहा, ऊपर खटखट की आवाज हुई और फिर एकदम पानी इस शोर के साथ बाहर निकला कि डर के मारे उसके मुंह से चीख निकल गई। खुदा बख्श कमरे में अपना फोटोग्राफी का सामान ठीक कर रहा था और साफ बोतलों में हाइड्रोकोलीन डाल रहा था कि उसने सुल्ताना से पूछा, क्या हुआ, ये चीख तुम्हारी थी? सुल्ताना का दिल धड़क रहा था। उसने कहा, ये मुआ पैखाना है या क्या है? बीच में ये रेलगाड़ी की तरह जंजीर क्यों लटका रखी है? मेरी कमर में दर्द था, मैंने कहा चलो इसका सहारा ले लूंगी, पर इस मुई जंजीर को छेड़ना था कि वो धमाका हुआ कि मैं तुमसे क्या कहूँ। इस पर खुदा बख्श बहुत हंसा और उसने सुल्ताना को उस पैखाने के बारे में सब कुछ बता दिया था कि ये नए फैशन का है जिसमें जंजीर हिलाने पर सब गंदगी जमीन के नीचे धस जाती है। खुदा बख्श और सुल्ताना आपस में कैसे मिले, ये एक लंबी कहानी है। खुदा बख्श रावलपिंडी का था। एंट्रेंस पास करने के बाद उसने लॉरी चलाना सीखा। चुनांचे 4 साल तक वो रावलपिंडी और कश्मीर के बीच लॉरी चलाने का काम करता था। इसके बाद कश्मीर में उसकी दोस्ती एक औरत से हो गई उसको भगाकर वो लाहौर ले आया। लाहौर में चूंकि उसको कोई काम ना मिला तो इसलिए उसने अपनी औरत को पेशे पर बैठा दिया। 2-3 साल तक ये सिलसिला जारी रहा और फिर वो औरत किसी और के साथ भाग गई। खुदा बख्श को मालूम हुआ कि वो अंबाला में है। वो उसकी तलाश में अंबाला आया जहां उसको सुल्ताना मिल गई। सुल्ताना ने उसको पसंद किया, चुनांचे दोनों का संबंध हो गया। खुदा बख्श के आने से सुल्ताना का कारोबार एकदम चमक उठा। औरत चूंकि अंधविश्वासी थी इसलिए उसने समझा कि खुदा बख्श बड़ा लक्की है जिसके आने से इतनी तरक्की हो गई। चुनांचे इस विश्वास ने खुदा बख्श की अहमियत उसकी नजर में और बढ़ा दी। यहाँ वो गोरों की फोटो खींचता रहता। 1 महीने के अंदर अंदर उसकी छावनी में बहुत से गोरों से जान पहचान हो गई। चुनांचे वो सुल्ताना को वहीं ले गया। यहाँ छावनी में खुदा बख्श के जरिए कई गोरे सुल्ताना के पक्के हो गए और उसकी आमदनी भी दुगनी हो गई। सुल्ताना ने कानों के लिए बूंदे खरीदे, 5.5 तोले की 8 कंगड़ियां भी बनवा ली, 10-15 अच्छी अच्छी साड़ियां भी जमा कर ली। घर में फर्नीचर वगैरह भी आ गया। कुल मिलाकर अंबाला छावनी में वो बड़ी खुशहाल थी। मगर एकाएक न जाने खुदा बख्श के दिल में क्या समाई कि उसने दिल्ली जाने की ठान ली। सुल्ताना इनकार कैसे करती जबकि खुदा बख्श को अपने लिए बड़ा लकी समझती थी। उसने खुशी खुशी दिल्ली जाना कबूल किया। सोचा कि इतने बड़े शहर में जहाँ लाट साहब रहते हैं उसका धंधा और भी चलेगा। चुनांचे जल्दी जल्दी घर का भारी सामान बेच बाज कर वो खुदा बख्श के साथ दिल्ली आ गई। यहाँ पहुँच कर खुदा बख्श ने 20 रुपये पर एक छोटा सा फ्लैट ले लिया जिसमें वो रहने लगे। एक ही किस्म के नए मकानों की लंबी सी कतार सड़क के साथ साथ चली गई थी। म्यूनिसिपल कमेटी ने शहर का एक भाग खास वेश्याओं के लिए रख दिया था ताकि वो शहर में जगह जगह अड्डे ना बनाए। नीचे दुकानें थी और ऊपर 2 मंजिला रिहायशी फ्लैट। चूंकि सब इमारतें एक ही डिजाइन की थी इसलिए शुरू शुरू में सुल्ताना को अपना फ्लैट तलाशने में बड़ी मुश्किल होती थी। पर जब नीचे लॉन्ड्री वाले ने अपना बोर्ड घर की पेशानी पर लगा दिया तो उसको एक पक्की निशानी मिल गई। बोर्ड पर लिखा था, यहाँ मैले कपड़ों की धुलाई की जाती है। ये बोर्ड पढ़ते ही वो अपना फ्लैट तलाश लिया करती थी। इस तरह उसने बहुत सी निशानियां कायम कर ली थी। मसलन बड़े बड़े अक्षरों में जहाँ कोयले की दुकान लिखा था वहीं उसकी सहेली हीराबाई रहती थी जो कभी रेडियो घर में गाने जाया करती थी। जहाँ यात्रियों के खाने का सारा इंतजाम है लिखा था वहीं उसकी दूसरी सहेली मुख्तार रहती थी। पलंग के कारखाने के ऊपर अनवरी रहती थी जो उस कारखाने के सेठ के पास नौकर थी। चूंकि सेठ साहब को रात के वक्त अपने कारखाने की देखभाल करनी होती थी इसलिए वो अनवरी के पास ही रहते थे। दुकान खोलते ही ग्राहक थोड़ी आते हैं। चुनांचे जब 1 महीना तक सुल्ताना बेकार रही तो उसने यही सोचकर अपने दिल को तसल्ली दी। पर जब 2 महीने गुजर गए और कोई आदमी उसके कोठे पर न आया तो उसे बहुत चिंता हुई। उसने खुदा बख्श से कहा, क्या बात है खुदा बख्श, हमें आए आज पूरे 2 महीने हो गए, किसी ने इधर का रुख नहीं किया। मानते हो आजकल बाजार बहुत मंदा है पर इतना मंदा भी तो नहीं कि महीने भर में कोई शक्ल ही देखने ना आए। खुदा बख्श को भी ये बात बहुत अरसे से खटक रही थी मगर वो खामोश था। वो इसके आगे कुछ कहने ही वाला था कि सीढ़ियों पर किसी के चढ़ने की आवाज आई। खुदा बख्श और सुल्ताना दोनों ने इस आवाज की तरफ ध्यान दिया। थोड़ी देर के बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। खुदा बख्श ने लपक कर दरवाजा खोला। एक आदमी अंदर दाखिल हुआ। ये पहला ग्राहक था जिससे 3 रुपए में सौदा तय हुआ। उसके बाद 5 और आए यानी 3 महीने में 6, जिनसे सुल्ताना ने 18.5 रुपए वसूल किए। 20 रुपए महीना तो फ्लैट के किराए में ही चले जाते थे। पानी का टैक्स और बिजली का बिल अलग था। इसके अलावा घर के दूसरे खर्चे थे, खाना पीना, कपड़े लत्ते, दवा दारू और आमदनी कुछ भी नहीं थी। 18.5 रुपए 3 महीने में आए तो उसे आमदनी तो नहीं कह सकते। सुल्ताना परेशान हो गई। 5.5 तोले की 8 कंगनियां जो उसने अंबाले में बनवाई थी आहिस्ता आहिस्ता बिक गई। आखिरी कंगनी की जब बारी आई तो उसने खुदा बख्श से कहा, तुम मेरी सुनो और चलो अंबाले में। यहाँ क्या धरा है भाई, होंगे यहाँ लाट साहब पर हमें तो ये शहर रास नहीं आया। तुम्हारा काम भी वहाँ खूब चलता था, चलो वहाँ चलते हैं। जो भी नुकसान हुआ उसको अपना सिर सदका समझो। लो इस कंगनी को बेच कर आओ, आज रात की गाड़ी से ही यहाँ से चल देंगे। खुदा बख्श ने कंगनी सुल्ताना के हाथ से ली और कहा, नहीं जाने मन, अम्बाला अब नहीं जाएंगे, यही दिल्ली में रहकर कमाएंगे। तुम्हारी चूड़ियां सब की सब वापस आएंगी। अल्लाह पर भरोसा रखो, वो बड़ा कारसाज है, यहाँ भी वो कोई ना कोई सबब बना ही देगा। सुल्ताना चुप हो गई, चुनांचे आखिरी कंगनी भी हाथ से उतर गई। सूने हाथ लेकर उसको बहुत दुख होता था, पर क्या करती, पेट भी तो आखिर किसी काम धंधे से भरना था ना। 5 महीने गुजर गए और आमदनी खर्च के मुकाबले चौथाई से भी कुछ कम रही तो सुल्ताना की परेशानी और ज्यादा बढ़ गई। खुदा बख्श भी अब सारा सारा दिन गायब रहने लगा था। सुल्ताना को इसका भी दुख था। इसमें कोई शक नहीं कि पड़ोस में उसकी दो मिलने वालियां मौजूद थी।

0: उनके साथ वो अपना वक्त काट सकती थी। हर रोज उनके यहाँ जाना और घंटों बैठे रहना उसको बुरा लगता था। चुनांचे आहिस्ता आहिस्ता उसने इन सहेलियों से मिलना जुलना भी छोड़ दिया। सारा दिन वो अपने सुनसान मकान में बैठी रहती, कभी सुपारी काटती रहती, कभी पुराने फटे कपड़ों को सीती रहती और कभी बाहर बालकनी में आकर जंगले के पास खड़ी हो जाती और सामने रेलवे रोड में खड़े और चलते इंजनों की तरह घंटों बेमतलब देखती रहती। अंबाला छावनी में जब वो रहती थी तो स्टेशन के पास ही उसका मकान था, मगर वहां उसने कभी इन चीजों को ऐसी नजरों से नहीं देखा था। अब तो कभी कभी उसके दिमाग में ये ख्याल आता कि ये जो सामने रेल की पटरियों का जाल सा बिछा है और जगह जगह से भाप और धुआं उठ रहा है, बहुत सी गाड़ियां हैं जिनको चंद मोटे मोटे इंजन इधर उधर धकेलते रहते हैं। सुल्ताना को कभी कभी ये इंजन सेठ मालूम होते थे, जो कभी कभी अंबाला में उसके यहाँ आया करते थे। खुदाबख्श से उसने कई बार कहा, देखो मेरे हाल पर रहम करो, यहाँ घर में रहा करो, मैं सारा दिन यहाँ बीमारों की तरह पड़ी रहती हूँ। मगर उसने हर बार सुल्ताना को ये कहकर तसल्ली दी, जाने मन मैं बाहर कुछ कमाने की फिक्र कर रहा हूँ, अल्लाह ने चाहा तो चंद दिनों में ही बेड़ा पार हो जाएगा। पूरे 5 महीने हो गए थे मगर अभी तक ना सुल्ताना का बेड़ा पार हुआ था ना खुदा बख्श का। मुहर्रम का महीना सिर पर आ रहा था मगर सुल्ताना के पास काले कपड़े बनवाने के लिए कुछ भी नहीं था। मुख्तार ने लेडी हिमल्टन की एक नए ढंग की कमीज बनवाई, उसकी आस्तीने काली जॉर्जेट की थी, जिसके साथ मैच करने के लिए उसके पास काली सैटन की सलवार थी जो काजल की तरह चमकती थी। अनवरी ने रेशमी जॉर्जेट की एक बड़ी उम्दा साड़ी खरीदी थी, उसने सुल्ताना से कहा था वो इसी साड़ी के नीचे सफेद बॉस्की का पेटीकोट पहनेगी क्योंकि ये नया फैशन है। इस साड़ी के साथ पहनने को अनवरी ने काली मखमल का एक जूता भी लिया था जो बड़ा नाजुक था। सुल्ताना ने जब ये तमाम चीजें देखी तो उसको इस एहसास से बहुत दुख हुआ कि वो मुहर्रम मनाने के लिए ऐसा लिबास खरीदने की हैसियत तक नहीं रखती। अनवरी और मुख्तार के पास ये लिबास देखकर जब वो घर आई तो उसका दिल बहुत दुखी था। उसे ऐसा मालूम होता था कि थोड़ा सा उसके अंदर हो गया है, घर बिल्कुल खाली था। खुदा बख्श वैसे ही हमेशा की तरह बाहर था। देर तक वो दरी पर गांव तकिया सिर के नीचे रखकर लेटी रही, पर जब उसकी गर्दन ऊंचाई की वजह से अकड़ सी गई तो उठकर बाहर बालकनी में चली गई ताकि गमगीन ख्याल को अपने दिमाग से निकाल दे। बाजार में ऐसे आदमी चलने शुरू हो गए थे जो ताक झाक करने के बाद चुपचाप घर का रुख करते हैं। ऐसे ही एक आदमी ने गर्दन ऊंची करके सुल्ताना की तरफ देखा। सुल्ताना मुस्कुरा दी और उसको भूल गई क्योंकि अब सामने पटरियों पर एक इंजन आ गया था। सुल्ताना ने गौर से उसकी तरफ देखना शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता ये ख्याल उसके दिमाग में आया कि इंजन ने भी काला लिबास पहन रखा है। ये अजीबोगरीब ख्याल दिमाग में से निकालने की खातिर जब उसने सड़क की ओर देखा तो उसे वही आदमी बैलगाड़ी के पास खड़ा नजर आया जिसने उसकी तरफ ललचाई नजरों से देखा था। सुल्ताना ने उसे हाथ से इशारा किया। उस आदमी ने इधर उधर देखा और सुल्ताना से इशारों में पूछा, किधर से आऊं? सुल्ताना ने उसे रास्ता बता दिया। वो आदमी थोड़ी देर खड़ा रहा मगर फिर बड़ी फुर्ती से ऊपर चलाया। सुल्ताना ने उसे दरी पर बैठाया। जब वो बैठ गया तो उसने बातचीत शुरू करने के लिए कहा, आप ऊपर आते डर रहे थे? वो आदमी ये सुनकर मुस्कुराया, तुम्हें कैसे मालूम हुआ? डरने की बात ही क्या थी? इस पर सुल्ताना ने कहा, मैंने ये इसलिए कहा कि आप देर तक वहीं खड़े रहे और फिर कुछ सोचकर आए। वो ये सुनकर फिर मुस्कुराया, तुम्हें गलतफहमी हुई है, मैं तो ऊपर वाले फ्लैट की तरफ देख रहा था, वहां कोई औरत खड़ी अपने मर्द को ठेंगा दिखा रही थी, मुझे ये मंजर पसंद आया, फिर बालकनी में सब्ज बल्ब रोशन हुआ, मैं कुछ देर के लिए ठहर गया। सब्ज रोशनी मुझे बहुत पसंद है, आंखों को बहुत अच्छी लगती है। ये कहकर उसने कमरे का जायजा लेना शुरू किया। फिर वो उठ खड़ा हुआ। सुल्ताना ने पूछा, आप जा रहे हैं? आदमी ने जवाब दिया, नहीं मैं तुम्हारे मकान देखना चाहता हूँ, चलो मुझे तमाम कमरे दिखाओ। चलिए। सुल्ताना ने उसको तीनों कमरे एक एक करके दिखा दिए। उस आदमी ने बिल्कुल खामोशी से उन कमरों का मुआयना किया। जब वो फिर उसी कमरे में आ गए जहां पहले बैठे थे, तो उस आदमी ने कहा, मेरा नाम शंकर है। सुल्ताना ने पहली बार गौर से शंकर की तरफ देखा। वो ठीक ठाक कद मामूली शक्ल सूरत का आदमी था, मगर उसकी आंखें सबसे अलग साफ शफाक थी। कभी कभी उसमें एक अजीब किस्म की चमक भी पैदा होती थी। गठीला और कसरती बदन था, खाकी रंग की गर्म पैंट पहने था, सफेद कमीज थी जिसका कॉलर गर्दन पर से ऊपर को उठा हुआ था। शंकर कुछ इस तरह दरी पर बैठा था कि मालूम होता था कि शंकर की बजाय सुल्ताना ग्राहक है। इस एहसास ने सुल्ताना को थोड़ा परेशान कर दिया। चुनांची उसने शंकर से कहा, फरमाइए। ये सुनकर वो लेट गया। मैं क्या फरमाऊं, तुम ही कुछ फरमाओ, तुम ही ने तो मुझे बुलाया है। सुल्ताना ये सुनकर चकरा गई, मगर इसके बावजूद उसे बेख्तियार हंसी आ गई। आप काम क्या करते हैं? शंकर ने जवाब दिया, यही जो तुम करती हो। क्या तुम क्या करती हो? मैं कुछ नहीं करती। तो मैं भी कुछ नहीं करता, सुल्ताना ने भन्ना कर कहा। ये तो कोई बात ना हुई, आप कुछ ना कुछ तो जरूर करते होंगे ना? शंकर ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, तो तुम भी तो कुछ ना कुछ जरूर करती होगी। झक मारती हूँ। तो मैं भी झक मारता हूँ। तो आओ झक मारे, मैं हाजिर हूँ, मगर झक मारने के दाम मैं कभी नहीं दिया करता। होश की दवा करो, ये लंगर खाना नहीं। तो मैं भी वॉलंटियर नहीं। सुल्ताना यहाँ रुक गई। उसने पूछा, ये वॉलंटियर क्या होते हैं? जाने तुम क्या उटपटांग बातें करते हो, बोलो रहोगे? इसी शर्त पर जो मैं पहले बता चुका हूं। सुल्ताना उठ खड़ी हुई, तो जाओ रास्ता पकड़ो। शंकर आराम से उठा, पतलून की जेबों में उसने अपने दोनों हाथ ठूंसे और जाते हुए कहा, मैं कभी कभार इस बाजार से गुजरा करता हूँ, जब भी तुम्हें जरूरत हो बुला लेना, मैं बहुत काम का आदमी हूँ। शंकर चला गया और सुल्ताना काले लिबास को भूलकर देर तक उसके बारे में सोचती रही। इस आदमी की बातों ने उसके दुख को बहुत हल्का कर दिया था। शाम को जब खुदा बख्श आया तो सुल्ताना ने उससे पूछा, तुम आज सारा दिन किधर गायब रहे? पुराने किले के पास से आ रहा हूँ, वहाँ एक बुजुर्ग कुछ दिनों से ठहरे हुए हैं, उन्हीं के पास हर रोज जाता हूँ कि हमारे दिन फिर जाएं। कुछ उन्होंने तुमसे कहा? नहीं, अभी वो मेहरबान नहीं हुए, पर सुल्ताना मैं जो उनके खिदमत कर रहा हूँ वो अकारत कभी नहीं जाएगी। अल्लाह का फजल अगर शामिल हाल रहा तो जरूर वारे न्यारे हो जाएंगे। सुल्ताना के दिमाग में मुहर्रम मनाने का ख्याल समाया हुआ था। खुदा बख्श से रोनी आवाज में कहने लगी, सारा सारा दिन बाहर गायब रहते हो, मुहर्रम सिर पर आ गया है, कुछ तुमने इसकी फिक्र की कि मुझे काले कपड़े चाहिए? घर में फूटी कौड़ी नहीं, कंगनियां थी सो वो एक एक करके बिक गई, तुम ही बताओ क्या होगा? यूं फकीरों के पीछे कब तक मारे मारे फिरा करोगे? मुझे तो ऐसा दिखाई देता है कि यहाँ दिल्ली में खुदा ने हमसे मुंह मोड़ लिया है। मेरी सुनो तो आप काम शुरू कर दो, कुछ तो सहारा हो ही जाएगा। खुदा बख्श तरी पर लेट गया और कहने लगा, पर ये काम शुरू होने के लिए भी तो थोड़ा कुछ सरमाया चाहिए। सुल्ताना ने बात काट कर कहा, तुम खुदा के लिए कुछ करो, चोरी करो या डाका मारो, पर मुझे एक सलवार का कपड़ा जरूर ला दो। मेरे पास सफेद बॉस्की की कमीज है, उसको मैं काला करवा लूंगी। सफेद निनॉन का एक दुपट्टा भी मेरे पास है, वही जो तुमने मुझे दिवाली पर लाकर दिया था, ये भी कमीज के साथ रंगवा लिया जाएगा। सिर्फ सलवार की कसर है सो वो तुम किसी ना किसी तरह पैदा कर दो। देखो तुम्हें मेरी जान की कसम है, किसी ना किसी तरह जरूर ला दो। मेरा मरा मुंह देखो अगर ना लाओ। मैं कहां से लाऊं? अफीम खाने के लिए तो मेरे पास पैसे नहीं। कुछ भी करो, मगर मुझे 4.5 गज काली साटन ला दो। तुम अगर चाहो तो जरूर इतने पैसा पैदा कर सकते हो। जंग से पहले ये साटन 12-14 आने गज मिल जाती थी, अब 1.25 रुपए गज के हिसाब से मिलती है। 4.5 गजों पर कितने कितने रुपए खर्च हो जाएंगे? अब तुम कहती हो तो मैं हीला करूंगा। ये कहकर खुदा बख्श उठा, चलो अब इन बातों को भूल जाओ, मैं होटल से खाना ले आऊं। होटल से खाना आया, दोनों ने मिलकर निपटाया और सो गए। सुबह हुई, खुदा बख्श पुराने किले वाले फकीर के पास चला गया और सुल्ताना अकेली रह गई। कुछ देर लेटी रही, कुछ देर सोती रही, इधर उधर कमरों में टहलती रही। दोपहर का खाना खाने के बाद उसने अपना सफेद निनोन का दुपट्टा और सफेद बॉस्की की कमीज निकाली और नीचे लॉन्ड्री वाले को रंगने के लिए दे आई। कपड़े धोने के अलावा वहां रंगने का काम भी किया जाता था। ये काम करने के बाद उसने वापस आकर फिल्मों की किताब पढ़ी, जिसमें उसकी देखी हुई फिल्मों की कहानी और गीत छपे हुए थे। ये किताब पढ़ते पढ़ते वो सो गई। जब उठी तो 4 बज चुके थे, क्योंकि धूप आंगन में मोरी के पास पहुंच चुकी थी। नहा धोकर फ्री हुई तो गर्म चादर ओढ़कर बालकनी में आ खड़ी हुई। तकरीबन 1 घंटा सुल्ताना बालकनी में खड़ी रही। अब शाम हो गई थी, बत्तियां रोशन हो रही थी, नीचे सड़क पर रोशन के आसार नजर आने लगे थे। सर्दी थोड़ी सी ज्यादा हो गई थी, मगर सुल्ताना को ये नागवार महसूस ना हुई। वो सड़क पर आते जाते तांगों और मोटरों की तरफ एक अरसे से देख रही थी। अचानक उसे शंकर नजर आया। मकान के नीचे पहुंचकर उसने गर्दन ऊंची की और सुल्ताना की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। सुल्ताना ने गैर इरादी तौर पर हाथ का इशारा किया और उसे ऊपर बुलवा लिया। शंकर ऊपर आया तो सुल्ताना बहुत परेशान हुई कि उससे क्या कहे। दरअसल उसने ऐसे ही बिना सोचे समझे इशारा कर दिया था। शंकर भी ऊपर चला आया, जैसे उसका अपना ही घर हो। पहले दिन की तरह वो गांव तकिया सिर के नीचे रखकर लेट गया। जब सुल्ताना ने देर तक उससे कोई बात ना की तो उसने कहा, तुम मुझे 100 दफा बुला सकती हो और 100 दफा ही कह सकती हो कि चले जाओ, मैं ऐसी बातों पर कभी नाराज नहीं हुआ करता। नहीं, बैठो, तुम्हें जाने को कौन कहता है? शंकर इस पर मुस्कुरा दिया। तो मेरी शर्तें मंजूर हैं?
1: कैसी शर्तें?
0: सुल्ताना ने हंसकर कहा, क्या निकाह कर रहे हो मुझसे?
1: निकाह और शादी कैसी?
0: ना तुम उम्र भर किसी से निकाह करोगी ना मैं। ये रस्में हम लोगों के लिए नहीं, छोड़ दो इन फिजूल की बातों को, कोई काम की बात करो।
1: बोलो, क्या बात करूं?
0: तुम औरत हो, कोई ऐसी बात शुरू करो जिससे दो घड़ी दिल पहल जाए। इस दुनिया में सिर्फ दुकानदारी नहीं, कुछ और भी है।
1: साफ साफ कहो, तुम मुझसे क्या चाहते हो?
0: जो दूसरे चाहते हैं। शंकर उठकर बैठ गया।
1: तुम में और दूसरों में फिर क्या फर्क रहा?
0: तुम में और मुझ में कोई फर्क नहीं, उनमें और मुझ में जमीन आसमान का फर्क है। ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जो पूछनी नहीं चाहिए।
1: सुल्ताना ने थोड़ी देर तक शंकर की इस बात को समझने की कोशिश की, फिर कहा, मैं समझ गई हूँ,
0: तो कहो क्या इरादा है?
1: तुम जीते मैं हारी, पर मैं कहती हूँ आज तक किसी ने ऐसी बात कबूल ना की होगी।
0: तुम गलत कहती हो, इस मोहल्ले में तुम्हें ऐसी सादा लो औरतें भी मिल जाएंगी जो कभी यकीन नहीं करेगी कि औरत ऐसी जिल्लत कबूल कर सकती है जो तुम बगैर किसी एहसान के कबूल करती रही हो। लेकिन इनके ना यकीन करने के बावजूद तुम हजारों की तादाद में हो। तुम्हारा नाम सुल्ताना है ना?
1: हाँ, सुल्ताना ही है।
0: शंकर उठ खड़ा हुआ और हंसने लगा, मेरा नाम शंकर है।
1: ये नाम भी उटपटांग होते हैं।
0: चलो आओ अंदर चले। शंकर और सुल्ताना दरी वाले कमरे में वापस आए तो दोनों हंस रहे थे, न जाने किस बात पर। जब शंकर जाने लगा तो सुल्ताना ने कहा,
1: शंकर मेरी एक बात मानोगे?
0: शंकर ने जवाब में कहा, पहले बात बताओ। सुल्ताना को झेप सी गई।
1: तुम कहोगे कि मैं दाम वसूल करना चाहती हूँ, मगर
0: कहो कहो, रुक क्यों गई हो? सुल्ताना ने हिम्मत से काम लेकर कहा,
1: बात यह है कि मुहर्रम आ रहा है, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि काली सलवार बनवा सकूं। यहाँ के सारे बखेड़े तो मुझसे सुन ही चुके हो।
0: कमीज और दुपट्टा मेरे पास मौजूद है जो मैंने आज रंगवाने के लिए दे दिया है। शंकर ने यह सुनकर कहा,
1: तो तुम चाहती हो कि मैं

0: मैंने तुमसे बूंदे मांगे हैं, इनकी कीमत नहीं पूछी। बोलो, देती हो?
1: ले लो।
0: ये कहकर सुल्ताना ने बूंदे उतारकर शंकर को दे दिए। सुल्ताना को कतई यकीन नहीं था कि शंकर अपना वादा पूरा करेगा, मगर 8 रोज के बाद मुहर्रम की पहली तारीख को सुबह 9 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। सुल्ताना ने दरवाजा खोला तो शंकर खड़ा था। अखबार में लिपटी हुई चीज उसने सुल्ताना को दी और कहा, साजन की काली सलवार है, देख लेना, शायद लंबी हो। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। शंकर सलवार देकर चला गया और कोई बात उसने सुल्ताना से ना की। उसकी पतलून में शिकने पड़ी हुई थी, बाल बिखरे हुए थे। ऐसा महसूस होता था कि अभी अभी सोकर उठा है और सीधा इधर ही चलाया है। सुल्ताना ने कागज खोला। साजन की काली सलवार थी, ऐसी ही जैसी वो अनवरी के पास देख कर आई थी। सुल्ताना बहुत खुश हुई। बूंदों और इस सौदे का जो अफसोस उसे हुआ था, इस सलवार ने और शंकर के वादे निभाने ने उसे दूर कर दिया था। दोपहर को वो नीचे लॉन्ड्री वाले से अपनी रंगी हुई कमीज और दुपट्टा लेकर आई। तीनों काले कपड़े जब उसने पहन लिए तो दरवाजे पर दस्तक हुई। सुल्ताना ने दरवाजा खोला तो अनवरी दाखिल हुई। उसने सुल्ताना के तीनों कपड़ों की तरफ देखा और कहा, कमीज और दुपट्टा तो रंगा हुआ महसूस होता है, पर हाँ, ये सलवार नहीं है। कब बनवाई? सुल्ताना ने जवाब दिया, आज ही दर्जी से लाई हूँ। ये कहते हुए उसकी नजरें अनवरी के कानों पर पड़ी। ये बूंदे तुमने कहाँ से लिए हैं? अनवरी ने जवाब दिया, आज ही मंगवाए हैं। इसके बाद उनमें कोई बात नहीं हुई।

0: खैनी गुटका जर्दा पान ले रहा है सबकी जान। उठता है जब धुआं सिगरेट का, मंजर होता है वो मौत का। कैंसर की बीमारी लाता, फेफड़ों में धुआं भर जाता। परिवार वाले होते चिंतित, नहीं लगता नशे बिना कहीं चित।
1: समय रहते नशे को खत्म कर दो, वरना समय आने पर नशा तुम्हें खत्म कर देगा। रेडियो मानव रचना 107.8 देता है ये संदेश, नशे से रहे दूर, बनाए स्वस्थ देश।
2: प्लीज, ऐसा सिनेरियोस कुछ कुछ इंडस्ट्री में दिखाई देता है, जो सब इंडस्ट्रीज हैं, जिसमें कुछ बिग प्लेयर्स हैं, सिर्फ उनके ऊपर निर्भरता है और उनकी लगभग सिमिलर फी होती है, सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, तो ज्यादा विकल्प बच नहीं पाते हैं। हालांकि नए नए स्टार्टअप जो हैं वो आ रहे हैं। मैं ये भी कहूंगा कि हमारे बीच में भी कुछ गैप्स हैं, हमें भी बहुत सारी चीजों के बारे में नहीं पता है। एंड देन उसके बाद लास्ट इसमें चैलेंज जो आता है वो है रेगुलेटरी बैलेंस। एक बहुत क्रूशियल पॉइंट हो जाता है ये, अगर हम कंज्यूमर्स की बात करें तो उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना, उनके फाइनेंसिस को प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, ये है हमारी इंडस्ट्री फिनटेक। अभी उम्मीद कर रहा हूं यहां का 360 डिग्रीज एक पर्सपेक्टिव आपको मैं दे चुका हूं। अब लेते हैं म्यूजिकल ब्रेक और उसके बाद फाइनली हम बात करेंगे आज की कंपनी की। कहीं जाइएगा मत, जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं हूं सागर और शो है आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। फील गुड, फील लाइव।
3: Thank you.

आशा करता हूँ भाई इंडस्ट्री को आप समझ पाए हैं। बिना किसी देरी के आपको बताते हैं कि आज की जो कंपनी है उसका नाम है जार। जार एक इंडियन फिनटेक स्टार्टअप है जो एक भारतीय के लिए मतलब कोई भी चीज जो बहुत एक्सट्रीमली ऑर्डिनरी है उसमें एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखी उन्होंने। हमारी एक आदत होती है, अ हैबिट ऑफ सेविंग स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मनी। छोटे छोटे अमाउंट होते हैं उनको सेव करने की, मतलब पहले होता था गुल्लक रखते थे या घर में ऐसे सहेज कर रखते थे। जार एग्जैक्टली ऐसा ही काम करता है। सो जार इज अ फाइनेंशियल फिटनेस प्लेटफॉर्म जो लोगों को ना ये एक पावर देता है कि आप छोटा छोटा अमाउंट जो है सेव कर सकते हैं, 10 रुपए तक भी, ठीक है, और ऑटोमेटिकली उसी अमाउंट को आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि ये प्लेटफॉर्म बहुत फेमस है, और ये फेमस इसलिए हुआ क्योंकि एक साइकोलॉजिकल बैरियर है जो बहुत सारे इंडियंस के पास है जिसको इसने ब्रेक किया कि आई वांट टू सेव मनी बट आई डोंट हैव इनफ मनी, कि मेरे पास, मैं पैसा बचाना तो चाहता हूं, इन्वेस्ट तो करना चाहता हूं, लेकिन मैं करूं कैसे, मेरा पैसा ही नहीं है जो मैं इन्वेस्ट करूं। तो जार ने यहां पर सोल्यूशन दिया है कि भैया देखो तुम्हें बहुत ज्यादा भारी भरकम अमाउंट की जरूरत नहीं है, आपको केवल एक आदत की जरूरत है। तो ये है वो कंपनी जिसने लिटरली एक ऐसी प्रॉब्लम को पकड़ा भैया, जिसने मतलब हर एक इंडियन ने रिलेट किया होगा इस चीज से, क्या यार पैसे तो मैं भी बचाना चाहता हूं, लेकिन 10 रुपए से अगर कोई बोले कि आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो, ऑब्वियसली यार इट मेक्स सेंस, सो मच ऑफ सेंस, एग्जैक्टली वो इस कंपनी ने किया। तो ये है हमारी आज की कंपनी। फिलहाल लेंगे एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो में आगे बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक। उम्मीद कर रहा हूँ आपको गाने पसंद आए। फिलहाल इसी नोट पर शो को आगे लेकर चलेंगे। मैं हूँ आरजे सागर, शो चल रहा है पर आत्मनिर्भर भारत। तो हम केस स्टडी लेकर के आए हैं जार की। कंपनी स्टार्ट हुई 2021 में, ठीक है। ये उस टाइम की बात हो रही है जब डिजिटल ट्रांजेक्शन्स अपने बूम पर आ रहे थे, यूपीआई बूम पर आ रहा था। लॉकडाउन के जस्ट बाद की बात है भैया। उस टाइम पर हम सबको इतना तो समझ में आ गया था कि डिजिटली सब कुछ हो सकता है, और इस कंपनी को भी वो चीज समझ में आ गई। तो वहां पर इस कंपनी के फाउंडर्स ने ना एक पैटर्न नोटिस किया कि लोग ना डिजिटली हर रोज पैसे खर्च कर रहे हैं, बट सेविंग की हैबिट अगर डिजिटली डाल दी जाए तो कितना अमेजिंग होगा ना। ट्रेडिशनली जो इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म हुआ करते थे वो बहुत ही इंटिमिडेटिंग साउंड करते थे, क्योंकि बहुत सारी चीजें उसमें इन्वॉल्व होती है, स्टॉक्स, एसआईपीज, म्यूचुअल फंड, मार्केट रिस्क। अच्छा, एक सिंपल सी थ्योरी समझिए। आज आप किसी इंसान से बोलिए, यार तुम ना एसआईपी किया करो, हर महीने ना पैसे कटेंगे तुम्हारे अकाउंट से। आप जैसे ही ये बात करेंगे ना, वो इंसान सामने से काउंटर करेगा, यार इतने तो पैसे ही नहीं होते। लेकिन अगर आप बोलेंगे तुम्हें मात्र 100 रुपए महीने के तुम्हारे खाते से कटेंगे और तुम्हारी एसआईपी हो जाएगी, वो इंसान इंस्टेंटली उसका रिएक्शन चेंज हो जाएगा कि हैं 100 रुपए में हो सकता है। एग्जैक्टली ये माइंडसेट जो है ये समझ में आया इस कंपनी को। सो इन फाउंडर्स ने खुद से ये सवाल पूछा कि ऐसा हो सकता है कि सेविंग ऑटोमेटिकली हो जाए, जहां पर लोगों को ये दर्द भी महसूस ना हो, पेन भी फील ना हो कि हम अपनी मनी को कहीं रख रहे हैं और सेविंग भी हो जाए। एंड उस सवाल का जवाब जो है वो मिला जार के रूप में, जो एक कंपनी है जो इन्होंने स्टार्ट करी 2021 में। इनिशियली जो आइडिया था वो इंस्पायर्ड था ओल्ड स्कूल इंडियन हैबिट से ही, कि आप कॉइन सिक्के जो बचा करके रखते हैं फिजिकल जार से या पिगी बैंक में, तो उसी को डिजिटल किया इन्होंने, और इसीलिए इस कंपनी का नाम रखा गया जार, डिजिटल जार इनसाइड अ स्मार्टफोन। एंड सो अमेजिंग यार, आई मीन बहुत ही प्यारा सा आइडिया, और लिटरली बहुत अच्छा कर रही है कंपनी। तो देखिए ऐसा भी होता है भैया, फिनटेक की बात कर रहे हैं, फिनटेक में इतनी ज्यादा क्लटर्ड मार्केट है, उसमें भी एक गैप नजर आ गया और उसको सोल्यूशन भी दे दिया, और लिटरली अच्छा भी कर रही है कंपनी। पावर ऑफ इनोवेशन। लेकिन एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो में आगे बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइफ।

आई होप यू एंजॉयड दिस म्यूजिकल वाइब. फिलहाल इसे नोट पर शो को आगे बढ़ाते हैं. आज की कंपनी जार. जार के फाउंडर्स की बात करेंगे. दो फाउंडर हैं, एक है मिसबाह अशरफ, दूसरा है निश्चय एजी. मिसबाह अशरफ के हम यहाँ पर होम टाउन की बात करेंगे. बिहार से आते हैं, ठीक है. मध्यवर्गीय परिवार में बड़े हुए हैं, फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स देखे हैं जो हम सब मध्यवर्गीय लोगों ने देखे हुए हैं. आप शायद रिलेट कर पा रहे होंगे. अब यहाँ पर इनकी एजुकेशन की बात करेंगे तो पब्लिक इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा नहीं है इनके एजुकेशन के रिगार्डिंग. बट बिफोर जार इन्होंने अच्छा खासा जो है एक एक्सपीरियंस गेन किया है, जहाँ पर प्रोडक्ट एंड ग्रोथ रोल्स में इन्होंने अच्छा खासा टाइम लिया है. स्टार्टअप्स को बिल्ड किया है, एक कंपनी भी स्टार्ट करी थी जिसका नाम था मार्स प्ले, ठीक है. एंड कंज्यूमर इंटरनेट प्रोडक्ट्स में बहुत एक्टिव थे, बहुत एक्टिवली डीपली इन्वॉल्व थे. तो कंज्यूमर बिहेवियर को समझते हैं. सो ये एक कोई स्ट्रेट स्टोरी नहीं हो सकती है. ये मतलब बहुत सारे एक्सपीरियंसेस के बाद जाकर के, मुश्किलों के बाद, काफ़ी सारे हालातों के बाद जाकर के एक ऐसे मुकाम पर ये पहुंचे जिसके बाद इनको जो है फॉर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया में भी इनके काम को रिकॉग्नाइज किया गया फॉर दिस कंपनी जार. तो ये कहानी है मिसबाह अशरफ की. सेकेंड को फाउंडर इज निश्चय जी, ठीक है. निश्चय ने एक कन्वेंशनल रूट फॉलो किया, उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी, देन बेंगलोर शिफ्ट हुए, उसके बाद आईटी इंडस्ट्री में एंटर हुए, ठीक है, जो उनका कैंपस प्लेसमेंट था उसके थ्रू. उसके बाद फिर कुछ सालों तक काम किया, उसके बाद फिर लगा कि नहीं यार मज़ा नहीं आ रहा, कुछ ना एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं, ठीक है. देन उसके बाद उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आए, लेकिन उसके पहले मल्टीपल डोमेन्स इन्होंने जो है एक्सप्लोर किए, इंजीनियरिंग, ऑपरेशंस, बिजनेस फंक्शंस, ठीक है. प्रीवियस रोल्स की अगर बात करें, आईटी एंड कंसल्टिंग में काम कर चुके हैं, प्रोडक्ट एंड बिजनेस ऑपरेशंस में काम कर चुके हैं, ठीक है. लीडरशिप पोजीशंस पे रह चुके हैं स्टार्टअप एनवायरनमेंट में, ठीक है. जैसे कि मोबिलिटी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इन्होंने बहुत अपना टाइम इन्वेस्ट किया है, बहुत अच्छा खासा वहाँ पर एक्सपीरियंस गेन किया है. तो ये हैं जी दो लोग. एक है मिसबाह जो प्रोडक्ट फोकस्ड हैं, एक्सपेरिमेंटल हैं, स्टार्टअप ओरिएंटेड हैं, जिन्होंने अनुभव लिया अच्छा खासा, अपने परिवार की दिक्कतों को भी देखा और फिर बाकी परिवारों की दिक्कतों को देख करके उन्होंने एक सोल्यूशन ढूंढा. दूसरे हैं निश्चय, प्रोसेस फोकस्ड, ऑपरेशनल थिंकर. ऐसे करके ये कंपनी यहाँ तक पहुंची है और इसी कॉम्बिनेशन की वजह से ये जो स्टार्टअप है इतना पावरफुल बन पाया. That's how it works. लेते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक. आप बताइए आपका क्या पॉइंट है इसके ऊपर. 8017810078 पे फिलहाल मजा लीजिए इन गानों का और जुड़ रही हमारे साथ. फील गुड, फील लाइफ.

वेलकम बैक। उम्मीद कर रहा हूँ गाने पसंद आए, शो को आगे बढ़ाएंगे। अभी तक जितना आपने केस स्टडी सुनी है, जितना आपने पूरी इस कंपनी को समझाया, आपको समझ में आ रहा होगा कि इसकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है गोल्ड। पर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जार की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ गोल्ड नहीं है। द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ दिस कंपनी इज बिहेवियरल साइकोलॉजी, माइक्रो सेविंग थ्रू ऑटोमेशन। अगर किसी इंसान ने 98 रुपीज पे किए हैं रिचार्ज के लिए, तो वहां पर जार ये कर सकता है कि 2 रुपए ऑटोमेटिकली काट ले, उस फिगर को राउंड अप कर दिया और 2 रुपए डिजिटल गोल्ड सेविंग्स में डाल दिया। अब सोचिए कितना इजी आ रही है। ये भी तो हम देखते हैं ना कि अगर आपको किसी कंपनी का रिचार्ज करना है और आप किसी पेमेंट गेटवे के थ्रू कर रहे हैं, तो 2-3 रुपए तो वो भी अपनी फीस लेता है। एग्जैक्टली यहां पर एक कंपनी बोल रही है कि काम करो, 2 रुपए हमें दे दो, हम क्या करेंगे, इन्वेस्ट कर देंगे। कितना ईजी है, बिल्कुल पेनफुल नहीं है भाई, लेकिन बेयरली नोटिस होता है। बट कितना बड़ा, कितना इंटरेस्टिंग मूव है। दैट इज द बिगेस्ट यूएसपी ऑफ दिस कंपनी। सो फार अबाउट दिस, आई मीन देयर आर सो मेनी फैक्टर्स जो आप इन्वॉल्व कर सकते हैं, बट ट्रस्ट मी, दिस इज द मोस्ट अमेजिंग यूएसपी आई हैव एवर हर्ड ऑफ। या मैंने कभी इस शो में बताई होगी कि ड्राइवर से थोड़ी बात करते हैं। इंडिया का इमोशनल कनेक्शन विद गोल्ड, आपको पता है बहुत अच्छे से, गोल्ड इक्वल्स टू सेफ्टी प्लस सिक्योरिटी प्लस कल्चर। हमारे परिवारों में इसलिए गोल्ड को ज्यादा खरीदा जाता है क्योंकि इंडियंस जो है गोल्ड के ऊपर ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, मोर देन एनी अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो जार को ये साइकोलॉजी समझ में आई। दूसरा, लो एंट्री बैरियर। ठीक है, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर 500 रुपए 1000 रुपए आपको लेकर के आने होते हैं। जार बोलता 10 रुपए ले आओ, क्या फर्क पड़ता है, लाओ भाई 10 रुपए लाओ, 15 रुपए लाओ। कितना इजी एंट्री पॉइंट मिल गया कंज्यूमर को। उसके थर्ड पॉइंट आता है यूपीआई इकोसिस्टम ग्रोथ। भारत में डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेजी से ग्रो किया, बट अगर वो ग्रो ना करता तो डेफिनेटली ये कंपनी स्ट्रगल कर रही होती, और इस कंपनी के साथ साथ और ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो स्ट्रगल कर रही होती। लेकिन क्योंकि डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बना, यूपीआई ने बहुत सारी ट्रांजेक्शन को पॉसिबल कर दिया विदाउट एनी ऑब्स्टेकल, जिसका फायदा इन कंपनीज को मिला डेफिनेटली। दैट इज अनदर की ड्राइवर ऑफ दिस कंपनी। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। वक्त एक और म्यूजिकल ब्रेक का, सो स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइव।

आई होप यू एंजॉयड द म्यूजिकल वाइब। फिलहाल इसी नोट पर अपने शो को हम आगे बढ़ाएंगे। तो जार के यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, जार एक बहुत प्यारी सी कंपनी है, बहुत अच्छा काम कर रही है, और किस तरीके से एक आदत को इन्होंने बिजनेस मॉडल में कन्वर्ट किया।

तो यहाँ पर कुछ कुछ इंटरेस्टिंग लेसन हैं जो आपको जरूर सीखने चाहिए कि इस कंपनी ने कोई नई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करी, बट लोगों को ऑलरेडी पता था कि उन्हें सेव करना चाहिए। जार ने सिंपली उस ऑब्स्टिकल को, उस फ्रिक्शन को हटा दिया, उस बैरियर को हटा दिया जो उनके अंदर था, जो उनको रोक रहा था। अगला पॉइंट है कि कोई भी बड़े से बड़ा स्टार्टअप जो है वो हर बार उसको बड़ा बनाने के लिए नए बिहेवियर को डेवलप करने की जरूरत नहीं होती, समटाइम्स कुछ एग्जिस्टिंग बिहेवियर्स को रीडिजाइन करना होता है। ऊबर ने टैक्सीज इन्वेंट नहीं करी थी, जोमैटो ने फूड इन्वेंट नहीं किया था, सिमिलरली जार ने सेविंग्स इन्वेंट नहीं करी, आदत बदली, बैरियर्स को हटाया, एक्सेसिबिलिटी दे दी, एंट्री बैरियर को हटा दिया। सो दीज आर द थिंग्स जिसका फल जो है इस कंपनी को मिला है। तो ये कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, कंपनी का नाम है जार। लेते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो कंटिन्यू करेंगे। स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइव।

फील गुड फील लाइव। तो भाई देखिए, आज अब इस शो को हम यहाँ पर कंक्लूड करना चाहेंगे। जार की स्टडी हम आपके लिए लेकर के आए। हर स्टार्टअप को किसी बड़ी टेक्नोलॉजी से शुरू नहीं करना होता है बाबू मोशाय। कभी कभी एक स्टार्टअप सिर्फ एक आदत को समझने से स्टार्ट हो सकता है। तो छोटा सा सवाल उठा कि लोग पैसे बचाना क्यों नहीं शुरू कर पाते। उस सवाल ने एक डिजिटल पिगी बैंक बना दिया, जिसका नाम दिया गया जार। और शायद जिंदगी का भी यही फॉर्मूला है। बड़ा पैसा एक दिन में नहीं बनता, लेकिन छोटी छोटी आदतों से एक दिन फर्क जरूर आता है। फर्क बहुत बड़ा हो जाता है और हर चीज में लागू होता है। थ्योरी है, आपको लग रहा है कि आपको अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्म करनी है तो आप एक दिन में जाकर के उसको ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाएंगे। बस आपको छोटी छोटी आदतों को अडॉप्ट करना पड़ेगा। खाने की आदतें, सोने की आदतें, तो वो जो छोटी छोटी आदतें आपके अंदर चेंज ला रही होंगी ना, उसकी वजह से फिर एक दिन ऐसा होगा कि आपकी बॉडी इतनी अच्छी बन चुकी होगी जो भी आपने ख्वाब देखा है उस तरफ। तो ये है हमारी आज की कंपनी। आज आपको शो कैसा लगा मुझे बताइए जरा 8010781078 पर। फिलहाल इसी नोट पर मैं चलता हूं, आपसे इजाजत लूंगा, फिर लौटूंगा लेकर एक और शो। अब मुलाकात होगी हमारी अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए, खैरियत से रहिए। कुछ स्टार्ट करना है तो कर दीजिए, किसी बड़े मूवमेंट का वेट मत करिए। छोटी छोटी चीजों को ऑब्जर्व करिए एंड सिंपल गो फॉर इट। चलता हूं, दिस इज आरजे सागर साइनिंग।

ये इतिहास की गौरव गाथा कला शिल्प की छवि मनोहर है। अतीत के उम्दा तजुर्बों का भरा हुआ सरोवर है ये हमारे देश की धरोहर, इन्हें सहेजना हमारी जरूरत है। तो आइए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के संग लेक वादा, अपने देश की धरोहर को बचाएंगे और अपने देश को सम्मान दिलाएंगे।

जिन फकीरों में, जिन परंपरा में इस तरह के विचार चलते, हर शिष्य अपने ढंग से धन्यवाद देता है जब ज्ञान को उपलब्ध होता है। कभी कभी तो बड़ी अजीब घटनाएं घट जाती। एक युवक बोकोजू अपने गुरु के पास वर्षों रहा ध्यान की समाधि की तलाश, और जब भी वो कुछ खबर लेके जाता कि बड़ा अनुभव हुआ कि गुरु उस पे चांटा रसीद कर देता। ये पहले तो बहुत चौंकता था, फिर समझने लगा, औरों से पूछा, बुजुर्गों से पूछा जो पहले से ऐसे गुरु के चांटे खाते रहे थे, उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि उसकी बड़ी कृपा है, वो मारते ही तब है जब उसकी कृपा होती, किसी पे नहीं तो वो मारते ही नहीं, फिजूल पे तो वो खर्चे ही क्यों करे, एक चांटा भी क्यों खर्च करे, तुम तो उसकी बड़ी कृपा है, और वो मारता है इसलिए कि तुम जो भी ले जाते हो वो अभी सच नहीं है, काल्पनिक है। कभी वो पहुंच जाता कि बड़े प्रकाश का अनुभव हुआ गुरुदेव और एक चांटा, कि कुंडलनी जग गई गुरुदेव और एक चांटा, कि चक्र खुलने लगे और वो चांटा, वो जो भी अनुभव ले जाता और चांटा खाता, तब तो उसे भी समझ में आने लगा कि बात तो सब ये सब तो काल्पनिक जाल ही है। जहां तक किसी चीज का अनुभव हो रहा है वहां तक अनुभव हो ही नहीं रहा, क्योंकि जो भी अनुभव हो रहा है वो तुमसे अलग है। कुंडलनी जगी तो तुम तो देखने वाले हो, तुम तो कुंडलनी नहीं हो, वो जो देख रहा है भीतर की कुंडलनी जग रही वो तो कुंडली नहीं हो सकता ना, कुंडली तो विषय हो गई। जिसने देखा कि भीतर तीसरी आंख खुलने लगी वो तो तीसरी आंख से भी उतना ही दूर हो गया जितनी इन दो आंखों से दूर है, वो तीसरी आंख भी अलग हो गई। जिसने देखा कि भीतर कमल खिलने लगा वो देखने वाला तो कमल नहीं हो सकता ना, वो देखने वाला तो पार और पार और पार, उसका तो पता तब चलता है जब न कमल खुलते न प्रकाश होता न कुंडलनी जगती न चक्र घूमते, कुछ भी नहीं होता, सन्नाटा छा जाता है, अनुभव में कुछ आता ही नहीं, सिर्फ वही बच जाता है साक्षी, उस शून्य का साक्षी रह जाता है। ऐसा कहते हैं 20 साल तक बोकुजू ने चांटे खाए, और आखिरी बार जब वो आया तो पता है कैसे उसने धन्यवाद दिया, आके एक चांटा अपने गुरु को जड़ दिया, गुरु खूब हंसा, कहते हैं गुरु लोटा प्रसन्नता में लौटा, उसने कहा तो हो गया आज तो, धन्यवाद कैसा होगा कहना मुश्किल है। ये ठीक धन्यवाद था 20 साल चांटे खाने के बाद, आज कुछ कहने को था भी नहीं। जिन परंपरा अनूठी है, फकीरों की सारी परंपराएं अनूठी। मैं एक जिन फकीर के संस्मरण पढ़ रहा था, वो फकीर अमेरिका गया हुआ था और वहां एक हिंदू सन्यासी से निमंत्रण मिला कि मुझे मिलने आओ। पढ़ के मुझे ऐसा लगा कि हिंदू सन्यासी और कोई नहीं, बाबा मुक्तानंद होने चाहिए। नाम उसने नहीं लिखा है लेकिन हुलिया और ढंग जो वर्णन किया है वो मुक्तानंद का, और ये भी लिखा कि वो अंग्रेजी नहीं बोलते, मुक्तानंद ने बुलाया होगा, निमंत्रण दिया फकीर को आने को। फकीर आया तो मुक्तानंद बैठे एक ऊंचे सिंहासन पर और उसके नीचे एक आसनी बिछा दी फकीर के लिए। मुझे लगा कि मुक्तानंद ही होने चाहिए क्योंकि मेरे साथ भी उन्होंने यही किया, मुझे भी बहुत निमंत्रण दे देकर बुलाया, और जब मैं गया तो वो एक आसन पर बैठे और एक आसनी नीचे रख दी उन्होंने बैठने के लिए। फकीर बैठ गया, मुक्तानंद ने कुछ मिठाई फकीर को भेंट की, तो फकीर के साथ एक शिष्य आया था, उसने कहा कि नहीं वो मिठाई नहीं लेंगे, उन्हें डायबिटीज है। तो मुक्तानंद ने कहा कि डायबिटीज तो 3 मील सुबह पैदल चलो, आसन व्यायाम करो तो ठीक हो जाएगी। अब ये बिल्कुल अंधेपन का सबूत है क्योंकि आदमी जो सामने बैठा है वो परम दशा में, उसको ये बताना कि 3 मील पैदल चलो, आसन व्यायाम करो, योगासन सीख लो, मूढ़ता का लक्षण है। वो फकीर हंसा, उसने कहा डायबिटीज बड़ी प्यारी है, भगवान की देन, ये सब अनुवाद किया जा रहा है, एक मुक्तानंद की शिष्या अनुवाद कर रही है, मुक्तानंद हिंदी में बोल रहे हैं अंग्रेजी में अनुवाद किया जा रहा है, और वो जो फकीर अंग्रेजी में बोल रहा है वो हिंदी में अनुवाद किया जा रहा है। तब मुक्तानंद ने कहा कोई जिज्ञासा, अभी तो उसको बुलाया खुद, अब उससे पूछते हैं जिज्ञासा, कुछ पूछो, कोई प्रश्न वगैरह हो तो वो हल कर दे। तो उस फकीर ने जैन ढंग से कहा कि ईश्वर है या नहीं, अगर कहा है तो एक तमाचा मारूंगा, और अगर कहा नहीं है तो
तो भी एक तमाचा मारूंगा। बोलो। वो जो अनुवाद कर रही थी महिला वो तो बहुत घबरा गई कि ये कोई बातचीत, तो अगर कहा है तो एक तमाचा मारूंगा, अगर कहा नहीं है तो भी एक तमाचा मारूंगा, बोलो। तो वो महिला तो थोड़ी घबराई कि इसका अनुवाद करना कि नहीं, और उसने भी चौंक के देखा कि ये बात क्या है। उस फकीर ने कहा अनुवाद कर नहीं तो तू नाहक पिटेगी। तो घबरा के उसने अनुवाद कर दिया। जब ये अनुवाद मुक्तानंद ने सुना तो वो तो बहुत घबरा गया कि ये कौन सी तत्व चर्चा है। तो उन्होंने कहा आप कोई दार्शनिक नहीं मालूम होते, ये कौन सी तत्व चर्चा है, मगर ये तत्व चर्चा है। जैन फकीर ये कह रहा है कि हां कहो तो गलत, ना कहो तो गलत, क्योंकि हां कहो तो द्वैत आ गया, ना कहो तो द्वैत आ गया। दोनों हालत में चांटा मारूंगा, अगर हां कहा तो चांटा मारूंगा, ना कहा तो चांटा मारूंगा। वो ये कह रहा है कि दोनों हालत में तुमने गलती की, क्योंकि परमात्मा के संबंध ना तो हां कहा जा सकता है ना कहा जा सकता है, चुप्पी ही मौन ही एकमात्र सही उत्तर है। लेकिन इससे तो बात बिगड़ गई, ये चांटा मारने की बात तो कुछ जची नहीं। तो जैन फकीर ने लिखा अपनी डायरी में कि बाबा ने जल्दी से घड़ी देखी और कहा कि मुझे दूसरी जगह जाना है, बस सत्संग समाप्त हो गया। हर परंपरा के अपने ढंग होते, लेकिन परंपरागत ढंग सीख लेने से कुछ सार नहीं है। तिब्बत में जब ज्ञान हो जाए तो एक ढंग होता है गुरु को धन्यवाद देने का, लेकिन अगर ढंग सीख रखा परंपरा से तो ढंग ही झूठा है, ये काम थोड़ी आएगा। तो तुम ये तो पूछो ही मत कि कैसे धन्यवाद दोगे, तुम तो इसकी ही फिक्र करो। धन्यवाद की क्या फिक्र है, ना भी दिया तो चलेगा। पूछा है स्वामी स्वरूप सरस्वती ने, और मैं तुमसे कह देता हूँ धन्यवाद दिया तो एक चांटा मारूंगा और नहीं दिया तो भी मारूंगा। धन्यवाद की तो फिक्र छोड़ो, परमात्मा को पा लेने का सवाल है। उसको पा लिया तो धन्यवाद हो गया, तुम आओगे और धन्यवाद हो जाएगा, तुम बैठोगे और धन्यवाद हो जाएगा, तुम ना आए तो भी धन्यवाद आ जाएगा। तुमने कहा कि नहीं कहा फिर अर्थहीन है, तुम्हारा होना कह देगा। जब गुरु देखता है कि किसी शिष्य को हो गया तो क्या तुम सोचते हो तुम बताओगे तब उसे पता चलेगा, तो गुरु ही नहीं है। तुम्हारे बताने से पता चला तो फिर क्या खाक गुरु। सच तो यह है कि जब तुम्हें होगा तुम्हारे होने के पहले, तुम्हें पता चलने के पहले गुरु को पता चल जाएगा कि हो रहा। रिंझाई के संबंध में ऐसी कहानी है कि जब उसे ज्ञान हुआ तो रात के 2 बजे थे, बैठा था ध्यान में, अचानक सब द्वार दरवाजे खुल गए। कर रहा था मेहनत कोई 12 वर्षों से, जब द्वार दरवाजे खुल गए 2 बजे रात, तो उसके मन में ख्याल आया कि जाऊं और अपने गुरु के चरणों में सिर रखूं, लेकिन 2 बजे रात उनको जगाना नींद तो ठीक नहीं। जब उसने ऐसा सोचा तो हैरान हुआ कोई दरवाजे पे दस्तक दे रहा है। दरवाजा खोला तो गुरु सामने खड़े। गुरु ने कहा तो अरे ना समझ, तू क्या सोचता था कि तुझे ज्ञान होगा और हम सोए होंगे, इतनी बड़ी घटना घट रही हो, जब तेरे साथ सांस जोड़ दिया तो सब तरह जुड़ गए, तुझे इतनी बड़ी घटना घट रही हो और हम सो सकते, और क्या तू सोचता है तुझे पहले पता चलेगा फिर हमें पता चलेगा। तुम चकित होगे जान के कि पश्चिम में बहुत से प्रयोग चल रहे हैं, माँ और बेटों के बीच में कोई एक अज्ञात सूत्र रहता है। जैसे जब बच्चा पैदा होता है माँ के पेट से तो जुड़ा रहता है, बच्चे की नाभि माँ के पेट से भौतिक रूप से जुड़ी रहती है, डॉक्टर उसे काटता है, लेकिन एक और कोई स्वर्ण सूत्र है जो जुड़ा ही रहता है, जिसको काटा नहीं जा सकता। इस पर बहुत प्रयोग चले, विशेषकर सोवियत रूस में बहुत प्रयोग हुए हैं और बड़ी हैरानी के परिणाम आए। वो प्रयोग ये है कि अगर बेटे और माँ में बहुत लगाव हो तो तुम हजारों मील दूर ले जाके बेटे को सताओ, माँ को अनुभव होने लगता है कि बेटा सताया जा रहा, उसे कुछ तकलीफ शुरू हो जाए, वो बेचैन होने लगती। फिर आदमी तो बहुत विकृत हो गया है, इसलिए पशुओं पर प्रयोग किए गए। एक बिल्ली को ऊपर छोड़ दिया गया घाट पर और उसके छोटे बच्चे को एक पनडुब्बी में समुद्र की गहरी सतह में ले जाया गया मील भर नीचे, और ये जो ऊपर बिल्ली छोड़ी गई है इस पर सब यंत्र लगा के रखा गया है कि इसके मन की दशा का पता चलता रहे, कभी ये परेशान होती बेचैन होती छोटी सी भी बेचैनी। और जैसे ही उस बच्चे को नीचे सताया गया उसकी गर्दन मरोड़ी गई,
कि वो एकदम परेशान होने लगी। एक मील का फासला, पानी की अतल गहराई में बच्चा, जैसे ही उसकी गर्दन छोड़ी गई वो फिर ठीक हो गई, फिर गर्दन दबाई गई वो फिर परेशान हो गई। फिर तो इसको बहुत प्रयोग किए गए और ये अनुभव में आया कि जहां प्रेम है वहां एक स्वर्ण सूत्र जोड़े रखता है। तो ये तो माँ और बेटे की बात है, तुम गुरु और शिष्य की बात तो पूछो ही मत, क्योंकि ये प्रेम तो कुछ भी नहीं है उस प्रेम के मुकाबले। ये तो शरीर का ही प्रेम है। गुरु और शिष्य के बीच तो एक आत्मिक नाता है, आत्मा का एक संबंध है। जिस दिन तुम्हें ज्ञान होगा, तुम सोचते हो तुम्हें पहले पता चलेगा, तो तुमने गलत ही सोचा। तुम्हारे गुरु को तुमसे पहले पता चल जाएगा, और ये भी हो सकता है कि तुम्हें धन्यवाद देने का गुरु मौका न दे, तुम्हें तुम्हारे धन्यवाद देने के पहले धन्यवाद दे दे। इस चिंता में पड़ो मत। असली चिंता दूसरी ही है कि कैसे उसे पालो। धन्यवाद गैर धन्यवाद तो शिष्टाचार उपचार की बातें। पांचवा प्रश्न, कभी आप कहते हैं अकेलापन स्वभाव है, कभी आप कहते हैं स्वतंत्रता स्वभाव है, कभी आप कहते हैं प्रेम स्वभाव है, कभी आप कहते हैं आनंद स्वभाव है, कृपा करके समझाएं। मैं जो भी कहता हूं वह एक ही है, बहुत ढंग से कहता हूं। समझो, जब मैं कहता हूं अकेलापन स्वभाव है, तो मैं कह रहा हूं ये मार्ग ध्यान का, अकेलापन यानी ध्यान, अकेले रह गए, असंबंधित, असंग, कोई दूसरे की धारणा ना रखी, पर को भूल गए, परमात्मा को भी भूल गए, क्योंकि वो भी पर, वो भी दूसरा, अकेले रह गए, बिल्कुल एकांत में रह गए। जैन बौद्ध इस तरह चलते, अकेले रह गए, इसलिए उनके मोक्ष का नाम कैवल्य, बिल्कुल अकेले रह गए, केवल चेतना मात्र बची। अकेलापन स्वभाव है, जो अकेला हो गया तो दूसरी बात उसमें से निकलेगी, स्वतंत्रता स्वभाव है। जब तुम अकेले रह गए तो तुम स्वतंत्र हो गए, अब तुम्हें कोई परतंत्रता ना रही, क्योंकि कोई पर ही ना रहा, दूसरे पर निर्भरता ना रही, तुम मुक्त हो गए, तुम स्वतंत्र हो गए, तुम्हारा अपना स्वच्छंद तुम्हें उपलब्ध हो गया, तुम अपना गीत गुनगुनाने लगे, अब तुम उधार गीत नहीं गाते, अब तुम दूसरे की छाया की तरह नहीं डोलते, अब तुम किसी के पीछे नहीं चलते, अब तुम अपने भीतर से, अपने केंद्र से अपने जीवन का रस बहाने लगे, तो स्वतंत्र हुए। फिर तीसरी बात मैं कहता हूं प्रेम स्वभाव है, जो स्वतंत्र हो गया और अकेला हो गया वही प्रेम देने में सफल हो पाता है, क्योंकि उसी के पास प्रेम देने को होता है। तुम तो प्रेम दोगे कैसे, तुम तो मांग रहे हो, दोगे कैसे, तुम तो चाहते हो कोई तुम्हें दे दे, तुम्हारे पास ही होता तो तुम मांगते क्यों, तुम्हारे पास नहीं है इसलिए तो मांगते हो। हम वही तो मांगते हैं जो हमारे पास नहीं है। और जो स्वतंत्र हो गया, एकांत में डूब गया, अपनी मस्ती में खो गया, उसके पास प्रेम होगा, वो प्रेम बांटेगा, लेकिन उसका प्रेम तुम्हारे जैसा प्रेम नहीं होगा, वो देगा बेशर्त, वो किसी को भी देगा, वो ये भी नहीं कहेगा किसको दूं किसको ना दूं, उसकी कोई सीमा ना होगी, वो बांटेगा, वो उलीचेगा, जैसे एकांत में खिला हुआ फूल अपनी सुगंध को हवाओं में बिखेर देता है, किसी को मिल जाए ठीक न मिले ठीक, किसी के प्रयोजन से नहीं बिखेरता। सुगंध में किसी का पता नहीं लिखा होता कि फलाने के घर जाना, कि मेरी प्रेसी वहां रहती है सुगंध वहां जाना, कि मेरा प्रिय वहां रहता है वहां जाना, बिखेर देता जिसको मिल जाए, फूल खिल गया अब उसको क्या प्रयोजन। जो व्यक्ति स्वतंत्र हो गया उसका प्रेम खिल जाता है, उसका फूल खिल जाता है, और जिसका फूल खिल जाता है, चौथी बात आनंद स्वभाव है, जिसका फूल खिल गया वो आनंदित है, बिना भीतर के फूल के खिले कब कोई आनंदित हुआ है। तो जब मैं कहता हूं अकेलापन स्वभाव है, स्वतंत्रता स्वभाव है, प्रेम स्वभाव है, आनंद स्वभाव है, तो मैं एक मार्ग की बात कर रहा हूं, वो मार्ग है ध्यान का मार्ग। उसमें अकेलापन पहले आता, फिर स्वतंत्रता आती, फिर प्रेम आता, फिर आनंद आता। दूसरा मार्ग है भक्ति का मार्ग। भक्ति के मार्ग में प्रेम पहले आता, प्रेम स्वभाव है, परमात्मा के प्रति इतने अनन्य प्रेम से भर जाना है कि तुम्हारा मैं भाव समाप्त हो जाए, तुम्हारा मैं समर्पित हो जाए। और जिसके जीवन में प्रेम आ गया, परमात्मा के प्रति ऐसा समर्पण आ गया, ऐसी प्रार्थना आ गई कि अपने अहंकार को उसने सब भांति समर्पित कर दिया, उसके जीवन में अनिवार्य रूपेण आनंद आ जाएगा।
जो रहा ही नहीं, मैं ही ना बचा, वहां दुख कहां। अहंकार दुख है, अहंकार दुख की तरह सालता है, सूल है, जहर है। जहां अहंकार गिर गया भक्त का, वही आनंद आ गया। और जहां आनंद आ जाता है, वहां दूसरे की कोई जरूरत नहीं रही। दूसरे की जरूरत तो दुख में रहती। तुम जब दुखी होते तब तुम दूसरे को तलाशते हो, कोई मिल जाए तो दुख बता ले। दूसरे की जरूरत ही दुख में पड़ती है। जब तुम आनंदित हो तब क्या दूसरे की जरूरत है। तो जो व्यक्ति प्रेम को उपलब्ध हुआ, आनंद को उपलब्ध हुआ, वो अकेलेपन को उपलब्ध हो जाता है। उसको कोई जरूरत नहीं दूसरे की। और जो अकेला है वही स्वतंत्र है, वही स्वच्छंद है। तो ये दूसरा सूत्र भक्ति का प्रेम स्वभाव है। प्रेम से पैदा होता आनंद, आनंद स्वभाव है, आनंद से पैदा होता एकाकीपन, अकेलापन, एकांत। तो अकेलापन स्वभाव है, और अकेलापन यानी स्वतंत्रता, स्वच्छंदता। किसी भी मार्ग से चलो, दो ही मार्ग है। या तो शुद्ध रूप से अकेले बचो तो तुम पहुंच जाओगे, या अपने को बिल्कुल गमा दो, खो दो, तो तुम पहुंच जाओगे। या तो मिट जाओ तो पहुंच जाओगे, शून्य हो जाओ तो पहुंच जाओगे, या पूर्ण हो जाओ तो पहुंच जाओगे। जैन और बौद्ध चलते हैं ध्यान से, अकेले हो गए, मैं को शुद्ध करते हैं, शुद्ध करते हैं, परिपूर्णता पर लाते हैं। हिंदू, मुसलमान, ईसाई चलते हैं प्रेम से, अपने को समर्पित करते हैं। समर्पण में अहंकार धीरे धीरे खो जाता है, रेखा भी नहीं बचती। जिस दिन अहंकार खो जाता है उसी दिन परमात्मा प्रकट हो जाता है। छठवां प्रश्न, लाओसु जब अपना देश छोड़कर जा रहे थे तब देश के राजा ने उन्हें कहलाया कि आपने जो कुछ प्राप्त किया है उसकी चुंगी चुकाए बिना आप नहीं जा सकते। उसी प्रकार परमात्मा ने आपको भी मोक्ष के द्वार पर रोक कर रखा है कि जब तक आप संबोधि का दान औरों को नहीं देते तब तक आप भी मोक्ष महल में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। यह संदेह रहित बात है प्रभु, पूछा है बोधिधर्म ने। संदेह तो थोड़ा रहा होगा, नहीं तो पूछते नहीं। संदेह रहित बात में पूछना क्या, थोड़ा संदेह होगा। उसी संदेह के कारण ये भी कहा है कि संदेह रहित बात है, नहीं तो ये भी ना कहते। बात प्यारी है,

बात महत्वपूर्ण है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। लाओसू को रोका था देश के राजा ने, क्योंकि वो बिना एक पंक्ति लिखे अपने अनुभव की भागा जा रहा था, हिमालय में जा रहा था। उसने चुन रखा था कि जाके हिमालय में ही कब्र बने, इससे सुंदर जगह मरने को और हो भी क्या सकती। तो चीन छोड़ के जा रहा था, दक्षिण की तरफ भाग रहा था। उसको राजा ने रुकवा लिया। राजा भी बड़ा समझदार रहा होगा, इतने समझदार राजा मुश्किल से होते। राजा और समझदार, जरा ये बात सांस सांस घटती नहीं। समझदार राजा होगा, उसने खबर भेजी, पुलिस के आदमी दौड़ाए, घोड़े दौड़ाए और उसको ठीक सीमा पर रुकवा लिया, चुंगी चौकी पर, जहां से बाहर जाने के लिए आखिरी दरवाजा था। और रुकवा के उसने कहा कि जब तक तुम लिख न जाओगे जो तुमने जाना। उसने जिंदगी भर लिखा नहीं, और जब भी लोगों ने पूछा टाल दिया, और जब भी बहुत लोगों ने कहा तो इतने ही कहा कि सत्य कहा नहीं जा सकता। लेकिन राजा ने कहा तुम छोड़ के ही जा रहे हो देश, तो अब बिना कहे ना जा सकोगे, लिख दो जो भी जाना है फिर जा सकते हो, अगर नहीं लिखा तो बाहर न निकलने दूंगा। उसे जाना तो जरूर था, मजबूरी में वो चुंगी चौकी पर ही 3 दिन रुका और उसने अपनी अद्भुत किताब ताओ ते किंग लिखी। 3 दिन में लिखी थी, छोटे से सूत्र, जल्दी से उसने लिख लिखा के दे दिया। पहला ही सूत्र उसने लिखा कि सत्य कहा नहीं जा सकता, और जो कहा जा सकता है वह सत्य नहीं होगा, इस बात को ध्यान में रखकर आगे कहता हूं। तो उसने पहले ही साफ कर दिया मामला, उसने चुंगी चुका दी, मजबूरी थी इसलिए चुकानी पड़ी, वो भाग गया, फिर निकल गया। तुम कहते हो कि जैसा लाओसू को उस देश के राजा ने चुंगी चुकाए बिना नहीं जाने दिया, उसी प्रकार परमात्मा ने आपको भी मोक्ष के द्वार पर रोक कर रखा। यहाँ जरा बात उल्टी, परमात्मा ने मुझे रोक के नहीं रखा है, परमात्मा को मैं रोक कर रखा हूँ कि जरा दरवाजा भी मत खोलना। जहां तक चुकाने का सवाल है, मैंने मूलधन भी चुका दिया है, ब्याज भी, चक्रवृत्ति ब्याज भी चुका दिया है, जितना लिया था उससे बहुत ज्यादा चुका दिया है, इसलिए परमात्मा मुझे रोके ये तो सवाल ही नहीं। मैं ही रोक के बैठा हूँ कि जरा और थोड़ा बांट दू। मेरे जाने की नाव तो आके किनारे लगी खड़ी, मैं ही समझा बुझा के रोक रहा हूँ माझी को, गिजरा और ये थोड़े लोग और आ गए हैं, इनको थोड़ा और समझा। आखिरी प्रश्न, भगवान आपने चमचे और चमचागिरी जैसे साधारण शब्दों का उपयोग किया, इससे मेरा मन बहुत दुखी हुआ, ऐसा आपने क्यों किया?

संतों की वाणी सुनने या पढ़ने से मन या मस्तिष्क का तनाव दूर होता है। असंतों के कलाम की यह विशेषता नहीं होती। कृपया बताएं कि इसका कारण क्या है। पूछा है फारूक खान ने। पहली बात, संतों की वाणी सिर्फ वाणी नहीं, वाणी ही हो तो खोल ही है, भीतर कुछ सार नहीं। शब्द ही है, भीतर कुछ सार नहीं। संतों की वाणी वाणी से कुछ ज्यादा है। वाणी तो केवल सहारा है उसे देने का, जो और किसी ढंग से दिया नहीं जा सकता। वाणी तो वाहन है, शब्दों पर चढ़ाकर, शब्दों के घोड़ों पर चढ़ाकर जो भेजा जा रहा है वो शब्द से बहुत पार है। उसकी ही वर्षा जब हो जाती है हृदय पर तो शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, संतोष मिलेगा। असंतों की वाणी कोरी है, खाली है, जिससे मरा हुआ आदमी लाश पड़ी है। और यही आदमी जीवित था कल तक, शरीर अब भी वैसा ही है, लेकिन शरीर के भीतर से कोई चीज उड़ गई। अब तो पिंजड़ा पड़ा रह गया, पक्षी उड़ गया। असंतों की वाणी ऐसी है जैसे मरा हुआ आदमी। शब्द की देह तो है लेकिन अनुभव की आत्मा नहीं। तो असंतों की वाणी से सुगंध तो मिलनी कठिन है, दुर्गंध ही मिलेगी। संतों की वाणी से संतोष मिलेगा, क्योंकि संतोष सत्य की छाया है। यह तो बात ठीक, लेकिन एक बात याद रखना, जिनकी वाणी से संतोष मिल जाए जरूरी नहीं कि वे संत ही हों, और जिनकी वाणी से तुम्हें संतोष न मिले जरूरी नहीं कि वे असंत ही हों। जहां तक संतों की तरफ से संबंध है, संतों की वाणी से संतोष मिलना चाहिए। जहां तक असंतों का संबंध है, असंतों की वाणी से संतोष नहीं मिलना चाहिए। लेकिन जो मिलता है उसमें अकेला संत थोड़ी भागीदार है, तुम भी भागीदार हो। वर्षा होती हो और घड़ा उल्टा रखा हो तो गैर भरा रह जाएगा। तो संत की भी वाणी से हो सकता है संतोष न मिले, अगर तुम उसे ग्रहण ही ना करो, अगर तुम उसे भीतर ही ना जाने दो, या तुम्हारे पूर्व पक्षपात, तुम्हारी पहले की बनाई धारणाएं रुकावट बन जाए। तो ऐसा समझो कि जरूरी नहीं है कि संत की वाणी से संतोष मिले ही, तुम लोगे तो ही मिलेगा। और दूसरी बात भी संभव है, असंत की वाणी से भी संतोष मिल जाए अगर तुमने लेने की ही जिद कर रखी। तो जहां कुछ भी नहीं है वहां भी तुम कुछ देख लोगे, क्योंकि इस लेन देन में दो व्यक्ति सम्मिलित है, एक देने वाला और एक लेने वाला। इसलिए लेन देन की ये घटना दोनों पर निर्भर होगी। जैसे अगर कोई जैन किसी सूफी फकीर की वाणी पढ़े उसे संतोष नहीं मिलेगा, क्योंकि वो ये मान ही नहीं सकता कि मांसाहारी और ज्ञान को उपलब्ध हो जाए, ये बात ही संभव नहीं। सूफी संत की तो छोड़ दो, एक जैन मुनि मुझसे कहा कि आप रामकृष्ण परमहंस देव का उल्लेख करते, आपको पता है वो मछली खाते थे, तो मछली खाने वाला आदमी कैसे संत हो सकता है। अब इन जैन मुनि को रामकृष्ण की वाणी से संतोष नहीं मिलेगा, इससे ये मत समझ लेना कि जहां से संतोष नहीं मिलता वहां संत नहीं। बौद्धों को जैनों की वाणी में संतोष नहीं है, हिंदुओं को मुसलमानों की वाणी में संतोष नहीं है, मुसलमानों को ईसाइयों की वाणी में संतोष नहीं। तो इसका क्या अर्थ हुआ है? इसका अर्थ हुआ कि संतत्व की भी तुम्हारी धारणा है, उस धारणा के अनुकूल संत पड़ता हो तो तुम संतोष लोगे, उसके अनुकूल न पड़ता हो तो तुम्हें जरा भी संतोष न मिलेगा। फिर कभी ये भी हो सकता है कि असंत तुम्हारी धारणा के अनुकूल पड़ता हो। मैंने सुना है मुल्ला नसरुद्दीन भूखा प्यासा एक गांव में आया, गांव में एक भी मुसलमान नहीं था, गांव शाकाहारियों का था, और गांव का जो साधु पुरुष था उसने सारा जीवन शाकाहार की ही सेवा में लगाया था, बस मांसाहार के ही विपरीत उसका सारा जीवन समर्पित था।
मुल्ला उसकी सभा में गया, वो समझा रहा था कि मांसाहार बुरा है, पशु पक्षियों में भी आत्मा है। मुल्ला बीच में खड़ा हो गया, उसने कहा बिल्कुल ठीक कहते, एक बार एक मछली ने ही मेरे प्राण बचाए थे। साधु तो बहुत प्रसन्न हुआ, उसने कहा आओ भाई आओ, ये तो बड़ा प्रमाण मिला कि एक मुसलमान भी तैयार है गवाही देने को। उन्होंने उसे पास बिठाया, उसके भोजन का भी इंतजाम करवाया और कहा कि तुम यहीं रहो, कहीं और जाने की जरूरत नहीं, ये प्रमाण हो गया। और रोज साधु जब समझाता लोगों को, वो कहता कि पूछो इस मुसलमान भाई से पूछो, एक मछली नहीं इसके प्राण बचाए, मछलियों में भी आत्मा है, उनको खाओ मत। दो चार दिन के बाद एक दिन सांझ को दोनों साथ बैठे थे, वो फकीर साधु कहने लगा मुल्ला नसरुद्दीन को कि तुम तो करीब करीब मेरे गुरु, यद्यपि मैंने जीवन भर शाकाहार की सेवा की, मांसाहार का विरोध किया, लेकिन अभी तक किसी पशु पक्षी ने ऐसा प्रमाण मुझे नहीं दिया जैसा तुम्हें दिया। तुम तो करीब करीब मेरे गुरु हो, अब विस्तार में मुझे कहो कि बात क्या थी, कैसे बचाए तुम्हारे प्राण। मुल्ला ने कहा विस्तार न पूछे तो अच्छा, सब ठीक चल रहा है, विस्तार की क्या जरूरत। पर साधु जिद करने लगा कि नहीं बतानी पड़ेगा, साधु ने तो पैर पकड़ ली कि गुरुदेव बताना ही पड़ेगा। तो मुल्ला ने कहा नहीं मानते तो ठीक है, लेकिन हमें जाना पड़ेगा। साधु ने कहा बात क्या है, इतना रहस्य क्यों बना रहे हो। मुल्ला ने कहा बात यह है कि मैं बहुत भूखा था और मछली को खाने से मेरे प्राण बचे। उसी रात, सुबह भी नहीं, उसी रात मुल्ला निकाला गया। अभी तक इसकी वाणी में बड़ा संतोष मिल रहा था, अब इसकी वाणी में कोई संतोष न रहा। तो तुम पूछते हो कि संतों की वाणी सुनने या पढ़ने से मन या मस्तिष्क का तनाव दूर होता है, सभी संतों की, तो तुम संत हो जाओगे, तब तो तुम्हारे संत होने में फिर कोई बाधा ना रहे, या किन्हीं किन्हीं संतों की। पूछने वाले मित्र मुसलमान है, तो तुमने और किन्हीं संतों की वाणी भी पढ़ी है जिनके विचार इस्लाम से अन्य हो, उनसे संतोष न मिलेगा। और इन्हीं मित्र ने दूसरा प्रश्न पूछा है, उससे जो मैं कह रहा हूं वो साफ हो जाएगा। इनने पूछा है किसी व्यक्ति को भगवान की उपाधि देना या किसी को इस उपाधि का स्वीकार करना क्या उचित है। फिरौन का सबसे बड़ा अपराध यही तो था कि उसने अपने को खुदा होने का दावा कर रखा था। अब इन मित्र ने इजिप्ट के फिरौन का उल्लेख किया, लेकिन अल हिल्लाज मंसूर को छोड़ दिया। सच है ये बात कि इजिप्ट के सम्राट फिरौन ने घोषणा कर रखी थी कि मैं खुदा हूं, ये उसका अपराध। लेकिन अपराध इसलिए नहीं था कि उसने घोषणा की थी कि मैं खुदा हूं, अपराध का कारण दूसरा था। अपराध का कारण यह था कि वो कहता था मेरे सिवाय खुदा और कोई नहीं, मैं खुदा हूं, मेरे सिवाय और कोई खुदा नहीं। यही बात तो मंसूर ने भी कही थी, जिनको मुसलमानों ने सूली दी, और मैं समझता हूं कि फारूक खां भी राजी होंगे कि सूली ठीक दी। मंसूर ने भी यही कहा था कि मैं खुदा हूं, लेकिन बड़ा फर्क था उसके कहने में। उसके कहने का मतलब था मैं खुदा हूं क्योंकि सभी खुदा हैं, खुदा के अतिरिक्त तो और कुछ है ही नहीं। मंसूर ने जो कहा वो संत की वाणी थी, और फिरौन ने जो कहा वो संत की वाणी नहीं थी, यद्यपि वक्तव्य दोनों के एक जैसे। दोनों ने यही कहा था मैं खुदा हूं, लेकिन फिरौन कहता था मेरे अलावा कोई और खुदा नहीं, और मंसूर ने कहा कि मैं करूं ली क्या, खुदा होना ही पड़ेगा, उसके सिवा होने का कोई उपाय नहीं क्योंकि खुदा ही है। लेकिन मुसलमानों ने फिरौन को भी अपराधी साबित किया और मंसूर को भी सूली लगा दी। अब अगर मुसलमानों को उपनिषद के ऋषि मिल जाते जिन्होंने कहा अहम ब्रह्मास्मि, क्या करते तुम उनके साथ, फांसी लगाते ना, सूली लगाते। संत तो तुम्हें वो मालूम नहीं पड़ सकते थे, जो कहता है मैं ब्रह्म हूं वो कैसे संत हो सकता है। मुसलमान नाराज है जीसस पर, क्योंकि जीसस ने दावा किया कि मैं ईश्वर का बेटा हूं, ये भी कोई दावा है। हमारे मुल्क में लोग हैं जो कहते हैं हम ईश्वर हैं, बेटे का भी क्या दावा करना। मगर मुसलमान इससे नाराज हैं कि ईसा ने दावा किया कि मैं ईश्वर का बेटा हूं, नहीं ये बात ठीक नहीं। तो तुम बुद्ध को क्या कहोगे, महावीर को क्या कहोगे, कृष्ण को, राम को क्या कहोगे, ये सब तो अपराधी हो गए।
ये तो संत ना रहे। तो मैं कहना चाहूंगा कि तुम्हारा ही दूसरा प्रश्न सबूत देता है कि संत का तुम्हारे मन में क्या अर्थ एक धारणा होगी। संत ऐसा होना चाहिए, धारणा तुम्हारी है, उस धारणा में बैठ जाएगा तो संत, नहीं बैठा तो असंत हो जाएगा। और कौन संत तुम्हारी छोटी मोटी धारणाओं में बैठ सकता है? जो बैठ जाए वो संत ही क्या खाक जो तुम्हारी खिड़की में बैठ जाए, तुम्हारे ढांचे के अनुकूल पड़ जाए वो कोई संत? नकल होगा, संत की नकल ढांचों में बैठ जाती। तुम बड़ा संतोष भी ले लोगे, तुम्हें संतोष इसलिए नहीं मिल रहा है कि संत की वाणी में कुछ सार, तुम्हें संतोष इसलिए मिल रहा है कि तुम्हारा अहंकार तृप्त हो रहा है कि देखो मेरी धारणा संत की कितनी सही है, ये प्रमाण मिल गया, ये आदमी प्रमाण है मेरे संतत्व की धारणा का। तुम अपनी ही धारणा के चरणों में सिर झुका रहे। मैं एक घर में मेहमान था, एक जैन घर में, एक बूढ़े सज्जन मुझे मिलने आए, उम्र होगी कोई 80 साल की, कोई 40 साल से त्यागी का जीवन ही बिताते थे, यद्यपि घर में ही थे लेकिन न दुकान जाते न घर द्वार की बात करते, ज्यादातर सामायिक ध्यान उपवास इसमें ही समय लगाते थे। मैं गांव में आया हूं तो मुझे मिलने आए, अपने घर के बाहर भी नहीं जाते थे, तो उनके साथ 10-5 लोगों का गिरोह भी आया ये देखने कि वो कभी अपने घर के बाहर जाते नहीं, किसके दर्शन को जा रहे हैं। उन्होंने मेरी एक किताब पढ़ी थी साधना पत्र, और उससे वो बहुत प्रभावित थे, वो आके मेरे चरणों में झुके और उन्होंने कहा कि आप तो मेरे लिए तीर्थंकर हैं, आपने जो किताब लिख दी उससे मुझे जो मिला है वो किसी चीज से नहीं मिला, मेरा सारा जीवन उसने बदल डाला है। ऐसे उनसे बातें हो रही थी, तभी घर की गृहिणी ने आके मुझे कहा कि अब आप भोजन कर लें, सांझ हो गई। तो मैंने उनसे कहा कि ये वृद्ध सज्जन आए हैं, अभी बीच में बाधा ना डालो, थोड़ी देर बाद भोजन कर लूंगा। वो वृद्ध सज्जन तो बहुत चौंके, उन्होंने कहा क्या सूरज ढला जा रहा है, सूरज ढलने के बाद भोजन करेंगे? मैंने कहा आप इतनी दूर से चल के आए, बूढ़े हैं, आपके पास बैठना ज्यादा आनंदपूर्ण, भोजन तो घड़ी पर बाद हो जाएगा। उन्होंने कहा आप समझे नहीं, उठ के खड़े हो गए। उन्होंने कहा जिस आदमी को भी यही पता नहीं कि रात्रि भोजन पाप है उसको और क्या पता हो सकता है, आए थे तो मेरे चरण छुए थे, जाते वक्त मुझे उपदेश देके गए कि कम से कम इतना तो करो कि रात्रि भोजन छोड़ दो। अब मैं निश्चित जानता हूं घर जाके किताब उन्होंने जला दी होगी या फेंक दी होगी, किसी को दी होगी ये भी मैं नहीं मान सकता, क्योंकि ऐसे भ्रष्ट आदमी की किताब किसी को देके क्या भ्रष्ट करना है। आए थे तो मैं तीर्थंकर था, तीर्थंकर के गिरने में देर कितनी लगती है? तुम तीर्थंकर को इतनी स्वतंत्रता भी तो नहीं दे सकते कि वो सूरज ढलने के बाद भोजन कर ले। तुम्हारा तीर्थंकर तुम्हारा गुलाम, तुम्हारा संत तुम्हारा गुलाम। तो गुलाम ही तुम्हारे संत हो सकते जो अपने मालिक है, शायद उनसे तो तुम्हें संतोष नहीं मिलेगा। जो अपने मालिक है वो तो तुम्हें झकझोर देंगे, वो तो आएंगे एक तूफान की तरह, आंधी की तरह तुम्हें उखाड़ देंगे, तुम्हारी सारी धारणाओं को उखाड़ देंगे। वो तो आएंगे एक झंझावात की तरह और तुम्हारे बनाए हुए सारे भवनों को गिरा देंगे, तुम्हारा सारा तत्व ज्ञान धूल धूसरित हो जाएगा। असली संत के करीब तो पहले तुम्हारी धारणाएं टूटेंगी, और अगर धारणाएं टूटने में तुम घबराए ना परेशान ना हुए, असली संत पहले तो तुम्हें मारेगा, अगर तुम मरने से न डरे तो जरूर संतोष आएगा, और संतोष ऐसा कि फिर जाने वाला नहीं। लेकिन एक ऐसा भी संतोष है जो तुम मान लेते हो, तुम जहां भी अपनी धारणा के अनुकूल किसी को देखते हो तुम्हें संतोष मिलता है। क्या संतोष मिलता है? कि तो मेरी धारणा ठीक है। देखो ये आदमी सबूत है, अगर अपनी धारणा का मैं सबूत नहीं हूं तो कम से कम ये आदमी सबूत है। इसलिए तुम पूछते हो कि किसी व्यक्ति को भगवान की उपाधि देना, तुम्हारे प्रश्न में भी तुम्हारी धारणा छिपी। भगवान कोई उपाधि नहीं है, भगवान कोई ऐसा नहीं कि किसी को पद्मभूषण बना दिया कि भारत रत्न बना दिया, भगवान कोई उपाधि नहीं है कि किसी विश्वविद्यालय की डिग्री है, और भगवान बनाना किसी के हाथ में नहीं है, भगवान होना हमारा स्वभाव है, ये उपाधि नहीं है। उपाधि तो बीमारी का नाम है, उपाधि के तो दो अर्थ होते हैं, डिग्री और बीमारी भी।
भगवान कोई उपाधि नहीं है, भगवान तो अपने स्वभाव को पहचान लेना है। जब तुम अपने भीतर झांकते हो और पहचान लेते हो कौन वहां विराजमान है, तब तुम पाओगे कि भगवान हो। भगवत्ता हमारा सामान्य धर्म है, जैसे आग का धर्म जलाना है, ऐसा आदमी का धर्म भगवान। और जब आदमी में तुम्हें भगवान दिखेगा तो धीरे धीरे तुम्हारी आंख और गहरी जाएगी, पशु पक्षियों में भी दिखेगा, फिर और आंख गहरी जाएगी और पौधों में भी दिखेगा, फिर और आंख गहरी जाएगी और चट्टानों में भी दिखेगा। और जिस दिन तुम्हें सब जगह दिखाई पड़ना शुरू हो जाए, कोई ऐसी जगह ना रहे जहां भगवान ना हो, तभी जानना कि तुम घर वापस लौटे। नानक मक्का गए तो सो गए रात, पैर करके पवित्र मंदिर की तरफ। पुरोहित नाराज हुए, उन्होंने आके कहा कि तुम्हें पैर पवित्र मंदिर की तरफ करके सोते लाज नहीं आती, और लोग कहते तुम संत, ये क्या संत हुए तुम, तुम्हें इतना भी पता नहीं है कि कहां पैर करने। तो कथा बड़ी प्यारी है, कथा कहती कि नानक ने कहा मेरे पैर उस जगह कर दो जहां भगवान ना हो, तब जरा मुश्किल हो गई होगी। पुजारियों ने कहते हैं जहां भी नानक के पैर किए।

पाया कि काबा उसी तरफ घूम रहे है। ऐसा काबा घूमा हो ऐसा मैं नहीं मानता, लेकिन कहानी बड़ी अर्थपूर्ण है। काबा घूमा हो इसकी कोई जरूरत भी नहीं, काबा के घूमने की जरूरत नहीं, क्योंकि काबा सब तरफ है ही। इतना ही अर्थ है कहानी में। कहां करोगे पैर? जहां पैर करोगे वहीं भगवान है, सब ओर भगवान है। तो पहली तो बात तुम पूछते हो किसी व्यक्ति को भगवान की उपाधि देना, उपाधि दी तो बात गलत हो गई, ये उपाधि नहीं, और कोई किसी को दे नहीं सकता। तुम जब अपने स्रोत में उतरते हो तो ये तुम्हारा अनुभव है, या किसी का इस उपाधि को स्वीकार करना। ये उपाधि ही नहीं है, स्वीकार अस्वीकार का सवाल नहीं है। जब तुम जानोगे और पाओगे कि ऐसा है तो फिर करोगे क्या? यही तो अलहिल्लाज मंसूर के साथ हुआ। जिस दिन मंसूर को बोध हुआ उसने घोषणा कर दी, अनल हक, मैं परमात्मा, मैं सत्य हूं, मैं ब्रह्म हूं। जिन गुरु के पास मंसूर रहता था, गुरु ने कहा भीतर रख, ये बात बाहर मत निकाल। सूफी ये सदा से जानते रहे मगर मुसलमानों के डर से कहते नहीं। गुरु ने कहा कि रख, भीतर रख, मुझे भी पता है, अब तुझे भी पता हो गया, मगर बाहर मत कह, नहीं तो झंझट खड़ी होगी। झंझट खड़ी हुई। मंसूर ने कहा जो भीतर है उसको बाहर क्यों ना बहने दे, रुकावट कैसे डालू? और फिर मैं थोड़ी कहता हूं, एक भाव दशा आती जब मेरे भीतर ये गुंजार उठता है अनल हक, मेरे भीतर ये घोषणा उठती कि मैं भगवान हूं। गुरु ने तुमको विदा कर दिया, उन्होंने कहा अगर ये घोषणा करनी है तो तू कहीं और जा, कोई और गुरु चुन ले, किसी और गुरुकुल में रुक जा, यहां हम झंझट नहीं लेना चाहते। दूसरे गुरु के पास भी यही हुआ, तीसरे गुरु के पास भी यही हुआ, चौथे गुरु के पास। गुरु ने कहा कि हम तेरी तकलीफ समझते, जब होती है ये घटना तो कभी कभी ऐसा होता आदमी अपने वश में नहीं रह जाता, उद्घोषणा होने लगती, मगर इसे रोकना पड़ेगा अन्यथा झंझट आएगी, तू इसे रोक, नहीं तो मैं तुझसे कहता हूं तू फांसी पे चढ़ेगा। कहते हैं मंसूर ने कहा मैं उसी दिन फांसी पे चढ़ूंगा जिस दिन तुम अपना ये सूफी अंगरखा उतार दोगे, उसके पहले नहीं चढ़ूंगा। और कहानी कहती है कि दोनों की भविष्यवाणियां सच सिद्ध हुई। खलीफा ने खबर भेजी गुरु के पास कि तुम्हारे आश्रम में एक आदमी है जो कहता है मैं ईश्वर हूं, उसे निकाल बाहर कर दो, वो अपराध कर रहा है। लेकिन गुरु ने कोई ख्याल न दिया, बात चुपचाप रखे रहा। दोबारा खबर भेजी गई, तीसरी बार खबर भेजी गई, जब सातवीं बार खबर आई तो साथ में पुलिस के आदमी भी आए, नंगी तलवारें भी आई, और उन्होंने कहा अब तुम्हें दस्तखत करके देना होगा कि यह आदमी अपराधी और इसको फांसी लगेगी। गुरु ने सोचा कि सूफी के कपड़े पहने हुए कैसे दस्तखत करूं, क्योंकि सूफी सभी जानते हैं इस बात को भीतर की ये बात सच, इसलिए अपना अंगरखा उतार के फेंक दिया। उन सिपाहियों ने कहा यह अंगरखा क्यों फेंक रहा है? उन्होंने कहा सूफी रहते हुए इस तरह की बात पर मैं दस्तखत नहीं कर सकता, यह अंगरखा मुझे उतार देने दो। और ठीक ही कहा था मंसूर ने कि अंगरखा तुम छोड़ोगे उसी दिन मुझे फांसी लगेगी। अंगरखा उतार के रख दिया और मौलवी के कपड़े पहन लिए, फिर दस्तखत कर दिए कि ठीक है ये आदमी अपराधी है और इसको जो भी सजा उचित हो दी जाए। तब मंसूर को सूली लगी। सूफी छिपाए रखे, क्योंकि मुसलमान देशों में सूफियों को प्रकट होने का उपाय नहीं था। इस देश में कोई अड़चन नहीं रही, इस देश में सूफी प्रकट होके बोले। जहां सूफी भी प्रकट होकर न बोल सके वहां धर्म का क्या उद्भाव होगा, जहां उनको भी छिपा के रखना पड़े, जहां सत्य की आखिरी ऊंचाई चोरों की भांति छिपा के रखनी पड़े, वैसा देश धार्मिक नहीं हो सकता। इस देश की दूसरी परंपरा है, इस देश में बड़ा मुक्त वातावरण रहा है, इस देश में जो तुम्हारे भीतर हो उसकी उद्घोषणा की आज्ञा है, जो तुम्हारे भीतर हो कौन है दूसरा जो तुम्हें रोके, जो तुम्हारे भीतर हो उसकी उद्घोषणा होने दो। अगर परमात्मा ने यही चुना है तुम्हारे भीतर की घोषणा करे अनल हक अहम ब्रह्मास्मि, तो करने दो घोषणा। ये कोई उपाधि नहीं है, कोई किसी दूसरे को देता लेता नहीं, न कोई स्वीकार करता है अस्वीकार करता है, ये तो तुम्हारे अंततम का दिया जब जलता है
तब तुम जानते हो कि ऐसा है। ये तो तथ्य का अनुभव है, ये तो सत्य की प्रतीति है, ये तो साक्षात्कार है। लेकिन तुम्हारी अड़चन मैं जानता हूं, मुसलमान परंपरा में पले हो, उसी ढंग से सोचा है, इसलिए तुमने ये तो कहा कि फिरौन का सबसे बड़ा अपराध यही था कि उसने अपने को खुदा होने का दावा किया। लेकिन तुम भी चालाकी कर गए प्रश्न पूछने में भी, फिरौन को घसीट के लाए। पुराना नाम भी लोग भूल गए फिरौन का, 5000 साल पुराना इजिप्ट का बादशाह, उसको घसीट के लाए। ज्यादा जिंदा नाम, ज्यादा जिंदा आदमी अलहिल्लाज मंसूर के संबंध में क्या ख्याल है? फारूक खान, मंसूर को क्यों छोड़ दिया? तुम भी डरे हो गए कि इस सूफी को बीच में लाना ठीक नहीं। लेकिन तुम्हें बड़ी अड़चन होगी, अगर तुम बुद्ध को मिल जाओगे तो तुम बुद्ध को संत न मान सकोगे, अगर महावीर को मिल जाओगे तो तुम संत न मान सकोगे, राम को मिल जाओगे, कृष्ण को मिल जाओगे तो तुम संत न मान सकोगे, क्योंकि ये तो अपराधी है, इनकी वाणी से तुम्हें संतोष कैसे मिलेगा? इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, संतों की वाणी में जरूर अमृत है, सुधा है, लेकिन तुम जाने दोगे अपने प्राणों तक तभी ना, और तुम तभी जाने दे सकते हो जब तुम्हारे द्वार दरवाजे खुले, तुम्हारे मन पर कोई धारणाओं का जाल ना हो, तुम्हारे मन पर कोई पूर्व पक्षपात ना हो, पूर्वाग्रह ना हो, तब जरूर संतों की वाणी में बड़ा सहार है। उनका एक शब्द भी चेता सकता है, उनका एक इशारा जगा सकता है, मगर अगर तुम असहयोग करो तो संत भी सिर ठोंक ठोंक के मर जाएं, तो भी तुम्हारी नींद को नहीं तोड़ सकते। कितने तो संत हुए, तुम सोए हो तो सोए ही हो, कितने तो संत हुए सदियों सदियों में, तुम जहां हो वहीं के वहीं हो, तुम वहां से हटते नहीं। फूल खिलते हैं, विदा हो जाते, पत्थर अपनी जगह पड़े पड़े ही रहते, वो फूलों की सुनते नहीं। सुनने का ना कारण, सुनने के पीछे कारण है, कारण यही है कि तुम्हारे कान पहले से भरे हुए हैं। अगर तुमने मुसलमान की तरह सोचा तो तुमने सोचा ही नहीं, अगर हिंदू की तरह सोचा तो सोचा ही नहीं, अगर जैन की तरह सोचा तो सोचा ही नहीं। सोचने वाला आदमी पहले तो ये सब लिबास उतार कर रख देता है, भूल ही जाता है कि मैं कौन हूं, अभी पता ही नहीं है कि मैं कौन हूं। तो ये ऊपर ऊपर की बातें, किसी घर में पैदा हो गए, वो मुसलमान था, हिंदू था, ईसाई था, ये तो सब संयोग की बात है। उस घर में पैदा हो गए, उस घर के लोगों को जो मालूम था उन्होंने तुम्हें सिखा दिया, न उन्हें मालूम था न तुम्हें मालूम हो, उनके माँ बाप उन्हें सिखा गए थे, न उन्हें मालूम था। ऐसी सिखावन चलती जाती, संस्कार चलते जाते। बुद्ध का वचन है कि संस्कार में दुख है, ये संस्कार है। हिंदू होना, मुसलमान होना, जैन होना, ईसाई होना संस्कार, कंडीशनिंग। माँ बाप तुम्हारे सिर में भरना शुरू कर देते हैं कि तुम मुसलमान हो, कुरान तुम्हारी किताब है, मोहम्मद तुम्हारा पैगंबर है, कि तुम हिंदू हो कि वेद तुम्हारी किताब है, कि तुम ईसाई हो कि बाइबल तुम्हारी किताब है। ऐसा माँ बाप भरना शुरू कर देते हैं, छोटा बच्चा कोमल चित्त, ये सारी बातें इकट्ठी होती चली जाती। सोच विचार पैदा होने के पहले ही मन पर खूब संस्कार और जमघट जम जाता, भीड़ पैदा हो जाती, फिर जीवन भर आदमी उन्हीं संस्कारों से देखता है। तो तुमसे मैं कहूंगा, रंग ऐसा भरो ना रंग नफरत का हो, ना रंग मजहब का हो, रंग ऐसा भरो जिसके छींटों में बस प्यार ही प्यार हो, दूरियां सब मिटे, पास इतने मिले, एक छाया बने, तन से तन भी मिले, मन से मन भी मिले, पांव ऐसे धरो, रंग ऐसा भरो जिसकी आहट में भी प्यार ही प्यार हो, सबकी आंखों में हो, सबकी सांसों में हो, सबकी साधों में हो, एक ही बस गगन, एक ही बस लगन, डोर ऐसी गहो जिसकी गांठों में बस प्यार ही प्यार हो, रंग ऐसा भरो न रंग नफरत का हो, न रंग मजहब का हो, रंग ऐसा भरो जिसके छींटों में बस प्यार ही प्यार हो, तो तुम देख पाओगे सत्य क्या है। संत का अर्थ होता है जहां सत्य अवतरित हुआ है,
संत का अर्थ होता है जहां सत्य ने देह धरी। संत का अर्थ होता है जिस देह में सत्य सिंहासन पर विराजमान हुआ। अगर तुम निष्पक्ष मन, कोरे मन, शून्य मन संत के पास जाओगे, परम संतोष होगा। और संतोष ऐसा कि फिर मिटेगा नहीं, संतोष धारणा का नहीं, मान लिया ऐसा नहीं, सांत्वना जैसा नहीं, संतोष अनुभव का, सुख के अनुभव का। और वैसा संतोष तुम्हें भी संत बनाने लगेगा, रंगे जाने लगोगे, उस रंग में डूबने लगोगे। यहां ऐसे ही रंग को भरने की कोशिश चल रही है, ऐसे ही रंग को रंगने की कोशिश चल रही है। पानी से धुल जाएं, ऐसे भी रंग क्या, एक उम्र रंग जाए ऐसा रंग डालो। जैसा था बचपन में, जैसा था यौवन में, माटी का रंग अभी वैसा ही है। पलकों के आसपास मंडराते दर्द गई, सपनों का रंग अभी वैसा ही है। थोड़े से हिस्से को रंगने से क्या होगा, एक शहर रंग जाए ऐसा रंग डालो। पानी से धुल जाए ऐसे भी रंग से क्या, एक उम्र रंग जाए ऐसा रंग डालो। रंगों के अंदर भी रंग हुआ करते, रंगों के भीतर जाकर के देखो, बिंबों के अंदर भी सांस हुआ करते। दर्पण के भीतर जाकर देखो, बासंती देहों को रंगना है कायरता। पतझर भी रंग जाए रंग ऐसा डालो, पानी से धुल जाए ऐसे भी रंग क्या, एक उम्र रंग जाए ऐसा रंग डालो। संत का अर्थ है सत्य को उंडेल दे तुमने, संत का अर्थ है जो उसे हुआ है उसमें रंग दे तुम्हें, संत का अर्थ है रंगरेज, संत का अर्थ है तुम्हें एक डुबकी लगवा दे उसने जो अभी तुम्हारे सामर्थ्य के बाहर है। संत का अर्थ है जो उसने देखा है अपनी आंखों के पीछे तुम्हें खड़ा करके थोड़ा अपनी आंखें उधार दे दे, कहे कि जरा मेरी आंखों से देख लो, जो मुझे दिखता है वो देख लो। संत का अर्थ है कि थोड़ी देर को अपना हृदय तुम्हें दे दे, और अगर तुम राजी हो तो ये घट जाता है, इसमें देर नहीं लगती। यहां घट रहा है, तुम अगर राजी हो तो कभी भी किसी भी क्षण जहां राजीपन पूरा होता है अचानक तुम्हारे हृदय की जगह मेरा हृदय धड़केगा, तुम मेरी आंख से देखने लगोगे और तब सब चीजें और ही हो जाती, तब सब कुछ और ही ढंग से दिखाई पड़ने लगता है। संत को तुमने जानना सीखा, देखना सीखा, जब तुम्हें हिंदू का संत हो कि मुसलमान का कि ईसाई का कि बौद्ध का, सभी का संत पहचान में आने लगे, तब तुम समझे कि संत क्या है। और तब जो संतोष मिलेगा वो संक्रांति है, वो तुम्हें रूपांतरित कर जाएगी, वो तुम्हें नया कर जाएगी, वो तुम्हें द्विज बना देगी, एक नया जन्म देगी। निश्चित ही ये बात असंतों की वाणी में कैसे हो सकती, वाणी खाली कोरी, वहां कुछ प्राण कहां, पिंजड़ा है पक्षी तो नहीं, तो पिंजड़ों के लिए तुम चलते रहो। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि लोग पिंजड़ों को लिए ही चलते रहते और मान के चलते कि पक्षी है, होना चाहिए क्योंकि बाप ने कहा, क्योंकि बाप के बाप ने कहा, होना चाहिए क्योंकि भीड़ कहती, समाज कहता, मौलवी कहता, पंडित कहता, होना चाहिए। अपनी तरफ से नहीं देखते कि है या नहीं, डरते भी हो कि कहीं ऐसा ना हो कि ना हो, इसलिए देखते ही नहीं, अपने पिंजड़े को खूब ढांक के रखते हो कि कहीं दिखाई ना पड़ जाए। तुम्हें भी कभी कभी शक तो आता होगा कि है या नहीं, लेकिन ये शक तुम टिकने नहीं देते, तुम कहते हो शक तो अच्छी बात नहीं, होना चाहिए ही। कोई माता पिता झूठ तो ना बोलेंगे, पंडित पुरोहित झूठ तो ना बोलेंगे, समाज परिवार झूठ तो ना बोलेगा, ये सब लोगों को झूठ बोलने में क्या रखा है, ये क्यों झूठ बोलेंगे सब, होना ही चाहिए। तो तुम कभी उठा के देखते भी नहीं पर्दा के पीछे कोई है, कि तुम खाली मंदिर की पूजा कर रहे, तुम्हारे 100 संतों में से 99 खाली मंदिर है जिनके भीतर कुछ भी नहीं, लेकिन उनकी पूजा चल रही। अक्सर तो ऐसा होता है कि जिनके भीतर कुछ है उनकी पूजा बहुत मुश्किल हो जाती, क्योंकि जिनके भीतर कुछ है वो तुम्हारी धारणाएं तोड़ देते, जिनके भीतर कुछ है वो तुम्हारे गुलाम थोड़ी, वो तुम्हारी लीक पर थोड़ी चलते, जिनमें कुछ नहीं है वही लीक पर चलते हैं।

दया आई, उसने फकीर को भीतर बुलाया, अपने नौकरों को आज्ञा दी कि खूब स्नान करवाओ, खूब धो धो के मालिश करो इसकी। उसको खूब धुलवाया गया, खूब स्नान करवाया गया, ऐसे साबुन जो उसने कभी देखे भी न थे, पानी के फवारे के नीचे बिठाया गया, ठंडे गर्म पानी में नहलाया गया, इत्र फूले तेल से उसकी मालिश की गई, अच्छे कपड़े पहनाए गए, और जब वो आया तो उसे भोजन करवाया गया, और कुछ रुपयों को भी उस धनपति ने उसे दिया और कहा कि जाओ। ये बात तो गांव भर में फैल गई। दो आदमियों ने सोचा ये तो बड़े गजब की बात है। वो दोनों भी आके दरवाजे पर खड़े होकर पीठ खुजलाने लगे। धनपति ने देखा, उसने अपने आदमी भेजे, कहा कि दोनों को जंजीरें डाल के मेरे सामने ले आओ। वो दोनों को जंजीरें डाल के लाया गया। वो दोनों चिल्लाने लगे कि बात क्या है, क्योंकि अभी अभी तो व्यवहार कुछ और किया गया था। मेरे हाथों में जंजीरें, हमारे हाथों में जंजीरें क्यों डाली जा रही है? वो घसीट के लाए गए और उस धनपति ने कहा कि यहां से भाग जाओ, कभी दोबारा यहां मत आना। क्योंकि वो अकेला था और अगर उसके पीठ में खुजान होती थी तो वो खुजा भी नहीं सकता था। तुम तो दो हो, एक दूसरे की पीठ क्यों नहीं खुजला ले? तुम्हें इतनी तो अकल होनी चाहिए। अब भाग जाओ, कभी दोबारा इस तरफ मत आना। अक्सर ऐसा होता है। महावीर को ज्ञान हुआ, वो नग्न खड़े हो गए। बहुतों को लगा कि नग्न खड़े होने से ज्ञान हो जाता है, तो बहुत अभी तक दरवाजों पर पीठ खुजला रहे। वो नग्न खड़े हो गए। नग्न खड़े होने से ही जैन, दिगंबर जैन, दूसरा कोई नहीं, श्वेतांबर जैन भी नहीं, दिगंबर जैन पूछता है, क्योंकि वो मानता नग्नता संत का लक्षण। महावीर नग्न हुए थे तो उसने संत की परिभाषा कर ली। जैसे महावीर पर संत की परिभाषा चुक जाती है, संत की परिभाषा चुकती ही नहीं, और संत कभी दो एक जैसे हुए नहीं और होंगे भी नहीं, क्योंकि जब कोई व्यक्ति संतत्व के शिखर को उपलब्ध होता है तो अद्वितीय हो जाता है, अकेला बेजोड़, उस जैसा फिर कभी दोबारा दूसरा आदमी नहीं होगा। इसका यह अर्थ नहीं कि कोई संत ना होगा, संत होंगे लेकिन फिर अपने जैसे होंगे। सब संत अनूठे होते, बस एक संत एक बार एक जैसा होता, दोबारा फिर नहीं होता। तो हजारों लोग नग्न होकर खड़े, उनमें कुछ भी नहीं है, लेकिन दिगंबर उनको पूछेगा, क्योंकि उसके संतत्व की परिभाषा में नग्नता जुड़ गई। इसलिए दिगंबर जैन किसी और को नहीं पूछ सकता जो कपड़े पहने हो, क्योंकि कपड़े पहने हुए तो संत हो ही नहीं सकता। दिगंबर जैन के सामने तुम मोहम्मद को खड़ा करो, वो कहेगा कि हजरत अभी भी कपड़े पहने हुए, अभी तक कपड़े पहने हुए तो ज्ञान हुआ ही नहीं, क्योंकि महावीर को जब ज्ञान हुआ तो कपड़े छोड़ गए, आप अभी तक कपड़े पहने हुए। ये बात जैन को नहीं जचेगी, वो मोहम्मद को तो मान ही नहीं सकता। मेरी एक किताब एक जैन मुनि को भेंट की गई। जिन मित्र ने भेंट की, उन्होंने मुझे आके बताया कि बड़ी अजीब बात हो गई। उन्होंने किताब पलट के देखी, उन्होंने कहा और तो सब ठीक है, इसमें मोहम्मद का नाम कैसे आया? किताब फेंक दी, किताब महावीर पर थी, किताब फेंक दी क्योंकि इसमें मोहम्मद का नाम कैसे आया? कहां महावीर और कहां मोहम्मद? उनको ये बर्दाश्त के बाहर हो गया कि मोहम्मद का नाम महावीर के साथ आया, और मेरी तो आदत खराब है, मैं तो जोड़ ही देता हूं। उनको ये बात बिल्कुल जची नहीं। मोहम्मद सांसारिक आदमी, ग्रस्त। अब अगर तुम जैनी के हिसाब से सोचो तो लगेगा भी, कितनी पत्नी है मोहम्मद की? दिगंबर जैन तो महावीर की एक पत्नी थी, उसको भी इनकार करते। महावीर की सच में एक पत्नी थी और एक लड़की भी हुई और दमान भी था, ये ऐतिहासिक तथ्य है। लेकिन दिगंबर जैन अपनी किताबों में लिखते हैं उन्होंने कभी विवाह नहीं किया, क्योंकि ये बात ही उनको अखरती कि महावीर और विवाह करें। हालांकि अज्ञान की अवस्था में कर ले तो हर्ष क्या है, फिर ज्ञानी तो बाद में हुए, मगर वो मानते हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता। महावीर तो अज्ञान की अवस्था में भी इतनी ऊंचाई पर थे कि वो विवाह तो कर ही नहीं सकते, इसलिए हुए विवाह को भी इंकार कर दिया है। लड़की पैदा हुई ये तो मान ही नहीं सकते, क्योंकि लड़की पैदा हुई तो उसका मतलब हुआ उन्होंने संभोग किया होगा। महावीर और संभोग करें, जरा सोचो, ये बात जस्ती नहीं। तो दिगंबर जैन ने ये बात ही जड़ से काट दी कि विवाह ही नहीं हुआ, न रहा बांस न बजेगी बांसुरी। अब इधर मोहम्मद ने 9 विवाह किए, ये बात जरा जस्ती नहीं। लेकिन मोहम्मद की तरफ से सोचो, मोहम्मद को सीधा सोचो, तो मोहम्मद ने 9 विवाह किए,
और इस किसी विवाह

में कोई काम वासना नहीं है। अरब देश लड़ाके देश थे, आदमी तो लड़ते और कट जाते और स्त्रियों की संख्या बढ़ती चली गई, पुरुष कम होते चले गए। जिस समाज में पुरुषों की संख्या कम हो जाए और स्त्रियों की संख्या ज्यादा हो जाए, उस समाज में बड़ा व्यभिचार फैल जाता है, फैल ही जाएगा, क्योंकि इतनी स्त्रियां कामातुर होकर भटकने लगेंगी और पुरुष तो कामातुर है ही। अब स्त्रियां इतनी उपलब्ध हो जाएंगी तो उपद्रव होने वाला है। तो मोहम्मद ने नियम बनाया कि हर मुसलमान कम से कम 4 विवाह करे। अब ये किसी दूसरे को, जिस देश में कभी स्त्री पुरुषों की संख्या में इतना बड़ा अंतर नहीं पड़ा, ये बात बेहूदी लगेगी, लेकिन उस ऐतिहासिक क्षण में ये बात बड़ी सार्थक थी। इन 4 विवाह ने मुसलमान देशों की नैतिकता बचा ली, नहीं तो ये डूब जाते, ये नष्ट हो जाते। खुद मोहम्मद ने 9 विवाह किए। ठीक ही है, अगर शिष्यों से 4 विवाह करवाने हो तो गुरु को 9 करने पड़े, ये बात बिल्कुल तर्कयुक्त है, इसी भी गणित की है। मोहम्मद 2 कदम आगे गए, तब तो कहीं तुम चलोगे थोड़ा बहुत, नहीं तो तुम चलोगे नहीं। आदमी एक ही पत्नी से काफी परेशान रहता है, 4 पत्नियां तुम सोचते हो कोई छोटी मोटी साधना। मैं तुमसे कहता हूं कि ब्रह्मचारी की साधना उतनी कठिन नहीं जितनी 4 पत्नियों वालों की साधना कठिन है। मुल्ला नसरुद्दीन एक चोरी में पकड़ा गया, मजिस्ट्रेट ने उसने कहा कि तू भला आदमी है और पहली दफे चोरी में पकड़ा गया, तू खुद ही बोल दे क्या सजा। मुल्ला ने कहा जो भी देना हो सजा दे दे, बस एक ही सजा मत देना, 2 विवाह करने की सजा मत देना। तो मजिस्ट्रेट बोला कि ये भी कोई सजा होती 2 विवाह करने की, बात क्या है तू इसको सार को खोल के कह। तो उसने कहा बात ये है, मैं पकड़ाते ही नहीं, इस आदमी की 2 औरतें 2 बजे रात इसके घर में घुसा, उधर मारपीट हो रही थी, एक औरत इसको ऊपर की तरफ खींच रही थी वो ऊपर रहती, और एक औरत इसको नीचे की तरफ खींच रही थी वो नीचे रहती, एक इसकी टांगें पकड़ी थी, एक इसके हाथ पकड़े थी, ये सीढ़ियों पे अटका था। इसकी ये घबराहट देख के और ये घर की हालत देख के मैं छिप के बैठ गया ये कोने में, कभी इस निपट जाए तो या तो मैं कुछ चोरी करूं या निकल भागूं, मगर ये निपटे ही नहीं। सुबह हो गई, मैं घर से निकल ना सका क्योंकि वो सीढ़ियां उतरने का एकमात्र रास्ता था, इसलिए मैं पकड़ा गया। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं जो सजा देनी हो दे देना, मगर 2 औरतों से विवाह करने की सजा मत देना। तुम सोचते हो कि ब्रह्मचर्य ही साधना है, तो तुम गलती सोचते हो। 4 स्त्रियों का साथ विवाह करना भी साधना ही है, बड़ी साधना हो सकती है। और मोहम्मद का विवाह तुम सोचते हो, मोहम्मद ने एक विवाह किया, पहला विवाह तो अपनी से दुगनी उम्र की, पहले विवाह में तो जो स्त्री थी वो करीब करीब बूढ़ी हो रही थी और मोहम्मद अभी जवान थे, उससे विवाह किया। कोई पुरुष अपने से बड़ी उम्र की स्त्री से विवाह करना पसंद नहीं करता। बड़ी उम्र की तो तुम छोड़ दो, तुमसे अगर 1 इंच ऊंची औरत हो तो भी तुम उससे विवाह करना पसंद नहीं करते। अपने से किसी भी स्थिति में बड़ी स्त्री से कोई विवाह करना नहीं पसंद करता। तुमसे ज्यादा पढ़ी लिखी हो तुम पसंद नहीं करते, तुमसे ज्यादा अनुभवी हो तो पसंद नहीं करते, उम्र ज्यादा हो तो पसंद नहीं करते, क्योंकि कम उम्र की स्त्री ही काफी कब्जा जमा लेती, बड़ी उम्र का तो कहने ही क्या। 5-7 साल पीछे की स्त्री भी तुम्हें धकेल देती, तुम्हारी सब समझदारी रखी रह जाती। तो अगर बड़ी उम्र की स्त्री हुई, ज्यादा अनुभवी हुई, ज्यादा पढ़ी लिखी हुई, तो अड़चन आएगी, बहुत अड़चन आ जाएगी। यद्यपि वैज्ञानिक हिसाब से ज्यादा उम्र की स्त्री से ही विवाह होना चाहिए। क्यों कहता हूं वैज्ञानिक हिसाब से, क्योंकि सारे संसार के आंकड़े ये बात कहते हैं कि स्त्रियां पुरुषों से ज्यादा जीती, 5 साल से 7 साल ज्यादा। तो अगर तुम 75 साल जियोगे तो तुम्हारी पत्नी 80 या 82 साल जिएगी। अब तुम 5-7 साल छोटी उम्र की स्त्री से विवाह करोगे तो तुम्हारे मरने में, तुम्हारी पत्नी के मरने में 10 साल का फासला होगा, तुम 10 साल के लिए उसे विधवा छोड़ जाओगे। ये अवैज्ञानिक। अगर विज्ञान की बात समझो तो तुम्हें अपने से 5-7 साल उम्र बड़ी स्त्री से विवाह करना चाहिए, ताकि तुम दोनों करीब करीब संसार से विदा हो। 75 साल के तुम होगे, 80 की वो हो जाएगी, दोनों करीब करीब मरोगे, ज्यादा दुख नहीं होगा, ना तुम अकेले छूटोगे ना वो अकेली छूटेगी। मोहम्मद ने बड़ी हिम्मत की कि अपने से बड़ी उम्र की स्त्री से विवाह कर लिया। मोहम्मद की परिस्थिति अलग, मोहम्मद के सोचने के ढंग अलग, मोहम्मद की बात अलग। फिर मोहम्मद जिन लोगों से बोल रहे थे वे लोग बिल्कुल ही खानाबदोश,
एकदम गैर पढ़े लिखे लोग, उनको तो छुड़ाना था अभी मूर्ति से। अभी तो उनका सबसे बड़ा उपद्रव यही था कि वो मूर्तियों की पूजा में लगे थे, और एक दो मूर्ति की नहीं 365 मूर्तियां बना रखी थी काबा में। एक दिन के लिए एक मूर्ति थी, हर दिन नई मूर्ति की पूजा चल रही थी। अभी तो वो बहुत नीचे धर्म में पड़े थे, उनको मूर्ति से किसी तरह छुटकारा दिलाना था। अभी उनसे ये घोषणा करनी कि अहम ब्रह्मास्मि हूँ बात ही पागलपन की होती, ये तो वो समझ ही नहीं पाते। ये तो पाठ बहुत आगे का है, ये तो भारत में संभव हो सका, क्योंकि ये पाठ के लिए काफी लंबी परंपरा चाहिए, हजारों साल की परंपरा चाहिए। ये तो धर्म के विश्वविद्यालय की आखिरी कक्षा है जहाँ घोषणा की जा सकती है अहम ब्रह्मास्मि, और लोग समझेंगे और नाराज न हो जाएंगे। तो अलग परिस्थितियां, अलग व्यक्तित्व, अलग ढंग। जैन राजी नहीं होगा कि मोहम्मद ज्ञान को उपलब्ध हुए, और मुसलमान राजी नहीं होंगे कि महावीर ज्ञान को उपलब्ध हुए, नंगे खड़े हो गए। ये बात तो जस्ती नहीं, ये तो ठीक नहीं, ये तो अशिष्ट, ये तो असामाजिक। कोई किसी दूसरे के संत से तो राजी नहीं होता, क्योंकि तुम्हारे संत की एक निश्चित धारणा है। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, सब धारणा छोड़ के तुम शून्य भाव से, शांत भाव से, मौन भाव से देखो तो तुम चकित हो जाओगे। मोहम्मद भी उसी महिमा को उपलब्ध हुए जिसको महावीर, बुद्ध भी उसी को उपलब्ध हुए जिसको क्राइस्ट। ये अलग ढंग है, अलग ढंग होने ही चाहिए। और एक व्यक्ति एक ही बार होता है, दोबारा दोहराया नहीं जाता है। परमात्मा इस संसार में किसी को दोहराता नहीं। आदमियों की तो छोड़ दो, तुम एक कंकड़ उठा लो और सारी पृथ्वी खोज डालो तो भी वैसा ही दूसरा कंकड़ ना पा सकोगे। एक पत्ता तोड़ लो इस बगीचे का और सारे जंगल खोज डालो, ठीक वैसा ही दूसरा पत्ता ना पा सकोगे। परमात्मा कार्बन कॉपी बनाते ही नहीं, परमात्मा मूल बनाता, मौलिक। प्रत्येक वस्तु नई और अद्वितीय। तो जब छोटी छोटी चीजों के संबंध में ये सच है, तो क्राइस्ट या मोहम्मद या महावीर या बुद्ध जैसे व्यक्ति तो परम आखिरी है, ये तो अद्वितीय, इन जैसा दूसरा कोई होता नहीं। नकल में पढ़ना मत, किसी जैसे बनने की कोशिश करना मत। तुम ही बन सको तो ही तुम परमात्मा को उपलब्ध हो सकोगे, और जब तुम अपनी परिपूर्णता में स्वयं हो जाते हो तब तुम्हारे भीतर एक नाद उठने लगता है। वो नाद है अहम ब्रह्मास्मि अनल हक। फिर ओम गलत कहता था, क्योंकि उसने ये कहा कि मैं परमात्मा हूँ और कोई नहीं, और मंसूर ने ठीक कहा कि मैं परमात्मा हूँ क्योंकि सिर्फ परमात्मा है और तो कोई है ही नहीं। परमात्मा ही है, पत्थर भी परमात्मा है तो मैं भी परमात्मा हूँ। इन दोनों वक्तव्यों की समानता के साथ साथ इनके भीतर छिपा हुआ भेद भी ठीक से देख लेना। तीसरा प्रश्न, किसी बुद्ध पुरुष के वचनों के मार्मिक अर्थ को समझ पाना क्या ध्यान को उपलब्ध हुए बिना संभव है? क्या तत्व ज्ञान और ध्यान की स्थिति के बीच कोई गहरा नाता है? इस विषय पर प्रकाश डालने का अनुग्रह करें। किसी बुद्ध पुरुष के वचनों को पूरा पूरा समझना हो तो ध्यान के बिना कोई उपाय नहीं, लेकिन थोड़ी थोड़ी झलक मिल सकती है ध्यान के बिना भी, थोड़ी थोड़ी भनक पड़ सकती है बिना ध्यान के भी। और अगर ये भनक न पड़ती होती तो फिर तुम चलोगे ही कैसे? तब तो तुम कहोगे जब ध्यान होगा तब समझ में आएगा, और जब तक समझ में नहीं आया तब तक चलें कैसे? और जब तक चलोगे नहीं तब तक ध्यान कैसे होगा? तब तो तुम एक बड़े चक्कर में पड़ जाओगे, एक दुष्ट चक्कर में पड़ जाओगे। तो दो बातें ख्याल रखना, ना तो ये ही बात सच होती है कि जो बुद्ध पुरुष कहते हैं वो तुमने सिर्फ सुन लिया बुद्धि से और समझ में आ जाएगा, नहीं। अगर इतने से ही समझ में आ जाए तो फिर ध्यान की कोई जरूरत ही ना रहेगी। और ना ही दूसरी बात सच है कि जब ध्यान होगा तभी समझ में आएगा, क्योंकि अगर ध्यान होगा तभी समझ में आएगा तो तुम ध्यान भी कैसे करोगे? क्योंकि बुद्ध पुरुषों में कुछ रस आने लगे तभी तो ध्यान में लगोगे ना। तो बुद्ध पुरुषों की वाणी सुनते समय पूरी तो समझ में नहीं आती, कभी नहीं आती। पूरी तो तभी समझ में आएगी जब तुम भी बुद्ध पुरुष हो जाओगे, जब तुम भी उन जैसे हो जाओगे तभी पूरा अनुभव होगा। लेकिन अभी थोड़ी भनक तो पड़ सकती। जब छोटा बच्चा चलना शुरू करता है तभी दौड़ नहीं सकता है, ये बात सच है। लड़खड़ा तो सकता है, और अगर तुम कहो कि अभी लड़खड़ा भी नहीं सकता तो फिर कभी चल ही ना सकेगा।
छोटा बच्चा जब पहले कदम उठाता है तो देखा कैसा डरा डरा सहारे की आकांक्षा रखता है, माँ हाथ पकड़ ले, माँ का हाथ पकड़ के हिम्मत करके दो कदम चल लेता है। छोटे बच्चे के पास पैर तो है, उसके शरीर को संभालने योग काफी पैर है। तुम्हारे बराबर पैर नहीं तो तुम्हारे बराबर शरीर भी नहीं, लेकिन अनुपात ठीक उतना ही है जितना तुम्हारा। तुम्हारे बड़े शरीर को संभालने के लिए बड़े पैर हैं, उसके छोटे शरीर को संभालने के लिए छोटे पैर, लेकिन उसके शरीर को संभालने के लिए पर्याप्त पैर है, मगर अभी अनुभव नहीं। उसे ये भरोसा नहीं कि मैं खड़ा हो सकूंगा, उसे ये आत्मविश्वास नहीं। तो माँ का हाथ पकड़ के चल लेता है। गुरु का हाथ पकड़ के चलने का इतना ही अर्थ होता है कि जहां तुम अभी नहीं चले हो, यद्यपि चल सकते हो, लेकिन तुमने कभी प्रयास नहीं किया है। तो कोई जो चल चुका है, कोई जो चल रहा है, तुम उसका हाथ पकड़ लेते हो। फिर धीरे धीरे माँ अपना हाथ छुड़ाने लगती है, फिर उंगली ही पकड़ रखती है, फिर धीरे धीरे उंगली भी खींच लेती है। एक दिन बच्चा पाता है कि अरे वो तो खुद ही खड़ा होकर चल सकता है। जब पहली दफे बच्चे चलते हैं तो तुमने देखा वो रुकते ही नहीं, वो बैठते ही नहीं। तुम लाख उपाय करोगे, अब तू थक गए, अब तू बैठ जा, मगर वो चक्कर मार रहे। इतना आनंद उनको अनुभव होता है कि एक अपूर्व घटना हाथ लग गई कि मैं भी चल सकता हूं। ऐसी ही घटना ध्यान के मार्ग पर भी घटती। बुद्ध पुरुषों की वाणी पहले तो सिर्फ झलक देगी, जरा सी देर के लिए बिजली कौन जाएगी, एक किरण उतर जाएगी, मगर किरण तुम्हें प्यास से भर जाएगी और तुम्हें ये आश्वासन मिलने लगेगा, हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। इस व्यक्ति को हुआ है तो मुझे क्यों नहीं हो सकता, मुझ जैसे ही व्यक्ति को तो हुआ है। आखिर बुद्ध के हड्डी मांस मज्जा तुम्हारे जैसे ही है, कुछ भेद तो नहीं। तुम्हारे जैसे आंख कान नाक, तुम जैसा भूख लगते तो भोजन करते और तुम जैसे रात थक के सो भी जाते, तुम जैसे ही जवान हुए, तुम जैसे ही बूढ़े हुए, तुम जैसे ही एक दिन मर भी गए। तो बुद्ध पुरुष ठीक तुम जैसे बीमार भी होते, रुग्ण भी होते, स्वस्थ भी होते। बूढ़े हो गए तो बाल भी सफेद हो गए, बूढ़े हो गए तो हाथ पैर भी कपने लगे, ये सब तुम जैसा ही है। लेकिन तुम जैसे इस मनुष्य में भी कुछ घटा है जो तुम में लगता है अभी नहीं घटा। इससे हिम्मत बंधती है कि अगर मेरे जैसे व्यक्ति में ये हो सका है तो शायद मुझ में भी हो सके, शायद मैं भी एक संभावना अपने भीतर लिए चल रहा हूँ, एक बीज जिसको ठीक भूमि नहीं मिली, शायद मैं भी अपने भीतर एक संभावना लिए चल रहा हूँ जिस पे मैंने कभी प्रयोग नहीं किया और वास्तविक बनाने की चेष्टा नहीं की। किसी गायक को गीत गाते देख कर तुम्हें याद आ जाती अपने कंठ की, कि कंठ तो मेरे पास भी है, और किसी नर्तक को नाचते देखकर तुम्हें याद आ जाती अपने पैरों की, कि पैर तो मेरे पास भी हैं, चाहूं तो नाच तो मैं भी सकता हूं। किसी चित्रकार को चित्र बनाते देखकर तुम्हें भी याद आ जाती है कि चाहूं तो चित्र मैं भी बना सकता हूं। ऐसे ही किसी बुद्ध को देखकर तुम्हें याद आ जाती है कि चाहूं तो बुद्धत्व मैं भी पा सकता हूं। बस यही चाह, ये समझ नहीं है पूरी, प्यास शुरू हुई, उजाला सा बिखर जाता है, चाहे जैसा भी हो हर वक्त गुजर जाता है, बात रह जाती है पर ढेर बिखर जाता है। गम में बैसाख के सूरज की तपन होती है, ऐसे मौसम में समंदर भी उतर जाता है। रोज दिन भर तो अंधेरों में सफर करते हैं, शाम होते ही उजाला सा बिखर जाता है, टूट जाता है हर एक तसलसल यारो, कोई लम्हा कभी ऐसा भी गुजर जाता है। कोई उम्मीद किरण बन के चमक उठती, दिल से कुछ देर को हर बोझ उतर जाता है, उजाला सा बिखर जाता है। कोई उम्मीद किरण बन के चमक उठती। बुद्ध पुरुषों के पास, तीर्थंकरों के पास, सदगुरुओं के पास, परमहंसों के पास, सूफियों के पास कोई उम्मीद किरण बन के चमक उठती, दिल से कुछ देर को हर बोझ उतर जाता है। कुछ देर को ही, क्षण भर को ही सही, कोई पूरा सूरज नहीं उगता, लेकिन एक किरण चौंक जाती है। लेकिन उस किरण में तुम्हें अपना भविष्य दिखाई पड़ जाता है कि ये हो सकता है। टूट जाता है हर एक तसलसल यारो, कोई लम्हा कभी ऐसा भी गुजर जाता है, कोई लम्हा एक क्षण भर को
एक पल भर को आंख खुल जाती फिर बंद हो जाती, लेकिन वो एक पल जीवन को बदल देने वाला पल सिद्ध होता है। पूछते हो किसी बुद्ध पुरुष के वचनों के मार्मिक अर्थ को समझ पाना क्या ध्यान को उपलब्ध हुए बिना संभव है? हाँ भी और नहीं भी। हाँ इस अर्थ में कि झलक मिलती है, एक किरण सी उतरती है, एक उमंग जग जाती, एक प्यास उठने लगती, एक अज्ञात खिंचाव पैदा हो जाता है। इसलिए हाँ और नहीं इसलिए कि सुन के ही कहीं पूरी बात थोड़ी हो जाती। चलना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। बहुत कूड़ा करकट है वो जला देना पड़ेगा, आग से गुजरना होगा ताकि सोना निखर जाए। बुद्ध पुरुषों की बात सुन के यात्रा शुरू होती, मंजिल नहीं आ जाती। मंजिल तो आएगी तभी जब ध्यान पूरा होगा, और जब ध्यान पूरा होगा तभी पूरी बात भी समझ में आएगी। क्योंकि पूरी बात समझने का एक ही अर्थ हो सकता है कि जो उनका अनुभव था वो मेरा भी अनुभव हो गया। जब अनुभव एक जैसे हो जाते हैं तभी बात समझ में आती। चौथा प्रश्न, भगवान जिस दिन मैं पालूंगा उस दिन कैसे आपको धन्यवाद दूंगा? अब अभी से व्यर्थ की फिक्र में मत पड़ो। जब पाले नहीं जैसी अपूर्व घटना घट जाएगी तो धन्यवाद भी खोज ही लोगे। ये तो छोटी सी बात रही, उतनी बड़ी बात हो जाएगी तो क्या तुम सोचते हो धन्यवाद देने का कोई ढंग न खोज पाओगे? भगवान को खोज लोगे और धन्यवाद देने का ढंग न खोज पाओगे? हो ही जाएगा, तुम उसकी फिक्र मत करो। और अभी से कोई अभ्यास थोड़ी करना कि धन्यवाद का अभ्यास करोगे। अभ्यास करोगे तो झूठा होगा, और झूठा अभ्यास अगर रहा तो उस मौके पर भी शायद झूठे अभ्यास से ही धन्यवाद दोगे। उस धन्यवाद को तो कम से कम स्वस्फूर्त रहने दो, उसकी तो तैयारी मत करो, उसका तो रिहर्सल मत करो। मुल्ला नसुद्दीन एक दिन रेल यात्रा से वापस लौटा तो मुझसे कहने लगा कि रास्ते में एक टिकट चेकर उसे बड़े अजीब ढंग से घूर रहा था। तो मैंने पूछा, अजीब ढंग से क्या मतलब तुम्हारा नसुद्दीन? तो उसने कहा कि यानी वह ऐसे घूर रहा था जैसे मेरे पास टिकट हो ही नहीं। तो मैंने पूछा, फिर तुमने क्या किया नसुद्दीन? उसने कहा, मैं क्या करता, मैं भी उसे ऐसे घूरने लगा जैसे सचमुच मेरे पास टिकट हो। अब ऐसे अभ्यास चल रहे हैं, टिकट चेकर तुम्हें घूर रहा है कि जैसे तुम्हारे पास टिकट ना हो, तुम ऐसे घूर रहे हो जैसे तुम्हारे पास टिकट हो। झूठे अभ्यासों में मत पड़ो, ये बात पूछो ही मत। धन्यवाद निकलेगा उस अनुभव से, सद्य स्नान अभी अभी नहाया हुआ ताजा, जैसे कोंपल फूटती नई, जैसे सुबह सूरज उगता नया, ऐसा धन्यवाद उगेगा। और उस धन्यवाद की बात ही कुछ और है।

हाय दोस्तों, मैं हूं रूप कुमार राठौर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना पर 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

0: नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूँ सरिता आपके साथ और शुरू हो चुका है कार्यक्रम आत्मदर्शन। श्रोताओं, जैसा कि आप सब जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं बहुत सारे ऐसे आध्यात्मिक कथाओं और प्रसंगों के बारे में जिनसे बहुत सारा ज्ञान हमें प्राप्त होता है, और यही ज्ञान हमारे साथ बांटने के लिए स्टूडियो में मौजूद है रागलेखा दासी जी, चरणासी युगाचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
1: हरे कृष्ण
0: जी। श्रोताओं, हमने प्रारंभ कर दिया था महाभारत काव्य, जो ये ग्रंथ है इसके बारे में हमने चर्चा पिछले कई एपिसोड से शुरू कर दी थी, और पिछले एपिसोड में हमने रागलेखा दासी जी से एक कथा जानी जिसमें पक्षीराज जो गरुड़ हैं वो कैसे पक्षीराज बने और वो किस तरह से अमृत लेने पहुंच गए थे अपनी माता जी को दासत्व से मुक्त कराने के लिए, हमने ये कथा रागलेखा दासी जी से जानी। तो आज एक नई कथा, एक नया प्रसंग हम इस महाभारत की कथाओं के अंतर्गत जानते हैं रागलेखा दासी जी से। जी रागलेखा दासी जी,
1: अब शौनक आदि जो ऋषि थे उन्होंने पूछा है, सूत नंदन, जब सर्पों को ये बात मालूम हो गई कि माता कद्रु ने हमें शाप दे दिया, तब उन्होंने उसके निवारण के लिए क्या किया? तो उग्र श्रवाद जी कहते हैं, क्योंकि ये संवाद चल रहा है शौनक आदि ऋषि जो 88,000 है और उग्र श्रवाद जी जो सूत गोस्वामी जी के पुत्र है, उग्र श्रवाद सूत, तो उनके बीच में चल रहा है। तो उग्र श्रवाद जी कह रहे हैं कि उन सर्पों में से एक शेष नाग भी थे, उन्होंने कद्रु और अन्य सर्पों का साथ छोड़ के कठिन तपस्या प्रारंभ कर दी। ये केवल हवा पी कर रहते थे और अपने व्रत का पूर्ण पालन करते थे। वे अपनी इंद्रियों को वश करके गंध मादन, बद्रिकाश्रम, गोकर्ण, हिमालय आदि की तराई में एकांत वास करते और पवित्र तीर्थों और धामों की यात्रा भी करते। हनुमान जी ने देखा शेषनाग के शरीर का मांस, त्वचा, नाड़ियां सब सूख गई है, क्योंकि उनका सच्चा धैर्य और तपस्या देखकर वे उनके पास आए और बोले, शेष, तुम अपनी तीव्र तपस्या से प्रजा को संतप्त क्यों कर रहे हो? इस घोर तपस्या का उद्देश्य क्या है? कोई प्रजा के हित का काम क्यों नहीं करते? बतलाओ तुम्हारी क्या इच्छा है? शेष जी ने कहा, भगवान मेरे सब भाई मूर्ख है, इसलिए मैं उनके साथ नहीं रहना चाहता, आप मेरी इस इच्छा का अनुमोदन कीजिए। विनीता और उसके पुत्र गरुड़ और अरुण से द्वेष करते हैं, इसलिए मैं उनसे उब कर तपस्या कर रहा हूँ। विनीता नंदन, गरुड़ निसंदेह हमारे भाई हैं, अब मैं तपस्या करके शरीर छोड़ दूंगा। मुझे चिंता है तो बस इस बात की कि मरने के बाद उन दुष्टों का संग ना हो। ब्रह्मा जी ने कहा, शेष, मुझसे तुम्हारे भाइयों की करतूत छुपी नहीं है, अब तुम उनकी चिंता छोड़कर अपने लिए जो चाहो वर मांग लो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, क्योंकि सौभाग्यवश तुम्हारी बुद्धि धर्म में अटल है, तुम्हारी बुद्धि सर्वदा ऐसी ही बनी रहे। शेष ने कहा, पितामह, मैं यही वर चाहता हूँ कि मेरी बुद्धि धर्म, तपस्या और शांति में संलग्न रहे। ब्रह्मा जी ने कहा, शेष, मैं तुम्हारे इंद्रियों और मन के संयम से बहुत प्रसन्न हूँ, मेरी आज्ञा से तुम प्रजा के हित के लिए काम करो। ये सारी पृथ्वी, पर्वत, वन, सागर, ग्राम, विहार, नगरों के साथ हिलती डुलती रहती है, तुम इसे इस प्रकार धारण करो कि इससे वह अचल हो जाए। शेष ने कहा, मैं इस पृथ्वी को इस प्रकार धारण करूंगा जिससे वह हिले डुले नहीं, आप इसको मेरे सिर पर रख दीजिए। हनुमान जी ने कहा, शेष, पृथ्वी तुम्हें मार्ग दे देगी, तुम उसके भीतर घुस जाओ, तुम पृथ्वी को धारण करके मेरा बड़ा प्रिय कार्य करोगे। आज्ञा अनुसार शेष ने भूविवर में प्रवेश करके नीचे चले गए और समुद्र से घिरी हुई पृथ्वी को चारों ओर से पकड़कर सिर पर उठा लिया। तभी से स्थिर भाव में स्थित है। माता का श्राप सुन के वासुकी नाग को बड़ी चिंता हुई, वे सोचने लगे कि इस प्रकार श्राप का प्रतिकार क्या है। उन्होंने अपने भाइयों को इकट्ठा किया और सबसे सलाह करने लगे। वासुकी ने कहा, भाइयों, विपत्ति आने से पहले हमें उपाय करने से काम बन सकता है। तब ठीक है कहकर सभी बुद्धिमान और चतुर सर विचार करने लगे। हम लोग ब्राह्मण बनकर जन्मे जय के इससे भिक्षा मांगे कि तुम यज्ञ मत करो। कुछ ने कहा, हम मंत्री बनकर ऐसी सलाह दे कि जिससे यज्ञ ही ना हो पाए। कुछ ने कहा कि हम बादल बनकर यज्ञ की आग बुझा देंगे। कुछ बोले, हम यज्ञ की सामग्री ही चुरा लेंगे। कुछ ने कहा, हम लाखों आज्ञा तो दस लेंगे। अंत में सर्पों ने कहा, वासुके, हम सब तो यही सोच सकते हैं, अब आपको जो अच्छा लगे आप उपाय शीघ्र कीजिए। वासुकी ने कहा, हमें तो तुम लोगों के विचार ठीक नहीं जच रहे हैं, इन विचारों में अव्यर्थता बहुत अधिक है, हम लोग अपने पिता महात्मा कश्यप जी को प्रसन्न करें, उनकी आज्ञा अनुसार काम करें, इस प्रकार हम लोग का हित हो वही काम करना है। मैं सबसे बड़ा हूँ, भलाई बुराई की जिम्मेदारी मेरे ही सिर पर होगी, इसलिए मैं बहुत चिंतित हो रहा हूँ। उनमें से एक इलापत्र नाम का एक नाग था। उसने सब सर्पों और वासुकी की सम्मति सुनकर कहा कि भाइयों, उस यज्ञ का रुकना और अथवा जन्मेजय का मान जाना संभव नहीं है। जिस समय माता ने श्राप दिया था, उस समय डरकर मैं उसी की गोदी में छिप गया था। वह क्रूर श्राप सुनकर देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास जाकर कहा, भगवान कठोर हृदय का ध्रुव को छोड़कर ऐसा कौन स्त्री होगी जो अपने मुंह से अपनी संतान को श्राप दे डाले। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, इस समय जगत में सब बहुत बढ़ गए हैं, क्रोधी, डरावने, विषैले हैं। प्रजा के हित के लिए मैंने कद्रु को रोका नहीं, और इस श्राप से शूद्र प्राप्ति जहरीले सांपों का ही नाश होगा, धर्मात्मा सर्प सुरक्षित रहेंगे। ये बात भी है कि जयावर वंश में जरतकारु नाम के एक ऋषि होंगे, उनके पुत्र का नाम होगा आस्तिक, वही जन्मेजय का सर्प यज्ञ बंद करा सकेंगे, तब जाकर धार्मिक सर्पों का छुटकारा होगा। जरतकारु की पत्नी का नाम भी जरतकारु ही होगा, वह सर्पराज वासुकी की बहन होगी, उसके घर से आस्तिक का जन्म होगा और वही सर्प उसको मुक्त करेगा। सर्पराज वासुकी, मेरे विचार से आपकी बहन जरतकारु का विवाह उस जरतकारु ऋषि से ही होना चाहिए, और जिस समय दीक्षा के समान पत्नी की याचना करें, उसी समय उन्हें आप अपनी बहन दे दें, यही इस विपत्ति से रक्षा का उपाय है। इलापत्र की बात सुनकर सभी सर्पों ने प्रसन्नचित से कहा, ठीक है ठीक है। तभी से वासुकी नाग बड़े प्रेम से अपनी बहन की रक्षा करने लगे। उसके थोड़े दिनों बाद ही समुद्र मंथन हुआ, जिसमें वासुकी नाग को नेती मतने वाली रस्सी बनाया गया। वासुकी ने सर्पों को जरतकारु ऋषि की खोज में नियुक्त कर दिया और उनसे कहा कि जिस समय जरतकारु ऋषि विवाह करना चाहे, उसी समय शीघ्र से शीघ्र आकर मुझे सूचित करने, हम लोगों के कल्याण का यही सुनिश्चित उपाय है। शौनक ऋषि ने पूछा, सूत नंदन, आपने जिन जरतकारु ऋषि का नाम लिया, उनका जरतकारु नाम क्यों पड़ा और उनके नाम का अर्थ क्या है और उनसे आस्तिक का जन्म कैसे हुआ? विश्ववास जी कहते हैं, जरा शब्द का अर्थ है क्षय, कारु का अर्थ है दारुण। तात्पर्य यह है कि उनका शरीर पहले बड़ा दारुण हट्टा करता था, इसे उन्होंने तपस्या करके उसको जीर्ण शीर्ण कर दिया, इसी से उनका नाम जरतकारु पड़ा। वासुकी नाग की बहन भी पहले वैसी ही थी, उसने भी शरीर को तपस्या के द्वारा शीर्ण कर लिया, इसलिए उसका नाम भी जरतकारु हुआ। अब आस्तिक के जन्म की कथा सुनिए। जरतकारु ऋषि बहुत दिनों तक ब्रह्मचर्य धारण करके तपस्या में संलग्न रहे, वे विवाह करना नहीं चाहते थे, जब तब स्वाध्याय में लगे रहते थे, निर्भय होकर स्वच्छंद रूप से पृथ्वी पर विचरण करते। उन दिनों परीक्षित का राजत्व काल था, राज्य था। जरतकारु का नियम था कि जहाँ सायकाल हो जाता वे वहीं ठहर जाते और पवित्र तीर्थों में जाकर स्नान करते और ऐसे कठोर नियमों का पालन करते जिनको पालना विषय लोलो पुरुषों के लिए असंभव है। ये केवल वायु की कर निराहार रहते। इस प्रकार उनका शरीर सूख सा गया। एक दिन यात्रा करते समय उन्होंने देखा कि कुछ पितर नीचे की ओर मुंह करे हुए एक गड्ढे में लटक रहे हैं। वे एक खसका तिनका पकड़े हुए हैं और वे केवल वही केवल बच भी रहा था। उसी तिनके की जड़ को भी धीरे धीरे चूहा उतर रहा था। पितृगण निराहार थे, दुबले और दुखी थे। जरतकारु ने उनके पास जाकर पूछा, आप लोग जिस खसके तिनके का सहारा लेके लटक रहे हैं, उसे एक चूहा को उतरता जा रहा है, आप लोग कौन हैं और अब इस खस की जड़ कट जाएगी, तब आप लोग नीचे की ओर मुंह किए गड्ढे में गिर जाएंगे। आप लोग को इस अवस्था में देखकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है, मैं आपकी क्या सेवा करूं? आप लोग मेरी तपस्या के चौथे तीसरे आधे भाग से विपत्ति से बचे तो बताएं, और तो और क्या, मैं अपनी सारी तपस्या का फल देकर भी आप लोग को बचाना चाहता हूँ, आप आज्ञा कीजिए। पितरों ने कहा, आप बूढ़े ब्रह्मचारी हैं, हमारी रक्षा करना चाहते हैं, किंतु हमारी विपत्ति तपस्या के बल से नहीं कर सकती। तपस्या का फल तो हमारे पास भी है, किंतु वंश परंपरा के नाश के कारण हम लोग घोर नरक में गिर रहे हैं, इसलिए हमारी बात सुनिए। हम लोग जजावर नाम के ऋषि हैं, वंश परंपरा क्षीण हो जाने से हम लोग पुण्य लोकों से नीचे गिर गए हैं। हमारे वंश में अब केवल एक ही व्यक्ति रह गया है, वह भी नहीं के बराबर है, वह तपस्वी हो गया है, उसका नाम जरतकारु है। वह वेद वेदांगों का विद्वान तो है ही, संयमी, उदार और व्रतशील भी है। तपस्या के लोभ से हमें संकट में डाल दिया उसने। उसके कोई भाई बंधु अथवा पति पुत्र नहीं है, इसीलिए हम लोग बेहोश होकर अनाथ की तरह गड्ढे में लटक रहे हैं। यदि आपको कहीं मिले तो उसे इस प्रकार कहना, जरत्कारु, तुम्हारे पितर नीचे मुंह लटका कर गड्ढे में लटक रहे हैं, तुम विवाह करके संतान उत्पन्न करो, जब हमारे वंश की के तुम ही एक आश्रय हो। ब्रह्मचारी जी, ये जो आपने घस की जड़ देख रहे हैं, यही हमारे वंश का सहारा है। हमारी वंश परंपरा के जो लोग नष्ट हो चुके हैं, वही उसकी जड़ी हुई कटी हुई जड़े हैं। ये अधकटी जड़ ही जरत्कारी है। आप जो कुछ देख रहे हैं ये सब जरत्कारी से कहिएगा, और उससे कृपा करके ये बतलाइए कि आप कौन हैं और हमारे बंधु की तरह हमारे लिए क्यों शोक कर रहे हैं। जरत्कारु ने पितरों से कहा कि आप लोग मेरे ही पिता और पितामह हैं, आप लोगों का अपराधी पुत्र जरत्कारु हूँ मैं, आप लोग मुझे अपराधी को दंड दीजिए और मेरे करने योग्य काम बतलाइए। पितरों ने कहा, बेटा ये बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम संयोगवश यहाँ आ गए, मैं अखंड ब्रह्मचार्य का पालन करके स्वर्ग प्राप्त करूं। जरत्कारु ने कहा, मेरा अपने मन में दृढ़ संकल्प कर लिया है कि मैं कभी विवाह नहीं करूंगा, परंतु आप लोगों को उल्टे लटकते देखकर मैंने अपना ब्रह्मचार्य का निश्चय पलट लिया। अब मैं आप लोगों के लिए निसंदेह विवाह करूंगा, और यदि मुझे मेरे ही नाम की कन्या मिल जाएगी तो वह भी भिक्षा की तरह, तो मैं उस पत्नी के रूप में स्वीकार कर लूंगा, परंतु उसके भरण पोषण का भार नहीं उठाऊंगा, ऐसी सुविधा मिलने पर ही विवाह करूंगा, अन्यथा नहीं। आपके कल्याण के लिए मुझसे पुत्र होगा, वह आप पर लोग आपको परलोक में सुखी सुख से रहने देगा। जरत्कारु अपने पितरों से इस प्रकार कहकर पृथ्वी पर विचरने लगे, परंतु एक तो उन्हें बुरा समझकर उन्हें कोई अपनी कन्या ब्याना नहीं चाहता था, और दूसरे उनके अनुरूप कन्या मिलती भी नहीं थी। जरत्कारु सोचने लगे, मैं पितरों का दुख मिटाने के लिए उनकी प्रेरणा से कन्या की भीख मांग रहा हूँ, जिस कन्या का नाम मेरा ही हो, जो भिक्षा की तरह मुझे दी जाए और जिसके भरण पोषण का भार मुझ पर ना रहे, ऐसी कन्या मुझे प्रदान करो। वासुकी नाग के द्वारा नियुक्त शर्त जरत्कारु की बात सुनकर नागराज के पास गए। उन्होंने चट चट अपनी बहन लाकर भिक्षा के रूप में जरत्कारु ऋषि को समर्पित की। वासुकी से पूछा इसका क्या नाम है, और साथ ही ये भी कहा कि मैं इसके भरण पोषण नहीं करूँगा। वासुकी नाग ने कहा, मैं इसका भरण पोषण और रक्षण करूंगा, इसके अतिरिक्त एक शर्त ये है कि ये कभी मेरा अप्रिय कार्य ना करे, करेगी तो मैं इसे अवश्य छोड़ दूंगा। जरत्कारु ऋषि अपनी पत्नी जरत्कारु के साथ वासुकी नाग के श्रेष्ठ भवन में रहने लगे। उन्होंने अपनी पत्नी को भी अपनी शर्त की सूचना दे दी कि मेरे रुचि के विरुद्ध ना हो, ना तो कुछ करना है और ना कहना, ऐसा करूंगी तो मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा। उनकी पत्नी ने स्वीकार कर लिया और वह सावधान रह के उनकी सेवा करने लगी। समय पर उसे गर्भ रह गया और वह धीरे धीरे बढ़ने लगा। एक दिन की बात है, जरत्कारु ऋषि कुछ खिन्न होकर अपनी पत्नी के गोद में सर रहकर सोए हुए थे। वे सो ही रहे थे कि सूर्यास्त का समय हो आया। ऋषि पत्नी ने बड़ी मधुर वाणी से कहा, महाबाग उठिए, सूर्यास्त हो गया है, आचमन करके संध्या कीजिए, यह अग्निहोत्र का समय है। ऋषि जरत्कारु जगे, क्रोध के मारे उनका होंठ कांपने लगा। उन्होंने कहा, सर्पिनी, तूने मेरा अपमान किया है, अब मैं तेरे पास नहीं रहूंगा, जहाँ से आया हूँ वही चला जाऊंगा। मेरे हृदय में दृढ़ निश्चय है कि मेरे सोते रहने पर सूर्यास्त नहीं हो सकता, अपमान के स्थान पर रहना अच्छा नहीं है, अब मैं जाऊंगा। अपने पति के हृदय में कपकपी पैदा करने वाली बात सुनकर ऋषि पत्नी ने कहा, भगवान, मैंने अपमान करने के लिए आपको नहीं जगाया, आपके धर्म का लोप ना हो मेरी यही दृष्टि थी। जरत्कारु ऋषि ने कहा, एक बार जो मुंह से निकल गया वह झूठा नहीं हो सकता, मेरे जाने के बाद अपने भाई से कहना कि वे चले गए, और यह भी कहना कि मैं यहाँ बड़े सुख से रहा, मेरे जाने के बाद तुम किसी प्रकार की चिंता मत करना। ऋषि पत्नी शोकग्रस्त हो गई, उसका मुंह सूख गया और वाणी गदगद हो गई।
0: और एक बहुत ही सुंदर प्रसंग हम अभी रागलेखा दासी जी से जान रहे थे, अभी बहुत प्यारा सा भजन सुना हमने, उसके बाद हम इस कथा को आगे जारी रखते हैं। जी रागलेखा दासी जी, कहानी आप पूरी कीजिए।
1: जी, तो ऋषि पत्नी जो थी, उसकी पत्नी जो थी जरत्कारु की, जो पत्नी थी उसका नाम भी जरत्कारु था, तो बोली कि हमारे जाति भाई कद्रु माता के श्राप से ग्रस्त है, आपसे एक संतान उत्पन्न होने की आवश्यकता है, उसी से हमारी जाति का कल्याण होगा, आपका और मेरे सहयोग निष्फल नहीं होना चाहिए, अभी आप मेरे घर से संतान भी तो नहीं हुई है। पत्नी की बात सुनकर ऋषि ने कहा, तुम्हारे पेट में अग्नि के समान तेजस्वी गर्भ है, वे बड़ा विद्वान और धर्मात्मा ऋषि होगा। ये कहकर जरत्कारु ऋषि चले गए। सुने आने पर वासुकी की बहन जरत्कारुणी के गर्भ से एक दिव्य कुमार का जन्म हुआ। उसके जन्म से ही मातृवंश और पितृवंश दोनों का भय जाता रहा। तमस्या बड़ा होने पर उसने चवन मुनि से वेदों का सांगोपांग अध्ययन किया। जब वे गर्भ में था तभी पिता ने उसके संबंध में अस्थि है पद का उच्चारण किया, इसलिए उसका नाम अस्तिक हो गया। उग्रश्रवादी ने कहा, राजा जन्मेजय ने अपने मंत्रियों से पूछा कि मेरे पिता के जीवन में कौन सी घटना घटित हुई, उनकी मृत्यु किस प्रकार हुई थी। मैं उनकी मृत्यु का वितान सुनकर वही करूंगा जिससे जगत का लाभ हो। क्योंकि परीक्षित महाराज की मृत्यु हो गई थी तो राजा जन्मेजय उनके पुत्र है, तो अब वो जानना चाहते हैं कि मेरे पिता की मृत्यु कैसे हुई। मंत्रियों ने कहा, महाराज आपके पिता बड़े धर्मात्मा, उदार और प्रजापालक थे। हम बहुत संक्षेप में उनके चरित्र को सुनाते हैं। वे सारी पृथ्वी की ही रक्षा करते थे, उनकी प्रजा हष्ट पुष्ट रहती थी। भगवान श्री कृष्ण आपके पिता के प्रति बड़ा प्रेम रखते थे। जन्मेजय ने कहा, मैं तो अपने पिता की मृत्यु का कारण जानना चाहता हूँ। मंत्रियों ने कहा कि उन्होंने एक बाण से एक हिरण को मारा और उसके भागने पर उसका पीछा किया। वे अकेले ही पैदल बहुत दूर तक वन में हिरण को ढूंढते हुए चले गए, परंतु उसे पा नहीं सके। वे 60 वर्ष के हो चुके थे, इसलिए थक गए और उन्हें भूख भी लग गई। उसी समय एक मुनि का दर्शन हुआ, वे मौनी था। उन्होंने उसी से प्रश्न किया परंतु वे कुछ नहीं बोले। उसी समय राजा भूखे और थके माने थे, इसलिए मुनि को कुछ ना बोलते देख कर उनका तिरस्कार करने के लिए धनुष की नोक से मरा हुआ सांप उठाकर उनके कंधे पर डाल दिया। मौनी ऋषि श्रमिक के पुत्र थे श्रृंगी। उन्होंने हाथ में जल लेकर आपके पिता को श्राप दिया जिसने मेरे निरपराध पिता के कंधे पर मरा हुआ सांप डाल दिया। वह दुष्ट को तक्षक नाग क्रोध करके अपने विष से 7 दिन के भीतर ही जला देगा। श्रमिक मुनि ने ये सब सुनकर अच्छा नहीं समझा। तक्षक अपने विष से 7 दिन के भीतर ही आपको जला देगा, आपके पिता सावधान हो गए। 7वें दिन जब तक्षक आ रहा था, उसने कश्यप नामक एक ब्राह्मण को देखा। उसने पूछा, ब्राह्मण देवता, आप इतनी शीघ्रता से कहाँ जा रहे हैं और क्या करना चाहते हैं? कश्यप ने कहा, मैं जहाँ जा रहा हूँ परीक्षित को, राजा परीक्षित को तक्षक सांप जलाएगा, मैं वही जा रहा हूँ, उसे तुरंत जीवित कर दूंगा। मेरे पहुँच जाने पर तो सर्प उसे जला भी नहीं सकेगा। तक्षक ने कहा, मैं ही तक्षक हूँ, आप मेरे डसने के बाद इस राजा को क्यों जीवित करना चाहते हैं? मेरी शक्ति देखिए, मेरे डसने के बाद आप उसे जीवित नहीं कर सकेंगे। ये कहकर तक्षक ने एक वृक्ष को डस लिया। उसी क्षण वृक्ष जलकर राख हो गया। कश्यप ब्राह्मण ने अपनी विद्या के बल से उस वृक्ष को उसी समय हरा भरा कर दिया। उसने कहा, तुम जो चाहो मुझसे ले लो। ब्राह्मण ने कहा, मैं तो धन के लिए वहाँ जा रहा हूँ। तब तक्षक ने कहा कि तुम उस राजा से जितना धन लेना चाहते हो मुझसे ले लो और यहीं से लौट जाओ। ऐसा कहने पर कश्यप ब्राह्मण मुंह मांगा धन लेकर लौट गए। उसके बाद तक्षक छल से आया और उसने आपके महल में बैठे और सावधान धार्मिक पिता को विष के आग से भस्म कर दिया। तदनंतर आपका राज्य अभिषेक संपन्न हुआ। तक्षक ने आपके पिता को डसा है और उत्तंग ऋषि को भी बहुत परेशान किया है, अब जैसा उचित समझे करे। उनके ने कहा, महाराज तक्षक ने जिस वृक्ष को डसा था उस पर पहले से ही एक मनुष्य सूखी लकड़ियों के लिए चढ़ा हुआ था। ये बात तक्षक और कश्यप दोनों के बीच दोनों में से किसी को मालूम न थी। तक्षक के डसने पर वृक्ष के साथ वह मनुष्य भी भस्म हो गया। कश्यप के मंत्र के प्रभाव से वृक्ष के साथ वह भी जीवित हो गया। तक्षक और कश्यप की बातचीत उसी से सुनी थी और वहां से आकर उसने हम लोगों को सूचित किया था। अपने पिता की मृत्यु का इतिहास सुनकर जन्मेजय को बड़ा दुख हुआ। वे क्रुद्ध होकर हाथ से हाथ मलने लगे। शोक के कारण उनकी लंबी और गर्म सांस चलने लगी, आंखें आंसू से भर गईं। वे दुख शोक और क्रोध में भरकर आंसू बहाते हुए हाथ में जल लेकर बोले, मेरे पिता किस प्रकार स्वर्गवासी हुए, ये बात मैंने विस्तार के साथ सुन ली है। मेरे पिता की मृत्यु में सारा अपराध तक्षक का ही था, इसलिए मैं उससे अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने का संकल्प करता हूँ। देवताओं ने आपके लिए एक महायज्ञ निर्माण कर रखा है, पितृकों ने कहा, हमें इस यज्ञ की विधि मालूम है। राजा ने कहा ब्राह्मणों से, मैं वही यज्ञ करूंगा, आप लोग इसके लिए सामग्री संग्रह कीजिए। इसी समय एक विचित्र घटना घटित हुई। सूत जी ने कहा, जिस स्थान और समय में यज्ञ मंडप मापने की क्रिया प्रारंभ हुई उसे देखकर यह मालूम होता था कि किसी ब्राह्मण के कारण ये यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकेगा।
0: जी, बहुत ही सुंदर कथा। हम जान रहे हैं कि किस तरह से अब जन्मे जी जो हैं उन्होंने ये सोच लिया है कि वो उनके पिता की मृत्यु कैसे हुई पता चलने के बाद बदला लेंगे। और अब इस कथा में आगे क्या होगा ये हम जानेंगे रागलेखा दासी जी से, लेकिन अगले एपिसोड में, क्योंकि अभी वक्त आपसे इजाजत लेने का हो चुका है। तो रागलेखा दासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए।
1: हरे कृष्ण
0: जी। तो श्रोताओं, इस महाभारत काव्य और इस ग्रंथ के अंदर जितनी भी कथाएं हैं वो हम आपको बताते रहेंगे अपने एपिसोड्स में, और आप हमारे साथ जुड़े रहिए रेडियो मनोरचना 107.8 के साथ। और भी कार्यक्रम तो आप इन्जॉय कर सकते हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। मुझे दीजिए इजाजत और सुनते रहिए RMR 107.8। फील गुड, फील लाइव।

0: पर हम
1: अरे कहाँ पर अटक गए यार।
2: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर फरीदाबाद का अपना रेडियो स्टेशन।

0: नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर सभी श्रोताओं का स्वागत है। श्रोताओं, मैं हूं आपके कम्युनिटी मेंबर मंजू चंदीला और हम आपके लिए लाए हैं शिव पुराण। दोस्तों, शिव पुराण सुनवाने का जो हमारा उद्देश्य है वह है भक्ति का प्रचार प्रसार करना और जन जन के दुखों का विनाश करना, उनका सरल से सरल उपाय ढूंढना। और वो ढूंढने की ज़रूरत नहीं, वो बताएगा हमें शिव पुराण। और शिव पुराण सुनाएंगी हमको डॉक्टर लीना सिन्हा जी। तो लीना सिन्हा जी आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं। लीना जी, आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद मंजू जी।
0: लीना जी, आपने पिछले एपिसोड में हमारे श्रोताओं को बहुत ही मनोरम दृश्य का वर्णन प्रसंग ऐसा सुनाया था कि मन अभी तक भी उन्हीं दृश्यों में खोया हुआ है। और बहुत से फ़ोन आए कि जो दृश्य शिव पुराण में भगवान शिव और माँ आदि शक्ति के विवाह का सुनाया गया, अभी तक भी हम उस पर चिंतन करते रहते हैं, उसके बारे में ही सोचते रहते हैं। आपने बताया कि पहले तो मैं ना तैयार नहीं हो रही थी माँ पार्वती की माँ, लेकिन जब सब विष्णु जी ने समझाया और नारद जी ने शिव को कहा कि आप अपने वास्तविक रूप में आइए, तो मैं ना हैरान हो गई थी उनकी सुंदरता देखकर। तब रत्नों से सुशोभित संसार के देवता को अपने सामने पाकर मैं ना अचंभित सी हो गई थी। तब शिव ने भी, फिर उन दोनों ने, शिव और माँ पार्वती ने अंदर विवाह मंडप में प्रवेश किया। शिव ने भी शिवा को देखा। तब सभी देवताओं ने जो थे उन माँ आदि शक्ति की देखकर, उनकी सुंदरता देखकर, अनुपम छटा देखकर, उनके सामने नतमस्तक होकर सबने प्रणाम किया। और गर्ग ऋषि ने हिमालय से कहा कि अब आप भगवान शिव को पाणी ग्रह के लिए अपने घर में ले आइए। अब उनका विवाह शुरू होने वाला था कि अब मंत्रोच्चारण से, विधि विधान से। तो अब लीना जी हमें बताइए कि हिमालय राज भगवान शिव को पाणी ग्रह संस्कार के लिए अपने घर में ले आए, अब वहाँ क्या हो रहा है वो हम सुनना चाहते हैं
1: जी। अब रुद्र संहिता के पार्वती खंड का,
0: हाँ जी,
1: 47वां अध्याय है। और इस 47वें अध्याय में हम देखते हैं कि आगे क्या होता है कि कहते हैं कि बारात तो अंदर आ गई, शिव जी अंदर आ गए, सभी बड़े खुश, इतना खूबसूरत दूल्हा, इतना अप्रतिम वर और इतने अद्वितीय पति शिव जी बनने वाले थे पार्वती के। और पार्वती भी अनिद्य सुंदरी थी, यानी कि जो सर्वांग सुंदरी कहा जाए, आदिशक्ति हैं, सारा सौंदर्य ब्रह्मांड का जिनमें समाया हुआ है वो आदिशक्ति हैं और सदाशिव हैं। तो ऐसे सुंदर वर वधु का मिलन होने जा रहा था इस विवाह मंडप में, विवाह संस्कार में। और बाराती जो बन रहे थे वो गदगद हो रहे थे, वो धन्य हो रहे थे। धन्यता तो थी ही, क्योंकि ये जिस परमेश्वर को पाने के लिए ऋषि मुनि कितने काल तक तपस्या करते रहते हैं, साधना रत रहते हैं, उपासना में रत रहते हैं, कोई एक पैर पर खड़े रहते हैं क्योंकि ध्यान से उनको देखा जाता है, कोई निर्विकल्प समाधि में, कोई सविकल्प समाधि में जाते हैं परमेश्वर, लेकिन नजर तो आए। और उन परमेश्वर की शादी है, उन परमेश्वरी का विवाह है। तो ये अद्भुत दृश्य